एक समय बद्रीनाथ विशालापुरी बद्रीनाथ में चार भाई सत्संग करने के लिए गए। कौन? सनत, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। जब चारों भैया विचरण करते हुए बद्रीनाथ की तरफ गए तो वहां सब संतों का मिलना हुआ, लेकिन चारों भाई को एक और मिले। कौन? इनके ही एक भाई श्री नारद जी महाराज। पर नारद जी का मुंह लटका हुआ, ऐसे कमजोर जैसे सूखी चुकी हुई आसाएं हो, आम हो, ऐसा मुंह लटका, एकदम आंखें घुससी गईं, मन भजन में नहीं लग रहा। ऐसी हालत को देख करके चारों भाई परेशान हो गए। सनत कुमारों ने नारद जी को कहा,

टेंशन में नहीं रहना चाहिए, महात्माओं को तो अटेंशन में रहना चाहिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं, हमने देखे हैं, वो कथा में क्या हमारे सामने भी बैठेंगे तो ऐसे बैठेंगे जैसे घर से पिट के आया। अच्छा, कुछ लोगों को ये लगता है, कुछ हमने पढ़े लिखे लोग देखे, अच्छा जो मूर्खों से ज्यादा पढ़े लिखों में दिक्कत ज्यादा, ये बीमारी पढ़ों लिखों में ज्यादा पाई जाती है, क्योंकि पढ़े लिखे लोगों को ये लगता है कि अगर हम ज्यादा हंसेंगे तो लोग हमको मूर्ख समझेंगे। उनको ये लगता है, इसलिए जितने भी ठहाका लगाते मिलेंगे वो हमारे जैसे मूर्ख ही मिलेंगे। पढ़े लिखे तो इतना कमजोर हंसते हैं कि सत्तू अगर सामने रख दो तो वो भी ना उड़े। इतने कमजोर। अच्छा, उनको इसलिए ऐसा लगता है क्योंकि उनको लगता है कि नहीं हमारा यही प्रोफेशन है, इसलिए इनको ज्यादा टेंशन। और जितने पढ़े लिखे लोग आत्महत्या करेंगे, स्ट्रेस में डिप्रेशन में रहेंगे, उतने हमारे जैसे मूर्ख कभी नहीं होते। जितनी गोलियां पढ़े लिखे खाते, मूर्ख कभी नहीं खाते। क्यों? क्योंकि पढ़े लिखों को सब बुद्धि से सोचकर जीना पड़ता है, हमारे जैसे मूर्खों को दिल से सोचकर चलना पड़ता है। पढ़े लिखे दिमाग से चलते, हमारे जैसे मूर्ख लोग तो दिल से चलते हैं। अच्छा, बुरा न मानना, पढ़े लिखे लोग हमने देखे, यहां भी कुछ लोग बैठे हैं, आप लोगों को नहीं बोल रहे हम, कितनी भी बड़ी बात कह दे ये ताली भी बजाएंगे। हमने बहुत देखे, बड़े बड़े लोग देखे। अच्छा, ये हंसेंगे भी तो मतलब ऐसा लगेगा जैसे रबड़ थोड़ा तनी हो फिर छोड़ दी गई हो। हमारे जैसे मूर्ख जो सो रहा हो वो जग जाए, ऐसे हंसते हैं। तो पढ़े लिखे लोगों को बड़ी दिक्कत है क्योंकि वो दिमाग से चलते हैं। हमारे जैसे मूर्ख यहां से नारद जी मुंह लटकाए खड़े। अच्छा, लेकिन ये मूर्ख नहीं, देव ऋषि है, पर मुंह क्यों लटकाए है? अपनी चिंता के कारण। ये साधु के देखना, जरा लोग हमसे पूछते साधु कौन जो अपनी चिंता ना करके दूसरी की चिंता में और परमात्मा के चिंतन में रहे, उसी को साधु कहा जाता है। जगत की चिंता में और जगदीश के चिंतन में जो रहे उसे साधु कहा जाता है। साधु कौन जो जगत की चिंता में और जगदीश के चिंतन में। नारद जी चिंता में, किसकी चिंता है? क्या बात है? अरे नारद जी, तुम्हारी तो कोई झोपड़ी भी नहीं है कि लुट गई हो, पर मुंह लटकाए क्यों खड़े हो? नारद जी बोले, भैया क्या बताएं, अरे संतों का धन क्या है, संतों का धन क्या है?

नारद जी महाराज, क्यों मुंह लटकाए हो? संतों का परम धन तो राधा नाम है, बोलो जय श्री राधे। भगवान का नाम ही परम धन है। नारद जी बोले, भैया हम अपने चक्कर में मुंह नहीं लटकाए। फिर बोले, हम इस लोक में, मृत्यु लोक में आए थे सत्संग करने। अच्छा, कितनी बड़ी बात है, सत्संग सब जगह नहीं मिलता, यही मिलता है। बोलो सीताराम, स्वर्ग में तुम्हें अप्सराएं मिल जाएंगी, खान पान बढ़िया मिलेगा, जो कल्पना करोगे सब मिलेगा, लेकिन सत्संग नहीं मिलेगा। अब तुम स्वर्ग में जाके कहो, हमको बागेश्वर महाराज की हनुमंत कथा सुनाओ, ये संभव नहीं है स्वर्ग में। सत्संग करने के लिए तो आपको मृत्यु लोक में ही आना पड़ेगा। नारद जी बोले, भैया हम आए थे इस लोक में सत्संग करने,

नारद जी बोले हम सब तीर्थ में गए, पुष्कर, प्रयाग, काशी, राम सेतु जहां पर है, रामेश्वरम, श्रीरंगम, श्रीरंगम सेतु बंदनम एवं आदेशु तीर्थेशु भ्रममाणे तस्ततः, सब तीर्थों में गए पर कहीं पर भी सत्संग प्राप्त नहीं हुआ। तो चारों भाई बोले क्यों? बोले कलयुग का ऐसा प्रभाव पड़ा, पापस्य खंडा सा पाखंडा, सब पाखंडी हो रहे हैं। अच्छा ये पाखंडी क्या है? पाप के ही एक खंड का नाम है पाखंड। पाप का एक खंड है मतलब जो है नहीं होने का दिखावा करे वही पाखंडी है। पाखंडी का अर्थ क्या है? आजकल ज्यादातर लोग ही पाखंडी है। हाँ, अरे पूछिए कैसे? असली ब्यूटी गायब है, ब्यूटी पार्लर की ब्यूटी लगी भई है। हाँ, ये भी तो गड़बड़ी है, ये भी गड़बड़ है। इसी का नाम तो जो है वो गायब। ज्यादा हमने अभी कुछ दिन पहले एक बात बोली थी सुविचार में कि दुनिया भारत के लोग जो होने का दिखावा करते हैं अगर वही बन जाए तो भारत देश को सुधरने में समय नहीं लगेगा। नारद जी बोले भैया जहां देखो कलयुग की बड़ी विचित्र स्थिति, तपसी धनवंत दरिद्र ग्रही, कली कौतुक तात न जात कही। कलयुग का बड़ा प्रभाव। अच्छा कलयुग का प्रभाव क्या? नारद जी बोले

0: कलयुग का प्रभाव कैसा? नारद जी बोले, भैया कन्या विक्रयण, आजकल कलयुग में शादियां नहीं होती हैं, बेटियों को बेचा जाता है, लड़कों का मोल लगाया जाता है, जो जितना रेट देवे, 4 लाख में शादी तय हुई, 10 लाख वाला आ जाए तो 4 की कैंसल, 10 की तय। कन्या विक्रयणो लोभात, सभी लोभी हो गए, दंपति नाम च कलकनम। अच्छा, ये गृहस्थ का हाल नहीं है, महात्माओं का भी हाल है। नारद जी बोले, भैया बुरा ना मानना, पहले के जमाने में महात्मा जितने फक्कड़ होते थे उतने सिद्ध माने जाते, आज के जमाने में जितने वैभवशाली हो उतने सिद्ध माने जाते, 8-10 बंदूकों वाले, 40-50 गाड़ियां, 20-25 मकान के कमरा, VIP 5-स्टार होटल, गजब बाबा है, बहुत ऊंचे पहुंचे भाई। भला ही साधना कुछ ना हो, केवल साधन ही साधन हो, पर बुरा ना मानना, आज का जमाना ही ऐसा है, दिखावा का बड़ा जमाना है। आजकल चेले भी फोटूबाज हो गए, फोटो ले तभी दीक्षा मानी जाती। एक आदमी हमारे मंच पे चढ़ा, माला लेकर गया, गुरुजी माला, उनका चढ़ा दो भाई, डालो डालो डालो, कान पे टांग, यहाँ कान पे, और देख उस तरफ रहा, अरे हम की माला तो ढंग से डाल, गुरुजी फोटो हो जाए, हम के फोटो बाद में, पहले कान से तो निकाल के थे डाल। पुराना मानना, हम फोटो के विरोध में नहीं है, पर एक बात हमें बहुत चुभती है, हमने 4-5-6 दिन पहले बोली है, रील की जिंदगी में रियल का खोजना बड़ा कठिन हो गया है। रील की जिंदगी में रियल का खोजना बड़ा कठिन हो गया, आजकल रियल कम दिखाई देते। नारद जी यही कह रहे, कलयुग का बड़ा प्रभाव।
1: आखिर क्यों लोहे को शनि की धातु माना जाता है? लोहे के प्रयोग से शनि की समस्याओं को कैसे दूर कर सकते हैं? क्या शनिवार के दिन लोहा नहीं खरीदना चाहिए? क्या है शनि और लोहे का कनेक्शन? जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
2: कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
2: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
2: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
7: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें दो।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
1: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
2: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
1: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
2: गुड न्यूज टुडे।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
5: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा।
6: एशियन गेम्स में तिरंगा लहराकर महिला हॉकी टीम जापान से लौटी स्वदेश, बेंगलुरु एयरपोर्ट पर हुआ भव्य स्वागत, दिलीप बॉक्सिंग और स्क्वॉश खिलाड़ियों की शानदार अगवानी। जापान में आज होगा एशियन गेम्स का रंगारंग समापन समारोह, पदक तालिका में चौथे स्थान पर पहुंचा भारत, आखिरी दिन जुड़ा 5 गोल्ड मेडल्स का गोल्डन पंच। भारतीय जाबाज पायलट कैप्टन स्मिथ को इजराइल देगा खास सम्मान, पीएम नेतन्याहू ने वीडियो कॉल पर बात की, स्वतंत्रता दिवस समारोह में मशाल जलाने का निमंत्रण दिया। दिल्ली मुंबई में आज आईएएफ मैराथन और हाफ मैराथन का आयोजन, फौजियों के साथ आम लोग भी शामिल, देशभक्ति और फिटनेस को बढ़ावा। ग्वालियर में बाबा मंसूर शाह की दरगाह पर सालाना उर्स की रौनक, 300 साल से चल रही है खास परंपरा, सांप्रदायिक एकता की दिखती है मिसाल। अमेरिका के न्यू मेक्सिको में इंटरनेशनल बलून फिएस्टा, 500 से ज्यादा गुब्बारों की शानदार उड़ान का मजा लेने पहुंचे दुनिया भर से लोग।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें।
6: एशियन गेम्स में गोल्ड जीतकर जापान से स्वदेशी लौटी महिला हॉकी टीम, बेंगलुरु एयरपोर्ट पर शानदार स्वागत हुआ। एयरपोर्ट पर खिलाड़ियों ने मेडल दिखाकर किया खुशी का इजहार, उत्साह में नजर आए प्रशंसक। खिलाड़ियों ने हॉकी स्टिक पर दिए ऑटोग्राफ, कहा रंग लाई बरसों की मेहनत और एकजुटता। बॉक्सिंग के पदक वीर भी लौटे स्वदेश, गोल्डन गर्ल लवलीना और परवीन का दिल्ली एयरपोर्ट पर अभिनंदन किया। जापान से जीतकर लौटे अंकुश पंघाल और दूसरे खिलाड़ियों का भी जोरदार स्वागत, एशियन गेम्स में बढ़ाया देश का मान। जापान में एशियन गेम्स में परचम लहराकर स्वदेशी लौटी भारतीय स्क्वाश टीम, दिल्ली एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत हुआ। अनाहत सिंह, तन्वी खन्ना, जोशना चिनप्पा और शमीना रियाज ने एशियन गेम्स में मेडल पर कब्जा किया, चेहरों पर नजर आई कामयाबी की खुशी। इंडिविजुअल और टीम इवेंट में परफॉर्मेंस में संतुष्ट हैं अनाहत सिंह, आने वाले इवेंट्स में बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद। तन्वी खन्ना ने भी एशियन गेम्स में परफॉर्मेंस पर जताई खुशी, जापान में कामयाबी के अनुभव को बताया बेहतरीन। भारतीय स्क्वॉश खिलाड़ी अभय सिंह भी जापान से लौटे स्वदेश, अब ओलंपिक की टिकट पर हैं निगाहें। जापान के नागोया में आज एशियन गेम 2026 का समापन समारोह भारतीय समय के अनुसार दिन में 2:30 बजे से होगा रंगारंग कार्यक्रम। समापन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक होंगी भारतीय महिला ट्रैप निशानेबाज नीरू ढांडा, नीरू ने 2 स्वर्ण पदक और टीम को रजत पदक जिताकर शानदार प्रदर्शन किया। इस बार एशियन गेम्स में 21 गोल्ड सहित कुल 85 मेडल जीतकर चौथे स्थान पर रहा भारत, 27 सिल्वर और 37 ब्रॉन्ज मेडल पर कब्जा किया। एशियन गेम्स के आखिरी दिन 5 गोल्ड सहित 9 मेडल जीतकर भारत ने शानदार फिनिश किया, क्रिकेट के अलावा हॉकी, गोल्फ और तीरंदाजी में भी मिला सुनहरा मौका। भारत ने क्रिकेट, हॉकी और कबड्डी में लगातार दूसरी बार पुरुष और महिला दोनों वर्गों में जीते खिताब, पूरा किया गोल्ड मेडल डबल। एशियन गेम्स के पदकवीर खिलाड़ियों पर इनामों की बरसात हुई, गोल्फ में गोल्ड मेडल जीतने पर प्रणवी उर्स को मिलेगा 1 करोड़ रुपए का पुरस्कार। महिला गोल्फ टीम की सदस्यों को मिलेंगे 25-25 लाख रुपए, एएम ग्रीन आईजीपीएल लीग ने किया ऐलान। हॉकी इंडिया ने की है महिला टीम की हर खिलाड़ी को 11 लाख रुपए देने की घोषणा, हर सपोर्ट स्टाफ को भी मिलेंगे 5.5 लाख। ओडिशा सरकार ने भी की है हर खिलाड़ी को 11 लाख रुपए देने की घोषणा, हर सपोर्ट स्टाफ को भी मिलेंगे 5.5 लाख। महिला हॉकी टीम के खिलाड़ियों को मिजोरम सरकार देगी 25-25 लाख रुपए का इनाम, टीम में शामिल है मिजोरम की 2 प्लेयर्स। महाराष्ट्र के अमरावती में एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीतने वाली कुमकुम मोहोड के घर जश्न का माहौल बना, तो वहीं शानदार कामयाबी पर लोगों ने आतिशबाजी की। कुमकुम के परिजनों ने मिठाइयां खिलाकर खुशियां बांटी, 17 साल की कुमकुम ने रिकर्व तीरंदाजी में जीता गोल्ड मेडल। गाजीपुर में हॉकी खिलाड़ी राजकुमार पाल के घर बंटी मिठाइयां, एशियन गेम्स में जीत पर परिवार दिखा गदगद। हरियाणा के सिरसा में हॉकी प्लेयर्स ने मनाया भारतीय टीम की जीत का जश्न, उत्साह से लबरेज दिखे बच्चे। जालंधर में हॉकी खिलाड़ी मनप्रीत के घर दिखी खुशी की लहर, परिजनों ने वीडियो कॉल पर बात की। इसराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने भारतीय पायलट कैप्टन स्मिथ मचार से वीडियो कॉल पर बात की, बहादुरी की जमकर तारीफ। पीएम नेतन्याहू ने कैप्टन स्मिथ को बताया इसराइल, भारत और पूरे विश्व के लिए हीरो। संकट की घड़ी में सैकड़ों यात्रियों की जान बचाने के लिए जताया आभार। पीएम नेतन्याहू ने कैप्टन स्मिथ को दिया इसराइल आने का न्योता। इसराइल के स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल होकर मशाल प्रज्वलित करने का ऐतिहासिक निमंत्रण दिया। बेंजामिन नेतन्याहू की कैप्टन स्मिथ से ली फ्लाई दुबई के विमान में हुई घटना के बारे में जानकारी। वहीं स्मिथ ने बताया कॉकपिट में क्या क्या हुआ था। इसराइल के लोग हुए कैप्टन स्मिथ की जुआबाजी के दीवाने। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने सोशल मीडिया पर साझा किया वीडियो, लिखा देखिए किस तरह लोग अदा कर रहे हैं शुक्रिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज तेलंगाना में देंगे सौगात। अमूल के मॉडर्न डेयरी प्लांट का करेंगे शुभारंभ। मेडक में रखी जाएगी साबर डेयरी परियोजना की आधारशिला। तेलंगाना के करीम नगर में मेडिकल कॉलेज के कार्यक्रम में भी शामिल होंगे अमित शाह। नई बिल्डिंग का शिलान्यास करेंगे। उत्तर प्रदेश के भदोही में आज होगा 50वें इंडिया कार्पेट एक्सपो का शुभारंभ। 65 देशों के 430 खरीदार शामिल होंगे। आज दिन में 1:30 बजे सीएम योगी करेंगे कार्पेट एक्सपो का उद्घाटन। 1340 करोड़ की 112 विकास परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास का भी कार्यक्रम। 50वें इंडिया कार्पेट एक्सपो में लगाए गए 227 स्टॉल। भारतीय कालीनों का 196 देशों में होता है निर्यात। अगले साल कोलकाता में होगा 19वां प्रवासी भारतीय दिवस समारोह। 7 से 9 जनवरी तक होगा आयोजन। प्रधानमंत्री करेंगे उद्घाटन। 19वें प्रवासी भारतीय दिवस समारोह के समापन समारोह में शामिल होंगे राष्ट्रपति। प्रवासी भारतीय सम्मान करेंगे प्रदान। इम्फाल में टीबी मुक्त भारत अभियान के सिलसिले में कार्यक्रम का आयोजन। बांटे गए न्यूट्रिशनल फूड बास्केट। ओडिशा के खोर्धा में स्कूल के वार्षिक समारोह में बच्चों ने लगाई साइंस प्रदर्शनी। राज्यपाल ने बढ़ाया हौसला। ओडिशा के खोर्धा में टूरिज्म को बढ़ावा देने पर जोर। राज्यपाल ने किया इलाके के मशहूर अत्री हॉट स्प्रिंग का मुआयना। पुरी में सैंड आर्ट सीखने वाले छात्रों के लिए बनाई शानदार कलाकृति। एशियन गेम्स में मेडल जीतने पर भारतीय क्रिकेट और हॉकी टीमों को बधाई दी। लखीमपुर खीरी में टल गया बड़ा हादसा। नहर के गहरे पानी से बुलेरो गाड़ी का किया गया रेस्क्यू। गाड़ी में ड्राइवर के अलावा 6 स्कूली बच्चे सवार थे। मछुआरों और गांव के लोगों ने पानी में घुसकर बच्चों को सुरक्षित निकाला। अमेरिका में भारतीय दूतावास की ओर से यूनिटी रन फिटनेस इवेंट का आयोजन किया गया। फिटनेस के साथ साथ एकजुटता का संदेश दिया गया। यूनिटी रन इवेंट में बड़ी संख्या में भारतीय शामिल हुए। दूतावास की पहल का स्वागत किया। ग्वालियर में महाराज बाड़ा के ऐतिहासिक गोरखी देवघर में बाबा मंसूर शाह की दरगाह पर सालाना ओर से 300 सालों से चली आ रही है खास परंपरा। बाबा मंसूर शाह की दरगाह पर ओर से दिखती है सांप्रदायिक एकता की मिसाल। सभी समुदाय के लोग होते हैं शामिल। सालाना उर्स के सिलसिले में बाबा मंसूर शाह की दरगाह पर रौनक की गई है शानदार सजावट। असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में टूरिज्म सीजन का आगाज हुआ। जीप सफारी के लिए उमड़ने लगी सैलानियों की भीड़। असम के वन मंत्री जयंत मल्ला बरुआ होंगे पहुंचे काजीरंगा नेशनल पार्क के गेट पर। औपचारिक रूप से टूरिज्म सीजन का शुभारंभ हुआ। कहा जल्द शुरू होगी एलिफेंट सवारी। दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे के 146 साल पूरे होने पर तस्वीरों में दिखा टॉय ट्रेन का इतिहास। नॉर्दर्न फ्रंटियर रेलवे ने बनाई है खास फोटो गैलरी। दार्जिलिंग की सुकना में फोटो गैलरी का हुआ शुभारंभ। दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे की गौरवशाली सफर से रूबरू होने का मिलेगा मौका। नेपाल के ललितपुर में सालाना टैटू समिट का आयोजन। टैटू कला को देखने के शानदार रंग। नेपाल की टैटू समिट में टैटू कला में आ रहे हैं बदलावों की नुमाइश। नए डिजाइन्स को बढ़ावा देने पर जोर है। अहमदाबाद में साबरमती सेंट्रल जेल में कैदियों को दी जा रही है अलग अलग कौशल की ट्रेनिंग। जेल में रहते हुए रोजगार और कमाई का मिल रहा है मौका।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
7: लगा निकल जाएगा दम पर जज्बा नहीं हुआ कम। लहू लुहान बदन फिर भी परमार्थ से भरा मन। हनुमान चालीसा से मिला जूझने का बल। 174 लोगों को मौत से बचाने वाला महाबली। बंदे में है दम, श्वेता झा के साथ सुबह 9:34 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
8: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
9: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
8: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
2: गुड न्यूज टुडे।
9: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
8: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
8: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
9: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
8: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
2: गुड न्यूज टुडे।
9: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
9: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती है। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती है। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।

नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। हर पूजा का एक अभिन्न अंग है आरती। आज हम आपको बताएंगे कि आरती का महत्व क्या है, आरती करने का तरीका क्या है और आरती से किस किस तरह के लाभ जीवन में प्राप्त होते हैं। अब जान लेते हैं दिनांक 4 अक्टूबर 2026 दिन रविवार को प्रातः काल ग्रहों की स्थिति क्या है। सूर्य विद्यमान है कन्या राशि में, बुध और शुक्र तुला राशि में, राहु कुंभ राशि में, शनि मीन राशि में, चंद्रमा मिथुन राशि में, मंगल और बृहस्पति कर्क राशि में और केतु फिलहाल संचरण कर रहे हैं सिंह राशि में। ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आगे हम जानेंगे कि आपका दैनिक राशि फल कैसा रहने वाला है। सबसे पहले जानते हैं कि आरती होती क्या है और आरती का महत्व क्या है। देखिए, आरती के महत्व की चर्चा आरती के बारे में सबसे पहले बताया गया है स्कंद पुराण में। आरती हिंदू धर्म की पूजा परंपरा का एक महत्वपूर्ण काम है। किसी भी पूजा पाठ यज्ञ अनुष्ठान इसके अंत में देवी देवताओं की आरती की जाती है। आरती की प्रक्रिया में एक थाल में दीपक की ज्योति या कपूर की ज्योति रखते हैं और कुछ विशेष वस्तुएं रख कर देवी या देवता के समक्ष घुमाते हैं। थाल में अलग अलग वस्तुओं को रखने का अलग अलग महत्व होता है, लेकिन सबसे ज्यादा महत्व होता है आरती के साथ जो आप स्तुति गाते हैं, जो आप प्रार्थना करते हैं, वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है। जितनी भावना से, जितनी श्रद्धा से आप आरती गाएंगे उतना ज्यादा ये प्रभावशाली होगी। यानी केवल ज्योति को घुमाने से आरती नहीं होगी, साथ में जितने प्रेम और श्रद्धा से आप आरती गाएंगे या आरती कहेंगे उतना ज्यादा आपको लाभ होगा और उतनी ज्यादा आरती प्रभावशाली होगी। आरती पर हमारी चर्चा जारी है, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब ये जानते हैं कि आरती करने के नियम क्या हैं। बिना पूजा उपासना किए हुए, बिना मंत्र जप किए हुए, बिना प्रार्थना या भजन किए हुए केवल आरती नहीं की जा सकती। आप बिना वजह के, बिना किसी पूजा उपासना के सीधे आरती नहीं कर सकते। हमेशा किसी पूजा या प्रार्थना की समाप्ति पर ही आरती करना अच्छा होता है। आरती की थाल में कपूर या घी के दीपक दोनों में से किसी एक चीज से
आप ज्योति जला सकते हैं। अगर आप दीपक से आरती करते हैं तो ये दीपक पंचमुखी होना चाहिए और थाल में पूजा के फूल और कुमकुम ये आपको जरूर रखना चाहिए। आरती को देवी देवता के सामने इस तरह से घुमाइए कि ओम की आकृति बन सके। आरती को भगवान के चरणों में चार बार, उनकी नाभि में दो बार, मुख पर एक बार और पूरे शरीर पर सात बार घुमाना चाहिए। जब आप आरती कर लें और दूसरों को आरती देंगे उनके आशीर्वाद के लिए, तो थाल में रखे हुए फूल देने चाहिए और कुमकुम का तिलक लगाना चाहिए। जैसे आपने आरती कर ली, अब आप बाकी दूसरों को आशीर्वाद दे रहे हैं, आरती के माध्यम से भगवान की कृपा दे रहे हैं, तो लोगों के हाथों में फूल दीजिए और लोगों को कुमकुम का तिलक लगाइए तो ज्यादा बेहतर होगा। तो आरती पर हमारी चर्चा जारी है, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। जब आरती हो जाती है तो आरती सबको दी जाती है और सब लोग आरती की अग्नि से, ज्योति से ऊर्जा ग्रहण करते हैं। तो किस प्रकार आरती से ऊर्जा ग्रहण की जाएगी? आरती से जब आप ऊर्जा लेते हैं उस समय अपना सर ढका रखिए, दोनों हाथों को ज्योति के ऊपर घुमाइए और इसको अपने नेत्रों पर, अपनी आंखों पर और सर के मध्य भाग में लगाइएगा। आरती से जब आप ऊर्जा ले लेते हैं तो कम से कम 5 मिनट तक जल का स्पर्श नहीं करेंगे। बहुत सारे लोग आरती लेते हैं और आरती की थाल में दक्षिणा या पैसे डालते हैं। दक्षिणा दान पात्र में डाली जाएगी, आरती की थाल में पैसे डालना या दक्षिणा डालना उचित नहीं होगा। देखिए, सामान्य पूजा में आप रोज जब संध्या काल में पूजा करते हैं तो सामान्य दिनों में जो नारायण की आरती है, ओम जय जगदीश हरे, ये आरती रोज संध्या काल में पढ़िए, आपकी पूजा संपन्न होगी और प्रभु की कृपा आपको प्राप्त होगी। लेकिन अलग अलग स्थितियों, परिस्थितियों में आप अलग अलग आरती भी कर सकते हैं। जैसे आप रेगुलरली अगर हनुमान जी की पूजा करते हैं तो आप हनुमान जी की आरती कर सकते हैं। शत्रु और विरोधी अगर ज्यादा परेशान कर रहे हों तो भगवान नृसिंह की आरती कर सकते हैं। अगर धन की प्राप्ति करना चाहते हैं, आर्थिक रूप से जीवन में कठिनाई है, तो माता लक्ष्मी की आरती करना आपके लिए बेहतर होगा। और एक समय की पूजा में केवल एक ही आरती करनी चाहिए, एक साथ 3, 4, 5 तरह की आरती नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जैसे ही आप पहली आरती करते हैं आपकी पूजा पूर्ण हो जाती है। उसके बाद बाकी आप कितनी भी आरती करते रहें,
उसका कोई लाभ आपको नहीं मिलेगा। तो एक वेला की पूजा में एक आरती ही करना हर दृष्टिकोण से सही है। अब जान लेते हैं आपके भाग्य को बेहतर बनाने के लिए एक लकी टिप। अगर आर्थिक स्थिति में पैसे रुपए के हाल में लगातार कठिनाई बनी हुई है तो रोज सवेरे सूर्योदय के पहले पीपल के वृक्ष में अगर आप जल अर्पित करें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, पैसे रुपए की कठिनाई आपकी दूर हो जाएगी। अब जान लेते हैं दिनांक 4 अक्टूबर 2026 दिन रविवार का सक्सेस मंत्र क्या है। प्रातः काल सूर्य भगवान को जल अर्पित करिएगा, इसके बाद 9 बार ओम आदित्याय नमः इस मंत्र का जप करिएगा। अगर प्रातः काल ऐसा करते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो किस्मत कनेक्शन में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे। नमस्कार।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
2: एवरेस्ट दिखा लाल, सही दिखा सही लाल।
3: एशियन गेम्स में तिरंगा लहराकर महिला हॉकी टीम जापान से लौटी स्वदेश। बेंगलुरु एयरपोर्ट पर हुआ भव्य स्वागत। दिल्ली में बॉक्सिंग और स्क्वॉश खिलाड़ियों की शानदार अगवानी। जापान में आज होगा एशियन गेम्स का रंगारंग समापन समारोह। पदक तालिका में चौथे स्थान पर पहुंचा भारत, आखिरी दिन जुड़ा 5 गोल्ड मेडल्स का गोल्डन पंच। भारतीय जाबाज पायलट कैप्टन स्मिथ मचार को इजराइल देगा खास सम्मान। पीएम नेतन्याहू ने वीडियो कॉल पर बात की, स्वतंत्रता दिवस समारोह में मशाल जलाने का निमंत्रण दिया। दिल्ली मुंबई में आज से IAF मैराथन और हाफ मैराथन, तो वहीं फौजियों के साथ आम लोग भी शामिल होंगे। देशभक्ति और फिटनेस को बढ़ावा दिया जाएगा। ग्वालियर में बाबा मंसूर शाह की दरगाह पर सालाना उर्स की रौनक। 300 साल से चल रही है खास परंपरा, सांप्रदायिक एकता की दिखती है मिसाल। अमेरिका के न्यू मैक्सिको में इंटरनेशनल बलून फिएस्टा। 500 से ज्यादा गुब्बारों की शानदार उड़ान का मजा लेने के लिए दुनिया भर से पहुंच रहे हैं लोग।
2: एवरेस्ट दिखा लाल, सही दिखा सही लाल।
4: नमस्कार, गुड लक टुडे के इस खास एपिसोड में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव और मेरा साथ देने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
5: नमस्कार।
4: तो चलिए आपको जानकारी देते हैं कि आज के इस शो में हम पंडित जी के साथ क्या चर्चा करने वाले हैं। आज का चर्चा का विषय रहने वाला है लोहे का शनि कनेक्शन। आज आपको बताएंगे कि लोहे का शनि के साथ कनेक्शन क्या होता है, इसको समझेंगे। लोहा और शनि आपस में कैसे कनेक्टेड हैं ये तो पंडित जी बताएंगे ही, लेकिन लोहे का सही इस्तेमाल करते हुए शनि की स्थिति को आपके जीवन में और कुंडली में कैसे बेहतर बनाना है, उसके बारे में तमाम उपाय और जानकारियां पंडित जी विस्तार के साथ आपके साथ शेयर करेंगे। आगे जाकर आपके बारे में हम बताएंगे, आपके सवाल भी लेंगे, पंडित जी उसके जवाब भी देंगे, महाउपाय के बारे में जानकारी देंगे, राशियां भी लेंगे। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं आज का गुड लक मंत्र क्या है।
5: अगर आप अपने आचरण को, अपने व्यवहार को सुधार नहीं सकते, सुधारने की कोशिश नहीं करते, तो आपको मंत्र जप करने से, साधना करने से, ध्यान करने से कोई लाभ नहीं होगा। इसलिए अगर मंत्र जप करते हैं, साधना करते हैं, ध्यान करते हैं, तो अपने आचरण और अपने व्यवहार को सुधारने का प्रयास करिए।
4: चलिए इसके साथ आगे बढ़ते हैं और पंडित जी से जान लेते हैं 4 अक्टूबर 2026 रविवार के पंचांग के बारे में।

0: की नवमी तिथि नक्षत्र है पुनर्वसु नक्षत्र, चंद्रमा मिथुन राशि में संचरण कर रहे हैं, शाम के 6:31 तक। राहु काल का समय शाम के 4:30 से लगभग 6 तक पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है तो जरा सा पान का पत्ता खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे।
1: चलिए आज के विषय की शुरुआत करते हैं। जैसे कि हमने आपको बताया लोहा और शनि आपस में कैसे कनेक्टेड हैं, ये तो बात होगी ही, लेकिन उससे पहले पहला प्रश्न जो बनता है वो है लोहा आखिर है क्या, ये धातु क्या है, इसका सामान्य तौर पर महत्व क्या होता है हम सबके जीवन में।
0: जी, आज हम आपको बता रहे हैं कि शनि ग्रह का लोहे के साथ क्या संबंध है और लोहे का प्रयोग करके शनि को कैसे बेहतर किया जा सकता है। सबसे पहले जानते हैं कि लोहा है क्या और इसका सामान्य महत्व क्या है। देखिए, लोहा धरती के गर्भ में, धरती के अंदर सबसे ज्यादा पाया जाने वाला तत्व है। लोहे का प्रयोग भारत में प्राचीन काल से ही किया जाता रहा है। महर्षि चरक के समय में लोहे का उपयोग औषधि निर्माण में भी होता था, ऐसी जानकारी पाई जाती है। लोहा वर्तमान जीवन का आधार है और बिना लोहे के किसी भी तरह के निर्माण की कल्पना नहीं की जा सकती। कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर लोहे के बिना डेवलप नहीं हो सकता। शरीर में भी लोहा हीमोग्लोबिन के आवश्यक अंग के रूप में रहता है, साथ ही साथ यकृत लिवर, प्लीहा स्प्लीन और मेरुदंड स्पाइनल कॉर्ड में भी इकट्ठा रहता है। शरीर में आयरन के तत्व की लोहे के तत्व की कमी होने पर श्वास प्रश्वास की ब्रीदिंग प्रॉब्लम की समस्या हो सकती है, शरीर की स्ट्रेंथ कम हो सकती है।
1: चलिए, इस विषय से जुड़े हुए बहुत सारे सवाल आगे जाकर पंडित जी से लेंगे। अब बारी आती है राशिफल पर आने की और पहली 3 राशियों का हाल पंडित जी से जान लेते हैं कि कैसा रहने वाला है। सबसे पहले बारी है मेष, वृष और मिथुन वालों की, इनके भाग्यफल में क्या लिखा है पंडित जी से विस्तार से जान लेते हैं।
0: मेष राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, कारोबार में लाभ होगा, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। सूर्य देव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, सेहत अच्छी बनी रहेगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, शत्रु और विरोधी परास्त होंगे।

0: कर दें तो दिन बेहतर होगा, शुभ रंग होगा आपके लिए ग्रे, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा, रुके हुए काम पूरे होंगे, धन का लाभ होगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा, शुभ रंग होगा आपके लिए पीला, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85% बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
1: चलिए आगे बढ़ते हैं पंडित जी, एक और प्रश्न आपसे पूछना चाहूंगी। सवाल यह है कि ज्योतिषीय नजरिए से अगर इस धातु को लोहे का, जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, अगर देखा जाए तो लोहे का महत्व क्या होता है?
0: अब ये जानते हैं कि ज्योतिष में लोहे का क्या महत्व है। देखिए, लोहे को सामान्यतः शनि ग्रह से जोड़ा जाता है। अपने गुणों और प्रभाव के कारण लोहा शनि का तत्व माना जाता है। शनि की पीड़ा से, शनि की कठिनाइयों से निजात पाने के लिए, छुटकारा पाने के लिए लोहे का दान किया जाता है। और कभी कभी आयुर्वेद के दृष्टिकोण से शरीर को सबल करने के लिए लोहे के पात्र में भोजन बनाया भी जाता है और खाया भी जाता है। खास तौर से जो साग है उसको लोहे के पात्र में बनाकर खाना बड़ा स्वास्थ्यवर्धक होता है। लोहे के नाल की बनी हुई अंगूठी शनि की पीड़ा को कम करने के लिए धारण की जाती है। जब आप जीवन में लोहे का ज्यादा प्रयोग करते हैं, लोहे के ज्यादा कांटेक्ट में रहते हैं, तो इससे आपके शनि को जीवन में मजबूती मिलती है, शनि आपका प्रबल होता है।
1: चलिए राशिफल पर वापस आते हुए अगली तीन राशियों का हाल भी आपको बता देते हैं। अब बारी है कर्क, सिंह और कन्या वालों की। इनके भाग्यफल में आज क्या लिखा है पंडित जी आपको विस्तार से बताएंगे।
0: कर्क राशि, स्वास्थ्य का ध्यान इस समय बनाए रखें, विवादों से बचाव करें, शाम से स्थितियों में सुधार होगा, गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी, शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। सिंह राशि, छोटी यात्रा के योग बन रहे हैं, रुका हुआ धन मिलेगा, क्रोध पर नियंत्रण बनाए रखें, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा, शुभ रंग होगा आपके लिए नीला, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80 80%, बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है।

0: काम पूरे होंगे, संपत्ति का लाभ मिलेगा, स्वास्थ्य की समस्या दूर होगी। सूर्य देव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए बैंगनी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85%। बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
1: चलिए आपके सवाल और पंडित जी के जवाब, इसका वक्त आ चला है। सबसे पहले प्रश्न की तरफ मैं बढ़ती हूँ, लेकिन उससे पहले आपको सूचित कर देती हूँ कि आप भी कोई भी प्रश्न है, कोई भी परेशानी है, दिक्कत है, उसका सुधार आप करना चाहते हैं तो तमाम सवाल इस शो में भेज सकते हैं। ईमेल आईडी आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है, आप नोट कर लीजिए, इसी ईमेल आईडी पर आपको अपने तमाम सवाल भेजने हैं। तो पंडित जी, पहला प्रश्न कौन से दर्शक का है वो आपसे जानते हैं।
0: जी, आज का पहला प्रश्न आंचल जी ने हमें लिखा है, और आंचल जी हमें मेल लिखती हैं इंदौर मध्य प्रदेश से। इनकी जन्म की तारीख है 24 अक्टूबर 1993। जन्म का समय रात में 8:10। जन्म स्थान है इंदौर मध्य प्रदेश। ये कह रही हैं कि मैं अभी इंदौर में नौकरी करती हूं और मेरे पास एक ऑफर आया है बेंगलोर में नौकरी करने का, तो क्या मुझे स्थान परिवर्तन करना चाहिए और क्या नई नौकरी मेरे लिए बेहतर रहेगी? आंचल, आपकी कुंडली के हिसाब से अगर आप अपने जन्म स्थान से दूर जाकर अपना करियर बनाने की कोशिश करें या नौकरी करें तो आप ज़्यादा सफल होंगी। और जिस समय आपके पास ये ऑफर आया है वो समय आपके लिए बहुत उपयुक्त है, इस समय में आपको करियर में अच्छी सफलता मिलेगी। तो आप निर्णय लेकर के अपना स्थान और नौकरी में परिवर्तन दोनों कर सकती हैं। एक ओपल बनवा करके पहनिए, 10-12 रत्ती का ओपल, चांदी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को ओपल धारण करें। रोज सुबह और शाम एक एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा।
1: चलिए, इसी के साथ वक्त तो चला है दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ने का। पंडित जी से ही जानकारी ले लेते हैं कि अगला प्रश्न इस शो में, आज के इस शो में कौन से दर्शक का है।
0: जी, अगला प्रश्न अरविंद जी ने हमें लिखा है, और अरविंद जी हमें मेल लिखते हैं बदायूं से, अपने पुत्र के बारे में जानना चाहते हैं। पुत्र की जन्म की तारीख है 26 नवंबर 2008। जन्म का समय दोपहर में 1:05। जन्म स्थान है बदायूं। ये कह रहे हैं कि मेरा पुत्र अभी 12वीं में पढ़ाई कर रहा है और आगे पढ़ाई करने के लिए विदेश जाना चाहता है, क्या उसका विदेश जाना सही रहेगा? क्या उसको आगे पढ़ने के लिए विदेश भेजना चाहिए? देखिए अरविंद जी, आपके पुत्र की कुंडली ये तो जरूर कह रही है कि 12वीं की पढ़ाई के बाद इनका स्थान परिवर्तन होगा, लेकिन विदेश जाने की मैं कोई सलाह नहीं दूंगा। विदेश जाना इनके लिए अनुकूल नहीं है और वहां जाकर शिक्षा और करियर में कोई लाभ नहीं होगा। 2030 के आसपास, 2030 के आसपास अगर ये विदेश जाना चाहें तो उस समय स्थितियों को देख करके विचार किया जा सकता है। आपके बेटे का करियर और जीवन बेहतर हो, इसके लिए आप उनसे कहें कि वो रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं और सुबह शाम दोनों समय एक एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करें तो उनके लिए अच्छा रहेगा।
1: देखिए लोहे के बारे में लगातार जानकारी ले रहे हैं, लेकिन पंडित जी एक और चीज आपसे पूछना चाहूंगी। सवाल यह है कि लोहे का ऐसा कौन सा विशेष प्रयोग, खास प्रयोग हम कर सकते हैं जिससे शनि का भरपूर फायदा हम सबको जीवन में प्राप्त हो?
0: अब आपको बताते हैं लोहे के विशेष प्रयोगों के बारे में, जो अगर आप करेंगे तो शनि की वजह से आपको लाभ होगा। शनि को अगर आप मजबूत करना चाहते हैं, अगर आप अनुकूल करना चाहते हैं, तो लोहा जरूर धारण करिए और लोहे के बर्तनों का, लोहे के पात्रों का, खास तौर से लोहे की कड़ाही का जीवन में प्रयोग करिए। अगर शनि आपका बहुत ज्यादा निगेटिव है, अगर शनि बहुत ज्यादा नकारात्मक है, तो लोहे की वस्तुओं का दान करिए, लोहे का दीपक बनवा लीजिए और शनि देव के लिए लोहे के दीपक में सरसों का तेल भर करके अगर आप दीप दान करें तो बेहतर होगा। अगर घर के मुख्य द्वार पर आप लोहे का दरवाजा लगाते हैं तो इससे शनि की कृपा बड़ी आसानी से आपको मिलेगी, क्योंकि मुख्य द्वार पर जो मेटल आप प्रयोग करते हैं वो मेटल आपके पूरे घर की पॉजिटिविटी पर और निगेटिविटी पर असर डालता है।
1: चलिए इसी के साथ राशिफल पर वापस आते हुए तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों के भाग्यफल में आज क्या लिखा है पंडित जी आपको विस्तार से बताएंगे।
0: तुला राशि, करियर की तमाम समस्याएं हल होंगी, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, शिक्षा में सफलता मिलेगी, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, पारिवारिक विवाद से बचाव करें, शाम से स्थितियों में सुधार होगा। गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए सुनहरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। धनु राशि, करियर में लाभ के योग हैं, शत्रु और विरोधी परास्त होंगे, दुर्घटनाओं से सावधान रहें, सूर्य देव को जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
1: चलिए एक और प्रश्न पंडित जी से लेते हैं। पंडित जी बताइए कि क्या लोहे का व्यवसाय करने में या फिर वाहन खरीदने में भी लोहे का विचार करना चाहिए, इसके बारे में सोच लेना चाहिए कि इसका फायदा होगा या फिर नहीं होगा, ऐसा है क्या?
0: देखिए, ऐसा कहा जाता है कि अगर आप लोहे का व्यापार करने जा रहे हैं या गाड़ी खरीदने जा रहे हैं, गाड़ियां आमतौर पर लोहे की तो होती ही हैं, तो अगर आप लोहे का व्यापार करते हैं या लोहे का वाहन खरीदने जा रहे हैं तो उसमें बड़ा सोचना समझना चाहिए, लोहे का विचार करना चाहिए। क्या होता है ऐसा? देखिए, लोहे का जो व्यवसाय है वो एक विशेष तरह का व्यवसाय है। वैसे मेटल का जो व्यवसाय है वो मंगल का है, लेकिन लोहा अलग से मेटल होने के बावजूद शनि का व्यवसाय है, शनि से संबंध रखता है। जब तक शनि आपके करियर को प्रभावित ना करे, आपकी कुंडली में आपके करियर को कनेक्ट ना करे, तब तक लोहे का व्यापार मत करिएगा। और ये भी देखिएगा कि जब आप लोहे का व्यापार कर रहे हैं तो शनि आपकी दशाओं में अनुकूल है या नहीं है, दशाओं को प्रभावित करना जरूरी है। अगर बिना सोचे विचारे आप लोहे का व्यापार करें और शनि अनुकूल ना हो तो सब कुछ जीरो हो सकता है। वाहन अगर खरीदना है तो उसी व्यक्ति के नाम से खरीदना चाहिए जिसका शनि थोड़ा बेहतर हो, और वाहन के रंग का और नंबर का भी बहुत ध्यान देना चाहिए। वैसे तो वाहन का सुख शुक्र से आता है, लेकिन वाहन खरीदने की ताकत आती है शनि से। और जो लोग गाड़ी खरीदते हैं खासतौर से बिना सोचे विचारे शौक में काले रंग की गाड़ी खरीदते हैं, अक्सर वाहन दुर्घटना के शिकार होते हैं या वाहन की वजह से मुश्किल में आ जाते हैं।
1: चलिए राशिफल के साथ ही आगे बढ़ते हैं और अब बारी आ जाती है मकर, कुंभ और मीन वालों की। इनके भाग्यफल में आज क्या लिखा है पंडित जी से जान लेते हैं।
0: मकर राशि, करियर में आपकी उन्नति होगी, संपत्ति का लाभ होगा, संतान पक्ष से आपको सुख मिलेगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, महत्वपूर्ण काम आपके बन जाएंगे। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए धानी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, करियर में लापरवाही ना करें, रिश्तों में समस्या हो सकती है, शाम से स्थितियों में सुधार होगा। गुड़ का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे भाग्य उतना ही साथ देगा।
1: चलिए इसी के साथ वक्त तो चला है तीसरे प्रश्न की तरफ बढ़ने का और पंडित जी से जानते हैं कि अगला प्रश्न यानी आप में से कौन से दर्शक का है अगला सवाल हमारे इस शो में। पंडित जी
0: जी अगला प्रश्न हमें हेमा जी ने लिखा है और हेमा जी हमें गुड़गांव से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 5 जून 1986, दोपहर में 3:10, जन्म स्थान है देहरादून। हेमा जी कह रही हैं कि मैं नौकरी काफी समय से बदलना चाहती हूँ, नौकरी मेरी कब तक बदलेगी और मेरा भविष्य कैसा रहेगा। हेमा जी आपकी कुंडली के हिसाब से आपकी नौकरी बदलने का समय चल रहा है और अगर आप अभी कोशिश करें तो अप्रैल 2027 के पहले आपकी नौकरी बदलेगी और बेहतर करियर में आप जा पाएंगी। स्वास्थ्य को लेकर बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि अक्टूबर के बाद से आपके स्वास्थ्य के हालात बेहतर दिखाई दे रहे हैं। एक पन्ना बनवा करके पहन लें, 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को एक पन्ना पहने, रोज शाम को 108 बार शनि मंत्र का जप करिएगा, ओम शं शनैश्चराय नमः, तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा।
1: चलिए इसी के साथ वक्त तो चला है अगले प्रश्न की तरफ बढ़ने का यानी दर्शकों का अंतिम सवाल लेने का, तो पंडित जी से जानते हैं कि अंतिम सवाल पंडित जी किसका है।
0: जी

0: आज का अंतिम प्रश्न वीरभद्र जी ने हमें लिखा है और वीरभद्र जी हमें मेल लिखते हैं बेंगलोर से। इनकी जन्म की तारीख है 9 अक्टूबर 1970। जन्म का समय शाम के 7 बजे। जन्म का स्थान है मधुबनी बिहार। ये कह रहे हैं कि मैं अपने बेटे के साथ अभी बेंगलोर में रह रहा हूं और यहां पर मैं अपना ऑनलाइन व्यापार भी कर रहा हूं, तो आने वाले समय में क्या बेंगलोर में परमानेंटली बसना मेरे लिए ठीक रहेगा? वीरभद्र जी, आपकी कुंडली के हिसाब से आप भविष्य में बेंगलोर में नहीं रहेंगे, आपके बेटे का भी स्थान परिवर्तन 2027 के आखिरी में या 2028 में होगा और आपका भी स्थान परिवर्तन होगा, संभवतः उत्तर दिशा की तरफ, दिल्ली NCR, राजस्थान, हरियाणा, इस तरफ सेटलमेंट होगा, इस तरफ शिफ्ट होने की संभावना बन रही है। आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है, तो जरा अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, क्योंकि सेहत का मामला आपका बिल्कुल भी बेहतर नहीं है। एक लोहे का छल्ला दाहिने हाथ की मध्यमा अंगुली में शनिवार की शाम को धारण करें। सुबह और शाम दोनों समय एक एक बार शनि चालीसा का पाठ करें तो आपको लाभ होगा।
1: चलिए अब पंडित जी से जानते हैं कि जिन तमाम लोगों का जन्मदिन है 4 अक्टूबर को, उनका बर्थडे, उनके लिए क्या कुछ लेकर आया है पंडित जी।
0: जिन लोगों का जन्मदिन 4 अक्टूबर को है उन्हें हम सब की तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखें। शिक्षा और करियर के मामले में सुधार होगा। आर्थिक स्थिति कुल मिलाकर ठीक बनी रहेगी। संतान और संपत्ति के मामलों में भी आपको लाभ होगा। क्या उपाय करेंगे? पूरे साल भर राहु के मंत्र का जप करें, ओम रां राहवे नमः। पूरे साल भर इस मंत्र का जप करें, आपको लाभ होगा।
1: चलिए शो के अंत की तरफ बढ़ते हुए बारी आ गई है आज के शो की जिज्ञासा के बारे में जान लेने की, तो पंडित जी से ही जानते हैं आज के शो की जिज्ञासा क्या है।
0: आज की जिज्ञासा है कि बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं, ऐसा मानते हैं कि शनिवार को लोहा नहीं खरीदना चाहिए, क्या ऐसा है? देखिए, सामान्यतः शनि की मुख्य धातु लोहे को माना जाता है, लेकिन शनिवार को लोहा ना खरीदें इसका कोई आधार नहीं है। आप शनिवार को लोहा खरीदेंगे, शनि आपका बिगड़ जाएगा या जीवन में शनि की कोई समस्या आ जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। शनिवार को कोई भी व्यक्ति भगवान का नाम लेकर लोहे की वस्तु या लोहा खरीद सकता है।
1: चलिए पंडित जी से जान लेते हैं शुपहर के बारे में, 4 अक्टूबर 2026 रविवार का शुपहर क्या है वो भी जानते हैं।
0: दिनांक 4 अक्टूबर 2026 दिन रविवार। शुभ पहर का समय है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में भगवान को लाल फूल अर्पित करिएगा। ऐसा करने से आपको मान सम्मान की और यश की प्राप्ति होगी। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही, समय फिर से नोट करें, 4 अक्टूबर रविवार शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में।
1: चलिए पंडित जी से जान लेते हैं गुडलक राशि के बारे में। तो आपकी गुडलक राशि कौन सी है वो पंडित जी बताएंगे आपको।
0: हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोगों की शिक्षा में किस तरह की चीजें आती हैं। आज की गुडलक राशि है मेष राशि। इनकी शिक्षा में सामान्यतः बदलाव होता रहता है। अच्छी शिक्षा के लिए इनको सूर्य देव की उपासना करनी चाहिए। नियमित सूर्य देव को जल चढ़ाएं और सूर्य मंत्र का जप करें तो लाभ होगा।
1: चलिए तमाम उपाय, तमाम जानकारियां, इस शो से जुड़े हुए आपके प्रश्न हम सब ने इस शो में शामिल कर लिए हैं, लेकिन अब बारी आती है खास उपाय के बारे में ज्ञान लेने की। तो पंडित जी से ही जानते हैं कि आज का महा उपाय पंडित जी क्या है।
0: जी, आज के महा उपाय में आपको बताते हैं कि अगर शनि संबंधी व्यवसाय में, लोहे में, कंस्ट्रक्शन में या शनि की वस्तुओं के व्यवसाय में सफलता चाहते हैं तो क्या करेंगे, रोज सुबह और शाम 108 बार शनि का मंत्र जरूर पढ़िएगा। ओम शं शनैश्चराय नमः। शनिवार को हनुमान जी के मंदिर जाकर उनका दर्शन कर लीजिएगा, उनकी उपासना कर लीजिएगा और भूल कर भी शनि संबंधी वस्तुओं का दान मत करिएगा। अगर आप ऐसा करें और कुंडली में शनि के व्यवसाय का योग हो तो शनि के व्यापार में आपको सफलता ज्यादा मिलेगी।
1: पंडित जी, इस महा उपाय के लिए और तमाम जानकारियां साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
2: धन्यवाद।
1: और चलिए इसी के साथ आज के इस खास एपिसोड में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया के तमाम अच्छी खबरें जारी हैं, आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।

0: लगा निकल जाएगा दम पर जज्बा नहीं हुआ कम। लहू लुहान बदन फिर भी परमार्थ से भरा मन। हनुमान चालीसा से मिला जूझने का बल। 174 लोगों को मौत से बचाने वाला महाबली। बंदे में है दम श्वेता झा के साथ सुबह 9:34 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
2: गुड न्यूज टुडे।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: क्यों देवी और देवता की आरती की जाती है, आरती करने के नियम क्या हैं, आरती की सावधानियां क्या हैं और कितनी आरती एक पूजा में की जा सकती है, जानिए मेरे साथ किस्मत कनेक्शन में।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है
2: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
3: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है
2: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
3: गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
7: एशियन गेम्स 2026 में ऐतिहासिक गोल्ड मेडल जीतने के बाद जापान से स्वदेश लौटी भारतीय महिला हॉकी टीम का बेंगलुरु के एयरपोर्ट पर बेहद शानदार और भव्य स्वागत किया गया है। टीम 44 साल के लंबे इंतजार के बाद एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीतकर लौटी है। खिलाड़ियों के हवाई अड्डे पर पहुंचते ही एसएआई बेंगलुरु, हॉकी इंडिया, हॉकी कर्नाटका और राज्य के खेल विभाग के अधिकारियों ने उनका जोरदार तालियों और उत्सव के साथ स्वागत किया। उन्हें पगड़ी और फूल मालाएं पहनाई और साथ ही ढोल नगाड़ों और भारत माता की जयकारों के साथ उनका स्वागत किया गया है। इस अवसर पर खिलाड़ियों ने अपनी खुशी जाहिर की। एशियन गेम्स के फाइनल में चाइना को 1-0 से हराकर गोल्ड मेडल जीतने और लॉस एंजलिस 2028 ओलंपिक के लिए सीधे क्वालिफाई करने पर टीम की खुशी लाजमी है। खिलाड़ियों ने एयरपोर्ट पर क्या कहा ये भी आपको सुनवाते हैं।
8: डेफिनेटली बहुत अच्छा फील हो रहा है क्योंकि हमारी बहुत साल की मेहनत है और जाने से पहले हमारा यही टारगेट था कि हमें एलए के लिए क्वालिफाई करना है, जो डेफिनेटली बहुत अच्छा लग रहा है। हमने एज ए टीम बहुत अच्छा, पूरे टूर्नामेंट में बहुत अच्छा गेम खेला। डेफिनेटली प्रेशर वाला मैच था और सेम चाइना के लिए भी सेम था, हमारे लिए भी सेम था। बट हमारी टीम में काफी एक्सपीरियंस प्लेयर हैं जिन्होंने हमारे यंग प्लेयर्स को मोटिवेट किया कि हर हालत में चाहे चोट लगे कुछ भी हो, हमें आज यहाँ से जीत के ही निकलना है। और वो हमारी टीम यूनिटी थी जिसकी वजह से ये रिजल्ट आया। थैंक यू।
9: अच्छा लग रहा है, खुशी हो रही है कि हमारा जो टारगेट था हमने वो अचीव किया और ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया। हमें ये था कि जब अपने होम टाउन में जाएंगे तब हमारा ऐसे वेलकम होगा, पर बहुत अच्छा लग रहा है कि यहाँ सबने बहुत अच्छे से वेलकम किया हमारा। सबसे बड़ा टारगेट यह था कि ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करना, जो गोल्ड जीतकर ही होगा, क्योंकि पिछली बार हम नहीं जा पाए थे ओलंपिक्स में, तो वो टारगेट लेकर ही हम गए थे टूर्नामेंट में।
10: बहुत अच्छा लग रहा है, हम गोल्ड मेडल लेके आए हैं। यस, पूरा कॉन्फिडेंस था टीम के ऊपर कि हम ले पाएंगे मेडल। और जैसे हमने इधर बैंगलोर में प्रैक्टिस की, साई में प्रैक्टिस की, तो बहुत हार्ड वर्क किया था हमने, तो इसलिए हमें बिलीव था खुद के ऊपर और टीम के ऊपर कि हम मेडल लेके आ सकते हैं।
11: बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत खुश है हम, और यही सोच के गए थे कि गोल्ड मेडल लेके आना है, तो वो पूरी टीम ने पूरा किया है, मेहनत की है सबने, तो बहुत अच्छा लग रहा है। स्टार्टिंग से ही सोच के गए थे इस बार कि हमें और कोई मैच से ज़्यादा, हमारा सिर्फ फोकस गोल्ड पे था, तो हमारे लिए और इजी था क्योंकि हमारा टारगेट सबके लिए एक ही था, तो हमारे लिए और अच्छा है और हम जीते हैं तो और खुशी की बात है।
12: प्रैक्टिस के टाइम पे बहुत हेल्प किया साई ने और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने और हॉकी इंडिया ने, हमें बहुत सपोर्ट किया है, हमें जो चाहिए था हमें वो मिला है। सो थैंक यू टू देम ऑल्सो।
13: बहुत खुश है और बहुत प्राउड की बात है, हम गोल्ड मेडल लेके आए और एलए के लिए क्वालिफाई किए। टीम का ड्रीम यही था कि हमें एलए के लिए क्वालिफाई करना है। बहुत लाइक 8 मंथ से हम बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे थे, और वो कम अभी ड्रीम कम्स ट्रू हुआ, तो बहुत हैप्पी है। और आप सब देख रहे हैं ना, हम गोल्ड मेडल लेके आ रहे हैं, तो जो हमने मेहनत किया है वो उसका फल मिला है हमें। वैसे सर सच बोलूँ तो हमने ये प्रिडिक्ट किया कि हमें फाइनल में जो भी मिलेगा, जो भी आएगा, हमें अपना बेस्ट देना है, अपना बेस्ट गेम खेलना है और अपने इंडिया के लिए प्राउड फील करवाना है। एंड हमारा मेन फोकस वही था कि हमें एलए के लिए क्वालिफाई करना है। सो कोई भी आए फाइनल में, हमें उतना कोई वो नहीं है, जो भी आएगा उसके टीम के हिसाब से उनका प्रिपरेशन करके हमें परफॉर्मेंस करना था, एंड हमने वो किया।
14: हमने किसी भी मैच को इजी नहीं लिया, हमें हर मैच में परफॉर्म करना था और हर मैच में अपना अच्छा करना था, चाहे वो इजी टीम थी चाहे वो टफ टीम थी। हमारा माइंडसेट था कि हमें अपनी टीम के लिए जो हमारी स्ट्रेटजी थी उसके अकॉर्डिंग हमने किया, और हम लोगों का जो माइंडसेट था वो हमने सेट किया हुआ था कि हमें किसी भी हालत में फाइनल जीतना है, और वो हमने किया। बहुत अच्छा लग रहा है, जब भी टीम जीत कर आती है और इस तरीके का सपोर्ट मिलेगा तो बेशक हॉकी बहुत आगे बढ़ेगी। और आप देख रहे हैं कंटिन्यूसली जो भी प्रीवियस रिजल्ट्स भी हैं कि हॉकी अच्छा कर रही है, विमेन हॉकी मैन हॉकी दोनों ही टीमें।
15: आपको क्या लगता है इंडिया ने जो प्रिपरेशन दे रही है टीम को ऐसे टूर्नामेंट जाने से पहले?
7: और अब बात करते हैं शक्ति, साहस और संरक्षण की दिव्य प्रतीक मां दुर्गा की। देश भर में मूर्तिकार आदि शक्ति की प्रतिमा को फिनिशिंग टच देने में जुटे हैं। बंगाल के शहरों की तरह उत्तर प्रदेश के झांसी में भी दुर्गा प्रतिमाएं पूरी होने के दौर में हैं, और यहां अधर्म, अन्याय और अहंकार के विनाश की प्रतीक महिषासुर मर्दिनी की प्रतिमाओं में बंगाल की छाप साफ दिख रही है।

0: भवानी, चंडिका, शेरावाली, जगदम्बा और महिषासुरमर्दिनी विश्वास, श्रद्धा और आस्था के साथ माँ दुर्गा के किसी भी नाम का आह्वान करें तो आशीर्वाद जरूर मिलता है। माँ अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करती। आदि शक्ति की कृपा से घर परिवार में सुख, समृद्धि और शांति का वास हो जाता है। माँ दुर्गा के नौ भव्य और दिव्य स्वरूपों की आराधना का त्योहार नवरात्रि आने वाला है। नौ दिनों के बाद शारदीय नवरात्रि का प्रारंभ होने वाला है। 11 अक्टूबर से हर तरफ जय माता दी के जयकारों से वातावरण पूरी तरह भक्तिमय होने वाला है। अलग अलग शहरों में दुर्गा पंडाल में स्थापित होने के लिए माँ की प्रतिमाएं आकार ले रही हैं। झांसी में बंगाली मूल का एक परिवार पिछले 34 साल से हर साल माँ की प्रतिमाओं को साकार करने की साधना से जुड़ा है। 4 महीने से ये बंगाली परिवार माँ के अलग अलग स्वरूपों को बेहद कलात्मक तरीके से सजीव करता है। 122 दिनों के अंतराल में करीब 160 प्रतिमाओं को अलग अलग रूपों को भव्य और सुंदर चित्रण किया जाता है। झांसी की इस कार्यशाला में माँ की हर प्रतिमा में बंगाल की कला, मिट्टी और पारंपरिक शैली की एक अनूठी और गहरी छाप दिखती है। आधुनिक थीम वाली मूर्तियों के इस दौर में भी बंगाल की पारंपरिक साका और डाकर साज शैली यानी विशेष मुकुट, चौड़ी आंखें और भावपूर्ण चेहरे वाली माँ दुर्गा की मूर्तियों की भारी डिमांड होती है।
1: देखो, मूर्ति दुर्गा जी मूर्ति पुराना स्टाइल छोड़कर आप जाएगा ना, ज्यादा दिन टिकेगा नहीं। जो परंपरा चल रहा है वही हिसाब से चलना पड़ेगा। आप अभी जो नया नया डिजाइन ये फलाना बना दो, ये बना दो, वो बेकार है। एक दिन चलेगी, दो दिन चलेगी, चार उसके बाद नहीं चलेगी। पूरा कलकत्ता हमारा सिंगर से कपड़ा से सब कलकत्ता का है। शेर का हम लोग खाल चलाता है, यहाँ पर मिट्टी लगा देगा। हम लोग ऐसे कम नहीं करता। ओरिजिनल कैसे कलकत्ता होता है ठीक वैसा ही करता है काम।
2: तो लगभग कितनी मूर्तियाँ तैयार करते हैं?
1: हमारा कितना है, 150-160 ऐसा ही होगा। 200 नहीं आएगा, ये हम ऐसे ज्यादा बनाएंगे नहीं। ग्राहक हमारे पास बहुत है, हम बनाएंगे नहीं, हिसाब से नहीं जाएगा बाहर। अब लोकल वाला जो लोग बनाता है,
2: आपका केवल बंगाली पैटर्न
1: है? हमारा बंगाली पैटर्न कलकत्ता में पिक किया।
0: एक एक प्रतिमा को तैयार करने में कई चरणों से गुजरना पड़ता है। पहले भूसे से ढांचा तैयार किया जाता है, इसके बाद मिट्टी की परतें चढ़ाकर प्रतिमा को आकार दिया जाता है। बारीक कारीगरी के बाद रंग और फिर अंतिम चरण में कोलकाता से लाए गए वस्त्र, मुकुट और आभूषण लगाए जाते हैं। झांसी की इन दुर्गा प्रतिमाओं को तैयार करने के दौरान पर्यावरण संरक्षण का पूरा ध्यान रखा जाता है। जल, जमीन और वायु में प्रदूषण न फैले, इसके लिए प्रतिमाओं के निर्माण में POP का इस्तेमाल नहीं किया जाता। निर्माण में अलग अलग तरह की मिट्टी का इस्तेमाल होता है, जिसमें कोलकाता से लाई जाने वाली गंगा नदी की मिट्टी के साथ स्थानीय तौर पर मिलने वाली काली और लाल मिट्टी भी शामिल है। दुर्गा प्रतिमाओं को रंगने के लिए पौधों, फूलों, सब्जियों, फलों के छिलकों और खनिजों जैसे प्राकृतिक स्रोतों से बनाए जाने वाले प्राकृतिक रंगों का इस्तेमाल होता है।
1: मिट्टी हमारा तो कलकत्ता से आता है, 3-4 प्रकार का मिट्टी है, मिक्स करके काम करना पड़ता है। हमारा जो मिट्टी है कोई नुकसान वाली काम नहीं है। हमारा गंगा जी का मिट्टी आधा मिट्टी गंगा जी का है, जो वहाँ कदम पानी के अंदर उठाना पड़ता है, उसके बाद सुखाना पड़ता है, तब वहाँ कलकत्ता आता है। कलकत्ता से कलर हमारा नॉर्मल कलर है, ऑयल पेंट कलर नहीं है।
0: साल से इस कार्यशाला में बनने वाली माँ दुर्गा की 90% प्रतिमाएं पहले ही बुक हो चुकी हैं। बंगाली पैटर्न की प्रतिमाओं की मांग झांसी के अलावा बुंदेलखंड के दूसरे इलाकों से भी आती है।
3: इस बार 200 मूर्ति बनाए, ठीक है, लगभग 90% तो बुक ही हो चुका है। अभी 10% चल रहा है, अभी 10 दिन बचा है अभी तक।
2: कितने लोग लगते हैं और कितने दिन से आप काम चालू कर रहे हैं?
3: जब क्या है, मूर्ति बनाना स्टार्ट होता है उस टाइम तो ज्यादा से ज्यादा लोग लगता है, क्योंकि वो घास बांधना, मिट्टी लगाना सबसे ज्यादा मेहनत वाला काम रहता है, इसीलिए उस टाइम 10-12 आदमी रहता है। इस टाइम जो सिंगर के टाइम पे 8-10 आदमी है।
0: शारदीय नवरात्रि का विशेष महत्व होता है। माना जाता है कि इस दौरान माता की पूजा अर्चना से देवी दुर्गा की खास कृपा होती है। माँ दुर्गा के 9 रूपों की विधिवत पूजा अर्चना भक्तों के लिए शुभ मानी जाती है। यही वजह है कि पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा, बिहार, उड़ीसा, झारखंड के लिए दिल्ली में भी दुर्गा पूजा को लेकर भव्यता के साथ विशेष तैयारियां शुरू हो जाती हैं, जिससे माँ के आगमन से पहले ही शारदीय नवरात्र को लेकर लोगों के मन में उत्साह नजर आता है। झांसी से अजय झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। 11 अक्टूबर से शारदीय नवरात्रि का शुभारंभ होने वाला है और उससे पहले शहर शहर तैयारियां भी जोर पकड़ रही हैं। आपको दिखाते हैं झांसी की रिपोर्ट, जहां बंगाली शैली में मां दुर्गा की इको फ्रेंडली प्रतिमाएं बनाई जा रही हैं और उनकी डिमांड भी खूब है।

0: शारदीय नवरात्र का पर्व करीब आ रहा है, तो माँ दुर्गा की भव्य प्रतिमाओं को अंतिम रूप देने का काम तेजी से चल रहा है। मूर्तिकार दिन रात लगकर प्रतिमाओं को तैयार करने में जुटे हुए हैं। ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश के झांसी की है। यहाँ पर पिछले करीब 34 वर्ष से एक बंगाली परिवार माँ दुर्गा की प्रतिमाएं तैयार कर रहा है। इन प्रतिमाओं का पारंपरिक स्वरूप ही इनकी खास पहचान है। अहम बात यह है कि प्रतिमाओं के निर्माण और श्रृंगार में इस्तेमाल होने वाले सामान कोलकाता से ही मंगाए जाते हैं और विशेष रूप से ये ध्यान रखा जाता है कि इनसे पर्यावरण को कोई नुकसान न हो।
1: यहाँ पे जो भी मूर्ति बनता है सब प्योर मिट्टी का बनता है, ना पीओपी यूज होता है, ना कुछ मतलब जो हार्मफुल वाला जो कलर होता है उस टाइप का कोई कलर भी नहीं यूज करते। हम पूरा जो इको फ्रेंडली कलर होता है उस टाइप का कलर भी यूज करते हैं, पूरा मिट्टी का बनाते हैं। और जो हमारा सिंगार वगैरह भी जो होता है वो सब कलकत्ता से आता है। और मिट्टी वगैरह हम जो 4-5 प्रकार का मिट्टी यूज करते हैं उसमें से 2-3 प्रकार का मिट्टी हम कलकत्ता से ले आते हैं, बाकी जो काली मिट्टी और इधर का लाल मिट्टी वो इधर से ही लेते हैं। और इसीलिए हम लोगों का मिट्टी और मूर्ति क्या है जो भी होता है वो ज्यादा से ज्यादा घास और मिट्टी से ही बना हुआ है। इसमें ना कोई पीओपी का यूज है, हल्का भी होता है और पानी में जाने के साथ साथ एक गल भी जाता है जल्दी से जल्दी। इसीलिए हम लोगों का मूर्ति में ऐसा कोई हार्मफुल केमिकल या फिर वो प्लास्टर ऑफ पेरिस का नहीं यूज होता इसमें।
0: झांसी की इस वर्कशॉप में मूर्तियां बनाने का काम नवरात्र से 4-5 महीने पहले ही शुरू हो जाता है। कम से कम 12-14 कारीगर इसमें लगे रहते हैं। शुरुआती दौर में बड़ी संख्या में कारीगर प्रतिमाओं का ढांचा बनाने और मिट्टी लगाने का काम करते हैं। इसके बाद प्रतिमाओं की फिनिशिंग, रंगाई और श्रृंगार का काम शुरू होता है। कोलकाता की पारंपरिक शैलियों में बनाई जाने वाली इन प्रतिमाओं की यहाँ पर खास डिमांड है।
2: मूर्ति दुर्गा जी मूर्ति पुराना स्टाइल छोड़ कर आप जाएगा ना ज्यादा दिन टिकेगा नहीं। जो परंपरा चल रहा है वही हिसाब से चलना पड़ेगा। ओरिजिनल कैसे कलकत्ता होता है ठीक वैसा ही करता है काम।
0: मूर्तिकारों की माने तो इस बार यहाँ पर माँ दुर्गा की करीब 200 प्रतिमाएं तैयार की गई है। इनमें से लगभग 90% प्रतिमाएं पहले ही बुक हो चुकी हैं। बंगाली पैटर्न की इन प्रतिमाओं की मांग झांसी के अलावा बुंदेलखंड के दूसरे इलाकों में भी है। लिहाजा माँ दुर्गा की ये प्रतिमाएं इस बार इलाके के ज्यादातर पंडालों की शोभा बढ़ाती नजर आएंगी। झांसी से अजय झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
4: लगा निकल जाएगा दम पर जज्बा नहीं हुआ कम। लहू लुहान बदन फिर भी परमार्थ से भरा मन। हनुमान चालीसा से मिला जूझने का बल। 174 लोगों को मौत से बचाने वाला महाबली। बंदे में है दम, श्वेता झा के साथ सुबह 9:34 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
5: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
7: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें, किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
8: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज़ टुडे में।

0: आरती की जाती है, आरती करने के नियम क्या हैं, आरती की सावधानियां क्या हैं और कितनी आरती एक पूजा में की जा सकती है, जानिए मेरे साथ किस्मत कनेक्शन में।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
3: एवरेस्ट दिखा ला, सही दिखा सही लाल।
4: एशियन गेम्स में तिरंगा लहराकर महिला हॉकी टीम जापान से लौटी।

0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुभारंभ करेंगे। 7 अक्टूबर तक 65 देशों से जुटेंगे खरीदार। सैलानियों से गुलजार हुआ काजीरंगा नेशनल पार्क। जंगल सफारी के लिए सीजन के शुभारंभ पर दिखी असम संस्कृति की झलक। बढ़ेगी पर्यटकों की चहल पहल। पुरी के जगन्नाथ मंदिर में आस्था का मेला लगा। विधि विधान से की गई महाप्रभु जगन्नाथ की मंगला आरती। मंदिर परिसर में वैदिक मंत्रोच्चार की गूंज।
1: पावर्ड बाय गुन्नी चुन्नी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है। इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
0: जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा में BSF वुलर अल्ट्रा रन का आयोजन। लोगों को दिया फिटनेस का संदेश। कश्मीर में पर्यटन को बढ़ावा देना भी BSF वुलर अल्ट्रा रन का है उद्देश्य। बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। गुरुग्राम में फिट गुरुग्राम मैराथन का आयोजन हुआ। अभिनेता मिलिंद सोमन ने भी दौड़ लगाई। मुंबई में इंडियन एयरफोर्स हाफ मैराथन का आयोजन। परमवीर चक्र विजेता निर्मलजीत सिंह सेखों की याद में हुआ आयोजन। इंडियन एयरफोर्स हाफ मैराथन में बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। दिया अच्छी सेहत का संदेश। दिल्ली में इंडियन एयरफोर्स मैराथन का आयोजन हुआ। बड़ी संख्या में सेना के जवानों के साथ आम लोगों ने हिस्सा लिया। एयर चीफ मार्शल AP सिंह ने इंडियन एयरफोर्स मैराथन को दिखाई हरी झंडी। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में हुआ आयोजन। जोधपुर में भी मैराथन का आयोजन। लोगों ने फिटनेस के लिए दौड़ लगाई। गुवाहाटी में भी सेखो एयरफोर्स मैराथन का हुआ आयोजन। सेना से जुड़े अधिकारियों ने दिखाई हरी झंडी। दिल्ली में 93वीं संडे ऑन साइकिल रैली का आयोजन। बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। एशियन गेम्स में गोल्ड जीतकर जापान से स्वदेश लौटी महिला हॉकी टीम। बेंगलुरु एयरपोर्ट पर शानदार स्वागत हुआ। एयरपोर्ट पर खिलाड़ियों ने मेडल दिखाकर किया खुशी का इजहार। उत्साह में नजर आए प्रशंसक। खिलाड़ियों ने हॉकी स्टिक पर दिए ऑटोग्राफ। का रंग लाई बरसों की मेहनत और एकजुटता। बॉक्सिंग के पदकवीर भी लौटे स्वदेश। गोल्डन गर्ल लवलीना और परवीन का दिल्ली एयरपोर्ट पर अभिनंदन किया गया। जापान से जीतकर लौटे अंकुश पंघाल और दूसरे खिलाड़ियों का जोरदार स्वागत। एशियन गेम्स में बढ़ाया देश का मान। एशियन गेम्स के पदकवीर खिलाड़ियों पर इनामों की बरसात। गोल्फ में गोल्ड मेडल जीतने वाली प्रणवी उर्स को मिलेगा 1 करोड़ रुपए का पुरस्कार। महिला गोल्फ सदस्यों को मिलेंगे 25-25 लाख रुपए। तो वहीं AM ग्रीन IGPL लीग ने ऐलान किया। हॉकी खिलाड़ियों ने की है महिला टीम की हर खिलाड़ी को 11 लाख रुपए देने की घोषणा। हर सपोर्ट स्टाफ को भी 5.5 लाख मिलेंगे। ओडिशा सरकार ने भी की है हर खिलाड़ी को 11 लाख रुपए देने की घोषणा। हर सपोर्ट स्टाफ को भी 5.5 लाख। महिला हॉकी टीम की खिलाड़ियों को मिजोरम सरकार देगी 25-25 लाख रुपए इनाम। टीम में शामिल हैं मिजोरम की 2 प्लेयर्स। महाराष्ट्र के अमरावती में एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीतने वाली कुमकुम मोहोड़ के घर पर जश्न। शानदार कामयाबी पर लोगों ने आतिशबाजी की। कुमकुम के परिजनों ने मिठाइयां खिलाकर खुशियां बांटी। 17 साल की कुमकुम ने रिकर्व तीरंदाजी में जीता गोल्ड मेडल। गाजीपुर में हॉकी खिलाड़ी राजकुमार पाल के घर बटी मिठाइयां। एशियन गेम्स में जीत पर परिवार दिखा गदगद। हरियाणा के सिरसा में हॉकी प्लेयर्स ने मनाया भारतीय टीम की जीत का जश्न। उत्साह से लबरेज दिखे बच्चे। जालंधर में हॉकी खिलाड़ी मनप्रीत के घर दिखा खुशी का माहौल। परिजनों ने वीडियो कॉल पर बात की। इसराइल के PM बेंजामिन नेतन्याहू ने भारतीय पायलट कैप्टन स्मिथ मचार से वीडियो कॉल पर बात की। बहादुरी की जमकर तारीफ। PM नेतन्याहू ने कैप्टन स्मिथ को बताया इसराइल भारत और पूरे विश्व के लिए हीरो। संकट की घड़ी में सैकड़ों यात्रियों की जान बचाने के लिए जताया आभार। PM नेतन्याहू ने कैप्टन स्मिथ को दिया इसराइल आने का न्योता।

0: इसराइल के स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल होकर मशाल प्रज्वलित करने का ऐतिहासिक निमंत्रण दिया। बेंजामिन नेतन्याहू की कैप्टन स्मिथ से ली फ्लाई दुबई के विमान में हुई घटना के बारे में जानकारी, तो वहीं स्मिथ ने बताया कॉकपिट में क्या क्या हुआ था। इसराइल के लोग हुए कैप्टन स्मिथ की जांबाजी के दीवाने। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने सोशल मीडिया पर साझा किया वीडियो, लिखा देखिए किस तरह लोग अदा कर रहे हैं शुक्रिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज तेलंगाना में देंगे सौगात, अमूल के मॉडर्न डेयरी प्लांट का करेंगे शुभारंभ, मेडक में रखी जाएगी साबर डेयरी परियोजना की आधारशिला। तेलंगाना के करीम नगर में मेडिकल कॉलेज के कार्यक्रम में भी शामिल होंगे अमित शाह, नई बिल्डिंग का शिलान्यास करेंगे। उत्तर प्रदेश के भदोही में आज होगा 50वें इंडिया कार्पेट एक्सपो का शुभारंभ, 65 देशों के 430 खरीदार शामिल होंगे। आज दिन में 1:30 बजे सीएम योगी करेंगे कार्पेट एक्सपो का उद्घाटन, 1340 करोड़ की 112 विकास परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास का भी कार्यक्रम। 50वें इंडिया कार्पेट एक्सपो में लगाए गए 227 स्टॉल, भारतीय कालीनों का 196 देशों में होता है निर्यात। अगले साल कोलकाता में होगा 19वां प्रवासी भारतीय दिवस समारोह, 7 से 9 जनवरी तक होगा आयोजन, प्रधानमंत्री करेंगे उद्घाटन। 19वें प्रवासी भारतीय दिवस समारोह के समापन समारोह में शामिल होंगे राष्ट्रपति, प्रवासी भारतीय सम्मान करेंगे प्रदान। इम्फाल में टीबी मुक्त भारत अभियान के सिलसिले में कार्यक्रम का आयोजन, बांटे गए न्यूट्रिशनल फूड बास्केट। ओडिशा के खोर्धा में स्कूल के वार्षिक समारोह में बच्चों ने लगाई साइंस प्रदर्शनी, राज्यपाल ने बढ़ाया हौसला। ओडिशा के खोर्धा में टूरिज्म को बढ़ावा देने पर जोर, राज्यपाल ने किया इलाके के मशहूर अत्री हॉट स्प्रिंग का मुआयना। पुरी में सैंड आर्ट सीखने वाले छात्रों के लिए बनाई शानदार कलाकृति, एशियन गेम्स में मेडल जीतने पर भारतीय क्रिकेट और हॉकी टीमों को बधाई दी। लखीमपुर खीरी में टल गया बड़ा हादसा, नहर के गहरे पानी से बुलेरो गाड़ी का किया गया रेस्क्यू। गाड़ी में ड्राइवर के अलावा 6 स्कूली बच्चे सवार थे, मछुआरों और गांव के लोगों ने पानी में घुसकर बच्चों को सुरक्षित निकाला। अमेरिका में भारतीय दूतावास की ओर से यूनिटी रन फिटनेस इवेंट का आयोजन किया गया, फिटनेस के साथ साथ एकजुटता का संदेश दिया गया। यूनिटी रन इवेंट में बड़ी संख्या में भारतीय शामिल हुए, दूतावास की पहल का स्वागत किया। ग्वालियर में महाराज बाड़ा के ऐतिहासिक गोरखी देवघर में बाबा मंसूर शाह की दरगाह पर सालाना ओर से 300 सालों से चली आ रही है खास परंपरा। बाबा मंसूर शाह की दरगाह पर उर्स में दिखती है सांप्रदायिक एकता की मिसाल, सभी समुदाय के लोग होते हैं शामिल। सालाना उर्स के सिलसिले में बाबा मंसूर शाह की दरगाह पर रौनक की गई है शानदार सजावट। असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में टूरिज्म सीजन का आगाज हुआ, जीप सफारी के लिए उमड़ने लगी सैलानियों की भीड़। असम के वन मंत्री जयंत मल्ला बरुआ होंगे पहुंचे काजीरंगा नेशनल पार्क के गेट पर, औपचारिक रूप से टूरिज्म सीजन का शुभारंभ हुआ, कहा जल्द शुरू होगी एलिफेंट सवारी। दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे के 146 साल पूरे होने पर तस्वीरों में दिखा टॉय ट्रेन का इतिहास, नॉर्दर्न फ्रंटियर रेलवे ने बनाई है खास फोटो गैलरी। दार्जिलिंग की सुकना में फोटो गैलरी का हुआ शुभारंभ, दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे की गौरवशाली सफर से रूबरू होने का मिलेगा मौका। नेपाल के ललितपुर में सालाना टैटू समिट का आयोजन, टैटू कला को देखने के शानदार रंग। नेपाल की टैटू समिट में टैटू कला में आ रहे हैं बदलावों की नुमाइश, नए डिजाइन को बढ़ावा देने पर जोर है। अहमदाबाद में साबरमती सेंट्रल जेल में कैदियों को दी जा रही है अलग अलग कौशल की ट्रेनिंग, जेल में रहते हुए रोजगार और कमाई का मिल रहा है मौका। दिल्ली एनसीआर में मौसम साफ रहने के आसार, तापमान में हुई हल्की बढ़ोतरी। दिल्ली एनसीआर में आज अधिकतम तापमान 36 डिग्री रहने के पार, तो वहीं 23 डिग्री तक रह सकता है न्यूनतम तापमान। दिल्ली, चंडीगढ़, पंजाब और हरियाणा में 6 से 9 अक्टूबर के बीच कहीं कहीं हो सकती है बारिश, मौसम विभाग का है अनुमान। आखिरी चरण में मानसून, आज भी कई राज्यों में भारी बारिश और तेज हवाएं चलने के आसार, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। पूर्वोत्तर और दक्षिण भारत के कई हिस्सों में बारिश के आसार, कुछ जगहों पर चल सकती है तेज आंधी। 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना मनाएगी अपना 94वां स्थापना दिवस। 1932 में ब्रिटिश शासनकाल के दौरान की गई थी स्थापना। IAF ने जारी किया नया प्रोमो वीडियो, सालगिरह से पहले वायुसेना ने अपनी ताकत और जाबाजों की दिखाई झलक। आसमान में दिखी एयर पावर, प्रोमो में फाइटर जेट्स के शानदार ऑपरेशन और जबरदस्त एक्शन नजर आया। वीडियो में दिखी IAF के बहादुर जवानों और उनके मिशन की झलक, शौर्य और आधुनिक ताकत की नुमाइश। प्रोमो में आधुनिक हथियारों, विमानों और वायुसेना की नई तकनीक को किया गया हाईलाइट। वायुसेना की गौरवशाली इतिहास, अनुशासन और आसमान को छूने के जज्बे को दिखाया गया। जोधपुर में चल रहे तरंग शक्ति अभ्यास में 4 देशों की एयर पावर का शानदार नजारा, तेजस, राफेल, F-35, सुखोई 30, MKI एक साथ आसमान में उड़ते दिखे। भारतीय तेजस ने राफेल, F-35 और सुखोई 30 MKI के साथ परफॉर्मेशन में उड़ान भरी, तो वहीं अद्भुत लगा नजारा। तरंग शक्ति में भारत समेत कई देशों के 80 से ज्यादा विमान ले रहे हैं हिस्सा। आसमान में फाइटर जेट्स, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट और टैंकर का दमदार नजारा। जोधपुर एयरबेस पर भारत के साथ अमेरिका, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया समेत कई देशों की एयरफोर्स जुटी, उड़ान, ऑपरेशनल ट्रेनिंग और एक दूसरे की तकनीक समझना ऑपरेशन का उद्देश्य है। अमेरिका का स्टेल्थ फाइटर F-35 पहली बार तरंग शक्ति में शामिल, तो वहीं जोधपुर के आसमान में भारतीय लड़ाकू विमानों के साथ इसकी खास उड़ान। अजय देवगन की दृश्यम 3 की कमाई 2 दिन में 100 करोड़ के पार पहुंची, ऑडियंस के प्यार पर भावुक हुए डायरेक्टर। अजय देवगन के 35 साल के करियर की सबसे बड़ी फिल्म बनी दृश्यम 3, उनके करियर में सबसे तेजी से 100 करोड़ कमाने वाली फिल्म भी बनी। अजय देवगन ने की भारतीय पायलट कैप्टन स्मिथ की तारीफ, सोशल मीडिया पर पोस्ट में लिखा, हीरो तो कई होते हैं लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो दिखाते हैं कि असली हिम्मत क्या होती है। सलमान खान की फिल्म मातृभूमि को सरकार से NOC मिलने की खबर, अब CBFC की मंजूरी का इंतजार है। अगले साल 11 जून को रिलीज हो सकती है जूनियर NTR की फिल्म ड्रैगन, रिपोर्ट्स के अनुसार इस साल के अंत तक पूरी हो सकती है शूटिंग। अमेरिका के न्यू मेक्सिको में लगा हॉट एयर बलून्स का मेला इंटरनेशनल बलून फिएस्टा में 500 से ज्यादा गुब्बारों का दीदार। शानदार ड्रोन लाइट शो के साथ हुई इंटरनेशनल बलून फिएस्टा की ओपनिंग, आसमान में दिखा रंगीन समा। न्यू मेक्सिको में 11 अक्टूबर तक चलेगा इंटरनेशनल बलून फिएस्टा, 1972 में पहली बार हुई थी शुरुआत। चाइना में शिनजियांग के इंटरनेशनल ग्रैंड बाजार में सैलानियों की भीड़, चाइना के नेशनल डे की छुट्टियों में शॉपिंग के लिए पहुंच रहे हैं लोग। इंटरनेशनल ग्रैंड बाजार में दिखती है चीनी सांस्कृतिक विरासत की झलक, आधुनिक तरीके से दिया जा रहा है बढ़ावा। चाइना के नेशनल डे हॉलीडे में विदेशी पर्यटक झांग जियाजी पहुंच रहे हैं, पहाड़ों के साथ लोकगीत, डांस और सांस्कृतिक कार्यक्रम आकर्षण का केंद्र बने हैं। विदेशी पर्यटकों ने मशहूर झांग जियाजी ग्लास ब्रिज पर स्थानीय कलाकारों के साथ डांस किया, पर्यटकों ने प्राकृतिक नजारों और माहौल की जमकर तारीफ की। झांग जियाजी 72 वंडर टावर्स पर रात का लाइट शो देखने के लिए बड़ी संख्या में विदेशी पर्यटक पहुंचे, पारंपरिक तूजिया शादी और इंटरैक्टिव कार्यक्रमों में भी पर्यटकों ने हिस्सा लिया। पिघले लोहे से होने वाले आतिशी प्रदर्शन ने पर्यटकों को हैरान कर दिया, पेरू की एक पर्यटक ने इसे अद्भुत और जादुई अनुभव बताया। पश्चिमी हुनान के थिएटर में रोज 4 शो हो रहे हैं और सभी 7200 सीटों पर लोग हैं, तुजिया डांस, लोक कला और पारंपरिक शादी की झलक पर्यटकों को खूब पसंद आ रही है। चाइना के हुनान में नेशनल डे पर गोंग गोंग और शुन शुन को खास दावत मिली, तो वहीं बांस से बने केक, फल और सब्जियों से सजी दावत ने लोगों का ध्यान खींचा। पांडा के लिए कई परतों वाला बांस का केक तैयार किया गया है। इसमें ताजा बांस, फूल और दूसरी पसंदीदा चीजें सजाई गईं। पांडा भाइयों की छुट्टी वाली दावत का लाइव प्रसारण भी किया गया। लोगों ने उन्हें खाना खाते देखा और जमकर तस्वीरें खींची। पांडा के आसपास तरबूज, लालटेन, पिगी और फूलदान बनाए गए। ड्रैगन फ्रूट और पोमेलो ने सजावट में और रंग भर दिया। पार्क में पांडा के अलावा बच्चों और माता पिता के लिए मैजिक शो भी हुए। मस्ती के साथ सीखने वाले इन कार्यक्रमों ने छुट्टियों का मजा बढ़ाया। चाइना के हार्बिन पोलर पार्क में नेशनल डे पर खास पेंगुइन परेड हुई। पेंगुइन को देखने और उनके साथ इंटरैक्ट करने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। पेंगुइन स्क्वायर में टहलते हुए नजर आई और लोगों का ध्यान खींचा। उनकी क्यूट चाल देखने के लिए पर्यटकों की भीड़ जुटी। पेंगुइन के लिए परेड वाली जगह पर बर्फ बिछाई गई और इसे तापमान कम रखा गया। उन्हें बाहर लाया गया। परेड में जेंटू पेंगुइन शामिल हुए जो एंटार्क्टिक इलाके में पाए जाते हैं। ये बेहद ठंडे इलाकों के बजाय अपेक्षाकृत कम ठंड वाले क्षेत्रों में भी रहते हैं। हार्बिन पोलर पार्क की पेंगुइन परेड छुट्टी का बड़ा आकर्षण बनी। देश भर से आए पर्यटकों ने पेंगुइन को करीब से देखा। इथियोपिया में रंग बिरंगे पारंपरिक कपड़ों में हजारों लोगों ने जश्न मनाया। इरिचा का जश्न मनाया गया। गीत संगीत और डांस के साथ उत्साह से भरा पूरा माहौल। लोगों ने हरी घास और फूलों के साथ पारंपरिक रस्में निभाई। इरिचा पार्क और मेस्केल स्क्वायर में खूब रौनक दिखी। पारंपरिक गीतों और नृत्य ने इरिचा समारोह में जमाया रंग। बड़ी संख्या में लोगों ने मिलकर किया खुशी का इजहार। लोगों ने खास पारंपरिक परिधानों से इरिचा पर्व को मनाया। पूरे समारोह में संस्कृति और लोक परंपराओं की झलक दिखी। हजारों लोगों ने साथ जुटकर इस बड़े सांस्कृतिक पर्व का जश्न मनाया। फूलों, हरियाली, गीत और डांस के बीच उत्सव का माहौल छाया रहा।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
3: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: अमेरिका के न्यू मेक्सिको में विश्व का सबसे बड़ा हॉट एयर बलून उत्सव अल्बुकर्क इंटरनेशनल बलून फिएस्टा 2026 धूमधाम से शुरू हो चुका है और इस दौरान आकाश में तैरते सैकड़ों गुब्बारों के इस मनमोहक दृश्य को लाइव देखने के लिए दुनिया भर से लाखों लोग न्यू मेक्सिको पहुंच रहे हैं। देखिए तस्वीरें।
2: रंग बिरंगे गुब्बारों से भरा है आसमान, नील गगन पर अलग अलग रंगों और डिजाइनों वाले होटल गुब्बारों की उड़ान का ये नजारा बेहद शानदार है। ये तस्वीरें अमेरिका के न्यू मेक्सिको में चल रहे अल्बुकर्क इंटरनेशनल बलून फेस्टा की है। यहाँ सिर्फ पारंपरिक गुब्बारे ही नहीं बल्कि अलग अलग आकार वाले विशेष बैलून भी आकर्षण का केंद्र बने हैं। इनमें गाय जैसा दिखने वाला और मशहूर स्मोकी बेयर की झलक दिखाने वाले गुब्बारे भी शामिल हैं। न्यू मेक्सिको में गुब्बारों के उत्सव की शुरुआत तड़के खास ड्रोन लाइट शो के साथ हुई। इस शो में हॉट एयर बलून, न्यू मेक्सिको के स्टेट बर्ड ग्रेट रॉडनर, चिली पेपर और मैक्सिकन थीम वाली अनोखी आकृतियां नजर आईं। इसके बाद शुरू हुई गुब्बारों में हवा भरने की तैयारी। जब एक एक कर विशाल बैलून जमीन पर आकार लेने लगे तो देखते ही देखते पूरा फिएस्टा पार्क रंगों से भर गया। सूरज उगने के साथ ही सुबह करीब 7 बजे शुरू हुए इस महोत्सव का सबसे मनमोहक वह पल था जब सैकड़ों हॉट एयर बैलून एक साथ आसमान की ओर उठने लगे और फिर ऐसा लगा जैसे पूरा आसमान रंग बिरंगे गुब्बारों से ढक गया हो। नजारे को देखने के लिए अमेरिका ही नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने से बड़ी संख्या में लोग अल्बुकर्क इंटरनेशनल बैलून फिएस्टा पार्क पहुंचे। इस बैलून महोत्सव की शुरुआत सन 1962 में महज 13 गुब्बारों के साथ हुई थी और अब ये दुनिया के सबसे बड़े बैलूनिंग फेस्टिवल में शुमार हो चुका है। आयोजकों के मुताबिक इस बार 500 से ज्यादा बलून फिएस्टा में हिस्सा ले रहे हैं। इस बार 9 दिनों का ये इंटरनेशनल बैलून फिएस्टा 11 अक्टूबर तक जारी रहेगा और बैलूनिंग के शौकीनों को एक बार फिर से अनूठी यादें संजोने का मौका देगा। रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें।
3: क्यों देवी और देवता की आरती की जाती है, आरती करने के नियम क्या हैं, आरती की सावधानियां क्या हैं और कितनी आरती एक पूजा में की जा सकती है, जानिए मेरे साथ किस्मत कनेक्शन में।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
4: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा।
1: एशियन गेम्स में तिरंगा लहराकर महिला हॉकी टीम जापान से लौटी स्वदेश बेंगलुरु एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत। दिल्ली में बॉक्सिंग और स्क्वॉश खिलाड़ियों की शानदार अगवानी। जापान में आज होगा एशियन गेम्स का रंगारंग समापन समारोह। पदक तालिका में चौथे स्थान पर पहुंचा भारत, आखिरी दिन जुड़ा 5 गोल्ड मेडल्स का गोल्डन पंच। दिल्ली से लेकर गुवाहाटी तक शेखू आईएएफ मैराथन और हाफ मैराथन का आयोजन, फौजियों के साथ आम लोग भी शामिल, देशभक्ति और फिटनेस को बढ़ावा दिया। भदोही में आज से शुरू होने जा रहा है इंडिया कार्पेट एक्सपो, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुभारंभ करेंगे। 7 अक्टूबर तक 65 देशों से जुटेंगे खरीदार। सैलानियों से गुलजार हुआ काजीरंगा नेशनल पार्क, जंगल सफारी के नए सीजन के शुभारंभ पर दिखी अहम संस्कृति की झलक, बढ़ेगी पर्यटकों की चहल पहल। पुरी के जगन्नाथ मंदिर में आस्था का मेला, विधि विधान से की गई महाप्रभु जगन्नाथ की मंगला आरती, मंदिर परिसर में वैदिक मंत्रोच्चार की गूंज।

नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्वेता झा। आप देख रहे हैं अपना सबसे पसंदीदा और दमदार शो बंदे में है दम। एक बार फिर मैं हाजिर हूं दमदार शख्सियत का एक बेमिसाल सफरनामा लेकर। इस बार जिस शख्सियत का बेनजीर सफरनामा लेकर हम हाजिर हुए हैं, उसने 34,000 फीट की ऊंचाई पर साहस और पराक्रम का ऐसा अफसाना लिख दिया कि पूरी दुनिया उसके सजदे में आ गई है।

आप समझ ही गए होंगे कि इस बार की दमदार शख्सियत कोई और नहीं बल्कि फ्लाई दुबई के विमान में एक सनकी को पायलट के खौफनाक मंसूबों को नाकाम कर 174 बेगुनाह यात्रियों के प्राणों की रक्षा करने वाले कैप्टन स्मिथ मछार हैं। जी हाँ, हिंदुस्तान का ऐसा सपूत जिसकी वीरता का यशोगान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू समेत दुनिया भर के लोग कर रहे हैं। दरअसल कैप्टन स्मिथ ने अपने साहस, पराक्रम और सूझबूझ से विमान में सवार 174 मासूम लोगों को दर्दनाक मौत से बचा लिया। 34,000 फीट की ऊंचाई पर बुरी तरह जख्मी होने के बाद अगर ये जाबाज सरेंडर कर देता तो विमान का क्रैश होना तय था। वीरता के 120 सेकंड्स की ये दास्तान आपके रोंगटे खड़े कर देगी।

0: साहस, शौर्य और धैर्य की कसौटी है आपात स्थिति। बेहद कठिन और नाजुक वक्त में जो इंसान अपने साहस और सूझबूझ से लोगों को मुसीबत से उबार लेता है, वही रियल हीरो कहलाता है। ऐसा ही एक बिंदास हीरो है हिंदुस्तान का लाल, कैप्टन स्मिथ मुच्छार। सामने खड़ी मौत को देखकर भी जिसका साहस और हौसला एक पल के लिए भी पस्त नहीं हुआ। 34,000 फीट की ऊंचाई पर पैदा हुई विकट परिस्थिति में अगर ये हिंदुस्तानी हिम्मत हार जाता तो 27 बच्चों समेत 174 बेगुनाह यात्री अपनी जान से हाथ धो चुके होते। कैप्टन स्मिथ मुच्छार का ये पराक्रम मिड ईयर टेरर कॉन्स्पिरेसी को नाकाम करने वाली हीरोइक हिस्ट्री के बोल्ड चैप्टर के रूप में हमेशा के लिए दर्ज हो चुका है। कैप्टन स्मिथ के साहसिक और ऐतिहासिक पराक्रम से 140 करोड़ हिंदुस्तानियों का सीना गर्व से चौड़ा हो गया है।
1: भारत के कैप्टन स्मिथ ने जिस प्रकार से धैर्य, सूझबूझ और साहस का परिचय करवाया, और जैसे आज इजराइल के प्रधानमंत्री ने कहा कि इस हिंदुस्तानी ने 9/11 होने से बचा लिया, हर देशवासी के लिए स्मिथ का ये पराक्रम हमें गौरव से भर देता है।
0: रोंगटे खड़े कर देने वाला ये वाक्या है 30 सितंबर 2026 का, जब फ्लाइट दुबई की कमर्शियल फ्लाइट FZ1073 ने 174 यात्रियों और 6 क्रू मेंबर्स के साथ स्थानीय समय के मुताबिक सुबह 6:49 पर दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से तेल अवीव के लिए उड़ान भरी थी। कैप्टन स्मिथ इस विमान के पायलट थे और उनके साथ कॉकपिट में को पायलट के तौर पर ओमान का एक शख्स था। कैप्टन स्मिथ इस बात से पूरी तरह अनजान थे कि उनका को पायलट इंतहाई खौफनाक इरादों के साथ कॉकपिट में दाखिल हुआ है। दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से टेक ऑफ के करीब 1 घंटे और 42 मिनट बाद विमान जब 34,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भर रहा था, तभी ओमानी को पायलट ने अपने खतरनाक मंसूबों को अंजाम देने के लिए हिंदुस्तान के दिलेर पायलट स्मिथ पर चाकुओं से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। कैप्टन स्मिथ ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उन्हीं का को पायलट मिड एयर उन पर इस तरह जानलेवा हमला कर देगा। पल भर में बुरी तरह लहूलुहान हो चुके स्मिथ ने इस विकट स्थिति में भी साहस, सूझबूझ और धैर्य नहीं खोया। वो समझ गए कि उनका को पायलट या तो विमान को क्रैश करना चाहता है या फिर इसे अगवा करना चाहता है। बुरी तरह जख्मी हो चुके कैप्टन स्मिथ के मन में एक बात बिजली की तरह कौंध गई, अगर मैं हिम्मत हार गया तो 174 बेगुनाह यात्रियों की दर्दनाक मौत हो जाएगी। ये विचार आते ही जख्मी स्मिथ एक्शन में आ गए। उन्होंने पहला काम ये किया कि विमान का कंट्रोल अपने पास ही रखा, जबकि ओमानी को पायलट का इरादा कंट्रोल अपने हाथ में लेने का था। दूसरा काम उन्होंने ये किया कि ATC को स्क्वाक कोड 7700 भेज दिया, जो सामान्य आपात स्थिति का संकेत होता है। कुछ मिनट बाद उन्होंने कोड 7500 भेजा, जो विमान हाईजैकिंग का संकेत देता है। तीसरा और सबसे बड़ा काम उन्होंने ये किया कि कॉकपिट का रिलीज सिस्टम दबा दिया, जिससे डोर ओपन हो गया। आपको बता दें कि कॉकपिट का डोर सिस्टम ऐसा होता है कि उसे बाहर से किसी भी सूरत में ओपन नहीं किया जा सकता। जाहिर है कैप्टन स्मिथ अगर डोर ओपन नहीं करते तो विमान के दूसरे क्रू मेंबर्स और यात्रियों को हस्तक्षेप का मौका नहीं मिलता, और ओमानी को पायलट कुछ ही देर में जख्मी स्मिथ की शायद जान भी ले लेता। बहरहाल जैसे ही कॉकपिट का डोर ओपन हुआ, यात्रियों को सारा माजरा समझ में आ गया। विमान में यात्रा कर रहे यानियू हायून नाम के एक इजरायली नागरिक ने अदम्य साहस का परिचय दिखाते हुए ओमानी को पायलट को खींच कर कॉकपिट से बाहर कर दिया, जिसके बाद दूसरे यात्री उस पर टूट पड़े और चंद मिनटों में उसे काबू में कर लिया। सनकी को पायलट को काबू में करने वाले यानियू हायून भी कैप्टन स्मिथ के शौर्य को सलाम कर रहे हैं।
2: Captain Smith, it's a hero. I think she is opened the door because I believe it's near the door in the side of the cockpit. I think it's opened the door and then is crushed. I want to tell him thank you for that. If not, if we can't go inside the cockpit, where all the passenger, include me, include my family, it's die.
0: काबिले गौर है कि इस विमान में ज्यादातर पैसेंजर्स इजरायली नागरिक थे। जाहिर है कि ओमान के सनकी को पायलट के निशाने पर यही इजरायली नागरिक थे। अगर कैप्टन स्मिथ ने वक्त रहते कॉकपिट का डोर ओपन नहीं किया होता तो विमान में सवार सभी यात्री और क्रू मेंबर्स की दर्दनाक मौत हो जाती। यही वजह है कि इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू साहसिक यात्रियों के साथ कैप्टन स्मिथ के शौर्य, धैर्य और हीरोइक एक्ट की दिल खोलकर सराहना कर रहे हैं।
3: Almost all the passengers on the flight were Israelis. During the flight, as they approached the country, one of the pilots stabbed the other pilot and apparently tried to crash the plane with everyone on board. I spoke with one of the Israeli passengers. He told me that the plane went into a spin and started to dive. He told me that somehow he managed to break into the cockpit with one of the crew members, and together they neutralized the stabbing pilot while he was trying to sabotage the plane's systems. Another flight crew member who was on the plane entered the cockpit and managed to stabilize the aircraft. I salute these heroes who showed resourcefulness and extraordinary courage.
0: इसमें कोई संदेह नहीं कि कॉकपिट के भीतर कैप्टन स्मिथ जब अपने ही सन की कोपायलट के खिलाफ वीरता के साथ मुकाबला कर रहे थे, उस दौरान विमान पर सवार 174 यात्रियों का कलेजा मुंह को आ चुका था, क्योंकि उन्हें अपनी मौत बेहद करीब दिख रही थी। दरअसल कैप्टन स्मिथ पर चाकू से ताबड़तोड़ हमले करने के बाद ओमान का बददिमाग कोपायलट विमान को क्रैश कराने की कोशिश भी करने लगा था। इस दौरान 34,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा विमान गोता लगाते हुए 2 मिनट के भीतर ही 17,000 फीट नीचे आ चुका था। अगले 1 या 2 मिनट में वो आग के गोले में तब्दील होने ही वाला था कि कैप्टन स्मिथ ने सूझबूझ का परिचय देते हुए रिलीज सिस्टम का बटन प्रेस कर दिया। यही वजह है कि बेंजामिन नेतन्याहू ने कैप्टन स्मिथ को रियल हीरो कहा है। सोशल साइट एक्स पर अपनी पोस्ट में भारतीय कैप्टन की हृदय से तारीफ करते हुए नेतन्याहू ने लिखा है कि असाधारण वीरता प्रदर्शित करने के लिए भारतीय पायलट स्मिथ मुच्छार को मैं सलाम करता हूँ। चाकू से गोदे जाने के बाद गंभीर रूप से जख्मी होने पर भी उन्होंने हार नहीं मानी, सनकी को पायलट का मुकाबला किया और कॉकपिट का डोर ओपन कर दिया। इसकी वजह से विमान में सवार यात्रियों और क्रू मेंबर्स को ओमानी को पायलट को काबू में करने का मौका मिल गया और आसमान में होने वाली एक खौफनाक दुर्घटना टल गई। उन्होंने इजरायली नागरिकों समेत 174 यात्रियों की जान बचा ली। मैं कैप्टन मुच्छार के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूँ, वो एक सच्चे हीरो हैं। इजरायली प्रधानमंत्री का ये भावुक संदेश इसलिए है क्योंकि विमान में लगभग सभी यात्री इजरायली थे, लेकिन कैप्टन स्मिथ के शौर्य को तो पूरी दुनिया सलाम कर रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी कैप्टन स्मिथ को सच्चा हीरो बता दिया है।
4: Perhaps a terrorist or perhaps a whack job. And he stabbed the pilot. The pilot was in very bad shape. And I guess he still is in very bad shape. But he had the sense to, amazing, to, in a way he was a hero, to open the door. You know, those doors are solid steel. You can't get them open from outside. He was able to fall back and get the door open and scream.
0: साफ है कि कैप्टन स्मिथ रील के नहीं बल्कि रियल के हीरो बनकर पूरी दुनिया में छा गए हैं। वो हीरो हैं सिर्फ इसलिए नहीं कि 34,000 फीट की ऊंचाई पर बहादुरी दिखाकर 174 यात्री और अपने क्रू मेंबर्स की जान बचा ली। वे हीरो हैं इसलिए भी कि पूरी तरह लहूलुहान हो जाने के बाद भी उनके चेहरे पर शिकन की कोई लकीर नहीं दिख रही थी। अलबत्ता बेगुनाह लोगों की जिंदगी बचाने का सुकून जरूर उनके चेहरे पर तैर रहा था। सऊदी अरब के तबूक में सेफ लैंडिंग के बाद विमान के भीतर जब उन्हें फर्स्ट एड दिया जा रहा था तो कैप्टन स्मिथ पूरे आत्मविश्वास के साथ लोगों से बात करते नजर आए। ये बात निर्विवाद सत्य है कि तबाही मचाने वाले हथियार तो बाजार में बिकते हैं, लेकिन युद्ध के समय दुश्मन के सामने सीना तान कर खड़े होने का जो साहस, शौर्य और फौलाद होता है, वो दुनिया के किसी बाजार में नहीं बिकता। फौलादी जिगर तो इंसान अपने साथ लेकर पैदा होता है, और जिसके भीतर फौलादी जिगरा होता है, वही परोपकार के लिए, परमार्थ के लिए अपने प्राणों की आहुति देने से भी पीछे नहीं हटता। ऐसे महानायक के ही सजदे में पूरी दुनिया होती है। इजराइल की मशहूर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर तालिया जोसेफ ने कैप्टन स्मिथ के साहसिक कार्य पर इजराइल की ओर से आभार जताने के लिए जो उद्गार व्यक्त किए हैं, उसने हिंदुस्तानियों के मस्तक को गर्व से और ऊंचा कर दिया है।
5: More than 170 people made it home because of Smit. 170 families that didn't lose their loved ones because he chose to take action and fight. He chose to be a hero. And that's exactly what he is. Smit is right now dealing with the wounds caused by the terrorist and he is in critical condition. So I want to wish him speedy recovery. Refuah shlema. Thank you so much from the people of Israel for your courage and for your sacrifice. We do not take it for granted and we will never forget it.
0: निसंदेह इस घटनाक्रम के बाद हिंदुस्तान की धरती पर जन्मे और पले बढ़े कैप्टन स्मिथ महानायक के तौर पर पूरी दुनिया में सराहे जा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर ओमान का वो को पायलट है जिसके जघन्य कृत की वजह से उसके देश की फचीहत हो रही है, जबकि समूचे हिंदुस्तान को अपने इस महानायक पर गर्व की अनुभूति हो रही है। पूरी दुनिया इस हीरो की स्पीडी रिकवरी के लिए अपनी अपनी आस्था और अकीदे के मुताबिक दुआ कर रही है। उधर 140 करोड़ हिंदुस्तानी अपने महानायक को स्वस्थ और सकुशल देखने के लिए बेकरार हैं।
6: कैप्टन स्मिथ मछार वसुधैव कुटुंबकम के सनातन संस्कार के बीच पले बढ़े हैं। विकट परिस्थिति में अपनी चिंता छोड़कर दूसरों की रक्षा करने की प्रेरणा कैप्टन स्मिथ के संस्कार में है। आपको यह जानकर सुखद आश्चर्य होगा कि स्मिथ बजरंग बली के भक्त हैं। ओमानी मूल के को पायलट ने एक समय जब उनको बुरी तरह से जख्मी कर दिया था और बहुत ज्यादा खून बह जाने की वजह से वो मूर्छित होने लगे थे, तो उन्होंने हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर दिया। इसलिए नहीं कि उनकी जान संकट में थी, बल्कि इसलिए कि 174 बेगुनाह यात्रियों की जान जाने वाली थी। आसमान में की गई कैप्टन स्मिथ की प्रार्थना शायद स्वीकार हो गई, तभी तो समूचा इजराइल उनके नायकत्व से अभिभूत होकर जय हिंद का नारा बुलंद कर रहा है।

0: शरीर लहूलुहान हो, गहरे जख्मों का दर्द असह्य हो, मौत मुंह बाए सामने खड़ी हो, उसके बाद भी अगर अनजान लोगों की जिंदगी की हर चंद हिफाजत का जज्बा जाग जाए तो इसे क्या कहेंगे। ऐसे ही इंसानों को महामानव कहा जाता है और ऐसे महामानवों के आगे समूची मानवता नतमस्तक हो जाती है। विश्व के इतिहास में ये शायद पहली बार हुआ होगा जब हिंदुस्तान के बाहर किसी अन्य देश के नागरिक अपने ही देश की सरजमी पर जय हिंद का जय घोष कर गर्व की अनुभूति कर रहे हैं। कैप्टन स्मिथ के त्याग और बलिदान से अभिभूत होकर इजरायली नागरिक तेल अवीव की सड़कों पर निकलकर जय हिंद का नारा बुलंद कर रहे हैं।
1: जय हिंद।
2: इसराइल खाए।
1: हम आपके आभारी हैं।
2: We are from Israel and with one united voice
1: on behalf of the people of India
2: and the people of Israel,
1: we want to honor and thank Captain Smith
2: for heroically saving the lives of nearly 200 passengers.
0: वसुधैव कुटुम्बकम की सनातन प्रेरणा से अनुप्राणित कैप्टन स्मिथ ने बेहद विकट परिस्थिति में ऐसा अद्भुत जज्बा दिखाया कि हिंदुस्तान और इजराइल की सामाजिक, सांस्कृतिक और भौगोलिक भिन्नता भावनात्मक एकता का रूप लेकर समूची वसुधा को सुरभित कर रही है। इजराइल की सड़कों पर जय हिंद का नारा गूंज रहा है तो तेल अवीव से 4,696 किलोमीटर दूर अविनाशी काशी की गंगा आरती देश के इस शूरवीर के नाम समर्पित दी गई।
3: कैप्टन स्मिथ सुभाष ने जिस अदम्य साहस, धैर्य और कृतज्ञ निष्ठा का परिचय दिया है वह पूरे देश के लिए गर्व की बात है। जिस परिस्थिति में कोई भी व्यक्ति घबरा सकता था उस कठिन समय में उन्होंने अपने कर्तव्य को सर्वोपरि रखते हुए सैकड़ों यात्रियों की सुरक्षा के लिए जिस बहादुरी के साथ सामना किया वह वास्तव में प्रेरणादायक है। गंगा सेवा निधि परिवार, बाबा विश्वनाथ एवं भगवती माँ गंगा से उनके जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना करती हूँ।
0: भगवान शिव की नगरी काशी में स्मिथ के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना के साथ गंगा आरती की गई तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की पावन जन्मस्थली अयोध्या धाम में कैप्टन स्मिथ के आरोग्य और लंबी उम्र के मनोरथ के साथ साधु संतों ने हनुमान चालीसा का सस्वर पाठ किया।

0: हमारे देश के जानबाज कैप्टन स्मिथ मच्छर जी ने असाधारण व्यक्तित्व और साहस का परिचय देते हुए 174 यात्रियों को सकुशल बचाने का जो है काम किए। इसके लिए मैं इनको जो है स्वास्थ्य की कामना से, यह जल्द स्वस्थ हो इसलिए हनुमान जी महाराज के जो है हनुमान चालीसा और मंत्रों के द्वारा प्रार्थना किया हूँ। हनुमान जी महाराज हमारे ऐसे स्मित मच्छर जी को शक्ति साहस और स्वस्थ करके इनको तत्काल भारत ये आए, यही हम लोगों ने हनुमान जी से प्रार्थना किया हूँ।
1: कैसा अद्भुत संयोग है कि जिस कैप्टन स्मिथ के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना के साथ अयोध्या में हनुमान चालीसा का पाठ किया गया, उस कैप्टन ने इजराइल और जॉर्डन के सीमावर्ती क्षेत्र में 34,000 फीट की ऊंचाई पर 174 नागरिकों की रक्षा की शक्ति पाने के लिए इसी हनुमान चालीसा का पाठ किया था। ये बात खुद स्मिथ ने प्रधानमंत्री मोदी के साथ बातचीत के दौरान बताई। दरअसल ओमान मूल के को पायलट ने कॉकपिट में मौजूद क्रैश एक्स से कैप्टन स्मिथ मच्छार के सिर, सीने और हाथ में गहरे जख्म कर दिए थे। उनके जिस्म के कई हिस्सों से बेतहाशा खून निकल रहा था। एक समय ऐसा भी आया जब स्मिथ को लगा कि वे कभी भी होश में नहीं आने वाली मूर्छा में जाने वाले हैं। मूर्छित होने से पहले जैसे ही उनके मन में ये ख्याल आया कि अगर मैं मूर्छित हुआ तो इस विमान में सवार 174 यात्रियों की मौत निश्चित है, उन्होंने हनुमान चालीसा का पाठ शुरू किया और पूरी शक्ति के साथ उठकर कॉकपिट के रिलीज सिस्टम का बटन प्रेस कर दिया। जब कॉकपिट का डोर ओपन हो गया तो विमान में सवार क्रू मेंबर्स और पैसेंजर्स ने बाकी का मोर्चा संभाल लिया। मौत का विकराल रूप सामने खड़ा देखने के बाद भी 174 जिंदगी की चिंता करने वाले कैप्टन स्मिथ का संवेदनात्मक भाव सनातन के कालजयी ग्रंथ मनुस्मृति के 8वें अध्याय के 15वें श्लोक से पुष्ट हो जाता है। मनुस्मृति का ये श्लोक है, धर्म्यो हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षितः, तस्मात् धर्मो न हन्तव्यो मा नो धर्मो हतो अवधीत। मनुस्मृति के इस श्लोक का अर्थ है, जो धर्म का नाश करता है धर्म उसका नाश कर देता है, और जो धर्म की रक्षा करता है धर्म भी उसकी रक्षा करता है। इसीलिए धर्म का कभी नाश नहीं होना चाहिए, ताकि नाश हुआ धर्म हमारा नाश न कर सके। मनुस्मृति के इसी श्लोक का भाव तब कैप्टन स्मिथ के मन में जागृत हो गया। उन्होंने अत्यंत विकट स्थिति में धर्म की रक्षा की और अब धर्म उनकी रक्षा कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी स्वयं अपने देश के साहसी सपूत की हर जरूरत का ख्याल रख रहे हैं। कैप्टन स्मिथ ने तब ये नहीं सोचा होगा कि 174 जिंदगी बचाने का उनका कर्तव्य समूचे देश की भावना का ज्वार बनकर उमड़ पड़ेगा। इसीलिए पीएम मोदी से बात करते समय वे थोड़े भावुक भी हो गए।
2: बहुत बहुत गर्व होता है, अभी में तो हो रहा है मेरे पे गर्व, अब तक नहीं हो रहा था। अब हो गया सर, सॉरी कि आपके सामने लौट रहा हूँ सर।
3: स्मिथ, अगर मेरे सामने आप भावुक नहीं हो गए तो कहां होंगे?
1: गंभीर रूप से जख्मी स्मिथ का इलाज पहले सऊदी अरब के तबूक के एक अस्पताल में चल रहा था, लेकिन और बेहतर ट्रीटमेंट के लिए उन्हें एयरलिफ्ट करके अबू धाबी के सैन्य अस्पताल लाया गया। उनकी हालत में तेजी से सुधार हो रहा है और डॉक्टरों के मुताबिक वो खतरे से बाहर हैं। जिस शख्स के आरोग्य के लिए हिंदुस्तान के मंदिरों, शिवालयों समेत दुनिया भर के इबादत खानों में प्रार्थनाओं का दौर चल रहा हो, उसे पूर्ण स्वस्थ होने से कौन रोक सकता है। इसमें कोई संदेह नहीं कि अपने फिनोमिनल हीरोइक एक्ट से कैप्टन स्मिथ ने हिंदुस्तान का मान पूरी दुनिया में बढ़ाया है।
4: इसी के साथ बंदे मेहदम में आज आपने देश के जाबाज पायलट स्मिथ मछार के हीरोइक एक्ट की दास्तान सुनी। अगले हफ्ते ऐसे ही किसी और बेमिसाल शख्सियत के सफरनामे के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे।

0: परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
6: एवरेस्ट दिखा लाल, सही दिखा सही लाल।
7: दिल्ली से लेकर गुवाहाटी तक IAF मैराथन और हाफ मैराथन का आयोजन, फौजियों के साथ आम लोग भी शामिल, देशभक्ति के साथ फिटनेस का संदेश। भदोही में आज से शुरू होने जा रहा है इंडिया कार्पेट एक्सपो। सीएम योगी आदित्यनाथ शुभारंभ करेंगे। 7 अक्टूबर तक 65 देशों से जुटेंगे खरीदार। जापान में आज होगा एशियन गेम्स का रंगारंग समापन समारोह। पदक तालिका में चौथे स्थान पर पहुंचा भारत। आखिरी दिन जड़ा 5 गोल्ड मेडल्स का गोल्डन पंच। त्योहारों से पहले घाटी में सुरक्षा चाक चौबंद। जम्मू कश्मीर की स्पेशल टीम ने चलाया सर्च ऑपरेशन। जवान के साथ डॉग स्क्वाड भी शामिल। लखनऊ की सड़कों पर दौड़ी विंटेज कार। ब्रेस्ट कैंसर के खिलाफ जागरूकता फैलाने का है लक्ष्य। बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से
8: नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। हर पूजा का एक अभिन्न अंग है आरती। आज हम आपको बताएंगे कि आरती का महत्व क्या है, आरती करने का तरीका क्या है और आरती से किस किस तरह के लाभ जीवन में प्राप्त होते हैं। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 4 अक्टूबर 2026 दिन रविवार। तिथि है आश्विन कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि। नक्षत्र है पुनर्वसु नक्षत्र। चंद्रमा मिथुन राशि में संचरण कर रहे हैं शाम के 6:31 तक। राहु काल का समय शाम के 4:30 से लगभग 6 तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है तो जरा सा पान का पत्ता खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अब जान लेते हैं दिनांक 4 अक्टूबर 2026 दिन रविवार को प्रातः काल ग्रहों की स्थिति क्या है। सूर्य विद्यमान है कन्या राशि में, बुध और शुक्र तुला राशि में, राहु कुंभ राशि में, शनि मीन राशि में, चंद्रमा मिथुन राशि में, मंगल और बृहस्पति कर्क राशि में और केतु फिलहाल संचरण कर रहे हैं सिंह राशि में। ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आगे हम जानेंगे कि आपका दैनिक राशि फल कैसा रहने वाला है। सबसे पहले जानते हैं कि आरती होती क्या है और आरती का महत्व क्या है। देखिए, आरती के महत्व की चर्चा आरती के बारे में सबसे पहले बताया गया है स्कंद पुराण में। आरती हिंदू धर्म की पूजा परंपरा का एक महत्वपूर्ण काम है। किसी भी पूजा पाठ यज्ञ अनुष्ठान इसके अंत में देवी देवताओं की आरती की जाती है। आरती की प्रक्रिया में एक थाल में दीपक की ज्योति या कपूर की ज्योति रखते हैं और कुछ विशेष वस्तुएं रखकर देवी या देवता के समक्ष घुमाते हैं। थाल में अलग अलग वस्तुओं को रखने का अलग अलग महत्व होता है, लेकिन सबसे ज्यादा महत्व होता है आरती के साथ जो आप स्तुति गाते हैं, जो आप प्रार्थना करते हैं, वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है। जितनी भावना से, जितनी श्रद्धा से आप आरती गाएंगे, उतना ज्यादा ये प्रभावशाली होगी।

प्रभावशाली होगी। आरती पर हमारी चर्चा जारी है, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, कारोबार में आपको लाभ होगा, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, सूर्य देव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृषभ राशि, सेहत अच्छी बनी रहेगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, शत्रु और विरोधी परास्त होंगे, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मिथुन राशि, स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, धन का लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कर्क राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, विवादों से बचाव करें, शाम से स्थितियों में सुधार होगा, गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। अब ये जानते हैं कि आरती करने के नियम क्या हैं। बिना पूजा उपासना किए हुए, बिना मंत्र जप किए हुए, बिना प्रार्थना या भजन किए हुए केवल आरती नहीं की जा सकती। आप बिना वजह के, बिना किसी पूजा उपासना के सीधे आरती नहीं कर सकते। हमेशा किसी पूजा या प्रार्थना की समाप्ति पर ही आरती करना अच्छा होता है। आरती की थाल में कपूर या घी के दीपक, दोनों में से किसी एक चीज से आप ज्योति जला सकते हैं। अगर आप दीपक से आरती करते हैं तो ये दीपक पंचमुखी होना चाहिए और थाल में पूजा के फूल और कुमकुम ये आपको जरूर रखना चाहिए। आरती को देवी देवता के सामने इस तरह से घुमाइए कि ओम की आकृति बन सके। आरती को भगवान के चरणों में चार बार, उनकी नाभि में दो बार, मुख पर एक बार और पूरे शरीर पर सात बार घुमाना चाहिए। जब आप आरती कर लें और दूसरों को आरती देंगे उनके आशीर्वाद के लिए, तो थाल में रखे हुए फूल देने चाहिए और कुमकुम का तिलक लगाना चाहिए। जैसे आपने आरती कर ली, अब आप बाकी दूसरों को आशीर्वाद दे रहे हैं, आरती के माध्यम से भगवान की कृपा दे रहे हैं, तो लोगों के हाथों में फूल दीजिए और लोगों को कुमकुम का तिलक लगाइए तो ज्यादा बेहतर होगा। तो आरती पर हमारी चर्चा जारी है, लेकिन आपको

दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि का दैनिक राशिफल। सिंह राशि, छोटी यात्रा के योग बन रहे हैं, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा, क्रोध पर नियंत्रण बनाए रखें, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कन्या राशि, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, संपत्ति का लाभ मिलेगा, स्वास्थ्य की समस्या दूर होगी, सूर्य देव को जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। तुला राशि, करियर की समस्या हल होगी, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, शिक्षा में आपको सफलता मिलेगी, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, पारिवारिक विवाद से बचाव करें, शाम से स्थितियों में सुधार होगा, गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। जब आरती हो जाती है तो आरती सबको दी जाती है और सब लोग आरती की अग्नि से, ज्योति से ऊर्जा ग्रहण करते हैं, तो किस प्रकार आरती से ऊर्जा ग्रहण की जाएगी? आरती से जब आप ऊर्जा लेते हैं उस समय अपना सर ढका रखिए, दोनों हाथों को ज्योति के ऊपर घुमाइए और इसको अपने नेत्रों पर, अपनी आंखों पर और सर के मध्य भाग में लगाइएगा। आरती से जब आप ऊर्जा ले लेते हैं तो कम से कम 5 मिनट तक जल का स्पर्श नहीं करेंगे। बहुत सारे लोग आरती लेते हैं और आरती की थाल में दक्षिणा या पैसे डालते हैं, दक्षिणा दान पात्र में डाली जाएगी, आरती की थाल में पैसे डालना या दक्षिणा डालना उचित नहीं होगा। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। धनु राशि, करियर में लाभ के योग बन रहे हैं, शत्रु और विरोधी परास्त होंगे, दुर्घटना से सावधान रहिएगा, सूर्य देव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। मकर राशि, करियर में उन्नति होगी, संपत्ति का लाभ होगा, संतान पक्ष से सुख मिलेगा, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कुंभ राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, महत्वपूर्ण काम आपके बन जाएंगे,
अनाज का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। मीन राशि, करियर में लापरवाही ना करें, रिश्तों में समस्या हो सकती है, शाम से स्थितियों में सुधार होना शुरू हो जाएगा। गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। देखिए, सामान्य पूजा में आप रोज जब संध्या काल में पूजा करते हैं तो सामान्य दिनों में जो नारायण की आरती है, ओम जय जगदीश हरे, ये आरती रोज संध्या काल में पढ़िए, आपकी पूजा संपन्न होगी और प्रभु की कृपा आपको प्राप्त होगी। लेकिन अलग अलग स्थितियों परिस्थितियों में आप अलग अलग आरती भी कर सकते हैं। जैसे आप रेगुलरली अगर हनुमान जी की पूजा करते हैं तो आप हनुमान जी की आरती कर सकते हैं। शत्रु और विरोधी अगर ज्यादा परेशान कर रहे हों तो भगवान नृसिंह की आरती कर सकते हैं। अगर धन की प्राप्ति करना चाहते हैं, आर्थिक रूप से जीवन में कठिनाई है, तो माता लक्ष्मी की आरती करना आपके लिए बेहतर होगा। और एक समय की पूजा में केवल एक ही आरती करनी चाहिए, एक साथ 3-4-5 तरह की आरती नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जैसे ही आप पहली आरती करते हैं आपकी पूजा पूर्ण हो जाती है। उसके बाद बाकी आप कितनी भी आरती करते रहें उसका कोई लाभ आपको नहीं मिलेगा। तो एक वेला की पूजा में एक आरती ही करना हर दृष्टिकोण से सही है। अब जान लेते हैं आपके भाग्य को बेहतर बनाने के लिए एक लकी टिप। अगर आर्थिक स्थिति में, पैसे रुपए के हाल में लगातार कठिनाई बनी हुई है तो रोज सवेरे सूर्योदय के पहले पीपल के वृक्ष में अगर आप जल अर्पित करें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, पैसे रुपए की कठिनाई आपकी दूर हो जाएगी। अब जान लेते हैं दिनांक 4 अक्टूबर 2026 दिन रविवार का सक्सेस मंत्र क्या है। प्रातः काल सूर्य भगवान को जल अर्पित करिएगा, इसके बाद 9 बार ओम आदित्याय नमः इस मंत्र का जप करिएगा। अगर प्रातः काल ऐसा करते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो किस्मत कनेक्शन में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे। नमस्कार।

0: परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।

एक समय बद्रीनाथ विशालापुरी बद्रीनाथ में चार भाई सत्संग करने के लिए गए। कौन? सनत, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। जब चारों भैया विचरण करते हुए बद्रीनाथ की तरफ गए तो वहां सब संतों का मिलना हुआ, लेकिन चारों भाई को एक और मिले। कौन? इनके ही एक भाई श्री नारद जी महाराज। पर नारद जी का मुंह लटका हुआ, ऐसे कमजोर जैसे सूखी चुखी हुई आसाएं हो, आम हो, ऐसा मुंह लटका, एकदम आंखें घुससी गई, मन भजन में नहीं लग रहा। ऐसी हालत को देख करके चारों भाई परेशान हो गए। सनत कुमारों ने नारद जी को कहा,

नारद जी ये तुम्हारा मुंह क्यों लटका है? महात्माओं को टेंशन में नहीं रहना चाहिए, महात्माओं को तो अटेंशन में रहना चाहिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं, हमने देखे हैं, वो कथा में क्या हमारे सामने भी बैठेंगे तो ऐसे बैठेंगे जैसे घर से पिट के आया। अच्छा कुछ लोगों को ये लगता है, कुछ हमने पढ़े लिखे लोग देख, अच्छा जी मूर्खों से ज्यादा पढ़े लिखों में दिक्कत ज्यादा, ये बीमारी पढ़ो लिखों में ज्यादा पाई जाती, क्योंकि पढ़े लिखे लोगों को ये लगता है कि अगर हम ज्यादा हंसेंगे तो लोग हमको मूर्ख समझेंगे। उनको ये लगता है, इसलिए जितने भी ठहाका लगाते मिलेंगे वो हमारे जैसे मूर्ख ही मिलेंगे। पढ़े लिखे तो इतना कमजोर हंसते हैं कि सत्तू अगर सामने रख दो तो वो भी ना उड़े। इतने कमजोर। अच्छा उनको इसलिए ऐसा लगता क्योंकि उनको लगता है कि नहीं हमारा यही प्रोफेशन है, इसलिए इनको ज्यादा टेंशन। और जितने पढ़े लिखे लोग आत्महत्या करेंगे, स्ट्रेस में डिप्रेशन में रहेंगे, उतने हमारे जैसे मूर्ख कभी नहीं होते। जितनी गोलियां पढ़े लिखे खाते मूर्ख कभी नहीं खाते। क्यों? क्योंकि पढ़े लिखों को सब बुद्धि से सोचकर जीना पड़ता है, हमारे जैसे मूर्खों को दिल से सोचकर चलना पड़ता है। पढ़े लिखे दिमाग से चलते, हमारे जैसे मूर्ख लोग तो दिल से चलते हैं। अच्छा बुरा ना मानना, पढ़े लिखे लोग हमने देखे, यहां भी कुछ लोग बैठे हैं, आप लोगों को नहीं बोल रहे हम, कितनी भी बड़ी बात कह दे ये ताली भी बजाएंगे। हमने बहुत देखे, बड़े बड़े लोग देखे। अच्छा ये हंसेंगे भी तो मतलब ऐसे लगेगा जैसे रबड़ थोड़ा तनी हो फिर छोड़ दी गई हो। हमारे जैसे मूर्ख जो सो रहा हो वो जग जाए ऐसे हंसते। तो पढ़े लिखे लोगों को बड़ी दिक्कत है क्योंकि वो दिमाग से चलते, हमारे जैसे मूर्ख यहां से। नारद जी मुंह लटकाए खड़े। अच्छा लेकिन ये मूर्ख नहीं, देव ऋषि है, पर मुंह क्यों लटकाए है? अपनी चिंता के कारण। ये साधु के देखना जरा, लोग हमसे पूछते साधु कौन जो अपनी चिंता ना करके दूसरी की चिंता में और परमात्मा के चिंतन में रहे, उसी को साधु कहा जाता है। जगत की चिंता में और जगदीश के चिंतन में जो रहे उसे साधु कहा जाता है। साधु कौन जो जगत की चिंता में और जगदीश के चिंतन में। नारद जी चिंता में, किसकी चिंता, क्या बात है? अरे नारद जी तुम्हारी तो कोई झोपड़ी भी नहीं है कि लुट गई हो, पर मुंह लटकाए क्यों खड़े हो? नारद जी बोले भैया क्या बताएं, अरे संतों का धन क्या है, संतों का धन क्या, हम

नारद जी महाराज क्यों मुंह लटकाए हो? संतों का परम धन तो राधा नाम है, बोलो जय श्री राधे। भगवान का नाम ही परम धन है। नारद जी बोले भैया हम अपने चक्कर में मुंह नहीं लटकाए। फिर बोले हम इस लोक में मृत्यु लोक में आए थे सत्संग करने। अच्छा कितनी बड़ी बात है, सत्संग सब जगह नहीं मिलता, यही मिलता है। बोलो सीताराम, स्वर्ग में तुम्हें अप्सराएं मिल जाएंगी, खान पान बढ़िया मिलेगा, जो कल्पना करोगे सब मिलेगा, लेकिन सत्संग नहीं मिलेगा। अब तुम स्वर्ग में जाके कहो हमको बागेश्वर महाराज की हनुमंत कथा सुनाओ, ये संभव नहीं है स्वर्ग में। सत्संग करने के लिए तो आपको मृत्यु लोक में ही आना पड़ेगा। नारद जी बोले भैया हम आए थे इस लोक में सत्संग करने,

नारद जी बोले हम सब तीर्थ में गए, पुष्कर, प्रयाग, काशी, राम सेतु जहां पर है, रामेश्वरम, श्रीरंगम, श्रीरंगम सेतु बंदनम एवं आदेशु तीर्थेशु भ्रममाणे तस्ततः। सब तीर्थों में गए पर कहीं पर भी सत्संग प्राप्त नहीं हुआ। तो चारों भाई बोले क्यों? बोले कलयुग का ऐसा प्रभाव पड़ा, पापस्य खंडहा सा पाखंडहा, सब पाखंडी हो रहे हैं। अच्छा ये पाखंडी क्या है? पाप के ही एक खंड का नाम है पाखंड। पाप का एक खंड है मतलब जो है नहीं होने का दिखावा करे वही पाखंडी है। पाखंडी का अर्थ क्या है? आजकल ज्यादातर लोग ही पाखंडी है। हाँ, अरे पूछिए कैसे? असली ब्यूटी गायब है, ब्यूटी पार्लर की ब्यूटी लगी भई है। हाँ, ये भी तो गड़बड़ी है, ये भी गड़बड़ है। इसी का नाम तो जो है वो गायब। ज्यादा हमने अभी कुछ दिन पहले एक बात बोली थी सुविचार में कि दुनिया भारत के लोग जो होने का दिखावा करते हैं अगर वही बन जाएं तो भारत देश को सुधरने में समय नहीं लगेगा। नारद जी बोले भैया जहां देखो कलयुग की बड़ी विचित्र स्थिति, तपसी धनवंत दरिद्र ग्रही, कलि कौतुक तात न जात कही। कलयुग का बड़ा प्रभाव। अच्छा कलयुग का प्रभाव क्या? नारद जी बोले तर

कलयुग का प्रभाव कैसा? नारद जी बोले, भैया कन्या विक्रयणो, आजकल कलयुग में शादियां नहीं होती हैं, बेटियों को बेचा जाता है, लड़कों का मोल लगाया जाता है, जो जितना रेट देवे, 4 लाख में शादी तय हुई, 10 लाख वाला आ जाए तो 4 की कैंसल, 10 की तय। कन्या विक्रयणो लोभात, सभी लोभी हो गए, दंपति नाम च कलकनम। अच्छा, ये गृहस्थ का हाल नहीं है, महात्माओं का भी हाल है। नारद जी बोले, भैया बुरा ना मानना, पहले के जमाने में महात्मा जितने फक्कड़ होते थे उतने सिद्ध माने जाते, आज के जमाने में जितने वैभवशाली हो उतने सिद्ध माने जाते। 8-10 बंदूकों वाले, 40-50 गाड़ियां, 20-25 मकान के कमरा, VIP 5-स्टार होटल, गजब बाबा है, बहुत ऊंचे पहुंचे भय। भला ही साधना कुछ ना हो, केवल साधन ही साधन हो, पर बुरा ना मानना, आज का जमाना ही ऐसा है, दिखावा का बड़ा जमाना है। आजकल चेले भी फोटूबाज हो गए, फोटो ले तभी दीक्षा मानी जाती है। एक आदमी हमारे मंच पे चढ़ा, माला लेकर गया, गुरुजी माला, अंका चढ़ा दे भाई, डालो डालो डालो, कान पे टांग, यहां कान पे, और देख उस तरफ रहा, अरे हम की माला तो ढंग से डाल, गुरुजी फोटो हो जाए, हम के फोटो बाद में, पहले कान से तो निकाल के थे डाल। पुराना मानना, हम फोटो के विरोध में नहीं है, पर एक बात हमें बहुत चुभती है, हमने 4-5-6 दिन पहले बोली है, रील की जिंदगी में रियल का खोजना बड़ा कठिन हो गया है। रील की जिंदगी में रियल का खोजना बड़ा कठिन हो गया है। आजकल रियल कम दिखाई देते हैं। नारद जी यही कह रहे हैं, कलयुग का बड़ा प्रभाव,

0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते. खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है. तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे. देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में.
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है. कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए. इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है. इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए. वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है.
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें. गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर.
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है. इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे. तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर.
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं. खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर. खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है. खबरें कुछ जेब पर असर डालती है तो कुछ दिल को छू जाती है. ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे.
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है.
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं.
3: अविश्वास में विश्वास बसता है.
0: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है.
2: गुड न्यूज टुडे.
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते. खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है. तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे. देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में.
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है. कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए. इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है. इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए. वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है.
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें. गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर.
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते. खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है. तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे. देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में.
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है. कम से कम लोगों को.
6: अगर आपको या आपके परिवार में किसी को भी जोड़ों का दर्द है, यानी घुटने का दर्द, कमर दर्द, कंधे का दर्द, तो ये शो आपकी जिंदगी बदल सकता है. क्योंकि आज हम आपको कुछ ऐसे लोगों से मिलवाएंगे जिनकी उम्र 70 साल से 100 साल तक है, और इस उम्र में भी इन लोगों को जरा भी जोड़ों का दर्द नहीं है. यानी ये लोग इस उम्र में भी कहीं जाने के लिए, उठने बैठने के लिए किसी पर भी निर्भर नहीं है. एक लाइन में कहें तो ये लोग इस उम्र में पूरी तरह आत्मनिर्भर है.
7: मैं पिछले 1 साल से आयुर्वेदिक महाशक्तिशाली फॉर्मूला ले रहा हूँ. फौजी 360 इसका नाम है. फौजी 360 लेने के बाद मेरे जोड़ों में, यानी घुटने, कमर, कहीं भी जरा भी दर्द नहीं, और अब पूरे शरीर में चुस्ती फुर्ती गजब की बनी रहती है.
8: पर जब से ये फौजी 360 किया है ना, शरीर में जरा भी दर्द नहीं है. अब घुटने में भी दर्द नहीं है. कभी पहाड़ पे जाना हो, कहीं चलना हो, बिल्कुल सोचना नहीं पड़ता.
9: मैंने जब से ये फौजी 360 लिया है, मैंने जरा भी घुटनों में दर्द नहीं है. अब मैं जिम करती हूँ, एक्सरसाइज करती हूँ.
6: फौजी 360 को अब तक जितने भी लोगों ने इस्तेमाल किया है, उन सभी लोगों को जोड़ों के पुराने से पुराने दर्द, जैसे घुटने का दर्द, कमर दर्द, कंधे के दर्द से पूरी तरह आजादी मिली है. और ये दावा हम नहीं, वो लोग खुद कर रहे हैं जो फौजी 360 इस्तेमाल कर चुके हैं.
10: इस आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट को लेने के बाद किसी भी जोड़ में दर्द नहीं, और पूरे दिन कमाल की चुस्ती बनी रहती है.
11: और सबसे अच्छी बात मुझे लगी कि इसे हर बंदा ले सकता है. डायबिटीज वाला मरीज ले सकता है, ब्लड प्रेशर वाला मरीज ले सकता है, और मेरा खुद का दर्द खत्म हुआ यार. इसीलिए मैं खुल के बताता हूँ कि ये फौजी गजब की चीज है.
6: फौजी 360 के सिर्फ एक कोर्स के बाद 80-90 साल के बुजुर्ग भी जवानों की तरह सीढ़ियां चढ़ रहे हैं, दौड़ रहे हैं, पोते पोतियों को गोदी में लिए घंटों उनके साथ खेल रहे हैं।
12: करीब 8 महीने पहले फौजी 360 का सिर्फ एक कोर्स लिया था, उसके बाद कभी भी जोड़ों में दर्द ही नहीं हुआ, कभी भी कोई तेल स्प्रे की जरूरत ही नहीं पड़ी। ये इससे सस्ता और इससे असरदार और कोई भी दूसरा तरीका ही नहीं है जोड़ों के दर्द को ठीक करने।
6: ये बात सुनने में बड़ी हैरान करने वाली है, पर इन बुजुर्गों ने इंटरनेट पर प्रूफ के साथ वीडियोस भी अपलोड करे हैं, जिसे देखकर पूरी दुनिया हैरान है और जोड़ों के दर्द के तेल और स्प्रे बेचने वाले दुकानदार परेशान है, क्योंकि फौजी 360 लेने के बाद कोई भी व्यक्ति कभी भी इन जोड़ों के दर्द को ठीक करने वाली दवाएं जैसे तेल, गोली और स्प्रे के चक्कर में दोबारा कभी नहीं फंसेगा।
13: 3 साल से आंटी जी के घुटनों में इतना दर्द था कि इनका घुटना मुड़ता भी नहीं था, जरा भी नहीं मुड़ता था। और आज की स्थिति देखते हैं आप, ये देखिए इनका पूरा घुटना मुड़ रहा है, हॉस्पिटल खुद चल के आई हैं और ये सब कमाल हुआ है फौजी 360 से। हम रिपोर्ट से समझते हैं, देखिए इनके पुरानी रिपोर्ट है, पूरी घुटने जकड़ चुके थे, जाम हो चुके थे, जिसके कारण घुटनों में पूरी तरीके से मूवमेंट खत्म हो गया था। और आज की डेट है जब से इन्होंने फौजी 360 यूज करना शुरू किया है, उसके बाद उनके घुटनों में एक तरीके से नई जान आई है। और हमें इतना अच्छा लगता है जब हम देखते हैं कि लोगों के पैसे बच रहे हैं और लोगों को फौजी 360 जैसे नेचुरल प्रोडक्ट से आराम मिल रहा है, तो बहुत अच्छा लगता है। तो हम यही कहना चाहते हैं कि जिन भी लोगों को जोड़ों से संबंधित कोई भी समस्या है, एक बार फौजी 360 जरूर ट्राई करें।
6: फौजी 360 के इफेक्ट्स और रिजल्ट्स को जानने के लिए हमने बहुत से एक्सपर्ट से बात करी और लगभग सभी का यही कहना था कि फौजी 360 जोड़ों के दर्द जैसे घुटने का दर्द, कमर का दर्द, कंधे के दर्द के लिए राम बाण की तरह काम करता है।
14: किट में मिलने वाले जो दूसरे प्रोडक्ट होते हैं जैसे तेल स्प्रे, ये सिर्फ ऊपरी और टेम्परेरी राहत देते हैं, और वहीं फौजी 360 शरीर के अंदर जाकर जोड़ों को, हड्डियों को, मांसपेशियों को मजबूत बनाता है और दर्द को पूरी तरह खत्म कर देता है।
15: ये साहिल जी हैं, 2 महीने पहले आए थे, कह रहे थे मेरे दोनों घुटने बदल दो क्योंकि बहुत परेशानी हो रही थी इन्हें चलने फिरने में। मैंने कहा हम पैसे बर्बाद नहीं करेंगे, आप फौजी 360 का एक कोर्स लेके देखिए, फिर मिलते हैं। आज आए हैं, बताइए सर कैसे रिजल्ट मिले आपको, क्या स्थिति है अभी?
14: पहले तो जितना धन्यवाद आपको दूं उतना का मैं डॉक्टर साहब, क्योंकि पूरा चल लेता हूं मैं मोटरसाइकिल चलाने लगा हूं वापस से अपनी, अब बिल्कुल भी बुरी स्थिति नहीं है, एकदम बिल्कुल दर्द खत्म हो चुका है। अब तो आप मुझे बोलो 5 किलोमीटर चले जाओ, मैं बिल्कुल चले जाऊंगा, अभी भी सीढ़ी चढ़ के आया हूं हॉस्पिटल में।
6: नीचे दिख रहे फोन नंबर पर कॉल करके आप फौजी 360 सीधा इस आश्रम से अपने घर मंगा सकते हैं। कॉल करने पे आप हेल्थ एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं, अपनी समस्या उन्हें समझा सकते हैं, फिर चाहे आपको घुटने का दर्द हो, कमर का दर्द हो या कंधे का दर्द हो या किसी भी तरह का जोड़ों का दर्द हो, आप अपनी समस्या हेल्थ एक्सपर्ट के साथ शेयर करें और फौजी 360 इस आयुर्वेदिक केंद्र से सीधे आपके घर तक भेजा जाएगा।
12: 2 साल से घुटने और कमर के कारण पलंग पकड़ लिया था, सब पलंग पे ही हो रहा था, अगना मुतना भी पलंग पे हो रहा था, जरा भी नहीं चल पाता था। 3 महीने से ये फौजी 360 पाउडर ले रहा हूँ, अब खुद से उठ जाता हूँ, बाथरूम हो जाता हूँ, चल फिर लेता हूँ, बहुत आराम है, बहुत राहत है।
6: फौजी 360 के इस दुर्लभ फॉर्मूले को सिर्फ सुबह और शाम पानी के साथ लेना होता है और पहले डोज से ही फौजी 360 के रिजल्ट्स दिखने लगते हैं। फौजी 360 जोड़ों के बीच में खत्म हो चुकी चिकनाहट को रिस्टोर करने में मदद करता है, जॉइंट्स को अंदर से मजबूत बनाता है और फिर दर्द को पूरी तरह खत्म कर देता है।
10: रोज 150 सीढ़ी चढ़कर मैं मेरे भोले बाबा के मंदिर जाती हूँ, जरा भी दर्द नहीं है मेरे घुटनों में। और ये कमाल किसी तेल या स्प्रे से नहीं हुआ है, क्योंकि उनसे कुछ होता ही नहीं है, मुझे तो फायदा हुआ है फौजी 360 से। अरे कमाल का ट्रीटमेंट है, इस आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट को लेने के बाद किसी भी जोड़ में दर्द नहीं है और पूरे दिन कमाल की चुस्ती बनी रहती है।
6: दुनिया के किसी भी तेल या स्प्रे के साथ कभी भी कोई गारंटी नहीं मिलती, यानी दर्द खत्म होगा या नहीं इस बात की कोई गारंटी नहीं, लेकिन फौजी 360 के साथ 15 दिनों की मनी बैक गारंटी आती है। यानी अगर आपने फौजी 360 इस्तेमाल किया और किसी भी कारण से आपको रिजल्ट्स नहीं मिले तो आप सिर्फ एक फोन करके अपने पूरे पैसे वापस ले सकते हैं।
16: 15 साल पहले चिकनगुनिया हुआ था, तब से शरीर के हर कोने में दर्द बना रहता था, होम्योपैथी, फिजियोथेरेपी, ये तेल वो स्प्रे सब ट्राई कर लिया, मगर आराम मिला 3 महीने पहले इस फौजी 360 से। अब कसम खा के बता रहा हूँ, जरा भी दर्द नहीं है शरीर में।
10: घुटने के दर्द के कारण मैं चल भी नहीं पाती थी, पर ये जब से फौजी 360 लिया है ना, बिल्कुल भी दर्द नहीं है। अब देखो मैं घर का पूरा काम खुद कर लेती हूँ, जरा भी दर्द नहीं है।
17: 5 साल से तो मैंने नमाज भी अदा नहीं की थी क्योंकि घुटना मेरा मुड़ता ही नहीं था। अब घुटने बदलवाने के लिए जितने पैसे भी नहीं थे कि घुटने बदलवाने इस उम्र में। फिर ये फौजी 360 जब से लेना शुरू किया है, अब मैं खुद चल लेता हूँ, खुद का काम पूरी तरीके से कर लेता हूँ, और जो मैंने पलंग पकड़ लिया था ना वो वहाँ से बच गया हूँ मैं। अब ये तो ताकत है फौजी 360 की, अल्लाह की दुआ से कम नहीं है फौजी 360। अब खुद का काम मैं खुद से करता हूँ बिल्कुल।
18: हमारे नेपाल में पहाड़ी इलाका है तो चलना फिरना बहुत होता है, जोड़ों में बहुत दर्द का प्रॉब्लम शाप को रहता है, पर हमने कभी तेल या स्प्रे नहीं लगाते, कुछ नहीं होता उससे। सारे लोग मेरी उम्र के यहाँ फौजी 360 लेते हैं, बहुत कमाल का दवाई है, बिल्कुल भी जोड़ों में दर्द नहीं है इसको लेने से।
6: अगर आप चाहते हैं कि आपके जोड़ों का दर्द अंदर से पूरी तरह ठीक हो सके और आपको पूरी तरह आराम मिल सके, तो सिर्फ एक कॉल करके इस कमाल के आयुर्वेदिक फॉर्मूले फौजी 360 को अपने घर मंगा सकते हैं और जोड़ों के दर्द से पूरी तरह आजादी पा सकते हैं।
19: बॉलीवुड का एक गाना है ना, लंदन देखा, पेरिस देखा और देखा जापान। तो मेरी कहानी भी ऐसी है कि मैं दुनिया के लगभग बहुत से बड़े बड़े देशों में रहा हूँ और मैंने सब जगह ये जोड़ों के दर्द, स्पेशली घुटने के दर्द का इलाज कराया, बट कहीं भी वैसा रिजल्ट नहीं मिला। 2 years back when we shifted to India, तब ये फौजी 360 के बारे में पता पड़ा, we started using it। मुझे और मेरी वाइफ दोनों को इतना कमाल का रिलीफ मिला कि ऐसा रिलीफ किसी भी ट्रीटमेंट से आज तक नहीं हुआ था।
6: फौजी 360 के बारे में और डिटेल में जानने के लिए हमारी टीम उस आयुर्वेदिक आश्रम तक पहुंची जहां फौजी 360 बनाया जाता है और उन एक्सपर्ट से बात करी और वो सीक्रेट जानने की कोशिश करी कि कैसे सिर्फ एक फॉर्मूले से लोगों के जोड़ों का दर्द, जैसे घुटने का दर्द, कमर का दर्द, कंधे का दर्द, पूरी तरह ठीक हो रहा है।
20: इसमें कुछ ऐसी औषधियां हैं जो आपकी बोन्स को मजबूत बनाता है, जो आपके लिगामेंट में जो फ्लूइड की कमी हो गई है ये उसे दोबारा रिस्टोर करने में मदद करता है, और साथ ही दूसरी दवाओं से ये बेहतर इसीलिए है कि इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इसे डायबिटिक पेशेंट ले सकता है, इसे ब्लड प्रेशर का मरीज ले सकता है, क्योंकि ये पूरी तरह सुरक्षित है और आपको पहले दिन से फायदा दिखने लगेगा। ये ताकत है फौजी 360 की। बस यही कारण था कि हमने सोचा कि अब समय आ चुका है लोगों की, जनता की सेवा करने का और घर घर इसे भिजवाने का। तो जो आप स्क्रीन पर नंबर देख रहे हैं, आप इस पर फोन कर सकते हैं, हमारे केंद्र पर डायरेक्ट फोन होगा, आप अपनी समस्या बताइए। अगर आपको बात सही लगती है, फौजी 360 आपको लगता है कि हाँ अब समय है कि जोड़ों के दर्द को पूरी तरह ठीक करना है, तो आप इसे मंगा सकते हैं। और साथ ही इसमें कुछ ऐसी औषधियां भी हैं जो आपको पूरे समय आपके शरीर में चुस्ती बनाए रखता है।
6: फौजी 360 के साथ 15 दिनों की मनी बैक गारंटी आती है, यानी अगर आपने फौजी 360 इस्तेमाल किया और किसी भी कारण से आपको रिजल्ट्स नहीं मिले तो आप सिर्फ एक फोन करके अपने पूरे पैसे वापस ले सकते हैं।
13: फौजी 360 मार्केट में मिलने वाले दूसरे जो पेन किलर ऑयल्स होते हैं, स्प्रे होते हैं, उनसे कैसे अलग है मैं आपको साइंटिफिकली समझाता हूँ कि ऐसा क्या है इस ट्रीटमेंट में जो इसके रिजल्ट्स बहुत ही शानदार है। देखिए, कोई भी तेल या स्प्रे कैसे काम करता है सबसे पहले मैं आपको वो बताता हूँ। आपके दर्द वाले हिस्से पे जब आप तेल लगाते हैं तो ये बाहर से आपके उस पर्टिकुलर एरिया को सुन कर देता है, मतलब आपके बॉडी के अंदर दर्द तो रहता है, उस जोड़ के अंदर दर्द तो है, और वहीं फौजी 360 जो है ये अंदर से काम करता है, क्योंकि जब आप इसे कंज्यूम करते हैं बॉडी को वो सारे न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है जो जोड़ों को मजबूत बनाता है अंदर से, जो जोड़ों की चिकनाहट कम हो गई है ना ये उसको दोबारा लौटाता है। तो ये एक अंदर से काम करने वाली चीज है, यानी ये पूरी तरह से जोड़ों को अंदर से ठीक करता है, और वहीं तेल और स्प्रे सिर्फ टेम्परेरी राहत देते हैं। तो आप अगर अभी भी जोड़ों के दर्द के लिए तेल या स्प्रे यूज कर रहे हैं तो आप आज से ही वो सब बंद कीजिए, क्योंकि ये सिर्फ पैसे बर्बाद करने की बात है और टेम्परेरी रिलीफ की बात है। अगर आप पूरी तरह से जोड़ों को अंदर से मजबूत बनाना चाहते हैं, ठीक करना चाहते हैं, तो आप एक बार ये फौजी 360 जरूर ट्राई करें।
21: पिछले महीने मैं बाथरूम में स्लिप हो गई थी तो बहुत दर्द रहता था पेट में, डॉक्टर ने कहा कुछ L1 L2 का कुछ तो बताया था, पर इन्होंने फौजी 360 लाके दिया और उससे इतना आराम हुआ है कि अब जरा भी दर्द नहीं है। मम्मी पापा जी ने भी लेना शुरू किया है और उनको भी जो घुटनों में दर्द था उन्हें भी राहत मिली है। तो हर घर में मुझे लगता है ये फौजी 360 होना ही चाहिए।
8: मैं तो 12 महीने ही केदारनाथ बाबा के चरणों में ही रहता हूँ और यहाँ इतनी ठंड पड़ती है कि ठंड के चक्कर में पूरे समय शरीर अकड़ा हुआ रहता है, सारे जोड़ में बड़ा दर्द बना रहता था, पर जब से ये फौजी 360 किया है ना शरीर में जरा भी दर्द नहीं है। अब घुटने में भी दर्द नहीं है, कभी पहाड़ पे जाना हो, कहीं चलना हो, बिल्कुल सोचना नहीं पड़ता, बर्फ में भी चल लेता हूँ, बिल्कुल भी दर्द नहीं है। ये ताकत है इस आयुर्वेदिक फौजी 360 की।
6: फौजी 360 के इस दुर्लभ फॉर्मूले को सिर्फ सुबह और शाम पानी के साथ लेना होता है और पहले डोज से ही फौजी 360 के रिजल्ट्स दिखने लगते हैं। फौजी 360 जोड़ों के बीच में खत्म हो चुकी चिकनाहट को रिस्टोर करने में मदद करता है, जॉइंट्स को अंदर से मजबूत बनाता है और फिर दर्द को पूरी तरह खत्म कर देता है।
4: टीवी पे फौजी के बारे में देखा तो मैंने फोन करके फौजी 360 को सीधा घर मंगा लिया, क्योंकि 3 साल से कमर में इतना भयंकर दर्द था कि घर के सारे कामों के लिए मैं पूरी तरीके से बाइयों पे निर्भर हो चुकी थी। सिर्फ 15 दिन हुए हैं और अब बिल्कुल भी दर्द नहीं है, कमर में जरा भी दर्द नहीं है, इतना शक्तिशाली है ये फौजी 360।
5: बिना सहारे के मैं 2 कदम भी नहीं चल पाती थी, पूरे समय बहू और बेटे की मदद ही लेनी पड़ती थी, पर जब से ये फौजी 360 लिया है कमर में घुटने में जरा भी दर्द नहीं है। अब सीढ़ियां चढ़ जाती हूँ, उतर जाती हूँ, चल लेती हूँ आराम से, इधर का सारा काम कर लेती हूँ, अब दर्द में पूरी तरीके से राहत है।
22: मेरी उम्र 88 साल है, रोज 5 किलोमीटर पैदल चलता हूँ, लेकिन फिर भी जरा भी दर्द नहीं है। ये शक्ति है फौजी 360 की।
6: नीचे दिख रहे फोन नंबर पर कॉल करके आप फौजी 360 सीधा इस आश्रम से अपने घर मंगा सकते हैं। कॉल करने पे आप हेल्थ एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं, अपनी समस्या उन्हें समझा सकते हैं। फिर चाहे आपको घुटने का दर्द हो, कमर का दर्द हो, कंधे का दर्द हो, या किसी भी तरह का जोड़ों का दर्द हो, आप अपनी समस्या हेल्थ एक्सपर्ट के साथ शेयर करें और फौजी 360 इस आयुर्वेदिक केंद्र से सीधे आपके घर तक भेजा जाएगा।
7: 1 साल पहले दोनों घुटने बदलने के लिए बोल दिया था, मगर मैंने घर बैठे आयुर्वेद के एक फॉर्मूले से अपने घुटने और जोड़ों के दर्द को पूरी तरह ठीक किया है और अब मैं वो सब कर सकता हूँ जो जवान आदमी भी नहीं कर सकता। आप में दम हो, आप करके बताओ। जोड़ों के दर्द के लिए जो भी लोग तेल या स्प्रे लगाते हैं ना, उन्हें आज से ही ये सब बकवास चीजें बंद करना चाहिए। इससे कुछ नहीं होता है, क्योंकि जोड़ों के दर्द का इलाज अंदर से होता है। फौजी 360 लेने के बाद मेरे जोड़ों में यानी घुटने कमर कहीं भी जरा भी दर्द नहीं और अब पूरे शरीर में चुस्ती फुर्ती गजब की बनी रहती है।
6: फौजी 360 के इस दुर्लभ फॉर्मूले को सिर्फ सुबह और शाम पानी के साथ लेना होता है और पहले डोज से ही फौजी 360 के रिजल्ट्स दिखने लगते हैं। फौजी 360 जोड़ों के बीच में खत्म हो चुकी चिकनाहट को रिस्टोर करने में मदद करता है, जॉइंट्स को अंदर से मजबूत बनाता है और फिर दर्द को पूरी तरह खत्म कर देता है।
8: पर जब से ये फौजी 360 किया है ना, शरीर में जरा भी दर्द नहीं है, अब घुटने में भी दर्द नहीं है, कभी पहाड़ पे जाना हो, कहीं चलना हो, बिल्कुल सोचना नहीं पड़ता।
9: मैंने जब से ये फौजी 360 लिया है मैनु जरा भी घुटनों में दर्द नहीं है, अब मैं जिम करती हूँ, एक्सरसाइज करती हूँ।
6: नीचे दिख रहे फोन नंबर पर कॉल करके आप फौजी 360 सीधा इस आश्रम से अपने घर मंगा सकते हैं। कॉल करने पे आप हेल्थ एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं, अपनी समस्या उन्हें समझा सकते हैं। फिर चाहे आपको घुटने का दर्द हो, कमर का दर्द हो, या कंधे का दर्द हो, या किसी भी तरह का जोड़ों का दर्द हो, आप अपनी समस्या हेल्थ एक्सपर्ट के साथ शेयर करें और फौजी 360 इस आयुर्वेदिक केंद्र से सीधे आपके घर तक भेजा जाएगा।
5: करीब 8 महीने पहले फौजी 360 का सिर्फ एक कोर्स लिया था, उसके बाद कभी भी जोड़ों में दर्द ही नहीं हुआ, कभी भी कोई तेल स्प्रे की जरूरत ही नहीं पड़ी। ये इससे सस्ता और इससे असरदार और कोई भी दूसरा तरीका ही नहीं है जोड़ों के दर्द को ठीक करने का।
6: नीचे दिख रहे फोन नंबर पर कॉल करके आप फौजी 360 अपने घर मंगा सकते हैं।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
23: और दुर्भाग्य कहता है
0: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर, सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
23: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से
11: एवरेस्ट दिखा ला, सही दिखा सही लाल।
14: एशियन गेम्स में तिरंगा लहराकर महिलाओं की टीम जापान से लौटी, स्वदेश रांची एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत, कैप्टन सलीमा टेटे ने अगवानी की। दिल्ली से लेकर गुवाहाटी तक आईएएफ मैराथन और हाफ मैराथन का आयोजन, फौजियों के साथ आम लोग भी शामिल, देशभक्ति के साथ फिटनेस का संदेश। भदोही में आज से शुरू होने जा रहा है इंडिया कार्पेट एक्सपो, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुभारंभ करेंगे, 7 अक्टूबर तक 65 देशों से जुटेंगे खरीदार। त्योहारों से पहले घाटी में सुरक्षा चाक चौबंद, जम्मू कश्मीर की स्पेशल टीम ने चलाया सर्च ऑपरेशन, जवान के साथ डॉग स्क्वाड भी शामिल। लखनऊ की सड़कों पर दौड़ी विंटेज कार, ब्रेस्ट कैंसर के खिलाफ जागरूकता फैलाने का लक्ष्य, बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।

0: दिखी रही है। अब बारी रोबोट आर्मी की है, यानी यूं कहें कि जंग के मैदान में हथियारों से लैस रोबोट्स युद्ध लड़ते दिखाई दे सकते हैं। यूक्रेन इस वक्त रोबोटिक हथियारों की सबसे बड़ी लेबोरेटरी बन चुका है, जहां तमाम तरह के रोबोट्स, या कहें कि युद्ध के मैदान में सीधा रोबोट्स को ही उतारा जा रहा है, वहीं पर परीक्षण हो रहा है और यही अब जंग के मैदान में मोर्चा संभाले हुए हैं। यूक्रेन की रक्षा मंत्री ने सीधे तौर पर यह कहा है कि यूक्रेन का मकसद आने वाले समय में रोबोट्स की एक बड़ी आर्मी तैयार करना है, जो रण क्षेत्र में दुश्मन का मुकाबला कर सके। आज दुनिया के कई देश सेना का रोबोटाइजेशन करने में जुटे हैं, जिसमें यूक्रेन भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। यूक्रेन ने रूस पर हमला और अपने सैनिकों की जान बचाने के लिए रोबोट आर्मी नाम का नया कार्यक्रम शुरू किया है, आर्मी ऑफ रोबोट प्रोजेक्ट।
1: यूक्रेन के पूर्व रक्षा मंत्री के द्वारा शुरू किया गया आर्मी और रोबोट्स एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है, जिसमें कि रोबोट्स का इस्तेमाल सोल्जर्स के बदले में किया जाएगा। अभी शुरुआत में इनका इस्तेमाल कैजुअल्टी इवैक्यूएशन, माइन लगाना, माइन निकालना, मशीन गन लोड करना, आगे सर्विलेंस सिस्टम लगाना, जहाँ जहाँ खतरा हो सकता है वहाँ पर इनका इस्तेमाल करके जो उन सोल्जर्स हैं उनकी कैजुअल्टी को कम किया जा सकता है, खास तौर से ऐसे समय में जबकि यूक्रेन के पास सोल्जर्स की कमी हो रही है, 4.5 साल से ज्यादा समय से लड़ाई चल रही है और इनकी काफी कैजुअल्टीज हो चुकी है।
0: यूक्रेन के पूर्व रक्षा मंत्री मिखाइलो फेदोरोव ने 26 सितंबर को आर्मी ऑफ रोबोट प्रोजेक्ट का ऐलान करते हुए कहा, युद्ध के मैदान में ऐसे रोबोट तैनात करने की योजना है जो जोखिम भरे काम कर सके। प्रोजेक्ट में इंसानों जैसे दिखने वाले ह्यूमनॉइड रोबोट्स बनाए जाएंगे। ये मशीन गन में गोलियां भरने, बैटरी बदलने और सेंसर लगाने जैसे काम करेंगे। इससे सैनिकों को हथियारों और दूसरे उपकरणों की देखरेख के लिए सीधे मोर्चे पर जाने की जरूरत नहीं होगी। यूक्रेन की आर्मी ऑफ रोबोट प्रोजेक्ट का सबसे महत्वाकांक्षी लक्ष्य ट्रेंच यानी कि खाई और फॉरवर्ड पोस्ट पर सैनिकों की जगह इंसान जैसे दिखने वाले ह्यूमनॉइड रोबोट्स को तैनात करना होगा। युद्ध के समय सेना के लिए रोबोट्स एक तरीके से बिल्कुल वही काम करते हैं जो हमारे सेना के जवान करते हैं, यानी कि ह्यूमनॉइड रोबोट्स हर वो काम कर सकते हैं जो रण क्षेत्र में एक सैनिक करता है। फिर चाहे वो बंकर को तबाह करना हो, दुश्मन की इंफॉर्मेशन लेना हो, किसी घर की छत पर चढ़ना हो, सीढ़ियों पर चढ़ना हो, हर तरह के काम ह्यूमनॉइड रोबोट्स कर रहे हैं और यही एक बड़ी वजह है कि आने वाले समय में ह्यूमनॉइड रोबोट्स की एक बड़ी फौज तैयार की जा रही है जो आपको रण क्षेत्र में देखने को मिलेगी। और सबसे बड़ी और खास बात यह है कि ये बिल्कुल उसी तरीके से काम करते हैं जैसे इन्हें कमांड दी जाती है।
2: ह्यूमनॉइड रोबोट्स इंसानों की तरह बंदूकें पकड़ सकते हैं, ट्रिगर दबा सकते हैं, मिलिट्री टैंकों को ड्राइव कर सकते हैं और टैंकों के अंदर बैठकर उन्हें ऑपरेट भी कर सकते हैं। केमिकल, बायोलॉजिकल या परमाणु हमले वाले इलाकों में जहां इंसानों का जाना तुरंत मौत को दावत देना है, ये रोबोट्स आसानी से काम कर पाएंगे।
1: ह्यूमनॉइड रोबोट्स की एंट्री एक बड़ा गेम चेंजर साबित होगा, क्योंकि जो ह्यूमनॉइड रोबोट्स है ये देखा जाए तो एक इंसान की तरह से इनके पैर, हाथ, सर, आंखें सभी तरह से काम करते हैं। और क्योंकि ज़्यादातर हमारे डिफेंस सिस्टम्स इंसानों की हाइट के हिसाब से बने, हमारे लिए काम करने के हिसाब से बने, ऐसे में जब ये सीढ़ी चढ़ना, उतरना, कहीं पे जाना, अंदर घुसना, कमरे के अंदर जाना, वहाँ काम करना, फायरिंग करना, इस तरह के काम करने में सक्षम होते हैं तो काफ़ी मदद मिल जाएगी उस सेना को जिसके पास ये ह्यूमनॉइड रोबोट्स होंगे। ये अभी माइन लगाना, माइन निकालना, कैजुअल्टी इवैक्यूएशन करना, सर्विलेंस सिस्टम लगाना, मशीन गन लोड करना, इस तरह के सपोर्टिंग काम्स करने में सक्षम है जो कि कैजुअल्टीज को बचाएंगे।
0: दावा ये किया जा रहा है कि रूस यूक्रेन जंग में अब रोबोट सैनिक भी मोर्चा संभाल रहे हैं। यूक्रेन ने पहली बार बड़े पैमाने पर सुसाइड जमीनी रोबोट्स का इस्तेमाल कर रूसी सेना पर हमला करने का दावा किया।
2: यूक्रेन की थर्ड

0: आर्मी कॉप्स के मुताबिक मई से सितंबर के आखिरी सप्ताह तक चले ऑपरेशन विवाल्डी में रोबोट और ड्रोन का इस्तेमाल किया गया। रोबोट और ड्रोन की मदद से 15,700 से ज्यादा मिशन पूरे किए गए और रूस के 3,000 सैनिकों को मार गिराया गया। वहीं पूर्वी यूक्रेन के डोनेस्क इलाके में 5 गांव और 3 बस्तियों पर दोबारा कंट्रोल हासिल किया। अगर रूस का दावा सही है तो फिर इसका संकेत साफ है कि रूस यूक्रेन युद्ध में अब जमीनी रोबोट युद्ध का हिस्सा बनते जा रहे हैं। थर्ड आर्मी कॉर्प्स के कमांडर जनरल आंद्री वेलेजसी ने कहा है कि यूक्रेन दुनिया में पहली बार ड्रोन से रोबोट को दुश्मन के इलाके में उतारकर हमला कर रहा है। दुश्मन को आसमान से हमले का खतरा रहता है, जमीन से नहीं। रूसी सैनिक को वहां से हमले का सामना करना पड़ा जहां उन्हें इसकी उम्मीद तक नहीं थी। यूक्रेन ने ऑपरेशन विवाल्डी में पहली बार पहियों वाले अनमैन्ड ग्राउंड व्हीकल यानी जमीनी रोबोट्स को मोर्चे पर उतारा। हाइना के नाम से जाने जाने वाले 4 पहियों वाले यूजीवीज विस्फोटकों से भरे थे। ऑपरेशन विवाल्डी दरअसल यूक्रेन की थर्ड आर्मी कॉर्प्स की तरफ से रशिया के खिलाफ चलाया गया एक ऑपरेशन था जो कि डोनेस्क क्षेत्र में चलाया गया था और इसमें पहली बार हाइना यूजीवी व्हीकल्स का इस्तेमाल किया गया। दरअसल हाइना एक बहुत ही फुर्तीला यूजीवी व्हीकल है और ये 4 व्हीलर ग्राउंड कैमिकेज रोबोट है जिसे यूक्रेन डिफेंस टेक क्लस्टर ब्रेव 1 की यूजीवी लेबोरेटरी की तरफ से विकसित किया गया है। ऑपरेशन विवाल्डी के दौरान यूक्रेनी सेना की थर्ड आर्मी कॉर्प्स ने रूसी ठिकानों को तबाह करने के लिए हाइना यूजीवीज का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया। 16 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम रफ्तार से चलने की ताकत के साथ हाइना यूजीवीज 20 किलोमीटर तक की दूरी तय कर सकता है। आकार में बेहद कॉम्पैक्ट होने के बावजूद ये 20 से 26 किलोग्राम तक का भारी विस्फोटक ले जाने में सक्षम है। ये दुश्मन के इलाके में जाकर घात लगाकर बैठ सकता है और 30 से 60 घंटे तक एक्टिव रहकर सही मौके पर खुद को विस्फोट से उड़ा भी सकता है। हाइना यूजीवीज को बंकर और डगआउट ब्लास्टर के तौर पर जाना जाता है। ये दुश्मन के अग्रिम चौकियों, भारी किलेबंदी वाले बंकरों और अंडरग्राउंड डगआउट में रेंगते हुए चुपके से पहुंच जाते हैं। फिर इसे रिमोट कंट्रोल से ब्लास्ट कर दिया जाता है जिससे दुश्मन को भारी नुकसान पहुंचता है।
1: हाइना यूजीवी यूक्रेन का एक बड़ा ही जबरदस्त डेवलपमेंट है जो कि एक 4 पहियों वाली गाड़ी को ड्रोन के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, दूर से कंट्रोल करते हैं, जो कि दुश्मन के बंकर के पास, उनके मोर्चे के पास जाकर फट जाता है, अटैक करता है और उसको बर्बाद कर देता है। दूसरी बात यह कि इसका इस्तेमाल लॉजिस्टिक के लिए भी हो सकता है, इसमें सामान भी ले जाया जा सकता है। तीसरी बात यह है कि ये तकरीबन 16 किलोमीटर की स्पीड से चल जाता है, साथ साथ में सकरा होने के कारण और पहियों होने के कारण ये क्रॉस कंट्री और पतले रास्तों से, सकरे रास्तों से भी निकलने में सक्षम है। तो ये काफ़ी मदद साबित हो रही है इसमें, क्योंकि आगे बढ़कर दुश्मन के इलाके में बुलेट प्रूफ बॉडी होने के साथ साथ ये उनके मोर्चों के पास जाके उनको भारी संख्या में कैजुअल्टी कर रहा है।
0: हाइना यूजीवीज का ग्राउंड क्लियरेंस और बनावट ऐसी है कि ये थर्मल कैमरे और रडार की नजर में आसानी से नहीं आ पाते। इसका मॉड्यूलर हल डिजाइन इसे उबड़ खाबड़ रास्तों, मलबे और शहरी इलाकों की तंग गलियों में तेजी से मुड़ने और आगे बढ़ने की आजादी देता है। हाइना रोबोट्स को दुश्मन के इलाके में ले जाकर स्टैंड बाय मोड में छोड़ा जा सकता है। जैसे ही दुश्मन सैनिक या फिर व्हीकल इसके करीब आते हैं, दूर बैठा ऑपरेटर इसे तुरंत एक्टिव कर देता है और हमला हो जाता है। जंगल का शिकारी हाइना यानी कि लकड़बग्घा, और इस रोबोट को बिल्कुल उसी के शिकार करने की रणनीति के तहत ही तैयार किया गया है। ठीक जैसे लकड़बग्घा झुंड में हमला करता है, उसी तरीके से हाइना रोबोट्स को 5-5 की टुकड़ियों में यूक्रेनी सेना को दिया जाता है और जब ये जंग के मैदान में उतरते हैं, अलग अलग दिशाओं में हमला करते हैं, तो दुश्मन के लिए इनका मुकाबला कर पाना बेहद मुश्किल हो जाता है। ऑपरेशन विवाल्डी में यूक्रेनी सेना की थर्ड आर्मी कॉर्प्स ने जिस तरह से अनमैन्ड ग्राउंड व्हीकल्स का इस्तेमाल किया है, उसने मॉडर्न वॉरफेयर का पूरा चेहरा बदल दिया है।
1: ऑपरेशन विवाल्डी में ड्रोन के इस्तेमाल का और रोबोट्स के इस्तेमाल का एक बहुत ही अभूतपूर्व एग्जाम्पल है जिसको कहा जाए, जहां पर कि रोबोट्स को हवा से ड्रॉप करके और जो अनमैन्ड ग्राउंड व्हीकल है हवा से ड्रॉप करके और वो उनको फिर वहाँ पे सेना के आगे जाके वो हमला करने में सक्षम है। यानी कि पहले ही होता था कि सेना आगे जा रही है, पीछे पीछे रोबोट्स और अनमैन्ड ग्राउंड व्हीकल्स आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर सेना के आगे गए हैं, आगे के ऑब्स्टेकल क्लियर किए, माइंड क्लियर किया और जरूरत पड़ने पर आगे जाके उन्होंने सीधे ब्लास्ट हो गए रिमोट कंट्रोल के द्वारा। तो काफ़ी बड़ी संख्या में इनको सफलता मिली है सोवियत रशिया के मोर्चों के खिलाफ।
0: यूक्रेन के ऑपरेशन विवाल्डी में पहली बार हवाई और जमीनी ड्रोन्स को मिलाकर एक मदर चाइल्ड आर्किटेक्चर के तहत काम पर लगाया गया। ऑपरेशन विवाल्डी का सबसे क्रांतिकारी हिस्सा ये था कि यूजीवी को सीधा चल के दुश्मन के इलाके में नहीं जाना था, बल्कि इसे एक बॉम्बर रोबोट की मदद से दुश्मन के इलाके में गिराया गया। वैसे सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि छोटे छोटे बॉम्बर्स की बैटरी खत्म होने से बच गई और इसने सीधे दुश्मन के इलाके में वार किया। रोबोट में लगे कैमरों से आस पास के इलाके पर नजर रखी जाती। इनकी मदद से रूसी सेना के कमांड सेंटर, सैनिकों के ठिकाने, हथियार और सामान रखने की जगहों और नदी पार करने के रास्तों पर हमले किए गए। इस रणनीति का मकसद यूक्रेनी सैनिकों की जान जोखिम में डाले बिना रूसी ठिकानों पर हमला करना था।
2: रूस और यूक्रेन लंबे समय से एक दूसरे के साथ जंग लड़ रहे हैं। हम सभी जानते हैं कि रूस यूक्रेन से ज्यादा ताकतवर है, लेकिन बावजूद इसके यूक्रेन युद्ध के मैदान में डटा हुआ है और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है ड्रोन्स। रूस का मुकाबला करने के लिए यूक्रेन छोटे और सस्ते ड्रोन्स का मुकाबला कर रहा है, उनको मैदान में उतार रहा है। सबसे बड़ी और खास बात यह है कि इन ड्रोन्स की मदद से यूक्रेन अपने सैनिकों की जान भी बचाता है और साथ ही साथ रूस का मुकाबला करने के लिए वो पूरी तरह से तैयार है। बस अब इसी रणनीति के तहत आगे काम किया जा रहा है।
0: यूजीवी का इस्तेमाल गोला बारूद, राशन और पानी पहुँचाने के साथ साथ जोखिम भरे इलाकों से घायल सैनिकों को निकालने के लिए भी था। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक अगस्त 2026 में यूजीवी यानी अनमैन्ड ग्राउंड व्हीकल ने 25,000 से ज्यादा रसद और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए, जिससे साल की शुरुआत से अब तक ऐसे अभियानों की कुल संख्या करीब 1,12,000 हो गई। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए नए आंकड़ों के मुताबिक यूक्रेन के सशस्त्र बलों ने साल 2026 में अनमैन्ड सिस्टम का विस्तार करते हुए 5,90,000 से ज्यादा ड्रोन्स का ऑर्डर दिया।
2: रक्षा और आक्रमण ये दो ऐसे पहलू हैं जिनमें अगर सामंजस्य ना हो तो युद्ध की दिशा और दशा बदल सकती है। यानी सीधे शब्दों में अगर समझाया जाए कि अगर तलवार जरूरी है तो ढाल भी जरूरी है। इसी के साथ साथ भारत अब इसी रणनीति पर आगे काम कर रहा है और उसी के तहत अपनी सेना को तैयार कर रहा है। नए नए उपकरणों को इसी तरीके से बनाया जा रहा है जो कि अटैकिंग भी हो और साथ ही साथ दुश्मन के हमले का मुकाबला भी हम सही और अच्छी तरीके से कर सके।
0: घना जंगल हो या फिर ऊंचे ऊंचे पहाड़, शहर की भीड़ भाड़ हो या फिर सुनसान रेगिस्तान, खतरा किसी भी इलाके में हो, खतरे का स्वरूप चाहे जैसा भी हो, अब भारतीय सेना का बास उन्हें ढूंढकर मौत की नींद सुला देगा। भारतीय सेना के रणबांकुरों को अब दुश्मन के नजदीक जाने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि सेना का नया हथियार बास ड्रोन सेना में शामिल होने के लिए तैयार है।
2: भारतीय सेना का स्वदेशी बाज अटैक ड्रोन अब बड़े पैमाने पर बनने के लिए तैयार है, क्योंकि भारत ने इसकी ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी निजी कंपनियों को दे दी है। और सबसे बड़ी और खास बात यह है कि इसे भारतीय सैनिक विकास चतुर्वेदी ने ही डिजाइन किया है, जो ये बात दिखाता है कि भारत किस तरीके से अपने मेक इन इंडिया लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ रहा है और अपनी तकनीक के हिसाब से ही और अपनी जरूरतों के हिसाब से अपने हथियारों का निर्माण कर रहा है।
0: मौजूदा वक्त आमने सामने की लड़ाई का नहीं है। सैनिक युद्ध के मैदान में सीधे कदम नहीं रख रहे, बल्कि तकनीक के दम पर तैयार होने वाले विध्वंसक हथियारों को युद्ध के मैदान में उतारा जा रहा है, जो ऑटोनॉमस तरीके से काम करते हैं। या यूं कहें कि एक बार अगर टारगेट सेट कर दिया तो बाकी का काम वो हथियार करेगा। ड्रोन भी उसी टारगेट का एक हथियार है, जो दुश्मन के टैंक, बंकर, हथियार डिपो को दूर से ही तबाह कर सकता है। अब आपको स्वदेशी ताकत से लबरेज बाज ड्रोन की एक और खासियत के बारे में विस्तार से बताते हैं। 12 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से उड़ने वाला बाज ड्रोन एक मिनट में करीब 1 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। मैदानी इलाके में बाज ड्रोन 80 किलो तक के हथियार लेकर उड़ने की ताकत रखता है। वहीं हाई ऑल्टीट्यूड वाले इलाकों में ये 45 किलो तक का वजन लेकर उड़ सकता है। बाज ड्रोन अपने साथ कई तरह के हथियार ले जा सकता है, जिसमें रॉकेट लॉन्चर का अटैचमेंट इसे बेहद ताकतवर बनाता है। दावा किया जाता है कि ये दुनिया का पहला ऐसा ड्रोन है जो हवा में रहते हुए लॉन्चर से रॉकेट दाग सकता है, जिसकी मदद से दुश्मन के MMG, LMG बंकर, एमिनेशन डिपो और कमांड कंट्रोल सेंटर को आसानी से तबाह किया जा सकता है। रॉकेट लॉन्चर की साइट के साथ ही कैमरे को अटैच किया गया है। कैमरे की मदद से बाज ड्रोन सटीक हमला करता है और फिर सुरक्षित वापस लौट आता है। इसे मैनुअल और ऑटोनोमस मोड में भी ऑपरेट कर सकते हैं। बाज ड्रोन पायलट मोड में 5 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है, वहीं ऑटोनोमस मोड में 10 किलोमीटर की दूरी तक उड़ान भरने में सक्षम है।
1: भारत जो है बाज बटालियन बना रहा है, आधुनिक ड्रोन्स का इस्तेमाल कर रहा है और काफी हद तक ऑटोनोमी दे रहा है। हालांकि फाइनल कंट्रोल अभी भी भारत ने एथिक्स को सोचते हुए अपने हाथ में रखा, लेकिन जरूरत पड़ने पर यह ड्रोन दिशा बदलने में सक्षम है। अगर टारगेट अपनी जगह बदल लेता है तो ये भी प्रोएक्टिव होके अपनी जगह बदल के टारगेट का पीछा करते हैं, उसको बर्बाद करते हैं, साथ साथ में अलग अलग तरह के हथियार ले जाने में सक्षम है। और इनको देखते हुए बाज बटालियन भी बनाई जा रही है, ताकि बड़ी संख्या में आज जो ड्रोन से होने वाला खतरा है उसमें हम आक्रामक तौर पर और डिफेंस के तौर पर हम लोग सक्षम रहें।
0: बाज ड्रोन को काउंटर इमरजेंसी, काउंटर टेररिज्म में सर्विलांस और आतंकियों के हाइडआउट को तबाह करने के लिए तैयार किया गया है। दरअसल जम्मू कश्मीर में आए दिन होने वाले आतंकी हमले और हमलों को अंजाम देकर आतंकी घने जंगल में छिप जाते हैं, जिन्हें ढूंढना आसान नहीं होता। लिहाजा अब आतंक के सपोलों को खत्म करने के लिए बाज आने वाला है। बाज ड्रोन की सबसे खास बात है इसका एयरफ्रेम स्वदेशी कार्बन अरामिड कंपोजिट से बना है, जो क्रैश रेजिस्टेंस है और 7.62 mm की गोली हिट को भी सहन कर सकता है।
1: देखा जाए तो बाज ड्रोन काउंटर टेरर और काउंटर सर्विलियंस के लिए काफ़ी कामयाब हो रहा है, क्योंकि दो तरह से इस्तेमाल हो। जो आधुनिक ड्रोन्स हैं वो काफ़ी पास तक जाकर जो टेरर कैंप है उनकी पूरी खबर हासिल करके पीछे भेजते हैं, जिससे कि ऑपरेशन में हेल्प होती है। दूसरी बात, जो एंटी ड्रोन्स हैं वो बाज हैं जिनके ऊपर कैमरा लगा हुआ है, और वो जो टेररिस्ट हैं वो नेचुरली ड्यूअल यूज ड्रोन्स का इस्तेमाल करते हैं। वो ड्रोन को देखते हैं तो बाज उसको पकड़ के डिस्ट्रॉय करके फेंक देता है और टेररिस्ट के जो इरादे हैं उनको नाकाम कर देता है।
0: आज दुनिया के कई मुल्क रोबोटिक वॉरफेयर की रेस में लगे हुए हैं। ऐसे रोबोट बनाने की कोशिश हो रही है जो जंग में गोलियां तक बरसा सके। भारतीय सेना ने निगरानी क्षमता बढ़ाने और युद्ध अभियानों में मदद के लिए एक म्यूल यानी कि मल्टी यूटिलिटी लेग इक्विपमेंट डेवलप किया है, जिसे रोबोटिक डॉग भी कहा जाता है। इस रोबोटिक डॉग को अलग अलग हालात में परखा जा रहा है। रोबोटिक म्यूल को 10 किलोमीटर दूर बैठकर भी ऑपरेट किया जा सकता है। 1 घंटे चार्ज करने के बाद ये लगातार 10 घंटे तक काम कर सकता है। इनमें एक रिमोट कंट्रोल यूनिट होती है जिससे इसको मॉनिटर किया जा सकता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसकी डिजाइन है, जिसकी मदद से हर बाधा को आसानी से पार कर सकता है। ये रेगिस्तान, ऊबड़ खाबड़ जमीन, ऊंचाई और बर्फीले इलाकों में पूरी तरह से काम करने में सक्षम है। -40 से 55 डिग्री सेल्सियस का तापमान भी इसकी क्षमताओं पर कोई असर नहीं डाल सकता।
3: भारतीय सेना ने 100 रोबोटिक म्यूल खरीदे हैं इमरजेंसी पावर्स के अंदर, जो करीब 300 करोड़ की उनकी है। ये जो रोबोटिक मूल्स हैं ये इंफ्रारेड से लेस हैं, यानी कि किसी ऑब्जेक्ट से अगर हीट निकल रही है तो ये उसे पहचान सकते हैं। ये इलेक्ट्रो ऑप्टिक से भी लेस हैं, यानी कि ये पहचान सकते हैं कि ऑप्टिकल यानी कि फिगर को देख के कि कौन है सामने। चूंकि इनमें ये सेंसर्स लगे हुए हैं इसलिए उन सेंसर्स को 10 किलोमीटर दूर से भी ऑपरेट किया जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है। हाई एल्टीट्यूड में इस्तेमाल किए जाते हैं ये
0: रोबोटिक डॉग। में 360 डिग्री घूमने वाला हाई रेजोल्यूशन कैमरा लगाया गया है जिसकी मदद से रात के अंधेरे में छिपे हुए दुश्मनों को भी ढूंढ निकालना आसान होगा। खास बात ये भी है कि ये रोबोटिक डॉग्स ऊंचाई वाले इलाकों में 15 किलो वजन के सामान को भी अपने साथ आसानी से ले जा सकते हैं।
3: ये रोबोट हो या आदमी हो, किसी भी चीज को जानने के लिए पहचानने के लिए हमको या तो उसकी फिगर की आवश्यकता होती है या उसकी ध्वनि की आवश्यकता होती है या उसकी बॉडी से निकलने वाली हीट वेव्स की आवश्यकता होती है। बस यही उपकरण है जो इनके अंदर लगाए जाते हैं। इनमें थर्मल कैमराज लगाए जाते हैं जो हीट से पिक्चर ले सकते हैं, इंफ्रारेड कैमराज भी लगाए जाते हैं, सेंसर्स भी लगाए जाते हैं।
0: सरहद की रक्षा करने में जुटे जवानों को किसी तरह के नुकसान से बचाते हुए ये दुश्मन पर गोलीबारी भी कर सकता है।
2: आपको याद होगा कि साल 2023 में भारतीय सेना ने तकरीबन 100 रोबोट डॉग्स को ऊंचाई वाले इलाकों में तैनात किया था जहां पर ये अपनी सेवाएं दे रहे हैं और आज हमारी सरहद की रखवाली कर रहे हैं।
0: सेना की योजना इन रोबोट्स को ऐसी मुश्किल जगहों पर तैनात करने की है जहां सेना के जवानों को पहुंचने में काफी दिक्कत आती है। इन रोबोट्स की मॉनिटरिंग सेना के जवान करेंगे। इन रोबो डॉग्स के इस्तेमाल से संवेदनशील सीमाओं की सुरक्षा में लगे सशस्त्र बलों पर दबाव महत्वपूर्ण रूप से कम हो सकता है।
2: रण क्षेत्र में फिलहाल यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
5: सास बहू और बेटियां में आज देखिए टेलीविजन की दुनिया में अनलिमिटेड ड्रामा। दोपहर 1:28 से लेकर 3 बजे तक सिर्फ सास बहू और बेटियां में।

0: परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।

गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।

0: आज की तारीख में देखा जाए तो पूरी दुनिया एक तरीके से फ्यूचर वेपन्स बनाने में जुटी है, जिसमें सबसे बड़ी भूमिका है अनमैन व्हीकल्स की। फिर चाहे वो अनमैन ड्रोन्स हो या फिर अनमैन गाड़ियां या फिर अनमैन बोट या अनमैन टैंक, जो कि सीधे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से काम करते हैं। इंसानी निर्देश मिले या नहीं मिले, ये सीधे अपने टारगेट की तरफ बढ़ते हैं और उसे नष्ट कर देते हैं।
1: अमेरिका मानव रहित ड्रोन के सहारे अफगानिस्तान और उत्तर पश्चिम पाकिस्तान में आतंकियों के सीक्रेट अड्डों को निशाना बनाता रहा है। अनमैन ड्रोन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से काम करते हैं। ड्रोन की कमांड युद्ध क्षेत्र से दूर कंट्रोल रूम में बैठे व्यक्ति के हाथों में होती है। सैटेलाइट की मदद से ये दोनों आपस में जुड़े रहते हैं। ड्रोन में लगे कैमरे से कंट्रोल रूम में बैठे व्यक्ति को उस जगह की और ड्रोन की पूरी जानकारी मिलती है। कंट्रोल रूम में बैठा व्यक्ति सही समय और सटीक निशाना मिलने पर दुश्मन पर वार करता है और इसकी वजह से जवानों का जोखिम कम होता है।
0: दरअसल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने ना सिर्फ लोगों की जिंदगियां बदली हैं, बल्कि युद्ध के क्षेत्र में जंग लड़ने के तौर तरीके भी पूरी तरह से बदल दिए हैं। फिर चाहे वो व्हीकल्स हो या फिर रणनीति हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जहां लाखों गीगाबाइट सूचनाएं जुटा सकता है, वहीं पलक झपकते ही इसे नष्ट भी कर सकता है।
1: आज दुनिया की बड़ी सैन्य ताकतें लगातार एआई सिस्टम को मजबूत बनाने में जोर दे रही हैं। ड्राइवरलेस कार के बाद अब ड्राइवरलेस टैंक तैयार किए जा रहे हैं, जो युद्ध के मैदान में अपनी जंगी काबिलियत दिखाते नजर आएंगे। रूस ने यूक्रेन के पूर्वी डोनबास इलाके में एंटी टैंक मिसाइलों से लैस नया अनमैन ग्राउंड व्हीकल उतारा, नाम है मार्कर। मौजूदा समय में ये ड्राइवरलेस टैंक परीक्षण के दौर से गुजर रहा है। इसमें लगी मिसाइलें दुश्मन के टैंक, बख्तरबंद वाहनों और कंक्रीट के बने मजबूत बंकरों को उड़ाने में सक्षम है। मार्कर यूजीबी कॉर्नेट एंटी टैंक मिसाइलों को फायर करने में सक्षम है। आपको बता दें कि कॉर्नेट रूस की सबसे ताकतवर एंटी टैंक मिसाइल है, जो 100 से 5500 मीटर की रेंज तक टारगेट को तबाह करने में सक्षम है। मार्कर यूजीवी में 7.62 एमएम की मशीन गन लगी हुई है, जिससे हर मिनट सैकड़ों राउंड फायरिंग की जा सकती है। दावा ये कि रूसी मार्कर 100 किलोमीटर की दूरी तक बिना किसी इंसान की मदद के गश्त लगा सकते हैं, जो अपने साथ स्वॉर्म ड्रोन की पूरी फौज लेकर चलता है। स्वॉर्म ड्रोन मिनटों में उड़ान भरकर खुफिया जानकारी जुटाने और टारगेट को तबाह करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है।
0: यूरो 9 के बाद रूस का दूसरा सबसे बड़ा अनमैन्ड टैंक है यूजीवी। हालांकि इसका ट्रायल अभी चल रहा है, लेकिन अभी तक के हुए ट्रायल के हिसाब से अगर देखा जाए तो टैंक ने सफल परीक्षण किया है, क्योंकि बाहर से ना तो किसी इंसानी कमांड की जरूरत पड़ी है और ना ही किसी मदद की जरूरत पड़ी है। और अगर तमाम ट्रायल सफल हो जाते तो ये जल्दी ही रूसी सेना का हिस्सा होगा।
1: आज सिर्फ रूस ही नहीं बल्कि अमेरिका, चीन समेत दुनिया के कई देश फ्यूचर वेपन बनाने में जुटे हैं, जिसमें एआई की ताकत शामिल की जा रही है। फ्यूचर वेपन को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ताकत देने के मामले में इजराइल भी काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है। हाल ही में इजराइल ने वेस्ट बैंक इलाके में नए रोबोट हथियार तैनात किए हैं। रिमोट कंट्रोल बंदूकों से आंसू गैस, स्टैंड ग्रेनेड और रबर की गोलियां दागी जा सकती हैं। हेब्रोन शहर और अल अरब शरणार्थी शिविर में बड़े पैमाने पर रोबोटिक वेपन तैनात किए गए हैं। इजराइल ने निगरानी कैमरों से लैस स्पेशल गार्ड टावर्स पर यह हथियार तैनात किए हैं। बंदूकों पर कैमरे लगे हैं, जिन्हें टावर के भीतर से इजराइल डिफेंस फोर्सेज के सैनिक ऑपरेट कर सकते हैं। ये बंदूकें अपने टारगेट को ट्रैक करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी इस्तेमाल करती हैं। हाल ही में तुर्की ने भी ड्राइवरलेस बोट का परीक्षण कर भविष्य के हथियार की झलक दिखा दी, कि न सिर्फ समुद्री सरहद की निगरानी करेंगे बल्कि जरूरत पड़ने पर बारूद की बौछार भी करेंगे। साउथ कोरिया ने एक एआई आधारित किलर बोट तैयार किया है, जो किसी भी लोकेशन पर जाकर अपने टारगेट को तबाह कर सकता है। ये ठीक उसी तरीके से काम करता है जिस तरह ड्रोन कर रहे हैं। एक बार बोट प्रोग्राम कर दिया जाए तो उसके बाद ये किलर बोट अपने दुश्मन की खुद पहचान कर उसे मार गिराएगा। ये किलर बोट त्वचा के रंग, चेहरे की बनावट, आवाज और कपड़े के आधार पर दुश्मन की पहचान कर सकते हैं और पल भर में उन्हें तबाह कर सकते हैं।
0: ऑटोनोमस वेपन सिस्टम और किलर रोबोट्स के जरिए तमाम देश अब कमर कस रहे हैं, क्योंकि जिस देश के पास भी ये हथियार होंगे वो आने वाले समय में युद्ध के क्षेत्र में आगे होगा। और इसीलिए अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, यहां तक कि इजराइल जैसे देशों ने इसमें करोड़ों डॉलर का निवेश कर दिया है।
1: आखिर क्या है किलर बोट और क्यों है दुनिया के लिए ये खतरा, इसे जानने और समझने की जरूरत है। किलर बोट्स फुल ऑटोनोमस वेपन होते हैं। किलर बोट्स के मिशन में ह्यूमन ऑपरेशन का रोल नहीं होता, यानी किलर बोट रोबोट्स में जीवन और मौत का फैसला पूरी तरह से इसके सेंसर, सॉफ्टवेयर और मशीन की प्रोसेस पर छोड़ दिया जाता है। अमेरिकी सेना की नजरें कुछ सालों में अपने जल, थल और वायु सेना को किलर बोट से लैस करने पर है। वहीं रूस भी किलर बोट्स को ध्यान में रखकर न्यूक्लियर हथियारों से लैस सबमरीन विकसित कर रहा है। चीन ने कहा है कि वो किलर बोट्स को विकसित करने की तकनीक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 2030 तक ग्लोबल लीडर होगा।
2: देखिए, रोबोट्स वो हैं जो बनाए गए हैं, ट्यून किए गए हैं, जिनमें बैटरी लगाई गई है, जिनको 5-7-10 किलोमीटर दूर से ऑपरेट कर सकते हैं, जिसमें सेंसर्स लगाए गए हैं, जिसमें इंफ्रारेड और थर्मल इमेजिंग जैसी डिवाइसेस लगाई गई हैं, जो बैटलफील्ड के ऊपर क्या काम करते हैं, इंटेलिजेंस का कलेक्शन का, रिकॉग्नाइजेंस कलेक्शन का और सर्विलेंस करने का। लेकिन अगर इन्हीं रोबोट्स में, जो जनरली मिलिट्री के रोबोट्स आर्म्स से इक्विप नहीं होते, लेकिन अगर इन्हीं के अंदर आर्म्स लगा दिए जाएं तो फिर इन्हें किलर ड्रोन कहते हैं, और अगर इनमें आर्म्स लगा दिए जाएं तो उन आर्म्स के फायर को कंट्रोल करना एक प्रॉब्लम होती है, क्योंकि कभी कभी बैटल ग्राउंड पे ऐसे भी सीन देखे गए हैं कि रोबोट्स ने अपने ही लोगों को मार दिया है।
1: दुश्मन की साजिशों से निपटने के लिए भारतीय युवाओं की ऐसी टोली तैयार की जा रही है जो तकनीक में इतने दक्ष हों कि वो दुश्मन के चक्रव्यूह को आसानी से ध्वस्त कर सके। साल 2022 में डिफेंस सेक्टर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI आधारित 75 सैन्य तकनीक और साजो सामान सेनाओं को सौंपे गए, जिनमें साइलेंट संतरी, त्रिशूल रिमोट वेपन सिस्टम और मैंडरिन ट्रांसलेटर डिवाइस थे। आज के दौर में हर हथियार में AI का इस्तेमाल होने लगा है। उसी AI आधारित एक हथियार को सेना के आर्मी डिविजन बोर्ड ने तैयार किया है। ये तकनीक किसी भी LMG, इंसास या फिर AK-47 राइफल पर लगाई जा सकती है। इसके लगाने के बाद ये गन पर लगे कैमरे से खुद ब खुद टारगेट सेट करती है और राइफल सटीक निशाना लगाती है। किसी सैनिक को इस गन का ट्रिगर दबाने की जरूरत नहीं पड़ती। इस सिस्टम को नाम दिया गया है त्रिशूल रिमोट वेपन सिस्टम। 300 मीटर की रेंज में किसी भी स्टैटिक टारगेट पर त्रिशूल रिमोट वेपन सिस्टम 100% सटीक निशाना लगा सकता है। अगर टारगेट मूविंग हो तो इसकी एक्यूरेसी रेट 90% है। त्रिशूल रिमोट वेपन सिस्टम को किसी भी मिलिट्री व्हीकल या फिर आर्मी पर्सनल कैरियर के ऊपर लगाया जा सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में भारत जिस तरीके से लगा है, उससे चीन और पाकिस्तान से लगी देश की सीमाओं की निगरानी में AI के इस्तेमाल से संवेदनशील सीमाओं की सुरक्षा में लगे सशस्त्र बलों पर दबाव काफी कम हो सकता है।
3: दुनिया का सबसे एडवांस नेशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में चाइना है, और हमने चाइना के साथ कैचअप करना है। ऐसे में हमारे ऊपर दबाव नहीं होगा, क्योंकि LAC के ऊपर जितना भी चाइनीज की कार्रवाई है, चाइना बड़े पैमाने पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, साइबर वॉरफेयर का, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का, डिसेप्शन का इस्तेमाल कर रहा है, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का। तो हमको उतनी परेशानी रहेगी, लेकिन उस परेशानी में कमी आ सकती है, क्योंकि हम भी वही सिस्टम से लैस हो जाएंगे जिससे हमारा दुश्मन है। जहाँ तक पाकिस्तान का तल्लुक है, पाकिस्तान से हम बहुत ज़्यादा मजबूत हैं। लाइन ऑफ कंट्रोल और इंटरनेशनल बॉर्डर पर हमको काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा। पेट्रोलिंग के माध्यम से के लिए, उस बॉर्डर की मैनेजमेंट के लिए, बॉर्डर की सिक्योरिटी के लिए, वहाँ वैसे ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस जो इक्विपमेंट है, जैसे कि नाइट विजन डिवाइसेज है, थर्मल इमेजर्स हैं, कई प्रकार के रडार सिस्टम्स हैं, इनका इस्तेमाल कर रहे हैं, कई प्रकार के सेंसर्स हैं, कई प्रकार के शूटर्स हैं।
1: टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में इंसान ने इतना विकास कर लिया है कि अब उसी तरह की सोचने, समझने और अपने दिमाग का इस्तेमाल करने वाला एक चलता फिरता मशीन तैयार करने के बारे में सोचा जा रहा है, जो बिल्कुल इंसानों की तरह काम करने की क्षमता रखता हो। उस एडवांस टेक्नोलॉजी से बनने वाली मशीन यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सही और गलत होने पर दुनिया भर में अभी बहस छिड़ गई है।
0: रण क्षेत्र में मेरी यानी नवजोत रंधावा के साथ अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
5: खबरें, कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
5: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से।
1: मौसम बदला तो पहाड़ों पर सैलानियों की मौजूदगी बढ़ने लगी है, जिससे हिल स्टेशंस के कारोबारी खुश हैं और उम्मीद भी है कि आने वाले सीजन में इस बार कारोबार अच्छा रहेगा।

0: अक्टूबर की शुरुआत पर्यटकों से पहाड़ गुलजार। खिले कारोबारियों के चेहरे, जी हाँ, अभी तो ठंड का शुभारंभ होना बाकी है और पहाड़ सैलानियों से भर गए हैं। लंबे वक्त के बाद पहाड़ी शहरों की तस्वीर बदली बदली से दिख रही है। कुछ होटल्स फुल ऑक्यूपेंसी दिखा रहे हैं, तो कई होटल्स कारोबारियों के अनुसार अक्टूबर के पहले सप्ताह में इस तरह से पर्यटकों के आगमन से इस सीजन में सकारात्मक संकेत दिखाई दिया है। पहाड़ों पर पर्यटकों की भीड़ ने स्थानीय पर्यटन कारोबारियों के चेहरे पर रौनक ला दी है। होटल्स, रेस्टोरेंट, टैक्सी, पर्यटन गतिविधियों और पर्यटन से जुड़े कारोबार में भी चहल पहल बढ़ गई है और आने वाले दिनों में कारोबार और बेहतर होने की उम्मीद है। तस्वीरें हिमाचल प्रदेश के डलहौजी की हैं, जहां हर चौक चौराहे और पर्यटन स्थलों पर सैलानियों की आवाजाही बनी हुई है। सुहाने मौसम के साथ पर्यटक डलहौजी के आसपास के प्रमुख पर्यटन स्थलों का रुख कर रहे हैं। परिवारों के साथ पहुंचे पर्यटक ठंडी हवा, देवदार के जंगल और पहाड़ी वादियों का आनंद लेते नजर आ रहे हैं। पर्यटकों की संख्या बढ़ने से डलहौजी के बाजारों में भी रौनक बढ़ गई है। प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेने के साथ साथ पर्यटक स्थानीय बाजारों में खरीदारी भी कर रहे हैं। कारोबारियों को उम्मीद है कि त्योहारों और छुट्टियों के दौरान पर्यटकों की संख्या में और इजाफा हो सकता है। मनाली में भी लॉन्ग वीकेंड के पर्यटकों की भारी भीड़ देखी जा रही है। देश के अलग अलग हिस्सों से बड़ी संख्या में सैलानी मनाली पहुंच रहे हैं। पर्यटकों की बढ़ती आवाजाही का असर शहर की सड़कों पर भी दिखने लगा है। मनाली और आसपास के ऊंचाई वाले इलाकों में हाल ही में हुई बर्फबारी के बाद पर्यटकों की आवाजाही बढ़ गई। बर्फ से ढकी पहाड़ियां और बदला मौसम सैलानियों को पहाड़ों की ओर खींच रहा है और उम्मीद की जा रही है कि पर्यटकों की संख्या दिनों दिन बढ़ती जाएगी। बद्रीनाथ धाम में भी भारी संख्या में लोग पहुँच रहे हैं। मौसम साफ होने और शुक्रवार से लेकर रविवार तक छुट्टी होने की वजह से लोग धाम तक पहुंचना चाह रहे हैं। गाड़ियां इतनी पहुंच गई हैं कि ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए पुलिस को एक्टिव होना पड़ गया। नैनीताल में भी मौसम बदलते ही पर्यटकों और श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ गई है। कैंची धाम में दिनभर भक्तों की लंबी कतारें और चारों तरफ श्रद्धालुओं का हुजूम नजर आ रहा है, तो नैनीताल के नैनी झील में पर्यटकों को बोटिंग का आनंद उठाते हुए देखा जा सकता है। यानी एक तरफ बाबा नीम करौली की भक्ति देश भर के लोगों को उत्तराखंड के कुमाऊं की ओर खींच रही है, तो दूसरी ओर पर्यटन कारोबार को नई ऊर्जा मिल रही है। उत्तराखंड हो या हिमाचल या फिर जम्मू कश्मीर, इन राज्यों में टूरिस्ट अभी से ही उमड़ रहे हैं। अभी तो जाड़े का मौसम बाकी है, ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि 2026 का टूरिस्ट सीजन कारोबार के लिहाज से बेमिसाल रहने वाला है। नैनीताल से लीला सिंह बिष्ट, मनाली से मनमिंदर अरोड़ा, चंबा से विशाल आनंद, चमोली से कमल नयन सिलोड़ी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: भारतीय वायुसेना इस साल अपना 94वां स्थापना दिवस बड़े ही भव्य अंदाज में मनाने जा रही है। 8 अक्टूबर को गाजियाबाद के हिंडन एयरफोर्स स्टेशन पर मुख्य कार्यक्रम का आयोजन होगा। तो इस बार की सबसे खास बात यह है कि एयरफोर्स डे का फ्लाई पास पहली बार पवित्र नदी गंगा के ऊपर वाराणसी में आयोजित किया जाएगा। नमो घाट के पास वायुसेना की सूर्य किरण टीम पराक्रम का प्रदर्शन करेगी।

0: अचूक अभेद्य सटीक भारतीय वायु सेना की यही पहचान है। इसी थीम के साथ इंडियन एयरफोर्स इस बार अपना 94वां स्थापना दिवस मनाएगा। 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस की मुख्य परेड हिंडन के वायुसेना स्टेशन में आयोजित की जाएगी। इस साल वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह परेड का निरीक्षण करेंगे। साथ ही थल और जल सेना प्रमुख भी इसमें शामिल होने वाले हैं। परेड से पहले MI-17 1V हेलीकॉप्टर फ्लाईपास्ट करेंगे। इन पर राष्ट्रीय ध्वज और भारतीय वायुसेना का ध्वज लगा होगा।
1: द मेन इवेंट द एयर फोर्स डे परेड विल बी हेल्ड एट एयर फोर्स स्टेशन हिंडन ऑन 8th अक्टूबर। द परेड लास्ट ईयर वॉज हेल्ड एट हिंडन आफ्टर अ गैप ऑफ 3 years। इन द ईयर 2022 द परेड वॉज हेल्ड एट चंडीगढ़, इन 2023 एट प्रयागराज एंड इन 2024 एट चेन्नई, in alignment with the government's vision of offering citizens across the nation a closer glimpse of the might and capability of their Indian Air Force.
0: Static display mein ladaku aur parivahan viman ke sath helicopter satah se hawa aur satah se satah par maar karne wale guided hathiyar system, radar aur ek tarfa hamla karne wale manav rahit hawai system pradarshit kiye jayenge. Ye bhartiya vayu sena ke swadeshikaran aur make in india pahal ko bhi darshayega. Yahi nahi, भारतीय वायुसेना की ड्रमर्स टीम जिसमें 33 युवा पुरुष और महिला एयर वॉरियर शामिल है, एक अनोखा म्यूजिकल प्रदर्शन पेश करने वाली है। इसके बाद IAF हेरिटेज फ्लाइट का एयर डिस्प्ले होगा, जिसमें विंटेज हिंदुस्तान ट्रेनर 2 और टाइगर मॉथ एयरक्राफ्ट का सोलो डिस्प्ले शामिल होगा। हाल के वर्षो में यह परेड चंडीगढ़, प्रयागराज, चेन्नई और हिंडन में आयोजित की जा चुकी है। सरकार के इस कदम का मकसद वायुसेना दिवस के आयोजन को अलग अलग शहरों तक पहुंचाना है, ताकि देश भर के लोगों को भारतीय वायुसेना की ताकत, क्षमता, पराक्रम और हवाई कर्तव्य को करीब से देखने का मौका मिल सके। भारतीय वायुसेना इस साल अपना 94वां स्थापना दिवस खास अंदाज में भी मनाने वाली है। 25 अक्टूबर को पहली बार वाराणसी के नमो घाट पर आसमान में वायुसेना की एरोबेटिक टीम हवाई कर्तव्य दिखाने वाली है, जिसमें भारतीय वायुसेना की सिर्फ महिलाओं वाली एरोबेटिक दल टीम शक्ति, तालमेल भरी गतिविधियों और मुश्किल फॉर्मेशन के जरिए अपनी सटीकता, फुर्ती और अनुशासन का प्रदर्शन करेंगी। शिवानी शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
3: सास बहू और बेटियां में आज देखिए टेलीविजन की दुनिया में अनलिमिटेड ड्रामा, दोपहर 1:28 से लेकर 3 बजे तक सिर्फ सास बहू और बेटियां में।

0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
2: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें,
6: एवरेस्ट दिखा ला, सही दिखा सही लाल।
7: केदारनाथ धाम में उमड़ रहा है आस्था का मेला, बड़ी संख्या में श्रद्धालु कर रहे हैं बाबा केदार के दर्शन। मुख्य द्वार और वीआईपी गेट पर भक्तों की कतार। सुहाने मौसम में देवभूमि में सैलानियों का हुजूम उमड़ा, गंगोत्री और हर्षिल में होटल और होम स्टे हाउसफुल, पर्यटन कारोबार को मिला बढ़ावा।

योग फिटनेस के साथ साथ पुलर झील के संरक्षण का संदेश। एशियन गेम्स में तिरंगा लहराकर महिला हॉकी टीम जापान से लौटी स्वदेश। रांची एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत, कैप्टन सलीमा टेटे की अगुवानी। भदोही में आज से शुरू होने जा रहा है इंडिया कार्पेट एक्सपो, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुभारंभ करेंगे। 7 अक्टूबर तक 65 देशों से जुटेंगे खरीदार। लखनऊ की सड़कों पर दौड़ी विंटेज कार, ब्रेस्ट कैंसर के खिलाफ जागरूकता फैलाने का है लक्ष्य। बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया।

आपका आप देख रहे हैं गुड लक स्पेशल और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। देखिए बहुत बार ऐसा होता है कि हम ये सोचते हैं कि एक ऐसा उपाय कर लें, एक ऐसी पूजा कर लें जिससे हमारी जिंदगी ठीक रास्ते पे चलती रहे। अक्सर लोग ये पूछते हैं कि कौन सी पूजा कर लें, कौन सा उपाय कर लें कि पूरी जिंदगी बेहतर चलती रहे, ज्यादा मुश्किलें जीवन में ना आए और भाग्य हमारा साथ दे। तो आज के कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे आपके लग्न के अनुसार कि आपको कौन सी एक पूजा जरूर करनी है, और अगर वो एक पूजा आप रेगुलरली करें, थोड़ा ध्यान रखें, तो आपका भाग्य आपका साथ देगा और आपकी मुश्किलें कम होनी शुरू हो जाएंगी। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जान लेते हैं सप्ताह का मंत्र। सप्ताह का मंत्र है ओम हरि मरकट मरकटाय स्वाहा। ओम हरि मरकट मरकटाय स्वाहा। बड़ा शक्तिशाली और बड़ा प्रभावशाली मंत्र है ये। आप किसी मुकदमे में फंस गए हैं, कोई बड़ा विवाद हो गया है, उसको निपटाना चाहते हैं, उसको सुलझाना चाहते हैं, मुकदमे से विवाद से बाहर आना चाहते हैं, तो सुबह और शाम दोनों समय हनुमान जी के सामने बैठ करके इस मंत्र का एक एक माला जप करिएगा। कितना भी बड़ा विवाद हो, कितनी भी बड़ी उलझन हो, कितना भी बड़ा झगड़ा हो, अगर सुबह शाम आप ये मंत्र पढ़ेंगे ओम हरि मरकट मरकटाय स्वाहा, अगर सुबह शाम ये मंत्र पढ़ें लगातार 3 महीने तक, निश्चित रूप से आप बड़ी से बड़ी समस्या से बड़े विवादों से बाहर आ जाएंगे। लेकिन शर्त ये है कि अगर इस मंत्र का जप करेंगे तो 3 महीने तक सात्विकता का पालन करेंगे, मांस मदिरा आदि का सेवन बिल्कुल नहीं करेंगे। आज हम आपको बता रहे हैं कि आपके लग्न के अनुसार अगर आप एक विशेष तरह की पूजा करें तो आपको लाभ हो सकता है। आखिर लग्न के अनुसार ऐसा कैसे हो सकता है? देखिए किसी व्यक्ति का जो लग्न है उसके जीवन का केंद्र है। लग्न का मतलब वो व्यक्ति स्वयं, लग्न मतलब आप खुद, राशि मतलब आपका मन। तो किसी व्यक्ति का लग्न उसके जीवन का केंद्र है और कुंडली के लग्न से ही स्वास्थ्य, सफलता और बाधाएं निर्धारित होती हैं। आपके लग्न से ही ये पता चलता है कि आपके जीवन में स्ट्रेंथ कितनी होगी, ताकत कितनी होगी, कितने सफल होंगे और जीवन में बाधाएं कैसी आएंगी। लग्न के अनुसार हर लग्न के जीवन की बाधाएं निश्चित होती हैं कि उस तरह की बाधाएं जरूर आती हैं। तो लग्न के अनुसार पहले बाधाओं को समझना चाहिए और इसके बाद लग्न के अनुसार विशेष पूजा करके बाधाओं को दूर करना चाहिए।
अगर आप अपने लग्न का नेचर जान जाएं, लग्न का टेम्परामेंट जान जाएं, तो एक पूजा करके आप अपने भाग्य को बेहतर कर सकते हैं, अपने भाग्य को बहुत अच्छा बना सकते हैं, क्योंकि हर लग्न का अलग अलग गुण होता है, अलग

जिस तरह की बाधाएं आपके जीवन में आ रही हैं, उससे संबंधित अगर पूजा आप लंबे समय तक करें तो आपका भाग्य चमकेगा और बाधाएं जीवन से दूर हो जाएंगी। सबसे पहले बात करते हैं मेष लग्न की। देखिए, मेष लग्न के स्वामी हैं मंगल और ये चर लग्न है, यानी मेष लग्न के अंदर स्थिरता नहीं होती, मूवमेंट बहुत ज्यादा होता है। तो मेष लग्न वालों के जीवन में चीजें अक्सर अस्थिर रहती हैं और ये लोग काफी उम्र बीत जाने के बावजूद सेटल नहीं हो पाते। योग्य होते हैं, ऊर्जा बहुत होती है, मेहनत करते हैं, नई चीजों को खोज निकालते हैं, लेकिन काफी उम्र तक इनका सेटलमेंट नहीं हो पाता। इनके साथ दुर्घटनाएं होने की संभावना काफी होती है। अगर किसी का मेष लग्न है, सर दर्द की शिकायत होने की पॉसिबिलिटी काफी है, चोट चपेट लगने की संभावना काफी है और उम्र बढ़ने पर नसों की समस्या, नर्व की प्रॉब्लम या ब्रेन की प्रॉब्लम भी इनको पकड़ लेती है। लेकिन मेष लग्न वालों की सबसे बड़ी बाधा है कि इनका जीवन आसानी से स्थिर नहीं होता। इनको जीवन में स्टेबल होने में, स्थिर होने में वक्त लगता है। इनको नियमित रूप से सूर्य देव की उपासना करनी चाहिए। अगर आपका मेष लग्न है, आंख मूंद कर बिना सोचे विचारे सूर्य भगवान की पूजा जरूर करिए। इनको रोज सूर्य भगवान को जल चढ़ाना चाहिए और जल चढ़ाने के बाद सुबह के समय 108 बार ओम आदित्याय नमः या ओम घृढ़हि सूर्याय नमः इस मंत्र का जप करना चाहिए। तो अगर आपका मेष लग्न है तो आपके लिए एक पूजा है कि आप नियमित रूप से सूर्य भगवान को जल चढ़ाएंगे और सूर्य मंत्र का जप करेंगे। वृषभ लग्न, शुक्र इस लग्न का स्वामी है, स्थिर स्वभाव का लग्न है, स्टेबिलिटी और स्थिरता इनके काम में हमेशा दिखाई देगी। वृष लग्न के जो लोग होते हैं ये अत्यधिक संघर्ष जीवन में करते हैं, इनके जीवन में संघर्ष बहुत होता है और अक्सर करियर के और इमोशंस के, भावनाओं के उतार चढ़ाव से जूझते रहते हैं। इनका किसी न किसी मामले में स्ट्रगल चलता रहता है। वृष लग्न का जो सिंबल है वो क्या है? बैल। तो स्वभावतः ये बड़े जिद्दी और बड़े उग्र स्वभाव के होते हैं, जिद इनके अंदर काफी ज्यादा होती है और अगर इनको कंट्रोल ना किया जाए तो बहुत जल्दी एग्रेसिव हो जाते हैं और अपने जिद की वजह से, अपने उग्र स्वभाव

0: अभाव की वजह से जीवन में नुकसान उठाते हैं। वैवाहिक जीवन में या रिश्तों में 100% कंट्रीब्यूशन करते हैं, 100% समर्पण होता है। लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि अगला भी उतना ही समर्पण दिखाए। इसीलिए वैवाहिक जीवन में रिश्तों में इनको संतोष नहीं मिल पाता। वृष लग्न वाले बड़े स्थिर दिमाग के, बड़े मेहनती, बड़े तेजी से आगे बढ़ने वाले होते हैं, लेकिन इनको चीजों को पाने में संघर्ष करना पड़ता है। क्या पूजा करेंगे? वृष लग्न वालों को नियमित रूप से शनि देव की उपासना करनी चाहिए। इनको नियमित रूप से शनि देव की उपासना करने से लाभ होगा। इनको रोज शाम को शनि मंत्र का जप करना चाहिए। ओम शं शनैश्चराय नमः। और शनिवार की शाम को पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक इनको जलाते रहना चाहिए। अगर वृष लग्न वाले नियमित रूप से शनि देव की पूजा करें तो इनका स्वभाव थोड़ा माइल्ड होगा और इनके जीवन का संघर्ष कम हो जाएगा। मिथुन लग्न स्वभावतः इंटेलिजेंट लग्न है, बुद्धिमान लग्न है। बुद्ध इस लग्न का स्वामी है। वायु तत्व का और द्वि स्वभाव का लग्न है। मिथुन लग्न वाले नॉर्मली 100 में से 80% मामलों में इंटेलिजेंट होते हैं। ये अक्सर जल्दबाजी के और दुविधा के शिकार हो जाते हैं। हर काम जल्दी करना चाहते हैं और एक साथ कई काम में हाथ डाल देते हैं। उस चक्कर में कोई काम सही नहीं हो पाता और अक्सर निर्णय लेने में कंफ्यूज होते हैं कि मुझे किस रास्ते पर कैसे चलना चाहिए। कंफ्यूजन और जल्दबाजी इनके जीवन में बनी रहती है। संतान के साथ इनका अटैचमेंट बहुत होता है। मिथुन लग्न वाले संतान का बड़ा मोह रखते हैं और संतान के मोह में गड़बड़ियां करते हैं। मोह में संतान को बिगाड़ देते हैं और बाद में चीजें बिगड़ जाती हैं। संतान के जीवन में मुश्किलें आ जाती हैं। संतान के मुंह में गड़बड़ियां होती हैं। मिथुन लग्न वाले बुरे नहीं होते, किसी को परेशान नहीं करते, नॉन डिस्टर्बिंग होते हैं, लेकिन रिश्तों के मामले में, सबको खुश रखने के चक्कर के मामले में ये अक्सर अकेले रह जाते हैं। इनको लगता है इसको भी संभाल लो, उसको भी संभाल लो, इसका भी ध्यान दे दो, ये काम भी कर लो। उस चक्कर में बेचारे अकेले रह जाते हैं। मिथुन लग्न वाले हार्मफुल बिल्कुल नहीं होते। अब अगर मिथुन लग्न है तो आपकी मुश्किल क्या है? एक साथ बहुत सारे काम में घुसना, बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड रहना और बुद्धि तेज होने के बावजूद जल्दबाजी के चक्कर में गड़बड़ कर देना। क्या करना चाहिए? मिथुन लग्न वालों को नियमित रूप से श्री हरि की, भगवान विष्णु की उपासना करनी चाहिए। अगर आपका मिथुन लग्न है तो आप रोज सुबह विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। अगर कठिन लगता है बड़ा लगता है तो मोबाइल पर लगा करके सुन लें, सुन करके भगवान विष्णु से कृपा की प्रार्थना करें, आपको लाभ होगा। कर्क लग्न, चंद्रमा इस लग्न का स्वामी है, चर लग्न है, जल तत्व का लग्न है, भावनाओं का, इमोशन का, क्रिएटिविटी का और भाग्य का सबसे बड़ा लग्न है कर्क लग्न। लेकिन कर्क लग्न वालों के जीवन में सुकून नहीं होता, चमक सूर्य की तरह जाएंगे लेकिन अंधेरा भी अमावस्या की तरह होगा। कर्क लग्न वालों की सेहत आम तौर पर अच्छी नहीं रहती, स्वास्थ्य के मामले में थोड़े लापरवाह भी होते हैं और स्वास्थ्य की समस्याएं, खासतौर से पेट की समस्याएं इनको परेशान करती हैं और मन की समस्याएं भी इनको काफी परेशान करती हैं। कर्क लग्न वालों की सेहत, आयु और मन की समस्या इनको लगातार परेशान करती है। इनका मेंटल लेवल बड़ा सेंसिटिव होता है और सबसे बड़ी बात यह है कि मन में कोई बात लग गई कहेंगे भी नहीं, बताएंगे भी नहीं। ऐसा देखा गया है कि कर्क लग्न वालों का वैवाहिक जीवन 90% मामले में अच्छा नहीं होता। वैवाहिक जीवन में इनके अगर भगवान की कृपा है तो वैचारिक मतभेद रहता है, जिंदगी रोते गाते घिसटती रहती है, और अगर नकारात्मक प्रभाव है तो शादी टूटना निश्चित होता है। वैवाहिक जीवन को लेकर कर्क लग्न वालों को कष्ट का सामना अक्सर करना पड़ता है। ये जीवन में जब भी निर्णय लेंगे ना, ये बड़े भावनात्मक हो जाते हैं, ये दिमाग का इस्तेमाल कभी नहीं करते। इसका मतलब ये नहीं है कि कर्क लग्न वाले बुद्धिमान नहीं होते, इंटेलिजेंट बहुत होते हैं, इनोवेटिव बहुत होते हैं और भाग्य की कृपा, ईश्वर की कृपा भी होती है इनके ऊपर, लेकिन अक्सर इमोशंस में आके इनसे बड़ी गलतियां होती हैं और भावनात्मक गलतियां करते हैं निर्णय लेने में, जिसके परिणाम गंभीर होते हैं। ये अक्सर दिल की बात सुनते हैं, दिमाग की बात नहीं सुनते, और इसी चक्कर में कर्क लग्न वाले बुद्धि होने के बावजूद बेवकूफ बनते हैं। तो कर्क लग्न वालों की क्या समस्या है? मुख्य समस्या है इनकी भावनाएं, इनका अत्यधिक भावुक होना, अत्यधिक इमोशनल होना। क्या करना चाहिए? कर्क लग्न वालों को नियमित रूप से भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। इस दुनिया में संतुलन के दो ही देवता हैं, भगवान शिव और भगवान कृष्ण। क्योंकि कर्क लग्न का स्वामी चंद्र है और चंद्रमा से शिव जी डायरेक्टली एसोसिएटेड हैं, इसीलिए कर्क लग्न वालों को भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए। आप कुछ करें या ना करें, शिवलिंग पर नियमित रूप से जल चढ़ाएं और शिव मंत्र का अगर आप जप करें, नमः शिवाय रोज सुबह पढ़ें, शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, तो आपका कल्याण अवश्य होगा। सिंह लग्न, सूर्य इस लग्न का स्वामी है, स्थिर स्वभाव का, अग्नि तत्व का लग्न है, बड़ा ताकतवर, बड़ा शक्तिशाली, रॉयल लग्न, राजसी लग्न है सिंह लग्न। सिंह लग्न वाले जो होते हैं ना, जैसे सूर्य के अंदर भावनाएं नहीं होती, सूर्य का क्या गुण है? रूखा होना, ड्राई होना, क्रूर होना या जिद्दी होना। तो सूर्य का जो बेसिक टेम्परामेंट है ना, वो सिंह लग्न वालों के अंदर होता है। ये बड़े रूखे और बड़े अक्खड़ स्वभाव के होते हैं, और अगर सूर्य इनका प्रबल हो गया ना, सिंह लग्न है, सूर्य अगर प्रबल है तो ये बड़े रूखे, बड़े डोमिनेटिंग और सबके ऊपर शासन करने वाले होंगे। अगर सिंह लग्न है और जल्दी शादी हो गई 24 साल में, 25 साल में, 26 साल में, तो ज्यादातर मामले में दिक्कत आती है, विवाह टूटता है या विवाह में कुछ समय तक अलगाव का सामना करना पड़ता है। सिंह लग्न वाले बड़े शक्तिशाली होते हैं, हर स्थिति परिस्थिति से जूझते हैं, संघर्ष से, मेहनत से नहीं घबराते, और किस्मत भी ऐसी ही मिलती है। जीवन में छोटी छोटी चीजों को पाने के लिए इनको संघर्ष करना पड़ता है, जीवन में चीजें आसानी से नहीं मिलती। लेकिन सिंह लगन वाले भी कम नहीं होते, नहीं मिलेगी तो भी जूझेंगे और पा करके ही दम लेंगे, अगर सिंह लग्न की प्रबलता ज्यादा है तो। अगर आपका सिंह लग्न है तो देखिए, एक लाइन में आपकी समस्या है, आपका कठोर स्वभाव और जीवन का संघर्ष। तो क्या करेंगे? नियमित रूप से सूर्य भगवान की उपासना आपको करनी है। अगर आपका सिंह लग्न है तो भगवान सूर्य की उपासना करिए। सूर्य देव को रोज सुबह जल चढ़ाइए और जीवन की समस्याओं में विजय पाने के लिए आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए। अगर आप ऐसा नियमित रूप से करें तो सिंह लग्न वालों का जीवन बेहतर होगा, जीवन का अनावश्यक संघर्ष कम हो जाएगा। कन्या लग्न, बुध इस लग्न का स्वामी है, द्वि स्वभाव का लग्न है, पृथ्वी तत्व का लग्न है। कन्या लग्न वाले जो होते हैं ना, वे अनुशासित होते हैं आम तौर पे। अगर कन्या लग्न है तो डिसिप्लिन आपके अंदर होगा, सफाई होगी और क्लास होगा। अगर पैसे ज्यादा नहीं है तो भी कपड़े बड़े सोच समझ के, बड़े सिस्टम से पहनेंगे, बड़े क्लास का पालन करेंगे। तो ये लोग अनुशासन, सफाई और क्लास के शौकीन होते हैं, और अक्सर इनको जीवन साथी ऐसा मिलता है जो इनका बिल्कुल अपोजिट होता है, बिल्कुल अस्त व्यस्त, अनुशासन को ना मानने वाला, जीवन में लापरवाही करने वाला। ऐसा लाइफ पार्टनर या ऐसे मित्र भी मिलते हैं जो इनके बिल्कुल विपरीत होते हैं। और कन्या लग्न वाले बड़े इंटेलिजेंट होते हैं, दिमाग बहुत होता है, मैनेजमेंट इनके ब्लड में होता है, कठिन से कठिन काम को ब्यूटीफुली मैनेज करने का गुण कन्या लग्न वालों में पाया जाता है। लेकिन इनकी मुश्किल क्या है? बहुत जल्दी एक तरह के काम से बोर हो जाते हैं। इनको लगता है जीवन में कुछ नया हो, रोज नई चुनौती आए, रोज मेहनत करनी पड़े और रोज कुछ नया करके दिखाने का मौका मिले। कन्या लग्न वाले ऐसा सोचते हैं। कन्या लग्न वालों की मुश्किल क्या है कि ये अपने बराबर किसी को नहीं समझते। ये क्लास के चक्कर में, अपनी योग्यता के चक्कर में दूसरों को अपने बराबर नहीं समझते और दूसरे इनके काम को कुछ नहीं समझते। इस चक्कर में आप देखेंगे कन्या लग्न वालों के ऑफिस में बॉस के साथ झंझट बहुत होते हैं। क्या करना चाहिए? इनको नियमित रूप से भगवान कृष्ण की उपासना करनी चाहिए। हालांकि देखिए, कितनी बात मानेंगे ये हम कह नहीं सकते, लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हैं कि आपकी योग्यता का सम्मान हो, आप जीवन में आगे बढ़ें, आपको गौरव मिले, तो नियमित रूप से भगवान कृष्ण की उपासना करें, श्री कृष्ण को तुलसी दल अर्पित करें और नियमित रूप से सुबह के समय मधुराष्टक का पाठ करें या सुनें। तो यही एक पूजा, भगवान कृष्ण की केवल एक मात्र पूजा अगर आप नियमित रूप से करें तो आपका कल्याण होगा। तुला लग्न, शुक्र इस लग्न का स्वामी है, वायु तत्व का लग्न है और चर यानी मूवमेंट वाला लग्न है। तुला लग्न के जो लोग होते हैं वो होते बड़े डिसेंट हैं। तुला लग्न के लोग आम तौर पर झंझटों में पड़ने वाले नहीं होते और आम तौर पर नॉन डिस्टर्बिंग होते हैं। तुला लग्न के लोग सामान्यतः जल्दबाजी में बड़ी गलतियां कर बैठते हैं। सामान्यतः जल्दबाजी में इनसे बड़ी गलतियां होती हैं क्योंकि इनको लगता है कोई भी काम जितना जल्दी करो उतना अच्छा। हर काम जल्दी करना अच्छा नहीं होता, कुछ काम में थोड़ा समय देना भी बेहतर होता है। दिखावे के चक्कर में क्या पहनते हैं, क्या खाते हैं, कैसे रहते हैं, इनको पॉम्प एंड शो का, दिखावे का बड़ा शौक होता है और इस चक्कर में काफी धन का नुकसान करते हैं। और तुला लग्न वालों के सरल स्वभाव की वजह से लोग इनको बेवकूफ बनाते हैं, इनसे पैसे भी लेते हैं, इनकी झूठी तारीफ करके इनको उल्लू बनाते हैं और अक्सर प्रेम के चक्कर में, लगाव में इनको अक्सर असफलता मिलती है, उसमें इनको नुकसान होता है। तुला लग्न वालों की दो बहुत बड़ी कमियां हैं। पहला, दिखावा, दिखावे की आदत, उस चक्कर में गड़बड़ी होती है और बिना सोचे समझे, बिना विचार किए प्राइमा फेसी जो प्रथम दृष्टया है, जो जैसा दिख रहा है बिना सोचे विचारे, बिना जांच पड़ताल किए प्रेम में और रिश्तों में पड़ जाते हैं और 90% इनको असफलता मिलती है। इनके सरल स्वभाव का लोग फायदा उठाते हैं, ये बेचारे दूसरों की सहायता करने में लगे रहते हैं, दूसरों को बेहतर करने में लगे रहते हैं और लोग इनको बेवकूफ बना के निकलते बनते हैं। हालांकि तुला लग्न वाले भाग्यवान बहुत होते हैं, इसीलिए तमाम उतार चढ़ाव के बावजूद किस्मत इनका साथ देती है। अगर आपका लग्न तुला लग्न है तो नियमित रूप से दान करिए। आपको दिखावे के लिए नहीं, आपको दूसरों की सहायता के लिए दान करना है, नियमित रूप से ध्यान करना है और अगर परमात्मा की कृपा से आपका सही समय विवाह हो गया है तो जीवन साथी की बात मानिए, जीवन साथी से डिस्कस करके, सलाह मान करके चलिए तो बहुत सारी मुश्किलें आपके जीवन की कम हो जाएंगी। वृश्चिक लग्न, मंगल स्वामी है, जल तत्व का लग्न है और स्थिर स्वभाव का लग्न है। जल का एक लग्न कर्क लग्न भी, आपको बताया ना, कर्क लग्न का जो पानी है वो ठंडा है, वृश्चिक लग्न का जो पानी है वो गर्म है, बॉइलिंग वाटर है। इसीलिए वृश्चिक लग्न वालों के अंदर छुपी हुई पानी के अंदर गर्मी होती है, पानी को देख के नहीं जान सकते गर्म है कि ठंडा है, टच करना पड़ेगा। इसीलिए वृश्चिक लग्न वालों को देख के नहीं जान सकते कि क्या है इनका रहस्य। वृश्चिक लग्न वाले बड़े रिवेंजफुल होते हैं, अगर उनको आपने परेशान नहीं किया तो जीवन में उनसे बढ़िया कोई नहीं है। अगर वो नॉर्मल जीवन में चल रहे हैं उनको चलने दीजिए, डिस्टर्ब मत करिए, वो जीवन में आराम से रहेंगे, अपने काम से काम रखेंगे। लेकिन अगर छेड़ा या परेशान किया तो इनको बदला लेने की बुरी आदत होती है, ये आपको छोड़ेंगे नहीं, सही समय का इंतजार करेंगे और सही समय आने पर आपके लिए ऐसी तैसी स्थितियां पैदा कर देंगे। वृश्चिक का जो सिंबल है वो क्या है, बिच्छू। अगर आपने उसे छेड़ा वो डंक मारेगा समय आने पर। वृश्चिक लग्न वाले विद्वान बहुत होते हैं, वृश्चिक वाले बड़े अच्छे डॉक्टर होते हैं, वृश्चिक वाले बड़े अच्छे पत्रकार भी हो सकते हैं, लेकिन वृश्चिक लग्न वालों को अगर कोई भूत, कोई सनक सवार हो गया तो आप मान करके चलिए कि फिर ये देखेंगे नहीं कि उसके परिणाम क्या हैं। अक्सर वृश्चिक लग्न वालों का अपने गुरु के साथ, अपने मार्गदर्शक के साथ मतभेद हो जाता है। जो इनको सिखाते हैं, पढ़ाते हैं, हो सकता है गुरु ने कभी कोई ऐसी बात कह दी जो इनको ईगो को लग गई, इनके मार्गदर्शक ने इनको कुछ ऐसा बता दिया जो इनको कष्ट पहुंचा गया, चुभ गया, तो ये छोड़ करके रास्ता अलग हो जाएंगे और मौका पड़ने पे अपना काम करेंगे। वृश्चिक लग्न वालों का जीवन साथी या तो रहता नहीं, आम तौर पर जीवन साथी इनको बड़ा अच्छा मिलता है, कोई बड़े उच्च पद की स्त्री, उच्च पद का पुरुष, कोई बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति से इनकी शादी होती है ऐसा देखा गया है, या तो वो रहता नहीं, और अगर शादी हो गई तो बहुत बार ऐसा होता है कि पति पत्नी अलग अलग हो जाते हैं। देखिए, वृश्चिक लग्न वालों को अपनी बदला लेने की आदत छोड़नी है, मन में रहस्य नहीं रखना है और ऊपर से मीठे रह के मन में जहर नहीं रखना है। हर जगह राजनीति मत करिए, खुराफातों से बचिए। ईश्वर ने आपको बड़ी योग्यता दी है, क्यों आप दुरुपयोग करते हैं अपनी शक्तियों का। इनको नियमित रूप से शिव जी की उपासना करनी चाहिए, बहुत जरूरी है। वृश्चिक लग्न वाले अगर शिव जी की उपासना करें तो कम से कम जीवन में शांत तरीके से, संयमित तरीके से, बेहतर तरीके से रहेंगे। और शिव जी को जल चढ़ाएं, शिव तांडव स्तोत्र का अगर पाठ करें या सुने रोज सुबह तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। धनु लग्न बृहस्पति स्वामी हैं, द्विस्वभाव का लग्न है और अग्नि तत्व का लग्न है। धनु का मतलब जिसके हाथ में धनुष है, लड़ाई करने को तैयार, ये बेसिक फीचर है धनु लग्न का, एग्रेशन होना या लड़ाई करना। इसीलिए आर्मी में, पुलिस में, सेना में, साहस में, करेजियस क्षेत्रों में धनु लग्न वाले काफी होते हैं। धनु लग्न वालों को क्रोध बहुत आता है और उग्रता की काफी समस्या होती है, एग्रेसिव बहुत होते हैं, और जब ये एग्रेसिव होते हैं तो दिमाग काम करना बंद कर देता है। क्रोध में ये किसी भी सीमा तक जा सकते हैं, इनको क्रोध और उग्रता की काफी समस्या होती है। धनु लग्न वालों की संतान योग्य होती है ऐसा देखा गया है, लेकिन संतान इनको कुछ समझती नहीं, इनका बेटा या बेटी इनसे दूर चला जाता है और संतान की तरफ से इनको जीवन में कष्ट का सामना करना पड़ता है, विचार एक पैसे के नहीं मिलते। धनु लग्न में भी संघर्ष बहुत होता है, आसानी नहीं होती, मेहनत धनु लग्न वालों को भी बहुत करनी होती है, और बहुत बार ये मेहनत करते हैं, फायदा कोई और ले जाता है, ऐसा भी धनु लग्न वालों के साथ होता है। लेकिन ये भागते नहीं, हारते नहीं, अपनी मेहनत से अपने लक्ष्य को हासिल कर लेते हैं, मेहनती बहुत होते हैं और लगातार दिमाग लगा के मेहनत करके ऊंचाइयों पर पहुंचते हैं। लेकिन हाँ, काफी उम्र बीत जाने के बाद तब इनको सफलता मिलती है। सामान्यतः दिमाग और ताकत दोनों का कॉम्बिनेशन धनु लग्न वालों के पास पाया जाता है। इनकी समस्या है इनका क्रोध, इनकी उग्रता और इनके जीवन का संघर्ष। भगवान सूर्य की अगर ये उपासना करें तो इनके लिए बहुत अच्छा होगा। रोज सुबह सूर्य देव की पूजा करें, उनको जल चढ़ाएं और रोज सुबह सूर्य मंत्र का जप करें, ओम आदित्याय नमः। इस मंत्र का जप करें, थोड़ा टेम्परामेंट शांत होगा, जीवन का संघर्ष कम होगा। मकर लग्न शनि स्वामी है, चर लग्न है और पृथ्वी तत्व का लग्न है। मकर लग्न वाले बड़े परफेक्शनिस्ट टाइप के होते हैं, कन्या लग्न वालों के जैसे ही परफेक्शन होता है इनके अंदर, और मकर लग्न वाले जिस सब्जेक्ट में होंगे उसको बहुत अच्छी तरह जानते होंगे। मकर लग्न वालों की मुश्किल ये है कि अगर इनको बार बार कोई साहस न दे, कोई हिम्मत न दे, कोई दिलासा न दे तो बहुत जल्दी उदास और निराश हो जाते हैं। मकर लग्न वालों को अगर ये कहते रहा जाए कि तुम सब कर सकते हो, तुम आगे बढ़ सकते हो, तुम कर ले जाओगे, तुम्हें सफलता मिलेगी, बार बार इनको बताया जाए तो ये पर्वत भी लांग सकते हैं। लेकिन चूंकि बार बार सपोर्ट नहीं मिलता तो बहुत जल्दी घबरा भी जाते हैं, निराश भी हो जाते हैं। और मकर वाले बड़े ईमानदार होते हैं अपने रिश्तों के मामले में, जीवन में आगे बढ़ने के मामलों में। जिसको अपना मानते हैं उसके साथ लगे रहते हैं, उसके साथ संबंध निभाते हैं, लेकिन इनको उतना सपोर्ट वापस नहीं मिलता, इसीलिए पारिवारिक जीवन से रिश्तों के मामले में संतुष्ट नहीं होते। मकर लग्न वालों का स्ट्रेंथ, शारीरिक क्षमता मजबूत होती है। मकर लग्न वालों को आमतौर पर बड़ी बीमारी होने की पॉसिबिलिटी नहीं होती है, लेकिन अक्सर छोटी छोटी स्वास्थ्य की समस्या, त्वचा की समस्या, सर दर्द की समस्या, कान नाक गले की समस्या, ये अक्सर मकर वालों को परेशान करती है। मकर वालों को जीवन में कोई ऐसा मिल जाए जो बार बार इनको साहस देता रहे, बार बार इनको इनकी ताकत याद दिलाता रहे, तो मकर लग्न वाले वो कर सकते हैं जो कोई नहीं कर सकता। अगर आपका लग्न मकर लग्न है, जीवन में भाग्य को मजबूत करना है, आगे बढ़ना है, तो नियमित रूप से शनिदेव की उपासना करिए। यही एक पूजा आपके लिए जरूरी है। नियमित शनि की उपासना करिए, रोज शाम को 108 बार शनि मंत्र का जप करिएगा। ओम शं शनैश्चराय नमः, इस मंत्र का जप करना आपके लिए बहुत बेहतर होगा। कुंभ लग्न शनि स्वामी है, वायु तत्व का लग्न है और स्थिर लग्न है। कुंभ लग्न वाले बड़े इंटेलिजेंट होते हैं, बड़े बुद्धिमान, बड़े इंटेलिजेंट, और कभी कभी इतने ज्यादा बुद्धिमान कि वो बुद्धि ज्यादा होने की वजह से साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम भी हो जाती है कुंभ लग्न वालों को। कुंभ लग्न वालों के चूंकि जीवन का केंद्र होता है शनि, इसीलिए कुंभ लग्न वालों को आप आमतौर पर देखेंगे कि उम्र के 32 साल तक बड़ा संघर्ष करते हैं। 30-32 साल तक कुंभ लग्न वालों का संघर्ष चलता रहता है, खास तौर से करियर के मामले में इनको संघर्ष ज्यादा करना पड़ता है, लेकिन बाकी चीजें धीरे धीरे इनको मिलती रहती हैं। करियर को स्टेबल करने में वक्त लगता है। कुंभ लग्न वाले होते इंटेलिजेंट, बुद्धिमान, ज्ञानवान, और जीवन साथी बिल्कुल अपोजिट मिलता है, एग्रेसिव, बात ना सुनने वाला, बात ना मानने वाला। अगर बुद्धिमान है तो भी उद्दंड और उज्जड होता है। तो कुंभ लग्न वालों को जीवन साथी बिल्कुल अपोजिट मिलता है, जिसकी वजह से परेशान रहते हैं, लेकिन करें क्या। कुंभ लग्न वाले बुद्धिमान बहुत हैं, कुंभ लग्न वाले ताकतवर बहुत हैं, जीवन में आगे बढ़ते हैं, कुछ ऐसा करके जाते हैं जिंदगी में जिससे उनको दुनिया याद रखती है, अगर भगवान की कृपा रही तो। लेकिन कुंभ लग्न वाले भीड़ में भी अकेले रहते हैं, ये पक्के तौर पे जानिए कि कुंभ लग्न वाले कितने भी पॉपुलर हों, कितने भी प्रसिद्ध हों, जीवन में अकेलापन रहेगा और कुंभ लग्न वालों को डिप्रेशन बहुत जल्दी होता है। कुंभ लग्न वाले आपको बताएंगे नहीं, वृश्चिक लग्न, कुंभ लग्न, ये सब छुपा लेते हैं अपनी चीजों को। तो जीवन में अकेलापन और अवसाद इनको बहुत जल्दी होता है। कुंभ लग्न वाले जब जीवन में सब कुछ पा जाते हैं तो एक दिन सब कुछ छोड़ करके संन्यास लेकर या एकदम आइसोलेशन में अकेलेपन की तरफ चले जाते हैं। अगर आपका कुंभ लग्न है तो आपको ध्यान और पूजा उपासना पर बहुत ध्यान देना चाहिए। आप जितना मेडिटेशन करें, जितना ध्यान करें, आप अपने आप को संभाल पाएंगे। आपकी सहायता कोई और नहीं कर सकता, आपको खुद अपनी सहायता करनी पड़ेगी। जितना ध्यान करें, मंत्र जप करें, प्रभु से प्रार्थना करें, उतना ही आप जीवन में ठीक रहेंगे। प्रातः काल पूजा करना, प्रातः काल ध्यान करना आपको ज्यादा फायदा करेगा। तो कुंभ लग्न वालों को सिर्फ एक ही पूजा करनी है, वो है ध्यान। मीन लग्न बृहस्पति स्वामी है, जल तत्व का लग्न है, द्वि स्वभाव का लग्न है। मीन लगन वाले जो होते हैं ना, वो होते तो बुद्धिमान है, बात किसी की नहीं सुनेंगे चाहे कोई कितना भी समझाए। आपके मुंह पे भले ही कह देंगे कि ठीक है मैं मानूंगा, मानेंगे बिल्कुल नहीं। इनको अपनी बुराई और सुझाव बर्दाश्त नहीं होता और इनके मन में बहुत जल्दी ईर्ष्या का भाव आ जाता है। मौका पाए तो दूसरे को नुकसान पहुंचाने से बाज नहीं आते। इनको नशे की आदत बहुत जल्दी लग जाती है और अगर गलत संगति पकड़ ली तो चरित्र भी बहुत जल्दी कमजोर होता है। अगर आपका लग्न मीन लग्न है तो शिव जी की जितनी पूजा करें उतना अच्छा होगा। नियमित रूप से शिवलिंग पर जल चढ़ाएं और नमः शिवाय का अगर आप जप रोज करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। तो गुड लक स्पेशल में आज के लिए बस इतना ही। आपका सप्ताह शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।
1: सास बहू और बेटियां में आज देखिए टेलीविजन की दुनिया में अनलिमिटेड ड्रामा। दोपहर 1:28 से लेकर 3 बजे तक सिर्फ सास बहू और बेटियां में।

0: कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
0: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।

0: लगा निकल जाएगा दम पर जज्बा नहीं हुआ कम। लहू लुहान बदन फिर भी परमार्थ से भरा मन। हनुमान चालीसा से मिला जूझने का बल। 174 लोगों को मौत से बचाने वाला महाबली। बंदे में है दम श्वेता झा के साथ शाम 5:04 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 गुड न्यूज टुडे पर।
2: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9:00।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
2: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
0: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: अमेरिका के न्यू मेक्सिको में विश्व का सबसे बड़ा हॉट एयर बलून उत्सव अल्बुकर्क इंटरनेशनल बलून फिएस्टा 2026 धूमधाम से शुरू हो चुका है और इस दौरान आकाश में तैरते सैकड़ों गुब्बारों के इस मनमोहक दृश्य को लाइव देखने के लिए दुनिया भर से लाखों लोग न्यू मेक्सिको पहुंच रहे हैं। देखिए तस्वीरें।
2: रंग बिरंगे गुब्बारों से भरा है आसमान, नील गगन पर अलग अलग रंगों और डिजाइनों वाले होटल गुब्बारों की उड़ान का ये नजारा बेहद शानदार है। ये तस्वीरें अमेरिका के न्यू मेक्सिको में चल रहे अल्बुकर्क इंटरनेशनल बलून फेस्टा की है। यहाँ सिर्फ पारंपरिक गुब्बारे नहीं बल्कि अलग अलग आकार वाले विशेष बैलून भी आकर्षण का केंद्र बने हैं। इनमें गाय जैसा दिखने वाला और मशहूर स्मोकी बेयर की झलक दिखाने वाले गुब्बारे भी शामिल हैं। न्यू मेक्सिको में गुब्बारों के उत्सव की शुरुआत तड़के खास ड्रोन लाइट शो के साथ हुई। इस शो में हॉट एयर बलून, न्यू मेक्सिको के स्टेट बर्ड ग्रेट रॉडनर, चिली पेपर और मैक्सिकन थीम वाली अनोखी आकृतियां नजर आई। इसके बाद शुरू हुई गुब्बारों में हवा भरने की तैयारी। जब एक एक कर विशाल बैलून जमीन पर आकार लेने लगे तो देखते ही देखते पूरा फिएस्टा पार्क रंगों से भर गया। सूरज उगने के साथ ही सुबह करीब 7 बजे शुरू हुए इस महोत्सव का सबसे मनमोहक वह पल था जब सैकड़ों हॉट एयर बैलून एक साथ आसमान की ओर उठने लगे और फिर ऐसा लगा जैसे पूरा आसमान रंग बिरंगे गुब्बारों से ढक गया हो। इस नजारे को देखने के लिए अमेरिका ही नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने से बड़ी संख्या में लोग अल्बुकर्क इंटरनेशनल बैलून फिएस्टा पार्क पहुंचे। इस बैलून महोत्सव की शुरुआत सन 1962 में महज 13 गुब्बारों के साथ हुई थी और अब ये दुनिया के सबसे बड़े बैलूनिंग फेस्टिवल में शुमार हो चुका है। आयोजकों के मुताबिक इस बार 500 से ज्यादा बलून फिएस्टा में हिस्सा ले रहे हैं। इस बार 9 दिनों का ये इंटरनेशनल बलून फिएस्टा 11 अक्टूबर तक जारी रहेगा और बलूनिंग के शौकीनों को एक बार फिर से अनूठी यादें संजोने का मौका देगा। रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
3: सास बहू और बेटियां में आज देखिए टेलीविजन की दुनिया में अनलिमिटेड ड्रामा, दोपहर 1:28 से लेकर 3 बजे तक सिर्फ सास बहू और बेटियां में।

0: परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मार इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
2: एवरेस्ट दिखा लाल, सही दिखा सही लाल।
3: वाराणसी में शक्ति आराधना उत्सव की तैयारियां तेज, पश्चिम बंगाल की तर्ज पर बनाई जाती है दुर्गा पूजा, मां की प्रतिमाओं को अंतिम रूप दे रहे हैं कारीगर। केदारनाथ धाम में उमड़ रहा है आस्था का मेला, बड़ी संख्या में श्रद्धालु कर रहे हैं बाबा केदार के दर्शन, मुख्य द्वार और वीआईपी गेट पर भक्तों की कतार। सुहाने मौसम में देवभूमि में सैलानियों का हुजूम उमड़ा, गंगोत्री और हर्षल में होटल और होम स्टे हाउसफुल हुए, पर्यटन कारोबार को मिला बढ़ावा। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा में बीएसएफ की अगुवाई में मैराथन वुलर अल्ट्रा रन 3.0 में बड़ी संख्या में उमड़े लोग, फिटनेस के साथ साथ वुलर झील के संरक्षण का संदेश। एशियन गेम्स में तिरंगा लहराकर महिला हॉकी टीम जापान से लौटी स्वदेश, रांची एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत, कैप्टन सलीमा टेटे ने अगवानी की।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम।
3: एशियन गेम्स के महिला हॉकी में स्वर्ण पदक लेकर लौटी बेटियों का भव्य स्वागत, झारखंड एयरपोर्ट पर पहुंचे फैंस, बेटियों के स्वागत के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन, लोगों ने खिलाड़ियों को पहनाई फूलों की माला। एयरपोर्ट पर हाथों में हॉकी लेकर पहुंचे फैंस, ढोल नगाड़ों के बीच पारंपरिक डांस की प्रस्तुति दी। बॉक्सिंग के पदक वीर भी लौटे स्वदेश, गोल्डन गर्ल लवलीना और परवीन का दिल्ली एयरपोर्ट पर अभिनंदन। जापान से पर जीत कर लौटे अंकुश पंघाल और दूसरे खिलाड़ियों का भी जोरदार स्वागत किया गया, एशियन गेम्स में बढ़ाया देश का मान। जापान में एशियन गेम्स में परचम लहराकर स्वदेश लौटी भारतीय स्क्वॉश टीम, दिल्ली एयरपोर्ट पर हुआ स्वागत। अनाहत सिंह, तन्वी खन्ना, जोशना चनप्पा और शमीना रियाज ने एशियन गेम्स में मेडल पर कब्जा किया, चेहरों पर नजर आई कामयाबी की खुशी। इंडिविजुअल और टीम इवेंट में परफॉर्मेंस से संतुष्ट हैं अनाहत सिंह, आने वाले इवेंट्स में बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद है। तन्वी खन्ना ने भी एशियन गेम्स में परफॉर्मेंस पर जताई खुशी, जापान में कामयाबी के अनुभव को बताया बेहतरीन। भारतीय स्क्वॉश खिलाड़ी अभय सिंह भी जापान से स्वदेश लौटे, अब ओलंपिक की टिकट पर निगाहें हैं। महाराष्ट्र के अमरावती में एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीतने वाली कुमकुम मोहोड़ के घर पर जश्न मना, शानदार कामयाबी पर लोगों ने आतिशबाजी की। कुमकुम के परिजनों ने मिठाइयां खिलाकर खुशियां बांटी, 17 साल की कुमकुम ने रिकर्व तीरंदाजी में जीता गोल्ड मेडल। गाजीपुर में हॉकी खिलाड़ी राजकुमार पाल के घर बंटी मिठाइयां, एशियन गेम्स में जीत पर परिवार दिखा गदगद। हरियाणा के सिरसा में हॉकी प्लेयर्स ने मनाया भारतीय टीम की जीत का जश्न, उत्साह से लबरेज दिखे बच्चे। जलंधर में हॉकी खिलाड़ी मनप्रीत के घर दिखी खुशी की लहर, परिजनों ने वीडियो कॉल पर बात की। एशियन गेम्स के पदकवीर खिलाड़ियों पर इनामों की बरसात, गोल्फ में मेडल जीतने वाली प्रणवी उर्स को मिलेगा 1 करोड़ रुपए का पुरस्कार। महिला गोल्फ टीम की सदस्यों को मिलेंगे 25-25 लाख रुपए, एएम ग्रीन आईजीपीएल लीग ने ऐलान किया। हॉकी इंडिया ने की है महिला टीम के हर खिलाड़ी को 11 लाख रुपए देने की घोषणा, हर सपोर्ट स्टाफ को भी मिलेंगे 5.5 लाख। ओडिशा सरकार ने भी की है हर खिलाड़ी को 11 लाख रुपए देने की घोषणा, हर सपोर्ट स्टाफ को भी मिलेंगे 5.5 लाख। महिला हॉकी टीम के खिलाड़ियों को मिजोरम सरकार देगी 25-25 लाख रुपए, इनाम टीम में शामिल हैं मिजोरम की 2 प्लेयर्स। जापान की नागोया में आज एशियन गेम्स 2026 का समापन समारोह भारतीय समय के अनुसार दिन शाम 6 बजे से होगा रंगारंग कार्यक्रम। समापन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक होंगी भारतीय महिला ट्रैप निशानेबाज नीरू ढांडा। नीरू ने 2 स्वर्ण पदक और 1 3 रजत पदक जीतकर शानदार प्रदर्शन किया। इस बार एशियन गेम्स में 21 गोल्ड सहित कुल 85 मेडल जीतकर चौथे स्थान पर रहा भारत। 27 सिल्वर और 37 ब्रॉन्ज मेडल पर कब्जा किया। एशियन गेम्स के आखिरी दिन 5 गोल्ड सहित 9 मेडल जीतकर भारत ने शानदार फिनिश किया। क्रिकेट के अलावा हॉकी, गोल्फ और तीरंदाजी में भी मिली सुनहरी कामयाबी। भारत ने क्रिकेट, हॉकी और कबड्डी में लगातार दूसरी बार पुरुष और महिला दोनों वर्गों में जीते खिताब पूरा किया। गोल्ड मेडल डबल। लखनऊ में पिंक वेव रैली का आयोजन, ब्रेस्ट कैंसर को लेकर किया गया जागरूक। वेब रैली में 500 से ज्यादा महिलाओं ने हिस्सा लिया। पिंक टी शर्ट, पिंक कैप और पिंक रिबन लगाया। रैली में 1 दर्जन से ज्यादा विंटेज कारें सड़क पर दौड़ी। गदर फिल्म वाली कार भी हुई शामिल। लखनऊ में फिर बढ़ने लगा गोमती नदी का जलस्तर। रिवर फ्रंट के निचले इलाकों में भरा पानी। लखनऊ में अखिल विश्व गायत्री परिवार का प्रांतीय शिक्षक गरिमा कार्यशाला का आयोजन, सीएम योगी आदित्यनाथ ने शिरकत की। इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भारतीय पायलट कैप्टन स्मिथ से वीडियो कॉल पर बात की, बहादुरी की जमकर तारीफ की। पीएम नेतन्याहू ने कैप्टन स्मिथ को बताया इसराइल, भारत और पूरे विश्व के लिए हीरो। संकट की घड़ी में सैकड़ों यात्रियों की जान बचाने के लिए जताया आभार। पीएम नेतन्याहू ने कैप्टन स्मिथ को दिया इसराइल आने का न्योता। इसराइल के स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल होकर मशाल प्रज्वलित करने का ऐतिहासिक निमंत्रण दिया। बेंजामिन नेतन्याहू ने कैप्टन स्मिथ से फ्लाई दुबई के विमान में हुई घटना के बारे में जानकारी ली। स्मिथ ने बताया कॉकपिट में क्या हुआ था। इसराइल के लोग हुए कैप्टन स्मिथ की जाबाजी के दीवाने। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने सोशल मीडिया पर साझा किया वीडियो, लिखा देखिए किस तरह लोग अदा कर रहे हैं शुक्रिया। पुरी में भगवान जगन्नाथ की हुई भव्य आरती, बड़ी संख्या में भक्तों ने दर्शन पूजन किए। श्री जगन्नाथ के दरबार में पहुंचे नागालैंड के गवर्नर नंद किशोर यादव, विधि विधान से पूजा की। थूथुकुड़ी में वन विभाग की ओर से वन्य जीव सप्ताह पर कराई गई चित्रकला प्रतियोगिता, छात्रों ने बनाई प्रकृति से जुड़े संदेश देने वाली तस्वीरें। गुजरात के वलसाड़ अंबेती गांव में बदल रही है तस्वीर, ग्रामीण और आदिवासी इलाकों में भी हो रहा है विकास। श्रीनगर में धूप खिलने के साथ सुहावना हुआ मौसम, पर्यटकों ने उठाया नजारों का लुत्फ। गंगोत्री हर्षल में उमड़ा सैलानियों का सैलाब, सुखी में गंगनानी तक घंटों तक जाम लगा रहा। हर्षल घाटी में पर्यटकों से चमका होटल और रेस्टोरेंट्स का कारोबार, यातायात व्यवस्था को लेकर प्रशासन की चुनौतियां बढ़ी। केदारधाम में उमड़ रहा है आस्था का महासैलाब, मुख्य द्वार और वीआईपी गेट पर लगी भीड़। बाबा केदार के दर्शन के लिए भक्तों को घंटों करना पड़ रहा है इंतजार, भीड़ को व्यवस्थित करने में जुटा मंदिर प्रशासन। सूरत के सारोली इलाके में लिफ्ट में फंसे 6 लोगों को रेस्क्यू किया गया, 1.5 घंटे की मशक्कत के बाद फायर टीम बचाई लोगों की जान। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा में बीएसएफ बोलर अल्ट्रा रन का आयोजन, लोगों को दिया फिटनेस का संदेश।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम।
4: सास बहू और बेटियां में आज देखिए टेलीविजन की दुनिया में अनलिमिटेड ड्रामा। दोपहर 1:28 से लेकर 3 बजे तक सिर्फ सास बहू और बेटियां में।

0: परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।

0: खबरें
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: सभी भाइयों और बहनों को बाबा रवि गिरी का स्नेहिल आशीर्वाद। तो भाइयों और बहनों, मेरा नाम बाबा रवि गिरी है, मैं 78 साल का हूं और पिछले 50 वर्षों से सिर्फ एक ही कार्य कर रहा हूं, प्राकृतिक शुद्ध और गारंटेड इलाज देना। मैंने जीवन के पूरे 78 साल देखे हैं और उनमें से 50 साल केवल एक ही सेवा में लगे हैं, आयुर्वेद के माध्यम से रोगों का इलाज करना। आज हम एक ऐसी पीड़ा पर चर्चा करेंगे जो न बोले तो भीतर से जलाती है और बोले तो लोग हंसते हैं, और उसका नाम क्या है? बवासीर। अरे भाई और बहनों, ये कोई शर्म की बात नहीं है, ये शरीर का रोग है और जैसे सिर में दर्द होता है वैसे ही गुदा में भी रोग हो सकता है। और सबसे ज़्यादा लोग मेरे पास में बवासीर की बीमारी के लिए ही आते हैं, क्योंकि ये रोग न तो उम्र देखता है, न पैसा देखता है, न पद या ओहदा देखता है, बस जब होता है तो इंसान को नाक में दम कर देता है। जलन, दर्द, खून आना, बैठ भी ना पाए, मैंने खुद देखा है लोगों को रोते हुए। और तभी मैंने ठान लिया था बवासीर का इलाज निकालूंगा, ऐसा इलाज जो बवासीर वापस ना हो। मैंने जड़ी बूटियों को परखा, हजारों नुस्खे आजमाए और फिर

0: तैयार की एक ऐसी औषधि जो आज मैं गर्व से कहता हूँ गारंटी से बवासीर को ठीक करती है। तो भाइयों और बहनों, आपने पाइल्स के बहुत सारे इलाज कराए होंगे, कई दवाइयां खाई होंगी, लेकिन आपकी बवासीर ठीक नहीं हुई होगी। मैं बाबा रविगिरी आपसे वादा करता हूँ कि आपकी पुरानी से पुरानी पाइल्स ठीक होगी और ये मेरी गारंटी है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको खूनी बवासीर है या बादी बवासीर, एक हफ्ते में आराम और 21 दिन में बीमारी जड़ से खत्म, ना ऑपरेशन ना साइड इफेक्ट। मैंने ये दवा उन्हीं जड़ी बूटियों से बनाई है जिन्हें हमारे ऋषि मुनियों ने आजमाया था और आज देश भर से लोग फोन कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि बाबा जी आपने तो हमें एक नया जीवन दान दे दिया है। मैं सिर्फ एक बात कहता हूं, इलाज चाहिए तो आयुर्वेद अपनाओ, और अगर गारंटी इलाज चाहिए तो मेरे 50 वर्षों के अनुभव लो, नहीं फायदा हुआ तो पैसे वापिस, इतना भरोसा है मुझे अपने इलाज पर। तो भाई और बहनों, चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि बवासीर क्या होती है और क्यों होती है। बवासीर क्या है? हमारे मल द्वार या एनस जिसको बोलते हैं, एनस के अंदर या फिर बाहर छोटे छोटे रक्त वाहिकाएं या ब्लड वेसल होती है जो कभी कभी सूज जाती है, फूल जाती है और धीरे धीरे मांस जैसा बाहर निकलने लगता है। इसी को हम आम भाषा में कहते हैं बवासीर या पाइल्स। अगर इन सूजी हुई नसों से खून निकलने लगे तो उसे कहते हैं खूनी बवासीर, और अगर सिर्फ मांस बाहर निकलता है, जलन, दर्द और खुजली होती है तो वो कहलाती है बादी बवासीर। अब सवाल आता है कि ये होती क्यों है? तो सुनिए, इसके मुख्य कारण है कब्ज। अगर पेट साफ नहीं होता, मल सख्त आता है और रोज जोर लगाना पड़ता है तो धीरे धीरे नसें फूल जाती है। दूसरा, लंबे समय तक बैठना। जो लोग घंटों बैठे रहते हैं ऑफिस में गाड़ी चलाते हुए या फिर मोबाइल पर, तो उनमें रक्त संचार घटता है और नसों पर दबाव पड़ता है। तीसरा कारण है तीखा और भारी खाना खाना। बहुत ज्यादा लोग क्या होते हैं कि मिर्ची मसाले, तली चीजें और कम पानी, ये शरीर को गर्म करते हैं और अंदर जलन पैदा करते हैं। चौथा कारण होता है वंशानुगत कारण, जिसको जेनेटिक्स बोलते हैं। अगर आपके घर में माता पिता को बवासीर रही है तो संभावना बढ़ जाती है कि आपको भी हो सकती है। यह रोग सिर्फ शरीर को नहीं, इंसान की आत्मा तक को थका देता है। लेकिन इसके अलावा भी कई कारण हैं। मेरे कहने का अर्थ यह है कि जिसका आहार संतुलित नहीं है, उसका कुछ भी संतुलित नहीं हो सकता। आयुर्वेद के अनुसार आहार ही सभी रोगों की जड़ का मुख्य कारण है। फिर जीवन शैली, और पाइल्स यानी बवासीर तो मुख्य रूप से आहार से संबंधित है। आहार और विचार दोनों आपके शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। विचार से अभिप्राय है, जीवन शैली से है, पर लोगों की इसी अनियमितता को देखते हुए मैंने कुछ खास जड़ी बूटियों का मिश्रण तैयार किया है बवासीर यानी पाइल्स के लिए। बवासीर के मेरे पास बहुत से मरीज आते हैं, कई तो 2-3 बार ऑपरेशन करवा चुके होते हैं फिर भी कोई आराम नहीं होता। वो इतनी आस लेकर आते हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। बवासीर का मेरे पास एक बहुत ही कारगर फार्मूला है जो मैंने अब कुडोस आयुर्वेदा से बनवाया है। बवासीर एक बहुत ही कॉमन आम समस्या बन गई है, और जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है पाइल्स होने के चांसेस भी एक व्यक्ति में बढ़ जाते हैं, क्योंकि हम अपना पूर्ण रूप से ध्यान नहीं रख पाते हैं। और एक बात याद रखो, तनाव भी इसका एक बहुत बड़ा कारण है। जैसे गुस्सा आना, काम का तनाव, नींद पूरी ना होना, ये सब पेट को खराब करते हैं और पेट की गड़बड़ी बवासीर को बुलाती है। मैंने देखा है लोग बवासीर से पीड़ित होते हैं पर डॉक्टर के पास जाने में डरते हैं। औरतें तकलीफ सहती है पर परिवार से भी नहीं कह पाती, और फिर जब हालात गंभीर हो जाते हैं तो ऑपरेशन कराना पड़ता है। पर संतों का ये कहना है, रोग को समझो, शरीर की पुकार सुनो और जीवन शैली सुधारो। इसलिए मैं कहता हूं कि मेरे बताए हुए नुस्खे अपनाओ और बवासीर को जड़ से खत्म करो। ये मेरी गारंटी है कि आपको जल्दी आराम मिलेगा, ये कोई मामूली। लेकिन उससे पहले इसका सही पहचानना जरूरी है। अगर ये लक्षण आपको दिखें, खून आना, सूजन होना, खुजली या जलन, मांस का टुकड़ा सा बाहर निकल आना, तो समझ लीजिए ये बवासीर की दस्तक है और घबराने की जरूरत नहीं है। मैं बाबा रविगिरी हूं ना, आयुर्वेद में ऐसे ऐसे नुस्खे हैं जिनसे बवासीर जड़ से ठीक हो जाती है। पर पहले रोग को जानो, स्वीकार करो, फिर उपचार करो। ये लाइलाज नहीं है और आयुर्वेद में इसका स्थायी समाधान है। मैंने खुद देखा है हजारों लोगों को इससे मुक्ति पाते हुए। तो भाइयों और बहनों, यहां मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं जिसे बहुत ध्यान से सुनना है। हर रोग का है समाधान जब हो मन में विश्वास का ध्यान। आयुर्वेद की राह पकड़ो, बिना डर के जीवन जियो। तो भाइयों और बहनों, मैं बाबा रविगिरी आपसे वादा करता हूं कि आपकी पाइल्स की दिक्कतों को मैं जड़ से खत्म कर सकता हूं। अगर मेरे बताए गए नुस्खे अपनाते हो तो खुद आप बदलाव महसूस करोगे। अब हम बात करेंगे इलाज की। मेरे ये योगों में हरड़, जीरा, काली मिर्च, पीपली, मूल, चित्रक, छव्य, सूर्यकंद, अपामार्ग, अमलतास और बहुत कुछ है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं हरड़ के फायदे। ये हरड़ है, औषधीय गुणों से भरपूर है। हरड़ के आयुर्वेद में चमत्कारिक फायदे बताए गए हैं। सेलेनियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर, विटामिन, प्रोटीन, जीवाणुरोधी, एंटीबायोटिक गुणों से भरपूर है ये हरड़। बवासीर की बीमारी को दूर करने में बेहद असरदार साबित हुई है। जीरा, जो छोंक में यूज करते हैं, ये वही जीरा है। ये कब्ज हो चाहे बवासीर हो, इन सब में बहुत कारगर है। बवासीर का असली कारण खाना अच्छी तरह से न पचना और कब्ज का हो जाना होता है। जीरा लीवर से एंजाइम्स बनाकर खाने को पचवाता है, अपच को दूर करता है और सख्त लैटिन को मुलायम करता है। अगला है काली मिर्च, जो पाचन क्रिया को मजबूत करती है। इसके बाद में है पीपली मूल, ये आंतों में अगर कीड़े हैं तो उनको खत्म करता है, आंतों में सूजन को खत्म करता है। इसके बाद में है चित्रक, चित्रक की रेचिन प्रकृति मानी गई है। यह एक नेचुरल लैक्सेटिव है जो लैटिन को धक्का मारता है, आंतों में पड़ा नहीं रहने देता, रेचन करने वाला है। इसके बाद में है सूर्यकंद, यह है सूर्यकंद, ये एक प्रोबायोटिक है और पाचन शक्ति को मजबूत बनाता है। और ये है अपामार्ग, क्षार सूत्र की असली जड़ी बूटी है ये। इसमें सूजन घटाने वाले तत्व है जो बवासीर के मसों को शरीर से काट देते हैं। इसके बाद में है ये अमलतास। अमलतास पर बड़े शोध हुए हैं बड़ी बड़ी लेब में, और पता चला है कि इसमें प्रस्तुत है एंथ्राक्विनोनेज जो बवासीर पर काम करता है, पाचन शक्ति को मजबूत और जड़ पर काम करती है और बवासीर को जड़ से खत्म कर देती है। इसके बाद में है लज्जालू। लज्जालू पर जनरल ऑफ आयुर्वेद ने बताया है कि खूनी बवासीर पर चमत्कारित काम करता है, चाहे कोई भी डिग्री का बवासीर हो सब पर ये काम करता है। इसके बाद में है कचनार। कचनार की छाल काम दिया करती है, ये सूजन को घटाता है, बवासीर में कब्ज को काटता है, आंतों की सूजन को घटाता है, शरीर को विष हरण करता है और शुद्ध करता है। ये है निर्गुंडी, ये वातनाशक है। वात बढ़ने के कारण सूजन हो जाती है मसों में। ये निर्गुंडी जो है ये वात को शमन करके सूजन को घटाता है और मसों का नाश कर देता है। आखिर में ये है इंद्रायन। ये है इंद्रायन की जड़। इसके अंदर फ्लेवोनाइड्स, बेंजोइक एसिड, गैलिक एसिड, ये सारे गुण इसमें होते हैं जो बवासीर में आराम देते हैं। तो ये जितनी भी मैंने जड़ी बूटियां आप देख रहे हैं वो मैंने बताई है, ये सब मिलाकर मैंने बवासीर के लिए एक नुस्खा तैयार किया है और मैंने हजारों लोगों को इस पीड़ा से मुक्ति दिलाई है बिना ऑपरेशन, बिना किसी साइड इफेक्ट, सिर्फ शुद्ध और आयुर्वेदिक नुस्खों से। मेरे बताए नुस्खे अपनाओ, रोज नियम से इन्हें निभाओ, बवासीर को जड़ से मिटाओ, फिर लौट के कभी ना आए वो दर्द पुराना। और हाँ, खान पान में संयम जरूर रखिए, मिर्च मसाले कम, पानी ज्यादा। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, अगर आपने मेरे बताए हुए नुस्खे नियम से अपनाए तो बवासीर जड़ से खत्म हो जाएगी और फिर दोबारा लौट कर नहीं आएगी। तो अब ऑपरेशन नहीं, अपनाओ रविगिरी के नुस्खे और कहो बवासीर तुझे जड़ से अलविदा। अब देर मत करो, मुझे तुरंत संपर्क करो और ये आयुर्वेदिक दवाई मंगवाओ ताकि बवासीर को हमेशा के लिए अलविदा कह सको। अब मैं भी आपसे इजाजत चाहूंगा। नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
3: वाराणसी में शक्ति आराधना उत्सव की तैयारियां तेज। पश्चिम बंगाल की तर्ज पर मनाई जाती है दुर्गा पूजा। मां की प्रतिमाओं को अंतिम रूप दे रहे हैं कारीगर। केदारनाथ धाम में उमड़ रहा है आस्था का मेला। बड़ी संख्या में श्रद्धालु कर रहे हैं बाबा केदार के दर्शन। मुख्य द्वार और वीआईपी गेट पर भक्तों की कतार। सुहाने मौसम में देवभूमि में सैलानियों का हुजूम। उमड़ा गंगोत्री और हर्षल में होटल और होम स्टे हाउसफुल हुए। पर्यटन कारोबार को मिला बढ़ावा। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में बीएसएफ की अगुवाई में मैराथन वुलर अल्ट्रा रन 3.0 में बड़ी संख्या में उमड़े लोग। फिटनेस के साथ साथ वुलर झील के संरक्षण का संदेश। एशियन गेम्स में तिरंगा लहराकर महिलाओं की टीम जापान से लौटी। स्वदेश रांची एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत। कैप्टन सलीमा टेटे ने अगवानी की।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है।
5: हेलो दोस्तों, मनोरंजन का पिटारा लेकर मैं हाजिर हूँ। टेलीविजन की दुनिया के ड्रामे से लेकर ओटीटी और रियलिटी शोज की हर हलचल पर रहेगी हमारी नजर। लेकिन उससे पहले शुरुआत करते हैं आज की खास हेडलाइंस के साथ।
4: सास बहू और बेटियां की एंटरटेनमेंट से भरी गुड न्यूज में आज देखिए, मुंबई पहुंचेंगे मायरा और कबीर। अरमान अभीरा को मिलेगी जानकारी।
6: देखो हुए हम तो हवा।
7: घर की बात घर में रहनी चाहिए, बाहर वालों के सामने नहीं आनी चाहिए। तुम भी सही कह रही हो।
4: संजू के परिवार से नाराज होगी माधवी। घर में शुरू होगा नया हंगामा। में लॉक होंगे प्रथम और अंतरा। बढ़ेगी राध्या की परेशानी।

और इसी के साथ करेंगे कलाकारों से मुलाकात जो पहुँचे हैं फेयरफील्ड साउथ इंडियन खानों का मजा उठाने सिर्फ और सिर्फ सास बहू और बेटियां में।

0: सीरियल तुम से तुम तक में गोपाल और पुष्पा के मोहल्ले में हो गई है एक अनजान बच्चे की एंट्री। खास बात यह है कि ये बच्चा बोलना नहीं जानता है। ऐसे में पुलिस की मदद भी ली जाती है। क्या गोपाल और पुष्पा उस बच्चे की मदद कर पाएंगे? चलिए देखते हैं।
1: पुष्पा गोपाल की नई परेशानी। में आया नया मेहमान। पुलिस स्टेशन में शुरू हुआ नया बवाल। जी टीवी के सीरियल तुमसे तुम तक में भाई मोहल्ले में एक छोटा बच्चा आ गया है जिसको लेकर पूरे मोहल्ले वाले परेशान हो गए हैं। और देखिए कैसे यहाँ पे पुष्पा और गोपाल दोनों ही मिलकर बच्चे से पूछताछ कर रहे हैं कि आखिर वो कौन है और कहाँ से आया है।

0: को क्या देख रहे हैं। हमें सबसे पहले उन्हें ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए।
1: ऐसे में ये बच्चा कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। भाई वो देखिए कैसे कुमसुम सा शांत परेशान बैठा है। ऐसे में रात बीतने के बाद अगली सुबह मोहल्ले वाले और पुष्पा और गोपाल बच्चे को लेकर पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं और देखिए कैसे यहाँ पर शुरू हो जाता है नया हंगामा।
2: मैंने इसे चोरी करते हुए देखा था, ये हमारे मोहल्ले के फ्रिज से खाना चुरा रहा था।
3: अरे भोली, उसे भूख लगी होगी ना, इसने फ्रिज से निकाल के खा रहा था। इतने छोटे से बच्चे को चोर बोल रही है।
4: अरे एक मिनट शांत रहिए आप।
5: कल रात से हम उसे यही पूछ रहे हैं, लेकिन अभी तक उसने अपना नाम नहीं
1: स्टेशन में भी बच्चा कुछ बोलने को तैयार नहीं है और ये इंस्पेक्टर भी देखिए कैसे बच्चे से पूछताछ कर रहे हैं, लेकिन वो कुछ कह ही नहीं रहा। ऐसे में जब पुलिस स्टेशन में एक बूढ़े बाबा आते हैं, देखिए कैसे भाई ये बच्चा टुकुर टुकुर उन्हीं को देखने लगता है। ऐसे में जब पुलिस को शक होता है तो ये इंस्पेक्टर भी उस बाबा के पास पहुंच जाते हैं और पूछते हैं कि क्या वो इस बच्चे को जानते हैं, लेकिन भाई बाबा भी उसे पहचानने से इनकार कर देता है, जिसके बाद पुष्पा गोपाल मोहल्ले वाले और इंस्पेक्टर की मुश्किलें और भी बढ़ जाती हैं।
5: तुम्हारे दादू कैसे दिखते हैं? कहाँ रहते हैं तुम्हारे दादू? क्या क्या नाम क्या है तुम्हारे दादू का? बोलो बोलो, नाम क्या है दादू का? अरे दादू का नाम पूछ रहा हूँ, दादू का नाम।
2: तुम्हारा नाम देखो, जैसे मेरा नाम ना पुष्पा है। हाँ पुष्पा, मुझे लग रहा है इसको शायद ऊंचा सुनाई देता है। देखो बेटा, मेरा नाम पुष्पा है, पुष्पा। इनका नाम गोपाल है, गोपाल। तुम्हारा नाम क्या है?
4: पुष्पा जी क्या कर रहे हैं आप? अच्छा ये एक
5: बेटा, अभी लड़की ने जोर से चिल्ला के बोला ना कि उनका नाम पुष्पा है, इनका नाम गोपाल है, ऐसे ही मेरा नाम राहुल पांडे है। राहुल पांडे है, देखो राहुल पांडे। ऐसे ही आपका भी कुछ नाम होगा ना, मम्मी अपना रखा होगा, बोलो ना क्या नाम है बताओ। राहुल सोनू मोनू टिंकू बंटी नहीं

0: फिलहाल इस बच्चे ने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन गोपाल और पुष्पा को पुलिस इंस्पेक्टर ये आश्वासन देते हैं कि वो जल्द ही इस बच्चे के बारे में कुछ पता लगाएंगे। ऐसे में देखिए कैसे घर पर आकर गोपाल और पुष्पा भी बच्चे के ही सोच में डूबे हुए हैं। ऐसे में देखना होगा कैसे खुलेगा इस बच्चे का राज। मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट।
1: गेम रियलिटी शो खतरों के खिलाड़ी का सीजन 15 अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका है, जहां 5 फाइनलिस्ट के बीच देखने को मिला आखिरी मुकाबला। तो देखते हैं इस मुकाबले की मजेदार झलक।
2: इस सीजन को हमने मोस्ट वॉच सीजन बना दिया है। ये इकलौते ऐसे हैं जो जोड़े में वायरल हुए हैं। सर, मैंने फराना से पूछा, तू सच में प्यार करती? कह रही, तुझे क्या लगता है मैं सिर्फ प्रोमो काट सकती हूँ?
3: ये खतरों के खिलाड़ी के हिस्ट्री का बेस्ट सीजन रहा है। सो फिनाले में भी गो फॉर द किल, रोहित।

0: ये शो इतना बड़ा हिट आपके प्यार के वजह से हुआ है.
1: थैंक यू.
0: अब वक्त आ गया है अनाउंस करने का कि कौन है विनर. हमारे 5 फाइनलिस्ट हैं, करण, अविनाश, ऋत्विक, औरी और कहाँ है भाई, अरे फराना.
2: If you're not feeling safe with this something not good, you go down to the ground. Okay, that's the only way that we can put you out. If you start running, no one will catch you.
3: Are you hitting so much? Okay, let's walk her in.
4: Farana, let's go.
5: I won't sleep on the floor.
6: No. Get out him or something.
0: अरे फराना को बुलाना था. अच्छा फराना ही है. आ जा
7: आ जा. हमारी मार्स की एलियन आ जा आ जा.
8: क्या करने वाले हो?
9: और क्या?
0: चलो आओ.
9: सारे शुभ काम हम सर से ही कराते
0: हैं. आपको बता दें कि औरी जीत चुके हैं स्टंट. अब औरी भी हैं आपके साथ.
9: आपके साथ.
0: तो अब हमारे टॉप 5 है करण, अविनाश, ऋत्विक, औरी एंड फराना. आइए चलिए. एक्स्ट्रा जल रहे हो. वही लेडी आना एक पॉइंट के बाद. भागना नहीं. हाँ लेडी आना. उन्होंने हाँ Going for fire?

0: Ale kaváte.
1: Kapáte, parana.
0: Salán.
2: Bohat achhe, parana.
3: अरे किसी और के लिए नहीं किया, आपने बोला तब मैंने किया।
2: थैंक यू सो मच।
3: मैंने कोई घर पे बैठ के वो देखा मैंने फरहाना से ये करवाया, तो कोई ना उसने बोरी, मैंने किसी और के लिए नहीं किया।
2: अच्छा हर्ष तेरी बात हो रही है,
0: मेरी नहीं, गौरव जी
2: अच्छा, गौरव की बात हो रही है। गौरव अगर मैं नहीं बोलता तो फरहाना ये स्टंट नहीं करती। सो अनफॉर्चुनेटली रूबीना And हर्ष आप होते हैं एलिमिनेट। आप पांच खिलाड़ी जो हैं जो अब फाइनल्स में जा रहे हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस। आपको पता है आपके लिए कौन आ रहा है ऑडियंस? हिंदुस्तान के एक बहुत बड़े स्टैंड अप कॉमेडियन हर्ष आएंगे ताली बजाने के लिए, और टीवी की एक मशहूर एक्ट्रेस हमारी सीनियर खिलाड़ी रूबीना।
0: सर कुछ बोल सकते हैं क्या?
2: हाँ, अरे तुम अब वही करो तुम।
0: मैंने अभी तक भी वही किया है सर।
4: जैस्मिन सही बोल के गई थी, पनौती है जिसके हाथ लगता है वो निकल जाता है।
0: पर मतलब इस शो में मुझे अपनी जो भी ड्यूरिंग द जर्नी शॉर्ट कमिंग्स पता लगी, लेकिन मुझे ये था कि मैं काफी पहले बाहर हो जाऊंगा, मुझे ऐसा लगता था मन में। बट जिस दिन आपने मिर्ची खिलाई थी मुझे, सर याद है आपको? उस दिन से मतलब मैंने रात को जब मैं मेडिक वेडिक के पास गया, बीमार हुआ, तो रात को फिर मम्मी को मैंने फोन किया, तो मम्मी ने बोला कि क्या हुआ? मैंने कहा मम्मी मिर्ची मैंने तीखी खा ली बहुत आज। अरे कि रोहित सर ने कुछ नहीं बोला खाया? मैंने कहा उन्हीं ने खिलाई थी। तो कहती अच्छा, फिर वो समझ गई कि रोहित सर को तो कुछ कह नहीं सकते, तो कहती कि इनके जो फादर साहब थे आपके MB शेट्टी साहब, तो वो जब पिक्चरें देखनी मम्मी जवानी में जाती थी अपने हॉल वॉल में, तो कहती थी उनकी जब एंट्री होती थी ना, तो ना हम लोग बड़े एक्साइटेड होते थे कि विलन की एंट्री इतनी धमाकेदार हो रही है। तो उन्होंने बोला था कि मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि उनके बेटे के साथ मेरा बेटा खड़ा होगा। सर ये शो में उसी दिन जीत गया था।
2: क्या बात है, थैंक यू सो मच आंटी, थैंक यू।
5: पानी
6: का
5: आई थिंक दैट्स बीन अ प्रॉब्लम, जस्ट द कोल्ड वाटर दैट प्रोबेबली मेरी बॉडी इज नॉट गेटिंग एडजस्टेड टू, बट नाउ आई डोंट हैव एन ऑप्शन, आई हैव टू डू दिस। इस स्टंट को जीतने के लिए सिर्फ फास्ट नहीं, एपिक स्विफ्ट बनना पड़ेगा।
2: थ्री टू वन गो।
0: भेजा अभी भेजा।

0: बढ़ गई है,
1: बढ़ाई है।
2: फ्लैग संभाल ले बेटे, वही गिराना मत, फ्लैग मत गिराना बस।
3: इतना पानी का प्रेशर है यार,
2: बहुत प्रेशर है भाई, बहुत। बहुत बढ़िया, स्पीड देख भाई,
1: भाग रहा है सीधे।
3: अरे बाप रे,
2: छह आठ मछलियां खा गया होगा मेरा।
4: शाबाश शाबाश,
2: यस, आजा बेटे, खींच गया खींच गया।

hitch

0: Sekarang? Where are you now?
1: On the boat.
2: Okay. Very good. Very good.
0: He looks a bit disoriented. They were asking him.
3: It's cold also.
1: तो यार डिफिकल्टी ये थी कि वो पानी मुंह पे बार बार लग रहा था और ठंडा बहुत था. थोड़ा सा ट्रिकी था क्योंकि जरूरी नहीं है स्ट्रेंथ का ही है, बैलेंस भी बहुत जरूरी है.
4: Come boys! चलिए दोनों ने स्टंट किया, मैं बता दूं हुआ क्या वहां पर. ऑरी ने निकाले 11 फ्लैग्स एंड फिर अपने आप को डिसलॉक कर दिया. करण ने भी डिसलॉक किया अपने आप को, लेकिन करण ने निकाले हैं 14 फ्लैग्स. तो करण आप बनते हैं हमारे सेकंड फाइनलिस्ट.
5: वेरी गुड.
4: सोचता हूँ यार हर स्टंट के बाद थोड़ा सा ऐसा रिलैक्सेशन मुझे भी तो चाहिए रहता है कि नहीं. जाता हूँ मैं जरा बोट में, 2-3 राउंड मार के आता हूँ आराम से रिलैक्स होके. हर्ष जी सबके साथ में.
6: नहीं, मैं क्यों जाऊंगा आपके?
4: अरे इतना बिचारे को
6: मुझे अगले में भी तो जाना है.
4: अरे मैं भी तो आ रहा हूँ.
6: अरे आप तो बोट में बैठोगे, मुझे पानी में रखोगे.
4: बोट में कस्टम से इधर आओ तुम. अगली लोकेशन में मिलेंगे हम लोग.
5: Yes, sir.
4: फिर मैं बताऊंगा कि कौन है वो जोड़ियां जो स्टंट करेंगी. उससे पहले हर बार जब हर्ष को ले जाते हैं तो स्टंट टीम आती है, करती है. आज ग्रैंड फिनाले है तो मैं सोच रहा हूँ चलो चलो.
7: सीरियल दिल को तुमसे प्यार हुआ फेम. एक्ट्रेस उर्वशी परदेसी ने सेलिब्रेट किया अपना जन्मदिन, जहाँ केक कटिंग संग जमकर सेलिब्रेशन भी हुआ. ऐसे में किन किन सितारों ने इस बर्थडे पार्टी में की शिरकत और कैसी रही उर्वशी की जन्मदिन पार्टी, चलिए देखते हैं.
8: उर्वशी का हैप्पी वाला बर्थडे.

0: बर्थडे पार्टी में नजर आए उर्वशी के करीबी दोस्त।
1: एल्विका बैग में तो तेरे लिए लाया, पर तू तो कैंडी में।
0: बीती शाम उर्वशी ने मनाया अपना जन्मदिन, जहाँ पर नजर आए अभिषेक कपूर, आशीष मेहरोत्रा। भाई आपने उर्वशी को लास्ट सीरियल दिल को तुमसे प्यार हुआ में देखा था, जहां पर इन्होंने जीता था सभी दर्शकों का दिल। ऐसे में आज सास बहू और बेटियां बन गया है उर्वशी के बर्थडे का खास मेहमान, जहां से हम आपके लिए लेकर आए हैं बर्थडे के सभी खास नज़ारे, कैसे उर्वशी ने अपने दोस्तों संग मनाया अपना ये जन्मदिन। तो आइए आपको ले चलते हैं और दिखाते हैं इनकी डांस मस्ती। साथ ही साथ जुड़ जाते हैं इनके बर्थडे सेलिब्रेशन में भी।

सास बहू और बेटिया की तरफ से भी उर्वशी को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। नहीं, हम तो यही उम्मीद करेंगे कि भाई जल्द लौट कर ये टीवी सीरियल्स में आए और यूं ही अपने दर्शकों का प्यार बटोरती रहे। मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट।

मुंबई में लगा साउथ इंडियन फूड फेस्टिवल मेला, जहां साउथ इंडियन फूड का जायका लेने पहुंचे कई नामचीन सितारे। ऐसे में कौन कौन से सितारों ने की इस फूड फेस्टिवल में शिरकत और स्वाद के इस मेले में क्या रहा खास, चलिए देखते हैं।

साउथ के जायकों ने बढ़ाया एक्साइटमेंट और स्ट्रेस। हर तरफ पकवान देख हुनर की आंखों में चमक खिली। खुशबू ऐसी कि पेट में मची खलबली। मुंबई के फेयरफील्ड बाय मैरियट में सजी है दक्षिण भारतीय जायकों की ऐसी महफिल, जहां हर तरफ स्वाद, खुशबू और लजीज पकवानों की रेलगाड़ी सी लगी है। और इसकी खुशबू नायगांव तक ऐसी फैली कि सीरियल रिमझिम में मोहिनी का किरदार निभाने वाली हुनर हाले अपना शूट खत्म कर ग्लैमरस अंदाज लेकर सीधा पहुंच गई है मुंबई के फेयरफील्ड बाय मैरियट में साउथ इंडियन फूड फेस्टिवल का मजा उठाने के लिए। और तो और देखिए कैसे आते के साथ ही उन्होंने दिखा दिया अंदाज चेन्नई एक्सप्रेस वाला और किया सास बहू और बेटियां का स्वागत बिल्कुल साउथ इंडियन स्टाइल में।

नमस्ते, सत श्री अकाल। और आज के लिए वड़कम। क्यों? क्योंकि हम हैं यहाँ फ्लेवर्स ऑफ द साउथ में विद माय रजनीकांत जी, हु आई रियली रियली रियली लव अ लॉट, एंड विद विजय जी, जैसे कि आप देख रहे हैं, जिन्हें कौन प्यार नहीं करता है। तो अब क्योंकि हमने बात फ्लेवर्स ऑफ द साउथ की है, तो हम यहाँ से सीधा जाएंगे अंदर, क्योंकि मैं शूटिंग करके आ रही हूँ, वो भी नायगांव से, तो मुझे बहुत बहुत बहुत भूख लगी है। तो अब सास बहू और बेटियों के साथ मैं जाऊंगी अंदर, और अंदर जाकर मैं सारी डाइट भूल जाऊंगी और सारी अच्छी अच्छी चीजें खाऊंगी आप लोगों के साथ।

0: माय गॉड सो गुड। ये देखिए फुल्ली पोंडू रोस्ट, वाह वाह वाह, आई लव टेक अ प्लेट।
1: भाई इन चुटर पुटर स्वाद ने तो भूख का ऐसा डंका बजाया कि हुनर हाले के पेट में चूहे कूदने लगे और सामने सजे एक से बढ़कर एक पकवानों को देखकर उनके मुंह में पानी आने लगा। और तो और वो अपने आप को रोक ही नहीं पाई थाली उठाने में और थाली सजाने में। इतना ही नहीं, उन्होंने तो एक आध पकवान चख भी लिए और फिर की मुलाकात वहाँ की शेफ राघवन से, जिन्होंने अपने हाथों से ये सारा खाना बनाया है। ऐसे में हुनर ने उनसे मिलकर की ढेर सारी बातें और बातों ही बातों में हुनर को पता चला साउथ इंडियन टेस्ट के बारे में और उनकी एक्साइटमेंट उस टेस्ट को लेकर बढ़ गई। बस फिर क्या, उन्होंने उठा ली एक और नई थाली और शेफ राघवन की मदद से वो जानने लगी हर पकवान की खासियत, उसके स्वाद और तो और बनाने के अंदाज के लिए पूरी जानकारी भी, यानी जायका भी और ज्ञान भी।

0: हमारे साथ शेफ राघवन,
1: who
0: is a specialist साउथ इंडियन फूड में. तो आज यहाँ पे हम एक एक करके जो भी खाएंगे वो इनके अच्छे अच्छे खूबसूरत हाथों से स्वादिष्ट बना हुआ खाना है. आज तक साउथ इंडियन में तो मुझे सिर्फ डोसा ही पता है, जो मैं हर रोज मेरा ब्रेकफास्ट जो है वो सच में शेफ का डोसा ही होता है. लेकिन आज इन्होंने मुझे बताया कि डोसे के अलावा और भी ज्यादा चीजें होती हैं साउथ इंडियन खाने में, जैसे कि ये कॉलीफ्लावर जो मैंने अभी लिया है खाने के लिए. तो इसके बारे में अगर आप कुछ बताओगे तो बताओ, क्या कहोगे आपकी
2: कॉलीफ्लावर 65.
0: ओके,
2: ऑफ कोर्स देयर आर मेनी स्टोरीज बिहाइंड द नेम ऑफ 65. The crispy snack can be served as an appetizer.
0: Cauliflower 65 is a South Indian snack.
2: Yes.
0: Oh. जैसे पनीर 65 और बाकी के अलग अलग डिशेस.
2: Chicken 65.
0: That's wrong.
2: And this is tapioca vada.
0: Tapioca vada.
2: Yeah, vada made with boiled tapioca.
0: Very nice.
2: To be frank, this is not any signature menu from Tamil Nadu or anywhere, but we try to innovate. Make vada with this, but people loved it.
0: Very nice. This is amazing.
2: And the soup, no? This is made out of banana stem. So this soup is made with moong dal and banana stem.
0: Oh, look at the color. Iska color hi kitna amazing lag raha hai.
2: Banana stem.
0: It's so nice.
2: So banana stem is one of the greatest remedy for kidney stones.
0: This is so good, chef. This is so good. It's yummy.
2: Yes.
0: I love it.
2: It doesn't have much masalas. It has its own.
0: Very nice. It's so good. इतनी हेल्दी हेल्दी चीजें भी आपको साउथ इंडियन में मिल सकती है. एंड इन्होंने कहा कि दिस इज गुड फॉर किडनी स्टोन्स, मतलब इट इज सो गुड. कि क्या इसका नाम क्या बताया आपने?
2: इन तमिल इट इज कॉल्ड वालेतंडु, बट इन इंग्लिश वालेतंडु. वाले मींस बनाना.
0: वालेतंडु.
2: तंडु मींस स्टेम. या बनाना स्टेम बेसिकली.
0: एंड मतलब पोटैटो तो मतलब किसके फेवरेट नहीं होते हैं. आई लव पोटैटो.
2: एंड द स्पेशलिटी ऑफ दिस पोटैटो इज we always cook with the garlic skin. We crush the garlic with skin.
0: Skin ke saath.
2: Skin ke saath crush karke banana hai. Then it will be.
0: मतलब ये तो my god.
2: Thank you. And
0: this is so good.
2: And today.
0: I love this.
2: This mango pachadi stole the show. I want you to try.
0: Mango what?
2: Pachadi means it's a side dish. So we'll try this. One. So mango cooked with jaggery. And tempered with mustard, jeera, and green chili.
0: Hi, khatta khatta. This is so khatta and nice. In Punjabi,
2: okay.
0: We call this curry.
2: But do you make it with yogurt, right?
0: But we make it with yogurt. This is not made with yogurt. What is this made with?
2: Only mango cooked with jaggery. That's it.
0: Oh.
2: No much masala. This is a specialty biryani of Madurai cuisine.
0: Special biryani.
2: Yes. The rice is unique, not the basmati or long grain.
0: Nice.
2: Very small grain rice.
3: भाई यहाँ तो टू स्टेट्स का संगम हो रहा है. पंजाबन छोरी साउथ इंडियन फूड का मजा ले रही है. खैर इस मजे का स्वाद तब और बढ़ गया जब वहाँ पर पहुँच गई रिमझिम की दूसरी कास्ट, रूप का किरदार निभाने वाली शालू श्रेया. और देखिए कैसे उनके आते ही उन्होंने उन्हें ना सिर्फ गले लगाया बल्कि आते के साथ ही दे दी पनिशमेंट लेट आने की.
0: ये देखो ये मेरे शो से जो है हमारी शालू जो JW मैरियट पहुँच गई थी वो फाइनली यहाँ पे आ गए. चलो अब हम यहाँ पे बैठ के उत्तपम बनाएंगे.

0: जो लेट आई है ना आज, ये सजा है इनकी कि अभी ये उत्तपम ये बना के मुझे खिलाएंगी। मैं मदद कर दूंगी तुम्हारी, चलो लेट्स डू इट, कम ऑन स्टार्ट। अरे सो व्हाट, लुक एट मी, वी आर एक्ट्रेस, एक्ट्रेसेस आर सपोज्ड टू लुक हॉट। इवन इफ वो कुकिंग भी क्यों, बताइए हमें सास बहू बेटियां, हमने गलत बोला क्या? अगर हम एक एक्टर है तो हमारा क्या गुनाह? एक्टर है तो क्या हम कुकिंग नहीं कर सकते? और अगर हम कुकिंग कर रहे हैं तो क्या हम कुकिंग करते हुए हॉट नहीं लग सकते?
1: चुभता ही रहता है, गड़ता ही रहता
0: है। राघवन, ये सब उन्हीं का बनाया हुआ है जो आप यहाँ खाएंगी, और अब वो हमें गाइड करेंगे कि हमको ये कैसे बनाना है। ये एक और दो मुझे।

0: लो चाहे उल्फत।
1: ये देखो अब हम इसके ऊपर डालेंगे ये
2: कोरिएंडर,
1: थोड़ा सा कोरिएंडर। साउथ इंडियन में क्या बोलते हैं शेफ राहुल, इसको क्या बोलते हैं?
3: कोतामल्ली।
1: कोतामल्ली, हम यहाँ पे साउथ इंडियन खाना खा रहे हैं तो कोतामल्ली बोलो। कोतामल्ली। और इसको क्या बोलते हैं? उत्तपम।
3: उत्तपम, उत्तपम।
1: कोतामल्ली।
3: यस।
1: विद शेफ राघवन एंड विद दिस लेट लतीफ लड़की जो अभी हमको ये जो ये ये ये पनिशमेंट सह रही है। और मुझे भी खिला रही
4: अब इस पकवान को साउथ इंडिया में कुछ भी बोला जाए लेकिन मोहिनी यानी कि हुनर ने इसे दे दिया है रिम झिम डोसे का नाम।
1: ये हुआ रिम झिम डोसा।

0: ये भाई साउथ की फिल्टर कॉफी ऐसी कि उसका अरोमा अपनी ओर खींच ही लेता है। ऐसे में हुनर और श्रेया दोनों ही अपने आप को रोक नहीं पाई, लेकिन यहाँ पुरुष का तड़का तब लगा जब ये फिल्टर कॉफी खुद श्रेया अपने हाथों से बना रही है, क्योंकि इन्हें कॉफी बनाना बहुत पसंद है और हुनर को कॉफी पीना।
1: क्या बनाइए? मुझे आपकी फिल्टी हुई कॉफी। नहीं, अभी हम जो तुमको आता है वो नहीं करने वाले, जो
2: स्पेशलिटी ऑफ साउथ इंडियन फिल्टर कॉफी,
1: ताकि ये सेट पे बना के मुझे पिला सके। क्योंकि सेट पे तो रेडियन कैप्टन राघवन जी नहीं होंगे ना, और ये हमारी कॉफी की मास्टर है। माय गॉड,
3: आपको पिलाती हूँ ना,
1: यही कॉफी बना के पिलाती है मुझे सेट पे रिमझिम के, और बहुत अच्छी कॉफी बनाती है। अच्छा, अब बताओ ये कैसे करना
2: है। सो द मेन थिंग इज decoction should be hot. The ratio of chicory is what very special in making South Indian filter coffee. We always do 70-30. 20 coffee and 30. Yes. 30 chicory. That should be the right ratio.
0: भाई शालू तो यहाँ शेफ के साथ बिजी हो गई है फिल्टर कॉफी बनाने में और ये जानने में कि फिल्टर कॉफी में कॉफी और मिल्क का माप बहुत मायने रखता है। इसी बीच वहाँ पर आ जाते हैं सीरियल के एक और किरदार यानी कि सिद्धार्थ, जिनका रील ही नहीं बल्कि रियल नाम भी सिद्धार्थ ही है, और देखिए कैसे आते के साथ ही वो भी इन दोनों का हाथ बटाने लग गए।
1: ये सब लोग सेट से आ रहे हैं, लेट आए हैं। मेकिंग फिल्टर कॉफी, दिस इज शेफ शेफ राघवन। आज का सारा खाना जो है वो शेफ राघवन ने बनाया है। He is specialist in South Indian food.
4: Okay.
1: So he has made this.
4: I love filter coffee.
1: And he is teaching her how to make coffee ताकि ये coffee हम set पे हमारे लिए बना सके।
4: किसे आती नहीं, बिल्कुल भी वो थोड़ा सिखा रही है।
5: क्या?

0: cheers,
1: cheers, cheers, cheers, cheers,
0: cheers.
1: Wow, lovely.
2: I made a good coffee. It's just so cool.
1: नहीं बनाया एक्चुअली कि उसको जो मैंने मुखी है उसका स्वाद आ गया
0: अरे यार सच में कॉफी इतना स्वादिष्ट है यार वाव थैंक यू शालू
1: एक्सक्यूज मी आई थिंक
0: सिर्फ एक थिंग से भी स्टडी
1: है वही तो क्या है
3: तो सारा दिन अच्छा है गुजरता
0: आज का ये जो हमने लुफ्त उठाया है फ्लेवर्स ऑफ साउथ का जिसको हमने समाप्त किया है इतनी अच्छी बेहतरीन कॉफी से कि हमारी शालू ने बनाई जिसको जिसको जिसको इन्होंने एक के बाद एक आपके सामने इतने अच्छे अंदाज में इस कटोरी में डाल के हमें दिया उसको हमने चेयर्स किया सास बहु बेटियों के साथ और आज का ये हमारा जो
1: कॉफी
0: सेशन खाना सेशन शेफ राघवन जी के साथ जो हमने इतना अच्छा अच्छा स्वादिष्ट खाना आपके साथ शेयर किया आई होप आपको मजा आया होगा आई होप आपको अच्छा लगा होगा और हमें तो हमेशा आप लोगों के साथ मजा आता ही है
1: exactly.
0: हमारी जिंदगी अगर पूरी है तो वो सिर्फ और सिर्फ सास बहु बेटियों की वजह से ही है थैंक यू सो सो वेरी मच बाय लव यू
4: अजी बाय बाय इतनी जल्दी नहीं क्योंकि सिद्धार्थ भी तो लेट ही आए हैं और लेट आए हैं तो पनिशमेंट उन्हें भी मिलनी चाहिए ऐसे में देखिए कैसे हुनर और शालू दोनों ही सिद्धार्थ को लेकर पहुंच गई हैं उत्पम बनवाने के लिए जहां पर सिद्धार्थ ने अपनी पनिशमेंट पूरी की और फिर टीम के साथ लिया जायके का मजा

0: வணக்கம்
1: வணக்கம் வணக்கம் வணக்கம்
2: साउथ इंडियन फूड फेस्टिवल में केवल रिमझिम की टीम ही नहीं बल्कि सीरियल भाग्यलक्ष्मी की पारुल चौधरी भी पहुंची हैं वहां पर साउथ इंडियन फूड का मजा लेने के लिए। ऐसे में उन्होंने भी की शेफ से मुलाकात और जाना वहां के जायके के बारे में।
3: वेल, अब तक देखिए ये जो खुशबू है ना, जो खाने के जो यहाँ पर फैली हुई है, थैंक्स टू बोथ आर अमेजिंग शेफ्स। ये जो हमारे साथ हैं, ये हैं शेफ मदुरई राघवन और ये हैं शेफ कमलेश राउत। और वही आज हम सबको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो साउथ इंडियन फूड है ना, हमें सबको लगता है कि इडली डोसा सांभर, बट आज हमें पता लगा है कि एक्चुअली साउथ इंडियन फूड में कितनी वैरायटी है, कितने फ्लेवर्स हैं। और यहाँ पर आज स्पेशली स्पेसिफिकली हम तमिलनाडु की बात कर रहे हैं, जहाँ पर हम मदुरई और चेट्टिनाड क्यूजीन के बारे में बात कर रहे हैं। तो आज जो भी हमें देख रहे हैं वो जल्दी जल्दी इस फेस्टिवल में आए, क्योंकि वेजिटेरियंस और नॉन वेजिटेरियंस के लिए यहाँ पर फुल ऑन ट्रीट है। और जैसा कि शेफ ने बताया कि यहाँ पर जो स्पाइसेस है ना, उनका कमाल है। तो आप भी यहाँ पर आइए और इस साउथ इंडियन फ्लेवर को आज़माइए और हमें बताइएगा कि अब आपका जो थॉट था वो बदल गया, राइट? इट इज़ नॉट जस्ट इडली डोसा, बट देर इज़ सो मच मोर टू इट। एक्चुअली पता है, शेफ ने मुझे बहुत सारी चीज़ें दिखाई अभी जो हमारा स्प्रेड है वहाँ पर, और स्पेशली उन्होंने मुझे वो आम पचड़ी तो उन्होंने मुझे बोला है कि ये आपको खाने में बहुत ही मज़ा आने वाला है, क्योंकि वो कच्चा आम है, जागरी के साथ कुक्ड है। तो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सूप है जो बनाना स्टेम से बनता है, तो वो भी मुझे ट्राई ज़रूर करना है। और उन्होंने एक टैपियोका का स्टार्टर भी बताया, जो वो देखने में इतना इंटरेस्टिंग लग रहा था। अब ना ज़्यादा खाने की बात नहीं करते क्योंकि मेरी भूख बढ़ रही है। तो बहुत कुछ है यहाँ पर, एंड ऑफकोर्स नॉन वेजिटेरियंस के लिए तो यहाँ पर मतलब कुछ अलग ही कमाल हो रहा है।
2: पारुल चौधरी के अलावा वहाँ पर दिखी औरा भटनागर और अविनाश मुखर्जी भी, जो पहुँचे हैं अपने परिवार के साथ जायका चखने के लिए।
4: सो एज अ नॉर्थ इंडियन आल्सो आई एम फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंसिंग दिस वाइड वैरायटी ऑफ साउथ इंडियन फूड, एंड इट्स सो इंटरेस्टिंग टू हियर अबाउट दिस, क्योंकि ये स्टेरियोटाइप रहा है कि इडली डोसा सांभर ही होता है साउथ इंडियन में, और हम लोग वेज पीपल वी जस्ट स्टे दैट। और अभी यहाँ पे इतनी सारी चीज़ें वेज ऑप्शंस में देख के आई एम सो हैप्पी। सो या
5: प्लीज ट्राई द आपम परोठा।
4: ओके, थैंक यू सो मच।
5: थैंक यू।
6: आई हैड अभी कुछ स्टार्टर्स थे, आई हैड वन मटन उत्तपम टाइप, एक चटनी के साथ
7: करी डोसा।
6: अच्छा, करी डोसा, ओके। और अभी जैसे शेफ ने रिकमेंड किया, थोड़ी सी बिरयानी ट्राई करेंगे और मलाबार पराठा विद चिकन करी एज ही सेड। सो अगर शेफ से रिकमेंडेशन आ रहा है तो आई थिंक वी शुड स्टिक टू दैट ओनली।
2: वैसे ये फेस्टिवल पूरे 10 दिनों तक चलेगा, यानी 10 दिनों तक अगर फूड का मजा लेना है तो फेयरफील्ड बाय मैरियट जाना ही पड़ेगा। मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट।

0: पैमर गॉसिप और हाई वोल्टेज ड्रामा मनोरंजन की दुनिया से हम लेकर आए हैं कुछ ऐसी रॉकिंग और शॉकिंग खबरें जो आपके चेहरे पर ले आएंगी एक प्यारी सी मुस्कान। आइए आपको ले चलते हैं आज की रॉकिंग खबरों की ओर।
1: Hi guys, first day in the lift. How's everyone feeling?
2: पेश है बॉलीवुड ओटीटी और टेलीविजन की रॉकिंग और शॉकिंग खबरें। रॉकिंग और शॉकिंग खबरों में सबसे पहले बात करते हैं द लिफ्ट की। जी हाँ, देख लीजिए इसके ये बिहाइंड द सीन नजारे। भाई आपको बता दे कि ये शो लेकर आ रहा है DKP प्रोडक्शन, जिसमें नजर आ रही है अदा खान और प्रतीक सहजपाल।
3: बहुत एनर्जी लगा रहा है लड़के में, बहुत दम है भाई।
4: अमन, उदिति और इश्फा माही के साथ पूरा दिन बैठते हैं।
2: नजर डालते हैं बिग बॉस के इस झलक पर, जहां सलमान खान उठा रहे हैं माही के दुश्मनों से पर्दा।
4: अमन, उदिति और इश्फा माही के साथ पूरा दिन बैठते हैं। माही, गौर से सुनना, माही की गेम हमको क्लियरली नजर आ रही है। फिर वेट करते हैं कि रात को माही सो जाए।
5: हाँ जी।
4: और आप तीनों डिस्कस करें कि माही आप सबको कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी। जब इतनी ही नफरत है तो सारा दिन इनके साथ क्यों बैठे?
2: इसी के साथ खास मेहमान बनकर पहुँचे हैं मिक्का सिंह।
6: आपका जो पहला एपिसोड था वो 2010 में आया था 3 अक्टूबर को।
7: अरे बाप,
6: तो ऑलमोस्ट 16 साल हो गए। स्टैंडिंग ओवेशन तो बनता भाई। गुल्लू गुल्लू क्योंकि आजकल लव ज्यादा ही गुल्लू गुल्लू करती जा रही। चलो फिर लव और गुल्लू के लिए गाना हो जाता है।

के रियलिटी शो राइज एंड फॉल में बहुत जल्द होने वाली है एज वाइल्ड कार्ड ऋषभ जायसवाल की एंट्री। अब ये टावर में आकर कितनी धूम मचाएंगे ये देखना काफी एंटरटेनिंग होगा।

0: रेडियो अंदाज में
1: कौन बनेगा करोड़पति में खास मेहमान बनकर पहुंचने वाली है उड़ता तीर की टीम, यानी कि आयुष्मान खुराना और सारा अली खान। ऐसे में आयुष्मान खुराना ने बिग बी के बर्थडे पर उन्हें दिया है एक म्यूजिकल बर्थडे विश। जी हाँ, बहुत जल्द आने वाला है अमिताभ बच्चन का बर्थडे।
0: रेडियो अंदाज में आपका इंट्रोडक्शन दिया जाए।
2: केबीसी रेडियो पर मान ना मान, मैं हूँ आपका आयुष्मान। दिस इज अमिताभ बच्चन बर्थडे वीक, सो कमिंग अप नेक्स्ट ऑन एबी 84.0। स्टे ट्यून्ड।

0: दिल्ली में थिएटर में रिलीज हुई है फिल्म दृश्यम 3 यानी कि दृश्यम द कंक्लूजन, जिसे दर्शक बेहद पसंद कर रहे हैं। ऐसे में तब्बू ने शेयर किए हैं इसके बिहाइंड द सीन नजारे। भाई आ गया है खतरों के खिलाड़ी का फिनाले। ऐसे में देख लीजिए कैसे हो रही है शो में ढेर सारी मस्ती। इसी के साथ साथ देख लीजिए रूहानिका और करण वाही की ये मस्ती बाकी के खतरों के कंटेस्टेंट्स के साथ, यानी कि ये है बिहाइंड द सीन नजारे।
1: अरे पोज करना, ऐसे बैठ के क्या कर रहा है, इधर आ, ऐसा पोज कर।
2: शाहरुख वाला करूं मैं?
1: हाँ शाहरुख वाला कर ले, चल आ जा।
0: पटना के साहिब गुरुद्वारा पहुंच गई हैं यामी गौतम। भाई दशहरा के मौके पर उनकी फिल्म नई नवेली रिलीज जो होने वाली है, ऐसे में वो लेने पहुंची है बाबा जी का आशीर्वाद।
3: इंडियन आइडल के इतिहास की सबसे बड़ी जंग लेकर आ रहा हूं मैं, लेट्स बिगिन।
0: नजर डालते हैं इंडियन आइडल के इस प्रोमो पर, जहां फिर एक बार मंच पर लौट रहे हैं लेजेंड,
3: जहां आइडल के अब तक के स्टार्स फिर से साबित करेंगे खुद को, क्योंकि सिर्फ एक बार जीतना काफी नहीं होता, बार बार जीतना पड़ता है। अब सवाल सिर्फ जीत का नहीं, अपनी पहचान बचाने का है। उनका नाम मिटेगा या फिर से बन जाएगा, क्या होगा ये तो वक्त बताएगा।
4: Are you ready?
5: Hello. Today is day one of actually our film look test. So technically it's the first time like got the cast together trying out their looks.
0: Don't be shy. जी हाँ, आलिया भट्ट की प्रोड्यूस की हुई फिल्म हाल ही में रिलीज हुई है, ऐसे में देख लीजिए इसके बिहाइंड द सीन नजारे।
6: डायरेक्टिंग ऑन, लविंग
5: इट। यू नो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मोमेंट फॉर फाइव पीपल टुडे, बिकॉज़ दिस इज द फर्स्ट टाइम दे आर गोइंग टू हैव देयर फर्स्ट फिल्म आउट, सो यू डोंट गेट दिस मोमेंट अगेन, सो विच इज ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज एंड लॉट्स ऑफ लव। I would like to first welcome our cast, Arushi Bajaj as Shai, Ansh Dugal as Dhruv, Bianca Arora as Dara, and my daughter Raha's favorite, Piyush Pati as Mayank. And of course, none of this would have been possible, like the movies is never possible without our director. Woo-hoo! Huge round of applause.

बहुत जल्द हिमांशी पराशर नजर आने वाली है नए शो में, ऐसे में देख लीजिए उनकी दमदार तैयारी। अक्षय कुमार और आर माधवन फिर एक बार रीयूनाइट होने वाले हैं साजिद खान की आने वाली फिल्म में, जिसे वो डायरेक्ट कर रहे हैं और प्रोड्यूस कर रही हैं एकता कपूर।

0: रियल ये रिश्ता क्या कहलाता है मे, अरमान और अभीरा की जिंदगी में आई बड़ी राहत जहां आखिरकार उन्हें पता चल गया कि उनकी लाडली बेटी मायरा कबीर के साथ कहां है। इस मुश्किल घड़ी में अरमान बने हैं अभीरा की हिम्मत। अब ऐसे में दोनों कैसे मायरा को मनाने की कोशिश करते हैं, देखना दिलचस्प होगा।
1: खत्म हुई अरमान अभीरा की परेशानी। मिल गई कबीर और मायरा की जानकारी। मुंबई पहुंचे प्यार के दो पंछी। प्लस के सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है मैं मायरा और अभीरा के घर पहुंच गई है जानकारी कि उनकी बिटिया रानी मुंबई में पहुंच गई है। उदयपुर से मुंबई पहुंच गए हैं कबीर और मायरा और देखिए कैसे वहां पहुंचकर वो वहां की ताजी हवा ले रहे हैं और बेहद खुश हो रहे हैं क्योंकि उन्हें आजादी महसूस जो हो रही है, अनजान लोगों से मिल रहे हैं, मेलजोल बढ़ा रहे हैं।
2: अलीबाग से आया है क्या तुम लोग?
3: आपके बात करने का स्टाइल कितना कूल है।
4: आया है क्या? लव इट।
5: हम लोग उदयपुर से, आप अलीबाग से?
3: आपका बोलने का स्टाइल कितना कूल है। आया है क्या? तो कूल। अच्छी जगह है।
5: वैसे दूर है क्या?
3: बाहर क्या लोग?
6: ऐसा लुक्का समझ गया? चल।
3: लुक्का। कबीर, तुम लुक के हो?
5: बोलते
3: नहीं ना, मालूम था शायद ये कोई खराब नहीं। तो सुनने में तो अच्छा लग रहा है ना मेरे
7: लुक को। आए दोनों, आए मुझे
3: क्या करेंगे? अरे दो दो और धक्के दो। कभी ये धक्के नहीं है, ये यूनिवर्स इनडायरेक्टली हमारी पीठ पे थपथपा के हमें मुंबई आने के लिए वेल डन कह रहा है। क्योंकि मुझे पता है सब अच्छा होगा।
8: मुंबई जर्नी, हम लोग घर से भाग के जयपुर से मुंबई आ चुके हैं, उदयपुर से मुंबई आ चुके हैं और हम ट्रैफिक, बहुत सारे धक्के, आज़ादी की पहली खुशबू
3: और सीधा मच्छी
8: की खुशबू आती है हमें सीधा। और फिर मायरा कुछ शब्दों से एकदम फैसिनेट हो जाती है,
3: जैसे कि उनकी लैंग्वेज, उनका टोन बोलने का कि ए क्या कर ले, क्या थी वो लाइन?
8: हाँ जो भी लाइन थी,
3: आयले हो गया,
8: आयले हो गया, अलीबाग से आयला
3: है
8: क्या, जैसे बॉम्बे में बोलते हैं
3: क्या?
8: तो फिर हम लोग समझते हैं वो सच में बोल रहे हैं कि हम लोग अलीबाग से, हम लोग आप अलीबाग से आए हो। स्टिल दैट इज गोइंग ऑन। और हमें एक फीमेल ऑटो ड्राइवर भी मिलती है तो हम उससे बहुत फैसिनेट हो जाते हैं। और फिर
3: और उनकी डॉटर भी है उनके ऑटो में जो बहुत ही ज्यादा क्यूट है।
8: लेकिन हम दोनों मायरा और कभी डरे हुए भी हैं, एक्साइटेड भी हैं उनकी नई जर्नी आगे कैसी होती है। देख, हमें हमारे पेरेंट्स की याद स्टेप बाय स्टेप थोड़ी थोड़ी चीज़ों में, छोटी छोटी चीज़ों में आती रहती है। घर की याद आती रहती है, कैसी चीज़ें होती थी, कुछ चीज़ें मायरा बोलती थी, कुछ चीज़ें कबीर बोल देता है कि उस टाइम पे जो हमें आदत से मजबूर हैं, घर का एड्रेस हो गया या फिर कुछ भी घर की बातें, जो मेरे पापा बोलते थे वो ये बोल देती है। तो ऐसे बस यादें चलती रह रही हैं।
3: हम मुंबई में मुंबई आए हैं,
8: मुंबई हमें घूमने आए हैं, बॉम्बे दर्शन भी करेंगे हम लोग अभी घूमते घूमते,
3: क्या पता क्या करेंगे। बट हाँ वही है, ऐसा मुंबई में उदयपुर बनाते हैं, जयपुर बनाते हैं, इस बार मुंबई में ही मुंबई बना है, मजा आ
8: गया।
1: वही मायरा और कबीर दोनों को लग रहा है कि घर से भागने के बाद इनकी जिंदगी चैन से गुजरेगी। इतना ही नहीं, मुंबई आने के बाद अब इनकी सवारी निकल चुकी है बांद्रा की ओर। जरा देखिए, इन्हें ऑटो भी मिल जाता है और दोनों मुस्कुरा कर वहाँ से निकल भी पड़ते हैं। इसी बीच कबीर अपनी मायरा के लिए गुलाब भी लेता है क्योंकि भाई प्यार का नशा है, धीरे धीरे चढ़ता है। लेकिन जल्द ही कहानी में आएगा ऐसा ट्विस्ट कि मायरा वापस पहुंच जाएगी अपने घर। और देखिए कैसे अरमान और अभीरा दोनों मायरा के वापस आने पर खुश तो होंगे, लेकिन अभीरा उसकी टेंशन उसके चेहरे पर साफ साफ नजर आएगी।
9: अभीरा, एक घंटे पहले खाना चेक मना रहे थे कि मायरा घर लौटे, खाना चेक हमारी सुन ली है, थोड़ी देर तो खुश हो, मायरा सेफ एंड साउंड घर लौटाई, अभी के लिए इतना काफी है।
1: अरमान तो अभीरा का बखूबी ख्याल रख रहा है, लेकिन कहीं न कहीं अब अरमान को डाउट भी हो गया है, क्योंकि वो न सिर्फ अभीरा को समझा रहा है बल्कि उसने अभीरा के हाथों में मायरा का मोबाइल भी देख लिया है। ऐसे में अरमान को और भी टेंशन होने लगी है, क्योंकि अभीरा अपनी बेटी मायरा की जासूसी जो कर रही है।
6: तुम उसका फोन सुन ले आए?
7: डाइनिंग
6: में जाओ, उसका फोन वापस दे दो। मायरू के कॉल्स और मैसेजेस पढ़ने के लिए उसका फोन दे।
7: मुझे जानना है कि
6: वो मायरू अभी कबीर के दुश्मन है या नहीं।
7: मुझे जज कर रहा
6: हूँ अभी। ऐसे में तो माँ, मैं और तुम में क्या फर्क रह जाएगा? माँ उससे सवाल पूछ रही है, तुम उस पर जासूसी कर रही हो।
7: मैं जासूसी कर रही हूँ? मेरे मेरी तो हिम्मत ही नहीं इसका फोन खोल के देखने की। पर मैं मंकी के इतने सारे झूठ पकड़ चुकी हूँ कि ना चाहते हुए भी मेरे मन में डाउट आ ही जाता है कि मैं उसके कितने सारे कबीर से रिलेटेड झूठ पकड़ चुकी हूँ। आज भी अगर वो हो सकता है झूठ बोल रही हो।
1: अभीरा तो अरमान को अपनी परेशानी बताती है। ऐसे में अरमान उसकी परेशानी समझते हुए उसे गले लगा लेता है और उसे समझाने की पूरी कोशिश कर रहा है। देखना होगा क्या अरमान अभीरा को समझाने में कामयाब हो पाएगा और क्या अरमान अभीरा दोनों मिलकर अपनी बेटी को समझ पाएंगे। मुंबई से शीतल कावा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
0: सीरियल तू ही रे दिल में नीरव पकड़ा गया है और उसे लेकर घर में हंगामा मचा है। ऐसे में एक तरफ जहां स्वाति की मां नीरव पर केस करना चाहती है, तो वहीं संजू की फैमिली इसके खिलाफ है। ऐसे में क्या स्वाति और संजू के रिश्ते में दरार पैदा होगी? देखना दिलचस्प होगा।
10: घर की बात घर में रहनी चाहिए, बाहर वालों के सामने नहीं आनी चाहिए। तुम भी सही कह रही हो।
1: माधवी का गुस्सा। संजू ने मांगी माफी।

आ गया नीरव। जी टीवी के सीरियल तू ही रे दिल में मैं आज माधवी का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया है। और देखिए कैसे भाई उसने अपनी बेटी का हाथ थामा और उसके ससुराल से कैसे गुस्से से जाने लगी। ऐसे में देखिए कैसे भाई संजू भी अपनी होने वाली सासू माँ से माफी मांग रहा है, लेकिन माधवी कहाँ किसी की सुनने वाली। भाई इतना ही नहीं, आज तो दादाजी भी माधवी के आगे हाथ जोड़कर खड़े हैं, लेकिन भाई माधवी ने उनकी भी नहीं सुनी।

0: बात घर में रहने चाहिए, बाहर वालों के सामने नहीं आनी चाहिए। तुम भी सही कह रही, रखो लोग रखो अपने पास, रखो अपने पास साथी चले आ।
1: नीरव पकड़ा गया है, नीरव ने तो ये सब कांड किया है तो हमको पता चल ही गया था। अब हमको ये पता चल गया है कि नीरव घर में है और उसके बाद में मैं कहती हूँ कि मैं तुम्हें अरेस्ट करवा लूँगी और ये वो, बट सारे घर वाले जो हैं जैसे बा है और सरिता जी है वो नीरव की साइड लेते हैं और कहते हैं कि ये घर की बात है, घर में रहने दो। तो रूपल भी कहती है कि बाहर वालों के साथ ये सारा हंगामा मत करो। तो बात कहीं पे मानवी के दिल पे चुप जाती है कि जब इनको ज़रूरत थी संजू को बाहर निकालना था तो उसकी माँ मेरे सामने हाथ जोड़ के खड़ी थी और अब जब उनका काम हो गया है तो हमें बाहर वाला बोल रही है कि उनके घर की बात है। सो वो बात माधवी को अच्छी नहीं लगी है, उनको यही लग रहा माधवी यही सोच के कर रही थी सब कुछ कि मेरी बेटी का होने वाला ससुराल है और संजू मेरा होने वाला दामाद है और माधवी जेन्युइनली संजू को पसंद करती है स्वाति के लिए, तो इसलिए वो सब कुछ कर रही थी। लेकिन जब इतनी ऐसी बात कोई एक होता ना पल में पराया कर देना, ऐसा जब कोई करता है तो वो बात दिल पे चुभती है, वो माधवी के भी दिल पे चुभी है। दैट्स व्हाई अभी माधवी स्वाति को लेके निकल के जा रही है और रिश्ता थोड़े टेंशन में है संजू और स्वाति का।
2: असल में माजरा ये है कि संजू का दोस्त आज उसके घर आया हुआ है बिजनेस रिलेटेड बातें करने के लिए।
3: अच्छा, ऐसे बोलूं मैं तो फिर तो
2: ऐसे में सभी लोग चाय पर बैठकर ये डिस्कशन करने ही वाले होते हैं कि देखिए कैसे किचन से जूस का ग्लास लेकर जीतू बाहर आता है और उसी समय आती है कविता जो ये देख रही है कि आखिर जीतू इतने ध्यान से क्या देख रहा है। और जब ये दोनों एक साथ ऊपर की ओर दिखते हैं तो इन्हें दिख जाता है नीरव और देखिए कैसे कविता उसे पकड़कर नीचे ले आती है और बस फिर क्या शुरू हो जाता है घर में तमाशा।

0: मतलब ये ऐसा है कि ये लोग सब लोग मुझे ढूंढ रहे हैं और मैं अपने कमरे में कहीं छुपा हुआ हूँ। मैंने अपनी वाइफ रूपल से कहा है कि बोल देना कि मैं कहीं पर बाहर गया हूँ मीटिंग के लिए और गायब होने की कोशिश कर रहा हूँ। भागने की एक दो बार कोशिश करता हूँ पर भाग नहीं पाता हूँ। तो अभी मुझे यहाँ पर कविता और जीतू दोनों देख लेते हैं और वो पूरे घर में सबको बताते हैं कि नीरव तो रूम में ही छुपा है। कविता आती है, मुझे पकड़ के नीचे लेकर आती है और बाद में बहुत बड़ा ड्रामा है जहाँ पर संजय मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहा है। मैं इल्ज़ाम को मैं बोल रहा हूँ कि ये मेरी गलती नहीं थी, सब तेरी गलती है। माधवी है, माधवी बोलती है कि मैं लॉयर हूँ, तुझे सजा दिला के रहूंगी, तू भागा क्यों घूम रहा था सबसे पहली बात। तो ये सब ड्रामा चल रहा है अभी।
1: ऐसे में अब संजू क्या फैसला लेगा? क्या वाकई नीरव को सजा दिलाकर माधवी के दिल में अपने लिए फिर एक बार वही जगह बनाएगा या फिर कहानी में होंगे ढेर सारे हंगामे? मुंबई से रोशनी विश्वकर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
2: हम लेकर हाजिर हैं आपके फेवरेट शोज के सारे हाईलाइट्स एक साथ, तो हो जाइए आप भी सास बहू और बेटियां की एयरलाइंस पर सवार और करते हैं सीरियल्स की दुनिया की सैर।
1: दंगल टीवी के सीरियल मन अति सुंदर में भाई फिर एक बार आज अंतरा का प्लान कामयाब होते होते रह गया, क्योंकि भाई राध्या कैसे अपने पति देव यानी कि प्रथम को किसी और शख्स के साथ कमरे में बंद होने दे। भाई असल में आज घर में है राध्या की बर्थडे पार्टी और देखिए कैसे प्रथम और अंतरा एक कमरे में लॉक हो गए हैं। ऐसे में राध्या ने बिना किसी देर किए लॉक खोलने वाले बंदे को बुलाया और इस कमरे का लॉक तोड़ दिया। जिसके बाद वही प्रथम हंसी खुशी राजी कमरे से बाहर आया और बड़े ही अनोखे अंदाज में राध्या के बर्थडे पर उसे सरप्राइज देने का प्लान किया। लेकिन भाई जरा देखिए, इन सब से अंतरा बिल्कुल भी खुश नहीं है। भाई उसे तो काफी गुस्सा आ रहा है क्योंकि उसके किए कराए पर पानी जो फिर गया है।

0: टीवी के सीरियल आरंभी में। भाई आरंभी काफी ज्यादा परेशान है, ऐसे में देखिए कैसे वो पहुंच गई है दादी के पास जहां वो हो रही है बेहद ही इमोशनल। और इतना ही नहीं भाई, आज तो आरंभी ने अपने दिल की बात भी दादी के सामने रख दी।
1: और ये हिम्मत हमेशा बनाए रखना, फिर देखना सब होगा और सब अच्छा होगा। तुझे पता है रिहान तुझे सुपर वुमन मामा क्यों कहता है? क्योंकि उसने देखा है तुझे जिम्मेदारियों को निभाते हुए, मुसीबतों से निपटते हुए और चैलेंजेस को जीतते हुए। जिंदगी की तपिश ने तुझे तपा तपा के ना हीरा बना दिया है, जिसकी चमक कभी फीकी पड़ ही नहीं सकती। अच्छी बात है ना। वैसे तेरा पति तुझ पे भरोसा नहीं रखता है क्या? अरे मीडिया को इंटरव्यू दे रहा था, देखा मैंने, तेरी तरफ से तो वो कुछ बोला ही नहीं और तेरी बेल भी नहीं करवाई उसने। किसी बहुत गुस्से था इस बात से, आखिर चाहता क्या है वो? क्या मगर क्यों?
2: दिन को खास बनाने और चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए हम हाजिर हैं कुछ बेहद रॉकिंग और शॉकिंग खबरों के साथ। तो चलिए आपको दिखाते हैं मनोरंजन की दुनिया के अलग अलग रंग और देखते हैं क्या है आज की रॉकिंग और शॉकिंग खबरें।
0: आदिति राव हायद्री और नौरा फतेही नजर आई पेरिस फैशन वीक पर, देख लीजिए उनका ये विंटर लुक।

0: पापा मम्मी ऑर्गेनिक फार्मिंग करके अमीर बनने का सपना था मेरा, और उसके लिए रतन काका से 10 लाख रुपए उधार लेकर जमीन भी खरीदी, लेकिन वो जमीन वाला वो फर्जी निकला।
1: नजर डालते हैं क्योंकि पापा कहते हैं कि इस प्रोमो पर जहां अंबर को सीक्रेट पता चला है और पलट गया है गेम।
0: भाई भाई भाई भाई भाई, प्लीज प्लीज किसी को कुछ मत बताना।
2: मैं तो इतना सा हूं और मेरा पेट इससे भी छोटा, इतने से पेट में इतनी बड़ी बात कैसे रखूंगा? देखो अब इसे ही दर्द हो रहा
0: है। नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं, तू जो बोलेगा ना वो मैं करूंगा।
2: जो मैं बोलूंगा वो करोगे?
0: हाँ भाई हाँ।
2: अच्छा
1: राजकुमार राव, फार्मिका गप्पी और उज्जवल निकम, साथ ही साथ नजर आई फराह खान जो प्रमोट कर रहे हैं इनकी फिल्म प्रहार। तू है मेरी किरण, जी हाँ ये फिल्म सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल की है जिसे प्रोड्यूस कर रहे हैं विशाल राणा और डायरेक्ट किया है करण रावल ने। ऐसे में बीती शाम ये पहुंचे सोफाइस कॉलेज अपनी फिल्म के प्रमोशंस के लिए।

0: चलिए अब बात बिग बॉस 20 की, जहां इस हफ्ते हुए वीकेंड के वार में सलमान ने बड़े ही प्यार से लगाई घरवालों की क्लास और घरवालों ने लगाए एक दूसरे पर इल्जाम। देखते हैं वीकेंड के वार के नजारे।
1: कुछ हफ्ते पहले हम एक गलतफहमी इन्हें हुई थी, एक्चुअली आई वाज वेरी हर्ट उस चीज से, लेकिन मैंने उतना बड़ा मुद्दा बनाया नहीं। अरिशवा इज लाइक लिल सिस्टर, तो मैं मजाक मस्ती हमेशा करता रहता हूँ अरिशवा से कि तुम्हें अडॉप्ट कर लूंगा, चलो शॉपिंग मॉल, एंड क्या खाओगी, चॉकलेट खाओगी, हाँ लॉलीपॉप खाओगी, तो इट वॉज लाइक दैट। देन इन्होंने एक अजीब सा टॉपिक उठाया कि मुझे लॉलीपॉप वाली बात पसंद नहीं आई, और वो डबल मीनिंग थी। मैं आई कैन नेवर एवर इवन इमेजिन।
2: काजी, पहले 3 हफ्तों में तुम बहुत सीधे गए, बहुत अच्छे गए, एंटरटेनिंग थे। इस हफ्ते भी आपने एंटरटेन किया, लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, इस मामले में इस हफ्ते आप रॉन्ग चले गए।
1: जी सर, जी सर।
2: आपका इंटेंशन चाहे जो भी हो, क्लीन हो ना हो, लेकिन जब किसी को आपका इंटेंशन समझ में नहीं आया या गलत लगा है या डिसकंफर्ट फील हुआ, यू शुड हैव जस्ट बैक्ड अप।
1: जी सर, मैंने
2: लेकिन आप लगे रहे नॉन स्टॉप लाइक अ स्टक रिकॉर्ड। आपने उसको रबड़ कर दिया, आपने उसको स्ट्रेच कर दिया, और इसी वजह से आप गलत चले गए। इंटेंशन नहीं, लॉलीपॉप यू डोंट लाइक, ओके आई एम सॉरी, अलास, मूव ऑन।
1: जी जी सर,
2: मूव ऑन।
3: सर, इनमें बहुत हवा आ गई है, क्योंकि तीन
2: इसे सॉरी बोला आपको?
3: नहीं सर,
1: जी, सॉरी बोला मैंने।
3: मुझे कोई मर्जी बोल दे, मैं
2: हमने नहीं देखा आपने इनको सॉरी बोलते हुए। यार, इफ आई से समथिंग, वो अगला पार्टी उसको एक फ्लर्टेशियस मैनर में लेता है या अनकंफर्टेबल हो जाता है, द फर्स्ट थिंग ओह शिट। हां, इंटेंशन हो या ना हो, आपने ये कहा कि मैं गोली खा लूंगा, सॉरी नहीं कहूंगा, अब ये यहाँ पर गलत चले गए आप।
1: क्योंकि सर, मैंने पहले सॉरी मजाक मजाक भी इनको कहा था।
3: नहीं, नहीं, आपने नहीं बोला था। उनको सॉरी बोल दो ना, मैं भी तो आपको वही
2: नहीं, नहीं, नहीं, तो मजाक मजाक में सॉरी कौन बोलता है? जब सॉरी कहता है तो एक्चुअली फील करके दिल से माफी मांगता है।
1: जी सर,
2: जब तुम्हारे दिल में ये एक फीलिंग आ जाए कि हाँ मैं गलत चला गया था, मेरा इंटेंशन नहीं था, बट ऐसा इनको फील हुआ, आई एम सॉरी, आई डिडंट मीन दैट वे, बैक ऑफ।
1: जी सर,
2: आसिफ को यंग के कुछ बिहेवियर से प्रॉब्लम है, चलिए वो थोड़ा बहुत यंग से बात कर लेता है, लेकिन आसिफ को जब लव से प्रॉब्लम होती है, आसिफ डायरेक्टली लव को नहीं बोलता है फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम, और सिर्फ अग्रेसिव होके दिखाते हैं
1: सर।
2: लेकिन अब मैंने देखा है, आसिफ तुम्हारे हाथ उठाने से पहले हम तुमको बोल देते हैं कि भाई अब आप इंडिविजुअली बनके रहने की कोशिश कर रहे हैं, एंड दैट्स गुड, करेक्ट, यही बोलना चाह रहे थे ना?
4: हाँ, ये भी और चलाओ और भी।
2: आई एम टेलिंग यू, अब जैसे के अमन, उदिति और अरिशफा, आप तीनों बोलते रहते हैं के माही की गे, माही गौर से सुनना के एक्सप्रेशन देख लेना के माही की गेम हमको क्लियरली नजर आ रही है, एकदम क्लियरली समझ में आ रहा है कि वो क्या क्या करने की कोशिश कर रही है। तो आप लोग माही के साथ पूरा दिन बैठते हैं, फिर वेट करते हैं कि रात को माही सो जाए और आप तीनों अकेले में बैठ के डिस्कस करें कि माही आज कहां कहां गलत थी।
3: नहीं सर,
2: माही सुनो, कौन सी गेम माही खेल रही थी?
5: नहीं सर, एक आध बार ही हुआ होगा।
2: और कैसे माही आप सबको कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी?
3: सर बकरी,
2: जब आपको इतनी ही नफरत है माही से, आपको इतनी ही दिक्कत है माही से, आपको इतना ही कोफ्त है माही से, इतनी ही जलन है माही से, तो सारा दिन इनके साथ क्यों बैठते हो? इनका चल रहा है कनिका का साइड में।
3: हाँ
2: तो माही
6: हाँ जी,
2: मैं इन तीनों से जानना चाहता हूँ कि बताइए अमन, उदिति और अरिश्वा, जो बात आप इतने कन्विक्शन के साथ दिल से एक अंदरूनी आवाज आपकी निकलती है माही के अगेंस्ट, उनके सोने के बाद वो सेम कन्विक्शन,
4: भूल जाऊंगा,
2: उनके सोने से पहले उनके सामने क्यों नहीं ये आपके पॉइंट ऑफ व्यू आप रख देते हैं। ये तो मैं हूं माही, ये तो मैं हूँ जो कि आपको आके बता रहा हूँ ये सब, कोई नहीं करता, कोई नहीं करता, ये तो आपको बिग बॉस भी नहीं बताएगा, यहाँ तक कि खुदा भी आपको आके बोल के नहीं जाएगा कि ये लोग आपके पीठ पीछे आपके सोने के बाद आपके बारे में क्या क्या कहते हैं और सामने आपके, वाह
7: वाह
2: शराफत की,
8: सर ऑब्जर्वेशंस जो थी, हाँ नेगेटिव्स थी, हमने डिस्कस की थी वो ऑब्जर्वेशंस की, मेरे को ऐसे लग रहा है इन लोगों से ही पूछा, इन्होंने भी वो चीज ऑब्जर्व करी थी, पर मैंने कहा जो उनकी अच्छी साइड है मैं चाहता हूँ वो डोमिनेंट साइड हो, तो हम थोड़े दिन और देखते हैं वरना उनसे बात करेंगे, हमने ये बात की थी,
7: करी भी थी आपसे,
8: तीन चार दिन रुक जाते हैं हमसे, इनसे बात करेंगे की हमें ये चीज आपकी गलत,
2: जो माही माही मैं मेरी कसम नहीं खाऊंगा, किसी परिवार वाले की कसम नहीं खाऊंगा, लेकिन आपकी कसम जरूर खाऊंगा, अब बोलूंगा ये सेकंड पार्ट इन्होंने जो बोला है ये मैंने तो नहीं सुना
8: सर, काजी भाई
7: बोला था,
2: और 140 करोड़ की आबादी ने भी नहीं सुना
7: सर, एक्चुअली पहले मेरे को बताया गया था कि वो मेरे बारे में काजी जी को जाके, अरिश्वा को जाके, अमन को जाके बात करती जो उनको चीजें मेरे बारे में पसंद नहीं है, तो जब मैंने ये सुनी थी तो मैं थोड़ी हर्ट हो गई थी, अगर हम इतना साथ टाइम स्पेंड करते तो व्हाई आरंट यू टेलिंग मी डायरेक्टली कि क्या इश्यूज है, तो ये बात मैंने अरिश्वा ने मुझे बताई, हमने डिस्कस करी और हमने कहा था कि हम माही मैम से आराम से बात करेंगे कि व्हाट इज द इशू, और फिर मैंने आपसे आके बात क्लियर भी करी थी और फिर मैंने आपको बोला भी था कि आगे से कुछ भी होता है आप मुझे डायरेक्टली बताओ, तो उन्होंने कहा था कि मैं आपके फ्लॉ सबके सामने नहीं बताना चाहती हूँ इसलिए मैं दूसरों को बता देती हूँ कि वो इनडायरेक्टली तक आपके पास आके आपको पता चल जाए,
2: ये
7: उन्होंने बताया सबको बता के
9: मेरे फ्लॉज उन्होंने स्काउट जी को बताए थे कि
7: कोई
2: अरिश्वा
8: कॉपी कर
2: दिया,
5: क्योंकि सर जब वो टॉप 10 का हुआ था माही दी अपनी पोजीशन से हिलने रेडी, हिलने क्या वो कुछ बोली भी नहीं थी, वो एक जगह जाके बैठ गई थी, तो मुझे लगा वो उस चीज में इतनी ये है कि वो पावर दिखा रही कि उनको चाहिए चाहिए, बाद में जाके इतना लड़ झगड़ने के बाद उन्होंने अपना पोजीशन शिफ्ट किया था, वो भी वापस उनको मिल गया था जब उन्होंने मुझे वो नॉमिनेशन में सेव किया था, तो मेरे मन में एक थॉट आया कि वहां पे तो वो रेडी नहीं थी पोजीशन लेने, यहाँ पे उन्होंने नॉमिनेशन में मुझे कैसे सेव कर लिया और खुद को नॉमिनेट कैसे कर लिया, तो मे बी उसके पीछे उनका कोई गेम है। सेकंड टाइम गुल्लू और कनिका आके इनको बोल रहे हैं दीदी खेल गए अब तो, दीदी खेल गए, तो मेरा दिमाग में वो आया कि मे बी इनका कुछ तो गेम है, मे बी आगे जाके
7: ली, जिस दिन वो बकरी वाला टास्क हुआ था उस दिन
2: लेकिन अरिश्वा तुम्हारी मम्मी ने क्या कहा था,
5: किसी पे ट्रस्ट नहीं करना,
2: किस पे ट्रस्ट नहीं करना,
5: किसी पर भी नहीं,
9: बिल्ली आंखों वाली
5: जिनकी आंख कंची होती है उन पे भरोसा नहीं करना चाहिए।
2: आपने कैसे भरोसा कर लिया,
5: तो सही है मैंने उनके मुंह पर भी ये बात बोली थी कि आपकी कंची आंख है तो आप पे भरोसा करना थोड़ा मुश्किल है।
2: पहले तो मैं आपकी मम्मी से एक बात कहना चाहता हूँ कि आंखों का कलर जो भी हो, आंखों के कलर से ऐसा नहीं है कि आप उसको ट्रस्ट कर सकते हो या नहीं ट्रस्ट कर सकते हो, हमारे पूरे खानदान में सब लाइट आईज है, समझे आप, डार्क आईज वाले ज्यादा मिसट्रस्ट करके चले जाते हैं, आंखों से ट्रस्ट का क्या है, दिमाग से है, दिल से है, जिगर से है, लॉयल्टी से है, आंखों और ट्रस्ट का कोई लेन देन नहीं। अरिश्वा जो आप अभी तक के इनके पीठ पीछे इतनी बुराई कर रही थी आप,
5: सर मैंने कितनी बुराई की,
2: अभी अगर आप में एक हृदय है और आप में वाकई में एक सच्चाई बोलने का एक जज्बा है तो अभी आप माही को बोलेंगे उनके सामने.
5: जी सर. माही दी कि आप मेरा बहुत केयर करते हो एंड ऑल, उस चीज को अगर हम साइड हटाएं, जब आपने वो मुझे सेव किया था मुझे उसी टाइम वो थॉट आ गया था कि मे बी इसके पीछे कुछ गेम हो या कुछ. जब गुल्लू एंड कनिका ने आके वो बात बोली थी तो वो मेरे दिमाग में बैठ गई कि हाँ जेन्युइनली कुछ तो है, तभी वो लोग को दिख रहा है, वो लोग बोल रहे हैं. आगे में भी आप कोई अपने मतलब से या कोई सेल्फिशनेस से आपने मुझे वो चीज दी, आगे आप उस चीज का फायदा उठाओगे. और हम जब बैठे थे तो इन्हीं लोगों ने वो
2: इन्हीं लोगों ने
5: हम सबने और हाँ कॉन्वर्सेशन हुई तो मैंने बोला हाँ मुझे ऐसा लगा था.
2: अरिशवा आपने ये जो अभी बोला ना, ये जो आपका बोलने का टोन सेम नहीं था, उस टोन में बोले आप जिस टोन में आपने इनके पीठ पीछे बोला था.
5: सर मैंने इसी वे में बोला था, हाँ मुझे पता है उनका कोई तो गेम ही है.
6: सर मेरे को ये कहना है, जो बोल रही हैं कि वो तुम्हें चला रहे हैं या वो क्या बिग बॉस हैं कि वो कुछ ऐसा बोलेंगे और तुम मान लोगी. हम जब गए थे माही के पास और हमने पूछा आपने ऐसा क्यों किया, हम सब अपने लिए लड़ने आए हैं ना. उन्होंने बोला कि सपोर्ट की जरूरत होती है इस गेम में रहने के लिए और वो एक बहुत स्ट्रांग सपोर्ट है. आज मैं उसको दूंगी, कल को वो मुझे दूंगी. तो अभी जिस चीज के लिए ये यंग को ब्लेम कर रही है,
7: ऐसा नहीं बोला
6: ये, उससे पहले ये बात साफ साफ
7: बोला
6: कैमरा में दिख गया होगा सर वो बहुत क्लियरली. उस दिन के बाद से मैंने इन पर ट्रस्ट करना बिल्कुल जीरो कर दिया.
7: दैट्स ओके. मैंने जो भी किया था मेरी कोई इंटेंशन नहीं थी उस टाइम, जो मुझे ठीक लगा मैंने उस टाइम ये किया और मेरे दिमाग में ऐसा कुछ नहीं था. और मुझे अरिशवा से तो नहीं चाहिए सपोर्ट ये गेम में फॉर श्योर, या किसी से भी कोई
2: देखा किसी से भी कोई सपोर्ट नहीं चाहिए. उसके बाद भी अरिशवा इन्होंने आपकी सपोर्ट की
6: और उदिति के लिए ये बोला था कि उसका क्या ही सपोर्ट करूंगी मैं, उसने कुछ करना नहीं है और मुझे पता है कि
7: मुझे इतना लाइक नहीं कर रहा.
10: तुम दोनों वो जिन पे भरोसा करके मतलब लंबी रेस में दाग
6: लगे. यस. तो फिर हमें लगा जब आपस में ही ऐसा है इनका तो
7: मैंने आपको बात करी थी. आई टोल्ड यू
2: उदिति.
7: यस सर.
2: बोलिए जो बोलना है, मुंह पे बोलिए.
7: कुछ भी बात होती है वो मेरा नाम ऐसे यूज कर लेती हैं, तो मैंने उनको बोला था आप ऐसे मत किया करो. आई रिस्पेक्ट दैट जब तक वो मेरे साथ फेस पे रियल है उस बारे में. अगर हम सात टाइम स्पेंड करें बट आप पीछे जाके कम्प्लीटली डिफरेंट नैरेटिव बोलोगे तो मुझे प्रॉब्लम होती है.
2: ठीक है, वेरी गुड, कीप दिस अप. लड़ते झगड़ते रहो, एक दूसरे की बुराई करते रहो, एक दूसरों पे लानत भरते रहो एंड खुश रहो इस घर में. सिर्फ 3 महीने हैं. आई होप के हर एक सेकेंड हर एक लम्हा आपका 3-3 महीने टाइप का गुजरे. ओके.
0: सीरियल्स के सेट पर मचे हंगामों और पर्दे के पीछे की इनसाइड स्टोरीज के साथ आज का हमारा ये सफर यहीं पूरा होता है. लेकिन मनोरंजन का ये सिलसिला कल फिर जारी रहेगा और हम लेकर आएंगे कुछ और दिलचस्प और मसालादार खबरें. कल फिर मिलते हैं. नमस्कार.

0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।

0: लगा निकल जाएगा दम पर जज्बा नहीं हुआ कम। लहू लुहान बदन फिर भी परमार्थ से भरा मन। हनुमान चालीसा से मिला जूझने का बल। 174 लोगों को मौत से बचाने वाला महाबली। बंदे में है दम, श्वेता झा के साथ शाम 5:04 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
3: एवरेस्ट दिखा लाल, सही दिखा सही लाल।
4: वाराणसी में शक्ति आराधना उत्सव की तैयारियां तेज, पश्चिम बंगाल की तर्ज पर मनाई जाती है दुर्गा पूजा, माँ की प्रतिमाओं को अंतिम रूप दे रहे हैं कारीगर। केदारनाथ धाम में उमड़ रहा आस्था का मेला, बड़ी संख्या में श्रद्धालु कर रहे हैं बाबा केदार के दर्शन, मुख्य द्वार और वीआईपी गेट पर भक्तों का तांता। सुहाने मौसम, हिमाचल में बढ़ी सैलानियों की संख्या, मैक्लोडगंज की सड़कों पर पर्यटकों का तांता, पर्यटन कारोबारियों के खिले चेहरे। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में बीएसएफ की अगुवाई में मैराथन वोलर अल्ट्रा रन 3.2 में बड़ी संख्या में उमड़े लोग, फिटनेस के साथ साथ वोलर झील के संरक्षण का संदेश। एशियाई खेलों में तिरंगा लहराकर महिला हॉकी टीम जापान से लौटी स्वदेश, रांची एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत, कप्तान सलीमा टेटे की अगवानी।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
4: जापान के नागोया में एशियाई खेल 2026 का समापन समारोह शुरू, रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन। भारतीय ध्वजवाहक बनी भारतीय महिला ट्रैप निशानेबाज नीरू ढांडा। इस बार एशियाई खेलों में 21 स्कूल सहित कुल 85 मेडल जीतकर चौथे पायदान पर रहा भारत, 27 सिल्वर 37 ब्रॉन्ज। एशियाई खेलों के आखिरी दिन 5 गोल सहित 9 मेडल जीतकर भारत ने किया शानदार फिनिश। भारत ने क्रिकेट, हॉकी और कबड्डी में लगातार दूसरी बार पुरुष और महिला दोनों वर्गों में जीत हासिल की, पूरा किया गोल्ड मेडल डबल। एशियन गेम्स के महिला हॉकी में स्वर्ण पदक लेकर लौटी बेटियों का भव्य स्वागत। बेटियों के स्वागत के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन, लोगों ने खिलाड़ियों को पहनाई फूलमाला। एयरपोर्ट पर हाथों में हॉकी लेकर पहुंचे फैंस, ढोल नगाड़ों की थाप। बॉक्सिंग के पदकवीर भी लौटे स्वदेश, गोल्डन गर्ल लवलीना और परवीन का दिल्ली पर भव्य स्वागत। जापान से जीतकर लौटे अंकुश पंघाल और दूसरे खिलाड़ियों का भी हुआ जबरदस्त स्वागत। जापान में एशियाई खेलों में परचम लहराकर स्वदेश लौटी भारतीय स्क्वैश टीम, दिल्ली एयरपोर्ट पर स्वागत। अनाज सिंह, तन्वी खन्ना, जोशना चिनप्पा और शमीना रियाज ने एशियाई खेलों में मेडल हासिल किया। इंडिविजुअल और टीम इवेंट में परफॉर्मेंस से संतुष्ट हैं अनाज सिंह। तन्वी खन्ना ने भी एशियाई खेलों में परफॉर्मेंस पर जताई खुशी, जापान में कामयाबी के अनुभव को बताया बेहतरीन। भारतीय स्क्वैश खिलाड़ी अभय सिंह भी जापान से लौटे स्वदेश। महाराष्ट्र के अमरावती में एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीतने वाली कुमकुम मोहोड़ के घर जश्न। कुमकुम के परिजनों ने मिठाइयां खिलाकर बांटी खुशियां। गाजीपुर में हॉकी खिलाड़ी राजकुमार पाल के घर बंटी मिठाइयां। हरियाणा के सिरसा में हॉकी प्लेयर्स ने मनाया भारतीय टीम की जीत का जश्न। जलंधर में हॉकी खिलाड़ी मनप्रीत के घर दिखी खुशी की लहर, परिजनों ने वीडियो कॉल करके बधाई दी। एशियन गेम्स के पदक वीर खिलाड़ियों पर इनामों की बरसात, गोल्फ में गोल्ड मेडल जीतने वाली प्रणवी उर्स को मिलेगा 1 करोड़ रुपए का पुरस्कार। महिला गोल्फ टीम की सदस्यों को मिलेंगे 25-25 लाख रुपए, एएम ग्रीन आईजीपीएल लीग ने किया ऐलान। हॉकी इंडिया ने की है महिला टीम की हर खिलाड़ी को 11 लाख रुपए देने की घोषणा। ओडिशा सरकार ने भी की है हर खिलाड़ी को 11 लाख रुपए देने की घोषणा, हर सपोर्ट स्टाफ को भी मिलेंगे 5.5 लाख। महिला हॉकी टीम की खिलाड़ियों को मिजोरम सरकार देगी 25-25 लाख। लखनऊ में पिंक वेव रैली का आयोजन हुआ, ब्रेस्ट कैंसर को लेकर आयोजन। वेब रैली में 500 से ज्यादा महिलाओं ने लिया हिस्सा। पिंक वेव रैली में एक दर्जन से ज्यादा विंटेज कारें भी शामिल हुई। लखनऊ में फिर बढ़ने लगा गोमती नदी का जलस्तर, रिवर फ्रंट के निचले इलाकों में पानी। लखनऊ में अखिल विश्व गायत्री परिवार का प्रांतीय शिक्षक गरिमा कार्यशाला आयोजन, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हुए। इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भारतीय पायलट कैप्टन स्मिथ से वीडियो कॉल करके बात की, बहादुरी को सलाम किया। प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कैप्टन स्मिथ को बताया इसराइल भारत और पूरे विश्व के लिए हीरो। नेतन्याहू ने कैप्टन स्मिथ को दिया इसराइल आने का न्योता, इसराइल के स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल होकर मशाल प्रज्वलित करने का दिया ऐतिहासिक निमंत्रण। नेतन्याहू ने कैप्टन स्मिथ से ली फ्लाई दुबई के विमान में हुई घटना की पूरी जानकारी। इसराइल के लोग हुए कैप्टन स्मिथ के जाबाजी के दीवाने। पुरी में भगवान जगन्नाथ की हुई भव्य आरती, बड़ी संख्या में भक्तों ने किए दर्शन पूजन। श्री जगन्नाथ के दरबार में पहुंचे नागालैंड के गवर्नर नंद किशोर यादव। तूतुकुड़ी में वन विभाग की ओर से वन्य जीव सप्ताह पर कराई गई चित्रकला प्रतियोगिता, छात्रों ने बनाई प्रकृति से जुड़े संदेश देने वाली तस्वीरें। गुजरात के वलसाड अंबेटी गांव में बदल रही हैं तस्वीरें। श्रीनगर में धूप खिलने के साथ सुहाना हुआ मौसम, पर्यटकों ने उठाया नजारे का लुत्फ।

0: किला मुख्य द्वार और वीआईपी गेट पर लगी भीड़। बाबा केदार के दर्शन करने के लिए भक्तों को घंटों इंतजार करना पड़ा। भीड़ को व्यवस्थित करने में जुटा मंदिर प्रशासन। मंदिर के सारोली इलाके में लिफ्ट में फंसे 6 लोग का हुआ रेस्क्यू। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में बीएसएफ बुलर अल्ट्रा रन का आयोजन किया गया। लोगों को दिया गया फिटनेस का संदेश। कश्मीर में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बीएसएफ बुलर अल्ट्रा रन का मकसद, बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। गुरुग्राम में फिट गुरुग्राम मैराथन का आयोजन किया गया। अभिनेता मिलिंद सुमन शामिल हुए। मुंबई में इंडियन एयरफोर्स हाफ मैराथन का आयोजन किया गया। परमवीर चक्र विजेता निर्मलजीत सिंह सेठों की याद में उन्होंने आयोजन किया। इंडियन एयरफोर्स हाफ मैराथन में बड़ी संख्या में लोगों ने शिरकत की। दिल्ली में सेखों इंडिया एयरफोर्स मैराथन का आयोजन किया गया। एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने सेखों इंडियन एयरफोर्स मैराथन को दिखाई हरी झंडी। जोधपुर में भी सेखों इंडियन एयरफोर्स मैराथन का आयोजन किया गया। लोगों ने फिटनेस के लिए लगाई दौड़। गुवाहाटी में भी सेखों एयरफोर्स मैराथन का आयोजन किया गया। दिल्ली में 93वें संडे ऑन साइकिल रैली का भव्य आयोजन। अगले साल कोलकाता में होगा 19वां प्रवासी भारतीय दिवस समारोह। 7 से 9 जनवरी तक होगा आयोजन। प्रधानमंत्री करेंगे उद्घाटन। 19वें प्रवासी भारतीय दिवस समारोह के समापन समारोह में शामिल होंगी राष्ट्रपति। प्रवासी भारतीय सम्मान करेंगे प्रधान। इम्फाल में टीबी मुक्त भारत अभियान के सिलसिले में कार्यक्रम, बांटे गए न्यूट्रिशनल फूड बास्केट। ओडिशा के खोर्धा में स्कूल के वार्षिक समारोह में बच्चों में लगाई साइंस प्रदर्शनी। ओडिशा के खोर्धा में टूरिज्म को बढ़ावा देने पर जोर। राज्यपाल ने किया इलाके मशहूर अत्री हॉट स्प्रिंग का मुआयना। पुरी में सैंड आर्ट सीखने वाले छात्रों ने बनाई शानदार कलाकृति। लखीमपुर खीरी में टल गया बड़ा हादसा। नहर के गहरे पानी से बोलेरो गाड़ी का किया गया रेस्क्यू। गाड़ी में ड्राइवर के अलावा 6 स्कूली बच्चे भी सवार थे। अमेरिका में भारतीय दूतावास की ओर से यूनिटी रन फिटनेस इवेंट का आयोजन किया गया। फिटनेस के साथ साथ एकजुटता का संदेश। यूनिटी रन इवेंट में बड़ी संख्या में भारतीय शामिल हुए। दूतावास की पहल से किया गया स्वागत। ग्वालियर के महाराजा बाड़ा के ऐतिहासिक गोरखी देवघर में बाबा मंसूर शाह की दरगाह पर सालाना उर्स। बाबा मंसूर शाह की दरगाह पर उर्स में दिखती है सांप्रदायिक एकता की मिसाल। सालाना उर्स के सिलसिले में बाबा मंसूर शाह की दरगाह पर रौनक। असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में टूरिज्म सीजन का आगाज। जीप सफारी के लिए उमड़ने लगी सैलानियों की भीड़। असम के वन मंत्री जयंत मल्ला बरुआ पहुंचे काजीरंगा। दुर्गा पूजा की
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम।

0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको

0: अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को

0: भाई और बहनों नमस्कार, मैं बाबा रवि गिरी आज जो कार्यक्रम लेके आया हूँ वो आपकी आंखें खोल देगा। क्या आप जानते हैं कि मैं 78वें वर्ष में चल रहा हूँ, लेकिन आपको शायद ये जानकर विश्वास ना हो कि मैं आज भी रोज कई किलोमीटर आराम से चलना ही नहीं बल्कि दौड़ भी लगा सकता हूँ। इस उम्र में जहाँ लोग दर्द से, खासकर जोड़ों के दर्द से परेशान रहते हैं, मैं इस उम्र में भी पूरी तरह फिट हूँ। न मुझे जोड़ों का कोई भी दर्द है और ना मेरी एनर्जी कम है। आप जानते हैं कि ऐसा कैसे संभव हो पाया? तो मैं आपको बता दूं कि मेरे बनाए नुस्खों की वजह से, जो इस उम्र में भी मुझे हाथ पैर कंधे घुटने के दर्द से दूर रखते हैं। और आज के कार्यक्रम से ये आपके साथ भी मैं साझा कर रहा हूं, आप भी अगर जोड़ों के दर्द से जूझ रहे हैं, दवाएं खाते खाते परेशान हो गए हैं, तो एक बार मेरे नुस्खों को आजमा कर देखें, आपको 100% लाभ मिलेगा, ये मेरा आपसे वादा है। और ये नुस्खे कितने कारगर हैं इसका जीता जागता साबूत मैं आपके सामने बैठा हूं। इस उम्र में भी मेरे शरीर के सारे जोड़ चुस्त हैं, दुरुस्त हैं। मैंने ये नुस्खे अपने 50 वर्षों से भी अधिक के आयुर्वेदिक अनुभवों के ज्ञान और लंबे शोध के बाद तैयार किए हैं और हजारों लोगों को मैंने ठीक भी किया है। अगर आपको कई सालों से जोड़ों के दर्द की समस्या है, कोई चोट की वजह से दर्द है, बढ़ती उम्र के साथ दर्द बढ़ रहा है, या फिर कम उम्र में ही जोड़ों में, खासकर घुटनों में दर्द रहने लगा है, जोड़ों में ग्रीस कम हो गया है, गैप आ गया है, या फिर पानी भर गया है, समस्या चाहे जो भी हो और आपकी उम्र भी चाहे जो भी हो, आपको मेरे बनाए नुस्खे जरूर फायदा देंगे, ये मेरा आपसे वादा है। आपको बता दूं कि पुरुषों के मुकाबले जोड़ों के दर्द की समस्या महिलाओं को जल्दी और ज्यादा होती है, जिसका कारण हार्मोनल असंतुलन की वजह से, यानी मेनोपॉज भी आपको हो सकता है। लेकिन मैं बाबा रवि गिरी आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपकी ये सभी समस्याएं मेरे नुस्खों से बिल्कुल ठीक हो सकती है और जोड़ों के दर्द से छुटकारा पाकर आप बिना दर्द के चलना फिरना ही नहीं दौड़ना भी शुरू कर सकते हैं। इसके लिए आपको अभी नीचे दिए गए ये जो नंबर हैं इन पे कॉल करना है, आपको आपकी सभी समस्याओं का समाधान मिल जाएगा। तो भाइयों और बहनों, अगर आपको लगता है कि बढ़ती उम्र में जोड़ों का दर्द होता ही होता है, तो मैं आपको बता दूं कि उम्र सिर्फ एक संख्या है। अगर आप ध्यान देंगे, सही दिनचर्या अपनाएंगे और अपने जोड़ों का ध्यान रखेंगे, तो आपके जोड़ आपको कभी परेशान नहीं करेंगे, बल्कि उम्र भर आपके शरीर का अच्छे से बोझ उठाएंगे और आपको चुस्त और दुरुस्त रखेंगे। और ऐसा करने में आपको मेरे नुस्खे हर तरह से मदद करेंगे। इन नुस्खों को मैंने इन्हीं सभी बातों को और समस्याओं को ध्यान में रखकर बनाया है। यदि हिम्मत और दृढ़ निश्चय हो तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। आपकी सोच और आपके प्रयास ही आपको आगे बढ़ाते हैं। जब मैं इस उम्र में भी आराम से कई किलोमीटर तक दौड़ सकता हूं, तो आप क्यों नहीं दौड़ सकते? तो आप अभी ये नीचे जो नंबर दिए गए हैं इन पे कॉल करके मेरे नुस्खों का फायदा उठाएं और अपनी दवा बुक करें। अगर आप सुबह उठते ही अपने घुटनों या पीठ में दर्द महसूस करते हैं तो आपको ध्यान देने की जरूरत है। क्या आपको वो दिन याद है जब आप बच्चों के साथ पार्क में दौड़ा करते थे या बिना थके सीढ़ियां चढ़ लेते थे और अब थोड़ा सा चलना भी भारी लगने लगता है। जोड़ों का दर्द ना सिर्फ हमारे शरीर को तकलीफ देता है बल्कि हमारी जिंदगी के कई खूबसूरत पलों को भी हमसे छीन लेता है। न रोज के काम अच्छे से कर पाते हैं और न ही हर दिन की भागदौड़ में वो आत्मविश्वास रह जाता है। जरा सी सीढ़ियां चढ़ने पर घुटनों में दर्द होने लगता है, जमीन पर बैठना मुश्किल हो गया है और चलने में भी डर लगता है कि कहीं दर्द और ना बढ़ जाए। सच तो ये है कि जोड़ों का दर्द सिर्फ शारीरिक तकलीफ नहीं देता, ये हमारे अंदर की हिम्मत को भी गिर पाए। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये दर्द होता क्यों है? इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। सबसे आम कारण है गठिया यानी ऑस्टियोआर्थराइटिस। ये सबसे आम प्रकार है जो उम्र बढ़ने के साथ साथ जोड़ों की घिसावट की वजह से होता है। इसमें कार्टिलेज जो हड्डियों को आपस में रगड़ने से बचाता है वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है जिससे जोड़ों में दर्द और अकड़न होती है। क्या आप जानते हैं कि गठिया के 100 से ज्यादा प्रकार हैं जिनमें हल्के से लेकर गंभीर दर्द का सामना करना पड़ सकता है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस जोड़ों के दर्द की ऐसी बीमारी है जिसमें शरीर की इम्यून सिस्टम खुद ही जोड़ों पर हमला करने लगती है। इससे जोड़ों में सूजन, दर्द और समय के साथ हड्डियों की बनावट तक बदल सकती है। तो भाइयों और बहनों, मेरे नुस्खे इन सारी समस्याओं में असरकारक है क्योंकि इनमें ढेरों शक्तिशाली जड़ी बूटियों को मैंने अपने 50 साल से ज्यादा के अनुभव से अलग अलग फार्मूलेशन में मिलाया है जो आपको आपकी समस्या के हिसाब से बनाकर दी जाती है, इसलिए ये बिल्कुल सीधा असर करती है। मैंने ये नुस्खे पुरुष हो चाहे महिला हो, उम्र चाहे 20 साल हो चाहे फिर 70-80 साल हो, चलने में दिक्कत हो, सीढ़ियां चलने में दर्द होता हो, जोड़ों से कटकट की आवाज आती हो, इन सभी समस्याओं पर गहन चिंतन और शोध के बाद ही ये नुस्खे तैयार किए हैं जिनका असर अचूक है। चलती रहनी चाहिए जिंदगी बिना दर्द के और बिना रुकावट के। मैं बाबा रविगिरी आपको कुछ ऐसे नुस्खे और जड़ी बूटियां बताऊंगा जिससे आप अपने जोड़ों का समाधान तुरंत पा सकते हैं। जोड़ों के दर्द में प्रयोग की जाने वाली आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां जो मैं बताने जा रहा हूं उनमें सबसे पहला है तेलपर्ण। इसको तेलपर्ण क्यों कहा जाता है कि इसके पत्तों में तेल होता है, इसलिए इसको तेलपर्ण कहते हैं। वैसे आम भाषा में इसको नीलगिरी के नाम से जाना जाता है। दूसरा जो है ये है सती तेल। ये सूजन को घटाता है, अंदर तक समाकर यह सूजन बढ़ाने वाले इंटरल्यूकिन स्तर को कम करता है और सूजन को घटाता है। इसके बाद में है ये तेजोवती। इसमें मौजूद लिनालूल और लिमोनेन कफ दोष शमन करके और सूजन को घटाता है। ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर यानी TNF और इंटरल्यूकिन 6 के बढ़े हुए लेवल्स को घटाता है ये। इसके बाद में है ये तेज पत्ता यानी त्वक पत्थर। ये जोड़ों में जकड़न से निजात दिलाता है, जोड़ों में गतिशीलता देता है। इसके बाद में यह है ज्योतिषमती, ये वात और कफ को संतुलित करके जोड़ों के दर्द में आराम दिलाता है। ये है गंधपत्र, ये गंधपुरा पत्र में 85 से 99% तक मिथाइल सिलिसिलेट होता है जो दर्द निवारक है। तो इससे मांसपेशियों, जोड़ों, हड्डियों के दर्द में आराम मिलता है। इसके बाद में ये है लवंग, इसमें प्रस्तुत यूजेनॉल दर्द को और सूजन को कम करता है और अंदर के इन्फेक्शंस को खत्म कर देता है। इसके बाद में यह है तिल का तेल, बहुत अच्छी चीज है ये। तिल के तेल में एंटी इंफ्लामेटरी गुण पाया जाता है जो घुटनों में होने वाली सूजन और दर्द को कम करने में प्रभावी होता है। इसके बाद में ये तेल है, ये मेजनकरी तेल, इस पौधे में औषधीय गुण होते हैं और इसका उपयोग पारंपरिक रूप से विभिन्न बीमारियों जैसे पेट दर्द और गैस्ट्रोएंटेराइटिस के साथ साथ मधुमेह, एडिमा, सर्दी, गठिया, अस्थमा और दर्दनाक चोट के इलाज के लिए किया जाता है। उसके बाद में यह है सुरंजन कटु, ये सूजन रोधी एवं दर्द निवारक प्रभावों के लिए जाना जाता है। यह एक प्रोपेरिएटरी मेडिसिन है जिसका उपयोग विभिन्न प्रकार के गठिया में मसल्स और हड्डियों के समर्थन के लिए किया जाता है। इसके बाद में यह है चित्रक मूल, ये गठिया के लक्षणों को कम करने के लिए यानी चित्रक की जड़ अत्यंत फायदेमंद मानी जाती है। यह एंटीऑक्सीडेंट गुणों से भरपूर है, यह दर्द निवारक, सूजन को कम करने वाली, एक बैक्टीरिया और फंगस का नाश करने वाली भी है। ये है ट्रिक टू, इसमें मौजूद बायो एक्टिव कंपाउंड जोड़ों के दर्द, सूजन, लालिमा एवं जोड़ों की कठोरता को कम करने में मदद करता है। यह है अजवाइन, अजवाइन पाचन को दुरुस्त करता है, टॉक्सिन को बाहर निकालता है, प्रोटीन, फैट, फाइटोकेमिकल, फाइबर, कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन जैसे पोषक तत्व इसमें प्रचुर मात्रा में भरे हुए हैं। आखिर में है अबरक भस्म, यह कफ को संतुलित करके आरए फैक्टर को कंट्रोल करता है और सर्दियों में जो जोड़ों का दर्द ठंड की वजह से बढ़ जाता है उसको नियंत्रित करता है। साइटिका से आजकल बहुत लोग परेशान है, साइटिका आप सभी जानते हैं कि एक टांग में होने वाला दर्द है जिसका उद्गम रीढ़ की हड्डी से शुरू होता है क्योंकि वहां की नस हिल जाती है। मेरे पास ऐसी अभिमंत्रित ताबीज भी है जो इस दर्द को दूर कर देगी। जोड़ों का दर्द एक असहनीय रोग है, यह एक व्यक्ति से उसकी आत्मनिर्भरता छीन लेता है। तो मेरी एक ही सलाह है, अब गोलियों से नहीं इलाज सिर्फ नुस्खों से करें क्योंकि इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं है और असर 100% मिलेगा। ये मेरा यानी बाबा रविगिरी का वादा है। इसके लिए आपको अभी नीचे दिए गए नंबरों पर कॉल करना है और अपने लिए मेरे नुस्खे मंगवाने हैं। फिर देखिए दर्द कैसे खुद ब खुद भागता है, ये मेरा वादा है। तो अब मुझे आज्ञा दीजिए और तब तक आप खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। तो राम राम भाई और बहनों, नमस्कार।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आती है।
2: लगा निकल जाएगा दम पर जज्बा नहीं हुआ कम। लहू लुहान बदन फिर भी परमार्थ से भरा मन। हनुमान चालीसा से मिला जूझने का बल। 174 लोगों को मौत से बचाने वाला महाबली। बंदे में है दम, श्वेता झा के साथ शाम 5:04 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
2: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 गुड न्यूज टुडे पर।
5: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9:00।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
2: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
7: वाराणसी में शक्ति आराधना उत्सव की तैयारियां तेज। पश्चिम बंगाल की तर्ज पर मनाई जाती है दुर्गा पूजा, मां की प्रतिमाओं को अंतिम रूप दे रहे हैं कारीगर। केदारनाथ धाम में उमड़ रहा है आस्था का मेला, बड़ी संख्या में श्रद्धालु कर रहे हैं बाबा केदार के दर्शन। मुख्य द्वार और वीआईपी गेट पर भक्तों की कतार। सुहाने मौसम है हिमाचल में, बढ़ी सैलानियों की संख्या। मैकलॉडगंज की सड़कों पर पर्यटकों का तांता, पर्यटन कारोबारों खिले चेहरे। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में बीएसएफ की अगुवाई में मैराथन वुलर अल्ट्रा रन 3.0 में बड़ी संख्या में उमड़े लोग, फिटनेस के साथ साथ वुलर झील के संरक्षण का संदेश। एशियाई खेलों में तिरंगा लहराकर महिला हॉकी टीम जापान से लौटी स्वदेश, रांची एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत, कप्तान सलीमा टेटे ने की अगवानी।

नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास शो प्रार्थना स्वीकार में और मैं हूं आपके साथ गीतिका पद। श्री हरि को जगत का पालनहार कहा गया है और ईश्वर के सभी अवतारों में श्री हरि ही विद्यमान है। आज हम आपको श्री हरि के ऐसे दिव्य पाठ के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे करके आपकी समस्त संकटों का आपको निवारण मिल सकता है। आज जानेंगे भगवान विष्णु के 1000 नामों की महिमा। ये वो चमत्कारी नाम है जिनसे श्री हरि की कृपा आप पर बरस सकती है, क्योंकि कहा जाता है कि विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आपकी बिगड़ी बना देगा। आखिर कैसे विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आपको श्री हरि की कृपा दिला सकता है, चलिए जानते हैं।

0: एक पाठ जो कराएगा भवसागर पार, एक पाठ जिससे दूर होंगे जीवन के विकार, श्री हरि के 1000 नाम बनाएंगे बिगड़े काम, परम कल्याणकारी विष्णु सहस्र नाम। विष्णु सहस्र नाम श्री हरि के 1000 नामों का संकलन है, जिसका वर्णन महाभारत, पद्म पुराण और मत्स्य पुराण में मिलता है। मान्यता है कि जो भी मन, कर्म और वचन से रोजाना विष्णु सहस्र नाम का पाठ करता है, उसे सभी संकटों और कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। माना जाता है कि इस पाठ को करने मात्र से आपके आध्यात्मिक और मानसिक स्तर में बढ़ोतरी होती है। जगत के पालनहार के 1000 नामों का जाप आपके जीवन की बाधाओं को दूर कर सकता है। श्रीहरि के अवतारों या फिर साक्षात श्रीहरि से कृपा पाने के लिए सबसे सरल और सटीक उपाय है विष्णु सहस्र नाम, जिसमें वो शक्ति है जो आपको श्रीहरि की भक्ति दिला सकती है।
1: देखिए, विष्णु सहस्त्र नाम, जिसे नाम से ही आप समझ सकते हैं कि भगवान विष्णु को इस सृष्टि में संचालक भूमिका दी गई, स्थान दिया गया है और माँ लक्ष्मी उनकी पत्नी है। तो आप समझ सकते हैं कि जिस पर भगवान विष्णु का और माँ लक्ष्मी कृपा प्राप्त हो जाए तो उसका बम हो जाता है। साथ ही अगर गृहस्थ जीवन वाला व्यक्ति सहज विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करता है तो उसके लिए बहुत ही लाभप्रद है।
0: धर्म ग्रंथ कहते हैं कि विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने की सलाह गंगा पुत्र भीष्म ने धर्मराज युधिष्ठिर को भी दी थी, जिससे जुड़ी है महाभारत की कथा। कथा मिलती है कि महाभारत के युद्ध में गंगा पुत्र भीष्म मृत्युशैया पर लेटे हुए थे, तभी पांडव द्रौपदी के साथ अपनी कुछ शंकाओं के समाधान के लिए उनके पास आते हैं। कहते हैं कि जैसे ही भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को उपदेश देना चाहा, तब वहां खड़ी द्रौपदी को हंसी आ गई। ये सुनते ही भीष्म विचलित हो गए और द्रौपदी से इस अनायास की हंसी का कारण जाना चाहा। तब द्रौपदी ने क्षमा मांगते हुए गंगा पुत्र भीष्म से कहा कि हे तात, आज तो आप बड़े ही गंभीर होकर प्रवचन दे रहे हैं, लेकिन उस समय आपकी ये नीति कहाँ गई थी जब दुशासन भरी सभा में मेरा चीरहरण कर रहा था। मैं इसीलिए अपनी हंसी रोक नहीं पाई, इसके लिए मैं लज्जित हूँ और आपसे क्षमा मांगती हूँ। कहते हैं कि तब पितामह ने उत्तर दिया कि उस समय मैं कौरवों का अन्न खा रहा था, जिससे मेरी बुद्धि दुर्बल हो गई थी। अब अर्जुन के तीरों से मेरे शरीर का दूषित रक्त निकल गया है। मैं अनुभव कर रहा हूँ कि मैं अब जो भी कहूँगा वो मानव के कल्याण के लिए होगा। कहते हैं कि तब गंगा पुत्र भीष्म ने विष्णु सहस्र नाम का पाठ करने के लिए युधिष्ठिर को कहा, साथ ही ये भी कहा कि ये पाठ हर युग में फलकारी है, जिसका नियमित पाठ करने से आपकी सभी शंकाओं का समाधान हो जाएगा।
2: यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधना विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभु विष्णवे।
0: एक ऐसा मंत्र जिसमें श्रीहरि विष्णु के 1000 नामों का मेल है। ऐसा माना जाता है कि अगर विधि विधान से विष्णु सहस्र नाम का पाठ करा जाए तो जीवन की सभी परेशानियों का अंत किया जा सकता है। तो सबसे पहले कृपा निधान भगवान विष्णु के 1000 नामों की महिमा आपको समझाते हैं।
1: गृहस्थ जीवन वाले अगर प्रतिदिन संभव हो सके 25 से 30 मिनट लगता है, एक विष्णु सहस्त्र नाम का अगर जाप कर लेते हैं, ऐसा मेरा मानना है कि जिन युवतियों का विवाह ना होता हो, जिन बहनों का विवाह ना होता हो, जीवन का विवाह हो करके बार बार टूट जाते हो, जिनके परिवार में पति पत्नी का क्लेश होता हो, जिनके परिवार में सास और बहू का क्लेश रहता हो, तो ऐसा मैंने देखा है कि उनके जीवन में सुख आती है। विष्णु सहस्त्र नाम का जाप 108 बार कर दे, उसके जीवन में किसी तरह की परेशानियां नहीं रह जाती है।
0: विष्णु सहस्त्र नाम में भगवान श्रीहरि के नामों की अद्भुत शक्ति है। जानकारों की माने तो विष्णु सहस्त्र नाम का खास ग्रहों से भी संबंध है और इसके पाठ से ग्रह भी शुभ परिणाम देने लगते हैं। पहले समझिए कृपा निधान भगवान विष्णु के इस पाठ की महिमा। भगवान विष्णु सृष्टि के पालन करता है। इनकी पूजा उपासना से जीवन का निर्वाह सहज हो जाता है। श्री हरि की उपासना में विष्णु सहस्रनाम का पाठ सबसे ज्यादा फलदायी होता है। श्री हरि की कृपा से सारे काम आसानी से बनने लगते हैं। इसमें भगवान के सहस्र नामों का उल्लेख है। इसके अद्भुत श्लोक हर ग्रह और हर नक्षत्र को नियंत्रित कर सकते हैं। बृहस्पति की पीड़ा को दूर करने के लिए इसका पाठ अमोघ होता है। श्रद्धा और भक्ति में अद्भुत शक्ति होती है और विष्णु सहस्रनाम श्री हरि की भक्ति रस में डूब जाने के लिए सबसे कारगर और उपयोगी उपाय है। ज्योतिषी मानते हैं कि विष्णु सहस्रनाम का पाठ नियम संयम और विधि पूर्वक करने वाले भक्त की मुश्किलों को पल भर में हर लेते हैं भगवान श्री हरि।
1: जिनके व्यापार में आए दिन बाधाएं आती हैं, मार्केट में पैसे फंस जाते हैं, उनको जो है व्यापार चलता चलता बंद हो जाता है, व्यापार में आग लग जाती है, एक अचानक रातों रात सड़क पर आ जाते हैं, ऐसे लोग अगर विष्णु सहस्रनाम का जाप खुद करते हैं तो बहुत ही फायदेमंद है। पूजा करने मात्र से ही जीवन के सारे कार्य पूर्ण होते हैं, भगवान लक्ष्मी के साथ भगवान विष्णु भी प्रसन्न हो जाते हैं।
0: आगे हम आपको बताएंगे विष्णु सहस्रनाम के पाठ की उत्तम विधि, साथ ही ये भी जानेंगे कि किन परिस्थितियों में आवश्यक है विष्णु सहस्रनाम का पाठ। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ।
3: माना जाता है कि दिव्य और प्रभावशाली है विष्णु सहस्रनाम का पाठ। श्री हरि की कृपा पाने का सबसे आसान जरिया है विष्णु सहस्रनाम का पाठ। अब सवाल ये है कि विष्णु सहस्रनाम का पाठ कैसे करें और किन परिस्थितियों में विष्णु सहस्रनाम का पाठ बहुत जरूरी हो जाता है।

0: जिनकी लीला अपरंपार है। जिनसे सनातन धर्म का आधार है।
1: ओम नमो नारायण।
0: जिनके पूजन से खुलता है मोक्ष का द्वार। वो क्षीर सागर के स्वामी श्री नारायण हैं, जो भक्तों का बेड़ा पार करते हैं। उन्हीं श्री हरि के सहस्त्र नामों की कुंजी है विष्णु सहस्त्र नाम। लक्ष्मीपति श्री हरि विष्णु की अद्भुत शक्तियों का समावेश है विष्णु सहस्त्र नाम में। माना जाता है कि विष्णु सहस्त्र नाम का विधि पूर्वक पाठ करने वाले भक्त की सभी मनोकामनाएं शीघ्रता से पूर्ण हो जाती हैं। ज्योतिष के जानकारों का मानना है कि श्री हरि की कृपा शीघ्र पाने के लिए विष्णु सहस्त्र नाम सबसे कारगर और सटीक उपाय है।
2: कि गृहस्थ जीवन वाले किसी भी रूप में बस स्नान कर ले, पीला वस्त्र पहन ले, अगर हो सके तो हल्दी के माला पर विशेष जाप करें उनका जाप। और अगर पूरा सहस्त्र नाम का भी जाप नहीं कर पाते हैं तो 108 बार ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः जाप करें, या 108 बार ओम विश्वाय विश्वपाय विश्वपते हुम नमः ये जाप कर ले, या ये भी नहीं कर पाते ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः ये जाप कर ले, तो मेरा विश्वास है कि उनको विष्णु सहस्त्र नाम जैसा एक पूरे जाप का लाभ मिलेगा।
0: विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कब करना चाहिए ये जानना भी बेहद जरूरी है, तो चलिए आपको बता देते हैं। अगर कुंडली में बृहस्पति नीच राशि में हो या अत्यधिक कमजोर हो, जब कुंडली में बृहस्पति छठवें, आठवें या बारहवें भाव से भ्रमण कर रहे हो, जब कुंडली में बृहस्पति के कारण पेट या लिवर की समस्या हो, जब संतान उत्पत्ति में या वैवाहिक जीवन में बाधा आ रही हो, देवताओं के गुरु बृहस्पति से जुड़ी हर समस्या का समाधान कर सकता है विष्णु सहस्त्र नाम। ऐसे में विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ विधि पूर्वक करना उपयोगी होता है।
2: देखिए, इसको बृहस्पतिवार के दिन से प्रारंभ करना चाहिए और शुक्ल पक्ष में अगर हो तो विशेष लाभप्रद है। शुक्ल पक्ष में बृहस्पतिवार के दिन से और अभिजीत मुहूर्त में आप पंचांग को देख लें या गूगल से सर्च कर लें, जो कि लगभग 12:15 बजे से लेकर 1:10 तक के बीच में ये अभिजीत मुहूर्त लगता है। इस दौरान अगर आप विष्णु सहस्त्र नाम का शुभारंभ कर रहे हैं तो बहुत लाभप्रद है, और इसको डेली करें तो और ज्यादा लाभप्रद है। और विशेष करके ये ध्यान रखें कि जो समय पहला दिन निर्धारित करें उसको प्रतिदिन उसी समय के पर करें, क्योंकि उस वक्त देवी देवता भी आपका इंतजार करते हैं। उस वक्त पीले प्रसाद का भोग लगा करके हल्दी माला पर जाप करें तो बहुत लाभप्रद है।
0: तो आपको बताते हैं कि विष्णु सहस्त्र नाम पाठ का सबसे उत्तम विधि विधान क्या है। गौर से देखिए, रोज प्रातः इसका पाठ करें और पाठ के बाद भगवान विष्णु का ध्यान करें, पीले वस्त्र धारण करें, चने और गुड़ या पीली मिठाई का भोग लगाएं, बृहस्पतिवार शाम को नमक का सेवन ना करें। जितने भी दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें सात्विक वैष्णव भोजन ग्रहण करें। अगर संस्कृत भाषा में पाठ कठिन हो तो हिंदी में भी भगवान के नामों का जाप किया जा सकता है। विष्णु सहस्त्र नाम श्री हरि की भक्ति रस में डूब जाने के लिए सबसे कारगर और उपयोगी उपाय है। ज्योतिष मानते हैं कि विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ नियम संयम और विधि पूर्वक करने वाले भक्त की मुश्किलों को पल भर में हर लेते हैं भगवान श्री हरि। तो हम आपको बताने जा रहे हैं भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के महा उपाय। भगवान विष्णु का आवाहन करें, भगवान विष्णु को स्नान कराएं, पहले जल से स्नान, फिर पंचामृत से और फिर जल से स्नान कराएं, भगवान को वस्त्र पहनाएं, फिर आभूषण और जनेऊ फूलों की माला पहनाएं, सुगंधित इत्र अर्पित करें, तिलक करें, तिलक के लिए अष्टगंध का प्रयोग करें, धूप दीप अर्पित करें। भगवान विष्णु को तुलसी दल विशेष प्रिय है, उन्हें तुलसी दल अर्पित करें। भगवान विष्णु के पूजन में चावल का प्रयोग बिल्कुल ना करें, घी या तेल का दीपक जलाएं और आरती करें, फिर परिक्रमा करें और नैवेद्य अर्पित करें, ओम नमो नारायणाय मंत्र का जप करें।
2: कि लहसुन प्याज नॉनवेज ढींग बिल्कुल नहीं छूना चाहिए, एक दिन पहले एक दिन बाद तक भी नहीं छूना चाहिए। साथ ही किसी प्रकार के मिथ्या कार्यों से दूर रहना चाहिए, उस दिन उपवास रखना चाहिए, पीले वस्त्र पूरा दिन धारण करना चाहिए, अष्टगंध का चंदन लगाना चाहिए। साथ साथ जो है जो भी उस दिन प्रसाद ग्रहण करे पीले वस्तु का प्रसाद ग्रहण करे और किसी बच्ची का स्पर्श करे, मतलब उसके चरण का स्पर्श करे, उसको कुछ दान दक्षिणा दे, इस तरह के प्रयोग मात्र से हमारे भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और जीवन के सारे कार्य पूर्ण हो जाते हैं।
0: तो अब देर किस बात की है, नारायण की कृपा पाने के लिए सच्चे मन से कीजिए विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ, फिर देखिए एक अमोघ कवच की तरह कैसे आपकी रक्षा करते हैं नारायण। आप हमारे साथ बने रहिए और आगे हम आपको बताएंगे नारायण की पूजा के कुछ खास नियम और मंत्र। हम बात कर रहे हैं विष्णु सहस्रनाम की महिमा के बारे में। विष्णु सहस्रनाम के पाठ जितना कल्याणकारी कुछ भी नहीं होता, क्योंकि इसमें समाहित है श्री हरि नारायण का नाम, तो परम कल्याणकारी है विष्णु सहस्रनाम।

0: भगवान विष्णु जो सर्वव्यापी और सर्वशक्तिमान है। जो सभी प्राणियों के जीवन का आधार और उनके रक्षक है। जो सर्वेश्वर है, सभी प्राणियों और जीव जंतुओं के स्वामी है। जिसके हृदय में भगवान विष्णु का ध्यान होता है, उसकी हमेशा विजय होती है। वो संसार की व्याधियों से सदा ही मुक्त रहते हैं। जगत के पालनहार श्री हरि विष्णु, जिन्होंने धरती पर कई बार अवतार लिया। जब जब धरती पर पाप का प्रभाव बढ़ा, तब तब धर्म की स्थापना के लिए प्रभु ने लीलाएं दिखाई। इसीलिए श्री हरि को जगत का पालनहार कहा जाता है। भगवान विष्णु की पूजा सदा ही फलदायी है। जिसे नारायण की कृपा मिल जाए, भला उसे किस बात की चिंता। लेकिन अगर आपके लिए भगवान विष्णु के मंत्र जाप कठिन हो, तो किस मंत्र के जाप से बृहस्पति की कृपा मिल सकती है, आइए आपको बताते हैं।
1: क्योंकि भगवान विष्णु बृहस्पति के कारक माना जाता है, बृहस्पति धन का कारक माना जाता है, बृहस्पति जो है बृहस्पति परिवार के सुख का कारक माना जाता है, बृहस्पति जो है धन स्मृति और नेतृत्व का कारक माना जाता है। इसलिए देखिए, मैंने तमाम ऐसे पॉलिटिशियनों को, तमाम मिनिस्टर्स को मैंने ऐसा पोखराज बनाया, क्योंकि ये बृहस्पति के लिए होता है। तो जो पोखराज पहने तो भी बहुत लाभप्रद है, और पोखराज न भी पहने तो टोपाज पहने तो लाभप्रद है, अगर वो भी नहीं पहन पाए तो हल्दी की माला पहने लाभप्रद है। भगवान विष्णु की मूर्ति अपने घर में स्थापित करें और ये उंगली रख करके उस पर जो है अपनी मनोकामना का ध्यान करें। अगर संभव हो सके तो बृहस्पतिवार के दिन जो है एक स्फटिक श्रीयंत्र घर में स्थापित करें, तो भी इनके सारे कार्य पूर्ण हो जाते।
0: मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ ध्वजा मंगलम पुंडरी काक्षा मंगलाय तनु हरि।
2: श्रीमन्नारायण नारायण।
0: तो इस तरह विधि विधान से कीजिए भगवान नारायण का पूजन, सच्चे मन से कीजिए श्री हरि का ध्यान, आपके सभी दुखों को दूर करेंगे।

0: पितृपक्ष में जो विशेष कर लाभ पहुंचाए, ऐसी कई चीज है जिसमें क्रियाएं, जैसे आप कुछ विशेष दान आदि धर्म करते हैं, पितृपक्ष में विशेष कर तिल का दान देना, तिल तेल का दान देना, वस्त्र का दान देना, ये सब बड़ा जादुई महत्व रखता है और इसके विशेष पुण्य फल प्राप्ति होती है क्योंकि पितृ प्रसन्न हो जाते हैं इन सब वस्तुएं के दानादि क्रम से। तो कुछ वस्तुएं जो हैं वो विशेषकर पितृपक्ष में आप अवश्य दान करें, जिसमें तिल है, तिल का तेल है, भोज्य पदार्थ है, स्वादिष्ट व्यंजन है, कुछ अच्छे वस्त्र है, कंबल है, खड़ाऊं है, चप्पल है, छाता है इत्यादि, ये सब जैसे ये विशेष दानों में दशविधि दान, षोडश महादान, पंच महादान, अष्ट महादान, प्रत्यक्ष गोवत्स दान, गोदान और सुवर्ण दान, रजत दान इत्यादि जो है, ये पितृपक्ष में अगर आप करते हैं तो विशेषकर फल की प्राप्ति होती है। और ये सभी सामग्रियों में कुछ विशेषकर सामग्री जो है वो जादुई वस्तुएं आप समझ सकते हैं।
1: प्रार्थनाओं स्वीकार में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव न्यूज के लिए आप बने रहिए गुड न्यूज टुडे पर। नमस्कार।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को
4: देखिए, 11 अक्टूबर से शारदीय नवरात्र का शुभारंभ होने वाला है, उससे पहले शहर शहर तैयारियां भी जोर पकड़ रही हैं। आपको दिखाते हैं झांसी की रिपोर्ट, जहां पर बंगाली शैली में मां दुर्गा की इको फ्रेंडली प्रतिमाएं बनाई जा रही हैं और उनकी डिमांड भी खूब है।

0: शारदीय नवरात्र का पर्व करीब आ रहा है, तो माँ दुर्गा की भव्य प्रतिमाओं को अंतिम रूप देने का काम तेजी से चल रहा है। मूर्तिकार दिन रात लगकर प्रतिमाओं को तैयार करने में जुटे हुए हैं। ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश के झांसी की है। यहाँ पर पिछले करीब 34 वर्ष से एक बंगाली परिवार माँ दुर्गा की प्रतिमाएं तैयार कर रहा है। इन प्रतिमाओं का पारंपरिक स्वरूप ही इनकी खास पहचान है। अहम बात यह है कि प्रतिमाओं के निर्माण और श्रृंगार में इस्तेमाल होने वाले सामान कोलकाता से ही मंगाए जाते हैं और विशेष रूप से ये ध्यान रखा जाता है कि इनसे पर्यावरण को कोई नुकसान न हो।
1: यहाँ पे जो भी मूर्ति बनता है सब प्योर मिट्टी का बनता है, ना पीओपी यूज होता है, ना कुछ मतलब जो हार्मफुल वाला जो कलर होता है उस टाइप का कोई कलर भी नहीं यूज करते। हम पूरा जो इको फ्रेंडली कलर होता है उस टाइप का कलर भी यूज करते हैं, पूरा मिट्टी का बनाते हैं। और जो हमारा सिंगार वगैरह भी जो होता है वो सब कलकत्ता से आता है। और मिट्टी वगैरह हम जो 4-5 प्रकार का मिट्टी यूज करते हैं उसमें से 2-3 प्रकार का मिट्टी हम कलकत्ता से ले आते हैं, बाकी जो काली मिट्टी और इधर का लाल मिट्टी वो इधर से ही लेते हैं। और इसीलिए हम लोगों का मिट्टी और मूर्ति क्या है जो भी होता है वो ज्यादा से ज्यादा घास और मिट्टी से ही बना हुआ है। इसमें ना कोई पीओपी का यूज है, हल्का भी होता है और पानी में जाने के साथ साथ एक गल भी जाता है जल्दी से जल्दी। इसीलिए हम लोगों का मूर्ति में ऐसा कोई हार्मफुल केमिकल या फिर वो प्लास्टर ऑफ पेरिस का नहीं यूज होता है इसमें।
0: झांसी की इस वर्कशॉप में मूर्तियां बनाने का काम नवरात्र से 4-5 महीने पहले ही शुरू हो जाता है। कम से कम 12-14 कारीगर इसमें लगे रहते हैं। शुरुआती दौर में बड़ी संख्या में कारीगर प्रतिमाओं का ढांचा बनाने और मिट्टी लगाने का काम करते हैं। इसके बाद प्रतिमाओं की फिनिशिंग, रंगाई और श्रृंगार का काम शुरू होता है। कोलकाता की पारंपरिक शैलियों में बनाई जाने वाली इन प्रतिमाओं की यहाँ पर खास डिमांड है।
2: मूर्ति दुर्गा जी मूर्ति पुराना स्टाइल छोड़ कर अब जाएगा ना, ज्यादा दिन टिकेगा नहीं। जो परंपरा चल रहा है वही हिसाब से चलना पड़ेगा। ओरिजिनल कैसे कलकत्ता होता है ठीक वैसा ही करता है काम।
0: मूर्तिकारों की माने तो इस बार यहाँ पर माँ दुर्गा की करीब 200 प्रतिमाएं तैयार की गई है। इनमें से लगभग 90% प्रतिमाएं पहले ही बुक हो चुकी हैं। बंगाली पैटर्न की इन प्रतिमाओं की मांग झांसी के अलावा बुंदेलखंड के दूसरे इलाकों में भी है। लिहाजा माँ दुर्गा की ये प्रतिमाएं इस बार इलाके के ज्यादातर पंडालों की शोभा बढ़ाती नजर आएंगी। झांसी से अजय झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
8: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हम में अच्छाई जगाता है हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
5: देश देख रहा है
9: एवरेस्ट दिखा लाल सही दिखा सही लाल। वाराणसी में शक्ति आराधना उत्सव की तैयारियां तेज। पश्चिम बंगाल की तर्ज पर होती है दुर्गा पूजा। मां की प्रतिमाओं को अंतिम रूप दे रहे हैं कारीगर। केदारनाथ धाम में उमड़ रहा है आस्था का मेला। बड़ी संख्या में श्रद्धालु कर रहे हैं बाबा केदार के दर्शन। मुख्य द्वार और वीआईपी गेट पर भक्तों की कतार। सुहाने मौसम में हिमाचल में बढ़ी सैलानियों की संख्या। मैकलॉडगंज की सड़कों पर पर्यटकों का तांता। पर्यटन कारोबारियों की खिले चेहरे। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में बीएसएफ की अगुवाई में मैराथन। बुलर अल्ट्रा रन 3.0 में बड़ी संख्या में उमड़े लोग। फिटनेस के साथ साथ बुलर झील के संरक्षण का संदेश। जापान के एगो नोया में एशियन गेम्स 2026 का भव्य समापन समारोह। दो गोल्ड और एक सिल्वर मेडल जीतने वाली शूटर नीरू ढांडा ने थामा तिरंगा। भारतीय खिलाड़ियों ने जीते कुल 85 मेडल। एशियाई खेलों में तिरंगा लहराकर महिला हॉकी टीम जापान से लौटी स्वदेश। रांची एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत। कप्तान सलीमा टेटे की अगुवाई।
3: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़।
10: नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सरगम पंच श्रीवास्तव। गुड न्यूज टुडे के खास शो गुड रिपोर्टर में सबसे पहली बात करते हैं दिल्ली की एक ऐसी नहर की जो पिछले 20 साल में बड़े नाले में तब्दील हो गई थी। दो दशक से उसकी पहचान बदबू, कचरा और काले गंदे पानी तक सीमित रह गई थी। मुनक नहर की ऐसी दुर्दशा देखकर एक सामाजिक कार्यकर्ता के नेतृत्व में वहां रहने वाले लोगों ने उसको जीवन दान देने की ठान ली और महज 8 से 9 महीने के अंदर वो नाले से नहर बनने की ओर बढ़ गई है।

0: दशकों से इसकी पहचान बदबू, कचरा और काले गंदे पानी से रही। नाम कुछ और है पर पहचान नाले की रही। दिल्ली के वजीरपुर से होकर बहने वाली ये मुनक नहर कब और कैसे गंदे पानी के नाले में तब्दील हो गई, ये पता नहीं चला। लेकिन जब युवाओं ने प्रण लिया, अपनी जिम्मेदारी समझी, तो अब मुनक भी नाले से नहर बनती जा रही है।
1: वजीरपुर के मुनक नहर का अब दो रूप आपको दिखाई पड़ता है, लेकिन पहले इसका सिर्फ एक रूप हुआ करता था, जो गंदा था, जिसमें गंदगी थी चारों तरफ, उसमें बहुत सारी जलकुंभियां थी और जिसका पानी बिल्कुल भी इस्तेमाल करने के लायक नहीं था। नहर नाला बन चुकी थी, लेकिन आज आपको मुनक नहर के दो रूप दिखाई पड़ते हैं। एक रूप ये है जिस पर काम चल रहा है, जिसकी सफाई हो चुकी है और अब कहा जा रहा है कि छठ से पहले पहले इसे साफ कर दिया जाएगा ताकि छठ पूजा इसमें आसानी से मनाई जा सके। लेकिन जो दूसरा हिस्सा है वो अभी भी बहुत गंदा पड़ा हुआ है। लेकिन अच्छी बात क्या है? अच्छी बात यह है कि आज हम आपको उन लोगों से मिलवाने जा रहे हैं जिन्होंने नहर के इस हिस्से को सालों तक उसमें लगे रहे, उसे साफ किया और अब उसे इस तरह का बना दिया है कि आने वाले वक्त में लोग उम्मीद कर रहे हैं कि छठ पूजा का अर्घ इसी नहर में खड़े होकर दिया जाएगा।
0: वर्षों तक मुनक नहर की दुर्दशा देखने और गंदगी की दास्तान सुनाने के लिए मजबूर राहगीरों के लिए इन तस्वीरों पर यकीन करना मुश्किल हो रहा है। कोई दूर दूर तक सोच नहीं सकता कि मुनक नहर की भी तस्वीर बदल सकती है। व्रत त्योहारों के बाद मुनक नहर का इस्तेमाल पूजा अनुष्ठान से जुड़ी सामग्री फेंकने के लिए भी होता था। आसपास कलेक्शन प्वाइंट होने की वजह से लोग इसी नहर में देवी देवताओं की प्रतिमाओं को भी विसर्जित कर देते थे। जाने अनजाने आस्था के इसी अपमान ने मुनक नहर के साफ सफाई के अभियान की नींव रख दी।
1: विनय दास मेरे साथ में है। आजकल आप इनका अगर इंस्टा पेज देखेंगे तो इनके कुछ वीडियोस बहुत वायरल हैं, कई लोग उन्हें देख रहे हैं। हाल ही में गणेश विसर्जन हुआ और इसी नहर में गणेश जी की जो मूर्तियां थी वो लोगों ने डाली पूजा के बाद, लेकिन वो अच्छे हालात में नहीं थी। विनय और उनकी टीम ने मिलकर उन मूर्तियों को बाहर निकाला। सिर्फ गणेश विसर्जन नहीं बल्कि कई जो पूजा पाठ होते हैं जिनमें मूर्तियां ऐसे नहर नालों में फेंक दी जाती हैं, विनय कोशिश करते हैं कि उन देवी देवताओं का अपमान ना हो, इसलिए खुद अपनी टीम के साथ नहर में उतरते हैं और मूर्तियों को बाहर निकालते हैं।
0: विनय दास नाम के सामाजिक कार्यकर्ता दिल्ली की जेजे कॉलोनी के रहने वाले हैं, जिनके नेतृत्व में 1600 से ज्यादा बच्चों और युवाओं ने कचरे के साथ एक साल में नहर से देवी देवताओं की 2500 से ज्यादा मूर्तियां निकाली। इनमें 35 किलो का शिवलिंग भी शामिल है।
2: यहाँ से मैं आपको बताऊंगा कि लगभग एक वर्ष के अंदर लगभग 2000 से 2500 मूर्तियां हमने यहाँ पे कलेक्ट करी है और हमें पता है कि यहाँ पर लोग मैं क्या बताऊँ, शब्द बोलने में भी शर्म आती है कि यहीं पर हमारे देवी देवता बैठे हुए हैं। यहाँ पे विसर्जन के नाम पे लोग कूड़े के बीच में छोड़ के जाते हैं। गणेश चतुर्थी पे काम पूरा हुआ, उसको यहाँ पर कूड़े के बीच में फेंक जाना, आप सोचिए क्या दिल में ठेस पहुँचती हम लोगों के। और मेरे साथ इतने सारे बच्चे हैं, 200-250 बच्चे एक साथ लगे थे, लास्ट 6 सितंबर को भी लगे थे। उसी दिन केवल हमने एक दिन में ही 600 से 700 मूर्तियाँ कलेक्ट करी और उसमें एक 35 किलो का शिवलिंग भी निकला।
1: 35 किलो का शिवलिंग?
2: जी भाई साहब, बिल्कुल 35 किलो का। और वो मुझे हैरानी हो रही थी, ना जाने ये शिवलिंग कितने समय से यहाँ पर रहा होगा। तो ये बड़ी शर्म की बात थी कि हम आज धर्म की तरफ तो चल रहे हैं, हम गर्व करते हैं हिंदू होने पर, लेकिन कुछ एक हिंदू ऐसे हैं ना जो अपने धर्म का सम्मान नहीं कर पा रहे।
0: इस सफाई अभियान के दौरान विनय और उनकी टीम को कई चुनौतियों और चोटों का सामना करना पड़ा। कचरे में कांच, सुई और जहरीले रसायन होने के बावजूद उन्होंने अपनी इस मुहिम को जारी रखा।
2: यहाँ पे ना अधिकतर क्लस्टर एरिया है, जेजे क्लस्टर है और झुग्गिया है, तो यहाँ पर आम बात है दिल्ली की, आप किसी भी स्थान पे जाओगे तो आपको इंजेक्शन भरने वाली सुइयां मिलेगी जो स्मैकिया यूज करते हैं वो, प्लस बहुत सारी गंदगी। सबसे बड़ा खतरा तो यही है कि हम नहर में जब कूद रहे थे तो आप मान के चलेंगे कि कूड़ा जो था वो लगभग कूड़ा इतने शेप में था कि वो उसको 2 फिट का था, वो एक बार में उगता, और यहाँ तक का पानी था, हमारी कमर तक का पानी था और लगभग उसमें पानी था ही नहीं। वो पूरा जो होता है ना कि कूड़ा कचरा जो होता है वो पानी में भीग भीग के सिमट जाता है, जितना हमने सोचा था उससे बहुत भयंकर था जब हम कूदे थे। पहली बात तो हमने सेफ्टी बूट यूज़ करे थे, लेकिन उसके बावजूद वो सेफ्टी बूट के अंदर भी पानी भर जाना, हमको कई कीड़े मच्छरों ने भी काटा और मेरे कई वॉलेंटियर्स को भी काटा, सदस्यों को काटा, मेरे भी अभी लास्ट संडे परसों ही हमने सफाई की है, जिसमें हमने जल कुंभिया उठाई, उसमें मूर्ति आनी थी, तो उसमें भी काफी सबसे बड़ा खतरा तो हमें इंजेक्शंस का ही रहता है, लेकिन सेफ्टी बूट से कहीं ना कहीं वो एक्सपीरियंस हो जाता है।
0: विनय का बचपन जेजे कॉलोनी में ही बीता। वे एक बेहद साधारण परिवार से आते हैं। उनके पिता चपरासी के पद पर थे। अपनी शिक्षा का खर्च उठाने के लिए उन्होंने महज 7 साल की उम्र से ही काम करना शुरू कर दिया। पर्यावरण संरक्षण के अलावा उन्होंने वंचित वर्ग के बच्चों को मुफ्त ट्यूशन देने और झुग्गी झोपड़ियों के आसपास सफाई अभियान चलाने जैसे अभियान भी छेड़ रखे हैं, जिनमें मुनक नहर की सफाई शामिल है। विनय की इस मुहिम के बाद अब मुनक नहर की सफाई के लिए सरकारी स्तर पर भी काम शुरू हो गया, जिसके बाद ये उम्मीद है कि इस बार छठ पूजा के दौरान सूर्य देव को अर्घ लोग साफ सुथरी मुनक नहर में खड़े होकर देंगे।
1: सफाई के जरिए आप सोचिए बच्चे कहाँ से

0: कर आसानी से साफ सफाई के बीच सूर्य देवता को अर्घ दे पाएंगे। मनीष और असिया, गुड न्यूज टुडे, दिल्ली।
1: अब आगे बढ़ते हैं और अब बात राजधानी के एक ऐसे सबवे की जो आम लोगों की सोच से थोड़ा सा हटकर है। आमतौर पर दिल्ली में सबवे को इस्तेमाल करने वाले लोग उसके रख रखाव को लेकर खुश नहीं होते हैं। उसमें हल्का अंधेरा, गंदगी और बदबू की शिकायत अक्सर ही सुनी जाती है। हालांकि दिल्ली के बाबा खड़क सिंह मार्ग पर मौजूद ये सबवे जरा हटकर है। उसके अंदर से गुजरने वाला रास्ता काफी ज्यादा साफ सुथरा और दीवारें हस्तशिल्प से सजी हुई हैं। घुमंतू जनजातियों के सहयोग से इसको तैयार करने वाली फिल्म निर्देशक ने इसका नोमैडिक हार्ट इसका नाम रखा है। करीब 26 वर्षों से इसकी देखभाल भी वही कर रही है।

0: तेज रफ्तार वाली सड़कों को आसानी से पार करने के लिए बनाए जाते हैं सबवे या अंडरपास, लेकिन दिल्ली का कोई सबवे इतना साफ सुथरा, विचारशील और कलात्मक दिख सकता है? कुछ देर के लिए यकीन करना मुश्किल हो जाता है। दिल्ली के दिल कनॉट प्लेस का इलाका बाबा खड़क सिंह मार्ग पर मौजूद ये सबवे या अंडरपास अनोखा है। नोमैडिक हार्ट नाम का ये पैदल रास्ता सबसे अनूठी और खूबसूरत अंडरपास बाजारों में गिना जाता है। आमतौर पर दिल्ली में मौजूद ज्यादातर सबवे अपनी बदहाली, गंदगी, अंधेरा और असुरक्षा के लिए जाने जाते हैं। प्रशासनिक लापरवाही की वजह से वो असामाजिक तत्वों, नशेड़ियों और बेघर लोगों का डेरा भी बन जाते हैं। हालांकि हनुमान मंदिर का ये सबवे उनसे काफी अलग है। इस सबवे की सीढ़ियों से नीचे उतरते ही आपको बेहद साफ सुथरा रास्ता और खूबसूरती से सजाई गई दीवारें दिखेंगी। दीवारों पर रंग बिरंगी कलाकारी आपको यहाँ बार बार आने का न्योता देंगी।
1: ऊपर एक मुख्य सड़क और उसके नीचे बनाया गया एक रास्ता। इस रास्ते का इस्तेमाल मुख्य सड़क के इस पार से उस पार जाने के लिए किया जाता है। इसे सबवे कहते हैं। दिल्ली में आपको बहुत सारे सबवे मिलेंगे, लेकिन अमूमन किसी भी सबवे से आप गुजरेंगे तो वहां गंदगी होगी, वहां बदबू आएगी, वहां पर आपको नशे करते हुए लोग मिल सकते हैं। लेकिन आज मैं आपको दिल्ली का एक ऐसा सबवे दिखाने जा रहा हूं जो कि जीवन और जीवन की खूबसूरती का एक मिसाल बन चुका है। शानदार बात यह भी कि सबवे को 16 साल से इसकी खूबसूरती को मेंटेन भी किया जा रहा है। आपको आज ये सबवे भी दिखाएंगे और मिलवाएंगे उन खास लोगों से भी जो इस काम में लगे हुए हैं।
0: नोमैडिक हार्ट नाम के इस बाजार की सबसे बड़ी खासियत यहाँ मिलने वाले हस्तशिल्प है जो अलग अलग जनजातियों से जुड़े हैं।
2: इसका श्रेय जाता है घुमंतु जातियों को और भारत सरकार को, जिन्होंने ये पहल की कि इस तरह के जो अंडरपासेस हैं जिनकी ऊर्जा बड़ी आक्रामक होती है उनको संस्कृति से जोड़ा जाए और इसमें जीवन डालने का काम केवल और केवल घुमंतु जाति कर सकती थी, क्योंकि कुछ नहीं से कुछ और कुछ से कुछ नहीं, इसको जितनी सहजता से घुमंतु जातियाँ इस सिद्धांत को जी पाती हैं वो उनकी बदौलत हम ये प्रोजेक्ट कर पाए जिसे नोमैडिक हार्ट कहते हैं। हनुमान मंदिर के नीचे सबवे में जब आप आएंगे तो आपको ये नोमैडिक हार्ट मिलेगा और इसमें स्वयं आप स्वयं से संवाद कर सकेंगे। यहाँ पर कोई सेल्स पर्सन तो नहीं होता जो आपको कुछ चीज़ें बताए, लेकिन हाँ ये एक ऐसी जगह है जहाँ ठहर कर स्वयं से संवाद किया जाता है, लोग करते हैं और इसकी ऊर्जा में एक शांति है जिसको अनुभव करते हैं और आकर बोलते भी हैं। तो विनय जी और मैंने दोनों ने सरकार के साथ और घुमंतु जातियों के साथ मिलकर इस नोमैडिक हार्ट को क्यूरेट किया और आज NDMC की एक बेहतरीन स्पेस इसमें से ये है।
0: राजस्थान के थार रेगिस्तान की एक मशहूर घुमंतु जनजाति कालबेलिया की तरफ से बांस से बने कलाकृतियां देखिए। बंजारा समुदाय से जुड़ी कढ़ाई और पारंपरिक कला की पहचान रखने वाला पोंचू भी गजब है। ऐतिहासिक रूप से जंगलों में रहने, शिकार करने और प्रकृति के करीब रहने वाली बावरिया जाति के पास जड़ी बूटियों, शहद और औषधीय पौधों का गहरा पारंपरिक ज्ञान होता है जिसकी मिसाल इस खास सबवे में दिखती है।
2: देखिए जैसे ये बांस का काम कालबेलिया जाति जो है बांस का काम करती थी, अब कालबेलिया जातियों को भी नहीं पता, इनके जो बुजुर्ग थे वो बांस का काम करते थे और ये रच पट्टी बनाया करते थे और ये हथपंखे बनाया करते थे जो अब

0: कालबेलिया से बीन तक रह गए हैं, तो उनकी जो विशेषताएं थी उनकी संस्कृति की वो सब यहाँ पर हैं। तो बंजारन जो है ये पोंचू बनाते हैं, इसको प्रेम पोंचू भी बोलते हैं।
1: प्रेम पोंचू
0: तो ये जो है गूंथती हैं, चिपकाती नहीं है, और ये गवर्नमेंट ने भी काफी बार सपोर्ट किया, इस प्रोजेक्ट को। और ये पायल हमारे संस्कृति में और एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है, तो अच्छे से कोट्स रच देते हैं।
1: अब आप देखिए कि यहाँ पर आप कुछ चीजें भी आप देख रहे हैं, जो चीजें यहाँ पर बिकती हैं औषधि के रूप में, लेकिन ये औषधि ऐसे ही नहीं है, ये औषधि भी उन्हीं कम्युनिटी से आती है, उन्हीं बंजारा जातियों से आती है, घुमंतू लोगों से आती है।
0: ये जो नीपोड है ये बावरिया समुदाय, क्योंकि वो गैदरर्स हैं, तो बिरछा फली जो है उनकी भेड़ बकरियां भी खाती हैं, वो भी खाते हैं सीजन में, और इसको यहाँ पर प्रमोट करते हैं हम, और ये ऋतु आहार है उनका, और इससे कार्टिलेज बनता है घुटनों में और लोग ठीक होते हैं और सर्जरी से बच जाते हैं, जो अपने आप में एक हमें लगता है कि ऋतु आहार के रूप में बहुत अच्छी चीज है, लोगों को जाननी चाहिए, खानी भी चाहिए।
2: अलग अलग जनजातियों की तरफ से बनाई गई ज्वेलरी, कपड़े, बैग, होम डेकोर, पेंटिंग्स, लोक वाद्य यंत्र और कई तरह के पारंपरिक सामान यहाँ दिखते हैं। सब्वे की दीवारों ने जिंदगी के कई गहरे संदेश और खूबसूरत विचार समेटा हुआ है।
1: ये कोर्स में मैं बहुत बार फंस चुका हूँ, और फिर से एक बार मैं कोर्स में आपको ले जाता हूँ। जो मैंने कहा था कि आप यहाँ आएंगे तो रुकेंगे, ठहरेंगे, ये देखिए, मन फ्रेम में बस तुम हो, ये समझना पढ़ लेना कितना अच्छा है। वेटिंग टू बी विद यू, बात बहुत छोटी सी है, लेकिन जब आप रुकते हैं तो आप सोचते हैं कि शायद घर पे वेट कर, मन की सुलझने गई उलझ, ऐसा तो ना सोचो।
0: ये हमारे ये तो
1: जीवन का सार हो गया,
0: कोट लिखा। अब ये हमारी एक फीचर फिल्म है अनमिले, उसका एक उसके एक गीत का मुखड़ा बन गया है अब ये।
2: इस सब्वे में जनजातियों से जुड़ा लोक संगीत भी बजता है, जो वहाँ से गुजरने वाले लोगों को अपनी ओर आकर्षित तो करता ही है, सुकून भी देता है। यही कारण है कि जो लोग इस अंडरपास से गुजरते हैं वो ठहर कर सभी वस्तुओं को निहारते हैं और इन्हें खरीद भी लेते हैं। बड़ी बात ये ही है कि इस सब्वे को साल 2010 में दिल्ली में हुए कॉमनवेल्थ गेम्स के वक्त तैयार किया गया था। पिछले 15-16 सालों में इसने नए प्रतिमान भी गढ़े हैं और नई पहचान भी बनाई है। दिल्ली से मनीष चौरसिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और अब बात माँ दुर्गा की, जो जल्द ही विराजने वाली हैं। 11 अक्टूबर को कलश स्थापना के साथ ही शारदीय नवरात्र की शुरुआत हो जाएगी। 9 दिनों तक माता रानी के 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा होगी। कोलकाता समेत पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा की अद्भुत छटा देखने को मिलती है, जिसकी तैयारी तेजी से चल रही है। ऐसे में आज हम आपको कोलकाता की एक ऐसी जगह दिखाने जा रहे हैं जो देवी देवताओं की मूर्ति बनाने के लिए पूरी दुनिया में जानी जाती है।

0: आस्था का पर्व और माता रानी के स्वागत की तैयारी। कहीं माँ दुर्गा की भव्य प्रतिमाएं बनाई जा रही है, तो कहीं पंडाल सजाए जा रहे हैं। आदि शक्ति आएंगी, अपने भक्तों पर कृपा बरसाएंगी। पश्चिम बंगाल और विशेषकर कोलकाता के लिए दुर्गा पूजा केवल एक धार्मिक त्योहार नहीं, बल्कि बंगाली संस्कृति, कला, भाईचारे और अर्थव्यवस्था की धड़कन है। इसलिए यहाँ इन दिनों मूर्तिकारों की व्यस्तता कहीं अधिक बढ़ी हुई है। माँ दुर्गा की छोटी से लेकर बड़ी मूर्तियों को वो तेजी से आकार देने में जुटे हुए हैं। रंग रोगन का काम चल रहा है।
1: माता दुर्गा की मूर्ति सज धज के बन ठन के जाती है इसी कुमोटुली से, और इस बीच कुमोटुली में अभी बहुत ही व्यस्तता चल रहा है। लोगों का भी यहाँ पे आना जाना बन रहा है। कोई लोग आ रहा है दोस्तों के साथ फोटो खींचने, कोई यहाँ पे पूजा के पहले ही पूजा का वाइब्स लेने कुमोटुली पहुंच रहा है, माता दुर्गा की मूर्ति को दर्शन कर रहा है।
0: कोलकाता का कुम्हार टोली इलाका दुनिया भर में माँ दुर्गा की पारंपरिक और कलात्मक मूर्तियां बनाने के लिए प्रसिद्ध है। करीब 300 साल पुरानी कुम्हारों और मूर्तिकारों की इस बस्ती को पॉटर्स कॉलोनी कहा जाता है। यहाँ देवी दुर्गा की मूर्तियां विशेष रूप से गंगा की मिट्टी, बांस और भूसे के ढांचे पर हाथों से गढ़ी जाती है।
2: स्टूडियो में कोई 20 बना रहा, के 15 बना रहा, के 10 बना रहा, ऐसा करके होता। कोई 50 भी बनाया है, ऐसा नहीं है जो 10-20 ना, 50 भी बना रहा, ऐसा होता है। ये तो गुण नहीं पाएगा, तो सारा कलकत्ता में बाहर में सब हम लोग की मूर्ति भेज रहा है।
0: कुम्हार टोली में मिट्टी की मूर्तियां बनाने वाले लगभग 300 स्टूडियो है, जहां कारीगर मूर्तियों को अब अंतिम रूप देने में व्यस्त है। लगभग सभी स्टूडियो को पहले ही एडवांस बुकिंग मिल चुकी है। यहां बनी दुर्गा प्रतिमाओं की केवल कोलकाता या देश के दूसरे हिस्सों में ही नहीं, बल्कि विदेश तक डिमांड है। अब तो यहां के मूर्तिकार प्रतिमाओं के निर्माण में AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक का इस्तेमाल कर रहे हैं।
3: मेरा इस साल जो हम जो ठाकुर बनाते हैं 12-14 माने, वो आज से 2 मास पहले वो बुकिंग हो गया। अभी जो AI से मैं रोबोटिक दुर्गा किया है उत्तर दिनाजपुर कालियागंज में, वो मारात्मक वायरल हो गया, ठीक है। उसका जो प्रतिमा है वो रोबोटिक है, उसका जो AI दुर्गा, और उसका जो फेस है वो माँ का जो फेस, वही फेस मैंने रखा है, लेकिन AI नहीं किया। जो तस्वीर मेरे पास आया है वो माँ का थोड़ा सा AI था, लेकिन ये तो माँ है, इसलिए माँ को मैं एक मिनमय रूप मैंने दिया, ठीक है। उसको जो आँख, उसको जो सारीज, उसको जो सरस्वती, लक्ष्मी, कार्तिक, गणेश जो है, उसको जो महिषासुर, उसके जो लायन, सब आँखों में LED लाइट्स जलेंगे।
1: अच्छा,
3: साड़ी में भी, और जो अस्त्र है फाइबर का, उसका भीतर में LED लाइट्स है, वो ब्लिंक करेगा।
1: अच्छा।
3: ठीक में, और उसका जो पैंडल है, वो जो रोबोट है वो घूमेगा।
1: अच्छा।
3: वो बातचीत करेगा, अब जो बोला वो बात वो आंसर दे देंगे।
0: यहाँ मूर्ति का ऑर्डर दे चुके लोग ही नहीं पहुँच रहे, बल्कि बड़ी संख्या में कला प्रेमी भी आ रहे हैं, जो मूर्तिकारों और कारीगरों की मेहनत को करीब से देखने और समझने की इच्छा रखते हैं। यहाँ देवी माँ की दिव्य मूर्तियों को देखकर वो मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। मोबाइल में तस्वीरें कैद करने के साथ खुद की तस्वीर खिंचवाते भी नजर आते हैं।
4: मैंने बहुत सुना था, बट आज महसूस किया और बहुत अच्छा लग रहा है। अद्भुत जिसको बोलते हैं ना, वो एक्सपीरियंस हुआ और बहुत ऐसे डिवाइन सी फीलिंग हो रही है।
5: मैं तो उत्साहित थी ये देखने के लिए कि क्या कैसे बनता है, वो मुझे बहुत जानना था। तो इतना सुंदर है कि मतलब इसको शब्दों में बयान नहीं कर सकते हम, तो बहुत ही सुंदर है, अद्भुत है ये नजारा।
0: दुर्गा पूजा के शुरू होने से पहले ही ये जगह लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रही है, इसके चलते यहाँ लोगों की आवाजाही बढ़ी हुई है। और त्योहार से पहले ही उत्सव जैसा माहौल बन चुका है। कोलकाता से राही हलदार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम।
7: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
8: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
9: अविश्वास में विश्वास बसता है,
7: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
10: गुड न्यूज टुडे।
7: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
7: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम।

0: लगा निकल जाएगा दम पर जज्बा नहीं हुआ कम। लहू लुहान बदन फिर भी परमार्थ से भरा मन। हनुमान चालीसा से मिला जूझने का बल। 174 लोगों को मौत से बचाने वाला महाबली। बंदे में है दम श्वेता झा के साथ शाम 5:04 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
0: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
0: गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से
7: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
8: वाराणसी में शक्ति आराधना उत्सव की तैयारियां तेज, पश्चिम बंगाल की तर्ज पर होती है दुर्गा पूजा, मां की प्रतिमाओं को अंतिम रूप दे रहे हैं कारीगर। केदारनाथ धाम में उमड़ रहा आस्था का मेला, बड़ी संख्या में श्रद्धालु कर रहे हैं बाबा केदार के दर्शन, मुख्य द्वार और वीआईपी गेट पर भक्तों की कतार। सुहाने मौसम में हिमाचल में बढ़ी सैलानियों की संख्या, मैक्लोडगंज की सड़कों पर पर्यटकों का तांता, पर्यटन कारोबारियों की खिले चेहरे।

0: नमस्कार, गुड न्यूज स्टूडियो देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वैभव राज शुक्ला। स्पेशल शो में आपका बहुत स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं उज्जैन और वहां पर आयोजित होने वाले सिंहस्थ कुंभ की तैयारियों की। उज्जैन में हर 12 साल में सिंहस्थ कुंभ का आयोजन होता है। इसके लिए प्रयागराज की तरह ही तैयारियां जोर शोर से वहां पर की जा रही है ताकि कुंभ के दौरान आने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। उज्जैन का सिंहस्थ कुंभ का अलग तरह का महत्व माना जाता है क्योंकि यहाँ पर महाकाल भी हैं और काल भैरव भी। श्री कृष्ण की शिक्षा स्थली उज्जैन खगोल विज्ञान की दृष्टि से अगर देखा जाए तो बहुत महत्वपूर्ण है। तभी तो पंचांग के अनुसार ही उज्जैन में सिंहस्थ का कुंभ का आयोजन किया जाता है और ये 27 मार्च 2028 से शुरू होगा और 60 दिनों तक यूं ही चलेगा।
1: आले, आले

उज्जैन महाकालेश्वर के नगरी, उज्जैन भगवान कृष्ण की शिक्षा स्थली। उज्जैन जहां श्री राम ने किया था पिता का पिंडदान। उज्जैन राजा भर्तरी के वैराग्य दीक्षा लेने वाली नगरी। उज्जैन मंगल ग्रह की उत्पत्ति के स्थान की मान्यता। उज्जैन भारतीय ज्योतिष और गणना प्रणाली का केंद्र। उज्जैन महान चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य की राजधानी। उज्जैन जिसे प्राचीन काल में अवंतिका के नाम से जाना जाता था, केवल शहर नहीं बल्कि रहस्य और अध्यात्म का एक बड़ा केंद्र हुआ करता था। इसे आकाश के नाभि देश के रूप में भी जाना जाता था। यहाँ भगवान शिव की पूजा काल के राजा के रूप में होती है। मान्यता है कि जो जीवन मृत्यु और स्वयं ब्रह्मांड पर शासन करते हैं, उज्जैन की पहचान 12 ज्योतिर्लिंगों में से एकमात्र दक्षिणमुखी ज्योतिर्लिंग की वजह से भी है। महाकालेश्वर मंदिर की उत्पत्ति भी प्रागैतिहासिक काल से मानी जाती है।

महाकाल की नगरी उज्जैन के बारे में मान्यता है कि शिव पुराण के अनुसार जब उज्जैन के लोग दूषण नामक राक्षस से पीड़ित थे, तब उन्होंने भगवान शिव से सुरक्षा की प्रार्थना की। उनकी प्रार्थना का उत्तर देते हुए शिव एक तेजस्वी ज्योति के रूप में प्रकट हुए और राक्षस का नाश किया और उज्जैन में ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान हुए। महाकालेश्वर विश्व का एकमात्र शिवलिंग है जहाँ प्रतिदिन पवित्र भस्म आरती की जाती है।

महाकालेश्वर मंदिर की ऊर्जा, मंत्रों की गूंज और महाकाल की शक्तिशाली उपस्थिति भक्तों को सुरक्षा, शांति और गहन आध्यात्मिक जुड़ाव का अनुभव कराती है। यही नहीं, उज्जैन का उल्लेख पुराणों और महाकाव्यों में भी मिलता है। मान्यता है कि भगवान राम यहाँ आए थे और कृष्ण बलराम ने गुरु संदीपानी के आश्रम में शिक्षा भी ली थी। प्राचीन भारतीय खगोलविदों और गणितज्ञों जैसे वराह मिहिर और ब्रह्मगुप्त के लिए उज्जैन मुख्य केंद्र था। यही नहीं, हिंदू पंचांग की पहली मध्यायन रेखा यहीं से गुजरती थी, इसलिए उज्जैन को भारतीय ज्योतिष और गणना प्रणाली का केंद्र भी माना जाता है। जंतर मंतर नामक वेदशाला भी यहाँ स्थित है, जो खगोल विज्ञान और पंचांग गणना के लिए प्रसिद्ध है। उज्जैन एक ऐसा नगर है जो केवल मंदिरों और पूजा पाठ का स्थल नहीं है, बल्कि सनातन संस्कृति का आधार स्तंभ भी है। यहाँ हर घाट, हर मंदिर और हर गली इतिहास और धर्म की गूंज से भरपूर है। इसी उज्जैन में 2028 में कुंभ मेले का आयोजन होने जा रहा है, जो हर 12 साल पर आयोजित होता है। उज्जैन में होने वाले कुंभ मेले को सिंहस्थ कुंभ कहा जाता है। इसकी भी अपनी कहानी है, अपना इतिहास है।

0: प्राचीन काल से उज्जैन समेत प्रयागराज, हरिद्वार और नासिक में आध्यात्मिक महोत्सव कुंभ का आयोजन किया जाता है। पुराणों के अनुसार समुद्र मंथन की प्राचीन कथा से ही इस उत्सव की उत्पत्ति हुई है। पौराणिक कथाओं के अनुसार अमरत्व का पवित्र अमृत प्राप्त करने के लिए देवों और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन किया था। वे तब तक मंथन करते रहे जब तक कि भगवान धन्वंतरी पवित्र अमृत से भरा कुंभ या कलश लेकर प्रकट नहीं हुए। उन्होंने मंदारा पर्वत को मंथन की छड़ी और वासुकी सर्प को रस्सी के रूप में प्रयोग किया। दोनों पक्षों ने अमृत प्राप्त करने के लिए एक भयंकर युद्ध किया। ऐसा माना जाता है कि इस मंथन के दौरान पृथ्वी पर गिरे अमृत की कुछ बूंदों से चार पवित्र स्थानों को आशीर्वाद प्राप्त हुआ था और इन्हीं जगहों पर कुंभ महोत्सव का आयोजन किया जाता है। लेकिन उज्जैन में होने वाले कुंभ मेले को सिंहस्थ कुंभ मेला कहा जाता है। संस्कृत शब्द सिंह, जिसका अर्थ है शेर या सिंह राशि, और स्थ का अर्थ होता है स्थित होना या स्थापित होना। सिंहस्थ शब्द के मूल हैं। ये नाम उस समय को दर्शाता है जब बृहस्पति सिंह राशि में होते हैं। इस पवित्र उत्सव का समय खगोलीय घटना ही निर्धारित करती है, जिसका ज्योतिष में बहुत महत्व है। इस त्योहार की विशिष्ट पहचान इसी विशेष स्थिति से प्राप्त होती है। इस धार्मिक आयोजन के दौरान ही ऐसा दुर्लभ ग्रह संयोजन देखने को मिलता है, इसलिए इस उत्सव को सिंहस्थ के नाम से जाना जाता है। ज्योतिष के अनुसार आयोजन शुरू होने से पहले बृहस्पति का सिंह राशि में और सूर्य का मेष राशि में प्रवेश करना आवश्यक है। प्रत्येक उत्सव अपने आप में अनूठा होता है, क्योंकि यह संयोग लगभग 12 वर्षों में एक बार होता है। ये सिंह संयोजन उज्जैन के कुंभ मेले को भारत भर में आयोजित होने वाले कुंभ मेलों से अलग करता है, और इसी कारण तीर्थयात्रियों ने इसे पीढ़ियों से जाना और सम्मान दिया है। सिंहस्थ कुंभ मेले की कथा में पौराणिक कथाएं, धर्म, खगोल विज्ञान और सदियों पुरानी परंपराएं समाहित हैं। इस दौरान लाखों तीर्थयात्री, संत और श्रद्धालु देश भर से प्रार्थना करने, पवित्र स्नान करने और आध्यात्मिक अनुभूति प्राप्त करने के लिए यहां आते हैं। यानी ये मात्र एक धार्मिक उत्सव नहीं, बल्कि उससे कहीं अधिक है। ये सांस्कृतिक इतिहास, पारंपरिक रीति रिवाजों और भक्ति का एक अद्भुत संगम होता है। सिंहस्थ कुंभ सनातन त्योहार का संगठित स्वरूप मराठा काल में उभरा और हिंदू मठों की भागीदारी से इसे और मजबूती मिली। हालांकि इसकी आध्यात्मिक उत्पत्ति प्राचीन काल से ही है, लेकिन आज भी ये उत्सव जीवंत सांस्कृतिक परंपराओं को शाश्वत विश्वासों के साथ जोड़ता है, जिससे ये भारत की आध्यात्मिक विरासत को करीब से देखने के इच्छुक किसी भी व्यक्ति के लिए एक अद्भुत अनुभव बन जाता है। इस ऐतिहासिक शहर की हिंदू आध्यात्मिक नींव भी काफी मजबूत है। हर 12 साल में जब ग्रहों का ये अनोखा संयोग बनता है, तो उज्जैन का एक जीवंत तीर्थस्थल बन जाता है, जहां भक्ति, परंपरा और आस्था का संगम होता है। सड़कों पर धार्मिक जुलूस, मंदिरों की घंटियां और घाटों पर श्रद्धालुओं की भीड़ एक अलग तरह के भव्य आध्यात्मिक उत्सव का एहसास दिलाता है। उज्जैन में यही एहसास 2028 के 27 मार्च से 27 मई तक देखने को मिलने वाला है, क्योंकि यहां पर सिंहस्थ कुंभ मेले का आयोजन होने जा रहा है, जिसके लिए जोर शोर से तैयारियां शुरू हो गई हैं। सरकार को अनुमान है कि इस खास धार्मिक उत्सव में 40 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु शामिल होंगे। रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: उज्जैन प्रयागराज की तरह बड़ा क्षेत्रफल वाला शहर नहीं है, इसलिए यहां पर गलियों और सड़कों को चौड़ा किया जा रहा है, ताकि सिंहस्थ कुंभ के दौरान आने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ को आसानी से नियंत्रित किया जा सके। प्रयागराज में तो गंगा के किनारे टेंट सिटी बसा दी गई थी, जिससे शहर के विकास में ज्यादा छेड़छाड़ की जरूरत महसूस नहीं हुई, लेकिन उज्जैन में ऐसा नहीं है। यहां पर अभी से मास्टर प्लान के मुताबिक शहर को सजाने संवारने के साथ व्यवस्थित भी किया जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपने पैतृक घर के कुछ हिस्सों को तोड़कर एक नई मिसाल पेश की है।

0: सिंहस्थ 2028 सदी का दूसरा सबसे बड़ा धार्मिक उत्सव, जिसका आयोजन उज्जैन जैसे नगर में होने जा रहा है। उज्जैन का क्षेत्रफल महज 6091 वर्ग किलोमीटर है, जबकि उज्जैन शहर और नगर निगम का क्षेत्रफल लगभग 152 वर्ग किलोमीटर। आबादी महज 8 लाख के आसपास है। वहां पर इतना बड़ा आयोजन होना है तो तैयारी जबरदस्त करनी ही होगी, क्योंकि उम्मीद की जा रही है कि इस दिव्य महोत्सव में करीब 40 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु पहुंच सकते हैं। ऐसे में इस आध्यात्मिक महोत्सव को लेकर उज्जैन को भव्य सुरक्षित बनाने की तैयारियां चल रही हैं। मध्य प्रदेश सरकार, उज्जैन नगर निगम और जिला प्रशासन बड़े पैमाने पर मास्टर प्लान के मुताबिक शहर को सजाने और संवारने में जुट गए हैं। सड़क चौड़ीकरण अभियान चलाया जा रहा है ताकि देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं को सिंहस्थ कुंभ मेले में किसी भी प्रकार की दिक्कत न हो। सरकार का अनुमान है कि सिंहस्थ कुंभ मेले में देश विदेश से 40 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु और दर्शनार्थी आएंगे। इस विशाल जनसमूह के आवागमन को सुगम और सुरक्षित बनाने के लिए शहर की सकड़ी सड़कों का चौड़ीकरण किया जा रहा है। कंठाल चौराहे से गोपाल मंदिर और खजूरवाली मस्जिद से गणेश चौक तक के मार्ग को 15 मीटर तक चौड़ा करने का काम जारी है। महाकाल मंदिर के मुख्य द्वार से महाकाल चौराहे तक के मार्ग को चौड़ा किए जाने का कार्य, सड़क चौड़ीकरण के दायरे में आने वाले प्रभावित निर्माणों को हटाने में स्थानीय लोग सहयोग कर रहे हैं। यहां तक कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के पैतृक मकान का हिस्सा भी इस परियोजना के तहत हटाया गया है।
1: लोगों के आने के जाने की पूरी व्यवस्था की सारी जवाबदारी स्टेट गवर्नमेंट की है, तो स्वाभाविक रूप से हम उसको उस तरह से तैयार कर रहे हैं कि भविष्य में इतना बड़ा जब मेला लगेगा तो उस मेले में सारे प्रबंध सुप्रबंध में बदलना चाहिए। और इसीलिए हमारी सड़क, बिजली, पानी, नदी के घाट, नदी की पानी की धारा, बिजली के सारे, और बल्कि अब की बार हम सोच रहे हैं कि सिंहस्थ पे हरिद्वार की तर्ज पर स्थायी रूप से साधु संत, शंकराचार्य, महंत, महामंडलेश्वर सबके स्थायी रूप से वहाँ निर्माण आश्रम करवा दें।
0: उज्जैन में सबसे बड़ी मुश्किल सड़क के चौड़ीकरण में आ रही है, क्योंकि उज्जैन एक प्राचीनतम शहर है और उसकी आबादी 8 से 9 लाख ही है। सकड़ी गलियां, गलियों में पुराने मकान जो शहर की शोभा थे उन पर ही गाज गिर रही है। गलियों को चौड़ा करने के लिए इन मकानों को हटाया जा रहा है। यही नहीं, रास्ते में जो भी धार्मिक जगह आ रही है उनको भी हटाया जा रहा है, ताकि सिंहस्थ कुंभ के दौरान आने वाले श्रद्धालुओं को दिक्कतों का सामना न करना पड़े। सड़क के चौड़ीकरण में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का मकान भी आ गया, तो सीएम ने अपने पैतृक घर पर भी हथौड़ा चलाने से नहीं रुके।
2: उस मकान में जहां बचपन बीता है मुख्यमंत्री का, आप देखिए यहां पे मुख्यमंत्री का बचपन जिस मकान में बीता, वहां जब उस पे उन्होंने पहला कुदाल चलाया है तो इस वक्त भावुक हो गए हैं।
3: इस अभियान की शुरुआत के लिए उज्जैनवासियों को बधाई देना चाहूंगा। हमारे देश के अंदर ये आदर्श उदाहरण है हमारा उज्जैन का, जो लोग स्वेच्छा से अपने अपने मकान पीछे हटा करके, हमारे शहर की आबादी तो कुल 8 लाख की है, लेकिन जब 30-40 करोड़ लोग आएंगे, सब किसी को कष्ट करना होगा, सबके लिए हम अपने अपने तरह से योगदान देंगे। उज्जैन वासियों के साथ मैं भी उसमें शामिल हूँ। एक बात सही है कि पिताजी के समय उनके मेहनत से बनाया हुआ मकान, जब हम तो अपनी आँख भी नहीं खोले थे तो ठीक लगा, लेकिन इस बात की प्रसन्नता है कि आज पूरे समाज के साथ पूरा मोहल्ला भी अपने अपने आशियानों को जब तोड़ रहा है और अपने से हटा रहा है, और ये क्या पूरे उज्जैन के अंदर ये बड़ा अच्छा संदेश जा रहा है।
0: मोहन यादव के मोहल्ले के करीब 270 मकान चौड़ीकरण की जद में आ रहे हैं, लेकिन उज्जैन के हर निवासी विकास के इस बयार में मिलजुल कर साथ देने के लिए सामने आ रहे हैं। सीएम मोहन यादव का मकान खजूरवाली मस्जिद के गणेश चौक तक इस सड़क का चौड़ीकरण की जद में आया है, जो सिंहस्थ 2028 में आने वाली भीड़ के मद्देनजर किया जा रहा है।
4: गलती इसी मार्ग से निकलती है और समय के अनुसार वो रास्ता वो सकड़ा है, ये जरूरी है चौड़ीकरण और ढोल गैरेज के झूले वगैरह भी अब इसी रास्ते से निकलते
5: हैं। आमतौर पर लोग नाराज होते हैं जब मकान टूटता है, तो
4: नाराज तो होते हैं, अब थोड़ा नुकसान तो होता है, बाकी ये भी विकास पर भी समय के अनुसार देखना पड़ता है।
6: विकास चाहते हैं तो हम भी विकास के समर्पित करेंगे अपना मकान, उसमें क्या है, पूरा मोहल्ला समर्पित है उनके कार्य में।
0: महाकाल लोक और उसके साथ कई विकास कार्यों के बाद उज्जैन देश के प्रमुख धार्मिक पर्यटन केंद्रों में शामिल हो चुका है। धार्मिक पर्यटन से जुड़े शहर अब केवल आस्था के केंद्र नहीं रहे बल्कि आर्थिक और सांस्कृतिक गतिविधियों के प्रमुख केंद्र बन रहे हैं। ऐसे में सिंहस्थ 2028 उज्जैन की वैश्विक पहचान को और मजबूत करने का अवसर आया है, इसीलिए उज्जैन को विकास के नए आयाम पर पहुंचाने की कोशिश हो रही है। सिंहस्थ कुंभ को लेकर जो कार्य होने हैं उनमें श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए क्षिप्रा नदी के तट पर 29 किलोमीटर लंबे नए घाटों का निर्माण, घाटों पर हर 200 मीटर पर आने जाने के रास्ते बनाना, नए घाटों के विकास के लिए 771 करोड़ रुपए की परियोजना को मंजूरी, IIM इंदौर को भीड़ और ट्रैफिक नियंत्रण की कार्य योजना तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। 5E फ्रेमवर्क एजुकेशन इन्फोर्समेंट इंजीनियरिंग एनवायरमेंट इमरजेंसी के तहत व्यवस्था, 15,000 भारत स्काउट्स और गाइड्स सेवादूत के रूप में तैनात किए जाएंगे। वॉलंटियर्स को पेशेवर तरीके से प्रशिक्षित करने के लिए सरकार ने बुनियादी ढांचे को मजबूत करने का भी फैसला किया है। भोपाल में एक अत्याधुनिक ट्रेनिंग सेंटर स्थापित किया जाएगा। आपदा प्रबंधन संस्थान के सहयोग से 100 मास्टर ट्रेनर्स को विशेष ट्रेनिंग दी जाएगी। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए 700 करोड़ रुपए की लागत से बाईपास सड़क, फ्लाईओवर, अंडरपास और मेला क्षेत्र के लिए 2400 विशेष बसों की शटल सेवा प्रस्तावित है। उज्जैन में प्रतिदिन 3,00,000 लीटर क्षमता का सांची डेयरी का नया अत्याधुनिक प्लांट और लगभग 300 बूथ स्थापित किए जा रहे हैं। नदी के प्रवाह और घाटों से जुड़ी पुरानी समस्याओं को दूर करने के लिए भी कार्य किए गए हैं। इसके अलावा धर्मशालाओं, आवासीय परिसरों और ठहरने की सुविधाओं को बेहतर बनाने पर भी जोर दिया जा रहा है ताकि दूर दराज से आने वाले श्रद्धालुओं को परेशानी न हो। सड़क, पुल, पार्किंग, अस्पताल और हेलीपैड जैसी सुविधाओं के विकास के लिए 491.66 करोड़ रुपए के 17 नए कार्यों को मंजूरी दी गई है। महाकाल मंदिर में तिरुपति बालाजी मंदिर के तर्ज पर कम समय में सुलभ दर्शन कराने की योजना बनाई जा रही है। उज्जैन में अंडरग्राउंड सीवरेज सिस्टम, वाटर सप्लाई और इलेक्ट्रिकल लाइन्स होंगी जिससे बिजली के झूलते तारों की समस्या खत्म हो जाएगी। वॉकिंग पाथवे, बच्चों के झूले, ओपन जिम और खूबसूरत चौराहे नगरी को आकर्षक बनाएंगे। कुंभ मेले के दौरान मेला क्षेत्र में प्रतिदिन 16,000 से ज्यादा सफाई कर्मी स्वच्छता की व्यवस्था संभालेंगे। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए 50,000 शौचालय का निर्माण भी किया जाएगा। श्रद्धालुओं के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए 500 अस्थायी अस्पताल और कैंप लगाया जाएगा। उज्जैन में सड़क और अन्य क्षेत्रों को मिलाकर 11,220 सफाई कर्मियों की जरूरत होगी। कचरा संग्रहण के लिए करीब 5,000 सफाई कर्मियों की जरूरत पड़ेगी। कुल मिलाकर 16,220 सफाई कर्मियों की आवश्यकता सिंहस्थ में होगी। ऐसे में सिंहस्थ के लिए हर तरह की व्यवस्था की जा रही है। सिंहस्थ सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि उज्जैन की अर्थव्यवस्था, पर्यटन, संस्कृति और सामाजिक जीवन पर असर डालने वाला विराट अवसर है। इसकी तैयारियां भी उतनी ही व्यापक हैं। ऐसे में सरकार और प्रशासन के प्रयास तभी सफल होंगे जब समाज भी उसके साथ खड़ा हो, और ऐसा हो भी रहा है। उज्जैन से रवीश पाल सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
7: उज्जैन का इतिहास काफी पुराना माना जाता है। करीब 5,000 साल से ज्यादा पुराना माने जाने वाले इस शहर का प्रमाण पुराणों में भी मिलता है। महाकाल की नगरी का नाम भले ही वक्त वक्त पर बदलता रहा हो लेकिन धार्मिक दृष्टि से इसका महत्व आज भी उतना ही है। आज भी उज्जैन पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की आस्था में कोई कमी नहीं देखी जाती।

0: उज्जैन करीब 5000 साल से ज्यादा प्राचीन शहर। इस ऐतिहासिक नगर का वर्णन आदि ब्रह्म पुराण में सबसे अच्छे शहर के रूप में है, तो अग्नि पुराण और गरुण पुराण में मोक्षदा और भक्ति मुक्ति कहा गया है। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती, चेव, सप्तेतः मोक्षदायी कहा। यानी गरुड़ पुराण के अनुसार 7 शहर जो मोक्ष प्रदान कर सकते हैं, उनमें से अवंतिका यानी उज्जैन को सबसे अच्छा माना गया है, इसलिए उज्जैन का महत्व ज्यादा माना गया है।
1: पुराणों के अनुसार देश की जो 7 पुरियां हैं जो मोक्षदायिनी मानी जाती है, अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका और द्वारका और अवंती, तो इनमें सप्तपुरियों में से एक अवंती नगरी भी है। तो इसलिए पारंपरिक रूप से ये माना जाता है कि ये प्राचीन नगरी है।
0: उज्जैन को देवताओं का शहर माना जाता है। स्कंद पुराण के अनुसार उज्जैन में 84 महादेव, 64 योगिनियां, 8 भैरव और 6 विनायक हैं। महान कवि कालिदास उज्जैन की सुंदरता की प्रशंसा करते हैं और उनके अनुसार उज्जैन स्वर्ग का ही एक भाग है।
1: महाकाल ज्योतिर्लिंग है, श्री कृष्ण वैष्णव परंपरा में है, हर सिद्धि शाक्त परंपरा में है। इस तरह से शैव, शाक्त और वैष्णव तीनों दृष्टियों से ये महत्वपूर्ण नगरी है और उन तीनों के यहाँ पर महत्वपूर्ण केंद्र है।
0: उज्जैनी नगरी का प्राचीन शैक्षणिक महत्व भी रहा है। मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण अंकपात क्षेत्र में स्थित गुरु महर्षि सांदीपनी आश्रम में भगवान श्री कृष्ण ने अपने भाई बलराम और मित्र सुदामा के साथ महर्षि सांदीपनी से धनुर्विद्या, अस्त्र मंत्रोपनिषद, गज और अश्वरोहण आदि समेत 64 विद्या और 16 कला का ज्ञान प्राप्त किया था।
1: विविध पुराणों में ये उल्लेख प्राप्त होता है कि भगवान श्री कृष्ण बलदेव यहाँ पर आए थे और यहाँ सुदामा भी विद्यमान थे और इन्होंने सांदीपनी ऋषि से शिक्षा ग्रहण की थी और सांदीपनी से उन्होंने बहुत अल्प अवधि में कुछ पुराणों के अनुसार 30 दिन में, कुछ के अनुसार 64 दिन में उन्होंने 64 विद्या, 64 कला और 14 विद्या को प्राप्त कर लिया था।
0: भगवान राम ने स्वयं उज्जैन में अपने पिता का अंतिम संस्कार किया था और इसलिए वो स्थान जहां अनुष्ठान हुआ उसे रामघाट कहा गया। सिंहस्थ शाही स्नान स्थल इस रामघाट पर ही होता है। कालिदास, वराहमिहिर, बाणभट्ट, राजशेखर, पुष्पदंत, शंकराचार्य, वल्लभाचार्य, भर्तृहरि, दिवाकर, कात्यायन और बाण जैसे विविध क्षेत्रों के महान विद्वानों का उज्जैन से जुड़ाव इतिहास में मिलता है। उज्जैन प्राचीन अध्ययन का एक बड़ा केंद्र भी था। यहाँ मौजूद जंतर मंतर वो महत्वपूर्ण स्थल था जहाँ खगोल विज्ञान की शिक्षाएं दी जाती थी। जंतर मंतर और वेदशाला का निर्माण राजा जय सिंह ने करवाया था। उज्जैन का सूर्योदय काल देशभर के पंचांगों के लिए प्रमाणिक उदय काल माना जाता रहा है। भारतीय ज्योतिषियों के अनुसार दक्षिण में लंका, भारत के मध्य में उज्जैन और संभवतः वर्तमान में रोहतक के मध्य से जाने वाली देशांतर रेखा का सूर्योदय काल प्रमाणिक सूर्योदय काल है। उज्जैन प्राचीन काल में विक्रम संवत कैलेंडर के संस्थापक राजा विक्रमादित्य की राजधानी भी था, इसलिए इसे विक्रमपुरी भी कहा जाता था। उज्जैन को कालिदास की नगरी भी कहा जाता है, जो सम्राट विक्रमादित्य के दरबार के नवरत्नों में सबसे खास थे। उनका उज्जैन के साथ गहरा लगाव था। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि उज्जैन को महाकाल की नगरी कहा जाता है, क्योंकि उज्जैन के महाकाल का ज्योतिर्लिंग सभी ज्योतिर्लिंगों में प्रमुख माना गया है।

0: हर 12 साल पर उज्जैन में सिंहस्थ कुंभ मेला का आयोजन किया जाता है, जो इस प्राचीन शहर के लिए धार्मिक और सांस्कृतिक महापर्व माना जाता है। यह पर्व बृहस्पति के सिंह राशि में प्रवेश करने पर मनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि आधुनिक और संगठित स्वरूप में सिंहस्थ का आयोजन मराठा आधिपत्य के दौरान शुरू हुआ। अब इसी सिंहस्थ मेले का आयोजन 12 साल बाद उज्जैन में होने जा रहा है, जिसकी भव्यता और दिव्यता में कोई कमी न रह जाए, इसके लिए राज्य सरकार से लेकर कई एजेंसियां जोर शोर से तैयारी में लगी हुई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: खास कार्यक्रम में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए जुड़े रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।

0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
6: एवरेस्ट दिखा लाल, सही दिखा सही लाल।
7: फिर से संत रविदास नगर के नाम से जाना जाएगा उत्तर प्रदेश का भदोही जिला। कारपेट एक्सपो के उद्घाटन पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ऐलान, जल्द ही सरकार की ओर से अधिसूचना होगी जारी। वाराणसी में शक्ति आराधना उत्सव की तैयारियां तेज, पश्चिम बंगाल की तर्ज पर होती है दुर्गा पूजा, मां की प्रतिमाओं को अंतिम रूप दे रहे हैं कारीगर। केदारनाथ धाम में उमड़ रहा है आस्था का मेला, बड़ी संख्या में श्रद्धालु कर रहे हैं बाबा केदार के दर्शन, मुख्य द्वार और वीआईपी गेट पर भक्तों की कतार। सुहाने मौसम में हिमाचल में बढ़ी सैलानियों की संख्या, मैक्लोडगंज की सड़कों पर पर्यटकों का तांता, पर्यटन कारोबारियों के खिले चेहरे। जापान के एगा नोया में एशियन गेम्स 2026 का भव्य समापन समारोह, दो गोल्ड और एक सिल्वर मेडल जीतने वाली शूटर नीरू ढांडा ने थामा तिरंगा, भारतीय खिलाड़ियों ने जीते कुल 85 मेडल।

नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्वेता झा। आप देख रहे हैं अपना सबसे पसंदीदा और दमदार शो बंदे में है दम। एक बार फिर मैं हाजिर हूं दमदार शख्सियत का एक बेमिसाल सफरनामा लेकर। इस बार जिस शख्सियत का बेनजीर सफरनामा लेकर हम हाजिर हुए हैं, उसने 34,000 फीट की ऊंचाई पर साहस और पराक्रम का ऐसा अफसाना लिख दिया कि पूरी दुनिया उसके सजदे में आ गई है।

आप समझ ही गए होंगे कि इस बार की दमदार शख्सियत कोई और नहीं बल्कि फ्लाई दुबई के विमान में एक सनकी को पायलट के खौफनाक मंसूबों को नाकाम कर 174 बेगुनाह यात्रियों के प्राणों की रक्षा करने वाले कैप्टन स्मिथ मछार हैं। जी हाँ, हिंदुस्तान का ऐसा सपूत जिसकी वीरता का यशोगान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू समेत दुनिया भर के लोग कर रहे हैं। दरअसल कैप्टन स्मिथ ने अपने साहस, पराक्रम और सूझबूझ से विमान में सवार 174 मासूम लोगों को दर्दनाक मौत से बचा लिया। 34,000 फीट की ऊंचाई पर बुरी तरह जख्मी होने के बाद अगर ये जाबाज सरेंडर कर देता तो विमान का क्रैश होना तय था। वीरता के 120 सेकंड्स की ये दास्तान आपके रोंगटे खड़े कर देगी।

0: साहस, शौर्य और धैर्य की कसौटी है आपात स्थिति। बेहद कठिन और नाजुक वक्त में जो इंसान अपने साहस और सूझबूझ से लोगों को मुसीबत से उबार लेता है, वही रियल हीरो कहलाता है। ऐसा ही एक बिंदास हीरो है हिंदुस्तान का लाल कैप्टन स्मित मुच्छार। सामने खड़ी मौत को देखकर भी जिसका साहस और हौसला एक पल के लिए भी पस्त नहीं हुआ। 34,000 फीट की ऊंचाई पर पैदा हुई विकट परिस्थिति में अगर ये हिंदुस्तानी हिम्मत हार जाता तो 27 बच्चों समेत 174 बेगुनाह यात्री अपनी जान से हाथ धो चुके होते। कैप्टन स्मित मुच्छार का ये पराक्रम मिड एयर टेरर कॉन्स्पिरेसी को नाकाम करने वाले हीरोइक हिस्ट्री के बोल्ड चैप्टर के रूप में हमेशा के लिए दर्ज हो चुका है। कैप्टन स्मित के साहसिक और ऐतिहासिक पराक्रम से 140 करोड़ हिंदुस्तानियों का सीना गर्व से चौड़ा हो गया है।
1: भारत के कैप्टन स्मित ने जिस प्रकार से धैर्य, सूझबूझ और साहस का परिचय करवाया और जैसे आज इजराइल के प्रधानमंत्री ने कहा कि इस हिंदुस्तानी ने 9/11 होने से बचा लिया, हर देशवासी के लिए स्मित का ये पराक्रम हमें गौरव से भर देता है।
0: रोंगटे खड़े कर देने वाला ये वाक्या है 30 सितंबर 2026 का, जब फ्लाइट दुबई की कमर्शियल फ्लाइट FZ1073 ने 174 यात्रियों और 6 क्रू मेंबर्स के साथ स्थानीय समय के मुताबिक सुबह 6:49 पर दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से तेल अवीव के लिए उड़ान भरी थी। कैप्टन स्मित इस विमान के पायलट थे और उनके साथ कॉकपिट में को पायलट के तौर पर ओमान का एक शख्स था। कैप्टन स्मित इस बात से पूरी तरह अनजान थे कि उनका को पायलट इंतहाई खौफनाक इरादों के साथ कॉकपिट में दाखिल हुआ है। दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से टेक ऑफ के करीब 1 घंटे और 42 मिनट बाद विमान जब 34,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भर रहा था, तभी ओमानी को पायलट ने अपने खतरनाक मंसूबों को अंजाम देने के लिए हिंदुस्तान के दिलेर पायलट स्मित पर चाकुओं से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। कैप्टन स्मित ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उन्हीं का को पायलट मिड एयर उन पर इस तरह जानलेवा हमला कर देगा। पल भर में बुरी तरह लहूलुहान हो चुके स्मित ने इस विकट स्थिति में भी साहस, सूझबूझ और धैर्य नहीं खोया। वो समझ गए कि उनका को पायलट या तो विमान को क्रैश करना चाहता है या फिर इसे अगवा करना चाहता है। बुरी तरह जख्मी हो चुके कैप्टन स्मित के मन में एक बात बिजली की तरह कौंध गई, अगर मैं हिम्मत हार गया तो 174 बेगुनाह यात्रियों की दर्दनाक मौत हो जाएगी। ये विचार आते ही जख्मी स्मित एक्शन में आ गए। उन्होंने पहला काम ये किया कि विमान का कंट्रोल अपने पास ही रखा, जबकि ओमानी को पायलट का इरादा कंट्रोल अपने हाथ में लेने का था। दूसरा काम उन्होंने ये किया कि ATC को स्क्वाक कोड 7700 भेज दिया, जो सामान्य आपात स्थिति का संकेत होता है। कुछ मिनट बाद उन्होंने कोड 7500 भेजा, जो विमान हाईजैकिंग का संकेत देता है। तीसरा और सबसे बड़ा काम उन्होंने ये किया कि कॉकपिट का रिलीज सिस्टम दबा दिया, जिससे डोर ओपन हो गया। आपको बता दें कि कॉकपिट का डोर सिस्टम ऐसा होता है कि उसे बाहर से किसी भी सूरत में ओपन नहीं किया जा सकता। जाहिर है कैप्टन स्मित अगर डोर ओपन नहीं करते तो विमान के दूसरे क्रू मेंबर्स और यात्रियों को हस्तक्षेप का मौका नहीं मिलता और ओमानी को पायलट कुछ ही देर में जख्मी स्मित की शायद जान भी ले लेता। बहरहाल जैसे ही कॉकपिट का डोर ओपन हुआ, यात्रियों को सारा माजरा समझ में आ गया। विमान में यात्रा कर रहे यानीव हायून नाम के एक इजरायली नागरिक ने अदम्य साहस का परिचय दिखाते हुए ओमानी को पायलट को खींच कर कॉकपिट से बाहर कर दिया, जिसके बाद दूसरे यात्री उस पर टूट पड़े और चंद मिनटों में उसे काबू में कर लिया। सनकी को पायलट को काबू में करने वाले यानीव हायून भी कैप्टन स्मित के शौर्य को सलाम कर रहे हैं।
2: Captain Smith, it's a hero. I think she is opened the door.

0: want to
1: Maybe.
0: tell him thank you for that. If not, if we can't go inside the cockpit, where all the passenger, include me, include my family, it's the die.
2: काबिले गौर है कि इस विमान में ज्यादातर पैसेंजर्स इजरायली नागरिक थे। जाहिर है कि ओमान के सनकी को पायलट के निशाने पर यही इजरायली नागरिक थे। अगर कैप्टन स्मिथ ने वक्त रहते कॉकपिट का डोर ओपन नहीं किया होता तो विमान में सवार सभी यात्री और क्रू मेंबर्स की दर्दनाक मौत हो जाती। यही वजह है कि इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू साहसिक यात्रियों के साथ कैप्टन स्मिथ के शौर्य, धैर्य और हीरोइक एक्ट की दिल खोल कर सराहना कर रहे हैं।
3: Almost all the passengers on the flight were Israelis. During the flight, as they approached the country, one of the pilots stabbed the other pilot and apparently tried to crash the plane with everyone on board. I spoke with one of the Israeli passengers. He told me that the plane went into a spin and started to dive. He told me that somehow he managed to break into the cockpit with one of the crew members, and together they neutralized the stabbing pilot while he was trying to sabotage the plane's systems. Another flight crew member who was on the plane entered the cockpit and managed to stabilize the aircraft. I salute these heroes who showed resourcefulness and extraordinary courage.
2: इसमें कोई संदेह नहीं कि कॉकपिट के भीतर कैप्टन स्मिथ जब अपने ही सन की को पायलट के खिलाफ वीरता के साथ मुकाबला कर रहे थे, उस दौरान विमान पर सवार 174 यात्रियों का कलेजा मुंह को आ चुका था, क्योंकि उन्हें अपनी मौत बेहद करीब दिख रही थी। दरअसल कैप्टन स्मिथ पर चाकू से ताबड़तोड़ हमले करने के बाद ओमान का बददिमाग को पायलट विमान को क्रैश कराने की कोशिश भी करने लगा था। इस दौरान 34,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा विमान गोता लगाते हुए 2 मिनट के भीतर ही 17,000 फीट नीचे आ चुका था। अगले 1 या 2 मिनट में वो आग के गोले में तब्दील होने ही वाला था कि कैप्टन स्मिथ ने सूझबूझ का परिचय देते हुए रिलीज सिस्टम का बटन प्रेस कर दिया। यही वजह है कि बेंजामिन नेतन्याहू ने कैप्टन स्मिथ को रियल हीरो कहा है। सोशल साइट एक्स पर अपनी पोस्ट में भारतीय कैप्टन की हृदय से तारीफ करते हुए नेतन्याहू ने लिखा है कि असाधारण वीरता प्रदर्शित करने के लिए भारतीय पायलट स्मिथ मुच्छार को मैं सलाम करता हूं। चाकू से गोदे जाने के बाद गंभीर रूप से जख्मी होने पर भी उन्होंने हार नहीं मानी, सनकी को पायलट का मुकाबला किया और कॉकपिट का डोर ओपन कर दिया। इसकी वजह से विमान में सवार यात्रियों और क्रू मेंबर्स को ओमानी को पायलट को काबू में करने का मौका मिल गया और आसमान में होने वाली एक खौफनाक दुर्घटना टल गई। उन्होंने इजरायली नागरिकों समेत 174 यात्रियों की जान बचा ली। मैं कैप्टन मुछार के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। वो एक सच्चे हीरो हैं। इजरायली प्रधानमंत्री का यह भावुक संदेश इसलिए है क्योंकि विमान में लगभग सभी यात्री इजरायली थे, लेकिन कैप्टन स्मिथ के शौर्य को तो पूरी दुनिया सलाम कर रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी कैप्टन स्मिथ को सच्चा हीरो बता दिया है।
4: Perhaps a terrorist or perhaps a whack job. And he stabbed the pilot. The pilot was in very bad shape. And I guess he still is in very bad shape. But he had the sense to, amazing, to, in a way he was a hero, to open the door. You know, those doors are solid steel. You can't get them open from outside. He was able to fall back and get the door open and scream.
2: साफ है कि कैप्टन स्मिथ रील के नहीं बल्कि रियल के हीरो बनकर पूरी दुनिया में छा गए हैं। वो हीरो हैं सिर्फ इसलिए नहीं कि 34,000 फीट की ऊंचाई पर बहादुरी दिखाकर 174 यात्री और अपने क्रू मेंबर्स की जान बचा ली। वे हीरो हैं इसलिए भी कि पूरी तरह लहूलुहान हो जाने के बाद भी उनके चेहरे पर शिकन की कोई लकीर नहीं दिख रही थी। अलबत्ता बेगुनाह लोगों की जिंदगी बचाने का सुकून जरूर उनके चेहरे पर तैर रहा था। सऊदी अरब के तबूक में सेफ लैंडिंग के बाद विमान के भीतर जब उन्हें फर्स्ट एड दिया जा रहा था तो कैप्टन स्मिथ पूरे आत्मविश्वास के साथ लोगों से बात करते नजर आए। ये बात निर्विवाद सत्य है कि तबाही मचाने वाले हथियार तो बाजार में बिकते हैं, लेकिन युद्ध के समय दुश्मन के सामने सीना तान कर खड़े होने का जो साहस, शौर्य और फौलाद होता है वो दुनिया के किसी बाजार में नहीं बिकता। फौलादी जिगर तो इंसान अपने साथ लेकर पैदा होता है, और जिसके भीतर फौलादी जिगरा होता है वही परोपकार

0: के लिए, परमार्थ के लिए अपने प्राणों की आहुति देने से भी पीछे नहीं हटता। ऐसे महानायक के ही सजदे में पूरी दुनिया होती है। इजराइल की मशहूर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर तालिया जोसेफ ने कैप्टन स्मिथ के साहसिक कार्य पर इजराइल की ओर से आभार जताने के लिए जो उद्गार व्यक्त किए हैं, उसने हिंदुस्तानियों के मस्तक को गर्व से और ऊंचा कर दिया है।
1: More than 170 people made it home because of Smith. 170 families that didn't lose their loved ones because he chose to take action and fight. He chose to be a hero. And that's exactly what he is. Smith is right now dealing with the wounds caused by the terrorist and he is in critical condition. So I want to wish him speedy recovery. Refuah shlema. Thank you so much from the people of Israel for your courage and for your sacrifice. We do not take it for granted and we will never forget it.
0: निसंदेह इस घटनाक्रम के बाद हिंदुस्तान की धरती पर जन्मे और पले बढ़े कैप्टन स्मिथ महानायक के तौर पर पूरी दुनिया में सराहे जा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर ओमान का वो को पायलट है जिसके जघन्य कृत की वजह से उसके देश की फचीहत हो रही है, जबकि समूचे हिंदुस्तान को अपने इस महानायक पर गर्व की अनुभूति हो रही है। पूरी दुनिया इस हीरो की स्पीडी रिकवरी के लिए अपनी अपनी आस्था और अकीदे के मुताबिक दुआ कर रही है। उधर 140 करोड़ हिंदुस्तानी अपने महानायक को स्वस्थ और सकुशल देखने के लिए बेकरार हैं।
2: कैप्टन स्मिथ मछार वसुधैव कुटुंबकम के सनातन संस्कार के बीच पले बढ़े हैं। विकट परिस्थिति में अपनी चिंता छोड़कर दूसरों की रक्षा करने की प्रेरणा कैप्टन स्मिथ के संस्कार में है। आपको यह जानकर सुखद आश्चर्य होगा कि स्मिथ बजरंग बली के भक्त हैं। ओमानी मूल के को पायलट ने एक समय जब उनको बुरी तरह से जख्मी कर दिया था और बहुत ज्यादा खून बह जाने की वजह से वो मूर्छित होने लगे थे, तो उन्होंने हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर दिया। इसलिए नहीं कि उनकी जान संकट में थी, बल्कि इसलिए कि 174 बेगुनाह यात्रियों की जान जाने वाली थी। आसमान में की गई कैप्टन स्मिथ की प्रार्थना शायद स्वीकार हो गई, तभी तो समूचा इजराइल उनके नायकत्व से अभिभूत होकर जय हिंद का नारा बुलंद कर रहा है।

0: शरीर लहूलुहान हो, गहरे जख्मों का दर्द असह्य हो, मौत मुंह बाए सामने खड़ी हो, उसके बाद भी अगर अनजान लोगों की जिंदगी की हर चंद हिफाजत का जज्बा जाग जाए तो इसे क्या कहेंगे। ऐसे ही इंसानों को महामानव कहा जाता है और ऐसे महामानवों के आगे समूची मानवता नतमस्तक हो जाती है। विश्व के इतिहास में ये शायद पहली बार हुआ होगा जब हिंदुस्तान के बाहर किसी अन्य देश के नागरिक अपने ही देश की सरजमी पर जय हिंद का जय घोष कर गर्व की अनुभूति कर रहे हैं। कैप्टन स्मिथ के त्याग और बलिदान से अभिभूत होकर इजरायली नागरिक तेल अवीव की सड़कों पर निकलकर जय हिंद का नारा बुलंद कर रहे हैं।
1: जय हिंद।
2: अमिसाइल खाए।
1: हम आपके आभारी हैं।
2: We are from Israel and with one united voice
1: on behalf of the people of India
2: and the people of Israel,
1: we want to honor and thank Captain Smith
2: for heroically saving the lives of nearly 200 passengers.
0: वसुधैव कुटुम्बकम की सनातन प्रेरणा से अनुप्राणित कैप्टन स्मिथ ने बेहद विकट परिस्थिति में ऐसा अद्भुत जज्बा दिखाया कि हिंदुस्तान और इजराइल की सामाजिक, सांस्कृतिक और भौगोलिक भिन्नता भावनात्मक एकता का रूप लेकर समूची वसुधा को सुरभित कर रही है। इजराइल की सड़कों पर जय हिंद का नारा गूंज रहा है तो तेल अवीव से 4,696 किलोमीटर दूर अविनाशी काशी की गंगा आरती देश के इस शूरवीर के नाम समर्पित दी गई।
3: कैप्टन स्मिथ सुभाष ने जिस अदम्य साहस, धैर्य और कृतज्ञ निष्ठा का परिचय दिया है वह पूरे देश के लिए गर्व की बात है। जिस परिस्थिति में कोई भी व्यक्ति घबरा सकता था उस कठिन समय में उन्होंने अपने कर्तव्य को सर्वोपरि रखते हुए सैकड़ों यात्रियों की सुरक्षा के लिए जिस बहादुरी के साथ सामना किया वह वास्तव में प्रेरणादायक है। गंगा सेवा निधि परिवार बाबा विश्वनाथ एवं भगवती माँ गंगा से उनके जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना करती है।
0: भगवान शिव की नगरी काशी में स्मिथ के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना के साथ गंगा आरती की गई तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की पावन जन्मस्थली अयोध्या धाम में कैप्टन स्मिथ के आरोग्य और लंबी उम्र के मनोरथ के साथ साधु संतों ने हनुमान चालीसा का सस्वर पाठ किया।

0: हमारे देश के जानबाज कैप्टन स्मिथ मच्छर जी ने असाधारण व्यक्तित्व और साहस का परिचय देते हुए 174 यात्रियों को सकुशल बचाने का जो है काम किए। इसके लिए मैं इनको जो है स्वास्थ्य की कामना से, यह जल्द स्वस्थ हो इसलिए हनुमान जी महाराज के जो है हनुमान चालीसा और मंत्रों के द्वारा प्रार्थना किया हूँ। हनुमान जी महाराज हमारे ऐसे स्मित मच्छर जी को शक्ति साहस और स्वस्थ करके इनको तत्काल भारत ये आए, यही हम लोगों ने हनुमान जी से प्रार्थना किया।
1: कैसा अद्भुत संयोग है कि जिस कैप्टन स्मिथ के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना के साथ अयोध्या में हनुमान चालीसा का पाठ किया गया, उस कैप्टन ने इजराइल और जॉर्डन के सीमावर्ती क्षेत्र में 34,000 फीट की ऊंचाई पर 174 नागरिकों की रक्षा की शक्ति पाने के लिए इसी हनुमान चालीसा का पाठ किया था। ये बात खुद स्मिथ ने प्रधानमंत्री मोदी के साथ बातचीत के दौरान बताई।
2: मैं एक सिर्फ पॉजिटिविटी में, मैं जब भी मेरे को डर होता है मुझे एक ही चीज आती है, मैं सिर्फ हनुमान चालीसा बोलता हूँ। उस टाइम पे भी मैं सिर्फ हनुमान चालीसा ही बोल रहा था, अब मुझे पता है कि वो भगवान की मेरे को बचाए।
1: दरअसल ओमान मूल के को पायलट ने कॉकपिट में मौजूद क्रैश एक्स से कैप्टन स्मिथ मच्छार के सिर, सीने और हाथ में गहरे जख्म कर दिए थे। उनके जिस्म के कई हिस्सों से बेतहाशा खून निकल रहा था। एक समय ऐसा भी आया जब स्मिथ को लगा कि वे कभी भी होश में नहीं आने वाली मूर्छा में जाने वाले हैं। मूर्छित होने से पहले जैसे ही उनके मन में ये ख्याल आया कि अगर मैं मूर्छित हुआ तो इस विमान में सवार 174 यात्रियों की मौत निश्चित है, उन्होंने हनुमान चालीसा का पाठ शुरू किया और पूरी शक्ति के साथ उठकर कॉकपिट के रिलीज सिस्टम का बटन प्रेस कर दिया। जब कॉकपिट का डोर ओपन हो गया तो विमान में सवार क्रू मेंबर्स और पैसेंजर्स ने बाकी का मोर्चा संभाल लिया।
2: मैं अपनी लाइफ के लिए लड़ रहा था, बट एक ऐसा मोमेंट था जब मेरे को रियलाइज हुआ कि अगर मैंने कुछ नहीं किया, क्योंकि मैं गिर चुका था, मेरे को इतने गांव लग चुके थे कि मैं गिर चुका था नीचे, एंड उस टाइम पे मैं बोला अगर मैं नहीं उठूंगा तो मैं एंजर में 17 साल से ज्यादा उड़ा रहा, मैं पिछले 11 साल से कैप्टन हूँ और मुझे पता चलता है आंख बंद करके भी ये चार्ज में क्या हो रहा है। जब मैं नीचे गिरा हुआ था तब मुझे ऐसा सो रहा था कि एयरक्राफ्ट नीचे जा रहा है और मुझे बिल्कुल पता था कि ये एक लास्ट पुश अगर स्मिथ कर ले दरवाजा बस वही है, और तभी भी मैं मार खा ही रहा था, बस वो खोल लिया सर, बाकी सब आगे और बाकी सबकी भी उतनी उसमें रोल था, बट जान के मैं सर को बोल रहा था कि मैं अपनी जान के हिसाब से कर रहा था, बट एट द सेम टाइम मुझे इतना भी पता था कि मैं उन सबको नहीं मरने दे सकता।
1: मौत का विकराल रूप सामने खड़ा देखने के बाद भी 174 जिंदगी की चिंता करने वाले कैप्टन स्मिथ का संवेदनात्मक भाव सनातन के कायलजयी ग्रंथ मनुस्मृति के 8वें अध्याय के 15वें श्लोक से पुष्ट हो जाता है। मनुस्मृति का ये श्लोक है, धर्म्यो हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षितः, तस्मात् धर्मो न हन्तव्यो मा नो धर्मो हतो अवधीत। मनुस्मृति के इस श्लोक का अर्थ है, जो धर्म का नाश करता है धर्म उसका नाश कर देता है, और जो धर्म की रक्षा करता है धर्म भी उसकी रक्षा करता है। इसीलिए धर्म का कभी नाश नहीं होना चाहिए, ताकि नाश हुआ धर्म हमारा नाश न कर सके। मनुस्मृति के इसी श्लोक का भाव तब कैप्टन स्मिथ के मन में जागृत हो गया। उन्होंने अत्यंत विकट स्थिति में धर्म की रक्षा की और अब धर्म उनकी रक्षा कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी स्वयं अपने देश के इस साहसी सपूत की हर जरूरत का ख्याल रख रहे हैं। कैप्टन स्मिथ ने तब ये नहीं सोचा होगा कि 174 जिंदगी बचाने का उनका कर्तव्य समूचे देश की भावना का ज्वार बनकर उमड़ पड़ेगा। इसीलिए पीएम मोदी से बात करते समय वे थोड़े भावुक भी हो गए।
2: बहुत बहुत गर्व होता है, अब भी मैं तो हो रहा है मेरे पे गर्व, अब तक नहीं हो रहा था, अब हो गया सर, सॉरी क्या आपके सामने लो रहा हूँ सर।
3: स्मिथ, अगर मेरे सामने आप भावुक नहीं होंगे तो कहां होंगे।
1: गंभीर रूप से जख्मी स्मिथ का इलाज पहले सऊदी अरब के तबूक के एक अस्पताल में चल रहा था, लेकिन और बेहतर ट्रीटमेंट के लिए उन्हें एयरलिफ्ट करके अबू धाबी के सैन्य अस्पताल लाया गया। उनकी हालत में तेजी से सुधार हो रहा है और डॉक्टरों के मुताबिक वो खतरे से बाहर हैं। जिस शख्स के आरोग्य के लिए हिंदुस्तान के मंदिरों शिवालयों समेत दुनिया भर के इबादत खानों में प्रार्थनाओं का दौर चल रहा हो, उसे पूर्ण स्वस्थ होने से कौन रोक सकता है। इसमें कोई संदेह नहीं कि अपने फिनोमिनल हीरोइक एक्ट से कैप्टन स्मिथ ने हिंदुस्तान का मान पूरी दुनिया में बढ़ाया है।
4: इसी के साथ बंदे मेहदम में आज आपने देश के जाबाज पायलट स्मिथ मछार के हीरोइक एक्ट की दास्तान सुनी। अगले हफ्ते ऐसे ही किसी और बेमिसाल शख्सियत के सफरनामे के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।

0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है।
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है।
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को

0: क्या है आदित्य हृदय स्तोत्र की महिमा? आदित्य हृदय स्तोत्र के पाठ का क्या है विधान? और आदित्य हृदय स्तोत्र से मिलेंगे कौन से वरदान? जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम
8: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा।
9: फिर से संत रविदास नगर के नाम से जाना जाएगा यूपी का भदोही जिला। कारपेट एक्सपो के उद्घाटन पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ऐलान, जल्द ही सरकार की ओर से अधिसूचना होगी जारी। वाराणसी में शक्ति आराधना उत्सव की तैयारियां तेज, पश्चिम बंगाल की तर्ज पर होती है दुर्गा पूजा, मां की प्रतिमाओं को अंतिम रूप दे रहे हैं कारीगर। केदारनाथ धाम में उमड़ रहा आस्था का मेला, बड़ी संख्या में श्रद्धालु कर रहे हैं बाबा केदार के दर्शन। मुख्य द्वार और वीआईपी गेट पर भक्तों की कतार। सुहाने मौसम में हिमाचल में बढ़ी सैलानियों की संख्या, मैक्लोडगंज की सड़कों पर पर्यटकों का तांता, पर्यटन कारोबारियों की खिले चेहरे। जापान के एगा नोया में एशियन गेम्स 2026 का भव्य समापन समारोह, 2 गोल्ड और 1 सिल्वर मेडल जीतने वाली शूटर नीरू ढांडा ने थामा तिरंगा, भारतीय खिलाड़ियों ने जीते 85 गोल्ड।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम
9: एशियाई खेलों में हॉकी में गोल्ड मेडल जीतने वाली इशिका का भिवानी में हुआ स्वागत। इशिका को खुली जीप में बैठाकर परिवार ने निकाला भव्य रोड शो। स्थानीय लोगों ने नाच कर और ढोल नगाड़ों के साथ इस ऐतिहासिक स्वर्ण पदक जीत का जश्न मनाया। हॉकी की मेडलिस्ट इशिका चौधरी का भी ग्वालियर में हुआ भव्य स्वागत। एयरपोर्ट पर स्वागत के लिए बड़ी संख्या में पहुंचे लोग, पहनाई गई फूलमालाएं। एशियन गेम्स के महिला हॉकी में स्वर्ण पदक लेकर लौटी बेटियों का भव्य स्वागत, झारखंड एयरपोर्ट पर पहुंचे फैंस। बेटियों के स्वागत के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन, लोगों ने खिलाड़ियों को पहनाई फूलमाला। एयरपोर्ट पर हाथों में हॉकी लेकर पहुंचे फैंस, ढोल लगाड़ों के बीच पारंपरिक डांस की प्रस्तुति। बॉक्सिंग के पदकवीर भी लौटे स्वदेश, गोल्डन गर्ल लवलीना और परवीन का दिल्ली पर भव्य स्वागत। जापान से जीत कर लौटे अंकुश पंघाल और दूसरे खिलाड़ियों का भी जबरदस्त स्वागत, एशियाई खेलों में बढ़ाया देश का मान। जापान ने एशियाई खेलों में परचम लहराकर स्वदेश लौटी भारतीय स्क्वैश टीम, दिल्ली एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत। अनाज सिंह, तन्वी खन्ना, जोशना और शबीना रियाज ने एशियाई खेलों में मेडल पर कब्जा जमाया। इंडिविजुअल और टीम इवेंट में परफॉर्मेंस से संतुष्ट हैं अनाहत सिंह, का आने वाले इवेंट्स में बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद। तन्वी खन्ना ने भी एशियाई खेलों में परफॉर्मेंस पर जताई खुशी, जापान में कामयाबी के अनुभव को बताया बेहतरीन। भारतीय स्क्वैश खिलाड़ी अभय सिंह भी जापान से लौटे स्वदेश, अब ओलंपिक की टिकट पर निगाह है। एशियन गेम्स के पदकवीर खिलाड़ियों पर इनामों की बरसात, गोल्फ में गोल्ड मेडल जीतने वाली प्रणवी उर्स को मिलेगा 1 करोड़ रुपए का पुरस्कार। महिला गोल्फ टीम के सदस्यों को मिलेंगे 25-25 लाख रुपए, एम ग्रीन IGPL डी ने किया ऐलान। हॉकी इंडिया ने की है महिला टीम की हर खिलाड़ी को 11 लाख रुपए देने का घोषणा। ओडिशा सरकार ने भी की है हर खिलाड़ी को 11 लाख रुपए देने की घोषणा, हर सपोर्ट स्टाफ के लिए भी 5.5 लाख। महिलाओं की टीम की खिलाड़ियों को मिजोरम सरकार देगी 25-25 लाख रुपए का इनाम, टीम में शामिल है मिजोरम के 2 प्लेयर्स। जापान के नागोया में एशियाई खेल 2024 का समापन, रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन। भारतीय ध्वज वाहक बनी भारतीय महिला ट्रैप निशानेबाज नीरू ढांडा। इस बार एशियाई खेलों में केस गोल्ड सहित 85 मेडल जीतकर चौथे पायदान पर रहा भारत। एशियाई खेलों के आखिरी दिन 5 गोल्ड सहित 9 मेडल जीतकर भारत ने किया शानदार फिनिश, क्रिकेट के अलावा हॉकी, गोल्फ और तीरंदाजी में भी दिखाया कमाल। भारत ने क्रिकेट, हॉकी और कबड्डी में लगातार दूसरी बार पुरुष और महिला दोनों वर्ग में जीते खिताब। सैलानियों से गुलजार हुए हिमाचल का टूरिस्ट डेस्टिनेशन, धर्मशाला बदले मौसम का आनंद लेने के लिए बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं लोग। लंबे वीकेंड पर त्रियुंड ट्रैक पर पर्यटकों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है, इस ट्रैक पर पहली बार दिखा पर्यटकों का ऐसा हुजूम। मैक्लोडगंज में सैलानियों की बड़ी संख्या को देखते हुए पुलिस प्रशासन भी हुआ अलर्ट, ट्रैक पर जाने वाले पर्यटकों की सुरक्षा को लेकर भी विशेष व्यवस्था, सभी का पंजीकरण किया जा रहा है सुनिश्चित। बदला मौसम और सैलानी की भीड़ स्थानीय कारोबारियों के लिए लाई गुड न्यूज। गंगोत्री हर्षिल में उमड़ा सैलानियों का सैलाब, सुक्की से गंगनानी तक घंटों जाम। हर्षिल घाटी में पर्यटकों से चमका होटल और रेस्टोरेंट्स का कारोबार। केदारधाम में उमड़ रहा है आस्था का महासैलाब, मुख्य द्वार और वीआईपी गेट पर लगी भीड़। बाबा केदार के दर्शन करने के लिए भक्तों की भारी भीड़, भीड़ को व्यवस्थित करने में जुटा मंदिर प्रशासन। सूरत से सारोली इलाके में लिफ्ट में फंसे 6 लोगों का हुआ रेस्क्यू। वन्यजीव 2026 के दौरान डेजर्ट नेशनल पार्क की सूदा सरी रेंज में पहली बार कैप्टिव ब्रीडिंग से तैयार किए गए दो गोडा वर्णों को जंगल में छोड़ा गया। भारत में ये पहली बार है जब ब्रीडिंग सेंटर में तैयार गोडा वर्णों को नियंत्रण वातावरण से निकालकर सीधे प्राकृतिक पर्यावरण में भेजा गया। जंगल में छोड़े गए दोनों पर पक्षियों की गतिविधियों और खान पीन पर नजर रख रहे हैं लोग। बगहा में बाढ़ से प्रभावित परिवारों से मिलने पहुंचे केंद्रीय राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे। SGPGI लखनऊ के स्पोक हब मॉडल से जोड़ा जाएगा अयोध्या मेडिकल कॉलेज। लखनऊ में पिंक वेव रैली का आयोजन किया गया ब्रेस्ट कैंसर को लेकर अवेयरनेस। वेव रैली में 500 से ज्यादा महिलाओं ने शिरकत की। पिंक वेव रैली में एक दर्जन से ज्यादा विंटेज कारें भी शामिल हुई। लखनऊ में फिर बढ़ने लगा गोमती नदी का जलस्तर, रिवर फ्रंट के निचले इलाकों में पानी ही पानी। लखनऊ में अखिल विश्व गायत्री परिवार का प्रांतीय शिक्षक का गरिमा कार्यशाला का आयोजन, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हुए। पुरी में भगवान जगन्नाथ की हुई भव्य आरती, बड़ी संख्या में भक्तों ने दर्शन पूजन किए। श्री जगन्नाथ के दरबार में पहुंचे नागालैंड के गवर्नर नंद किशोर यादव, विधिविधान से पूजा अर्चना। तूतुकुड़ी में वन विभाग की ओर से वन्यजीव सप्ताह पर कराई गई चित्रकला प्रतियोगिता, छात्रों ने बनाई प्रकृति से जुड़े संदेश देने वाली तस्वीर। गुजरात के वलसाड अंबेटी गांव में बदल रही है तस्वीर, ग्रामीण और आदिवासी इलाकों में हो रहा है विकास। श्रीनगर में धूप खिलने के साथ सुहाना हुआ मौसम, पर्यटकों ने उठाया नजारों का लुत्फ। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में BSF बुलर अल्ट्रा रन का आयोजन किया गया, लोगों को दिया गया फिटनेस का संदेश। कश्मीर में पर्यटन को बढ़ावा देने में जुटे BSF बुलर अल्ट्रा रन के इसका मकसद है। गुरुग्राम में फिट गुरुग्राम मैराथन का आयोजन किया गया, अभिनेता मिलन सुमन ने शामिल। मुंबई में इंडियन एयरफोर्स हाफ मैराथन का आयोजन किया गया, परमवीर चक्र विजेता निर्मलजीत सिंह सेखों की याद में हुआ आयोजन। इंडियन एयरफोर्स हाफ मैराथन में बड़ी संख्या में लोगों ने शिरकत की, दिया अच्छी सेहत का संदेश। दिल्ली में सेखों इंडियन एयरफोर्स मैराथन का आयोजन किया गया, बड़ी संख्या में लोगों ने शिरकत की। एयर चीफ मार्शल APS सिंह ने सेखों इंडियन एयरफोर्स मैराथन में दिखाई हरी झंडी। जोधपुर में भी सेखो इंडियन एयरफोर्स मैराथन का आयोजन किया गया, लोगों ने फिटनेस के लिए लगाई दौड़। गुवाहाटी में भी सेखो एयरफोर्स मैराथन का आयोजन किया गया, सेना से जुड़े अधिकारियों ने हरी झंडी दिखाई। दिल्ली में 93वें संडे ऑन साइकिल रैली का आयोजन किया गया, बड़ी संख्या में लोगों ने शिरकत की। अगले साल कोलकाता में होगा 19वां प्रवासी भारतीय दिवस समारोह, 7 से 9 जनवरी तक होगा आयोजन, प्रधानमंत्री करेंगे उद्घाटन। 19वें प्रवासी भारतीय दिवस समारोह के समापन समारोह में शामिल होंगी राष्ट्रपति, प्रवासी भारतीय सम्मान करेंगे प्रदान। इम्फाल में टीबी मुक्त भारत अभियान के सिलसिले में कार्यक्रम में बांटे गए न्यूट्रिशनल फूड बास्केट। उड़ीसा के खोर्धा में स्कूल के वार्षिक समारोह में बच्चों ने लगाई साइंस प्रदर्शनी। उड़ीसा के खोर्धा में टूरिज्म को बढ़ावा देने पर जोर, राज्यपाल ने किया इलाके के मशहूर अत्री हॉट स्प्रिंग का मुआयना। ग्वालियर में महाराज बाड़ा के ऐतिहासिक गोरखी देवघर में बाबा मंसूर शाह की दरगाह पर सालाना उर्स। बाबा मंसूर शाह की दरगाह पर उर्स में दिखती है सांप्रदायिक एकता की मिसाल। साला नोट्स के सिलसिले में बाबा मंसूर शाह की दरगाह पर रौनक, की गई शानदार सजावट। असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में टूरिज्म सीजन का आगाज, जीप सफारी के लिए उमड़ने लगी भीड़। असम के वन मंत्री जयंत मल्ला बरुआ पहुंचे काजीरंगा। दुर्गा पूजा की तारीख नजदीक आते ही देश भर में तैयारियां, उनमें पकड़ी रफ्तार, प्रतिमा निर्माण और पंडालों का काम तेज। महादेव की नगरी काशी में भी पाक के स्वागत की जबरदस्त तैयारियां, अलग अलग थीमों पर आधारित हैं प्रतिमाएं। काशी में कलाकारों ने भक्तों को जागरूक करने के लिए बनाई खास मूर्तियां, बच्चों को मोबाइल से दूर रखने के लिए भी मोबाइल सुर बनाया गया। पूर्व वर्धमान के कालना के हट गाछा गांव में बन रही है मां की प्रतिमाओं को, विदेश से भी आ रहे हैं ऑर्डर्स। कलाकार तापस ने पुआल और मिट्टी से बनाई है यानों की प्रतिमाएं। चीन में धूमधाम से जारी है नेशनल डे फेस्टिवल, जगह जगह रंग बिरंगी रोशनी से सजे हैं कार्यक्रमों का हो रहा है आयोजन। चाइना इंटेंगेबल कल्चर हेरिटेज एक्सपो पार्क में किया गया शानदार लाइट फेस्टिवल का आयोजन। लालटेन प्रदर्शनी में देखने को मिली चीन की पुरानी विरासत की झलक। पिघले हुए लोहे की आतिशबाजी ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया, आग से निकलती सुनहरी चिंगारियां रात के आकाश में परत दर परत फैल गईं। लालटेन प्रदर्शनी में गोल्डन लाइट से सजा पेड़ बना आकर्षण का मुख्य केंद्र। चीन में राष्ट्रीय दिवस की छुट्टियों में हुकोउ वाटर फॉल देखने के लिए उमड़ी सैलानियों की भारी भीड़। हुकोउ वाटरफॉल चीन का दूसरा सबसे बड़ा वाटरफॉल है, पीली नदी में कई तरह के नाव शो का भी आयोजन। सैन फ्रांसिस्को प्लाजा में सैकड़ों पालतू पशु मालिक जानवरों के वार्षिक आशीर्वाद समारोह के लिए पहुंचे। फ्रांसिस्कन पुजारियों ने कुत्ते, बिल्लुओं, खरगोशों, गिनी पिग, मछलियों, मुर्गों को भी आशीर्वाद दिया। सैन फ्रांसिस्को में यह परंपरा संत फ्रांसिस ऑफ असीसी ने पशु कल्याण से जुड़े संबंधों का समापन किया। अमेरिका के न्यू मैक्सिको में लगा हॉट एयर बैलून्स का मेला, इंटरनेशनल बैलून फिएस्टा में 500 से ज्यादा गुब्बारे। शानदार ड्रोन लाइट शो के साथ साथ इंटरनेशनल बैलून फिएस्टा की ओपनिंग। न्यू मैक्सिको में 11 अक्टूबर तक चलेगा इंटरनेशनल बैलून फिएस्टा, 1972 से जारी परंपरा। चीन में शिनजियांग के इंटरनेशनल ग्रैंड बाजार में सैलानियों की भीड़। इंटरनेशनल ग्रैंड बाजार में दिखती है चीनी सांस्कृतिक विरासत की अद्भुत झलक। आयुष्मान खुराना की आने वाली कॉमेडी ड्रामा फिल्म उड़ता तीर की अगली रिलीज डेट को आगे बढ़ाया गया। अजय देवगन के करियर में सबसे तेज 100 करोड़ रुपए कमाने वाली फिल्म बन गई दृश्यम 3। फिल्म ने 2 दिनों में ही कमा डाले 200 करोड़। जावाज कैप्टन स्मिथ के फैन हुए सलमान खान, सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया। सुपरस्टार रजनीकांत अपनी अपकमिंग फिल्म धर्मन की शूटिंग के लिए पहुंचे मैसूर। फिल्म तू है मेरी किरण के प्रमोशन में जुटी सोनाक्षी सिन्हा। परिणीति चोपड़ा की नई फिल्म रिपोर्टिंग लाइव का ट्रेलर हुआ रिलीज। पत्रकार के किरदार में नजर आएंगे परिणीति। सलमान खान की फिल्म मातृभूमि को लेकर बड़ी खबर, सेंसर बोर्ड और मेकर्स की तरफ से मिली मंजूरी। पटना साहिब गुरुद्वारा पहुंची अभिनेत्री यामी गौतम, फिल्म नई नवेली को लेकर लगाई अरदास। अजय देवगन की फिल्म दृश्यम 3 रिलीज होने के मात्र 2 दिनों के भीतर ही 100 करोड़ रुपए की क्लब में शामिल। एक्ट्रेस कृतिका कामरा अपने पति गौरव कपूर के साथ ग्रीस में नजर आई, सोशल मीडिया पर शेयर किया वीडियो।
6: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर
0: है। आदित्य हृदय स्तोत्र की महिमा, आदित्य हृदय स्तोत्र के पाठ का क्या है विधान, और आदित्य हृदय स्तोत्र से मिलेंगे कौन से वरदान, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
5: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
5: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।
5: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
6: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
6: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से।
9: अमेरिका के न्यू मैक्सिको में विश्व का सबसे बड़ा हॉट एयर बैलून उत्सव अल्बुकर्क इंटरनेशनल बैलून फिएस्टा 2026 धूमधाम से शुरू हो चुका है। इस दौरान आकाश में तैरते सैकड़ों गुब्बारों के इस मनमोहक दृश्य को लाइव दिखाने के लिए दुनिया भर से लाखों लोग न्यू मैक्सिको पहुंच रहे हैं।
10: रंग बिरंगे गुब्बारों से भरा है आसमान, नील गगन पर अलग अलग रंगों और डिजाइनों वाले होटल गुब्बारों की उड़ान का ये नजारा बेहद शानदार है। ये तस्वीरें अमेरिका के न्यू मैक्सिको में चल रहे अल्बुकर्क इंटरनेशनल बलून फेस्टा की है। यहाँ सिर्फ पारंपरिक गुब्बारे नहीं बल्कि अलग अलग आकार वाले विशेष बैलून भी आकर्षण का केंद्र बने हैं। इनमें गाय जैसा दिखने वाला और मशहूर स्मोकी बेयर की झलक दिखाने वाले गुब्बारे भी शामिल हैं। न्यू मैक्सिको में गुब्बारों के उत्सव की शुरुआत तड़के खास ड्रोन लाइट शो के साथ हुई। इस शो में हॉट एयर बलून, न्यू मैक्सिको के स्टेट बर्ड ग्रेट रॉडनर, चिली पेपर और मैक्सिकन थीम वाली अनोखी आकृतियां नजर आईं। इसके बाद शुरू हुई गुब्बारों में हवा भरने की तैयारी। जब एक एक कर विशाल बलून जमीन पर आकार लेने लगे तो देखते ही देखते पूरा फिएस्टा पार्क रंगों से भर गया। सूरज उगने के साथ ही सुबह करीब 7 बजे शुरू हुए इस महोत्सव का सबसे मनमोहक वह पल था जब सैकड़ों हॉट एयर बलून एक साथ आसमान की ओर उठने लगे और फिर ऐसा लगा जैसे पूरा आसमान रंग बिरंगे गुब्बारों से ढक गया हो। इस नजारे को देखने के लिए अमेरिका ही नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने से बड़ी संख्या में लोग अल्बुकर्क इंटरनेशनल बैलून फिएस्टा पार्क पहुंचे। इस बलून महोत्सव की शुरुआत सन 1962 में महज 13 गुब्बारों के साथ हुई थी और अब ये दुनिया के सबसे बड़े बलूनिंग फेस्टिवल में शुमार हो चुका है। आयोजकों के मुताबिक इस बार 500 से ज्यादा बलून फिएस्टा में हिस्सा ले रहे हैं। इस बार 9 दिनों का ये इंटरनेशनल बलून फिएस्टा 11 अक्टूबर तक जारी रहेगा और बलूनिंग के शौकीनों को एक बार फिर से अनूठी यादें संजोने का मौका देगा। रिपोर्ट गुड न्यूज टुडे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को

0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।

0: है आदित्य हृदय स्तोत्र की महिमा। आदित्य हृदय स्तोत्र के पाठ का क्या है विधान और आदित्य हृदय स्तोत्र से मिलेंगे कौन से वरदान, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
3: एवरेस्ट दिखा ला, सही दिखा सही लाल।
4: फिर से संत रविदास नगर के नाम से जाना जाएगा यूपी का भदोही जिला। कारपेट एक्सपो के उद्घाटन पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ऐलान, जल्द ही सरकार की ओर से अधिसूचना होगी जारी। वाराणसी में शक्ति आराधना उत्सव की तैयारियां तेज, पश्चिम बंगाल की तर्ज पर होती है दुर्गा पूजा, मां की प्रतिमाओं को अंतिम रूप दे रहे हैं कारीगर। केदारनाथ धाम में उमड़ रहा आस्था का मेला, बड़ी संख्या में श्रद्धालु कर रहे हैं बाबा केदार के दर्शन, मुख्य द्वार और वीआईपी गेट पर भक्तों का तांता। सुहाने मौसम में हिमाचल में बढ़ी सैलानियों की संख्या, मैक्लोडगंज की सड़कों पर पर्यटकों का तांता, पर्यटन कारोबारियों के खिले चेहरे। जापान के एगा नोया में एशियन गेम्स 2026 का भव्य समापन समारोह, दो गोल्ड और एक सिल्वर मेडल जीतने वाले शूटर नीरू ढांडा ने थामा तिरंगा, भारतीय खिलाड़ियों ने जीते कुल 85 मेडल।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की

नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। मैं हूं आपके साथ मनीषा झा। जिस रंग को लड़कियों के रंग से जोड़कर देखा जाता है, दिल्ली पुलिस ने उसी रंग को खौफ का रंग बनाने का फैसला किया है उन लोगों के लिए जिनकी वजह से दिल्ली बदनाम है। जी हाँ, खाकी में अब पिंक रंग घोलकर एक ऐसी पिंक फोर्स बनाई गई है जो मंचलों और महिलाओं के खिलाफ अपराध करने वालों के लिए शामत बनने वाली है। दिल्ली की सड़कों पर पिंक स्कूटी में दिल्ली की ये पिंक फोर्स अब गश्त कर रही है। तो ध्यान रहे कि पिंक अब सिर्फ लड़कियों का रंग भर नहीं बल्कि दिल्ली पुलिस का भी रंग बन चुका है।

कौन नहीं चाहता कि बेटियां घर से बेखौफ निकलें, बेखौफ पढ़ें, बेखौफ खेलें और हर वो काम बेखौफ होकर करें जो वो करना चाहती हैं। और वो ये सब क्यों ना करें, ये तो उनका हक है, पैदाइशी हक। लेकिन कुछ मनचले, बदमाश और बुरी नीयत वाले लोग लड़कियों की इसी आजादी और खुशहाली के दुश्मन हैं, जो उन्हें ऐसा करने से वक्त वक्त पर रोकने की फिराक में रहते हैं। लेकिन ऐसे मनचलों और दुश्मनों को बस एक बार इस आवाज को सुनना चाहिए।

0: जी हाँ, रंग के हिसाब से आपने बिल्कुल ठीक समझा। ये पिंक कलर है, गुलाबी रंग। इस रंग को हमेशा लड़कियों से जोड़कर देखा जाता है। ये सही भी है, क्योंकि इस रंग का मतलब ही होता है मोहब्बत का रंग, शराफत का रंग, अमन सुकून, मासूमियत का रंग, माँ लक्ष्मी का रंग। जी हाँ, हमारे समाज में इसे महिलाओं का रंग कहा जाता है। और जानते हैं दिल्ली पुलिस ने खाकी में पिंक कलर घोलने का फैसला क्यों किया?
1: वो दूर से दिखाई देती हैं, इसकी वजह से हमने ये पिंक कलर है जो चूज कर रखा है, ताकि कहीं पे भी एकदम से आप देखना चाहते हैं कि बहुत सारे पुलिस वाले घूम रहे हैं, लेकिन बिकॉज ऑफ यूनिफॉर्म महिला पहचान ही नहीं जाती कि उसमें से महिला कौन सी है, तो बस उसी को ही डिनोट करने के लिए पिंक कलर यूज किया है कि दूर से भी वो पहचान में आ सके।
0: एक बार फिर दिल्ली को नजर लगाने की कोशिश की जा रही है। दिल्ली में हाल ही में कुछ ऐसे मामले सामने आए जिसने दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा पर कई सवाल खड़े कर दिए। खबर दिल्ली पुलिस के मुखिया को भी लगी। बस फिर क्या था, दिल्ली के LG तरनजीत सिंह संधु के निर्देश पर दिल्ली पुलिस ने एक ऐसी मुहिम की शुरुआत की जिससे दिल्ली की महिलाएं महफूज महसूस करें। एक ऐसी फोर्स बनाई जिसे दिल्ली की उन जगहों पर तैनात किया गया जहां लड़कियों के कदम सबसे ज्यादा दस्तक देते हैं, और मकसद था दिल्ली की बेटियां बेखौफ रह सके। महिलाओं की सुरक्षा के लिए उनकी सहेली बनकर दिल्ली पुलिस की महिला पुलिस कर्मियों की ही ड्यूटी लगा दी गई।
1: पिंक फोर्स जो आप ये टर्म बता रहे हैं, ये एक अम्ब्रेला टर्म है बेसिकली, और ये कोई नई चीज़ नहीं है जो हम लेके आ रहे हैं। आपने देखा होगा कि जो हमारे इंटीग्रेटेड हेल्प डेस्क जो हमने शुरू की थी पिछले साल, उसमें राउंड द क्लॉक हमारी एक महिला बैठी ही होती है। तो आप किसी भी टाइम जाएं, भले रात है या सुबह है, अर्ली मॉर्निंग है, तो आपको एक महिला एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम डायरेक्टली हेल्प के लिए मिलती है। फिर उसके बाद हमारे आ जाते हैं पिंक बूथ्स आ जाते हैं, कि अगर आप थाने तक नहीं पहुंच पा रहे हैं और कॉलेज के आसपास का एरिया है, या थोड़ा सा हमने ऐसी जगह पे जहाँ पे वुमेन हॉस्टल ज़्यादा है, तो वो वाली एरियाज़ में हमने पिंक बूथ्स खोल रखे हैं। तो पिंक बूथ्स भी यही है कि वहाँ पे आपको महिला पुलिसकर्मी मिलेगी। फिर आ जाते हैं हमारी पेट्रोलिंग पे, तो जैसे हमारी शिष्टाचार स्क्वाड्स हैं, हर डिस्ट्रिक्ट में हमारी दो शिष्टाचार स्क्वाड्स हैं। उसके बाद PCR वैन्स भी हैं, जहाँ पे अभी 20 हमने और निकाली हैं, तो टोटल 35 वुमेन PCR वैन्स हैं।
0: दिल्ली पुलिस कमिश्नर अनुराग कुमार खुद सुरक्षा का जायजा लेने सड़कों पर निकल पड़े। शाम के वक्त पार्क, पिंक बूथ, LSR कॉलेज, नेशनल पार्क और अरुण जेटली पार्क का दौरा कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। तो सोचिए, जब पुलिस का मुखिया खुद ही सड़कों पर है, तो बाकी फोर्स दिल्ली की सड़कों पर कितनी ज्यादा एक्टिव होगी।

0: ये दिल्ली यूनिवर्सिटी के लेडी श्रीराम कॉलेज के ठीक सामने बना पिंक बूथ है। हाल ही में सितंबर में ही इस बूथ का उद्घाटन दिल्ली पुलिस के कमिश्नर अनुराग कुमार ने किया। कॉलेज के पास ही यहाँ एक स्कूल भी है, इसीलिए लड़कियों के कदम भी यहाँ ज्यादा पड़ते हैं। जाहिर है ऐसे में इस इलाके में उनकी परेशानियाँ भी ज्यादा होंगी, लेकिन दिल्ली पुलिस के इस फोर्स की गश्ती और मौजूदगी ने यहाँ से आने जाने वाली, यहाँ पढ़ने वाली लड़कियों को मानो एक ताकत दी है। चलिए आपको इस बूथ में लिए चलती हूँ।
1: पिंक बूथ के खुलने से कहीं ना कहीं वो जो लड़कियां यहाँ से गुजरती हैं स्कूल कॉलेज की, या जो महिलाएं गुजरती हैं, उनको एक हिम्मत आती है, वो आके बताती हैं कि स्टेशन जाने में थोड़ी हिचकती हैं लेकिन यहाँ पर आने में थोड़ा सा कंफर्टेबल।
2: हाँ जी मैम, यहाँ पे आने पे कंफर्टेबल और उनको एक सेफ सा जोन महसूस होता है। वो यहाँ आके हमें उनको जो भी बात होती है वो हमसे क्लियर करती हैं और हम उनको सजेस्ट करके और एक कॉन्फिडेंस देके हम उनसे बात करते हैं। ये वाला है मैम, ये वाला सामने वाली ये बैक साइड है, कॉलेज का बैक साइड गेट है, ये पूरा रास्ता कवर करता है आगे तक। और ये वाला रोड है, ये बत्ती का रोड है मैडम, कॉलेज का मेन गेट की तरफ जाता है वो वाला रोड है, वो कवर करता है। ये वाली रोड है, ये मेट्रो स्टेशन के लिए जाती है, ये वाली कवर कर रही है। और ये पिंक बूथ के आसपास का एरिया है, जो पीछे पार्क सा बना हुआ है वो भी है और इसके पास का एरिया है।
1: तो ऐसा होता है कि यहाँ पर आप देखते हैं कोई भी ऐसी गतिविधि जो आपको लगता है संदिग्ध है, या फिर ऐसा आप कुछ देखते हैं कि कोई लड़की परेशान है या कुछ भीड़ लगी है, तो आप लोग खुद चले जाते हैं वहाँ पर देखते हैं?
2: हाँ जी मैम, अगर हमें लगता है कि कुछ लोग यहाँ घूम रहे हैं या कुछ है तो हम वहाँ जाके उनसे बात करते हैं, और हमें लगता है तो हम उनको या तो थाने भेजते हैं या फिर हम यहाँ से उनको रिमूव करते हैं।
0: इस पिंक बूथ में रोजाना कई शिकायतें आती हैं, जिस पर ये महिला पुलिसकर्मी पूरी शिद्दत के साथ अपनी ड्यूटी निभाते हुए उन्हें दूर करती हैं। दिल्ली पुलिस हेल्पलाइन नंबर के जरिए तो आप पुलिस से मदद मांग ही सकते हैं, लेकिन इसके अलावा और भी बहुत सारे माध्यम हैं जिससे आप दिल्ली पुलिस से जुड़ सकते हैं, उन तक पहुँच सकते हैं।
3: हमारा एक बहुत मेजर कंपोनेंट रहता है अवेयरनेस का, जिसमें वुमेन हेल्पलाइन नंबर्स बताते हैं। कहीं पे भी स्कूल में जाते हैं तो हम बच्चों को ये सबसे पहले 112 का नंबर रटवाते हैं, एंड उसके बियॉन्ड भी जो हमारे स्कूल ये SPC है, स्टूडेंट पुलिस कैडेट प्रोग्राम, उसमें भी हम ये बताते हैं कि अगर आपको एकदम से इमरजेंसी हो तो आप कैसे पुलिस को रीच आउट करें। हमारा सोशल मीडिया के थ्रू भी हम लोगों से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, न्यूज़पेपर्स में भी हमारी एडवर्टाइजमेंट्स जाती हैं, एंड जितनी भी हमारी MWA RWA जितनी भी मीटिंग्स होती हैं उसमें भी हम कोशिश करते हैं अपने हेल्पलाइन नंबर्स बताएं। तो हमारा जो 112 हेल्पलाइन नंबर है वहाँ पे तो एकदम से आप कनेक्ट कर सकते हैं पुलिस से, PCR वैन आएगी ही आएगी, एंड उसके बियॉन्ड हमारा 1091 है जो वुमेन हेल्पलाइन नंबर है, एंड 181 है जो आपका NCW मैन करता है।
4: दिल्ली पुलिस के पहले से ही महिलाओं की सेफ्टी के लिए 1091 नंबर है, प्लस हमारा एक तत्पर ऐप भी है जिसके थ्रू भी महिलाएं पुलिस को कनेक्ट कर सकती हैं। इसके अलावा अब हमारे साउथ डिस्ट्रिक्ट में हमारा ये पेट्रोलिंग स्क्वाड भी चल रहा है, तो आप अपने फ़ोन में तत्पर ऐप डाउनलोड कर लीजिए, उसके SOS बटन पे जाके आप वहाँ से भी पुलिस को कनेक्ट कर सकते हैं, या 1091 पे कॉल करके भी आप पुलिस को कनेक्ट कर सकते हैं। दूसरा जैसे पिंक बूथ का है, तो यहाँ पे पिंक बूथ पे ये अपना जो यहाँ के इंचार्ज हैं उनका नंबर और जो स्टाफ यहाँ पिंक बूथ पे प्रेजेंट होता है उन सबका नंबर लिखा हुआ है।
0: अब चलिए LSR कॉलेज से लिए चलते हैं आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी के ही PGDAV कॉलेज। दिल्ली पुलिस की इस पिंक फोर्स की पेट्रोलिंग टीम ने बुरी नजर वाले बदमाशों के कान तक सायरन की एक गूंज जरूर पहुंचाई है। पिंक पुलिस फोर्स की गश्ती टीम सड़कों पर पिंक स्कूटी के साथ पूरे काफिले के साथ उतरती है, तो यकीन मानिए कई किलोमीटर के दायरे में कोई मनचला बदमाश आने से भी डरता होगा।
1: तो लेडी श्रीराम कॉलेज के सामने जो पिंक बूथ है वहाँ

0: इसी तरीके से सायरन बजाते हुए, ताकि सायरन की आवाज को सुन के वो मंच ले। ऐसे लोग जो महिलाओं के खिलाफ अपराध को अंजाम देते हैं, उनके कानों तक ये सायरन पहुंचे और वो इस बात को समझ सके कि महिला पुलिस की पेट्रोलिंग टीम, ये सुरक्षा गश्ती टीम उनके आसपास है, एक्टिव है और वो इस बात पर नजर रख रही है कि कोई भी ऐसी गतिविधि इस इलाके में कम से कम ना हो जो महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध को और आगे बढ़ाए, बल्कि उसे रोके। और इसी की ये पूरी कोशिश है। देखिए, ये पिंक पुलिस फोर्स की इस टीम की, इस पेट्रोलिंग टीम की आवाज को सुनकर ही आसपास के इलाके तक ये संदेश एक तरीके से पहुंच रहा है कि यहाँ पर किसी भी तरीके का कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं होने देंगे। ये एक्टिवनेस इस समय दिल्ली पुलिस की पूरे दिल्ली में नजर आ रही है। और सोचिए, जब रास्ते पर, जब सड़क पर महिलाओं की ऐसी टीम निकले जिनके पास रंग पिंक हो, लेकिन इस पिंक कलर में वो खौफ उन लोगों को दिखाई दे जो महिलाओं के खिलाफ अपराध करने के बारे में सोचते भी हैं, और ऐसी कोई भी तस्वीर फिर से दिल्ली में सामने ना आए, इसको लेकर पूरी दिल्ली पुलिस की टीम जो है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गई है, गंभीर है। और इसीलिए ये गश्ती टीम जो इस वक्त आप देख रहे हैं, ये सड़कों पर ऐसे ही तैनात है, ऐसे ही गश्त कर रही है।
1: दिल्ली यूनिवर्सिटी के इस कॉलेज के सामने बना ये पिंक बूथ भी स्टूडेंट्स को एक हिम्मत दे रहा है। ये इलाका भी संवेदनशील है, इसीलिए यहाँ इस बूथ को बनाया गया है।

0: पीजीडीएवी कॉलेज के सामने ये पिंक बूथ है और ये बहुत ज्यादा सेंसिटिव एरिया है। पीजीडीएवी कॉलेज दो शिफ्ट्स में चलता है, गर्ल्स बॉयज दोनों आते हैं, कोएड है, तो इसीलिए यहाँ पर केसेस ज्यादा होने की संभावना है। तो ये एक सेंसिटिव पुलिस स्टेशन है, यहाँ पर इस बूथ में आएंगे, जानेंगे यहाँ पर किस तरह की शिकायतें आती हैं, क्या क्या परेशानी होती है और यहाँ पर इस बूथ को लॉन्च करने के बाद क्या रिएक्शन है। मैम, यहाँ पर जब ये बूथ लॉन्च हुआ उसके बाद से अब तक क्या रिएक्शन है, कंप्लेंट्स कैसी आ रही है?
1: मैम, यहाँ पे मतलब ये पिंक बूथ स्पेशली लड़कियों के लिए बनाया गया है। अगर लड़कियों को प्रॉब्लम होती है अपनी बाहर बात कहने में तो हमें बाहर नंबर मेंशन कर रखे, उन नंबर पे कॉल करके हमें बता सकती है हमें ये प्रॉब्लम है। अगर लड़कियों को थाने जाने में प्रॉब्लम है तो वो पिंक बूथ आके अपनी प्रॉब्लम बताती है। हम उनको ये आश्वासन देते हैं कि उनके नाम नंबर कहीं रिलीव नहीं होंगे और उनके जो भी उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा।
2: दिल्ली पुलिस के हेल्पलाइन नंबर पर अगर कोई कॉल नहीं करना चाहता, पुलिस स्टेशन या बूथ तक भी नहीं आना चाहता, तो ऐसी सूरत में भी उनकी परेशानी को सुनकर समझकर दिल्ली पुलिस का ये स्टाफ उनके घर तक पहुंचकर उनसे बात करते हैं।
3: हाँ मैडम, बताइए क्या परेशानी है आपको।
2: अगर कुछ बात परेशान कर रही है तो ऐसी सूरत में भी आप दिल्ली पुलिस पिंक बूथ के पुलिस कर्मियों को संपर्क कर सकते हैं। ये सिर्फ दिल्ली पुलिस के पुलिसकर्मी नहीं बल्कि आपकी सहेली बनकर आपकी बात को सुने।
4: कि लड़कियों का ना बहुत सारा टाइम ना डाउट में निकल जाता है कि कंप्लेंट करें या ना करें, तो ज़रूरी नहीं है कि पुलिस के पास आपको सिर्फ एक कंप्लेंट करने के लिए आना है। कभी कभार ना अपनी जो झिझक है सिर्फ बताने के लिए कि मुझे ये सस्पिशन हो रहा है कि ऐसा कुछ मेरे साथ हो तो नहीं रहा, तो विदाउट इवन लाइक अगर आपको कोई आगे एक्शन नहीं भी लेना तो भी हम हेल्प करते हैं। तो आपको इमीजिएटली जो हेल्प चाहिए होती है, जो आप अपने फ्रेंड से बात करते हैं, आप हमको भी रीच आउट कर सकते हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि एक टाइम निकलने के बाद फिर आप जब पीक आती है ना लड़कियों की लाइफ में, बिकॉज बीइंग अ वुमेन आई कैन अंडरस्टैंड, तब जाके पुलिस के पास आते हैं। तो मैं ये मिथ तोड़ना चाहती हूँ कि आप एनी पॉइंट ऑफ टाइम आपको लगता है कि सिर्फ बात करनी है मुझे अपनी प्रॉब्लम की, मेरी प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर रही है, वो मेरा कोई ऐसा सस्पिशन तो नहीं है, तो भी आप आ सकते हैं।
5: कि पिंक बूथ पे भी अगर कोई नहीं आना चाहता कि मैं पिंक बूथ पे नहीं, तो आप यहाँ से नंबर नोट कर लीजिए। वो नंबर नोट करके कई बार जैसे अभी आपने देखा कॉल आया, तो ऐसी लड़कियाँ वैसे भी डायरेक्ट कॉल करती कि मैम मेरी ये समस्या, मैं आना नहीं चाहती बट मेरी हेल्प करो आप। तो हमारे स्टाफ, जो हमारी फीमेल स्टाफ यहाँ पिंक बूथ पे है, उनको घर जाती है या बीट ऑफिसर को उनके पास भेजती है, जैसा इशू होता है उसके हिसाब से हम उसको डील करते हैं, उनको 100% उनका जो भी इशू होता है उसको सॉर्ट आउट करते हैं।
1: कुछ ऐसी प्रॉब्लम होती है जो अगर पिंक बूथ पे भी नहीं आना चाहती है और थाने में भी जाके अपनी प्रॉब्लम नहीं शेयर करना चाहती है, तो हम बीट स्टाफ के थ्रू उनके घर जाते हैं, घर जाके उनकी प्रॉब्लम सुनते हैं, फिर उनका सॉल्यूशन देते हैं।
3: लेकिन अगर कोई उसमें बताना नहीं चाहता है तो हमने नंबर दे रखी है बाहर, उस पर वो कॉल करके बता सकते हैं और फिर हम उनके घर जाके डायरेक्ट सॉल्व करते हैं उनकी प्रॉब्लम।
6: अगर लगता है ऐसा कि किसी लड़कियों को मतलब थाने में जाने में प्रॉब्लम है या था मतलब 112 नंबर कॉल करने में प्रॉब्लम है, तो हम बीट स्टाफ को भेजते हैं, उनके घर पे जाके पूछते हैं। खुद लड़कियां वुमेन स्टाफ जाती है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल।

0: पुलिस उन सारी जगहों की पहचान कर जहां मनचले सबसे ज्यादा लड़कियों को परेशान करते हैं या जो भीड़भाड़ वाला इलाका है वहां सबसे ज्यादा पुलिस की पेट्रोलिंग होती है। ऐसी जगहों की पहले से ही पहचान कर पुलिस की तैयारी पूरी रहती है।
1: हॉटस्पॉट का जो सर्वे हमारा चलता ही रहता है, हर महीने होता है, तो उसके अंदर हमारे कुछ, जैसे आप किसी भी चीज़ का सर्वे करते हैं तो आप कुछ क्राइटेरियाज रखते हैं, तो वो क्राइटेरियाज यूजुअली यही होते हैं जहाँ पे आपको रात के बाद सुनसान हो जाती है रोड, या ट्रांसपोर्ट हब है वहाँ पे पार्किंग हो जाती है, फिर एक विजिबिलिटी कम हो जाती है, फिर पीजीज है, हॉस्टल्स हैं वहाँ का एरिया हमारे हॉटस्पॉट में आता है, जैसे सीसीटीवी कवरेज नहीं है वो भी हॉटस्पॉट में आता है, तो इसी पैरामीटर्स को ध्यान में रख के हमारे हॉटस्पॉट मैपिंग होती है।
0: अगर आप कहीं सुनसान सड़क पर हैं, किसी परेशानी में हैं, तो भी आप मदद के लिए इस फोर्स तक पहुंच सकते हैं। महिला पीसीआर आपकी मदद के लिए वहां भी तैयार है।
1: जैसे लेट इवनिंग हो जाती है या कभी किसी लड़की को कहीं पे गाड़ी नहीं मिल पा रही है, सो वो 112 पे कॉल करके वुमेन पीसीआर भी मंगवा सकती हैं। वुमेन पीसीआर में बस यही हो जाता है कि लेडी स्टाफ बैठा होता है, तो वो कहीं पे भी ड्रॉप भी करना है अगर किसी को ज़रूरतमंद हो तो वो वहाँ पे से ड्रॉप भी कर सकते हैं। जिन जिन ने 112 पे कॉल किया है उसी से ही पता चल जाएगा कि कितना इजी है, इट इज़ जस्ट अ नंबर अवे। तो आपको सबसे पहले अगर कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है आप 112 पे कॉल करके बात कर लीजिए, वहाँ का भी स्टाफ ट्रेंड होता है एंड उसमें भी हमारे मैक्सिमम हमने लड़कियों को ही रखा है कि बात करने में इमीजिएटली कुछ हो तो। आपको लग रहा है बस मुझे सेफ ही नहीं हो रहा, आप 112 पे कॉल कर लीजिए, जो नियरेस्ट पीसीआर होती है उसके पास वो कॉल जाती है एंड वो पीसीआर आ जाएगी आपके पास। अगर आपको नहीं भी बैठना कोई दिक्कत नहीं है, आप बस उनसे कह दीजिए मुझे ये स्ट्रेच क्रॉस करा दें, वो आपको स्ट्रेच भी क्रॉस करा देंगे, वो उतर के भी करा देंगे, गाड़ी में पीछे पीछे फॉलो भी कर लेंगे।
0: दिल्ली पुलिस की इसी पिंक फोर्स में कुछ टीम शिष्टाचार स्क्वाड की भी है, जो पेट्रोलिंग से इतर पार्क, बाजार, मार्केट, बस और भीड़ भाड़ वाले इलाकों में लड़कियों पर फप्पियां कसने और छेड़ने वाले लफंगों को सबक सिखाती है।
2: हमारे दो शिष्टाचार की टीमें भी हैं जो किसी हर पॉइंट ऑफ टाइम पे कहीं ना कहीं होती है, या तो किसी बस स्टैंड पे होंगी, किसी बस को चेक कर रही होंगी, किसी पार्क में होंगी, किसी कॉलेज के बाहर मिलेंगी, किसी स्कूल के बाहर मिलेंगी, किसी मेट्रो स्टेशन के बाहर मिलेंगी, तो वहाँ भी अगर शिष्टाचार, हमारी जो शिष्टाचार टीम है वो भी जो जहाँ पे मिलता है उनको ये ब्रीफ करते हैं कि आपको कभी भी कोई परेशानी हो, आपको कोई शिष्टाचार की टीम दिख जाती है, कोई पुलिस ऑफिशियल दिखता है, तो आप उसको इमीडिएटली बताइए।
3: जब भी कोई लेडीज है कहीं पे भी, जैसे भीड़भाड़ वाला एरिया होता है, मेट्रो स्टेशन, बस स्टॉप, पार्क, कॉलेज, स्कूल वगैरह, कहीं पे भी जो एरिया होता है जहाँ लेडीज लगते हैं कि हमें यहाँ पे हम अनसेफ है, यहाँ से हम जा नहीं सकते, तो यहाँ वहाँ पे किसी भी तरह की बॉयज रिलेटेड कोई भी दिक्कत होती है, एनी प्रॉब्लम, जैसे कोई रोकना, फॉलो करना, कमेंट्स करना, इशाराबाजी करना, झुंड में इकट्ठा हो जाना, तो उनको ये बताया जाता है कि आप किसी भी तरह आप इनसे डरे ना, कोई भी परेशानी होती है तो आप कोई भी लोकल पुलिस होती है तो उनको बताइए, पुलिस नहीं होती है तो पीसीआर गाड़ी होती है तो उनको बताइए, बट पीसीआर गाड़ी भी नहीं होती है तो आप 1091 पे आप कॉल कर सकते हो, ये वुमेन हेल्पलाइन नंबर है आपकी सेफ्टी के लिए, इस पर जल्दी हेल्प मिलेगी और आप सेफ रह सकोगे।
4: छोटी छोटी बच्चे होती हैं, स्कूल से आती हैं जाती हैं, तो लड़के खड़े रहते हैं, उनको कमेंट्स करते हैं तो हम जाते हैं तो लड़कियों को समझाते हैं उनको कि अगर ऐसी कोई भी दिक्कत है तो नियर बाय जैसे पुलिस स्टेशन है, पीसीआर गाड़ी भी है, हमारी गाड़ी भी खड़ी रहती है, अगर उनको ये भी नहीं है तो आप 112 पे कॉल भी कर सकते हो।
5: भी हम पार्क में या कहीं भी मेट्रो वेट्रो पे जाते हैं तो जो भी मनचले होते हैं हमें देख के भाग भी जाते हैं, और हम लड़कियों से हम कॉल बात करते हैं, हम उन्हें बताते हैं कि इनसे डरने की ज़रूरत नहीं होती। अब कई बार ऐसे होता है कि हम ऐसा सोच लेते हैं कि सोसाइटी में पता चल जाएगा तो हमारी बात बन जाएगी, तो ऐसे सोचने की जरूरत नहीं है, आपकी आईडी पूरी तरीके से हाइड रखी जाएगी, आप कहीं भी नियर बाय थाने में जाके कंप्लेन कर सकते हो।
6: टीनेजर्स गर्ल्स हैं उनको रास्ते में ज़्यादा दिक्कत होती है, स्कूल जब स्कूल ख़त्म होता है तो हम उन स्पॉट्स पे जाके एटलीस्ट हाफ एन आवर रुकते हैं, वहाँ पे देखते हैं कि उनको कोई परेशानी ना हो। जैसे पार्क्स हैं, पार्क्स में भी कुछ शाम को ज़्यादातर ऐसे देखा जाता है कि कुछ लड़के आ जाते हैं जो कॉमेंट्स करते हैं या फिर कुछ भी बोल जाते हैं, उनको लेके हम महिलाओं को गाइड करते हैं कि आपको इनसे नहीं डर के हमें बताना है। या
0: तो अब दिल्ली की सड़कों पर कभी पिंक स्कूटी पर नजर पड़ जाए तो बस इतना भर याद रखिएगा कि उनकी नजरों के सामने आपकी नजरें जरा सी भी बहक तो ये पिंक फोर्स आपको गुलाबी से लाल कर देंगी। महिलाओं की सुरक्षा के लिए दिल्ली पुलिस की सबसे नई पहल दिल्ली पुलिस पिंक फोर्स के साथ आज की इस खास पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया के तमाम अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे।

0: कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
0: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से।
6: देखिए 11 अक्टूबर से शारदीय नवरात्र का शुभारंभ होने वाला है, उससे पहले शहर शहर तैयारियां भी जोर पकड़ रही हैं। आपको दिखाते हैं झांसी की रिपोर्ट, जहां पर बंगाली शैली में मां दुर्गा की इको फ्रेंडली प्रतिमाएं बनाई जा रही हैं और उनकी डिमांड भी खूब है।

0: शारदीय नवरात्र का पर्व करीब आ रहा है, तो माँ दुर्गा की भव्य प्रतिमाओं को अंतिम रूप देने का काम तेजी से चल रहा है। मूर्तिकार दिन रात लगकर प्रतिमाओं को तैयार करने में जुटे हुए हैं। ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश के झांसी की है। यहाँ पर पिछले करीब 34 वर्ष से एक बंगाली परिवार माँ दुर्गा की प्रतिमाएं तैयार कर रहा है। इन प्रतिमाओं का पारंपरिक स्वरूप ही इनकी खास पहचान है। अहम बात यह है कि प्रतिमाओं के निर्माण और श्रृंगार में इस्तेमाल होने वाले सामान कोलकाता से ही मंगाए जाते हैं और विशेष रूप से ये ध्यान रखा जाता है कि इनसे पर्यावरण को कोई नुकसान न हो।
1: यहाँ पे जो भी मूर्ति बनता है सब प्योर मिट्टी का बनता है, ना पीओपी यूज होता है, ना कुछ मतलब जो हार्मफुल वाला जो कलर होता है उस टाइप का कोई कलर भी नहीं यूज करते। हम पूरा जो इको फ्रेंडली कलर होता है उस टाइप का कलर भी यूज करते हैं, पूरा मिट्टी का बनाते हैं। और जो हमारा सिंगार वगैरह भी जो होता है वो सब कलकत्ता से आता है। और मिट्टी वगैरह हम जो 4-5 प्रकार का मिट्टी यूज करते हैं उसमें से 2-3 प्रकार का मिट्टी हम कलकत्ता से ले आते हैं, बाकी जो काली मिट्टी और इधर का लाल मिट्टी वो इधर से ही लेते हैं। और इसीलिए हम लोगों का मिट्टी और मूर्ति क्या है जो भी होता है वो ज्यादा से ज्यादा घास और मिट्टी से ही बना हुआ है। इसमें ना कोई पीओपी का यूज है, हल्का भी होता है और पानी में जाने के साथ साथ एक गल भी जाता है जल्दी से जल्दी। इसीलिए हम लोगों का मूर्ति में ऐसा कोई हार्मफुल केमिकल या फिर वो प्लास्टर ऑफ पेरिस का नहीं यूज होता है इसमें।
0: झांसी की इस वर्कशॉप में मूर्तियां बनाने का काम नवरात्र से 4-5 महीने पहले ही शुरू हो जाता है। कम से कम 12-14 कारीगर इसमें लगे रहते हैं। शुरुआती दौर में बड़ी संख्या में कारीगर प्रतिमाओं का ढांचा बनाने और मिट्टी लगाने का काम करते हैं। इसके बाद प्रतिमाओं की फिनिशिंग, रंगाई और श्रृंगार का काम शुरू होता है। कोलकाता की पारंपरिक शैलियों में बनाई जाने वाली इन प्रतिमाओं की यहाँ पर खास डिमांड है।
2: मूर्ति दुर्गा जी मूर्ति पुराना स्टाइल छोड़ के अब जाएगा ना, ज्यादा दिन टिकेगा नहीं। जो परंपरा चल रहा है वही हिसाब से चलना पड़ेगा। ओरिजिनल कैसे कलकत्ता होता है ठीक वैसा ही करता है काम।
0: मूर्तिकारों की माने तो इस बार यहाँ पर माँ दुर्गा की करीब 200 प्रतिमाएं तैयार की गई है। इनमें से लगभग 90% प्रतिमाएं पहले ही बुक हो चुकी हैं। बंगाली पैटर्न की इन प्रतिमाओं की मांग झांसी के अलावा बुंदेलखंड के दूसरे इलाकों में भी है। लिहाजा माँ दुर्गा की ये प्रतिमाएं इस बार इलाके के ज्यादातर पंडालों की शोभा बढ़ाती नजर आएंगी। झांसी से अजय झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें।
4: क्या है आदित्य हृदय स्तोत्र की महिमा? आदित्य हृदय स्तोत्र के पाठ का क्या है विधान और आदित्य हृदय स्तोत्र से मिलेंगे कौन से वरदान, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
5: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
6: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
5: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
7: और दुर्भाग्य कहता है
8: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है
5: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
9: गुड न्यूज टुडे।
5: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
2: फिर से संत रविदास नगर के नाम से जाना जाएगा यूपी का भदोही जिला। कारपेट एक्सपो के उद्घाटन पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ऐलान, जल्द ही सरकार की ओर से अधिसूचना होगी जारी। वाराणसी में शक्ति आराधना उत्सव की तैयारियां तेज, पश्चिम बंगाल की तर्ज पर होती है दुर्गा पूजा, मां की प्रतिमाओं को अंतिम रूप दे रहे हैं कारीगर। केदारनाथ धाम में उमड़ रहा है आस्था का मेला, बड़ी संख्या में श्रद्धालु कर रहे हैं बाबा केदार के दर्शन, मुख्य द्वार और वीआईपी गेट पर भक्तों की कतार। सुहाने मौसम हिमाचल में बढ़ी सैलानियों की संख्या, मैकलोडगंज की सड़कों पर पर्यटकों का तांता, पर्यटन कारोबारियों के खिले चेहरे। जापान के एगा नोया में एशियन गेम्स 2026 का भव्य समापन समारोह, दो गोल्ड और एक सिल्वर मेडल जीतने वाली शूटर नीरू ढांडा ने थामा तिरंगा, भारतीय खिलाड़ियों ने जीते कुल 85 मेडल्स।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो।
2: एशियाई खेलों में हॉकी में गोल्ड मेडल जीतने वाली इशिका का भिवानी में हुआ स्वागत। इशिका को खुली जीप में बैठाकर परिवार ने निकाला भव्य रोड शो, स्थानीय लोगों ने नाच कर और ढोल नगाड़ों के साथ इस ऐतिहासिक स्वर्ण पदक जीत का जश्न मनाया। हॉकी की मेडलिस्ट इशिका चौधरी का भी ग्वालियर में हुआ भव्य स्वागत। एयरपोर्ट पर स्वागत के लिए बड़ी संख्या में पहुंचे लोग, पहनाई गई फूलमालाएं। एशियन गेम्स के महिला हॉकी में स्वर्ण पदक लेकर लौटी बेटियों का भव्य स्वागत, झारखंड एयरपोर्ट पर पहुंचे फैंस। बेटियों के स्वागत के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन, लोगों ने खिलाड़ियों को पहनाई फूलमाला। एयरपोर्ट पर हाथों में हॉकी लेकर पहुंचे फैंस, ढोल नगाड़ों के बीच पारंपरिक डांस की प्रस्तुति। बॉक्सिंग के पदक वीर भी लौटे स्वदेश, गोल्डन गर्ल लवलीना और परवीन का दिल्ली पर भव्य स्वागत। जापान से जीत कर लौटे अंकुश पंघाल और दूसरे खिलाड़ियों का भी जबरदस्त स्वागत, एशियाई खेलों में बढ़ाया देश का मान। जापान ने एशियाई खेलों में परचम लहराकर स्वदेश लौटी भारतीय स्क्वैश टीम, दिल्ली एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत। अनाज सिंह, तन्वी खन्ना, जोशना और शमीना रियाज ने एशियाई खेलों में मेडल पर कब्जा जमाया। इंडिविजुअल और टीम इवेंट में परफॉर्मेंस से संतुष्ट हैं अनाहत सिंह, आने वाले इवेंट्स में बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद। तन्वी खन्ना ने भी एशियाई खेलों में परफॉर्मेंस पर जताई खुशी, जापान में कामयाबी के अनुभव को बताया बेहतरीन। भारतीय स्क्वैश खिलाड़ी अभय सिंह भी जापान से लौटे स्वदेश, अब ओलंपिक के टिकट पर निगाह है। एशियन गेम्स के पदकवीर खिलाड़ियों पर इनामों की बरसात, गोल्फ में गोल्ड मेडल जीतने वाली प्रणवी उर्स को मिलेगा 1 करोड़ रुपए का पुरस्कार। महिला गोल्फ टीम के सदस्यों को मिलेंगे 25-25 लाख रुपए, एम ग्रीन IGPL डी ने किया ऐलान। हॉकी इंडिया ने की है महिला टीम की हर खिलाड़ी को 11 लाख रुपए देने का घोषणा। ओडिशा सरकार ने भी की है हर खिलाड़ी को 11 लाख रुपए देने की घोषणा, हर सपोर्ट स्टाफ के लिए भी 5.5 लाख। महिलाओं की टीम की खिलाड़ियों को मिजोरम सरकार देगी 25-25 लाख रुपए का इनाम, टीम में शामिल है मिजोरम के 2 प्लेयर्स। जापान के नागोया में एशियाई खेल 2026 का समापन, रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन। भारतीय ध्वज वाहक बनी भारतीय महिला ट्रैप निशानेबाज नीरू ढांडा। इस बार एशियाई खेलों में केस गोल्ड सहित 85 मेडल जीतकर चौथे पायदान पर रहा भारत। एशियाई खेलों के आखिरी दिन 5 गोल्ड सहित 9 मेडल जीतकर भारत ने किया शानदार फिनिश। क्रिकेट के अलावा हॉकी, गोल्फ और तीरंदाजी में भी दिखाया कमाल। भारत ने क्रिकेट, हॉकी और कबड्डी में लगातार दूसरी बार पुरुष और महिला दोनों वर्ग में जीते खिताब। सैलानियों से गुलजार हुए हिमाचल का टूरिस्ट डेस्टिनेशन। धर्मशाला बदले मौसम का आनंद लेने के लिए बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं लोग। लंबे वीकेंड पर त्रियुंड ट्रैक पर्यटकों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। इस ट्रैक पर पहली बार दिखा पर्यटकों का ऐसा हुजूम। मैक्लोडगंज में सैलानियों की बड़ी संख्या को देखते हुए पुलिस प्रशासन भी हुआ अलर्ट। ट्रैक पर जाने वाले पर्यटकों की सुरक्षा को लेकर भी विशेष व्यवस्था। सभी का पंजीकरण किया जा रहा है सुनिश्चित। बदला मौसम और सैलानी की भीड़ स्थानीय कारोबारियों के लिए लाई गुड न्यूज। गंगोत्री हटशिल में उमड़ा सैलानियों का सैलाब। सुक्की से गंगनानी तक घंटों जाम। हर्षर घाटी में पर्यटकों से चमका होटल और रेस्टोरेंट्स का कारोबार। केदारधाम में उमड़ रहा है आस्था का महा सैलाब। मुख्य द्वार और वीआईपी गेट पर लगी भीड़। बाबा केदार के दर्शन करने के लिए भक्तों की भारी भीड़। भीड़ को व्यवस्थित करने में जुटा मंदिर प्रशासन। सूरत से सारोली इलाके में लिफ्ट में फंसे 6 लोगों का हुआ रेस्क्यू। वन्यजीव 2026 के दौरान डेजर्ट नेशनल पार्क की सूदा सरी रेंज में पहली बार कैप्टिव ब्रीडिंग से तैयार किए गए 2 गोडा वर्णों को जंगल में छोड़ा गया। भारत में यह पहली बार है जब ब्रीडिंग सेंटर में तैयार गोडा वर्णों को नियंत्रण वातावरण से निकालकर सीधे प्राकृतिक पर्यावरण में भेजा गया। जंगल में छोड़े गए दोनों पर पक्षियों की गतिविधियों और खान पीन पर नजर रख रहे हैं लोग। बगहा में बाढ़ से प्रभावित परिवारों से मिलने पहुंचे केंद्रीय राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे। SGPGI लखनऊ के स्पोक हब मॉडल से जोड़ा जाएगा अयोध्या मेडिकल कॉलेज। लखनऊ में पिंक वेव रैली का आयोजन किया गया। ब्रेस्ट कैंसर को लेकर अवेयरनेस। वेव रैली में 500 से ज्यादा महिलाओं ने शिरकत की। पिंक वेव रैली में एक दर्जन से ज्यादा विंटेज कारें भी शामिल हुई। लखनऊ में फिर बढ़ने लगा गोमती नदी का जलस्तर। रिवर फ्रंट के निचले इलाकों में पानी ही पानी। लखनऊ में अखिल विश्व गायत्री परिवार का प्रांतीय शिक्षक का गरिमा कार्यशाला का आयोजन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हुए। पुरी में भगवान जगन्नाथ की हुई भव्य आरती। बड़ी संख्या में भक्तों ने दर्शन पूजन किए। श्री जगन्नाथ के दरबार में पहुंचे नागालैंड के गवर्नर नंद किशोर यादव। विधिविधान से पूजा अर्चना। तूतुकुड़ी में वन विभाग की ओर से वन्यजीव सप्ताह पर कराई गई चित्रकला प्रतियोगिता। छात्रों ने बनाई प्रकृति से जुड़े संदेश देने वाली तस्वीर। गुजरात के वलसाड अंबेटी गांव में बदल रही है तस्वीर। ग्रामीण और आदिवासी इलाकों में हो रहा है विकास। श्रीनगर में धूप खिलने के साथ सुहाना हुआ मौसम। पर्यटकों ने उठाया नजारों का लुत्फ। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में BSF वुलर अल्ट्रा रन का आयोजन किया गया। लोगों को दिया गया फिटनेस का संदेश। कश्मीर में पर्यटन को बढ़ावा देने में जुटे BSF वुलर अल्ट्रा रन के इसका मकसद है। गुरुग्राम में फिट गुरुग्राम मैराथन का आयोजन किया गया। अभिनेता मिलन सुमन ने शामिल। मुंबई में इंडियन एयरफोर्स हाफ मैराथन का आयोजन किया गया। परमवीर चक्र विजेता निर्मलजीत सिंह सेखों की याद में हुआ आयोजन। इंडियन एयरफोर्स हाफ मैराथन में बड़ी संख्या में लोगों ने शिरकत की, दिया अच्छी सेहत का संदेश। दिल्ली में सीखों इंडियन एयरफोर्स मैराथन का आयोजन किया गया, बड़ी संख्या में लोगों ने शिरकत की। एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने सीखों इंडियन एयरफोर्स मैराथन में दिखाई हरी झंडी। जोधपुर में भी सेखो इंडियन एयरफोर्स मैराथन का आयोजन किया गया, लोगों ने फिटनेस के लिए लगाई दौड़। गुवाहाटी में भी सेखो एयरफोर्स मैराथन का आयोजन किया गया, सेना से जुड़े अधिकारियों ने हरी झंडी दिखाई। दिल्ली में 93वें संडे ऑन साइकिल रैली का आयोजन किया गया, बड़ी संख्या में लोगों ने शिरकत की। अगले साल कोलकाता में होगा 19वां प्रवासी भारतीय दिवस समारोह, 7 से 9 जनवरी तक होगा आयोजन, प्रधानमंत्री करेंगे उद्घाटन। 19वें प्रवासी भारतीय दिवस समारोह के समापन समारोह में शामिल होंगी राष्ट्रपति, प्रवासी भारतीय सम्मान करेंगे प्रदान। इम्फाल में टीबी मुक्त भारत अभियान के सिलसिले में कार्यक्रम में बांटे गए न्यूट्रिशनल फूड बास्केट। ओडिशा के खोर्धा में स्कूल के वार्षिक समारोह में बच्चों ने लगाई साइंस प्रदर्शनी। ओडिशा के खोर्धा में टूरिज्म को बढ़ावा देने पर जोर, राज्यपाल ने किया इलाके के मशहूर अत्री हॉट स्प्रिंग का मुआयना। ग्वालियर में महाराज बाड़ा के ऐतिहासिक गोरखी देवघर में बाबा मंसूर शाह की दरगाह पर सालाना उर्स। बाबा मंसूर शाह की दरगाह पर उर्स में दिखती है सांप्रदायिक एकता की मिसाल। सालाना उर्स के सिलसिले में बाबा मंसूर शाह की दरगाह पर रौनक की गई शानदार सजावट। असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में टूरिज्म सीजन का आगाज, जीप सफारी के लिए उमड़ने लगी भीड़। असम के वन मंत्री जयंत मल्ला बरुआ पहुंचे काजीरंगा। दुर्गा पूजा की तारीख नजदीक आते ही देश भर में तैयारियां, उनमें पकड़ी रफ्तार, प्रतिमा निर्माण और पंडालों का काम तेज। महादेव की नगरी काशी में भी पाक के स्वागत की जबरदस्त तैयारियां, अलग अलग थीमों पर आधारित हैं प्रतिमाएं। काशी में कलाकारों ने भक्तों को जागरूक करने के लिए बनाई खास मूर्तियां, बच्चों को मोबाइल से दूर रखने के लिए भी मोबाइल सुर बनाया गया। पूर्व वर्धमान के कालना के हट गाछा गांव में बन रही है मां की प्रतिमाओं को, विदेश से भी आ रहे हैं ऑर्डर्स। कलाकार तापस ने पुआल और मिट्टी से बनाई है ये अनोखी प्रतिमाएं। चीन में धूमधाम से जारी है नेशनल डे फेस्टिवल, जगह जगह रंग बिरंगी रोशनी से सजे हैं कार्यक्रमों का हो रहा है आयोजन। चाइना इंटेंगेबल कल्चर हेरिटेज एक्सपो पार्क में किया गया शानदार लाइट फेस्टिवल का आयोजन। लालटेन प्रदर्शनी में देखने को मिली चीन की पुरानी विरासत की झलक। पिघले हुए लोहे की आतिशबाजी ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया, आग से निकलती सुनहरी चिंगारियां रात के आकाश में परत दर परत फैल गईं। लालटेन प्रदर्शनी में गोल्डन लाइट से सजा पेड़ बना आकर्षण का मुख्य केंद्र। चीन में राष्ट्रीय दिवस की छुट्टियों में हुकोउ वाटरफॉल देखने के लिए उमड़ी सैलानियों की भारी भीड़। हुकोउ वाटरफॉल चीन का दूसरा सबसे बड़ा वाटरफॉल है, पीली नदी में कई तरह के नाव शो का भी आयोजन। सैन फ्रांसिस्को प्लाजा में सैकड़ों पालतू पशु मालिक जानवरों के वार्षिक आशीर्वाद समारोह के लिए पहुंचे फ्रांसिस्कन पुजारियों ने कुत्ते, बिल्लियों, खरगोशों, गिनी पिग, मछलियों, मुर्गों को भी आशीर्वाद दिया। सैन फ्रांसिस्को में यह परंपरा संत फ्रांसिस ऑफ असीसी ने पशु कल्याण से जुड़े संबंधों का समापन किया। अमेरिका के न्यू मैक्सिको में लगा हॉट एयर बैलून्स का मेला इंटरनेशनल बैलून फिएस्टा में 500 से ज्यादा गुब्बारे। शानदार ड्रोन लाइट शो के साथ साथ इंटरनेशनल बैलून फिएस्टा की ओपनिंग। न्यू मैक्सिको में 11 अक्टूबर तक चलेगा इंटरनेशनल बैलून फिएस्टा। 1972 से जारी है परंपरा। चीन में शिनजियांग के इंटरनेशनल ग्रैंड बाजार में सैलानियों की भीड़। इंटरनेशनल ग्रैंड बाजार में दिखती है चीनी सांस्कृतिक विरासत की अद्भुत झलक। आयुष्मान खुराना की आने वाली कॉमेडी ड्रामा फिल्म उड़ता तीर की अगली रिलीज डेट को आगे बढ़ाया गया। अजय देवगन के करियर में सबसे तेज 100 करोड़ रुपए कमाने वाली फिल्म बन गई दृश्यम 3। फिल्म ने 2 दिनों में ही कमा डाले 200 करोड़। जावाज कैप्टन स्मिथ के फैन हुए सलमान खान, सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया। सुपरस्टार रजनीकांत अपनी अपकमिंग फिल्म धर्मन की शूटिंग के लिए पहुंचे मैसूर। फिल्म तू है मेरी किरण के प्रमोशन में जुटी सोनाक्षी सिन्हा। परिणीति चोपड़ा की नई फिल्म रिपोर्टिंग लाइव का ट्रेलर हुआ रिलीज। पत्रकार के किरदार में नजर आएंगे परिणीति। सलमान खान की फिल्म मातृभूमि को लेकर बड़ी खबर, सेंसर बोर्ड और मेकर्स की तरफ से मिली मंजूरी। पटना साहिब गुरुद्वारा पहुंची अभिनेत्री यामी गौतम, फिल्म नई नवेली को लेकर लगाई अरदास। अजय देवगन की फिल्म दृश्यम 3 रिलीज होने के मात्र 2 दिनों के भीतर ही 100 करोड़ रुपए की क्लब में शामिल। एक्ट्रेस कृतिका कामरा अपने पति गौरव कपूर के साथ ग्रीस में नजर आई, सोशल मीडिया पर शेयर किया वीडियो।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
3: क्या है आदित्य हृदय स्तोत्र की महिमा? आदित्य हृदय स्तोत्र के पाठ का क्या है विधान? और आदित्य हृदय स्तोत्र से मिलेंगे कौन से वरदान? जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
6: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
5: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
5: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
5: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से।
1: अमेरिका के न्यू मैक्सिको में विश्व का सबसे बड़ा हॉट एयर बैलून उत्सव अल्बुकर्क इंटरनेशनल बैलून फिएस्टा 2026 धूमधाम से शुरू हो चुका है। इस दौरान आकाश में तैरते सैकड़ों गुब्बारों के इस मनमोहक दृश्य को लाइव दिखाने के लिए दुनिया भर से लाखों लोग न्यू मैक्सिको पहुंच रहे हैं।
2: रंग बिरंगे गुब्बारों से भरा है आसमान, नील गगन पर अलग अलग रंगों और डिजाइनों वाले होटल गुब्बारों की उड़ान का ये नजारा बेहद शानदार है। ये तस्वीरें अमेरिका के न्यू मैक्सिको में चल रहे अल्बुकर्क इंटरनेशनल बलून फेस्टा की है। यहाँ सिर्फ पारंपरिक गुब्बारे ही नहीं बल्कि अलग अलग आकार वाले विशेष बैलून भी आकर्षण का केंद्र बने हैं। इनमें गाय जैसा दिखने वाला और मशहूर स्मोकी बेयर की झलक दिखाने वाले गुब्बारे भी शामिल हैं। न्यू मैक्सिको में गुब्बारों के उत्सव की शुरुआत तड़के खास ड्रोन लाइट शो के साथ हुई। इस शो में हॉट एयर बलून, न्यू मैक्सिको के स्टेट बर्ड डे रॉडनर, चिली पेपर और मैक्सिकन थीम वाली अनोखी आकृतियां नजर आईं। इसके बाद शुरू हुई गुब्बारों में हवा भरने की तैयारी। जब एक एक कर विशाल बैलून जमीन पर आकार लेने लगे तो देखते ही देखते पूरा फिएस्टा पार्क रंगों से भर गया। सूरज उगने के साथ ही सुबह करीब 7 बजे शुरू हुए इस महोत्सव का सबसे मनमोहक वह पल था जब सैकड़ों हॉट एयर बैलून एक साथ आसमान की ओर उठने लगे और फिर ऐसा लगा जैसे पूरा आसमान रंग बिरंगे गुब्बारों से ढक गया हो। इस नजारे को देखने के लिए अमेरिका ही नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने से बड़ी संख्या में लोग अल्बुकर्क इंटरनेशनल बैलून फिएस्टा पार्क पहुंचे। इस बैलून महोत्सव की शुरुआत सन 1962 में महज 13 गुब्बारों के साथ हुई थी और अब ये दुनिया के सबसे बड़े बैलूनिंग फेस्टिवल में शुमार हो चुका है। आयोजकों के मुताबिक इस बार 500 से ज्यादा बैलून फिएस्टा में हिस्सा ले रहे हैं। इस बार 9 दिनों का ये इंटरनेशनल बैलून फिएस्टा 11 अक्टूबर तक जारी रहेगा और बैलूनिंग के शौकीनों को एक बार फिर से अनूठी यादें संजोने का मौका देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: न्यूयॉर्क में पार्टियां यूं तो रंगीन होती हैं लेकिन एक निर्गण पार्टी ऐसी हुई जिसमें अलग ही रंग देखने को मिला और वो रंग था सफेद। खास बात ये रही कि इस डिनर पार्टी में मेहमानों को न सिर्फ सफेद कपड़े पहनाकर आना था बल्कि अपनी टेबल कुर्सियां भी खुद लानी थी और डेकोरेशन भी खुद ही करना था। इस देखिए शानदार पार्टी की खास तस्वीरें।
2: सफेद ही सफेद, सब कुछ सफेद, टेबल सफेद, कुर्सियां सफेद, मेहमान और मेजबान की ड्रेस भी सफेद। ये तस्वीरें न्यूयॉर्क के मैनहट्टन में एक अनोखी महफिल की है। वैसे तो न्यूयॉर्क अपनी रंगीन रातों के लिए मशहूर है लेकिन इस पार्टी में सब कुछ सूरज के उजाले जैसे सफेद चमक दमक से भरपूर नजर आया। ये एक ऐसी आउटडोर डिनर पार्टी का नजारा है जिसमें जितना खास खाना है उससे कम खास यहाँ की सजावट और माहौल नहीं है। और बेहद खास बात तो ये भी है, इस वाइड डिनर पार्टी में शामिल मेहमान टेबल कुर्सियाँ और खाने पीने का सामान सब कुछ अपने साथ ही लेकर पहुँचे। सफेद फूल, कैंडल्स और पेरिस थीम वाली सजावट ने माहौल को बेहद खूबसूरत बना दिया।
3: I love showing people that beauty is still essential part of life and we all should look beautiful as much as we can. I love bringing beauty to daily life and this is my best chance.
2: तफसील से जानने की कोशिश की गई तो पता चला मेहमानों के लिए ये सिर्फ डिनर पार्टी नहीं बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी में अलग ही खूबसूरत रंग भर कर जश्न मनाने का एक अनोखा मौका है। इसमें शामिल हर व्यक्ति और हर ग्रुप ने अपने अंदाज में शाम को यादगार बनाने की कोशिश की।
4: I like the environment, I like the fun, I like the idea and I like being part of something like this. There is every type of other people like us.
2: इस दौरान खाने की तैयारी भी खास अंदाज में हुई। मशहूर शेफ टॉड इंग्लिश ने अलग अलग देशों के मेहमानों को ध्यान में रखते हुए ग्लोबल फ्लेवर वाला मेन्यू तैयार किया।
5: Because this is such an international event, I try to cook food that's international as well, kind of has a global feel to it. So that's something that we're doing tonight.
2: ये पार्टी हर साल होती है, लेकिन इसमें शामिल होना आसान नहीं होता। इसके इनविटेशन के लिए लोगों को लंबा इंतजार करना पड़ता है और फिर वह मौका आता है जब सफेद लिबास में सजे धजे लोग एक साथ डिनर करते हैं, बातचीत और हंसी मजाक करते हुए कुछ वक्त सुकून के गुजारते हैं। आयोजकों के मुताबिक इसका मकसद सिर्फ खूबसूरत डिनर पार्टी नहीं बल्कि तमाम लोगों को एक साथ लाना भी है।
6: It's community and it's the people getting together and it's just the vibe, like the electric vibe of everybody looking at their best, feeling their best, coming out for a great dinner, partaking in it, actively, you know, partaking in it.
2: फ्रांस की तर्ज पर अमेरिका में लेडी डिनर इन ब्लैंक नाम की डिनर पार्टी की शुरुआत एक छोटे से कार्यक्रम के तौर पर हुई थी। अब दुनिया के 40 देशों के 120 से ज्यादा शहरों में इसका आयोजन होता है। इसका थीम भले ही सफेद है, लेकिन ये सफेद रंग अलग अलग सोच और समाज वाले लोगों को जिंदगी के तमाम रंगों के साथ एक साथ आने और आपस में जुड़ने का संदेश देता है। रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती हैं। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
1: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।

0: क्या है आदित्य हृदय स्तोत्र की महिमा? आदित्य हृदय स्तोत्र के पाठ का क्या है विधान? और आदित्य हृदय स्तोत्र से मिलेंगे कौन से वरदान? जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
3: एवरेस्ट दिखा ला, सही दिखा सही लाल।
4: फिर से संत रविदास नगर के नाम से जाना जाएगा यूपी का भदोही जिला। कारपेट एक्सपो के उद्घाटन पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ऐलान, जल्द ही सरकार की ओर से अधिसूचना होगी जारी। वाराणसी में शक्ति आराधना उत्सव की तैयारियां तेज, पश्चिम बंगाल की तर्ज पर होती है दुर्गा पूजा, मां की प्रतिमाओं को अंतिम रूप दे रहे हैं कार्यकर्ता। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में कैप्टन स्मिथ मच्छार के लिए पूजा अर्चना, हवन पूजन के साथ भगवान से जल्द स्वस्थ होने की कामना। जामास के लिए देश भर में हो रही है प्रार्थनाएं। सुहाने मौसम में हिमाचल में बढ़ी सैलानियों की संख्या, मैक्लोडगंज की सड़कों पर पर्यटकों का तांता, पर्यटन कारोबारियों की खिली चेहरे। जापान के एगा नोया में एशियन गेम्स 2026 का भव्य समापन समारोह, दो गोल्ड और एक सिल्वर मेडल जीतने वाली शूटर नीरू ढांडा ने थामा तिरंगा, भारतीय खिलाड़ियों ने जीते कुल 85 मेडल।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को।

0: अक्टूबर आया, अपार त्योहार लाया, आज इसी को लेकर चर्चा करेंगे। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं नवजोत रंधावा। उत्सव, उमंग और उल्लास से सजेगा पूरा महीना। अक्टूबर महीने की शुरुआत हो चुकी है और लेकर आया है ये त्योहारों की सौगात, एक ऐसी कतार जिसका इंतजार हर किसी को रहता है, यानी कि त्योहारों की सीरीज, त्योहारों की पूरी कतार। अभी फिलहाल पितृपक्ष चल रहा है, जब भगवान विष्णु की कृपा और पितरों की कृपा पाने का समय है। इसके बाद माँ के नौ स्वरूपों की आराधना होगी। नवरात्र में माँ का दरबार सजेगा, गूंजेंगे जयकारे, हर तरफ दिखेगा भक्ति का रंग और माँ दुर्गा भी आएंगी। साथ ही आएगा विजयदशमी का पर्व, रामलीला, रावण दहन और बुराई पर अच्छाई की जीत का संदेश। और इसके बाद सुहागिनों का पर्व करवा चौथ, सुहागिनों के सजने संवरने से लेकर चांद के दीदार तक इस पर्व की अपनी ही रौनक होती है। यानी अक्टूबर सिर्फ कैलेंडर का एक महीना नहीं है, बल्कि आस्था, परंपरा, उमंग और उल्लास से भरा त्योहारों का एक पूरा मेला है। तो सजेगा माँ का दरबार न्यारा, लगेगा जयकारा उत्सव को, सब तैयार, जगमग होगा हर बाजार। नवरात्र से करवा चौथ, महकेगा आस्था का पथ। तो अगले एक घंटे इसी पर हम बात करेंगे, हमारे साथ देश के जाने माने ज्योतिषाचार्य मौजूद रहेंगे। तो बहुत सारे त्योहार इस महीने आ रहे हैं और इसी महीने त्योहारों का महीना अगर हम इसको कहें तो शायद गलत नहीं होगा। अक्टूबर में उत्सव ही उत्सव है। अक्टूबर में नवरात्र, दुर्गा पूजा, दशहरा और इसी महीने करवा चौथ। 11 अक्टूबर से शारदीय नवरात्र की शुरुआत हो रही है। 18 अक्टूबर को महाअष्टमी है तो 19 अक्टूबर को महानवमी होगी। वहीं 20 अक्टूबर को दशहरा है। इसके बाद 29 अक्टूबर को करवा चौथ भी आ रहा है। 6 नवंबर को धनतेरस है, जबकि 8 नवंबर को दिवाली है और इस बार दिवाली रविवार को पड़ रही है। और इस बीच 10 नवंबर को गोवर्धन पूजा होगी तो 11 नवंबर को भाई दूज का पर्व मनाया जाएगा। साथ ही साथ 14 से 16 नवंबर तक छठ पूजा की रौनक दिखेगी। यानी कि अक्टूबर नवंबर में त्योहारों की एक लंबी सूची रहेगी। तो ऐसे में देश भर में इन सभी पर्वों की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। दिल्ली से लेकर कोलकाता तक माँ के दरबार सज चुके हैं। नवरात्र को लेकर पंडाल में खूब तैयारियां हो रही हैं और नवरात्र में रामलीला का क्रेज भी रहता है। इसके बाद दशहरा आता है जिसमें प्रभु श्री राम और रावण के युद्ध को भी दिखाया जाता है। तो तीन तस्वीरें, 11 अगस्त से नवरात्र की शुरुआत हो रही है। त्योहारों का ये पूरा महीना अक्टूबर और 29 अक्टूबर को करवा चौथ भी मनाया जाएगा। आस्था, उमंग, उल्लास से भरा हुआ पूरा महीना दस्तक दे चुका है। एक के बाद एक त्योहार है और हर तरफ सजावट, रौनक, उत्सव का माहौल रहेगा। यानी कि अक्टूबर का महीना अपने साथ ढेर सारी खुशियों की सौगात लेकर आया है। 11 अक्टूबर से शारदीय नवरात्र की शुरुआत हो रही है। मंदिरों से लेकर घरों तक पूजा शुरू होंगी। माँ के जयकारों से पूरा वातावरण भक्तिमय हो जाएगा। इसके बाद 29 अक्टूबर को सुहागिने पति की लंबी आयु के लिए, सुखी दाम्पत्य जीवन की कामना के लिए व्रत रखेंगी। सजना सवरना, पूजा की तैयारियां करना और फिर चांद के दीदार का इंतजार, ये सब कुछ रहेगा और इस पर्व की अलग ही रौनक रहती है। असल में अक्टूबर की यही खासियत है, त्योहार आते हैं और साथ में रिश्तों की गर्माहट, परंपराओं की खुशबू, खुशियों की एक नई वजह भी लेकर आते हैं।
1: अष्टमी तिथि की अभिवृद्धि है, लेकिन नवरात्र 9 दिन का ही है। कारण 19 अक्टूबर को सुबह 9:35 तक नौवीं है, नौवीं लग रही है। नवरात्र व्रत की पारणा तथा विजयादशमी अपराह्न काल में मनाई जाएगी, साथ में ही सायंकाल में दुर्गा पंडाल का जो है विसर्जन भी होगा।
0: तो चलिए हम इसी को लेकर आज चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे साथ इस वक्त नंदिता पांडे, साथ ही साथ डॉक्टर नितिशा भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, पंडित संजय शर्मा भी हमारे साथ मौजूद हैं, आचार्य डीपी शास्त्री भी हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो खुशियों का पर्व और इस बार बहुत सारे त्योहार, हम कहें कि सिर्फ कैलेंडर का एक पन्ना नहीं है बल्कि खुशियों की सौगात है ये महीना जिसकी शुरुआत हो चुकी है। नंदिता जी, मैं आपसे ही शुरुआत करूंगी। अभी देखिए पितृपक्ष चल रहा है, पितरों का आशीर्वाद पाने का समय है, भगवान विष्णु की उपासना की जाती है, लेकिन इसके बाद माँ दुर्गा पधारेंगी, नवरात्र की शुरुआत होगी। किन मायनों में ये महीना और खास हो जाता है?
2: नवजोत जी, आपको भी इस पूरे पर्वोत्सव की बहुत बहुत काम है, पूरे उत्सव का माहौल आना शुरू हो गया। जेएनटी के सभी दर्शकों को ये आने वाले उत्सवों की अनंत शुभकामनाएं कि आपके घर में भी वही रौनक और उल्लास रहे जिस तरह से पर्व अपने आने का संकेत दे रहे हैं। देखिए, पितरों का आशीर्वाद लेने के पश्चात हम कोई भी अच्छा शुभ कार्य शुरू करते हैं और ये रीति या ये विधि यहाँ पे भी आपको दिखाई देती है कि अभी पितृपक्ष चल रहे हैं। बहुत सुंदर समय पितृपक्ष में भी होता है जब आप अपने पूर्वजों का स्मरण कर उनके लिए चैरिटी आदि करते हैं, उनके मोक्ष की सदगति के लिए प्रार्थना करते हैं और इन रिटर्न आपके पितर आपको आशीर्वाद देते हैं। और वैसे भी सनातन संस्कृति में ये नियम है कि हम कोई भी पुण्य कार्य, चाहे शादी हो, विवाह हो, गृह प्रवेश हो, सबसे पहले अपने इष्ट देवता, कुल देवता, देवी और पितृ देवताओं का स्मरण कर, पितरों का स्मरण कर उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, फिर शुरुआत करते हैं। तो आप देखिए ना कि पितृपक्ष खत्म हो रहे हैं, नवरात्रियां शुरू हो जाएंगी और नवरात्रियों के 9 दिनों में इतनी पावरफुल फेमिनिन एनर्जी पूरा संचार करती है पूरे इस धरती पर कि आप उस समय अगर उनसे कनेक्ट होकर के एनर्जीज में अगर आप व्याप्त हो जाएं तो आप देखेंगे आपकी सारी मनोकामनाएं जो आजकल जयंती होती मैनिफेस्टेशंस वो पूरा होने के लिए समय अच्छा है। करवा चौथ का समय, दशहरा का समय, पूरे वर्ष भर में एक ऐसा दिन होता है जिसमें कोई दोष नहीं लगता, उसमें से दशहरा भी एक दिन होता है जिस दिन आप कोई भी कार्य कर सकते हैं, चाहे देव उठनी एकादशी है अभी तक का या नहीं है, क्योंकि हम कहते हैं कि चतुर्मास में हम शुभ कार्य उस तरह से नहीं करते, लेकिन दशहरे के दिन आप ये कार्य संपन्न कर सकते हैं।
0: यानी सबसे बड़ा शुभ दिन हमको मिलता है।
2: जी बिल्कुल, अक्टूबर में मिल रहा है ये दिन और 20।
0: वैसे सही मायने में ना नंदिता जी, अक्टूबर तो गुड न्यूज वालों का महीना है, हर दिन आपको कोई ना कोई अच्छी खबर मिलेगी और त्योहारों के रंग में हम सभी रंगे रहेंगे। डॉक्टर नितिशा भी हमारे साथ मौजूद है। चलिए, इन त्योहारों के बीच बहुत सारी गुड न्यूज तो आएंगी नितिशा जी, लेकिन सबसे बड़ी जो गुड न्यूज होते हैं वो हमारे ग्रह देते हैं। इस बार जल्दी से बता दीजिए, आगे बढ़े उससे पहले पूरा ये जो त्योहारों का समय रहेगा इस दौरान ग्रह दशाएं कैसी रहेंगी, कितनी फेवरेबल रहेंगी?
3: थैंक यू नवजोत जी और जेएनटी के सभी दर्शकों को राधे राधे। देखिए, अक्टूबर आया और त्योहारों की सौगात लेकर के आया है और कई लोगों को लगता है कि पितृपक्ष ऐसा होता है कि जब हम खरीदारी नहीं कर सकते, शॉपिंग या अच्छे कार्य नहीं कर सकते, लेकिन मैं कहूंगी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप शुभ कार्य नहीं कर सकते क्योंकि ये जड़ों से जुड़ने का समय है, इसलिए अपनी जड़ों से जुड़े और साथ ही साथ इसके बाद ब्रह्मांडीय ऊर्जा, पराशक्ति की ऊर्जा एकाग्रचित हो जाएगी और अपने बच्चों को यानी हम मनुष्यों को अपना आशीर्वाद, अपनी ब्लेसिंग देगी। इसलिए ये वो समय है जब हम अपनी ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ जुड़ के अपनी मैनिफेस्टेशन, अपनी हर विश को पूरा कर रहे होते हैं और पितरों के बिना, अपनी जड़ों के बिना अपनी माँ देवी पराशक्ति से भी आशीर्वाद लेने के साथ साथ जब दोनों का आशीर्वाद हमें मिल जाता तो हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। और ग्रहों की तो बात करूं तो देखिए, गुरु महाराज सिंह राशि में प्रवेश कर रहे हैं और त्रिग्रही राजयोग की स्थापना कर रहे हैं, यानी यहाँ पर त्रिशक्ति नवरात्रों में हमें मिलेगी। बुध महाराज, सूर्य महाराज और गुरु महाराज एक साथ रहने के कारण त्रिशक्ति इस समय हमें प्राप्त होगी, यानी गुरु और सूर्य का बुद्धादित्य राजयोग बने, गुरु और सूर्य का गुरा आदित्य राजयोग बनेगा, बुद्ध और सूर्य का बुद्धादित्य राजयोग बनेगा और गुरु और बुद्ध का ज्ञानी राजयोग बनने के कारण ये समय अपनी ऊर्जाओं को, मैनिफेस्टेशन को, अपनी हर मनोकामनाओं को पूरा करने का है। और ये नवरात्र भी बहुत स्पेशल है नवजोत जी, क्योंकि पूरे 9 दिन, 18 तारीख को हम अष्टमी मना रहे हैं लेकिन अष्टमी तिथि 19 तारीख 10:51 पर समाप्त हो रही है सुबह के समय, उसके बाद नवमी तिथि लग जाएगी। यानी आप अष्टमी तिथि अगर किसी कारणवश 18 को नहीं मना सकते तो आपके पास 19 का सुबह का समय भी रहेगा जिस समय आप अष्टमी की पूजा कर सकते हैं। उसके बाद नवमी तिथि, आप नवमी तिथि के समय अपनी महा सिद्धिदात्री को प्रसन्न करेंगे, कन्या भोजन करवाएंगे, हवन करेंगे और उसके बाद पंडालों से माँ अपनी विदाई लेंगी। तो वो जो 19 तारीख है वो भी बहुत स्पेशल है और 20 तारीख विजयदशमी जिसे कहा गया है, कहा जाता है अपनी आपकी कोर्ट कचहरी, आपकी कोई भी केसेस है या आपकी प्रमोशन रुकी हुई है, जब हम विजय यानी विजय की प्राप्ति के लिए, सफलता की प्राप्ति के लिए जिस दिन को चुना जाता है वो है विजयदशमी। इस पे जोड़ा गया है कि अच्छाई की जीत होती है बुराई पर, लेकिन विजयदशमी आपको सफलता

0: पर इस शो को करने का मकसद केवल त्योहारों की जानकारी देना नहीं बल्कि आपकी तैयारी भी कराना है, क्योंकि बाजारों में भी रौनक दिख रही है, अलग अलग जगहों पर पूजा पंडाल भी सजने शुरू हो चुके हैं। साथ ही साथ आपको तैयारी क्या करनी वो भी हम आगे बताएंगे। लेकिन डीपी शास्त्री जी, आपके पास आना चाहूंगी, जरा हमें एक बार समझा दीजिए तिथियां इस बार कहाँ कहाँ, कौन कौन सी तिथियां डबल है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है तिथियों का इस बार?
1: नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं है। जो 11 अक्टूबर का नवरात्र शुरू हो रहा है वो चित्रा नक्षत्र में, मंगल के नक्षत्र में शुरू हो रहा है। और नवरात्र की सबसे बड़ी चीज है कि सब तिथि मिल रही है, और यहाँ तक कि 10 तिथि मिल रहा है, नवमी के बाद दशमी भी परिपूर्ण रूप में मिल रहा है। जो ब्रह्मांड की अधिष्ठात्री भगवती जगत जननी है, बलाधिष्ठात्री, धनाधिष्ठात्री, विद्याधिष्ठात्री, जिनको बल के लिए, धन के लिए, ज्ञान के लिए नवधा भक्ति में हम नवरात्र के पूजन करते हैं, उसके पूर्व आजकल महालय या पितृपक्ष जो चल रहा है, ये पितृपक्ष में देवताओं से ज्यादा पितरों की तर्पण, पितरों के दान उपदान किया गया है। ये 15 दिवस जो लिया गया है, जो 10 तारीख को अमावस्या या महालय का पूजन होगा, इसमें देवता व्या पितृवेश्या महायोग भी एवचा नम स्वाई स्वध्यायी नित्य में वो नमो नम। पितृ पक्ष में भी स्वाहा और स्वधा जो देवी हैं वो पूजी जाती हैं तर्पण के द्वारा, यज्ञ के द्वारा, हवन के द्वारा, जो पितरों को पोषण करती हैं, जो देवताओं को पोषण करती हैं वो पितरों को भी पोषण करती हैं। ये तो रहा महालय का, पितृपक्ष का। बल्कि जो नवरात्र में शैल पुत्री से सिद्धिदात्रिक तक जो नवधा भक्ति है, उस भक्ति को भगवान राम भी किए हैं। राम अपने विजय के प्राप्ति के पूर्व शैल पुत्री से सिद्धिदात्री के, ऋषि अगस्त गुरुदेव के कहने के बाद उन्होंने पूजा किया, पाठ किया, राम रक्षा स्त्रोत्र, दुर्गा पाठ, आदि त्रिदेव स्त्रोत्र सब पाठ करने के बाद नवमी तिथि में सब शक्तियां उनको वर प्रदान की, तब वो विजय दशमी में विजय की प्राप्ति किए थे। सबके रक्षा दुर्गा करती है, इसीलिए नवदा भक्ति में आप पूरे नवरात्र पूजन करें, कहीं कुछ इसमें कमी नहीं है।
0: बढ़ोतरी
1: है।
0: संजय शर्मा जी के पास चलूंगी। शास्त्री जी लौटूंगी, हाँ लौटूंगी आपके पास। संजय जी, एक तो इसी का जवाब रखिएगा कि इस बार कोई तिथि कंफ्यूजन तो नहीं है, और इस बार के नवरात्र किन मायनों में खास है ये भी बताते चलिए।
2: जी, सबसे पहले माँ आपके ऊपर, सबके ऊपर कृपा करे, और कहा जाता है यज्ञ किस माँ दुर्गा का ध्यान कर लेते हैं। सर्व मंगल मांगल्य शिवे सर्वार्थ शादी के शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। कहा जाता है कि जो नवरात्र का समय होता है, कहते हैं कि इस बार जो माता है वो गज के ऊपर आ रही है, क्योंकि गज वाहनी है। तो गज के ऊपर जब माँ आती है तो हमारे जीवन में सुख समृद्धि सब कुछ प्राप्त कराती है। तो ये जो शरदीय नवरात्रे हैं हमें सुख और आनंद देने वाले हैं, और इसमें जो कंफ्यूजन की बात तो नहीं है, पर जो सप्तमी तिथि है उस वो शनिवार और इतवार दोनों दिन जो है रहेगी। उसमें क्या है कि दो दिन की है वो 17 और 18 तारीख की है, दोनों दिन की जो है सप्तमी अष्टमी रहेगी। और ये जो नवरात्रे हैं आपके जीवन को आनंद देने वाले, एक नया जीवन का संचार करते हैं। कहते हैं कि माँ के जितने 9 रूप हैं, जैसे शैल पुत्री का जो स्वरूप है वो आपके जीवन में सुख समृद्धि देती हैं। इसी प्रकार से अगर आप सिद्धि दायित्री की बात करें तो आपके जीवन में सिद्धि भर देती है जीवन का। कहते हैं कि कुछ भी सिद्धि चाहिए तो वो माँ से आपको जीवन में प्राप्त होती है। तो ये जो स्वरूप है माँ के, और जो विजयदशमी का दिन होता है, कहते हैं कि भगवान राम ने जो है रावण पर भी इसी दिन विजय प्राप्त की। कहा जाता है कि जितनी भी नेगेटिव एनर्जीज हैं दुनिया के अंदर वो विजयदशमी के दिन उन सबका जो है अंत हो जाता है। तो ये समय ऐसा समय है जिसमें आप पूजा पाठ करें, और कहा जाता है कि जो शरदीय नवरात्र हैं इसमें अपनी भक्ति बढ़ाएं। अभी आप पूर्वज पितरों की पूजा कर रहे हैं, अपने पूर्वजों की को ध्यान कर रहे हैं, क्योंकि कहा जाता है कि पितृवेश्वर करो मार्ग उजागर, चरण रज की मुक्ति सागर। कहा जाता है कि हे पितरों आप हमारे जीवन में उजागरता लाओ, और ये समय ऐसा है कि पितृ तर्पण के लिए है, और नवरात्रे हमारे जीवन में एक नई एनर्जी प्राप्त करने के लिए है। जो माँ के 9 स्वरूप हैं, कहते हैं संतान नहीं है तो आप जो स्कंद माता की पूजा करें, तो सब नवरात्रे जो है माँ के 9 स्वरूप आपके जीवन में सुख और आनंद देने वाले हैं। तो इसलिए प्रथम शैलपुत्री, द्वितीय ब्रह्मचारिणी, तृतीय चंद्र घंटी थी, कुष्मांडी थी, चतुर्कम, पंचम स्कंद माती थी, सप्तम काल रात्रि, महागौरी, चाष्टम। तो माँ की जो स्वरूप है।

0: का ध्यान
1: बिल्कुल,
0: करें, मेडिटेशन
1: अलग
0: करें,
1: अलग
0: साधना
1: मनोकामनाओं
0: करें
1: के लिए
0: जो
1: अलग अलग
0: प्राप्त।
1: तरीके के उपाय होते हैं, जिस पर बात करेंगे। लेकिन आज क्योंकि हम ओवरऑल बात कर रहे हैं कि किस तरीके से एक पॉजिटिविटी का महीना जिसकी शुरुआत हो गई है, एक ऐसा महीना जिसका इंतजार शायद हर किसी को रहता है, हर तरफ खुशियां होती हैं, हर तरफ सेलिब्रेशन होता है। नंदिता जी, आपके पास आना चाहूंगी, क्या खास होता है इस महीने में? शारदीय नवरात्र नाम सुनते ही हर कोई तैयारियों में डूब जाता है, हर कोई कहता है कि वाह अब तो बहुत अच्छा समय। और संजय जी ने बड़ी अच्छी बात कही कि पॉजिटिविटी का महीना एक तरीके से शुरू हो जाता है। दो सवाल है, एक तो यही कि इस
0: जी
1: बार के नवरात्र किन मायनों में खास है, कहीं तिथि डबल तो नहीं है तो वो भी बताइएगा, और तैयारी कैसे करें?
0: जी बहुत सुंदर प्रश्न अवजोत जी, क्योंकि ये थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है। देखिए, नवरात्रि है ना, एक तो ये सेलिब्रेशन का समय है, बहुत सारी पॉजिटिव ऊर्जा, सकारात्मक ऊर्जा पूरी धरती पर डोलती है, और आप कितना उसको इम्बाइब कर सकते हैं अपने जीवन में, ये आपकी सकारात्मक सोच और सही तरीके से पूजा प्रवृत्ति पे भी निर्भर करता है। और GNT आई थिंक ये चीज को बहुत डिटेल्स में बुलाता बताता है अलग अलग विद्वानों को लेकर के आके। अब देखिए, नवरात्रियां 11 तारीख को शुरू हो रही हैं, लेकिन नवरात्रि के दिन जिस दिन शुरू हो रही है उस दिन चित्रा नक्षत्र है और वैदित्र योग है। इस समय घट स्थापना जो होता है उसको थोड़ा सा जेनरली अवॉइड करते हैं। तो ऐसा अगर पूरे दिन नवरात्रि का पहला दिन है तो क्या किया जाए? तो इसमें शास्त्र ये कहते हैं कि अगर वैदित्र योग है, चित्रा नक्षत्र, और ये सभी GNT दर्शकों के लिए, क्योंकि नवरात्रि में अधिकतर लोग अपने घर पे घट स्थापन करते हैं, तो आप अभिजीत मुहूर्त का सिलेक्शन करिए जो कि दोपहर के समय में आएगा, लगभग 12:15 बजे से लेकर के 12:30 के बीच में, उस समय घट स्थापना करिए। तो आपकी पूरी नवरात्रि की शुरुआत जो है माता के आशीर्वाद से बहुत अच्छी रहने वाली है, अच्छी रहेगी। तिथि की जहां तक आप बात करें तो पंडित संजय जी ने बता ही दिया कि सप्तमी अधिक है यहाँ पे, क्योंकि हम उदया तिथि को भी मान करके चलते हैं। तो सप्तमी तिथि जो बन रही है वो 17 और 18 दोनों तारीख को बन रही है। अष्टमी और नवमी का समागम है। अष्टमी तिथि जो है वो 19 तारीख को, और नवमी तिथि भी 19 तारीख को ही रहेगी, लेकिन नवमी का होम आप 19 को और 20 दोनों ही तारीख को कर सकते हैं। माना जाता है कि दशहरा में भगवान राम ने रावण का वध कर विजय प्राप्त की थी, लेकिन नवमी के दिन उन्होंने माँ सिद्धिदात्री का पूजन किया था और अपने कमल जैसे नयनों का वहां पे उन्होंने, जैसे ही वो कम हुए कमल जो 108 थे वो नहीं हो पाए, तो उन्होंने आंख अपनी कमल जैसे नयन बोलते हैं तो वो देने की कोशिश की, तब माँ सिद्धिदात्री सामने आई। माँ सिद्धिदात्री सभी सिद्धियों की देने वाली माँ है, और पूरा जो आप शैलपुत्री माँ से शुरू होकर के लास्ट डे 9th डे तक का जब पहुंचते हैं तो स्पिरिचुअली भी बहुत एक्टिवेशन का टाइम होता है। आप मूलाधार चक्र से ऊपर की तरफ बढ़ते हुए आप सहस्त्र चक्र, निर्वाण चक्र की तरफ जाते हैं, जहाँ माँ सिद्धिदात्री आप पे कृपा करती हैं। तो भगवान राम पे उन्होंने इतनी एनर्जी दी कि वो उस एनर्जी को उन्होंने साथ लेकर के रावण का वध करने में वो वहां पे उन्होंने साधा उस चीज को। तो ये बहुत बहुत पावरफुल टाइम होता है। इस पावरफुल टाइम को आप कैसे अपनी लाइफ में उसको इम्बाइब करके अच्छी चीजें अपनी लाइफ में कर सकते हैं, ये समय बहुत महत्वपूर्ण रहता है पूरे टाइम। आप देखिए, कोजगरी पूर्णिमा आएगी, तो पूर्णिमा तिथि जैसी आएगी तो पूर्णिमा तिथि के समय में आप जो है उस दिन माता लक्ष्मी जो है पूरी रात्रि भर पूरी दुनिया में घूमती है, और जो जो भक्त जन रात को उठ करके उनकी प्रार्थना करते हैं, लक्ष्मी सूक्त का पाठ करते हैं, ये सारी चीजें करते हैं, तो आप देखिए माता रानी की इतनी विशेष कृपा होती है कि आपका घर धन धान्य से भर जाता है। ऐसा माना जाता है कि उस दिन चंद्रमा 16 कलाओं से परिपूर्ण रहता है, और उस समय आप जब खीर बना के बाहर रखते हैं उस खीर में उस चंद्र की रोशनी आती है, उस रोशनी से आपके अंदर वो हेल्थ की एनर्जीज जो होती है
1: जी
0: पॉजिटिव हेल्थ के लिए, आपके सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है। तो ये चीजें जो है उस चीज को ध्यान रखना है। 25 अक्टूबर को कोजगरी पूर्णिमा रहेगी, करवा चौथ से थोड़ा पहले 29 को करवा चौथ है। तो आप देखिए पूरा प्रोसेस जो है वो आपको क्लेंज भी कर रहा है, डिटॉक्सिफाई भी कर रहा है, एक्टिवेट भी कर रहा है आने वाले मौसम को साधने के लिए। साथ ही साथ पर्वों की जो खुशियां होती हैं, तो जो भी रोग शोक दोष होते हैं उन्हें मिटा के सबके साथ मिलजुल करके आगे बढ़ने की, गुजरात में कहें तो गरबा होता है, तो माता को आह्वान किया जाता है और माता के आह्वान में ही गरबा किया जाता है, उनकी जो साक्ष्य होता है, उनकी जो एनर्जीज होती है उसको एक्टिवेट किया जाता है और उसमें नृत्य किया जाता है। दैट इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ गरबा। तो
1: बिल्कुल
0: वो जो होता है वैसे ही उस तरह के नृत्य उल्लास सब जगह होता है। नॉर्थ इंडिया में आप जाते हैं तो नॉर्थ इंडिया में माता रानी को आह्वान किया जाता है, दुर्गा सप्तशती का पाठ किया जाता है, पूरी जिस तरह किसी भी तरह की नजर हो, दोष हो, कैसी भी चीजें हो, नेगेटिव हो, वो सब हट जाती हैं,
1: बिल्कुल
0: पॉजिटिव एनर्जी घर के अंदर आती है। तो बहुत सुंदर समय है,
1: तरीके
0: बहुत
1: अलग
0: अच्छी है,
1: अलग
0: स्वागत
1: होते हैं,
0: है
1: लेकिन कुल
0: आपका।
1: मिलाकर माँ की आराधना सेलिब्रेशन का दिन होता है। बहुत पॉजिटिव एक तरीके से कहा जाता है इस महीने को, जब इतने सारे सीरीज जो होती है, सीरीज ऑफ फेस्टिवल शुरू हो जाती है, जिसको ग्रेट इंडियन फेस्टिवल भी हम कहते हैं, बप्पा के आने के साथ ही इनकी शुरुआत हो जाती है। अब नितिशा जी आपके पास आती हूँ। नितिशा जी, एक तो यही तिथि कन्फ्यूजन को लेकर भी मैं चाहूंगी इसको क्लियर कीजिए, और साथ ही साथ करवा चौथ को लेकर भी इस बार किस तरह के योग बन रहे हैं। संजय शर्मा जी भी हमारे साथ मौजूद है। नितिशा जी, ये सवाल आपसे करूंगी, लेकिन संजय जी आपसे मेरा सवाल ये है कि हालांकि तिथियों के कन्फ्यूजन को हमने क्लियर कर लिया, लेकिन आप ये बताइए कि तैयारी किस तरीके से करें, क्योंकि कलश स्थापना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। अभी हालांकि पितृपक्ष चल रहा है, लेकिन इसके बाद तैयारियां करनी है, तैयारियां किस तरह की, कब से कैसे की जाती हैं?
2: देखो, एक दिन पहले से, अमावस्या के दिन से ही आपको जो है शाम के वक्त से ही समान 12 बजे के बाद
1: उसका भी
2: आप पितृ
1: ड्यूरेशन
2: अमावस्या
1: बताइएगा,
2: पूरी।
1: क्योंकि उस बहुत से लोग ये भी चाहते हैं, ये भी सुनना चाहते हैं कि भाई वो शुभ समय कौन सा रहता है जिस दौरान हम कलश लेकर आए या फिर अपनी शॉपिंग शुरू करें।
2: जी, देखो 12 बजे के बाद आप पितृ तर्पण कर दें और अपने पितरों को जो है, पूर्वजों को जो है आशीर्वाद लें और कहें, परम उपकार पितरेश्वर कीना, मनुष्य योनि में जन्म है दीना। तो उन्होंने हमें मनुष्य जन्म में जो भेजा है, इस प्रकार से कह करके और अपने पितरों को ओम पितृव्यो स्वादिभ्यो नमः पर पितृव्यो दिन्वा सर पितृव्यो दिन्वा, इस तरह से तर्पण कर दें और उनको विदा कर दें। उसके पश्चात जो है 12-1 बजे के बाद या शाम को 4 बजे के बाद आप अपना सारा सामान जो है लेना शुरू कर दें, प्रारंभ कर दें, और कलश ले लें, नारियल ले लें और पत्ते ले लें और माँ दुर्गा की प्रतिमा ले लें, और सुबह की तैयारी जो है गंगा जल, धूप दीप और पुष्प माला इत्यादि, और आसन और चौकी जो है लेकर के और जौ लेकर के, और माँ का जो सारा सामग्री है वो इकट्ठी कर लें और एक दिन पहले से थोड़ी सी तैयारी शुरू कर दें अपनी। और सुबह का जो अर्ली मॉर्निंग का मुहूर्त रहेगा 6:05 से लेकर के और 11 बजे तक का जो मुहूर्त है, 11:57 तक, उस बीच में आप जो है कलश स्थापना करें और माँ का आवाहन करें, माँ के सभी स्वरूपों का आवाहन करें, और आवाहन करने के पश्चात जो है कलश के अंदर जो है अगर हो सके तो चांदी का सिक्का या कोई कॉइन या कोई भी चीज रख दें, और कहते हैं कि पंच पल्लव जो है उनको स्थापित कर लें और नारियल चढ़ा दें माँ को और चुन्नी चढ़ाएं और पूरा श्रृंगार जो माँ का 16 श्रृंगार का जो सामान है वो अर्पित कर दें और घर में अंगारी करें, और अंगारी करने के बाद दुर्गा सप्तशती जो का पाठ करना चाहते हैं तो वो कवच कीलक अर्गला स्त्रोत्र का जो है पाठ करें। अगर जो ज्यादा पाठ नहीं कर सकते तो माँ दुर्गा के 32 नाम जो है, दुर्गा दुर्गा तिचम्नी, दुर्गा पद निवारणी, दुर्गम छेदिनी, दुर्गनाशिनी, दुर्गा निहंती, इस प्रकार से जो है वो करें, या सिद्ध कुंजी का स्त्रोत्र का पाठ कर लें। और जो दुर्गा सप्तशती नहीं पढ़ सकते तो हिंदी में भी जो है पाठ कर सकते हैं, और हिंदी में जो अध्याय दिए हुए हैं उनके में पाठ करें और दुर्गा के जो स्वरूप है उन सबका जो है मन में आवाहन करें। दुर्गे देवी नमस्तुभ्यम सर्व कामार्थ साधिके मम सिद्धिम सिद्धिम सिद्धिम व स्वप्ने सर्व प्रदर्शय। जब सोते हैं तो माँ
1: लौटती हूँ आपके पास, क्योंकि मुझे ब्रेक लेना है, इसलिए एक बार जल्दी से नितिशा जी के पास जाऊंगी। अब नवरात्र में माँ का वेलकम कैसे करना है, तैयारियां कैसी करनी, उसकी बात हो रही, लेकिन जल्दी से, क्योंकि इसी महीने करवा चौथ का पर्व भी आ रहा है, आपका फेवरेट त्योहार है ही, आप अक्सर गुड न्यूज टुडे पर आती हैं और बहुत भागम भाग आपको भी रहती है और सुहागिनियों को तो इंतजार रहता ही है, स्पेशली चांद का, सजने सवरने का। मैं स्पेसिफिकली आपसे पूछना चाहूंगी, इस बार करवा चौथ को लेकर कोई कंफ्यूजन तो नहीं है?
3: देखिए नहीं, इस बार करवा चौथ को लेकर
1: मायनों में ये भी बताते चलिए।
3: जी बिल्कुल, इस बार करवा चौथ को लेकर के भी कोई कंफ्यूजन नहीं है। जो हमारा करवा चौथ है वो 29 को ही सेलिब्रेट किया जाएगा, लेकिन इस बार करवा चौथ और भी ज्यादा स्पेशल हो रहा है क्योंकि यहाँ हमें त्रिशक्ति त्रिग्रहों की ऊर्जा मिल रही है और गुरु ग्रह को बहुत शुभ प्लैनेट माना गया है। यहीं पे शुक्र महाराज भी हमें अपनी ही राशि से गोचर करते हुए नजर आ रहे, वो भी हमारे लिए सुख समृद्धि को लेकर के आ रहे हैं। तो ये वाला जो करवा चौथ है ये सभी महिलाओं के लिए बेहद शुभ है। दाम्पत्य जीवन को और मधुर बनाइए, बहुत सारे गिफ्ट लीजिए, बहुत सारे गिफ्ट दीजिए और बहुत सारी शॉपिंग करिए। मैं तो कहती हूँ हमारी एंजल्स को बहुत सारी शॉपिंग नवजोत जी करनी चाहिए, चाहे आप अनमैरिड हो चाहे आप मैरिड हो, दोनों ही तरफ से, क्योंकि जितनी हमारी पराशक्ति ऊर्जा, स्त्री ऊर्जा जितनी सुंदर और जितनी ऊर्जावान रहेगी उतना ही ब्रह्मांड, उतनी ही सृष्टि आगे बढ़ती रहेगी। तो ये करवा चौथ बहुत स्पेशल आ रहा है जिस समय शुक्र, क्योंकि ये करवा चौथ शुक्र से रिलेटेड फेस्टिवल और मंगल से रिलेटेड फेस्टिवल माना जाता है, और मंगल महाराज भी सूर्य की राशि में प्रवेश करेंगे, तो ये हमारे मंगल ग्रह के लिए भी बेहद शुभ समय रहने वाला है। तो यहाँ पे मंगल ग्रह की ऊर्जा भी बहुत ज्यादा पावरफुल होती हुई नजर आ रही है। जी
1: बिल्कुल, तो चलिए बाकी तीज त्योहारों का भी जिक्र करेंगे, बात करेंगे। और इस दौरान अब जैसे नंदिता जी भी बता रही थी, नितिशा जी भी बता रही है कि आप जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, लेकिन वो आपकी मनोकामना पूरी कैसे होगी, उसके लिए अभी से आपको क्या क्या उपाय करने हैं, ये सब आपको बताएंगे इस ब्रेक के बाद। खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं।

0: क्या है आदित्य हृदय स्तोत्र की महिमा? आदित्य हृदय स्तोत्र के पाठ का क्या है विधान? और आदित्य हृदय स्तोत्र से मिलेंगे कौन से वरदान? जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
1: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
2: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।

0: अक्टूबर आया, अपार त्योहार लाया और पॉजिटिविटी लेकर आया। सही मायनों में हम बार बार कह रहे हैं कि गुड न्यूज टुडे का महीना है, क्योंकि पूरा महीना आपको पॉजिटिविटी ही मिलेगी, पॉजिटिविटी की डोज मिलेगी और हम और आप मिलकर मनाएंगे तमाम उत्सव सिर्फ और सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर। डीपी शास्त्री जी हमारे साथ मौजूद हैं। शास्त्री जी, हमने नवरात्र का जिक्र भी कर लिया, उस दौरान तिथि कन्फ्यूजन कोई ना हो इसको लेकर भी चीजें क्लियर हो गई, करवा चौथ को लेकर भी क्लियर हो गई, लेकिन फिर उसके बाद जो आता है वो है दिवाली की तैयारियां। श्रुति, वहां पर हालांकि वो नवंबर के महीने में है, मैं चाहूंगी कि अभी से बताइए क्या इस बार तिथि कन्फ्यूजन इन बड़े त्योहारों को लेकर तो नहीं है?
1: देखिए, किसी त्योहार में अभी कोई कन्फ्यूजन नहीं है। 8 नवंबर को दिवाली मनाई जाएगी और वो मनाई जाएगी क्योंकि वो नक्षत्र भी इसमें सबसे बड़ी चीज है कि जब सूर्य तुला राशि में प्रवेश कर जाता है और तुला राशि में एक महीना रहता है उसमें बहुत सारा त्योहार आता है। नवरात्र की पूर्णावती होगी, विजयदशमी होगा, करवा चौथ आएगा, ये अश्विन पूर्णिमा होगा और उसी में दिवाली होगा, सब उसी में होगा। नीच के सूर्य में ही सबका आएगा। वो सूर्य भगवान विष्णु के पूजनीय है, लक्ष्मी के लिए पूजनीय है और राहु के नक्षत्र में ही लक्ष्मी का जन्म है, स्वाति नक्षत्र में ही लक्ष्मी का जन्म हुआ था। अमावस्या तिथि, चतुर्दशी तिथि जो पूजा जाता है, चतुर्थी के स्वामी भगवान शिव है और अमावस्या के स्वामी पितृदेव होता है, तो पितरों की तिथि में ही दिवाली पूजी जाती है। एक अमावस्या ऐसी तिथि है जो पितर के देवता, पितर के रूप और पितर के तिथि को भी महालक्ष्मी ने आशीर्वाद वरदान दे करके उसको दिवाली महापर्व में तब्दील कर दिया और दिवाली महापर्व मनाया जाता है। जब हम माँ के पूजा करते हैं तो हम ध्यान करते हैं या श्री स्वयं सुकृतिनाम भुवनेश्वर लक्ष्मी पापात्मनाम कृतिनाम हृदय सुबुद्धिम सरदा सतानुकूल जना प्रभवस्य लज्जाम तान त्वाम नताश स्वरिपालय देवी विश्वम। ब्रह्मांड के अधिष्ठात्री, ब्रह्मांड के पूरे भरण पोषण करने वाली महालक्ष्मी का उत्सव दिवाली के दिन हम मनाएंगे और 8 तारीख को ही मनाएंगे। कमल के फूल से पूजन करें, शस्त्र अर्चन करें, कनक धरा स्त्रोत्र के पाठ करें, श्री सूक्तम का पाठ करें, लक्ष्मी सूक्त का पाठ करें, भगवान विष्णु के सूक्त के पाठ करें, गोपाल सस्त नाम के जप करें, ये सब महालक्ष्मी के दिन किया जाता है। और अपने व्यापार के लिए, कारोबार के लिए धन लक्ष्मी, अष्टमा लक्ष्मी, कुबेर इत्यादि यंत्र का, श्री यंत्र का सिद्धि करते हुए दीपावली पे साल भर के कामना के लिए ये पर्व हम मनाते हैं। ये हमारे विशेष रूप में
0: बिल्कुल। नंदिता जी, अब आपके पास लौटती हूँ। अब हम क्योंकि सबसे पहले नवरात्र के उत्सव को मनाएंगे, हर दिन माँ के अलग अलग रूपों की आराधना होती है और आपने और नितिशा जी ने बताया था कि इस दौरान आप जो भी मैनिफेस्ट करते हैं, जो आपकी इच्छाएं होती हैं, आप उसकी पूर्ति भी कर सकते हैं। तो एक एक करके सबसे पहले अगर हम हेल्थ की बात करें, अगर हेल्थ वाइज कोई चाह रहा है कि इस नवरात्र माँ उनको यही आशीर्वाद देकर जाए, तो उसकी तैयारियां कैसे करनी है, किन माँ की आराधना करनी है, ये भी बताते चलिए।
2: जी, बहुत सुंदर प्रश्न है नवजोत जी, लेकिन थोड़ा सा आपने क्योंकि दीपावली के बारे में बात की,
0: तो उसको भी क्लियर कर दीजिए।
2: जी जी, तो पंच महादिवस होता है दीपावली का और इस समय क्या है कि 8 तारीख तक का तो धनतेरस हो गया या आपकी छोटी दिवाली हो गई या दीपावली की महारात्रि हो गई, वो तो 6, 7, 8 को रहेगी, लेकिन अमावस्या तिथि जो है वो रात्रि भर होकर के 9 तारीख के दोपहर 12:30 बजे तक का है। इसलिए गोवर्धन पूजा जो होगी वो 9 तारीख को ना होके 10 तारीख को होगी। सो देयर इज 1 डे का गैप इन ये 5 डेज का जो सेलिब्रेशन होता है और 10 को गोवर्धन पूजा, 11 को भाई दूज होगा। तो ये एक तो तिथियों का था दीपावली में, जब आप दीपावली कर रहे हैं।
0: अच्छा, इससे पहले एक सेकंड, आप सभी ने बताया कि इस बार नवरात्र में जो है वो तिथि कन्फ्यूजन नहीं है, इस बार कोई तिथि बढ़ी हुई तो नहीं है? हाँ नंदा जी, आप ही से जानना चाह रही हूँ।
2: जी नहीं, सप्तमी तिथि है वो 2 दिन चलेगी, सप्तमी तिथि, और सप्तमी तिथि आपकी 17 तारीख और 18 तारीख को रहेगी अक्टूबर को, और फिर अष्टमी तिथि जो है वो अष्टमी या नवमी का एक साथ संधि पूजन भी साथ में हो रहा है, तो वो तिथि जो है वो 19th को रहेगी। नवमी पूजन का जो होम होता है, हवन हम जो करते हैं वो जल्दी दोपहर में करते हैं, तो वो 19th को भी आप पूरे दिन कर सकते हैं और आप 20th को भी 12:30 बजे से पहले कर सकते हैं। तो ये एक तिथि में जो डिटेलिंग, जो पूजा के समय के जो मुहूर्त है वो आपको बता रही हूँ। लेकिन जो सप्तमी तिथि है, माता कालरात्रि का विशेष आशीर्वाद रहेगा इस बार, तो वो 2 दिन तक का पूजनीय है इस नवरात्रियों में, तो आप 2 दिन तक उनकी पूजा कर सकते हैं। और माता कालरात्रि को शुभंकरी भी बोला जाता है, यानी कि शुभता देने वाली, आपके सारे कल्याण करने वाली, और बहुत जल्दी प्रसन्न होती है। उग्र देवी दिखती है स्वभाव में, लेकिन बहुत जल्दी प्रसन्न होती है। शनि का ये द्योतक है, तो शनि से संबंधित साढ़े साथी है, ढैया है, या किसी भी प्रकार का शनि आपका यहाँ पे परेशान कर रहा है, तो आपको माँ कालरात्रि का पूजन अवश्य करना चाहिए। इससे आपके सारे नेगेटिविटी जीवन के हट जाते हैं। गुड़ का उनको भोग लगाएं, बहुत अच्छा रहता है, और एक पॉजिटिविटी आपकी आती है। देखिए, जो हर दिन है ना, माता शैलपुत्री से लेकर के माँ सिद्धिदात्री तक का, आप देखेंगे देवी का एक स्वरूप है, उस स्वरूप के साथ एक उनका मैसेज भी है कि आप अपनी लाइफ में क्या ट्रांसफॉर्मेशंस लेकर के आ सकते हैं। वहीं स्पिरिचुअलिटी में अगर मैं देखूं तो माता शैलपुत्री वाले दिन, जो प्रथम दिन नवरात्रि का होता है, हम देवी का आवाहन करते हैं, देवी का आशीर्वाद मांगते हैं। और अगर स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ना है हमको मेडिटेशन में, तो उस दिन हम अपने मूलाधार चक्र पर ध्यान करते हैं, और ऐसे कर करके वहां पे सिद्धि प्राप्त होती है, क्योंकि मूलाधार चक्र में गणपति का भी स्थान होता है, इसलिए प्रथम पूजनीय गणपति देव होते हैं। और गणपति देव आप जब देखेंगे तो हम गणपति बप्पा की ही पूजा के साथ साथ ये त्योहारों का पूरा समागम आगे बढ़ता जा रहा है और चीजें बनती जा रही हैं। तो ये जो 9 डेज होते हैं ना, ये बहुत पावरफुल डेज होते हैं, बहुत मिस्टिकल डेज होते हैं, इसमें बहुत गूढ़ रहस्य होते हैं। सबसे अच्छा होता है कि आप संक्षिप्त रूप में दुर्गा सप्तशती का अगर पाठ कर सकते हैं, नहीं कर सकते तो मध्यम चरित्र का जरूर पाठ करिए, नहीं तो कवच कील अर्गला पाठ कर सकते हैं। ये भी नहीं कर सकते तो पीछे सिद्ध कुंजी का स्रोत है, उसका पाठ अवश्य करिए। संकल्प लेके अपना नाम और गोत्र बोल करके पाठ करेंगे तो ज्यादा जल्दी आपको माँ प्रसन्न होकर के फल देती है।
0: बिल्कुल नितिशा जी, आपके पास आना चाहूंगी, स्टूडेंट्स के लिए इस बार कितना अहम है, और अगर उनको अपनी कोई इच्छा पूरी करनी तो क्या करना होगा उनको?
3: देखिए, जीएमटी ने अपना एक और काम किया कि गुड न्यूज फैलानी शुरू कर दी कि इस बार सप्तमी तिथि बढ़ने के कारण अष्टमी और नवमी तिथि का भी समावेश के कारण हम 18 को भी अष्टमी मना सकते हैं, 19 को भी, और 19 को नवमी मना सकते हैं, और 20 को भी सुबह के समय भी नवमी की तिथि हमें मिल रही है, तो हम पूजा कर सकते हैं। और दीपावली भी जो अमावस्या है, जो लक्ष्मी पूजन का सबसे पवित्र महारात्रि मानी जाती है, जो दारुण रात्रियों में 5 महारात्रियों में एक आती है, वो भी तिथि बढ़ गई है। तो ये तो एक गुड न्यूज ने अपने व्यूअर्स को एक और मैसेज दे दिया कि और माँ लक्ष्मी का और महाकाल रात्रि का आशीर्वाद हम प्राप्त कर सकते हैं, अपने जीवन से निगेटिविटी, हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा को रिमूव करते हुए अपनी आर्थिक समृद्धि को भी बढ़ा सकते हैं। तो गुड न्यूज ये काम करता रहता है, और जब गुड न्यूज एस्ट्रोलॉजर्स के साथ नहीं होता तो भी आप देखिए, चाहे सोशल वर्कर्स के साथ हो, चाहे टीचर्स के साथ हो, चाहे हॉस्पिटल डॉक्टर्स के साथ हो, तो मैं देखती हूँ आप वहां पे भी सोशलिज्म मतलब सोशल एनवायरनमेंट को चेंज कर रहे होते हो, लोगों तक वो मैसेज पहुंचा रहे होते हो। और स्टूडेंट्स के लिए ये जो नवरात्रे है ये बहुत स्पेशल है, क्योंकि पितृपक्ष जब भी आता है तब सूर्य कन्या राशि में होते, उसके बाद वो तुला राशि में प्रवेश करते हैं, नीच की राशि में। नवरात्रि की जो महानवमी है और जो दिवाली की रात है वो तुला राशि में हमें मिलती है। तो ये समय ऐसा होता है जब प्रकृति भी चेंज हो रही होती है, हम लोग शरदीय नवरात्रि की तरफ, शरद ऋतु की तरफ भी बढ़ रहे होते हैं, जब ठंडक बढ़ रही होती है, और इस समय अनाज की भी वो चेंज हो रही होती है, तो स्टूडेंट पर भी इसका बहुत ज्यादा असर पड़ता है। मैं हर स्टूडेंट से कहना चाहूंगी, ये वो समय होता है जब सूर्य शुक्र की राशि में प्रवेश करता है, और सूर्य बहुत ऊर्जावान है, और तुला राशि पृथ्वी तत्व की राशि और बैलेंस करने की राशि है। शिक्षा का ये सबसे अच्छा समय है, बल्कि घर में त्योहार होते हैं, त्योहार भी मनाइए, खुश भी रहिए, मिठाइयां भी खाइए, पटाखे भी बजाइए, पूजा भी करिए, लेकिन इसके साथ शिक्षा को लेने का भी सबसे ज्यादा पावरफुल समय यही रहता है, जो पितृपक्ष की अमावस्या तिथि से शुरू होकर के हमारा आगे बढ़ता है। क्योंकि दिवाली के अगले दिन जो गोवर्धन पूजा 10 तारीख को है, उस दिन हम अपनी कॉपी किताबों की, पेन की, इनकी पूजा भी करते हैं, इसलिए ये समय आपके लिए बेहद शुभ है। इस समय आपको क्या करना है, गणेश अथवा शीश का पाठ डेली करें, नहीं कर सकते तो 3 बार 11 बार ओम गणेशाय नमः का जाप करें, गणेश जी को दूर्वा जरूर चढ़ाएं, और फिर अपनी अपनी टेबल पर बैठे, और टेबल पर अगर आप ग्रीन कलर का कपड़ा बिछाते हैं और साथ ही साथ कोई प्लांट या कुछ छोटा सा प्लांट रख लेते हैं, जो फ्रेश एयर प्लांट हो, तो इससे भी आपके जीवन में सुख समृद्धि बढ़ती है। ये वो समय है जब आप जो भी चीजें लंग करते हो वो आप देखिए, पहले हमारे टाइम में इसी समय एग्जाम्स आया करते थे, इसके त्योहारों के बाद ही, क्योंकि ये त्योहारों के समय ही हमें लंग करने का समय मिलता था, बच्चों के एग्जाम इसी समय आ जाते हैं त्योहारों के आसपास ही, तो ये वो समय होता है जब आप जो लंग करते हो वो आपको सही से लर्न हो जाता है। जल्दी उठे, अपनी शिक्षा को ग्रहण करें, जो भी आपको याद करना है, सुबह का समय सबसे शुभ है क्योंकि सूर्य महाराज कर्क राशि और तुला राशि दक्षिणायन होने जा रहे हैं, तो ये दक्षिणायन का वो समय है जब हम उनकी ऊर्जाओं से जुड़ के अपनी सब कॉन्शियस माइंड को, अपने जो याद करने वाला लर्निंग का जो माइंड है वो पूरी तरह से सब कॉन्शियसली बढ़ा सकते हैं, तो आपका फोकस बहुत क्लियर होता है। तो सूर्यदेव की आराधना भी इस समय करना, क्योंकि छठ पूजा भी आती है, तो इस समय हम सबको सूर्य देव की आराधना भी अपने फोकस को बढ़ाने के लिए करनी।
0: संजय शर्मा, आपके पास आना चाहूंगी क्योंकि बहुत से लोग चाहते हैं, और ये समय भी बिल्कुल वैसा ही होता है, खास तौर पर दिवाली तक की अगर हम बात करें, कि आर्थिक स्थिति हमारी बहुत अच्छी हो जाए, फाइनेंशियल कंडीशंस बहुत अच्छी हो, इसके लिए क्या करना चाहिए?
4: देखो, दुर्गा का जो मंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः, इन मंत्रों का उच्चारण करें। और ये नवरात्रों का समय ऐसा होता है उसमें आपको प्रसन्न रहने की आवश्यकता है, जितना प्रसन्न रह करके माँ की आराधना करेंगे, उपासना करेंगे, उसके नौ रूपों की पूजा करेंगे, उससे आपके जीवन की नेगेटिविटी कट जाती है। कहते हैं कि दुख और दरिद्रता को अगर आपने त्यागना है जीवन में तो महागौरी की पूजा करने से, महागौरी की पूजा करेंगे तो आपका दुख और दरिद्र जो है दरिद्रता दूर हो जाएगी और लक्ष्मी की आपको अपने आप ही प्राप्ति हो जाएगी। अगर आप सिद्धि चाहते हैं तो माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करें। अगर आप शादी चाहते हैं, जीवन के अंदर विवाह जरूर हो जाए, तो कात्यायनी की पूजा करें। संतान चाहते हैं, स्कंद माता की करें। और अगर रोगों से निवृत्ति चाहते हैं तो आप कुष्मांडा माँ की पूजा करें। और अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में सारी नेगेटिविटी खत्म हो जाए, सारे स्ट्रेस टेंशन सब जो पावर्स हैं वो सब खत्म हो जाए, उसके लिए माँ काली की उपासना करें। तो जो जिस रूप में माँ का स्वरूप को ध्यान करता है, अगर लक्ष्मी चाहिए तो आप लक्ष्मी का आवाहन करें और उससे लक्ष्मी प्रसन्न होती है और सारी बाधाएं दूर करनी है तो सर्व बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य समनुता मनुष्य मित्र साधेन भविष्यति न संशया। दुर्गे देवी नमस्तुभ्यम सर्व कामार्थ साधिकम सिद्धिम सिद्धिम सिद्धिम व स्वप्ने सर्व प्रदर्शया विद्या रूपम, क्योंकि विद्या चाहिए तो विद्या का ध्यान करना है हमें, तो जो स्वरूप है माँ के उन सारे स्वरूपों की आराधना करें जिससे कि माँ दुर्गा आपके जीवन के अंदर सुख शांति समृद्धि यश कीर्ति सम्मान। कहा जाता है, अभी मावस की बात कर रहे थे हम लोग, मावस्या जब ही होती है जब सूर्य और चंद्रमा जब एक घर में आ जाते हैं तो अमावस्या तिथि हो जाती है। कहते हैं कि अंधकार और उजाला जब एक साथ जीवन के अंदर होगा तो जीवन के अंदर खुशी भी आएंगे गम भी आएंगे, तो मावस की रात के दिन जब आप प्रसन्न होते हैं और प्रसन्न होकर के माँ की आराधना करते हैं कि अंधकार से प्रकाश की ओर आने के लिए, तो आप दीप ज्योति का प्रज्वल कर लेते हैं। और कहा जाता है दीपो ज्योति परब्रह्मा दीपो ज्योति जनार्दना, दीपो में हर्तु में पापम प्राते दीप संध्या दीप नमस्तुते शुभम करो तु कल्याणम आरोग्यम सुख संपदाम शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप नारायण नमो। तो इस प्रकार से आपको माँ की आराधना करनी है, पूजा करनी है, पाठ
0: हर रूप की आराधना आप कर सकते हैं अपनी इच्छा पूर्ति के लिए। चले एक आखिरी सवाल चलते चलते नंता जी आपके पास आना चाहूंगी संक्षेप में। देखिए, ये कहने को हमारे धार्मिक उत्सव है लेकिन इसमें हर कोई शामिल होता है, हर धर्म के लोग इसमें शामिल होते हैं। आप गुजरात देख लीजिए, बड़े बड़े पंडालों में डांडिया होता है। आप बंगाल चले जाइए, बड़े बड़े पंडाल सजते हैं, हर पंडाल अपने आप में एक संदेश देता है। उत्तर भारत में मेले लगते हैं, लोग मेले में जाते हैं, एक तरीके से ये सोशल फेस्टिवल यानी कि सामाजिक फेस्टिवल है। ये क्या संदेश देता है पूरी दुनिया को?
2: जी, बहुत ही सुंदर प्रश्न है, बिकॉज ये पूरा जब हम गणपति बप्पा से शुरू करते हैं, फिर हम अपने पितरों का स्मरण करते हैं, फिर नव देवियां जो है नव दुर्गाएं आपके अंदर के अंदर की शक्ति को भी एक्टिवेट करती है, संचारित करती है, और आपके एनवायरमेंट यानी कि सोसाइटी की शक्ति को भी उसका भी समावेश लेके आती है कि नकारात्मक हटते पॉजिटिव आए। अब देखिए, ये जेन जी से रिलेटेड मैं कुछ टिप्स देना चाहूंगी इसी से संबंधित, क्योंकि सबसे ज्यादा एक्टिव होकर के वही जाते हैं। तो अगर आपको बहुत ज्यादा मेंटल स्ट्रेस है, परेशानियां आपको हैं, तो आप माँ शैलपुत्री का अवश्य आह्वान करें, उनकी पूजा करें। अगर आपको स्पोर्ट्स में आप बहुत अच्छा कर रहे हैं या फिर आप आर्मी और पुलिस आदि में इंटरव्यू देना चाहते हैं, एग्रेशन वाली जो एक्टिविटीज होती हैं उनमें आप काम करते हैं, एडवेंचर स्पोर्ट्स वगैरह करते हैं, तो आपने माँ ब्रह्मचारिणी का आशीर्वाद अवश्य लेना चाहिए। नवरात्रि है, बहुत पॉजिटिव है, और बहुत क्विक मैं बता देती हूँ, लेकिन अगर आपकी लव लाइफ बिल्कुल खराब जा रही है और आपको एक स्टेडी बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड चाहिए तो माँ चंद्र घंटा की पूजा अवश्य करिए,
0: जी जी
2: स्टेबिलिटी
0: जी
2: आ जाएगी लाइफ में।
0: नंदा जी
2: माँ
0: अभी वक्त
2: कुष्मांडा
0: इतना ही
2: यादव
0: है बिल्कुल, क्योंकि थ्रू आउट नवरात्र आप सभी लोग हमारे साथ रहेंगे ही, चर्चा हम करते रहेंगे हर माँ की आराधना किस तरीके से आपको करनी है, कौन सी मनोकामनाओं की पूर्ति हो सकती है। तो कुल मिलाकर गुड न्यूज टुडे पर फेस्टिवल सीजन की शुरुआत हो चुकी है और इस बार कितनी खुशियां लेकर आ रहा है ये फेस्टिव सीजन, कितना पॉजिटिव रहने वाला, इसी को लेकर हमने अपने तमाम खास मेहमानों से चर्चा की। फिलहाल रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, आप देख रहे हैं।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
1: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से
6: भारतीय वायुसेना इस साल अपना 94वां स्थापना दिवस बड़े ही भव्य अंदाज में मनाने जा रही है। 8 अक्टूबर को गाजियाबाद के हिंडन एयरफोर्स स्टेशन पर मुख्य कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। तो इस बार की सबसे खास बात यह है कि एयरफोर्स डे का फ्लाईपास्ट पहली बार पवित्र नदी गंगा के ऊपर वाराणसी में आयोजित किया जाएगा। नमो घाट के पास वायुसेना की सूर्यकिरण टीम पराक्रम का प्रदर्शन करेगी।

0: अचूक अभेद्य सटीक भारतीय वायु सेना की यही पहचान है। इसी थीम के साथ इंडियन एयरफोर्स इस बार अपना 94वां स्थापना दिवस मनाएगा। 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस की मुख्य परेड हिंडन के वायुसेना स्टेशन में आयोजित की जाएगी। इस साल वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह परेड का निरीक्षण करेंगे। साथ ही थल और जल सेना प्रमुख भी इसमें शामिल होने वाले हैं। परेड से पहले MI-17 1B हेलीकॉप्टर फ्लाई पास्ट करेंगे। इन पर राष्ट्रीय ध्वज और भारतीय वायुसेना का ध्वज लगा होगा।
1: द मेन इवेंट द एयरफोर्स डे परेड विल बी हेल्ड एट एयरफोर्स स्टेशन हिंडन ऑन 8th अक्टूबर। द परेड लास्ट ईयर वॉज हेल्ड एट हिंडन आफ्टर अ गैप ऑफ 3 years। इन द ईयर 2022 द परेड वॉज हेल्ड एट चंडीगढ़, इन 2023 एट प्रयागराज एंड इन 2024 एट चेन्नई। In alignment with the government's vision of offering citizens across the nation a closer glimpse of the might and capability of their Indian Air Force.
0: Static display में लड़ाकू और परिवहन विमान के साथ हेलीकॉप्टर, सतह से हवा और सतह से सतह पर मार करने वाले गाइडेड हथियार सिस्टम, रडार और एक तरफा हमला करने वाले मानव रहित हवाई सिस्टम प्रदर्शित किए जाएंगे। ये भारतीय वायुसेना के स्वदेशीकरण और मेक इन इंडिया पहल को भी दर्शाएगा। यही नहीं, भारतीय वायुसेना की ड्रमर्स टीम जिसमें 33 युवा पुरुष और महिला एयर वॉरियर शामिल है, एक अनोखा म्यूजिकल प्रदर्शन पेश करने वाली है। इसके बाद IAF हेरिटेज फ्लाइट का एयर डिस्प्ले होगा, जिसमें विंटेज हिंदुस्तान ट्रेनर 2 और टाइगर मॉथ एयरक्राफ्ट का सोलो डिस्प्ले शामिल होगा। हाल के वर्षों में ये परेड चंडीगढ़, प्रयागराज, चेन्नई और हिंडन में आयोजित की जा चुकी है। सरकार के इस कदम का मकसद वायुसेना दिवस के आयोजन को अलग अलग शहरों तक पहुंचाना है, ताकि देश भर के लोगों को भारतीय वायुसेना की ताकत, क्षमता, पराक्रम और हवाई करतब को करीब से देखने का मौका मिल सके। भारतीय वायुसेना इस साल अपना 94वां स्थापना दिवस खास अंदाज में भी मनाने वाली है। 25 अक्टूबर को पहली बार वाराणसी के नमो घाट पर आसमान में वायुसेना की एरोबेटिक टीम हवाई करतब दिखाने वाली है, जिसमें भारतीय वायुसेना की सिर्फ महिलाओं वाली एरोबेटिक दल टीम शक्ति, तालमेल भरी गतिविधियों और मुश्किल फॉर्मेशन के जरिए अपनी सटीकता, फुर्ती और अनुशासन का प्रदर्शन करेंगी। शिवानी शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आ रही हैं।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।

0: क्या है आदित्य हृदय स्तोत्र की महिमा? आदित्य हृदय स्तोत्र के पाठ का क्या है विधान? और आदित्य हृदय स्तोत्र से मिलेंगे कौन से वरदान? जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती हैं। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
2: एवरेस्ट तीखा लाल, सही तीखा सही लाल।
3: फिर से संत रविदास नगर के नाम से जाना जाएगा यूपी का भदोही जिला। कारपेट एक्सपो के उद्घाटन पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ऐलान, जल्द ही सरकार की ओर से अधिसूचना होगी जारी। वाराणसी में शक्ति आराधना उत्सव की तैयारियां तेज, पश्चिम बंगाल की तर्ज पर होती है दुर्गा पूजा, मां की प्रतिमाओं को अंतिम रूप दे रहे हैं कारीगर। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में कैप्टन स्मिथ मच्छार के लिए पूजा अर्चना, हवन पूजन के साथ भगवान से जल्द स्वस्थ होने की कामना, जामास के लिए देश भर में हो रही है प्रार्थनाएं। सुहाने मौसम में हिमाचल में बढ़ी सैलानियों की संख्या, मैक्लोडगंज की सड़कों पर पर्यटकों का तांता, पर्यटन कारोबारियों की खिली चेहरे। जापान के एगा नोया में एशियन गेम्स 2026 का भव्य समापन समारोह, दो गोल्ड और एक सिल्वर मेडल जीतने वाली शूटर नीरू ढांडा ने थामा तिरंगा, भारतीय खिलाड़ियों ने जीते कुल 85 मेडल।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
3: नमस्कार, स्वागत है आपका, मैं हूं आपके साथ वैभव राज शुक्ला। देखिए, जापान के आइची नागोया में 19 सितंबर से शुरू हुए एशियन गेम्स 2026 का आज समापन हो गया। क्लोजिंग सेरेमनी में भारत की ध्वज वाहक नीरू ढांडा रही। नीरू ने 20वें एशियाई खेलों में दो गोल्ड मेडल और एक टीम सिल्वर मेडल जीतकर शानदार प्रदर्शन उन्होंने दिखाया। अगले एशियाई खेलों की मेजबानी कतर करने जा रहा है, जिसका आयोजन जो है दोहा में किया जाएगा। कतर को ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया का झंडा सौंप दिया गया है। समापन समारोह में जापान के कलाकारों ने शानदार पेशकश करके सभी का दिल जीत लिया और आतिशबाजी के प्रदर्शन और एशियाई खेलों की मशाल को बुझाने के साथ आइची नागोया यात्रा का समापन भी हो गया। अब 2030 में दोहा एशियन गेम्स का आयोजन किया जाएगा। जापान के आइची नागोया में हुए एशियन गेम्स में कई मायनों में भारत का प्रदर्शन ऐतिहासिक रहा है। कुल 85 मेडल्स के साथ भारत चीन जापान और दक्षिण कोरिया के बाद मेडल टैली में चौथा स्थान पर है। देखिए, 21 करोड़ के साथ इंडियन एथलीट्स ने एशियन गेम्स में कैसे कामयाबी की सुनहरी चमक बिखेरी।
4: एशियन गेम्स के 20वें पड़ाव पर भारत ने कई स्वर्णिम कीर्तिमान अपने नाम किए हैं। आइची नागोया 2026 एशियन गेम्स में 21 गोल्ड के साथ इंडियन एथलीट्स ने एशियन गेम्स में एक बार फिर अपनी धाक जमाई। सुनहरी कामयाबी की इस फहरिस्त में सबसे आगे रहे भारतीय तीरंदाज, जिन्होंने 5 गोल्ड पर निशाना साधा। भारतीय तीरंदाजों ने ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए 9 मेडल हासिल किए, जिनमें 5 गोल्ड, 2 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज मेडल्स शामिल हैं। 17 साल के कुमकुम मुहोड़ ने महिला व्यक्तिगत रिकर्व स्पर्धा में दक्षिण कोरिया की ओ येजिन को रोमांचक शूटआउट में हराकर गोल्ड मेडल जीता। इसी के साथ एशियन गेम्स के इतिहास में इस स्पर्धा में गोल्ड जीतने वाली वो पहली भारतीय महिला बनी। महिला रिकर्व इवेंट में भी कुमकुम मुहोड़, कीर्ति शर्मा और अंकिता भगत की जोड़ी ने गोल्ड मेडल पर निशाना साधा। साथ ही कंपाउंड इवेंट्स में भी भारत का दबदबा देखने को मिला और भारतीय तीरंदाजों ने एक दो नहीं पूरे 3 गोल्ड जीते। क्रिकेट और हॉकी के मैदान से भी फैंस को गोल्ड वाली गुड न्यूज मिली। महिला क्रिकेट के बाद मेंस क्रिकेट में श्रेयस अय्यर एंड कंपनी ने पाकिस्तान को हराकर गोल्ड जीता। वहीं पुरुष हॉकी टीम ने मलेशिया को 5-1 से हराकर और महिला हॉकी टीम ने चीन को मात देकर गोल्ड पर कब्जा किया और 44 साल का सूखा खत्म किया। बॉक्सिंग में भी भारतीय मुक्केबाजों ने गोल्ड की हैट्रिक जमाई। 75 किलोग्राम कैटेगरी में लवलीना बोरगोहेन, 65 किलोग्राम वर्ग में परवीन हुड्डा और 80 किलोग्राम कैटेगरी में अंकुश बंघाल ने गोल्ड जीता। कुश्ती के अखाड़े में भी भारतीय पहलवान चमके। अमन सहरावत ने 57 किलोग्राम और सुजीत कलकल ने 65 किलोग्राम फ्री स्टाइल में गोल्ड हासिल किया। कबड्डी में भी भारतीय टीम ने साख के मुताबिक प्रदर्शन किया। पुरुष और महिला दोनों कबड्डी टीमों ने भारत को गोल्ड दिलाया। शूटिंग में नीरू ढांडा ने ट्रैप शूटिंग में गोल्ड जीतकर भारत का नाम रोशन किया, तो वहीं कमानजीत और सुरुचि सिंह ने 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स टीम इवेंट में गोल्ड जीता। खास बात यह है कि ट्रैक एंड फील्ड में भी भारतीय एथलीट्स ने सुनहरी चमक बिखेरी। महिला 4x400 मीटर रिले टीम ने भारत को गोल्ड दिलाया, तो वहीं प्रणवी उर्स ने गोल्फ में गोल्ड जीतकर कामयाबी का नया इतिहास रच दिया। क्रिकेट, हॉकी, कुश्ती, शूटिंग, रेसलिंग, गोल्फ, हर जगह भारतीय खिलाड़ियों ने मौजूदगी दर्ज कराई और कामयाबी की गोल्डन चमक से पूरे देश को झूमने का मौका दिया। उम्मीद यही कि इन खिलाड़ियों की सफलता देश के युवा खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा बनेगी और आईची नागोया 2026 एशियन गेम्स भारतीय खेलों के लिए अहम पड़ाव साबित होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: बीसीसीआई ने आज सोशल मीडिया पर एक तस्वीर शेयर की है जिसमें टीम इंडिया गोल्ड मेडल के साथ सेलिब्रेट करते हुए नजर आ रही है। बेशक ये पल जो है बहुत खास है। कल टीम इंडिया ने पाकिस्तान को 19 रन से हराकर गोल्ड पर कब्जा किया था। महिला क्रिकेट के बाद मेंस क्रिकेट में भी भारत की थमक दिखाई दी और इस कामयाबी के बाद जश्न तो बनता ही है। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि भारतीय खिलाड़ी गोल्ड मेडल के साथ सेल्फी खिंचाते हुए नजर आ रहे हैं, सेलिब्रेट करते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, एशियन गेम्स में कामयाबी के रंग बिखेर कर घर लौटे रहे खिलाड़ियों का फैंस दिल खोल कर जबरदस्त स्वागत कर रहे हैं, जोरदार स्वागत से। ये चैंपियंस भी बहुत उत्साहित हैं, इन्हें भरोसा है कि आगे भी ये शानदार प्रदर्शन यूं ही जारी रहेगा, फैंस को जश्न मनाने के मौके मिलते रहेंगे।

0: ये महज जश्न नहीं कामयाबी का वो उत्सव है जिसे भारतीय महिला हॉकी की स्टार्स हमेशा यादों में सजो कर रखेंगी। जैसे ही रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर भारतीय महिला हॉकी टीम के कप्तान सलीमा टेटे साथ ही खिलाड़ियों निकी प्रधान दीपिका सोरेन के साथ पहुंची, ढोल नगाड़ों और फूल मालाओं के साथ इन चैंपियंस का लोगों ने स्वागत किया। हॉकी स्टिक्स लेकर फैंस ने जमकर डांस किया, साथ ही लोक संस्कृति के रंग भी हर ओर बिखरे दिखे। एशियन गेम्स में फाइनल में चीन को हराकर महिला हॉकी टीम ने गोल्ड के लिए 44 साल का इंतजार खत्म किया, लिहाजा इन चैंपियंस का जोरदार स्वागत तो बनता ही है। सोने पे सुहागा ये कि महिला हॉकी टीम ने सिर्फ गोल्ड ही नहीं जीता, 2028 ओलंपिक गेम्स के लिए भी क्वालिफाई कर लिया है। अब इसी सुनहरी कामयाबी को ओलंपिक में भी दोहराने का इरादा है।
1: काफी अच्छा लग रहा है क्योंकि जब क्वालिफाई नहीं होता है तो फिर उस टूर्नामेंट के बाद फिर यही रहता है कि हमें क्वालिफाई करना है। तो अभी एक साइड से हम टेंशन फ्री हो चुके हैं, तो अभी हम ओलंपिक के लिए तैयारी कर सकते, जो टाइम मिला हम उसमें ओलंपिक का तैयारी करेंगे। जैसे आप लोग देख ही रहे, अभी जैसे हम लोग बैक टू बैक वर्ल्ड कप क्वालिफाई खेला, उसके बाद नेशन कप खेले, वर्ल्ड कप खेले और अभी एशियन गेम खेले, और बैक टू बैक हमारी टीम काफी अच्छा इम्प्रूव कर रही है, तो हम कोशिश करेंगे कि ओलंपिक में हम भी पोडियम फिनिश करें।
0: जाहिर है ये स्वागत अभिनंदन का पल इन खिलाड़ियों के लिए ही नहीं, इनके परिवार वालों के लिए भी यादगार लम्हा बनकर आया है।
2: बिल्कुल बड़ी जीत है, 44 साल बाद आई है, जीत के तो बहुत खुशी लग रहा है और अच्छा लग रहा है। इतना लोग स्वागत करने के लिए आए हैं, इतना प्लेयर लोग आए हैं, इतना हॉकी के जितने भी खिलाड़ी और जितने भी क्या बोलेंगे दर्शकगण, सभी को अच्छा लग रहा है देख के। ये लोग को इतना अच्छा से स्वागत हो रहा है तो बहुत अच्छा लग रहा है।
0: वही बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भी हॉकी खिलाड़ियों का जबरदस्त स्वागत हुआ। फैंस का ये जोश और उत्साह देख कर हॉकी स्टार्स भी काफी खुश नजर आईं।
3: डेफिनेटली बहुत अच्छा फील हो रहा है क्योंकि हमारी बहुत साल की मेहनत है और जाने से पहले हमारा यही टारगेट था कि हमें एलए के लिए क्वालिफाई करना है, तो डेफिनेटली बहुत अच्छा लग रहा है।
0: एशियन गेम्स में बॉक्सिंग में गोल्डन पंच जड़कर लौटे चैंपियंस का भी फैंस ने दिल खोलकर स्वागत किया। गोल्डन गर्ल लवलीना और परवीन का स्वागत करने के लिए यहां बड़ी संख्या में फैंस जुटे। लवलीना बोरगोहिन एशियन गेम्स में अपना मेडल का रंग बदलकर काफी उत्साहित हैं। उन्हें भरोसा है आगे भी उनका शानदार प्रदर्शन जारी रहेगा।
4: हर एथलीट का सपना रहता है कि बड़े कंपटीशन में जाए, वहां गोल्ड मेडल लाए। एशियन गेम्स इतना बड़ा कंपटीशन है और ऊपर से मेरे लिए बहुत ज्यादा स्पेशल था क्योंकि मेरा बर्थडे था, और इसलिए भी स्पेशल है कि मेरा सेकंड एशियन गेम्स है और लास्ट टाइम मेरा सिल्वर था, तो मेरा माइंड में पूरा था कि मुझे इस बार कलर चेंज करना था, तो इस वजह से भी बहुत ज्यादा स्पेशल।
0: दिल्ली एयरपोर्ट पर भी स्क्वैश टीम का जोरदार स्वागत हुआ। अनाहत सिंह, तन्वी खन्ना, जोशना चिनप्पा और शमीना रियाज ने कहा कि एशियन गेम्स में मेडल जीतकर वो काफी खुश हैं। इन खिलाड़ियों के चेहरों पर कामयाबी की खुशी साफ नजर आई। वही महाराष्ट्र के अमरावती में एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीतने वाले कुमकुम मोहोड़ के घर जबरदस्त जश्न मनाया गया, आतिशबाजी की गई।

0: 17 साल की कुमकुम मोहोड ने तीरंदाजी में कामयाबी का इतिहास रचते हुए महिला व्यक्तिगत रिकर्व स्पर्धा में गोल्ड जीता। जाहिर है पूरे परिवार के लिए एक गर्व का पल है और कुमकुम का परिवार इस वक्त खुशियों से सराबोर है।
1: मुझे बहुत खुशी हो रही है कि वो इस मुकाम पर पहुंच गई है एशियन गेम में और अपने लिए 3 मेडल उसने सिक्योर कर लिए।
2: आगे ओलंपिक 2028 बस वही उसका सपना है, वहां तक पहुंचना ही है उसको।
0: जापान में धूम मचाकर एशियन गेम्स में देश का मान बढ़ाकर लौट रहे खिलाड़ियों के स्वागत अभिनंदन का दौर अभी लंबा चलेगा। इन खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाकर फैंस भी भारतीय खेलों को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभा रहे हैं, क्योंकि आगे चुनौती बड़ी है। एशियन गेम्स में चमके सितारे अब नई ऊर्जा नई प्रेरणा के साथ ओलंपिक की तैयारियों में भी जुटने वाले हैं। महाराष्ट्र के अमरावती से धनंजय।

0: उनका हालचाल जाना और इसराइल के स्वतंत्रता दिवस समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उन्हें विशेष अतिथि के तौर पर इन्वाइट भी किया है।
1: भारत के लाल कैप्टन स्मिथ मछार के बेजोड़ हौसले और जज्बे को दुनिया कैसे सलाम कर रही है, ये इससे जुड़ी सबसे ताजा तस्वीर है। इस तस्वीर को केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने सोशल मीडिया पर शेयर किया है। ये तस्वीर बयां कर रही है कि कैसे भारत के कैप्टन स्मिथ मछार ने अपनी हिम्मत और जज्बे से इसराइल का दिल जीत लिया। यहाँ बड़े स्क्रीन पर कैप्टन स्मिथ मछार की तस्वीर है, देखिए कैसे लोग उनका सम्मान कर रहे हैं, उनके जज्बे को सलाम कर रहे हैं। दरअसल कैप्टन स्मिथ मछार ने जिन 174 पैसेंजर्स की जान बचाई उनमें 166 यात्री इसराइल के थे। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो स्मिथ मछार ने सिर्फ 174 लोगों की जान ही नहीं बचाई, 9/11 जैसे आतंकी हमले की कोशिश को भी उन्होंने नाकाम किया। इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने स्मिथ से फोन पर बातचीत की, उनका हालचाल जाना और उन्हें भारत, इसराइल और पूरी दुनिया का हीरो बताया। साथ ही बेंजामिन नेतन्याहू ने भारत के इस लाल को इसराइल के स्वतंत्रता दिवस पर विशेष अतिथि के तौर पर भी आमंत्रित किया। नेतन्याहू ने स्मिथ से कहा, कैप्टन मैं आपको और अपने प्यारे दोस्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हमारे अगले स्वतंत्रता दिवस पर एक खास जश्न की मशाल जलाने के लिए आमंत्रित करना चाहता हूं। आप भारत और इसराइल के बहादुर लोगों के सच्चे हीरो हैं और पूरी दुनिया के भी हीरो हैं। मैं आपके जल्द ठीक होने की कामना करता हूं।
2: And again, I want to have Captain Smith and Prime Minister Modi, our great friends. I really would like them to bear a celebratory flame. It's our highest honor that we give in our Independence Day. It's usually reserved for Israeli citizens, but I think here in this case, all the citizens of Israel will embrace you. They do now and they will then too. So we hope to see you very soon in Israel.
1: स्मिथ से बातचीत के दौरान बेंजामिन नेतन्याहू ने उनसे घटना की पूरी जानकारी ली। इस दौरान नेतन्याहू ने स्मिथ मछार के हौसले की भी जमकर तारीफ की।
2: Well, I frankly I'm amazed at your courage, at your coolness of judgment under impossible conditions.
1: इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कैप्टन स्मिथ मछार से कहा, पूरी दुनिया में आपकी तारीफ हो रही है, आप इसराइल के हीरो हैं, आप भारत के हीरो हैं, आप पूरी दुनिया के हीरो हैं। मैं आपको बता सकता हूं कि यहां लोग खुले दिल से आपका स्वागत करेंगे। अपनी समझबूझ, अदम्य साहस और जज्बे से 174 लोगों की जान बचाने वाले भारत के इस लाल को आज पूरी दुनिया सलाम कर रही है। भारतीय मूल के पायलट कैप्टन स्मिथ मछार ने 30 सितंबर को दुबई से इसराइल जा रही फ्लाइट को अपनी जान जोखिम में डालकर क्रैश होने से बचाया। गंभीर रूप से जख्मी होने के बावजूद कैप्टन स्मिथ मछार ने आतंकी को पायलट को काबू में किया और 174 लोगों की जिंदगी बचाई। कैप्टन मछार के इस हौसले की पूरी दुनिया में तारीफ हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप तक ने स्मिथ मछार को पूरी दुनिया का हीरो बताया है। आज महज इसराइल ही नहीं, भारत समेत पूरी दुनिया में स्मिथ के जल्द ठीक होने की प्रार्थना की जा रही है। और जहां तक विश्व शांति की बात है तो भारत का ये लाल पूरी दुनिया के लिए असल जिंदगी का सुपर हीरो बनकर उभरा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
0: देश से मॉनसून की वापसी के साथ ही मौसम खुशनुमा हो गया है। पहाड़ों के सुहाने मौसम का आनंद लेने के लिए बड़ी संख्या में सैलानी हिल स्टेशंस का रुख कर रहे हैं। स्थानीय कारोबारी भी सीजन से पहले पर्यटकों के पहुंचने से खुश नजर आ रहे हैं। ये नहीं आपको बता दें, केदारनाथ धाम और गंगोत्री धाम में भी श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। आस्था पथ पर श्रद्धालु कतार में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं।
3: पहाड़ों पर मौसम बदला, धूप निकली और आस्था की बयार बहर निकली। तस्वीरें केदारनाथ धाम की हैं, जहां पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी है। बाबा केदार के दर्शन के लिए भक्तों की लंबी कतार लगी हुई है। श्रद्धालुओं का उत्साह और आस्था बरकरार है। पुलिस और प्रशासन के सहयोग से श्रद्धालु

0: भक्तों को दर्शन का सौभाग्य बारी आने पर मिल रहा है।
1: श्री केदारनाथ धाम में लगातार श्रद्धालुओं का आवागमन हो रहा है। लगभग 3 से 4 दिन का जो वीकेंड है, इसमें काफी संख्या में श्रद्धालु श्री केदारनाथ धाम में पहुंच रहे हैं और निरंतर, जैसे कि आप सब लोग देख रहे होंगे कि श्रद्धालुओं की जो संख्या है निरंतर इनमें बढ़ोतरी हो रही है। और विशेष रूप से मंदिर समिति द्वारा स्थानीय तीर्थ पुरोहितों केदार सभा के साथ आपसी समन्वय के साथ साथ साथ ही पुलिस प्रशासन के द्वारा लगातार श्रद्धालुओं को सुगमता से दर्शन करवाए जा रहे हैं।
0: दूर दूर से श्रद्धालु बाबा केदार के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं, जिसकी वजह से पूरा केदारनाथ धाम भक्तों से भरा हुआ है। जिधर देखो उधर श्रद्धा और भक्ति का अनोखा संगम देखने को मिल रहा है। पिछले दिनों हुई बर्फबारी से केदारनाथ के आसपास के पहाड़ अभी सफेद दिख रहे हैं, उस पर से चटकीली धूप यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता बढ़ा रही है, जिससे श्रद्धालुओं को दो तरह की सौगात महसूस करने का मौका मिल रहा है। गंगोत्री धाम और हर्षिल वैली में भी पर्यटकों और तीर्थ यात्रियों की भारी भीड़ उमड़ रही है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु और पर्यटक हर्षिल और गंगोत्री घाट का रुख कर रहे हैं। पर्यटकों की बढ़ती आमद का असर होटल, होमस्टे और रेस्टोरेंट कारोबार पर भी दिखाई दे रहा है। अधिकांश पर्यटकों से भरे हुए हैं। धर्मशाला और आसपास के टूरिस्ट प्लेसेस पर पर्यटकों की भीड़ देखने को मिल रही है, जिससे पर्यटन से जुड़े कारोबार ने रफ्तार पकड़ ली है। विश्व प्रसिद्ध त्रियुंड ट्रैक पर सैलानियों की भीड़ देखी जा रही है। बड़ी संख्या में सैलानी मैक्लोडगंज भी पहुंच रहे हैं और खूबसूरत वादियों का दीदार कर रहे हैं। लंबे वीकेंड का फायदा होटल, होमस्टे, रेस्टोरेंट और पर्यटन से जुड़े कारोबारियों को मिल रहा है। हालांकि अभी सीजन नहीं है, लेकिन उससे पहले ही टूरिस्ट प्लेस गुलजार हो गए हैं।
2: ऑलमोस्ट कोई 50-50% जो बुकिंग है वो पूरे एरिया के अंदर हम उम्मीद करते होगी, वो अगला हफ्ता भी यही सिलसिला चलेगा। जैसे मैंने पहले बोला कि हम इसी दिवाली सीजन बोलते हैं, तो जैसे हम दशहरा मनाते हैं, दिवाली मनाते हैं, या फिर बंगाल का बहुत बड़ा टूरिस्ट वो दशहरा मनाकर हिमाचल का रुख करता है, दिवाली शायद हम लोगों के साथ ही मनाता है। स्कूल कॉलेजों की स्टडी टूर हम पिछले 1-2 दिन से देख रहे हैं कि काफी तादाद के अंदर धर्मशाला में पहुंच रहे हैं।
0: बारिश और बर्फबारी का दौर खत्म हो चुका है और ठंडी धूप का आगमन हो चुका है, जिसके चलते सैलानी पर्यटन स्थलों की ओर रुख कर रहे हैं। इसलिए ट्रैफिक पुलिस और पुलिस भी व्यवस्था बनाए रखने के लिए सड़क पर मुस्तैद हो गई है। रुद्रप्रयाग से प्रवीण सिंहवाल, उत्तरकाशी से ओमकार बहुगुणा और धर्मशाला से पूजा शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे के 140 साल के होने पर नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे ने महोत्सव का आयोजन किया है, जिसका शुभारंभ रेलवे के जीएम ने पूरा किया और पूरे उत्साह और पारंपरिक अंदाज में महोत्सव का शुभारंभ किया गया। इस महोत्सव का उद्देश्य दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे की विरासत, इतिहास और आकर्षण को लोगों तक पहुँचाने के लिए कई पहल की गई हैं। दार्जिलिंग के सुकना स्टेशन पर एक का फोटो गैलरी बाकायदा लगाई गई है, जिसमें दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे की पुरानी यादें, इतिहास को बाकायदा दर्शाया गया है। साहित्य और स्थानीय प्रतिभाओं का संगम भी इस अनूठे उत्सव में देखने को मिल रहा है। पोएट्स ऑफ कम्युनिटी के सहयोग से आयोजित इस फेस्टिवल में रिदम ऑन व्हील्स टॉय ट्रेन की सवारी, साहित्यिक कार्यक्रम और विभिन्न स्थानों पर कार्यशालाएँ आयोजित की जा रही। बात करते हैं सलमान खान की लंबे समय से रिलीज की मंजूरी के लिए अटकी फिल्म की। सलमान की वॉर फिल्म मातृभूमि को आखिरकार हरी झंडी मिल चुकी है। अब CBFC की तरफ से मंजूरी मिलने का इंतजार है। उम्मीद की जा रही है कि इसी साल ये फिल्म पर्दे पर दस्तक देगी।
4: जवानों याद रहे, जख्म लगे तो मेडल समझना और मौत दिखे तो सलाम करना और कहना बिरसा मुंडा की, बजरंग बली की, भारत माता की।
5: सुपरस्टार सलमान खान की अपकमिंग फिल्म की शुरुआत रैलान बैटल ऑफ कलवान के तौर पर हुई थी। लेकिन कुछ दिक्कतों की वजह से इसी साल की शुरुआत में इसका नाम बदलकर मातृभूमि कर दिया गया। इस फिल्म की कहानी भारत और चीन के बीच 2020 में हुए टकराव पर बेस्ड है। इसलिए रक्षा मंत्रालय को फिल्म में चीन से जुड़े कुछ सीन से आपत्तियां थी, क्योंकि हाल में दोनों देशों के रिश्तों में सुधार देखा जा रहा है। इसी वजह से फिल्म के रिलीज में देरी हो रही थी, लेकिन अब फिल्म को सरकार की तरफ से हरी झंडी मिल चुकी है और फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए पूरी तरह से तैयार है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सूचना और प्रसारण मंत्रालय को मेकर्स ने मातृभूमि का जो नया वर्जन पेश किया है उससे मंत्रालय को कोई आपत्ति नहीं है, जिसके चलते इस वॉर ड्रामा फिल्म के लिए एनओसी दे दी गई है। एनओसी मिलने के बाद अब ये फिल्म इस साल के आखिरी में सिनेमाघरों में दस्तक दे सकती है। हालांकि इसकी ऑफिशियल डेट अभी तक सामने नहीं आई है। सूत्रों के मुताबिक सलमान खान 13 नवम्बर पर नजर बनाए हुए हैं। उनका ये मानना है कि दिवाली के बाद का समय जब सब फेस्टिव मूड में होंगे तब इस फिल्म को रिलीज करना ठीक होगा। हालांकि सेंसर की प्रक्रिया अभी भी पूरी नहीं हुई है। मेकर्स जल्द ही फिल्म को सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन के पास जमा करेंगे। अगर इस फिल्म को CBFC की तरफ से मंजूरी मिल जाती है और ये प्रोसेस इसी महीने पूरी हो जाती है तो सलमान और उनकी टीम मातृभूमि को इसी साल 13 नवम्बर को बड़े पर्दे पर रिलीज कर सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक आपत्तियों के बाद मातृभूमि को ओरिजिनल वर्जन की तुलना में काफी बदल दिया गया। अब इस फिल्म में भारत और चीन के रिश्तों को सकारात्मक नजरिए से दिखाया जाएगा। अब देखना दिलचस्प होगा कि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कामयाबी की झंडी गाड़ पाएगी। बदलाव के बाद रिलीज होने जा रही मातृभूमि दर्शकों के बीच वही असर छोड़ पाएगी जो मेकर्स ने सोच कर फिल्म बनाई थी। फिल्म में सलमान खान मुख्य भूमिका में नजर आएंगे। उनके अलावा मातृभूमि में चित्रगंधा सिंह, अंकुर भाटिया, अभिलाष चौधरी और जैन शॉ समेत कई कलाकार नजर आने वाले हैं। इस फिल्म का निर्देशन अपूर्व लाखिया ने किया है। मातृभूमि की रिलीज डेट को लेकर कयासों का बाजार गर्म होने लगा है। अलग अलग तरह की संभावना जताई जा रही है। उम्मीद की जा रही है कि 10 दिनों में फिल्म के रिलीज को लेकर स्थिति पूरी तरह से साफ हो जाएगी। रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: नेपाल के ललितपुर में आजकल हिमालयन टैटू समिट का तीसरा संस्करण आयोजित किया गया है। इसमें नेपाल और भारत समेत दुनिया भर के 200 से ज्यादा विश्व स्तरीय टैटू कलाकार और 100 से ज्यादा स्टूडियो शामिल हुए। इस समिट में पारंपरिक मूल्यों और आधुनिक डिजाइनों का अनूठा संगम देखने को मिला। कलाकारों ने गणेश जी, देवी कुमारी, बुद्ध, हनुमान जी और धार्मिक और आधुनिक पात्रों के टैटू बनाए। कहते हैं ना हर व्यक्ति एक कैनवास बन जाता है जिस पर आधुनिकता के तत्वों के साथ देवी देवताओं के चित्र उकेरे जाते हैं। हिमालयन टैटू समिट वही स्थान है जहां पर पारंपरिक मूल्य आधुनिक डिजाइनों से मिलते हैं। खास कार्यक्रम में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए जुड़े रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम
7: क्या है आदित्य हृदय स्तोत्र की महिमा? आदित्य हृदय स्तोत्र के पाठ का क्या है विधान और आदित्य हृदय स्तोत्र से मिलेंगे कौन से वरदान? जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
8: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है। इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
8: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
10: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
11: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
12: और दुर्भाग्य कहता है
13: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
10: अविश्वास में विश्वास बसता है,
11: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
14: गुड न्यूज टुडे।
15: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
11: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
10: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
11: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
12: और दुर्भाग्य कहता है
13: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
10: अविश्वास में विश्वास बसता है,
11: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
14: गुड न्यूज टुडे।
15: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
11: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
10: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
11: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
12: और दुर्भाग्य कहता है
13: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
10: अविश्वास में विश्वास बसता है,
15: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
14: गुड न्यूज टुडे।
15: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से
7: नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम भगवान सूर्य की बड़ी चमत्कारी स्तुति के बारे में बात करेंगे, जिसका नाम है आदित्य हृदय स्तोत्र। क्या है इस स्तुति की महिमा और इसको करने के नियम क्या हैं, इन विषयों पर बात करेंगे। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 5 अक्टूबर 2026 दिन सोमवार, तिथि है आश्विन कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि, नक्षत्र है पुष्य नक्षत्र, रात के 11:09 तक चंद्रमा कर्क राशि में संचरण कर रहे हैं, राहु काल का समय प्रातः 7:30 से लगभग 9 तक पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है तो जरा सी मिश्री खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अब जान लेते हैं दिनांक 5 अक्टूबर 2026 दिन सोमवार को प्रातः काल ग्रहों की स्थिति क्या है। सूर्य विद्यमान है कन्या राशि में, बुध और शुक्र तुला राशि में, राहु कुंभ राशि में, शनि मीन राशि में, चंद्रमा मंगल और बृहस्पति कर्क राशि में और केतु फिलहाल विद्यमान है सिंह राशि में। ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आगे हम जानेंगे कि आपका दैनिक राशि फल कैसा रहने वाला है। आज हम बात कर रहे हैं आदित्य हृदय स्तोत्र की। आदित्य हृदय स्तोत्र को सूर्य देव की बहुत प्रभावशाली स्तुति माना जाता है। क्या है आदित्य हृदय स्तोत्र? आदित्य हृदय स्तोत्र मुख्य रूप से श्री वाल्मीकि रामायण का एक हिस्सा है, वाल्मीकि रामायण के युद्ध कांड का 105वां सर्ग है। भगवान राम को युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए अगस्त्य ऋषि ने आदित्य हृदय स्तोत्र का वर्णन किया था। सूर्य के समान तेज पाने के लिए, सूर्य के समान तेजस्विता के लिए और युद्ध और मुकदमों में विजय प्राप्त करने के लिए, परीक्षा में विजय प्राप्त करने के लिए आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ अमोघ है। सूर्य संबंधी समस्याओं के निवारण के लिए भी आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ किया जाता है, लेकिन मुख्यतः जीवन की बड़ी से बड़ी समस्याओं में विजय प्राप्त करने के लिए आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ ज्यादा किया जाता है। इसके पाठ के कुछ नियम हैं, अगर आप उसका पालन नहीं करेंगे तो आदित्य हृदय स्तोत्र के पाठ का फल आपको नहीं मिलेगा, लेकिन सूर्य की विशेष कृपा मिले, जीवन की मुश्किलों में विजय मिले, इसके लिए आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना बहुत शुभ माना जाता है। चर्चा हमारी जारी है, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, खान पान का ख्याल रखें, वाद विवाद से बचाव करें, धन की हानि आपको हो सकती है, दूध का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। वृषभ राशि, छोटी यात्रा हो सकती है, नौकरी में परिवर्तन होगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मिथुन राशि, करियर में सफलता के योग हैं, प्रिय मित्र से मुलाकात होगी, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कर्क राशि, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर में सफलता के योग हैं, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। अब ये जानते हैं कि आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ किन लोगों को जरूर करना चाहिए जिनको इसका फायदा ज्यादा होगा। अगर गवर्नमेंट की तरफ से कोई प्रॉब्लम चल रही है, अगर राज्य पक्ष से गवर्नमेंट से कोई पीड़ा है, या अगर कोई सरकारी मुकदमा चल रहा है, तो आपको रोज सुबह आदित्य हृदय स्तोत्र पढ़ना चाहिए। अगर लगातार आपको रोग परेशान कर रहे हों, लगातार बीमारियां हो रही हों, खास तौर से हड्डियों की या आंखों की समस्या हो रही हो, तो आदित्य हृदय स्तोत्र पढ़ना चाहिए। अगर आपके पिता के साथ आपके संबंध अच्छे ना हो, पिता के साथ रिश्तों में दिक्कत हो, तो आदित्य हृदय स्तोत्र पढ़ना चाहिए। अगर आंखों की समस्या आपको गंभीर रूप से परेशान कर रही हो, तो भी आदित्य हृदय स्तोत्र के पाठ से लाभ होता है। जीवन में कोई बड़ा काम है, आप बड़ी मेहनत कर रहे हैं, उस बड़े काम में सफलता चाहते हैं, तो उसके लिए भी आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। जो लोग प्रशासनिक सेवा की तैयारी कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें रोज प्रातः काल आदित्य हृदय स्तोत्र पढ़ना चाहिए। परीक्षा में सफलता के लिए और गवर्नमेंट जॉब पाने के लिए आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ अच्छा रहेगा। चर्चा हमारी जारी है, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि का दैनिक राशिफल। सिंह राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, करियर में लापरवाही ना करें, व्यर्थ की चिंता हो सकती है, दूध का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। कन्या राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर में आपको सफलता मिलेगी, संतान पक्ष की उन्नति होगी, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। तुला राशि, आर्थिक मजबूती आएगी, सेहत अच्छी रहेगी, काम का दबाव कम होगा, शिव जी को जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, लाभकारी यात्रा के योग बन रहे हैं, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। अब जानते हैं आदित्य हृदय स्तोत्र के पाठ के नियम क्या हैं, कैसे इसका पाठ करना चाहिए। वैसे तो आप रोज प्रातः इसका पाठ कर सकते हैं, लेकिन रविवार को उषा काल में जब सूर्य एकदम लाल हो, जिस समय एकदम निकल रहा हो, उस समय इसका पाठ करना सबसे ज्यादा बढ़िया होगा। आप चाहें तो रोज सूर्योदय के समय भी आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। पहले सुबह उठकर के स्नान करिए, सूर्य भगवान को अर्घ दीजिए, इसके बाद सूर्य देव के सामने ही इस स्तोत्र का पाठ करिए। पाठ के बाद सूर्य देव का ध्यान करिए और जो भी आपकी प्रार्थना है, जो भी आपकी स्तुति है भगवान से, वो कहिएगा। आदित्य हृदय स्तोत्र के पाठ के साथ साथ अगर आप रविवार को नमक का सेवन ना करें तो इसके फायदे, इसके प्रभाव आपको जीवन में ज्यादा होंगे। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। धनु राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, करियर में लापरवाही ना करें, रिश्तों को ठीक करने का प्रयास करें, दूध का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। मकर राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, संतान पक्ष से सुख मिलेगा, विवाह तय हो सकता है, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कुंभ राशि, करियर की समस्या हल होगी, परिवार की स्थितियां ठीक होंगी, संपत्ति लाभ के योग बन रहे हैं, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मीन राशि, प्रेम संबंधों में सफलता मिलेगी, कोई अच्छी सूचना मिलेगी, वाहन सावधानी से चलाएंगे, शिव जी को जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। देखिए, सूर्य आपके स्वास्थ्य का स्वामी है, ओवरऑल कुल मिला जुला के सूर्य आपके स्वास्थ्य की रक्षा करने वाला ग्रह है, आपको स्वस्थ बनाने वाला ग्रह है। अगर जीवन में स्वास्थ्य की समस्या हर समय लगी रहती हो, कोई ना कोई सेहत की दिक्कत आपके साथ बनी रहती हो, तो रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। अगर आपकी कुंडली में सरकारी नौकरी के योग हैं, गवर्नमेंट जॉब के योग हैं और प्रयास करने पर भी आपको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल पा रही है, तब आप रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ा करके आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, आपको लाभ होगा। जिस दिन आपकी कोई परीक्षा है, आपका कोई इंटरव्यू है जिसमें आपको बड़ी सफलता चाहिए, बड़ी विजय चाहिए, उस दिन प्रातः काल आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करके जाइएगा, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। अब जान लेते हैं आपके भाग्य को बेहतर बनाने के लिए एक लकी टिप। जहां भी आप काम करते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, ऑफिस का काम करते हैं, अपने काम करने की मेज को हमेशा साफ सुथरा रखिएगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको काम करने में सरलता होगी और सुविधा के साथ अच्छी तरह से आप काम कर पाएंगे। अब जान लेते हैं दिनांक 5 अक्टूबर 2026 दिन सोमवार का सक्सेस मंत्र क्या है। प्रातः काल शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाइएगा, इसके बाद 9 बार नमः शिवाय का जप करिएगा, अगर प्रातः काल ऐसा करते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो किस्मत कनेक्शन में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे। नमस्कार।

0: परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को
7: बात करते हैं फिल्म दृश्यम 3 की। दृश्यम 3 बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड बना रही है। अजय देवगन की फिल्म ने महज 2 दिनों में 100 करोड़ की क्लब में एंट्री कर ली है। पहले दिन की बम्पर कमाई के बाद दूसरे दिन भी फिल्म ने मजबूत पकड़ बनाए रखी। अब नजर जो है रविवार के कलेक्शन पर रहेगी। अगर पहले 2 दिन का ट्रेंड जारी रहा तो फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कमाई के नए रिकॉर्ड बना लेगी।
8: जिस कहानी ने पिछले 11 साल से दर्शकों को अपनी सीट से बांध कर रखा, अब उसका फाइनल चैप्टर भी बॉक्स ऑफिस पर छा गया है। अजय देवगन की दृश्यम 3 ने रिलीज होते ही कमाई के कई रिकॉर्ड्स अपने नाम कर लिए हैं। फिल्म को पहले ही दिन जबरदस्त ओपनिंग मिली। सेक निल्स के मुताबिक दृश्यम 3 ने पहले दिन भारत में 62 करोड़ रुपए का नेट कलेक्शन किया। वही फिल्म की वर्ल्ड वाइड कमाई करीब 95 करोड़ रुपए रही। इस फिल्म में एक ऐसे पिता की कहानी है जो अपने परिवार को बचाने के लिए पुलिस से लेकर बड़े बड़े अफसरों तक को चकमा दे देता है। और अब विजय सलगांवकर की कहानी अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंच गई है, जिसे पहले दिन गांधी जयंती की छुट्टी होने का पूरा फायदा मिला, लेकिन फिल्म की कमाई की असली तस्वीर दूसरे दिन सामने आई। दूसरे दिन भी दृश्यम 3 ने बॉक्स ऑफिस पर अपनी पकड़ बनाए रखी। रात 10:30 बजे तक फिल्म ने करीब 53.50 करोड़ रुपए का नेट कलेक्शन कर लिया था। यानी सिर्फ 2 दिन में भारत में फिल्म की कुल नेट कमाई पहुंच गई 115.50 करोड़ रुपए। वहीं वर्ल्ड वाइड कमाई का आंकड़ा करीब 177.10 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। यानी फिल्म अब 200 करोड़ के आंकड़े से ज्यादा दूर नहीं है। खास बात यह है कि दृश्यम 3 ने सिर्फ 2 दिनों में ही 100 करोड़ क्लब में एंट्री कर ली है। 2 दिन की कमाई के मामले में फिल्म ने कई बड़ी फिल्मों को पीछे छोड़ दिया है। हिंदी फिल्मों की 2 दिन की कमाई की लिस्ट में धुरंधर द रिवेंज तकरीबन 226 करोड़ रुपए की कमाई के साथ सबसे ऊपर है। इसके बाद 127.20 करोड़ के साथ पुष्पा 2 का नंबर आता है और अब 115.50 करोड़ रुपए के साथ दृश्यम 3 तीसरे नंबर पर पहुंच गई है। इसके बाद शाहरुख खान की जवान है, जिसने 2 दिन में 111.73 करोड़ रुपए कमाए थे। हालांकि अब एक थोड़ी हैरान करने वाली बात रही है, पहले दिन के मुकाबले दूसरे दिन फिल्म की कमाई में कुछ कमी आई, लेकिन इसके बावजूद फिल्म ने मजबूत पकड़ बना रखी है। अब रविवार का दिन बेहद अहम है। अगर डे 3 को भी कलेक्शन 50 करोड़ से ज्यादा रहा तो दृश्यम 3 की रफ्तार और तेज हो सकती है और उम्मीद की जा रही है कि विजय सलगांवकर की ये आखिरी कहानी अजय देवगन के करियर की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म बन सकती है। फिलहाल इतना तय है, दृश्यम 3 का तूफान बॉक्स ऑफिस पर थमने का नाम नहीं ले रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
9: एवरेस्ट दिखा ला, सही दिखा सही लाल।
7: उत्तराखंड के खटीमा में आदि रंगोत्सव फेस्टिवल का शुभारंभ मुख्यमंत्री धामी के साथ केंद्रीय मंत्री ज्वेल ओरम और किरण रिजिजू रहे मौजूद। असम, उड़ीसा, महाराष्ट्र सहित 15 राज्यों के जनजाति समूह के हुनर का प्रदर्शन। से संत रविदास नगर के नाम से जाना जाएगा उत्तर प्रदेश का भदोही जिला। कारपेट एक्सपो के उद्घाटन पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ऐलान, जल्द ही सरकार की ओर से अधिसूचना होगी जारी। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में कैप्टन स्मिथ मच्छार के लिए पूजा अर्चना, हवन पूजन के साथ भगवान से जल्द स्वस्थ होने की कामना। जामास के लिए देश भर में हो रही है प्रार्थनाएं। सुहाने मौसम में हिमाचल में बढ़ी सैलानियों की संख्या, मैक्लोडगंज की सड़कों पर पर्यटकों का तांता, पर्यटन कारोबारियों के खिले चेहरे। जापान के एगानोया में एशियन गेम्स 2026 का भव्य समापन समारोह, 2 गोल्ड और 1 सिल्वर मेडल जीतने वाली शूटर नीरू ढांडा ने थामा तिरंगा, भारतीय खिलाड़ियों ने जीते कुल 85 मेडल।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर।
7: नमस्कार, गुड न्यूज टुडे देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वैभवराज शुक्ला। इस खास पेशकश में आपका बहुत स्वागत है, जिसमें हम बात करने जा रहे हैं जगत जननी की, जो जल्द ही भक्तों के घर विराजने वाली हैं। शारदीय नवरात्र में माँ दुर्गा के आह्वान के लिए भक्त तैयार हैं। माता रानी के स्वागत के लिए जगह जगह चल रही तैयारियां तेज हो चुकी हैं और माँ की भव्य प्रतिमाओं को मूर्तिकार पूर्ण करने में जुटे हुए हैं, तो कारीगर पंडालों के निर्माण में लगे हुए हैं। पूर्व बर्धमान से लेकर मुंबई तक में दुर्गा पूजा को लेकर चल रही तैयारियों से जुड़ी ये रिपोर्ट देखिए।

0: भक्ति और कला का अद्वितीय उत्सव, आस्था भक्ति और एकता की भावना से जुड़ा अद्भुत पर्व, बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक शारदीय नवरात्रि की तैयारी चल रही है। ये तस्वीरें पश्चिम बंगाल के पूर्व बर्धमान की हैं, जहां दुर्गा पूजा के लिए इसी तरह जगह जगह पंडाल बनाने का काम चल रहा है। कारीगर पंडालों को भव्य रूप देने में जुटे हुए हैं, ताकि श्रद्धालु उन्हें निहार कर माँ की भक्ति में डूब जाए। यहाँ जो माता का दरबार सज रहा है, ये लालटू स्मृति संघ का है, जो अपने आकर्षक थीम और बड़े बजट के लिए जाना जाता है। इस वर्ष यहाँ बालाजी की थीम पर पंडाल का निर्माण कराया जा रहा है। दुर्गा पूजा के आरंभ होने में अब बहुत कम समय रह गया है, इसलिए कारीगर तेजी से काम को पूरा करने में जुटे हुए हैं।
1: अभी हम लोग जुटे हुए हैं, इसको एक जो पूर्ण जो इसको रूप है उसका कोशिश कर रहे हैं। हमारा जो डेकोरेटर है, बड़ा डेकोरेटर है, वो भी लोग भी कोशिश कर रहे हैं। पूरा हम लोग देर से स्टार्ट किया, क्योंकि ये जगह थोड़ा देर से हम लोग लिए हैं, तो हम लोग का आशा है जो महालय का दिन इसका कंप्लीट हो जाएगा।
2: ये थीम क्या है इसका?
1: त्रिपुति बालाजी, जो मंदिर है बालाजी का, उसी का थीम है।
0: मूर्तिकार तेजी से देवी माँ की प्रतिमाओं को आकार देते दिख रहे हैं, साथ ही मूर्तियों के रंग रोगन का काम भी चल रहा है। मूर्तिकारों की व्यस्तता बढ़ी हुई है, वो मिट्टी को गूंथ कर अलग अलग आकार की मूर्तियां गढ़ने में जुटे हुए हैं। हालांकि मिट्टी अब इन्हें महंगी मिल रही है, लगभग दो गुना दाम पर, लेकिन सवाल माता रानी का है तो ये मूर्तियों को समय से तैयार करने में पूरे मन से लगे हुए हैं।
3: आगे तो 80-100 रुपया में मिल जाते थे, अभी तो 150-200 रुपया हो गया, डबल हो गया, लेकिन ठीक समय में मिलता नहीं है। बनाना तो पड़ेगा, दिक्कत है तो तब भी बनाना पड़ेगा। वो सब खर्चा ये प्रतिमा के अंदर तो लग जाएगा ना, प्रतिमा के दाम बढ़ जाएगा, लेकिन पार्टी तो नाराज हो जाता है।
2: इस बार आप लोगों को बनाने के लिए ऑर्डर मिला है?
3: दुर्गा प्रतिमा 21-22 तो है,
2: तभी बर्धमान का है या फिर बाहर
3: ना? थोड़ा ये इधर उधर भी जाता है, 40 किलोमीटर तक जाता है।
2: कितने कारीगर काम कर रहे हैं?
3: 6-7 जो है।
0: पश्चिम बंगाल के अलावा महाराष्ट्र में भी नवरात्र को लेकर तैयारियां जोर शोर से चल रही है। यह तस्वीरें मुंबई के परेल इलाके की है, जहां गणेश उत्सव के बाद अब नवरात्र की तैयारियां की जा रही हैं। मुंबई में अलग अलग जगहों पर मूर्तियां बनाई जाती हैं, और ये परेल इलाके की तस्वीरें हैं, जहां मूर्तिकार तेजी से हाथ चलाते हुए माता की प्रतिमाओं को आकार देते दिख रहे हैं। कोई मूर्तियों के लिए ढांचा तैयार कर रहा है, कोई प्रतिमाओं को रगड़कर उसे चिकना बनाने में जुटा है, तो कोई प्राइमर या लेप लगा रहा है। गणेश उत्सव के ठीक बाद नवरात्र का समय आ चुका है, इसलिए मूर्तिकार तेजी से काम कर रहे हैं।
4: मुंबई के सबसे बड़े कारखाने में देवी को आकार देने का काम शुरू हो गया है। तस्वीरों में देखें आकार किस तरीके से देवी को देते हैं, देवी की मूर्ति बनाने का भी काम बड़े ही जोरों शोरों में शुरू है। क्या लग रहा है आपको, कहाँ तक पहुँचा है मूर्ति का काम और क्या कुछ मांग रहे हैं लोग?
5: इस साल का गणेश उत्सव बहुत अच्छा गया, और जैसे गणेश विसर्जन हुआ, विसर्जन के दूसरे दिन ही नवरात्र का काम चालू हो गया। एंड अभी काम है जोरों शोरों में है, अभी तो शुरू हुआ है, एक 10 दिन में हमें काफी सारे ऑर्डर पूरे करने हैं।
4: क्या डिमांड है राजू भाई, क्या मांग रहे हैं लोग, किस तरह की देवी, किस तरह का अवतार होना चाहिए, कैसा रूप होना चाहिए?
5: इस साल ज्यादा अष्टपूजा देवी बहुत ज्यादा है, मुंबई ऊंची मूर्तियों के लिए फेमस है, और वो ट्रेंड अभी देवी में चालू हो गया है।
4: गणेश उत्सव बड़े ही धूमधाम से बीता है और अब नवरात्रि की तैयारी शुरू हो गई है। कई ऐसे कारखाने हैं जहां पर देवियों को बनाने का काम शुरू हो रहा है, उनको आकार देने का काम शुरू हो रहा है।
0: जहां जहां माता रानी की प्रतिमाएं बनती हैं, वहां अधिकतर ऑर्डर मिल चुके हैं, और मूर्तिकार अपनी जिम्मेदारी अच्छी तरह समझ रहे हैं, इसलिए वो तेजी से मूर्तियां तैयार करने में जुटे हुए हैं, ताकि उनकी डिलीवरी समय पर की जा सके, जिससे भक्त भी भारतीय संस्कृति से जुड़े इस उत्सव का हिस्सा बन सके। पूर्व बर्धमान से सुजाता मेहरा और मुंबई से धर्मेंद्र दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
6: शारदीय नवरात्रि की शुरुआत 11 अक्टूबर से हो रही है। अपने भक्तों को शक्ति, साहस और संरक्षण देने वाली माता आदिशक्ति की प्रतिमाओं का निर्माण जारी है। देश भर में मूर्तिकार आदिशक्ति की मूर्तियों को फिनिशिंग टच देने में जुटे हुए हैं। बंगाल के शहरों की तरह अगर आप देखें तो उत्तर प्रदेश के झांसी में भी दुर्गा प्रतिमाएं पूरी होने की दौर में देखने को मिल रही हैं। यहां पर अधर्म, अन्याय और अहंकार के विनाश के प्रतीक में महिषासुरमर्दिनी की प्रतिमाओं में बंगाल की छाप साफ दिख रही है।

0: भवानी, चंडिका, शेरावाली, जगदम्बा और महिषासुरमर्दिनी। विश्वास, श्रद्धा और आस्था के साथ माँ दुर्गा के किसी भी नाम का आह्वान करें तो आशीर्वाद जरूर मिलता है। माँ अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करती। आदि शक्ति की कृपा से घर परिवार में सुख, समृद्धि और शांति का वास हो जाता है। माँ दुर्गा के नौ भव्य और दिव्य स्वरूपों की आराधना का त्योहार नवरात्रि आने वाला है। अलग अलग शहरों में दुर्गा पंडाल में स्थापित होने के लिए माँ की प्रतिमाएं आकार ले रही हैं। झांसी में बंगाली मूल का एक परिवार पिछले 34 साल से हर साल माँ की प्रतिमाओं को साकार करने की साधना से जुड़ा है। 4 महीने से ये बंगाली परिवार माँ के अलग अलग स्वरूपों को बेहद कलात्मक तरीके से सजीव करता है। 122 दिनों के अंतराल में करीब 160 प्रतिमाओं को अलग अलग रूपों को भव्य और सुंदर चित्रण किया जाता है। झांसी के इस कार्यशाला में मां की हर प्रतिमा में बंगाल की कला, मिट्टी और पारंपरिक शैली की एक अनूठी और गहरी छाप दिखती है। आधुनिक थीम वाली मूर्तियों के इस दौर में भी बंगाल की पारंपरिक साका और डाकर साज शैली, यानी विशेष मुकुट, चौड़ी आंखें और भावपूर्ण चेहरे वाली मां दुर्गा की मूर्तियों की भारी डिमांड होती है।
1: देखो, मूर्ति दुर्गा जी मूर्ति पुराना स्टाइल छोड़ के आप जाएगा ना, ज्यादा दिन टिकेगा नहीं। जो परंपरा चल रहा है वही हिसाब से चलना पड़ेगा। आप अभी जो नया नया डिजाइन, ये फलाना बना दो, ये बना दो, वो बेकार है। एक दिन चलेगी, दो दिन चलेगी, चार उसके बाद नहीं चलेगी। पूरा कलकत्ता हमारा सिंगर से कपड़ा से सब कलकत्ता का है। शेर का हम लोग खाल चलाता है, यहाँ पर मिट्टी लगा देगा। हम लोग ऐसे काम नहीं करता। ओरिजिनल कैसे कलकत्ता होता है ठीक वैसा ही करता है काम।
2: लगभग कितनी मूर्तियाँ तैयार करते हैं?
1: हमारा कितना है, 150-160 ऐसा ही होगा। 200 नहीं आएगा, ये हम ऐसे ज्यादा बनाएंगे नहीं। गिराक हमारे पास बहुत है, हम बनाएंगे नहीं, हिसाब से नहीं जाएगा बाहर। अब लोकल वाला जो लोग बनाता है,
2: आपका केवल बंगाली पैटर्न है?
1: हमारा बंगाली पैटर्न कलकत्ता में पिक किया।
0: एक एक प्रतिमा को तैयार करने में कई चरणों से गुजरना पड़ता है। पहले भूसे से ढांचा तैयार किया जाता है, इसके बाद मिट्टी की परतें चढ़ाकर प्रतिमा को आकार दिया जाता है। बारीक कारीगरी के बाद रंग और फिर अंतिम चरण में कोलकाता से लाए गए वस्त्र, मुकुट और आभूषण लगाए जाते हैं। झांसी की इन दुर्गा प्रतिमाओं को तैयार करने के दौरान पर्यावरण संरक्षण का पूरा ध्यान रखा जाता है। जल, जमीन और वायु में प्रदूषण न फैले, इसके लिए प्रतिमाओं के निर्माण में POP का इस्तेमाल नहीं किया जाता। निर्माण में अलग अलग तरह की मिट्टी का इस्तेमाल होता है, जिसमें कोलकाता से लाई जाने वाली गंगा नदी की मिट्टी के साथ स्थानीय तौर पर मिलने वाली काली और लाल मिट्टी भी शामिल है। दुर्गा प्रतिमाओं को रंगने के लिए पौधों, फूलों, सब्जियों, फलों के छिलकों और खनिजों जैसे प्राकृतिक स्रोतों से बनाए जाने वाले प्राकृतिक रंगों का इस्तेमाल होता है।
1: मिट्टी हमारा तो कलकत्ता से आता है, 3-4 प्रकार का मिट्टी है, मिक्स करके काम करना पड़ता है। हमारा जो मिट्टी है कोई नुकसान वाली काम नहीं है।

0: की 90% प्रतिमाएं पहले ही बुक हो चुकी हैं। बंगाली पैटर्न की प्रतिमाओं की मांग झांसी के अलावा बुंदेलखंड के दूसरे इलाकों से भी आती है।
1: इस बार 200 मूर्ति बनाए, ठीक है, लगभग 90% तो बुक ही हो चुका है, अभी 10% चल रहा है, अभी 10 दिन बचा है अभी तक।
2: कितने लोग लगते हैं और कितने दिन से आप काम चालू कर रहे हैं?
1: जब क्या है, मूर्ति बनाना स्टार्ट होता है उस टाइम तो ज्यादा से ज्यादा लोग लगता है, क्योंकि वो घास बांधना, मिट्टी लगाना सबसे ज्यादा मेहनत वाला काम रहता है, इसीलिए उस टाइम 10-12 आदमी रहता है। इस टाइम जो सिंगार के टाइम पे 8-10 आदमी है।
0: शारदीय नवरात्रि का विशेष महत्व होता है। माना जाता है कि इस दौरान माता की पूजा अर्चना से देवी दुर्गा की खास कृपा होती है। माँ दुर्गा के 9 रूपों की विधिवत पूजा अर्चना भक्तों के लिए शुभ मानी जाती है। यही वजह है कि पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा, बिहार, उड़ीसा, झारखंड के लिए दिल्ली में भी दुर्गा पूजा को लेकर भव्यता के साथ विशेष तैयारियां शुरू हो जाती हैं, जिससे माँ के आगमन से पहले ही शारदीय नवरात्र को लेकर लोगों के मन में उत्साह नजर आता है। झांसी से अजय झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: अगले रविवार यानी 11 अक्टूबर को कलश स्थापना के साथ ही शारदीय नवरात्र की शुरुआत हो जाएगी। 9 दिनों तक माता रानी के 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा होगी। कोलकाता समेत पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा की अद्भुत छटा देखने को मिलती है, जिसकी तैयारियां तेजी से चल रही हैं। आज हम आपको कोलकाता की एक ऐसी जगह दिखाने जा रहे हैं जो देवी देवताओं की मूर्ति बनाने के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है।

0: आस्था का पर्व और माता रानी के स्वागत की तैयारी। कहीं माँ दुर्गा की भव्य प्रतिमाएं बनाई जा रही है तो कहीं पंडाल सजाए जा रहे हैं। आदि शक्ति आएंगी, अपने भक्तों पर कृपा बरसाएंगी। पश्चिम बंगाल और विशेषकर कोलकाता के लिए दुर्गा पूजा केवल एक धार्मिक त्योहार नहीं बल्कि बंगाली संस्कृति, कला, भाईचारे और अर्थव्यवस्था की धड़कन है। इसलिए यहाँ इन दिनों मूर्तिकारों की व्यस्तता कहीं अधिक बढ़ी हुई है। माँ दुर्गा की छोटी से लेकर बड़ी मूर्तियों को वो तेजी से आकार देने में जुटे हुए हैं। रंग रोगन का काम चल रहा है।
1: माता दुर्गाओं की मूर्ति सज धज के बन ठन के जाती है इसी कुमोटुली से। और इस बीच कुमोटुली में अभी बहुत ही व्यस्तता चल रहा है, लोगों का भी यहाँ पे आना जाना बन रहा है। कोई लोग आ रहा है दोस्तों के साथ फोटो खींचने, कोई यहाँ पे पूजा के पहले ही पूजा का वाइब्स लेने कुमोटुली पहुंच रहा है, माता दुर्गाओं की मूर्ति को दर्शन कर रहा है।
0: कोलकाता का कुम्हार टोली इलाका दुनिया भर में माँ दुर्गा की पारंपरिक और कलात्मक मूर्तियां बनाने के लिए प्रसिद्ध है। करीब 300 साल पुरानी कुम्हारों और मूर्तिकारों की इस बस्ती को पॉटर्स कॉलोनी कहा जाता है। यहाँ देवी दुर्गा की मूर्तियां विशेष रूप से गंगा की मिट्टी, बांस और भूसे के ढांचे पर हाथों से गढ़ी जाती है।
2: स्टूडियो में कोई 20 बना रहा है, कि 15 बना रहा है, कि 10 बना रहा है, ऐसा करके होता। कोई 50 भी बनाया है, ऐसा नहीं है जो 10-20 ना, 50 भी बना रहा है, ऐसा होता है। ये तो गुण नहीं पाएगा तो सारा कलकत्ता में बाहर में सब हम लोग की मूर्ति भेज रहा है।
0: कुम्हार टोली में मिट्टी की मूर्तियां बनाने वाले लगभग 300 स्टूडियो है, जहां कारीगर मूर्तियों को अब अंतिम रूप देने में व्यस्त है। लगभग सभी स्टूडियो को पहले ही एडवांस बुकिंग मिल चुकी है। यहां बनी दुर्गा प्रतिमाओं की केवल कोलकाता या देश के दूसरे हिस्सों में ही नहीं बल्कि विदेश तक डिमांड है। अब तो यहां के मूर्तिकार प्रतिमाओं के निर्माण में AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक का इस्तेमाल कर रहे हैं।
3: मेरा इस साल जो हम जो ठाकुर बनाता है 12-14 मैंने वो आज से 2 मास पहले वो बुकिंग हो गया। अभी जो AI से मैं रोबोटिक दुर्गा किया है उत्तर दिनाजपुर कालियागंज में, वो मारात्मक वायरल हो गया, ठीक है। उसका जो प्रतिमा है वो रोबोटिक है, उसका जो AI दुर्गा और उसका जो फेस है वो माँ का जो फेस, वही फेस मैंने रखा है, लेकिन AI नहीं किया। जो तस्वीर मेरे पास आया है

0: वो माँ का थोड़ा सा एआई था, लेकिन ये तो माँ है, इसलिए माँ को मैं एक मीनमय रूप मैंने दिया, ठीक है। उसको जो आक्स, उसको जो सारिस, उसको जो सरस्वती, लक्ष्मी, कार्तिक, गणेश जो है, उसको जो महिषासुर, उसके जो लायन, सब आंखों में एलईडी लाइट्स जलेंगे।
1: अच्छा,
0: साड़ी में, साड़ी में भी, और जो अस्त्र है फाइबर का, उसका उसका भीतर में एलईडी लाइट्स है, वो ब्लिंक करेगा।
1: अच्छा।
0: ठीक में, और उसका जो पैंडल है, वो जो रोबोट है, वो घूमेगा।
1: अच्छा।
0: वो बातचीत करेगा, अब जो बोला वो बात वो आंसर दे देंगे।
2: यहाँ मूर्ति का ऑर्डर दे चुके लोग ही नहीं पहुँच रहे, बल्कि बड़ी संख्या में कला प्रेमी भी आ रहे हैं, जो मूर्तिकारों और कारीगरों की मेहनत को करीब से देखने और समझने की इच्छा रखते हैं। यहाँ देवी माँ की दिव्य मूर्तियों को देखकर वो मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। मोबाइल में तस्वीरें कैद करने के साथ खुद की तस्वीर खिंचवाते भी नजर आते हैं।
3: मैंने बहुत सुना था, बट आज महसूस किया और बहुत अच्छा लग रहा है। अद्भुत जिसको बोलते हैं ना, वो एक्सपीरियंस हुआ और बहुत ऐसे डिवाइन सी फीलिंग हो रही है।
4: मैं तो उत्साहित थी ये देखने के लिए कि क्या कैसे बनता है, वो मुझे बहुत जानना था। तो इतना सुंदर है कि मतलब उसको शब्दों में बयान नहीं कर सकते हम, तो बहुत ही सुंदर है, अद्भुत है ये नज़ारा।
2: दुर्गा पूजा के शुरू होने से पहले ही ये जगह लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रही है, इसके चलते यहाँ लोगों की आवाजाही बढ़ी हुई है और त्योहार से पहले ही उत्सव जैसा माहौल बन चुका है। कोलकाता से राही हलदार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।
5: बात करते हैं बंगाल की संस्कृति की, जो दिल्ली के चितरंजन पार्क में भी दिखती है। सीआर पार्क, जिसे दिल्ली का मिनी बंगाल भी कहा जाता है, शारदीय नवरात्र के दौरान यहाँ पर थीम आधारित कई दुर्गा पंडाल सजाए जाते हैं। इनमें कालीबाड़ी मंदिर में लगने वाला मशहूर पंडाल भी शामिल है। यहाँ पर हर साल शारदीय नवरात्र से करीब 4 महीने पहले एक कार्यशाला भी लगती है, जिसमें पुआल, मिट्टी और रंगों का इस्तेमाल करके भव्य दुर्गा मूर्तियां तैयार की जाती हैं।

0: दिल्ली में बंगाल की संस्कृति, कला, साहित्य, संगीत और समृद्ध ऐतिहासिक विरासत की पहचान चितरंजन पार्क है। हर साल शारदीय नवरात्र के दौरान चितरंजन पार्क यानी कि सीआर पार्क कोलकाता का प्रतिबिंब बन जाता है। शारदीय नवरात्र के करीब एक महीने पहले से पंडालों में अटूट आस्था, श्रद्धा, विश्वास और संकल्प के साथ माँ दुर्गा के आह्वान की तैयारी शुरू हो जाती है। 1960 के दशक में पहली बार यहाँ बसे बंगाली परिवारों ने शारदीय नवरात्र से जुड़ी सांस्कृतिक विरासत की नींव रखी थी। तब से यहाँ माँ दुर्गा की प्रतिमा को स्थापित करने की परंपरा को संजोने और समृद्ध करने का संकल्प पीढ़ी दर पीढ़ी लिया जा रहा है। यहाँ माँ दुर्गा की अलग अलग तरह की प्रतिमाओं को बनाने का काम पूरा साल चलता रहता है, लेकिन शारदीय नवरात्र के लिए माँ की मूर्तियों को तैयार करना अपने आप में विशेष अनुष्ठान की तरह होता है। चितरंजन पार्क में तीन दुर्गा पूजा समितियों की तरफ से तीन बड़े पंडाल बनाए जाते हैं। इनमें कालीबाड़ी मंदिर में दुर्गा पूजा बेहद भव्य और सबसे मशहूर है। कालीबाड़ी मंदिर में विराजमान होने वाली माँ दुर्गा की भव्य मूर्ति, रंग बिरंगी सजावट और 9 दिनों तक शाम को होने वाले सांस्कृतिक उत्सव हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करते हैं।
1: तो भाई देखिए, कोलकाता के साथ साथ दिल्ली भी पूरी तरह से तैयार हो रही है दुर्गा पूजा के लिए, क्योंकि माँ आने वाली है और उसके लिए सबसे बढ़िया जो जगह होती है सीआर पार्क, जहाँ हर साल मैं आपको लेकर आती हूँ। और ये बिल्कुल सीआर पार्क का वही कालीबाड़ी मंदिर है। जरा तस्वीरें देख लीजिए, तैयारियां भी हो रही है, शुरुआत हो चुकी है।
0: हर साल दुर्गा पूजा से पहले दुर्गा प्रतिमा के निर्माण से जुड़ी कार्यशाला आयोजित की जाती है, जहाँ कुशल कारीगर बांस, पुआल और मिट्टी से देवी की भव्य मूर्तियां तैयार करते हैं। 1970 के दशक से कालीबाड़ी मंदिर के सहयोग से चली आ रही इस विशेष कार्यशाला में हर साल सैकड़ों प्रतिमाओं को आकार दिया जाता है, जो दिल्ली एनसीआर की 300 से अधिक पूजा समितियों को भेजी जाती है।
1: तो देखिए, मंदिर है और मंदिर के ठीक पीछे ये वो वर्कशॉप है, कार्यशाला है, जहाँ पर मूर्तियां बनाई जाती हैं, मूर्तियों को आकार दिया जाता है। वैसे तो यहाँ पर जो काम है वो पूरा साल चलता रहता है, लेकिन जो आखिरी का समय होता है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि उनमें कलर भरना है, फाइनल टच देना है। और ये वो कार्यशाला है जहाँ से मूर्तियां दिल्ली एनसीआर और साथ ही साथ अगल बगल के जितने राज्य हैं वहां पर मूर्तियां यहाँ से भेजी जाती हैं और यहीं पर आकार इनको दिया जाता है। और यहां से फिर ये मूर्तियां राजस्थान, पंजाब, दिल्ली एनसीआर, उत्तर प्रदेश, जहां जहां भी जरूरत होती है वहां इनको भेजा जाता है। सबसे बड़ी और खास बात यह है, अगर आपको ध्यान हो तो कोलकाता में स्पेशली और पूरे बंगाल में जहाँ जहाँ मूर्तियाँ बनाई जाती हैं वहाँ पर मिट्टी कुमारतुली से लाई जाती है, और यहाँ पर भी इन मूर्तियों को आकार देने से पहले उस पवित्र मिट्टी को इनमें शामिल किया जाता है।
0: मूर्तिकार गोविंद अपने परिवार की तीसरी पीढ़ी है जो पारंपरिक रूप से माँ दुर्गा की प्रतिमाएं बनाने के काम में खुद को समर्पित कर चुके हैं। दुर्गा माँ की प्रतिमा उनके हुनर और विरासत को भी दर्शाती है।
1: तो गोविंद जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और माँ की जो मूर्ति है उसके चेहरे को आकार दिया जा रहा है, और साथ ही साथ मैं इनका परिचय कराऊं, ये तीसरी पीढ़ी है जो लगातार माँ की मूर्तियों को और दुर्गा पूजा की तमाम मूर्तियों को बनाते आए हैं। गोविंद जी
2: नमस्कार जी।
1: नमस्ते। कहाँ तक पहुँचा है काम?
2: काम अभी बस पेंटिंग का इंतजार कर रहा है, कल से नहीं तो परसों से पेंटिंग चालू हो जाएगा हमारा, और कुछ एक दो मूर्ति में मिट्टी का काम बाकी है, वो भी अभी काम चल रहा है।
0: सनातन परंपरा में शारदीय नवरात्र का विशेष महत्व है। माना जाता है कि इस दौरान माता की पूजा अर्चना से देवी दुर्गा की खास कृपा प्राप्त होती है। माँ दुर्गा के 9 रूपों की विधिवत पूजा अर्चना भक्तों के लिए शुभ मानी जाती है। ऐसे में शारदीय नवरात्र की विशेष तैयारियां होती हैं। प्रतिमाओं के आकार लेने के दौरान हर तरफ माँ के जयकारे गूंजने लगते हैं। दिल्ली से नवजोत चंधावा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।

0: कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती है। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
0: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
0: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती है। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोग
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
7: उत्तराखंड के खटीमा में आदि रंगोत्सव फेस्टिवल का शुभारंभ मुख्यमंत्री धामी के साथ केंद्रीय मंत्री ज्वेल ओरम और किरण रिजिजू रहे मौजूद। असम, ओडिशा, महाराष्ट्र सहित 15 राज्यों के जनजाति समूहों के हुनर का प्रदर्शन। फिर से संत रविदास नगर के नाम से जाना जाएगा उत्तर प्रदेश का भदोही जिला। कारपेट एक्सपो के उद्घाटन पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ऐलान, जल्द ही सरकार की ओर से अधिसूचना होगी जारी। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में कैप्टन स्मिथ मच्छार के लिए पूजा अर्चना हवन पूजन के साथ भगवान से जल्द स्वस्थ होने की कामना, जांबाज के लिए देश भर में हो रही हैं प्रार्थनाएं है।

नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्वेता झा। आप देख रहे हैं अपना सबसे पसंदीदा और दमदार शो बंदे में है दम। एक बार फिर मैं हाजिर हूं दमदार शख्सियत का एक बेमिसाल सफरनामा लेकर। इस बार जिस शख्सियत का बेनजीर सफरनामा लेकर हम हाजिर हुए हैं, उसने 34,000 फीट की ऊंचाई पर साहस और पराक्रम का ऐसा अफसाना लिख दिया कि पूरी दुनिया उसके सजदे में आ गई है।

आप समझ ही गए होंगे कि इस बार की दमदार शख्सियत कोई और नहीं बल्कि फ्लाई दुबई के विमान में एक सनकी को पायलट के खौफनाक मंसूबों को नाकाम कर 174 बेगुनाह यात्रियों के प्राणों की रक्षा करने वाले कैप्टन स्मिथ मछार हैं। जी हां, हिंदुस्तान का ऐसा सपूत जिसकी वीरता का यशोगान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू समेत दुनिया भर के लोग कर रहे हैं। दरअसल कैप्टन स्मिथ ने अपने साहस, पराक्रम और सूझबूझ से विमान में सवार 174 मासूम लोगों को दर्दनाक मौत से बचा लिया। 34,000 फीट की ऊंचाई पर बुरी तरह जख्मी होने के बाद अगर ये जाबाज सरेंडर कर देता तो विमान का क्रैश होना तय था। वीरता के 120 सेकंड्स की ये दास्तान आपके रोंगटे खड़े कर देगी।

0: साहस, शौर्य और धैर्य की कसौटी है आपात स्थिति। बेहद कठिन और नाजुक वक्त में जो इंसान अपने साहस और सूझबूझ से लोगों को मुसीबत से उबार लेता है, वही रियल हीरो कहलाता है। ऐसा ही एक बिंदास हीरो है हिंदुस्तान का लाल कैप्टन स्मित मुच्छार। सामने खड़ी मौत को देखकर भी जिसका साहस और हौसला एक पल के लिए भी पस्त नहीं हुआ। 34,000 फीट की ऊंचाई पर पैदा हुई विकट परिस्थिति में अगर ये हिंदुस्तानी हिम्मत हार जाता तो 27 बच्चों समेत 174 बेगुनाह यात्री अपनी जान से हाथ धो चुके होते। कैप्टन स्मित मुच्छार का ये पराक्रम मिड एयर टेरर कॉन्स्पिरेसी को नाकाम करने वाली हीरोइक हिस्ट्री के बोल्ड चैप्टर के रूप में हमेशा के लिए दर्ज हो चुका है। कैप्टन स्मित के साहसिक और ऐतिहासिक पराक्रम से 140 करोड़ हिंदुस्तानियों का सीना गर्व से चौड़ा हो गया है।
1: भारत के कैप्टन स्मित ने जिस प्रकार से धैर्य, सूझबूझ और साहस का परिचय करवाया, और जैसे आज इजराइल के प्रधानमंत्री ने कहा कि इस हिंदुस्तानी ने 9/11 होने से बचा लिया, हर देशवासी के लिए स्मित का ये पराक्रम हमें गौरव से भर देता है।
0: रोंगटे खड़े कर देने वाला ये वाक्या है 30 सितंबर 2026 का, जब फ्लाइट दुबई की कमर्शियल फ्लाइट FZ1073 ने 174 यात्रियों और 6 क्रू मेंबर्स के साथ स्थानीय समय के मुताबिक सुबह 6:49 पर दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से तेल अवीव के लिए उड़ान भरी थी। कैप्टन स्मित इस विमान के पायलट थे और उनके साथ कॉकपिट में को पायलट के तौर पर ओमान का एक शख्स था। कैप्टन स्मित इस बात से पूरी तरह अनजान थे कि उनका को पायलट इंतहाई खौफनाक इरादों के साथ कॉकपिट में दाखिल हुआ है। दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से टेक ऑफ के करीब 1 घंटे और 42 मिनट बाद विमान जब 34,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भर रहा था, तभी ओमानी को पायलट ने अपने खतरनाक मंसूबों को अंजाम देने के लिए हिंदुस्तान के दिलेर पायलट स्मित पर चाकुओं से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। कैप्टन स्मित ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उन्हीं का को पायलट मिड एयर उन पर इस तरह जानलेवा हमला कर देगा। पल भर में बुरी तरह लहूलुहान हो चुके स्मित ने इस विकट स्थिति में भी साहस, सूझबूझ और धैर्य नहीं खोया। वो समझ गए कि उनका को पायलट या तो विमान को क्रैश करना चाहता है या फिर इसे अगवा करना चाहता है। बुरी तरह जख्मी हो चुके कैप्टन स्मित के मन में एक बात बिजली की तरह कौंध गई, अगर मैं हिम्मत हार गया तो 174 बेगुनाह यात्रियों की दर्दनाक मौत हो जाएगी। ये विचार आते ही जख्मी स्मित एक्शन में आ गए। उन्होंने पहला काम ये किया कि विमान का कंट्रोल अपने पास ही रखा, जबकि ओमानी को पायलट का इरादा कंट्रोल अपने हाथ में लेने का था। दूसरा काम उन्होंने ये किया कि ATC को स्क्वाक कोड 7700 भेज दिया, जो सामान्य आपात स्थिति का संकेत होता है। कुछ मिनट बाद उन्होंने कोड 7500 भेजा, जो विमान हाईजैकिंग का संकेत देता है। तीसरा और सबसे बड़ा काम उन्होंने ये किया कि कॉकपिट का रिलीज सिस्टम दबा दिया, जिससे डोर ओपन हो गया। आपको बता दें कि कॉकपिट का डोर सिस्टम ऐसा होता है कि उसे बाहर से किसी भी सूरत में ओपन नहीं किया जा सकता। जाहिर है कैप्टन स्मित अगर डोर ओपन नहीं करते तो विमान के दूसरे क्रू मेंबर्स और यात्रियों को हस्तक्षेप का मौका नहीं मिलता, और ओमानी को पायलट कुछ ही देर में जख्मी स्मित की शायद जान भी ले लेता। बहरहाल जैसे ही कॉकपिट का डोर ओपन हुआ, यात्रियों को सारा माजरा समझ में आ गया। विमान में यात्रा कर रहे यानियू हायून नाम के एक इजरायली नागरिक ने अदम्य साहस का परिचय दिखाते हुए ओमानी को पायलट को खींच कर कॉकपिट से बाहर कर दिया, जिसके बाद दूसरे यात्री उस पर टूट पड़े और चंद मिनटों में उसे काबू में कर लिया। सनकी को पायलट को काबू में करने वाले यानियू हायून भी कैप्टन स्मित के शौर्य को सलाम कर रहे हैं।
2: Captain Smith, it's a hero. I think she is opened the door because I believe it's a big near the door in the side of the cockpit. I think it's opened the door and then is crashed. I want to tell him thank you for that. If not, if we can't go inside the cockpit, where all the passengers, include me, include my family, it's die.
0: काबिले गौर है कि इस विमान में ज्यादातर पैसेंजर्स इजरायली नागरिक थे। जाहिर है कि ओमान के सनकी को पायलट के निशाने पर यही इजरायली नागरिक थे। अगर कैप्टन स्मिथ ने वक्त रहते कॉकपिट का डोर ओपन नहीं किया होता तो विमान में सवार सभी यात्री और क्रू मेंबर्स की दर्दनाक मौत हो जाती। यही वजह है कि इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू साहसिक यात्रियों के साथ कैप्टन स्मिथ के शौर्य, धैर्य और हीरोइक एक्ट की दिल खोल कर सराहना कर रहे हैं।
3: Almost all the passengers on the flight were Israelis. During the flight, as they approached the country, one of the pilots stabbed the other pilot and apparently tried to crash the plane with everyone on board. I spoke with one of the Israeli passengers. He told me that the plane went into a spin and started to dive. He told me that somehow he managed to break into the cockpit with one of the crew members, and together they neutralized the stabbing pilot while he was trying to sabotage the plane's systems. Another flight crew member who was on the plane entered the cockpit and managed to stabilize the aircraft. I salute these heroes who showed resourcefulness and extraordinary courage.
0: इसमें कोई संदेह नहीं कि कॉकपिट के भीतर कैप्टन स्मिथ जब अपने ही सन की कोपायलट के खिलाफ वीरता के साथ मुकाबला कर रहे थे, उस दौरान विमान पर सवार 174 यात्रियों का कलेजा मुंह को आ चुका था, क्योंकि उन्हें अपनी मौत बेहद करीब दिख रही थी। दरअसल कैप्टन स्मिथ पर चाकू से ताबड़तोड़ हमले करने के बाद ओमान का बददिमाग कोपायलट विमान को क्रैश कराने की कोशिश भी करने लगा था। इस दौरान 34,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा विमान गोता लगाते हुए 2 मिनट के भीतर ही 17,000 फीट नीचे आ चुका था। अगले 1 या 2 मिनट में वो आग के गोले में तब्दील होने ही वाला था कि कैप्टन स्मिथ ने सूझबूझ का परिचय देते हुए रिलीज सिस्टम का बटन प्रेस कर दिया। यही वजह है कि बेंजामिन नेतन्याहू ने कैप्टन स्मिथ को रियल हीरो कहा है। सोशल साइट एक्स पर अपनी पोस्ट में भारतीय कैप्टन की हृदय से तारीफ करते हुए नेतन्याहू ने लिखा है कि असाधारण वीरता प्रदर्शित करने के लिए भारतीय पायलट स्मिथ मुच्छार को मैं सलाम करता हूं। चाकू से गोदे जाने के बाद गंभीर रूप से जख्मी होने पर भी उन्होंने हार नहीं मानी, सनकी को पायलट का मुकाबला किया और कॉकपिट का डोर ओपन कर दिया। इसकी वजह से विमान में सवार यात्रियों और क्रू मेंबर्स को ओमानी को पायलट को काबू में करने का मौका मिल गया और आसमान में होने वाली एक खौफनाक दुर्घटना टल गई। उन्होंने इजरायली नागरिकों समेत 174 यात्रियों की जान बचा ली। मैं कैप्टन मुछार के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। वो एक सच्चे हीरो हैं। इजरायली प्रधानमंत्री का ये भावुक संदेश इसलिए है क्योंकि विमान में लगभग सभी यात्री इजरायली थे, लेकिन कैप्टन स्मिथ के शौर्य को तो पूरी दुनिया सलाम कर रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी कैप्टन स्मिथ को सच्चा हीरो बता दिया है।
4: Perhaps a terrorist or perhaps a whack job. And he stabbed the pilot. The pilot was in very bad shape. And I guess he still is in very bad shape. But he had the sense to, amazing, to, in a way he was a hero, to open the door. You know, those doors are solid steel. You can't get them open from outside. He was able to fall back and get the door open and scream.
0: साफ है कि कैप्टन स्मिथ रील के नहीं बल्कि रियल के हीरो बनकर पूरी दुनिया में छा गए हैं। वो हीरो हैं सिर्फ इसलिए नहीं कि 34,000 फीट की ऊंचाई पर बहादुरी दिखाकर 174 यात्री और अपने क्रू मेंबर्स की जान बचा ली। वे हीरो हैं इसलिए भी कि पूरी तरह लहूलुहान हो जाने के बाद भी उनके चेहरे पर शिकन की कोई लकीर नहीं दिख रही थी। अलबत्ता बेगुनाह लोगों की जिंदगी बचाने का सुकून जरूर उनके चेहरे पर तैर रहा था। सऊदी अरब के तबूक में सेफ लैंडिंग के बाद विमान के भीतर जब उन्हें फर्स्ट एड दिया जा रहा था तो कैप्टन स्मिथ पूरे आत्मविश्वास के साथ लोगों से बात करते नजर आए। ये बात निर्विवाद सत्य है कि तबाही मचाने वाले हथियार तो बाजार में बिकते हैं, लेकिन युद्ध के समय दुश्मन के सामने सीना तान कर खड़े होने का जो साहस, शौर्य और फौलाद होता है, वो दुनिया के किसी बाजार में नहीं बिकता। फौलादी जिगर तो इंसान अपने साथ लेकर पैदा होता है, और जिसके भीतर फौलादी जिगरा होता है, वही परोपकार के लिए, परमार्थ के लिए अपने प्राणों की आहुति देने से भी पीछे नहीं हटता। ऐसे महानायक के ही सजदे में पूरी दुनिया होती है। इजराइल की मशहूर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर तालिया जोसेफ ने कैप्टन स्मिथ के साहसिक कार्य पर इजराइल की ओर से आभार जताने के लिए जो उद्गार व्यक्त किए हैं, उसने हिंदुस्तानियों के मस्तक को गर्व से और ऊंचा कर दिया है।
5: More than 170 people made it home because of Smith. 170 families that didn't lose their loved ones because he chose to take action and fight. He chose to be a hero. And that's exactly what he is. Smith is right now dealing with the wounds caused by the terrorist and he is in critical condition. So I want to wish him speedy recovery. Refuah shlema. Thank you so much from the people of Israel for your courage and for your sacrifice. We do not take it for granted and we will never forget it.
0: निसंदेह इस घटनाक्रम के बाद हिंदुस्तान की धरती पर जन्मे और पले बढ़े कैप्टन स्मिथ महानायक के तौर पर पूरी दुनिया में सराहे जा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर ओमान का वो को पायलट है जिसके जघन्य कृत की वजह से उसके देश की फचीहत हो रही है, जबकि समूचे हिंदुस्तान को अपने इस महानायक पर गर्व की अनुभूति हो रही है। पूरी दुनिया इस हीरो की स्पीडी रिकवरी के लिए अपनी अपनी आस्था और अकीदे के मुताबिक दुआ कर रही है। उधर 140 करोड़ हिंदुस्तानी अपने महानायक को स्वस्थ और सकुशल देखने के लिए बेकरार हैं।
6: कैप्टन स्मिथ मछार वसुधैव कुटुंबकम के सनातन संस्कार के बीच पले बढ़े हैं। विकट परिस्थिति में अपनी चिंता छोड़कर दूसरों की रक्षा करने की प्रेरणा कैप्टन स्मिथ के संस्कार में है। आपको यह जानकर सुखद आश्चर्य होगा कि स्मिथ बजरंगबली के भक्त हैं। ओमानी मूल के को पायलट ने एक समय जब उनको बुरी तरह से जख्मी कर दिया था और बहुत ज्यादा खून बह जाने की वजह से वो मूर्छित होने लगे थे, तो उन्होंने हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर दिया। इसलिए नहीं कि उनकी जान संकट में थी, बल्कि इसलिए कि 174 बेगुनाह यात्रियों की जान जाने वाली थी। आसमान में की गई कैप्टन स्मिथ की प्रार्थना शायद स्वीकार हो गई, तभी तो समूचा इजराइल उनके नायकत्व से अभिभूत होकर जय हिंद का नारा बुलंद कर रहा है।

0: शरीर लहूलुहान हो, गहरे जख्मों का दर्द असह्य हो, मौत मुंह बाए सामने खड़ी हो, उसके बाद भी अगर अनजान लोगों की जिंदगी की हर चंद हिफाजत का जज्बा जाग जाए तो इसे क्या कहेंगे। ऐसे ही इंसानों को महामानव कहा जाता है और ऐसे महामानवों के आगे समूची मानवता नतमस्तक हो जाती है। विश्व के इतिहास में ये शायद पहली बार हुआ होगा जब हिंदुस्तान के बाहर किसी अन्य देश के नागरिक अपने ही देश की सरजमी पर जय हिंद का जय घोष कर गर्व की अनुभूति कर रहे हैं। कैप्टन स्मिथ के त्याग और बलिदान से अभिभूत होकर इजरायली नागरिक तेल अवीव की सड़कों पर निकलकर जय हिंद का नारा बुलंद कर रहे हैं।
1: जय हिंद।
2: मिसाइल खाए।
1: हम आपके आभारी हैं।
2: We are from Israel and with one united voice
1: on behalf of the people of India
2: and the people of Israel,
1: we want to honor and thank Captain Smith
2: for heroically saving the lives of nearly 200 passengers.
0: वसुधैव कुटुम्बकम की सनातन प्रेरणा से अनुप्राणित कैप्टन स्मिथ ने बेहद विकट परिस्थिति में ऐसा अद्भुत जज्बा दिखाया कि हिंदुस्तान और इजराइल की सामाजिक, सांस्कृतिक और भौगोलिक भिन्नता भावनात्मक एकता का रूप लेकर समूची वसुधा को सुरभित कर रही है। इजराइल की सड़कों पर जय हिंद का नारा गूंज रहा है तो तेल अवीव से 4,696 किलोमीटर दूर अविनाशी काशी की गंगा आरती देश के इस शूरवीर के नाम समर्पित कर दी गई।
3: कैप्टन स्मिथ सुभाष ने जिस अदम्य साहस, धैर्य और कृतज्ञ निष्ठा का परिचय दिया है वह पूरे देश के लिए गर्व की बात है। जिस परिस्थिति में कोई भी व्यक्ति घबरा सकता था उस कठिन समय में उन्होंने अपने कर्तव्य को सर्वोपरि रखते हुए सैकड़ों यात्रियों की सुरक्षा के लिए जिस बहादुरी के साथ सामना किया वह वास्तव में प्रेरणादायक है। गंगा सेवा निधि परिवार, बाबा विश्वनाथ एवं भगवती माँ गंगा से उनके जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना करती हूँ।
0: भगवान शिव की नगरी काशी में स्मिथ के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना के साथ गंगा आरती की गई तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की पावन जन्मस्थली अयोध्या धाम में कैप्टन स्मिथ के आरोग्य और लंबी उम्र के मनोरथ के साथ साधु संतों ने हनुमान चालीसा का सस्वर पाठ किया।

0: हमारे देश के जानबाज कैप्टन स्मिथ मच्छर जी ने असाधारण व्यक्तित्व और साहस का परिचय देते हुए 174 यात्रियों को सकुशल बचाने का जो है काम किए। इसके लिए मैं इनको जो है स्वास्थ्य की कामना से, यह जल्द स्वस्थ हों इसलिए हनुमान जी महाराज के जो है हनुमान चालीसा और मंत्रों के द्वारा प्रार्थना किया हूँ। हनुमान जी महाराज हमारे ऐसे स्मित मच्छर जी को शक्ति साहस और स्वस्थ करके इनको तत्काल भारत ये आए, यही हम लोगों ने हनुमान जी से प्रार्थना किया।
1: कैसा अद्भुत संयोग है कि जिस कैप्टन स्मिथ के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना के साथ अयोध्या में हनुमान चालीसा का पाठ किया गया, उस कैप्टन ने इजराइल और जॉर्डन के सीमावर्ती क्षेत्र में 34,000 फीट की ऊंचाई पर 174 नागरिकों की रक्षा की शक्ति पाने के लिए इसी हनुमान चालीसा का पाठ किया था। ये बात खुद स्मिथ ने प्रधानमंत्री मोदी के साथ बातचीत के दौरान बताई। दरअसल ओमान मूल के को पायलट ने कॉकपिट में मौजूद क्रैश एक्स से कैप्टन स्मिथ मच्छार के सिर, सीने और हाथ में गहरे जख्म कर दिए थे। उनके जिस्म के कई हिस्सों से बेतहाशा खून निकल रहा था। एक समय ऐसा भी आया जब स्मिथ को लगा कि वे कभी भी होश में नहीं आने वाली मूर्छा में जाने वाले हैं। मूर्छित होने से पहले जैसे ही उनके मन में ये ख्याल आया कि अगर मैं मूर्छित हुआ तो इस विमान में सवार 174 यात्रियों की मौत निश्चित है, उन्होंने हनुमान चालीसा का पाठ शुरू किया और पूरी शक्ति के साथ उठकर कॉकपिट के रिलीज सिस्टम का बटन प्रेस कर दिया। जब कॉकपिट का डोर ओपन हो गया तो विमान में सवार क्रू मेंबर्स और पैसेंजर्स ने बाकी का मोर्चा संभाल लिया।
2: उस टाइम पे मैं बोला अगर मैं नहीं उठूंगा तो मैं एंजर में 17 साल से ज्यादा उड़ा रहा हूँ, मैं पिछले 11 साल से कैप्टन हूँ और मुझे पता चलता है आँख बंद करके भी कि जहाज में क्या हो रहा है। जब मैं नीचे गिरा हुआ था तब मुझे एहसास हो रहा था कि एयरक्राफ्ट नीचे जा रहा है और मुझे बिल्कुल पता था कि ये एक लास्ट पुश अगर स्मिथ कर दे दरवाजा बस वही है और तभी भी मैं मार खा ही रहा था। बस वो खोल लिया सर, बाकी सब आ गए और बाकी सब की भी उतनी उसमें रोल था। बट जान के मैं सर को बोल रहा था कि मैं अपनी जान के हिसाब से कर रहा था, बट एट द सेम टाइम मुझे इतना भी पता था कि मैं उन सबको नहीं मर दे सकता।
1: मौत का विकराल रूप सामने खड़ा देखने के बाद भी 174 जिंदगी की चिंता करने वाले कैप्टन स्मिथ का संवेदनात्मक भाव सनातन के कायलजयी ग्रंथ मनुस्मृति के 8वें अध्याय के 15वें श्लोक से पुष्ट हो जाता है। मनुस्मृति का ये श्लोक है, धर्म्यो हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षितः, तस्मात् धर्मो न हन्तव्यो मा नो धर्मो हतो अवधीत। मनुस्मृति के इस श्लोक का अर्थ है, जो धर्म का नाश करता है धर्म उसका नाश कर देता है और जो धर्म की रक्षा करता है धर्म भी उसकी रक्षा करता है। इसीलिए धर्म का कभी नाश नहीं होना चाहिए ताकि नाश हुआ धर्म हमारा नाश न कर सके। मनुस्मृति के इसी श्लोक का भाव तब कैप्टन स्मिथ के मन में जागृत हो गया। उन्होंने अत्यंत विकट स्थिति में धर्म की रक्षा की और अब धर्म उनकी रक्षा कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी स्वयं अपने देश के साहसी सपूत की हर जरूरत का ख्याल रख रहे हैं। कैप्टन स्मिथ ने तब ये नहीं सोचा होगा कि 174 जिंदगी बचाने का उनका कर्तव्य समूचे देश की भावना का ज्वार बनकर उमड़ पड़ेगा। इसीलिए पीएम मोदी से बात करते समय वे थोड़े भावुक भी हो गए।
3: स्मिथ, अगर मेरे सामने आप भावुक नहीं हो गए तो कहां होंगे।
1: गंभीर रूप से जख्मी स्मिथ का इलाज पहले सऊदी अरब के तबूक के एक अस्पताल में चल रहा था, लेकिन और बेहतर ट्रीटमेंट के लिए उन्हें एयरलिफ्ट करके अबू धाबी के सैन्य अस्पताल लाया गया। उनकी हालत में तेजी से सुधार हो रहा है और डॉक्टरों के मुताबिक वो खतरे से बाहर हैं। जिस शख्स के आरोग्य के लिए हिंदुस्तान के मंदिरों शिवालयों समेत दुनिया भर के इबादत खानों में प्रार्थनाओं का दौर चल रहा हो, उसे पूर्ण स्वस्थ होने से कौन रोक सकता है। इसमें कोई संदेह नहीं कि अपने फिनोमिनल हीरोइक एक्ट से कैप्टन स्मिथ ने हिंदुस्तान का मान पूरी दुनिया में बढ़ाया है।
4: इसी के साथ बंदे मेहदम में आज आपने देश के जाबाज पायलट स्मिथ मछार के हीरोइक एक्ट की दास्तान सुनी। अगले हफ्ते ऐसी ही किसी और बेमिसाल शख्सियत के सफरनामे के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे।

0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
1: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है
6: एवरेस्ट तीखा लाल, सही तीखा सही लाल।
7: उत्तराखंड के खटीमा में आदि रंगोत्सव फेस्टिवल का शुभारंभ मुख्यमंत्री धामी के साथ केंद्रीय मंत्री ज्वेल ओरम और किरण रिजिजू रहे मौजूद। असम उड़ीसा महाराष्ट्र सहित 15 राज्यों के जनजाति समूहों के हुनर का प्रदर्शन। फिर से संत रविदास नगर के नाम से जाना जाएगा उत्तर प्रदेश का भदोही जिला। कारपेट एक्सपो के उद्घाटन पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ऐलान, जल्द ही सरकार की ओर से अधिसूचना होगी जारी। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में कैप्टन स्मिथ मच्छार के लिए पूजा अर्चना हवन पूजन के साथ भगवान से जल्द स्वस्थ होने की कामना। जवान के लिए देशभर में हो रही है प्रार्थना।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है।

0: दुनिया एक बड़े बदलाव के दौर से गुजर रही है और इसी बदलाव की छाप रक्षा क्षेत्र पर भी नजर आ रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टाइम मशीन की तरह काम करने लगे हैं, यानी जो हथियार की हम कल्पना कर रहे थे वो हथियार या फिर सिस्टम हकीकत की शक्ल अख्तियार कर रहे हैं। रोबो टैंक का ट्रायल चल रहा है, सरहद पर रोबो म्यूल गश्त कर रहे हैं। अनमैन ड्रोन की ताकत तो दुनिया देख ही रही है। अब बारी रोबोट आर्मी की है, यानी यूं कहें कि जंग के मैदान में हथियारों से लैस रोबोट्स युद्ध लड़ते दिखाई दे सकते हैं।
1: यूक्रेन इस वक्त रोबोटिक हथियारों की सबसे बड़ी लेबोरेटरी बन चुका है, जहां तमाम तरह के रोबोट्स या कहें कि युद्ध के मैदान में सीधा रोबोट्स को ही उतारा जा रहा है, वहीं पर परीक्षण हो रहा है और यही अब जंग के मैदान में मोर्चा संभाले हुए हैं। यूक्रेन की रक्षा मंत्री ने सीधे तौर पर यह कहा है कि यूक्रेन का मकसद आने वाले समय में रोबोट्स की एक बड़ी आर्मी तैयार करना है जो रण क्षेत्र में दुश्मन का मुकाबला कर सके।
0: आज दुनिया के कई देश सेना का रोबोटाइजेशन करने में जुटे हैं, जिसमें यूक्रेन भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। यूक्रेन ने रूस पर हमला और अपने सैनिकों की जान बचाने के लिए रोबोट आर्मी नाम का नया कार्यक्रम शुरू किया है, आर्मी ऑफ रोबोट प्रोजेक्ट।
2: यूक्रेन के पूर्व रक्षा मंत्री के द्वारा शुरू किया गया आर्मी और रोबोट्स एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है, जिसमें कि रोबोट्स का इस्तेमाल सोल्जर्स के बदले में किया जाएगा। अभी शुरुआत में इनका इस्तेमाल कैजुअल्टी इवैक्यूएशन, माइन लगाना, माइन निकालना, मशीन गन लोड करना, आगे सर्विलेंस सिस्टम लगाना, जहाँ जहाँ खतरा हो सकता है वहाँ पर इनका इस्तेमाल करके जो उन सोल्जर्स हैं उनकी कैजुअल्टी को कम किया जा सकता है, खास तौर से ऐसे समय में जबकि यूक्रेन के पास सोल्जर्स की कमी हो रही है। 4.5 साल से ज्यादा समय से लड़ाई चल रही है और इनकी काफी कैजुअल्टीज हो चुकी हैं।
0: यूक्रेन के पूर्व रक्षा मंत्री मिखाइलो फेदोरोव ने 26 सितंबर को आर्मी ऑफ रोबोट प्रोजेक्ट का ऐलान करते हुए कहा, युद्ध के मैदान में ऐसे रोबोट्स तैनात करने की योजना है जो जोखिम भरे काम कर सके। प्रोजेक्ट में इंसानों जैसे दिखने वाले ह्यूमनॉइड रोबोट्स बनाए जाएंगे। ये मशीन गन में गोलियां भरने, बैटरी बदलने और सेंसर लगाने जैसे काम करेंगे। इससे सैनिकों को हथियारों और दूसरे उपकरणों की देखरेख के लिए सीधे मोर्चे पर जाने की जरूरत नहीं होगी। यूक्रेन की आर्मी ऑफ रोबोट प्रोजेक्ट का सबसे महत्वाकांक्षी लक्ष्य ट्रेंच यानी कि खाई और फॉरवर्ड पोस्ट पर सैनिकों की जगह इंसान जैसे दिखने वाले ह्यूमनॉइड रोबोट्स को तैनात करना होगा।
1: युद्ध के समय सेना के लिए रोबोट्स एक तरीके से बिल्कुल वही काम करते हैं जो हमारे सेना के जवान करते हैं, यानी कि ह्यूमनॉइड रोबोट्स हर वो काम कर सकते हैं जो रण क्षेत्र में एक सैनिक करता है। फिर चाहे वो बंकर को तबाह करना हो, दुश्मन की इंफॉर्मेशन लेना हो, किसी घर की छत पर चढ़ना हो, सीढ़ियों पर चढ़ना हो, हर तरह के काम ह्यूमनॉइड रोबोट्स कर रहे हैं और यही एक बड़ी वजह है कि आने वाले समय में ह्यूमनॉइड रोबोट्स की एक बड़ी फौज तैयार की जा रही है जो आपको रण क्षेत्र में देखने को मिलेगी। और सबसे बड़ी और खास बात यह है कि ये बिल्कुल उसी तरीके से काम करते हैं जैसे इन्हें कमांड दी जाती है।
0: ह्यूमनॉइड रोबोट्स इंसानों की तरह बंदूकें पकड़ सकते हैं, ट्रिगर दबा सकते हैं, मिलिट्री टैंकों को ड्राइव कर सकते हैं और टैंकों के अंदर बैठकर उन्हें ऑपरेट भी कर सकते हैं। केमिकल, बायोलॉजिकल या परमाणु हमले वाले इलाकों में जहां इंसानों का जाना तुरंत मौत को दावत देना है, ये रोबोट्स आसानी से काम कर पाएंगे।
2: ह्यूमनॉइड रोबोट्स की एंट्री एक बड़ा गेम चेंजर साबित होगा, क्योंकि जो ह्यूमनॉइड रोबोट्स है ये देखा जाए तो एक इंसान की तरह से इनके पैर, हाथ, सर, आंखें सभी तरह से काम करते हैं। और क्योंकि ज़्यादातर हमारे डिफेंस सिस्टम्स इंसानों की हाइट के हिसाब से बने, हमारे लिए काम करने के हिसाब से बने, ऐसे में जब ये सीढ़ी चढ़ना, उतरना, कहीं पे जाना, अंदर घुसना, कमरे के अंदर जाना, वहाँ काम करना, फायरिंग करना, इस तरह के काम करने में सक्षम होते हैं तो काफ़ी मदद मिल जाएगी उस सेना को जिसके पास ये ह्यूमनॉइड रोबोट्स होंगे। यह अभी माइन लगाना, माइन निकालना, कैजुअल्टी इवैक्यूएशन करना, सर्विलियंस सिस्टम लगाना, मशीन गन लोड करना, इस तरह के सपोर्टिंग काम्स करने में सक्षम है जो कि कैजुअल्टीज को बचाएंगे।
0: दावा यह किया जा रहा है कि रूस यूक्रेन जंग में अब रोबोट सैनिक भी मोर्चा संभाल रहे हैं। यूक्रेन ने पहली बार बड़े पैमाने पर सुसाइड जमीनी रोबोट्स का इस्तेमाल कर रूसी सेना पर हमला करने का दावा किया। यूक्रेन की थर्ड आर्मी कॉप्स के मुताबिक मई से सितंबर के आखिरी सप्ताह तक चले ऑपरेशन विवाल्डी में रोबोट और ड्रोन का इस्तेमाल किया गया। रोबोट और ड्रोन की मदद से 15,700 से ज्यादा मिशन पूरे किए गए और रूस के 3,000 सैनिकों को मार गिराया गया। वहीं पूर्वी यूक्रेन के डोनेस्क इलाके में 5 गांव और 3 बस्तियों पर दोबारा कंट्रोल हासिल किया। अगर रूस का दावा सही है तो फिर इसका संकेत साफ है कि रूस यूक्रेन युद्ध में अब जमीनी रोबोट युद्ध का हिस्सा बनते जा रहे हैं। थर्ड आर्मी कॉर्प्स के कमांडर जनरल आंद्री वेलेट्सी ने कहा है कि यूक्रेन दुनिया में पहली बार ड्रोन से रोबोट को दुश्मन के इलाके में उतार कर हमला कर रहा है। दुश्मन को आसमान से हमले का खतरा रहता है, जमीन से नहीं। रूसी सैनिक को वहां से हमले का सामना करना पड़ा जहां उन्हें इसकी उम्मीद तक नहीं थी। यूक्रेन ने ऑपरेशन विवाल्डी में पहली बार पहियों वाले अनमैन्ड ग्राउंड व्हीकल यानी जमीनी रोबोट्स को मोर्चे पर उतारा। हाइना के नाम से जाने जाने वाले 4 पहियों वाले यूजीवीज विस्फोटकों से भरे थे।
1: ऑपरेशन विवाल्डी दरअसल यूक्रेन की थर्ड आर्मी कॉर्प्स की तरफ से रशिया के खिलाफ चलाया गया एक ऑपरेशन था जो कि डोनेस्क क्षेत्र में चलाया गया था और इसमें पहली बार हाइना यूजीवी व्हीकल्स का इस्तेमाल किया गया। दरअसल हाइना एक बहुत ही फुर्तीला यूजीवी व्हीकल है और ये 4 व्हीलर ग्राउंड कैमिकेज रोबोट है जिसे यूक्रेन डिफेंस टेक क्लस्टर ब्रेव 1 की यूजीवी लेबोरेटरी की तरफ से विकसित किया गया है।
0: ऑपरेशन विवाल्डी के दौरान यूक्रेनी सेना की थर्ड आर्मी कॉर्प्स ने रूसी ठिकानों को तबाह करने के लिए हाइना यूजीवीज का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया। 16 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम रफ्तार से चलने की ताकत के साथ हाइना यूजीवीज 20 किलोमीटर तक की दूरी तय कर सकता है। आकार में बेहद कॉम्पैक्ट होने के बावजूद ये 20 से 26 किलोग्राम तक का भारी विस्फोटक ले जाने में सक्षम है। ये दुश्मन के इलाके में जाकर घात लगाकर बैठ सकता है और 30 से 60 घंटे तक एक्टिव रहकर सही मौके पर खुद को विस्फोट से उड़ा भी सकता है। हाइना यूजीवीज को बंकर और डगआउट ब्लास्टर के तौर पर जाना जाता है। ये दुश्मन की अग्रिम चौकियों, भारी किलेबंदी वाले बंकरों और अंडरग्राउंड डगआउट में रेंगते हुए चुपके से पहुंच जाते हैं। फिर इसे रिमोट कंट्रोल से ब्लास्ट कर दिया जाता है जिससे दुश्मन को भारी नुकसान पहुंचता है।
2: हाइना यूजीवी यूक्रेन का एक बड़ा ही जबरदस्त डेवलपमेंट है जो कि एक 4 पहियों वाली गाड़ी को ड्रोन के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, दूर से कंट्रोल करते हैं, जो कि दुश्मन के बंकर के पास, उनके मोर्चे के पास जाकर फट जाता है, अटैक करता है और उसको बर्बाद कर देता है। दूसरी बात यह कि इसका इस्तेमाल लॉजिस्टिक के लिए भी हो सकता है, इसमें सामान भी ले जाया जा सकता है। तीसरी बात यह है कि ये तकरीबन 16 किलोमीटर की स्पीड से चल जाता है, साथ साथ में सकरा होने के कारण और पहियों होने के कारण ये क्रॉस कंट्री और पतले रास्तों से, सकरे रास्तों से भी निकलने में सक्षम है। तो ये काफ़ी मदद साबित हो रही है इसमें, क्योंकि आगे बढ़कर दुश्मन के इलाके में बुलेट प्रूफ बॉडी होने के साथ साथ ये उनके मोर्चों के पास जाके उनको भारी संख्या में कैजुअल्टी कर रहा है।
0: हाइना यूजीवीज का ग्राउंड क्लियरेंस और बनावट ऐसी है कि ये थर्मल कैमरे और रडार की नजर में आसानी से नहीं आ पाते। इसका मॉड्यूलर हल डिजाइन इसे उबड़ खाबड़ रास्तों, मलबे और शहरी इलाकों की तंग गलियों में तेजी से मुड़ने और आगे बढ़ने की आजादी देता है। हाइना रोबोट्स को दुश्मन के इलाके में ले जाकर स्टैंड बाय मोड में छोड़ा जा सकता है। जैसे ही दुश्मन सैनिक या फिर व्हीकल इसके करीब आते हैं, दूर बैठा ऑपरेटर इसे तुरंत एक्टिव कर देता है और हमला हो जाता है।
1: जंगल का शिकारी हाइना यानी कि लकड़बग्घा, और इस रोबोट को बिल्कुल उसी के शिकार करने की रणनीति के तहत ही तैयार किया गया है। ठीक जैसे लकड़बग्घा झुंड में हमला करता है, उसी तरीके से हाइना रोबोट्स को 5-5 की टुकड़ियों में यूक्रेनी सेना को दिया जाता है और जब ये जंग के मैदान में उतरते हैं, अलग अलग दिशाओं में हमला करते हैं, तो दुश्मन के लिए इनका मुकाबला कर पाना बेहद मुश्किल हो जाता है।
0: ऑपरेशन विवाल्डी में यूक्रेनी सेना की थर्ड आर्मी कॉर्प्स ने जिस तरह से अनमैन्ड ग्राउंड व्हीकल्स का इस्तेमाल किया है, उसने मॉडर्न वॉरफेयर का पूरा चेहरा बदल दिया है।
2: ऑपरेशन विवाल्डी में ड्रोन के इस्तेमाल का और रोबोट्स के इस्तेमाल का एक बहुत ही अभूतपूर्व एग्जाम्पल है जिसको कहा जाए, जहाँ पर कि रोबोट्स को हवा से ड्रॉप करके और जो अनमैन ग्राउंड व्हीकल है हवा से ड्रॉप करके और वो उनको फिर वहाँ पे सेना के आगे जाके वो हमला करने में सक्षम है। यानी कि पहले ये होता था कि सेना आगे जा रही है, पीछे पीछे रोबोट्स और अनमैन ग्राउंड व्हीकल्स आ रहे हैं, लेकिन जहाँ पर सेना के आगे गए हैं वो आगे का ऑब्स्टेकल क्लियर किए, माइन क्लियर किया और जरूरत पड़ने में आगे जाके उन्होंने सीधे ब्लास्ट हो गए रिमोट कंट्रोल के द्वारा, तो काफ़ी बड़ी संख्या में इनको सफलता मिली है सोवियत रशिया के मोर्चों के खिलाफ।
0: यूक्रेन के ऑपरेशन विवाल्डी में पहली बार हवाई और जमीनी ड्रोन्स को मिलाकर एक मदर चाइल्ड आर्किटेक्चर के तहत काम पर लगाया गया।
1: ऑपरेशन विवाल्डी का सबसे क्रांतिकारी हिस्सा ये था कि यूजीवी को सीधा चल के दुश्मन के इलाके में नहीं जाना था, बल्कि इसे एक बॉम्बर रोबोट की मदद से दुश्मन के इलाके में गिराया गया। वैसे सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि छोटे छोटे बॉम्बर्स की बैटरी खत्म होने से बच गई और इसने सीधे दुश्मन के इलाके में वार किया।

0: रूस और यूक्रेन लंबे समय से एक दूसरे के साथ जंग लड़ रहे हैं। हम सभी जानते हैं कि रूस यूक्रेन से ज्यादा ताकतवर है, लेकिन बावजूद इसके यूक्रेन युद्ध के मैदान में डटा हुआ है और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है ड्रोन्स। रूस का मुकाबला करने के लिए यूक्रेन छोटे और सस्ते ड्रोन्स का मुकाबला कर रहा है, उनको मैदान में उतार रहा है। सबसे बड़ी और खास बात यह है कि इन ड्रोन्स की मदद से यूक्रेन अपने सैनिकों की जान भी बचाता है और साथ ही साथ रूस का मुकाबला करने के लिए वो पूरी तरह से तैयार है। बस अब इसी रणनीति के तहत आगे काम किया जा रहा है। यूजीवी का इस्तेमाल गोला बारूद, राशन और पानी पहुँचाने के साथ साथ जोखिम भरे इलाकों से घायल सैनिकों को निकालने के लिए भी था। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक अगस्त 2026 में यूजीवी यानी अनमैन्ड ग्राउंड व्हीकल ने 25,000 से ज्यादा रसद और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए, जिससे साल की शुरुआत से अब तक ऐसे अभियानों की कुल संख्या करीब 1,12,000 हो गई। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए नए आंकड़ों के मुताबिक यूक्रेन के सशस्त्र बलों ने साल 2026 में अनमैन सिस्टम का विस्तार करते हुए 5,90,000 से ज्यादा ड्रोन्स का ऑर्डर दिया।
1: रक्षा और आक्रमण ये दो ऐसे पहलू हैं जिनमें अगर सामंजस्य ना हो तो युद्ध की दिशा और दशा बदल सकती है। यानी सीधे शब्दों में अगर समझाया जाए कि अगर तलवार जरूरी है तो ढाल भी जरूरी है। इसी के साथ साथ भारत अब इसी रणनीति पर आगे काम कर रहा है और उसी के तहत अपनी सेना को तैयार कर रहा है। नए नए उपकरणों को इसी तरीके से बनाया जा रहा है जो कि अटैकिंग भी हो और साथ ही साथ दुश्मन के हमले का मुकाबला भी हम सही और अच्छी तरीके से कर सकें।
0: घना जंगल हो या फिर ऊंचे ऊंचे पहाड़, शहर की भीड़ भाड़ हो या फिर सुनसान रेगिस्तान, खतरा किसी भी इलाके में हो, खतरे का स्वरूप चाहे जैसा भी हो, अब भारतीय सेना का बास उन्हें ढूंढकर मौत की नींद सुला देगा। भारतीय सेना के रणबांकुरों को अब दुश्मन के नजदीक जाने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि सेना का नया हथियार बास ड्रोन सेना में शामिल होने के लिए तैयार है।
1: भारतीय सेना का स्वदेशी बाज अटैक ड्रोन अब बड़े पैमाने पर बनने के लिए तैयार है, क्योंकि भारत ने इसकी ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी निजी कंपनियों को दे दी है। और सबसे बड़ी और खास बात यह है कि इसे भारतीय सैनिक विकास चतुर्वेदी ने ही डिजाइन किया है, जो ये बात दिखाता है कि भारत किस तरीके से अपने मेक इन इंडिया लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ रहा है और अपनी तकनीक के हिसाब से ही और अपनी जरूरतों के हिसाब से अपने हथियारों का निर्माण कर रहा है।
0: मौजूदा वक्त आमने सामने की लड़ाई का नहीं है। सैनिक युद्ध के मैदान में सीधे कदम नहीं रख रहे, बल्कि तकनीक के दम पर तैयार होने वाले विध्वंसक हथियारों को युद्ध के मैदान में उतारा जा रहा है, जो ऑटोनॉमस तरीके से काम करते हैं। या यूं कहें कि एक बार अगर टारगेट सेट कर दिया तो बाकी का काम वो हथियार करेगा। ड्रोन भी उसी टारगेट का एक हथियार है, जो दुश्मन के टैंक, बंकर, हथियार डिपो को दूर से ही तबाह कर सकता है। अब आपको स्वदेशी ताकत से लबरेज बाज ड्रोन की एक और खासियत के बारे में विस्तार से बताते हैं। 12 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से उड़ने वाला बाज ड्रोन एक मिनट में करीब 1 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। मैदानी इलाके में बाज ड्रोन 80 किलो तक के हथियार लेकर उड़ने की ताकत रखता है। वहीं हाई ऑल्टीट्यूड वाले इलाकों में ये 45 किलो तक का वजन लेकर उड़ सकता है। बाज ड्रोन अपने साथ कई तरह के हथियार ले जा सकता है, जिसमें रॉकेट लॉन्चर का अटैचमेंट इसे बेहद ताकतवर बनाता है। दावा किया जाता है कि ये दुनिया का पहला ऐसा ड्रोन है जो हवा में रहते हुए लॉन्चर से रॉकेट दाग सकता है, जिसकी मदद से दुश्मन के MMG, LMG बंकर, एमिनेशन डिपो और कमांड कंट्रोल सेंटर को आसानी से तबाह किया जा सकता है। रॉकेट लॉन्चर की साइट के साथ ही कैमरे को अटैच किया गया है। कैमरे की मदद से बाज ड्रोन सटीक हमला करता है और फिर सुरक्षित वापस लौट आता है। इसे मैनुअल और ऑटोनोमस मोड में भी ऑपरेट कर सकते हैं। बाज ड्रोन पायलट मोड में 5 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है, वहीं ऑटोनोमस मोड में 10 किलोमीटर की दूरी तक उड़ान भरने में सक्षम है।
2: भारत जो है बाज बटालियन बना रहा है, आधुनिक ड्रोन्स का इस्तेमाल कर रहा है और काफ़ी हद तक ऑटोनोमी दे रहा है। हालांकि फाइनल कंट्रोल अभी भी भारत ने एथिक्स को सोचते हुए अपने हाथ में रखा, लेकिन जरूरत पड़ने पर ये ड्रोन दिशा बदलने में सक्षम है। अगर टारगेट अपनी

0: जगह बदल लेता है तो ये भी प्रोएक्टिव होके अपनी जगह बदल के टारगेट का पीछा करते हैं, उसको बर्बाद करते हैं, साथ साथ में अलग अलग तरह के हथियार ले जाने में सक्षम है। और इनको देखते हुए बास बटालियन भी बनाई जा रही है ताकि बड़ी संख्या में आज जो ड्रोन से होने वाला खतरा है उसमें आक्रामक तौर पर और डिफेंस के तौर पर हम लोग सक्षम रहें।
1: बाज ड्रोन को काउंटर इमरजेंसी, काउंटर टेररिज्म में सर्विलांस और आतंकियों के हाइडआउट को तबाह करने के लिए तैयार किया गया है। दरअसल जम्मू कश्मीर में आए दिन होने वाले आतंकी हमले और हमलों को अंजाम देकर आतंकी घने जंगल में छिप जाते हैं, जिन्हें ढूंढना आसान नहीं होता। लिहाजा अब आतंक के सपोलों को खत्म करने के लिए बाज आने वाला है। बाज ड्रोन की सबसे खास बात है इसका एयर फ्रेम स्वदेशी कार्बन अरामिड कंपोजिट से बना है, जो क्रैश रेजिस्टेंस है और 7.62 mm की गोली हिट को भी सहन कर सकता है।
0: देखा जाए तो बाज ड्रोन काउंटर टेरर और काउंटर सर्विलियंस के लिए काफी कामयाब हो रहा है, क्योंकि दो तरह से इस्तेमाल हो। जो आधुनिक ड्रोन्स हैं वो काफी पास तक जाकर जो टेरर कैंप है उनकी पूरी खबर हासिल करके पीछे भेजते हैं, जिससे कि ऑपरेशन में हेल्प होती है। दूसरी बात, जो एंटी ड्रोन्स हैं वो बाज हैं जिनके ऊपर कैमरा लगा हुआ है, और वो जो टेररिस्ट हैं वो नेचुरली ड्यूअल यूज ड्रोन्स का इस्तेमाल करते हैं। वो ड्रोन को देखते हैं तो बाज उसको पकड़ के डिस्ट्रॉय करके फेंक देता है और टेररिस्ट के जो इरादे हैं उनको नाकाम कर देता है।
1: आज दुनिया के कई मुल्क रोबोटिक वॉरफेयर की रेस में लगे हुए हैं। ऐसे रोबोट बनाने की कोशिश हो रही है जो जंग में गोलियां तक बरसा सके। भारतीय सेना ने निगरानी क्षमता बढ़ाने और युद्ध अभियानों में मदद के लिए एक म्यूल यानी कि मल्टी यूटिलिटी लेग इक्विपमेंट डेवलप किया है, जिसे रोबोटिक डॉग भी कहा जाता है। इस रोबोटिक डॉग को अलग अलग हालात में परखा जा रहा है। रोबोटिक म्यूल को 10 किलोमीटर दूर बैठकर भी ऑपरेट किया जा सकता है। 1 घंटे चार्ज करने के बाद ये लगातार 10 घंटे तक काम कर सकता है। इनमें एक रिमोट कंट्रोल यूनिट होती है जिससे इसको मॉनिटर किया जा सकता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसकी डिजाइन है, जिसकी मदद से हर बाधा को आसानी से पार कर सकता है। ये रेगिस्तान, ऊबड़ खाबड़ जमीन, ऊंचाई और बर्फीले इलाकों में पूरी तरह से काम करने में सक्षम है। -40 से 55 डिग्री सेल्सियस का तापमान भी इसकी क्षमताओं पर कोई असर नहीं डाल सकता।
2: भारतीय सेना ने 100 रोबोटिक म्यूल खरीदे हैं इमरजेंसी पावर्स के अंदर, जो करीब 300 करोड़ की उनकी है। ये जो रोबोटिक म्यूल्स हैं ये इंफ्रारेड से लेस हैं, यानी कि किसी ऑब्जेक्ट से अगर हीट निकल रही है तो ये उसे पहचान सकते हैं। ये इलेक्ट्रो ऑप्टिक से भी लेस हैं, यानी कि ये पहचान सकते हैं कि ऑप्टिकल यानी कि फिगर को देख के कि कौन है सामने। चूंकि इनमें ये सेंसर्स लगे हुए हैं, इसलिए उन सेंसर्स को 10 किलोमीटर दूर से भी ऑपरेट किया जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है। हाई एल्टीट्यूड में इस्तेमाल किए जाते हैं ये
1: रोबोटिक डॉग में 360 डिग्री घूमने वाला हाई रेजोल्यूशन कैमरा लगाया गया है, जिसकी मदद से रात के अंधेरे में छिपे हुए दुश्मनों को भी ढूंढ निकालना आसान होगा। खास बात ये भी है कि ये रोबोटिक डॉग्स ऊंचाई वाले इलाकों में 15 किलो वजन के सामान को भी अपने साथ आसानी से ले जा सकते हैं।
2: ये रोबोट हो या आदमी हो, किसी भी चीज को जानने के लिए, पहचानने के लिए हमको या तो उसकी फिगर की आवश्यकता होती है, या उसकी ध्वनि की आवश्यकता होती है, या उसकी बॉडी से निकलने वाली हीट वेव्स की आवश्यकता होती है। बस यही उपकरण है जो इनके अंदर लगाए जाते हैं। इनमें थर्मल कैमराज लगाए जाते हैं जो हीट से पिक्चर ले सकते हैं, इंफ्रारेड लगाए जाते हैं, इंफ्रारेड कैमराज भी लगाए जाते हैं, सेंसर टारगेट भी लगाए जाते हैं।
1: सरहद की रक्षा करने में जुटे जवानों को किसी तरह के नुकसान से बचाते हुए ये दुश्मन पर गोलीबारी भी कर सकता है। आपको याद होगा कि साल 2023 में भारतीय सेना ने तकरीबन 100 रोबोट डॉग्स को ऊंचाई वाले इलाकों में तैनात किया था, जहां पर ये अपनी सेवाएं दे रहे हैं और आज हमारी सरहद की रखवाली कर रहे हैं। सेना की योजना इन रोबोट्स को ऐसी मुश्किल जगहों पर तैनात करने की है, जहां सेना के जवानों को पहुंचने में काफी दिक्कत आती है। इन रोबोट्स की मॉनिटरिंग सेना के जवान करेंगे। इन रोबो डॉग्स के इस्तेमाल से संवेदनशील सीमाओं की सुरक्षा में लगे सशस्त्र बलों पर दबाव महत्वपूर्ण रूप से कम हो सकता है। रण क्षेत्र में फिलहाल यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।

0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
2: उत्तराखंड के खटीमा में आदि रंगोत्सव फेस्टिवल का शुभारंभ मुख्यमंत्री धामी के साथ केंद्रीय मंत्री जुएल ओरम और किरण रिजिजू रहे मौजूद। असम, उड़ीसा, महाराष्ट्र सहित 15 राज्यों के जनजाति समूहों के हुनर का प्रदर्शन। फिर से संत रविदास नगर के नाम से जाना जाएगा उत्तर प्रदेश का भदोही जिला। कारपेट एक्सपो के उद्घाटन पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ऐलान, जल्द ही सरकार की ओर से अधिसूचना होगी जारी। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में कैप्टन स्मिथ मच्छार के लिए पूजा अर्चना हवन पूजन के साथ भगवान से जल्द स्वस्थ होने की कामना। जामास के लिए देश भर में हो रही है प्रार्थनाएं। सुहाने मौसम, हिमाचल में बड़ी सैलानियों की संख्या, मैकबॉटगंज की सड़कों पर पर्यटकों का तांता, पर्यटन कारोबारियों के खिले चेहरे। राजधानी दिल्ली में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के तौर पर विकसित होंगे 5 प्रमुख स्टेडियम। प्रदेश के खेल मंत्री आशीष सूद ने किया ऐलान, खिलाड़ियों को मिलेंगी हर तरह की आधुनिक सुविधाएं। जापान के एगानोया में एशियन गेम्स 2026 का भव्य समापन समारोह, 2 गोल्ड और 1 सिल्वर मेडल जीतने वाली शूटर नीरू ढांडा ने थामा तिरंगा, भारतीय खिलाड़ियों ने जीते कुल 85 मेडल।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो।
2: खटीमा में 3 दिवसीय रंगोत्सव कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने उद्घाटन किया। 18 राज्यों से पहुंचे जनजातीय कलाकारों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से बांधा समा, हर ओर पारंपरिक कला के दिखे रंग। खटीमा मुख्य चौक से आया आयोजन स्थल तक निकाला गया भव्य रोड शो, हनुमान अंश की टीम ने भी मुख्यमंत्री धामी के साथ आदि रंगोत्सव में शिरकत की। मुख्यमंत्री धामी हनुमान अंश के कलाकारों के साथ जौनसार भावर की ढोल दमाऊ टीम के साथ झूमते हुए नजर आए। विभिन्न स्टॉल्स के माध्यम से स्थानीय उत्पादों को भी दिया गया मंच। सैलानियों से गुलजार, हिमाचल का टूरिस्ट डेस्टिनेशन धर्मशाला, बदले मौसम का आनंद लेने के लिए बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं पर्यटक। लंबे वीकेंड पर त्रियुंड ट्रैक पर्यटकों की भारी भीड़ यहां देखने को मिल रही है, इस ट्रैक पर पहली बार देखने को मिला है इतना हुजूम। मैकलॉडगंज में सैलानियों की बड़ी संख्या को देखते हुए पुलिस प्रशासन भी हुआ अलर्ट, ट्रैफिक व्यवस्था संभालने में जुटे लोग। ट्रैक पर जाने वाले पर्यटकों की सुरक्षा को लेकर भी विशेष व्यवस्था, सभी का पंजीकरण किया जा रहा है। बदल गया मौसम और सैलानियों की भीड़, स्थानीय कारोबारियों के लिए गुड न्यूज लेकर आई, कारोबारी भी नजर आए खुश। लॉन्ग वीकेंड पर मसूरी में उमड़ी पर्यटकों की भारी भीड़, 80% से ज्यादा होटल्स ऑक्यूपेंसी। सुहाने मौसम का सैलानी ले रहे लुत्फ, मॉल रोड पर दिखी सैलानियों की भारी भीड़। पर्यटकों के आने से मॉल रोड, कुल्लड़ी बाजार और लाइब्रेरी बाजार में बढ़ी रौनक। बागेश्वरधाम आने वाली महिला भक्तों से बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की अपील, महिलाएं अकेली ना जाना। बाबा ने कहा महिलाएं स्वयं सतर्क, सजग और सावधान रहें। गंगोत्री हर्षिल में उमड़ा सैलानियों का सैलाब, सुक्की से गंगनानी तक घंटों का जाम। हर्षिल घाटी में पर्यटकों से चमका होटल्स और रेस्टोरेंट्स का कारोबार। केदारधाम में उमड़ रहा आस्था का महासैलाब, मुख्य द्वार और वीआईपी गेट पर लगी भीड़। बाबा केदार के दर्शन करने के लिए भक्तों को घंटों इंतजार करना पड़ रहा है, भीड़ को व्यवस्थित करने में जुटा मंदिर प्रशासन। सूरत में सारोली इलाके में लिफ्ट में फंसे 6 लोगों का हुआ रेस्क्यू। दुर्गा पूजा की तारीख नजदीक आते ही देशभर में तैयारियों ने पकड़ी रफ्तार। प्रतिमा निर्माण और पंडालों का बनाने का काम तेज। महादेव की नगरी काशी में भी मां के स्वागत करने के लिए जबरदस्त तैयारियां। अलग अलग थीमों पर प्रतिमाएं हो रही हैं तैयार। काशी में कलाकारों ने भक्तों को जागरूक करने के लिए बनाई खास मूर्तियां। बच्चों को मोबाइल से दूर रखने के लिए मोबाइल आइसोर। पूर्व वर्धमान के कालना के हटगाछा गांव बन रही हैं मां की प्रतिमाओं की विदेशों तक डिमांड। कलाकार तापस ने पुआल और मिट्टी से बनाई जबरदस्त प्रतिमाएं। वन्यजीव 2026 के दौरान डेजर्ट नेशनल पार्क की सुदासरी रेंज में पहली बार कैप्टिव ब्रीडिंग से तैयार किए गए दो गोडा वर्णों को जंगल में छोड़ा गया। भारत में पहली बार है जब ब्रीडिंग सेंटर से तैयार गोडा वर्णों को नियंत्रण वातावरण से निकालकर प्राकृतिक पर्यावास में छोड़ा गया। जंगल में छोड़े गए दोनों नर पक्षियों की गतिविधियों और खान पान पर नजर। बगहा में बाढ़ से प्रभावित परिवारों से मिलने पहुंचे केंद्रीय राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे। करीब 1000 परिवारों को पहुंचाई राहत सामग्री। SGPGI लखनऊ के स्पोक हब मॉडल से जोड़ा जाएगा अयोध्या मेडिकल कॉलेज। कैप्टन स्मिथ मचार के जल्द स्वस्थ होने की कामना में आसनसोल में महामृत्युंजय जाप। कैप्टन मचार के लिए दुबे के बाप्स मंदिर में दुआओं का दौर। भदोही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया 50वें इंडिया कॉर्पोरेट एक्सपो का उद्घाटन। उद्यमियों से संवाद किया कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भेंट की पेंटिंग। मुख्यमंत्री बोले मिर्जापुर और संत रविदास नगर भदोही को बनाया जाएगा सिल्क क्लस्टर। फिर से संत रविदास नगर के नाम से जाना जाएगा उत्तर प्रदेश का भदोही जिला। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ऐलान। एशियन गेम्स में देश को सोना दिलाने वाली खिलाड़ी बलजीत कौर से फोन कॉल पर अकाली नेता हरसिमरत कौर ने बातचीत की कामयाबी पर बधाई दी। गुजरात के बनासकांठा के कावा गांव में बदल गई लोगों की जिंदगी। ज्योति ग्राम योजना के तहत 24 घंटे मिल रही है बिजली सप्लाई। गांव में पानी की समस्या भी हुई कम। ग्रामीण ने बड़े पैमाने पर शुरू किया पशुपालन। तमिलनाडु में भारी बारिश। वलपराय में भारी बारिश के बाद सड़कों पर जमा हुआ पानी। सरिस्का में भैंस और टाइगर का हुआ आमना सामना। भैंस से डरकर जंगल की ओर भागा टाइगर। एशियाई खेलों में हॉकी में गोल्ड मेडल जीतने वाली ईशिका का भिवानी में हुआ भव्य स्वागत। ईशिका को खुली जीप में बैठाकर परिवार ने निकाला भव्य रोड शो। स्थानीय लोगों ने नाच गाकर और ढोल बजाकर किया भव्य स्वागत। हॉकी की मेडलिस्ट ईशिका चौधरी का भी ग्वालियर पहुंचने पर भव्य स्वागत हुआ। एयरपोर्ट पर स्वागत करने के लिए बड़ी संख्या में पहुंचे लोग, पहनाई गई फूल मालाएं। एशियन गेम्स के महिला हॉकी में स्वर्ण पदक लेकर लौटी बेटियों का भव्य स्वागत हुआ। झारखंड एयरपोर्ट पहुंचे फैंस। बेटियों के स्वागत करने के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। लोगों ने खिलाड़ियों का उनको पहनाई फूल मालाएं। एयरपोर्ट पर हाथों में हॉकी लेकर पहुंचे फैंस। ढोल नगाड़ों के बीच पारंपरिक डांस। बॉक्सिंग के पदकवीर भी लौटे स्वदेश। गोल्डन गर्ल लवलीना और परवीन का दिल्ली एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत। जापान से जीतकर लौटे अंकुश पंघाल और दूसरे खिलाड़ियों का भी जबरदस्त स्वागत किया गया। रविवार को जापान में 20वें एशियाई खेलों का हुआ भव्य समापन। खेल के मैदान पर देखी युवा प्रतिभा की चमक। 2030 में दोहा करेगा एशियाई खेलों की मेजबानी। समापन समारोह में मेजबान देश को सौंपा गया ध्वज। आईची नागोया में आयोजित इस भव्य आयोजन में लगभग 17,000 एथलीट्स शामिल हुए। क्लोजिंग सेरेमनी में देखने को मिले सांस्कृतिक कार्यक्रमों के रंग, कई प्रकार की प्रस्तुतियां। एथलेटिक्स में युवा प्रतिभागियों और उनका देखने को मिला जलवा, व्यवस्थाओं की भी तारीफ हुई। पुरी में भगवान जगन्नाथ की भव्य आरती, बड़ी संख्या में भक्तों ने दर्शन पूजन किए। श्री जगन्नाथ के दरबार में पहुंचे नागालैंड के गवर्नर नंदकिशोर यादव, विधि विधान से पूजा अर्चना। तूतुकुड़ी में वन विभाग की ओर से वन्यजीव सप्ताह पर कराई गई चित्रकला प्रतियोगिता, छात्रों ने बनाई प्रकृति से जुड़े संदेश देने वाली तस्वीर। गुजरात के वलसाड अम्बेटी गांव में बदल रही है तस्वीर, ग्रामीण और आदिवासी इलाकों में विकास। श्रीनगर में धूप खिलने के साथ ही सुहाना हुआ मौसम, पर्यटकों ने उठाया नजारों का लुत्फ। दुनिया के सबसे बड़े बियर महोत्सव म्यूनिक ऑक्टोबरफेस्ट का धूमधाम से समापन हुआ। इस साल म्यूनिक ऑक्टोबरफेस्ट में रिकॉर्ड संख्या में 70 लाख से ज्यादा दर्शक शामिल हुए। समापन सेरेमनी में पारंपरिक बैंड का भी आयोजन किया गया, लोगों ने अगले वर्ष फिर से खुशियों के साथ फेस्टिवल मनाने का प्रण दिया। 16 दिन तक चलने वाले इस फेस्टिवल में बड़ी संख्या में बच्चे भी शामिल हुए। मेले में तरह तरह के रंग देखने को मिले, लोगों ने अपने परिवारों के साथ फेस्टिवल में जमकर खरीदारी भी की। न्यू मैक्सिको के अल्बुकर्क में चल रहे इंटरनेशनल बैलून फिएस्टा फेस्टिवल के दूसरे दिन आसमान में देखा अद्भुत नजारा। एलियन के सिर जैसे और मानव मस्तिष्क के आकार वाला गुब्बारा बना चर्चा का विषय। 1972 में मात्र 13 गुब्बारों से शुरू हुई था ये उत्सव, आज इसमें लगभग 600 गुब्बारे शामिल होते हैं। इससे दुनिया का सबसे बड़ा गर्म हवा का गुब्बारा आयोजन माना जाता है। अपनी यूक्रेन यात्रा के दौरान मर्स ने जर्मन ड्रोन निर्माता कंपनी का किया दौरा। 2026 के सॉसेज वॉक में रंग बिरंगी पोशाकों में सजे नजर आए सैकड़ों डैक्शंस कुत्ते। पेरिस फैशन वीक के दौरान ही होता है कुत्तों की सॉसेज वॉक का आयोजन, पालतुओं के साथ उनके मालिक भी एक जैसे लिबास में नजर आए। 1.4 किलोमीटर की यह सैर सुबह 10 बजे से शुरू होकर दोपहर लगभग 1 बजे समाप्त हुई। सॉसेज वॉक का आयोजन विश्व पशु दिवस के साथ हुआ था। इस आयोजन का मकसद आवारा पशुओं के लिए धन जुटाना। सॉसेज वॉक में सिर्फ लंदन ही नहीं बल्कि यूरोप तक से लोग शामिल होने के लिए आते हैं। चीन में राष्ट्रीय दिवस की छुट्टी में हुकू वाटरफॉल देखने के लिए उमड़ी सैलानियों की भीड़। हुकू वाटरफॉल चीन का दूसरा सबसे बड़ा वाटरफॉल है। पीली नदी में कई तरह के नाव शो का भी आयोजन हुआ। सैन फ्रांसिस्को प्लाजा में सैकड़ों पालतू पशु मालिक का जानवरों के वार्षिक आशीर्वाद समारोह के लिए शामिल हुए। फ्रांसिस्कन पुजारियों ने कुत्ते, बिल्लियों, खरगोशों, गिनीपिग, मछलियों और मुर्गों का आशीर्वाद दिया। सैन फ्रांसिस्को में यह परंपरा संत फ्रांसिस ऑफ असीसी के पशु कल्याण से जुड़ी हुई है। शंघाई के वाइल्ड एनिमल पार्क में धूमधाम से मनाया गया 3 विशाल पांडा का जन्मदिन। तीनों पांडा के लिए विशेष थीम पर तैयार करवाए गए केक, बड़ी संख्या में सैलानी पांडा को बर्थडे बधाई दी गई। पार्क घूमने आए सैलानियों ने ब्लेसिंग वॉल पर पांडाओं के लिए हार्दिक शुभकामनाएं दी। रेड बुल के मैक्स वेरस्टैपन ने जीती बहरीन ग्रैंड प्रिक्स रेस। चैंपियनशिप लीडर किमी एंटोनेली मर्सिडीज के लिए दूसरे पायदान पर रहे। चीन में धूमधाम से जारी है नेशनल डे फेस्टिवल, जगह जगह रंग बिरंगी रोशनी से सजे हुए हैं कार्यक्रम। चाइना इंटेजिबल कल्चरल हेरिटेज एक्सपो पार्क में किया गया शानदार लाइट फेस्टिवल का आयोजन। लालटेन प्रदर्शनी में देखने को मिली चीन की पुरानी विरासत की झील, चमक 4 चरणों में प्रस्तुत की गई लालटेन प्रदर्शनी। पिघले हुए लोहे की आतिशबाजी ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। लालटेन प्रदर्शनी में गोल्डन लाइट से सजा पेड़ बना आकर्षण का मुख्य केंद्र। लोगों ने लाइट से सजे पेड़ के साथ सेल्फी ली। आयुष्मान खुराना की आने वाली कॉमेडी ड्रामा फिल्म उड़ता तीर की रिलीज डेट को किया गया पोस्टपोन। अजय देवगन के करियर में सबसे तेज 100 करोड़ रुपए कमाने वाली फिल्म बन गई दृश्यम 3। जमास कैप्टन स्मिथ के फैन हुए सलमान खान, सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट की तारीफ किया। सुपरस्टार रजनीकांत अपनी अपकमिंग फिल्म धर्मन की शूटिंग करने के लिए पहुंचे मैसूर, ऑटो रिक्शा में बैठकर पहुंचे शूटिंग सेट पर। फिल्म तू है मेरी किरण के प्रमोशन में जुटी सोनाक्षी सिन्हा, मुंबई के सोफिया कॉलेज में छात्राओं से की मुलाकात। रणनीति चोपड़ा की नई फिल्म रिपोर्टिंग लाइव का ट्रेलर हुआ रिलीज, पत्रकार के किरदार में नजर आई प्रणीति। सलमान खान की फिल्म मातृभूमि को लेकर बड़ी खबर, सेंसर बोर्ड और मेकर्स की तरफ से मिली मंजूरी। पटना साहब गुरुद्वारा पहुंची अभिनेत्री यामी गौतम, फिल्म नई नवेली को लेकर अरदास। अजय देवगन की फिल्म दृश्यम 3 रिलीज होने के मात्र 2 दिनों के भीतर ही 100 करोड़ के आंकड़े में शामिल। एक्ट्रेस कृतिका कामरा अपने पति गौरव कपूर के साथ ग्रीस में आई नजर।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
5: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
2: बात करते हैं सलमान खान की लंबे समय से रिलीज की मंजूरी के लिए अटकी फिल्म की। सलमान की वॉर फिल्म मातृभूमि को आखिरकार हरी झंडी मिल चुकी है, अब CBFC की तरफ से मंजूरी मिलने का इंतजार है। उम्मीद की जा रही है कि इसी साल ये फिल्म पर्दे पर दस्तक देगी।
7: जवानों याद रहे, जख्म लगे तो मेडल समझना, और मौत दिखे तो सलाम करना और कहना बिरसा मुंडा की, बजरंग बली की, भारत माता की।
8: सुपरस्टार सलमान खान की अपकमिंग फिल्म की शुरुआत और ऐलान बैटल ऑफ कलवान के तौर पर हुई थी, लेकिन कुछ दिक्कतों की वजह से इसी साल की शुरुआत में इसका नाम बदलकर मातृभूमि कर दिया गया। इस फिल्म की कहानी भारत और चीन के बीच 2020 में हुए टकराव पर बेस्ड है, इसलिए रक्षा मंत्रालय को फिल्म में चीन से जुड़े कुछ सीन से आपत्तियां थी, क्योंकि हाल में दोनों देशों के रिश्तों में सुधार देखा जा रहा है। इसी वजह से फिल्म के रिलीज में देरी हो रही थी, लेकिन अब फिल्म को सरकार की तरफ से हरी झंडी मिल चुकी है और फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए पूरी तरह से तैयार है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सूचना और प्रसारण मंत्रालय को मेकर्स ने मातृभूमि का जो नया वर्जन पेश किया है उससे मंत्रालय को कोई आपत्ति नहीं है, जिसके चलते इस वॉर ड्रामा फिल्म के लिए एनओसी दे दी गई है। एनओसी मिलने के बाद अब ये फिल्म इस साल के आखिरी में सिनेमाघरों में दस्तक दे सकती है, हालांकि इसकी ऑफिशियल डेट अभी तक सामने नहीं आई है। सूत्रों के मुताबिक सलमान खान 13 नवंबर पर नजर बनाए हुए हैं। उनका ये मानना है कि दिवाली के बाद का समय जब सब फेस्टिव मूड में होंगे तब इस फिल्म को रिलीज करना ठीक होगा। हालांकि सेंसर की प्रक्रिया अभी भी पूरी नहीं हुई है, मेकर्स जल्द ही फिल्म को सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन के पास जमा करेंगे। अगर इस फिल्म को CBFC की तरफ से मंजूरी मिल जाती है और ये प्रोसेस इसी महीने पूरी हो जाती है तो सलमान और उनकी टीम मातृभूमि को इसी साल 13 नवंबर को बड़े पर्दे पर रिलीज कर सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक आपत्तियों के बाद मातृभूमि को ओरिजिनल वर्जन की तुलना में काफी बदल दिया गया। अब इस फिल्म में भारत और चीन के रिश्तों को सकारात्मक नजरिए से दिखाया जाएगा। अब देखना दिलचस्प होगा कि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कामयाबी की झंडी गाड़ पाएगी। बदलाव के बाद रिलीज होने जा रही मातृभूमि दर्शकों के बीच वही असर छोड़ पाएगी जो मेकर्स ने सोच कर फिल्म बनाई थी। फिल्म में सलमान खान मुख्य भूमिका में नजर आएंगे। उनके अलावा मातृभूमि में चित्रगंधा सिंह, अंकुर भाटिया, अभिलाष चौधरी और जैन शॉ समेत कई कलाकार नजर आने वाले हैं। इस फिल्म का निर्देशन अपूर्व लाखिया ने किया है। मातृभूमि की रिलीज डेट को लेकर कयासों का बाजार गर्म होने लगा है, अलग अलग तरह की संभावना जताई जा रही है। उम्मीद की जा रही है कि 10 दिनों में फिल्म की रिलीज को लेकर स्थिति पूरी तरह से साफ हो जाएगी। रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर। गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
5: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
9: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
9: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है।
2: एवरेस्ट दिखा ला, सही दिखा सही लाल।
3: उत्तराखंड के खटीमा में आदि रंगोत्सव फेस्टिवल का शुभारंभ मुख्यमंत्री धामी के साथ केंद्रीय मंत्री ज्वेल ओरम और किरण रिजिजू रहे मौजूद। असम उड़ीसा महाराष्ट्र सहित 15 राज्यों के जनजाति समूहों के हुनर का प्रदर्शन। ऐसे संत रविदास नगर के नाम से जाना जाएगा उत्तर प्रदेश का भदोही जिला। कारपेट एक्सपो के उद्घाटन पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ऐलान, जल्द ही सरकार की ओर से अधिसूचना होगी जारी। पश्चिम बंगाल के असनसोल में कैप्टन स्मिथ मच्छार के लिए पूजा अर्चना, हवन पूजन के साथ भगवान से की जल्द स्वस्थ होने की कामना, जाबाज के लिए देश भर में प्रार्थनाएं। राजधानी दिल्ली में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के तौर पर विकसित होंगे 5 प्रमुख स्टेडियम। प्रदेश के खेल मंत्री आशीष सूद ने किया ऐलान, खिलाड़ियों को मिलेंगी हर तरह की आधुनिक सुविधाएं। जापान के हेगानोया में एशियन गेम्स 2026 का भव्य समापन समारोह, 2 गोल्ड और 1 सिल्वर मेडल जीतने वाली शूटर नीरू ढांडा ने थामा तिरंगा, भारतीय खिलाड़ियों ने जीते कुल 85 मेडल।

0: नमस्कार, गुड लक टुडे के इस खास एपिसोड में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव और मेरा साथ देने के लिए स्टूडियो में एक बार फिर से मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडित जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
1: नमस्कार।
0: तो चलिए आपको जानकारी देते हैं कि आज के इस शो में हम पंडित जी के साथ क्या चर्चा करने वाले हैं। चर्चा का विषय आज रहने वाला है बहुत ही इंटरेस्टिंग, और चर्चा का विषय है दोस्ती यानी फ्रेंडशिप। दोस्ती का ज्योतिष नजरिए से किस तरह से कनेक्शन होता है ये समझेंगे। दोस्ती किन ग्रहों की वजह से अच्छी हो सकती है, किन ग्रहों की वजह से बुरी हो सकती है, या फिर कई बार आप भी देखते होंगे कि आपकी जिंदगी में अच्छे दोस्त नहीं बन पाते हैं, उसका रीजन क्या होता है, कौन से ऐसे संयोग बनते हैं, कौन से ऐसे सर्कमस्टांसेस होते हैं जिसकी वजह से जीवन में अच्छे दोस्त नहीं बनते हैं, और अगर आप अच्छे दोस्त पाना चाहते हैं तो फिर आपको क्या करना चाहिए। पंडित जी आपको विस्तार से इसके बारे में जानकारी देंगे, तमाम उपायों के बारे में बताएंगे, महाउपाय के बारे में बताएंगे, राशियों के बारे में भी जानकारी देंगे। शुरुआत कर लेते हैं गुड लक मंत्र के साथ।
1: अपने काम की मेज को जहां आप लिखते हैं, पढ़ते हैं, काम करते हैं, हमेशा साफ सुथरा और व्यवस्थित रखिए। अगर आपकी मेज बिखरी रहेगी, साफ तरीके से नहीं रहेगी, तो काम का बोझ बढ़ेगा और आपसे निरंतर गलतियां होंगी। इसीलिए अपने काम करने की मेज को, डेस्क को आपको हमेशा बेहतर रखना चाहिए।
0: चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और पंडित जी से जान लेते हैं 5 अक्टूबर सोमवार 2026 के पंचांग के बारे में।
1: दिनांक 5 अक्टूबर 2026 दिन सोमवार, तिथि है आश्विन कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि, नक्षत्र है पुष्य नक्षत्र, रात के 11:09 तक चंद्रमा कर्क राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय प्रातः 7:30 से लगभग 9 तक पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है तो दर्पण में चेहरा देखकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे।
0: चलिए आज के विषय की शुरुआत करते हैं। हमने आपको बताया कि बातचीत होगी आज पंडित जी के साथ फ्रेंडशिप के बारे में, दोस्ती के बारे में। दोस्ती जो वर्ड है ज्योतिष नजरिए से अगर इसको समझना चाहें तो ये क्या परिभाषा होती है दोस्ती की?
1: जी, ऐसा कहा जाता है कि ईश्वर जिन लोगों को रिश्तों में नहीं बांध पाता उनको दोस्ती के रिश्तों में बांध कर अपनी गलती सुधार लेता है। दोस्ती जीवन का बड़ा महत्वपूर्ण रिश्ता है। ज्योतिष दोस्ती के बारे में क्या कहता है? देखिए, कुंडली में जो 5वां खाना है, पंचम भाव है, और जो 11वां खाना है, एकादश भाव है, ये आपकी मित्रता से संबंध रखता है। इसके अलावा, मित्रों के अलावा जीवन में सहयोगी भी होते हैं जो आपका सपोर्ट करते हैं, ऑफिस में आपके साथ काम करते हैं, आपके कलीग होते हैं, तो सप्तम भाव आपके सहयोगियों का होता है। चंद्रमा और बुध आपकी मित्रता के निर्णायक ग्रह हैं। किसी व्यक्ति की मित्रता कैसी है और कितनी है ये बात चंद्रमा और बुध से जानी जा सकती है। आपकी राशि और आपका लग्न ये आकर्षण पैदा करते हैं, इसीलिए आप लग्न और राशि से दूसरों के प्रति आकर्षित हो जाते हैं। आप किसी की तरफ अट्रैक्ट होते हैं ना, जुड़ना चाहते हैं ना, आपकी राशि उसकी राशि से कनेक्ट हो रही है, आपको पता हो या ना पता हो। चंद्रमा भावनात्मक मित्रता करवाता है, इमोशनल मित्रता चंद्रमा की वजह से होती है, और बुध बुद्धि से मित्रता करवाता है। बुध वाले सोच विचार कर अपना फायदा नुकसान देख करके तब मित्रता करते हैं, ऐसा देखा गया है।
0: चलिए, ऐसे दोस्ती के बारे में बहुत सारे सवाल हैं जो आगे जाकर हम पंडित जी से पूछने वाले हैं। आते हैं राशिफल पर और पहली तीन राशियों का हालचाल आपको बता देते हैं कैसा रहने वाला है। सबसे पहले बारी है मेष, मेष और मिथुन वालों की। इनके भाग्य में आज क्या लिखा है पंडित जी से एक बार जान लेते हैं।
1: मेष राशि, खान पान का अपने ध्यान रखें, वाद विवाद से बचाव करें, धन की हानि आपको हो सकती है, दूध का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम होगा। वृषभ राशि, छोटी यात्रा हो सकती है, नौकरी में परिवर्तन होगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, करियर में सफलता के योग हैं, प्रिय मित्र से मुलाकात होगी, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
0: देखिए, शुरुआत में जब मैंने इंट्रोडक्शन दिया तो मैंने आपको दो बातें कही कि एक तो अच्छे दोस्त कब मिलते हैं, अच्छे दोस्त कब नहीं मिलते हैं, कौन सी ऐसी परिस्थितियां बनती हैं। तो पंडित जी, सवाल उसी के साथ जोड़ देती हूँ कि जीवन में ऐसे कौन से हालात होते हैं कि आपको अच्छे मित्र मिल ही नहीं पाते हैं।
1: देखिए, बहुत बार ऐसा होता है कि जीवन में अच्छे मित्र मिलते ही नहीं या जीवन में मित्र नहीं होते। कब ऐसा होता है? अगर कुंडली में चंद्रमा खराब होगा या दूषित होगा तो लोगों का जुड़ाव आपके साथ नहीं होगा, या खराब लोगों का जुड़ाव होगा, अच्छे मित्र नहीं मिलेंगे। अगर कुंडली के 11वें खाने में एकादश भाव में बहुत सारे ग्रह हों तो भी आपको अच्छे मित्र नहीं मिलेंगे, या हो सकता है जीवन में मित्र ही ना मिलें। अगर कुंडली में लग्न खराब होगा तो लोग आपसे जुड़ना नहीं चाहेंगे, लोगों के साथ आपकी मित्रता नहीं होगी, और अगर होगी तो किसी निगेटिव व्यक्ति से होगी। अगर कुंडली में राहु केंद्र स्थानों में बैठा हो तो मित्रता आम तौर पर अच्छी नहीं होती, ऐसे लोगों को मित्रता में धोखा मिलता है और ऐसे लोगों के जीवन में मित्र आम तौर पर नहीं होते। अगर किसी कुंडली में बुध काफी मजबूत हो तो व्यक्ति अपना फायदा नुकसान देखकर मित्रता करता है कि मित्रता करने से पैसे कितने मिलेंगे, मित्रता करने से सपोर्ट कितना मिलेगा, समाज में क्या स्टेटस हो जाएगी। तो अगर कुंडली में बुध काफी ज्यादा मजबूत हो तो लोग कैलकुलेशन में लगे रहते हैं और इस चक्कर में सच्चे और अच्छे मित्र उनको नहीं मिल पाते हैं।
0: चलिए और भी प्रश्न पूछेंगे पंडित जी से आगे जाकर, लेकिन अब वापस आ जाते हैं राशिफल पर। अगली तीन राशियों का हाल भी आपको बता देते हैं, कैसा रहने वाला है। बारी है अब कर्क सिंह और कन्या वालों की, इनके भाग्यफल में क्या है विस्तार से पंडित जी आपको बताएंगे।
1: कर्क राशि, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर में सफलता के योग बन रहे हैं, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, करियर में लापरवाही ना करें, व्यर्थ की चिंता हो सकती है, दूध का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। कन्या राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर में सफलता मिलेगी, संतान पक्ष की उन्नति होगी, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए फिरोजी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85%। बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
0: चलिए उस सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं जिसका आपको बड़ी ही बेसब्री से इंतजार रहता है, क्योंकि इसमें हम शामिल करते हैं आप सबके सवालों को और पंडित जी आपको जवाब देते हैं। पहले प्रश्न की तरफ बढ़ूं, उससे पहले आपको सूचित कर देते हैं कि कोई भी प्रश्न है, जीवन की कोई परेशानी है उसका निवारण आप चाहते हैं, कोई दिक्कत है उसको दूर करना चाहते हैं, अपने तमाम सवालों को भेजिए। ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर है, अभी नोट कर लीजिए, इसी ईमेल आईडी पर आपको अपने तमाम सवाल भेजने हैं। तो पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और पंडित जी आपको बताएंगे पहला सवाल कौन सा है।
1: जी, आज का पहला प्रश्न मीनाक्षी जी ने हमें देहरादून से लिखा है। अपनी बेटी के बारे में जानना चाहती हैं। बेटी की जन्म तारीख है 27 मई 2002, शाम के 7:45, जन्म स्थान है देहरादून। ये कह रही हैं कि मेरी बेटी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना चाहती है, किस क्षेत्र में उसे कोशिश करनी चाहिए और उसे सफलता कब तक मिलेगी। मीनाक्षी जी, आपकी पुत्री की कुंडली के हिसाब से इनको पोस्ट ग्रेजुएशन करवा करके टीचिंग जॉब में ले जाइए, अगर ये शिक्षा क्षेत्र में नौकरी करने का प्रयास करें तो उसमें इनको गवर्नमेंट जॉब मिलेगी। साल 2028-29 का समय इनके लिए बेहतर दिखाई दे रहा है। इनकी एकाग्रता बेहतर हो, इनका जीवन बेहतर हो, उसके लिए इनको एक पन्ना बनवा करके पहनाइएगा। 6 से 8

0: अगला प्रश्न हमें समीर जी ने बेंगलोर से लिखा है, अपने बेटे के बारे में जानना चाहते हैं। बेटे की जन्म की तारीख है 5 जुलाई 2022, जन्म का समय शाम के 6 बजे, जन्म स्थान है बेंगलोर। ये कह रहे हैं कि मेरा बेटा जब से पैदा हुआ है 4 साल हो गया है, कुछ न कुछ स्वास्थ्य की समस्या उसको लगातार लगी रहती है, तो मैं क्या उपाय करूं जिससे मेरे बच्चे का स्वास्थ्य बेहतर हो जाए। समीर जी, जब तक आपका बेटा 8 साल का नहीं हो जाता, तब तक उसको सर में चोट लगने से बचाइए और कोल्ड कफ की, सर्दी जुखाम की समस्या से उसकी रक्षा करने का प्रयास करिए। 8 वर्ष की उम्र तक स्वास्थ्य अच्छा नहीं दिखता है, इसके बाद से चीजें बेहतर दिखाई दे रही हैं। आप अपनी पत्नी से कहें कि आपके बच्चे के लिए रोज सुबह 108 बार वो ओम नमः शिवाय का जप करें और आपके बच्चे के नाम से हर सोमवार को सफेद चीज का, जैसे चावल, चीनी, दूध, अगर इसका निरंतर दान करते रहें उम्र के 8 वर्ष तक, ये उपाय करती रहें, तो बच्चा बेहतर तरीके से आगे बढ़ सकेगा।
1: चलिए पंडित जी ने आपको ये तो बताया कि अच्छे मित्र कब नहीं मिलते हैं, कब मिलते हैं जीवन में अच्छे मित्र, अब ये भी पंडित जी से ही जानते हैं। पंडित जी,
0: बहुत सारे लोगों को जीवन में अच्छे मित्र मिलते हैं जो शुरू से अंत तक उनका साथ निभाते हैं। तो जीवन में अच्छे मित्र कब मिलते हैं? अगर कुंडली में चंद्रमा थोड़ा भी बेहतर है, थोड़ा भी बेहतर स्थिति में है, तो आपको जीवन में अच्छे मित्र अवश्य मिलेंगे जो आपका साथ निभाएंगे। अगर कुंडली का 11वां भाव अच्छा है, 11वां भाव अच्छा है, तो भी आपको जीवन में अच्छे मित्र मिलेंगे। अगर कुंडली का 7वां भाव अच्छा है, 7वां भाव अच्छा है, तो आपको कलीग, आपके साथ काम करने वाले, आपके सहयोगी अच्छे मिलेंगे। अगर कुंडली में बृहस्पति मजबूत हो, तो एक ही सही, लेकिन जीवन में अच्छा मित्र जरूर मिलता है। अगर कुंडली में शुक्र बहुत अच्छा हो, तो हो सकता है आपके बहुत सारे मित्र ना हों, लेकिन ऐसे लोगों के बहुत सारे जानने वाले होते हैं, ऐसे लोगों के जानने वाले काफी होते हैं, ऐसे लोगों की प्रसिद्धि, पॉपुलैरिटी काफी होती है।
1: चलिए आगे बढ़ते हुए बारी आ जाती है राशिफल पर वापस आने की। तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों के भाग्यफल में आज क्या लिखा है, पंडित जी आपको विस्तार से बताएंगे।
0: तुला राशि, आर्थिक मजबूती आती दिख रही है, सेहत आपकी अच्छी रहेगी, काम का दबाव कम होगा, शिव जी को जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, लाभकारी यात्रा के योग हैं, रुका हुआ धन प्राप्त होगा, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ

0: नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, करियर में लापरवाही ना करें, रिश्तों को ठीक करने का प्रयास करें, दूध का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा।
1: पंडित जी, अच्छे मित्र ना मिलना, अच्छे मित्र मिलना, ये तो आपने बता दिया, लेकिन कई बार लोग बैठ के सोचते हैं कि अच्छे मित्र मिल क्यों नहीं पा रहे हैं। तो अगर आप अच्छे मित्र जीवन में चाहते हैं तो कैसे और क्या कुछ उपाय करने चाहिए, उसके बारे में आपसे जानना चाहेंगे।
0: अगर आप अपने जीवन में अच्छे मित्र पाना चाहते हैं तो क्या करेंगे, अपने विचारों को पॉजिटिव रखिए, अपने विचारों को सकारात्मक रखिए, शुद्ध और शुभ रखिए। दोस्ती करने में बहुत ज्यादा कैलकुलेशन मत करिए, कितना फायदा, कितना नुकसान, कितना लाभ, ये सब देख करके, जोड़ घटा करके दोस्ती नहीं होती है। रोज सवेरे सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए, सादा पानी, प्लेन वाटर, और दुनिया के सर्वश्रेष्ठ मित्र हैं श्री कृष्ण, तो नियमित रूप से भगवान कृष्ण की उपासना करिए और उनसे प्रार्थना करिए कि आपको जीवन में एक अच्छा मित्र जरूर मिले। भगवान कृष्ण की निरंतर पूजा करने से और निरंतर प्रार्थना करने से आपको जीवन में अच्छे मित्र की प्राप्ति होगी।
1: चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और मकर, कुंभ और मीन राशि वालों के भाग्यफल में आज क्या लिखा है वो भी आपको बता देते हैं।
0: मकर राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, संतान पक्ष से सुख मिलेगा, विवाह तय हो सकता है, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, करियर की समस्या हल होगी, परिवार की स्थितियां ठीक रहेंगी, संपत्ति लाभ के योग बन रहे हैं, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, प्रेम संबंधों में सफलता मिलेगी, कोई अच्छी सूचना मिलेगी, वाहन सावधानी से चलाएं, शिव जी को जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
1: चलिए आगे बढ़ते हुए अब बारी आ जाती है आपके सवालों के ऊपर आने की और दर्शकों के सवालों को एक बार फिर से शामिल कर लेते हैं। तीसरा प्रश्न इस शो में कौन से दर्शक ने भेजा है, पंडित जी आपसे जानेंगे।
0: जी अगला प्रश्न नंदिनी शुक्ला ने हमें लिखा है और नंदिनी हमें लखनऊ से मेल लिख रही हैं। इनकी जन्म की तारीख है 18 नवंबर 1979, जन्म का समय दोपहर के 12:55, जन्म स्थान है कानपुर। नंदिनी कह रही हैं कि वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम लंबे समय से बनी हुई है और तमाम प्रयास के बावजूद इस उम्र तक आकर के भी समस्या में सुधार नहीं हो रहा है, तो क्या मेरा वैवाहिक जीवन ऐसा ही चलेगा या कुछ बेटरमेंट होगा? नंदिनी सबसे पहले आप अपने क्रोध और वाणी पर काबू करिए। केवल आपके पति की गलती ही नहीं है, आपको भी अपने क्रोध और स्वभाव का थोड़ा ध्यान रखना होगा। और जहाँ तक वैवाहिक जीवन का प्रश्न है, देखिए वो एवरेज ही रहेगा, एक्सीलेंट होने की उम्मीद नहीं है, लेकिन जितना निगेटिव अभी है आने वाले समय में उतना निगेटिव नहीं रहेगा। एक पीला पुखराज बनवा के पहनिए, 6-7 रत्ती का पीला पुखराज, सोने या पीतल की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, बृहस्पतिवार को प्रातः पुखराज पहने और रोज सुबह एक बार विष्णु सहस्त्र नाम का अगर आप पाठ करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा।
1: चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और इस शो में दर्शकों का अंतिम सवाल, कौन से दर्शक का आज है, कौन सा है वो लकी दर्शक, पंडित जी से जान लेते हैं।
0: जी

0: प्रश्न अजय प्रताप जी ने हमें लिखा है। अजय प्रताप जी देवरिया से हमें मेल लिख रहे हैं। इनकी जन्म की तारीख है 9 जून 1982। जन्म का समय अर्ली मॉर्निंग 2:05। जन्म स्थान है देवरिया। ये कह रहे हैं कि प्रॉपर्टी को लेके एक मुकदमा परिवार में चल रहा है, उसका समाधान कब तक होगा, क्या वो हमारे पक्ष में आ सकेगा? अजय जी, जो मुकदमा है आपका वो परिवार के लोगों के बीच में ही है, उसमें जीत हार का प्रश्न मुझे नहीं लगता है। मुझे लगता है कि 2027 के शुरुआती समय में आपसी तालमेल से, आपसी सुलह समझौते से इस मुकदमे का निपटारा होगा और आपका जो अधिकार है वो आपको प्राप्त हो जाएगा। सुबह शाम दोनों समय एक एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करिए और मंगलवार को निर्धनों को गुड़ या हलवा पूड़ी का दान करिए, काफी अच्छा होगा। एक प्रश्न और बड़ा महत्वपूर्ण है, वो ले लेते हैं। रेणु जी ने हमें ये प्रश्न लिखा है और रेणु जी हमें मेल लिखती हैं बेंगलोर से। अपनी माता के बारे में जानना चाहती हैं। इनके माता की जन्म की तारीख है 18 सितंबर 1955। दोपहर में 3:05। जन्म स्थान है भबुआ, बिहार। ये कह रही हैं कि मेरी माता जी का स्वास्थ्य काफी लंबे समय से खराब चल रहा है, तो मैं क्या उपाय करूं जिससे मेरी माता जी का स्वास्थ्य बेहतर हो जाए? रेणु जी, आपकी माता जी की कुंडली के हिसाब से अभी मई 2027 तक उनका समय बहुत ही नकारात्मक है, इसलिए मई 2027 तक उनका बहुत ध्यान देना है, सेहत में गंभीर समस्याएं आ सकती हैं। मई 2027 के बाद चीजें बेहतर होने की संभावना बन सकती है। आप अपनी माता जी के लिए रोज सुबह शाम एक एक बार नारायण कवच का पाठ करिए और हर शनिवार को निर्धनों में खाने पीने की चीज का दान करिए। ध्यान रखिए, कोशिश करिए कि आपकी माता जी काले रंग के वस्त्र धारण ना करें, वरना उससे स्वास्थ्य उनका और ज्यादा बिगड़ सकता है।
1: चलिए एक और प्रश्न आज के टॉपिक से जुड़ा हुआ पंडित जी आपसे पूछना चाहूंगी। पंडित जी, दोस्तियां तो चलो हम सबके जीवन में होती हैं, लेकिन ये बताइए राशि अनुसार कौन सी राशियां सबसे मजबूत राशियां मानी जाएं, जिनकी दोस्तियां भी बहुत मजबूत और गहरी होती हैं?
0: जी देखिए, हर राशि की दोस्ती कैसी है कैसी नहीं है वो कुंडली के बहुत सारे ग्रहों पे निर्भर करता है, इसीलिए आप ये नहीं कह सकते कि ये राशि बहुत अच्छा है ये बहुत बुरा है। आम तौर पर सबके अलग अलग ग्रहों का प्रभाव उनकी मित्रता पर पड़ता है, लेकिन दो राशियां ऐसी हैं जो जब दोस्ती करती हैं तो अपनी तरफ से अंतिम समय तक निभाने का पूरा प्रयास करती हैं और बहुत अच्छे मित्र इन राशियों के लोग सिद्ध होते हैं। पहली राशि है वृषभ राशि, टॉरस, और दूसरी राशि है सिंह राशि यानी लियो। जब इन राशि के लोग मित्रता करते हैं जीवन में, तो जब तक दूसरा इनको ना छोड़ दे अपनी तरफ से अंतिम समय तक मित्रता निभाते रहते हैं।
1: चलिए पंडित जी से जान लेते हैं जिन तमाम लोगों का जन्मदिन है 5 अक्टूबर को, उनका हैप्पी बर्थडे, उनके लिए क्या कुछ लेकर आया है।
0: जिन लोगों का जन्मदिन 5 अक्टूबर को है उन्हें हम सब की तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में धन की स्थिति उत्तम रहेगी, करियर की समस्याओं से छुटकारा मिलेगा, विवाह के मामलों में हालांकि विलंब होगा और साल के अंत में अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखें। क्या करेंगे? पूरे साल भर भगवान गणेश की उपासना करें तो आपके लिए बेहतर होगा।
1: चलिए आगे बढ़ते हुए पंडित जी से ही जान लेते हैं आज के शो की जिज्ञासा के बारे में।
0: आज की जिज्ञासा है कि क्या सोमवार के दिन नौकरी की शुरुआत नहीं करनी चाहिए? देखिए, सोमवार के दिन वो काम करिए जिसमें स्पीड चाहिए और जो जल्दी खत्म हो जाए, निरंतर चलता रहे। गाड़ी खरीदना, यात्रा करना सोमवार को अच्छा है, तुरंत तुरंत होगा, तुरंत खत्म होगा। लेकिन सोमवार को अगर नौकरी की शुरुआत करेंगे तो नौकरी जल्दी जल्दी बदलेगी, जो अच्छा नहीं होगा।
1: चलिए, जैसे कि हर शो में पंडित जी आपको बताते हैं शुभ पहर के बारे में, तो 5 अक्टूबर 2026 सोमवार का शुभ पहर क्या है वो पंडित जी से जान लेते हैं।
0: दिनांक 5 अक्टूबर 2026 दिन सोमवार, शुभ पहर का समय है रात को 10:30 से 12 बजे तक। इस समय में शिव जी की कपूर से आरती करिएगा। विवाह होने में अगर बाधा आ रही है तो वो बाधा दूर हो जाएगी, लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही। 5 अक्टूबर सोमवार रात को 10:30 से 12 बजे के बीच में।
1: चलिए, जैसा कि आपको ज्ञात है कि पंडित जी शो के अंत की तरफ बढ़ते हुए आपको बताते हैं गुडलक राशि के बारे में, तो गुडलक राशि कौन सी है वो भी पंडित जी से जानते हैं।
0: हम आपको बता रहे हैं अलग अलग राशि के लोगों की शिक्षा के बारे में। आज की गुडलक राशि है वृषभ। इनकी शिक्षा धीरे धीरे स्थिरता से चलती रहती है। अच्छी शिक्षा के लिए इनको श्री हरि भगवान विष्णु की उपासना करनी चाहिए।
1: चलिए, तमाम उपाय, तमाम सवालों के जवाब पंडित जी ने इस शो से जुड़े हुए आप तक पहुंचा दिए हैं। बारी आती है खास उपाय के बारे में जान लेने की, जिसके बारे में हम बताते हैं आपको हर रोज इस शो में। तो आज का महा उपाय पंडित जी क्या है वो आपसे जानेंगे।
0: जी, आज के महा उपाय में आपको बताते हैं कि अगर याददाश्त को अच्छा करना है तो क्या करेंगे। रोज सवेरे सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए, सुबह तुलसी के 2 पत्तों का सेवन करिए और भोजन करते समय अपना चेहरा उत्तर दिशा की तरफ रखिए, आपकी मेमोरी में, आपके याददाश्त में सुधार होगा।
1: तो चलिए, इस महा उपाय के लिए पंडित जी और तमाम जानकारियां साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
0: धन्यवाद।
1: और चलिए, इसी के साथ आज के इस खास एपिसोड में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अच्छी खबरें जारी हैं, आप देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे। नमस्कार।
0: नमस्कार।

0: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: गुड न्यूज़ टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
2: एशियन गेम्स में कामयाबी के रंग बिखेर कर घर लौटे रहे खिलाड़ियों का फैंस दिल खोल कर जबरदस्त स्वागत कर रहे हैं। जोरदार स्वागत से ये चैंपियंस भी बहुत उत्साहित हैं। इन्हें भरोसा है कि आगे भी ये शानदार प्रदर्शन यूं ही जारी रहेगा, फैंस को जश्न मनाने के मौके मिलते रहेंगे।

0: ये महज जश्न नहीं, कामयाबी का वो उत्सव है जिसे भारतीय महिला हॉकी की स्टार्स हमेशा यादों में सजो कर रखेंगी। जैसे ही रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर भारतीय महिला हॉकी टीम के कप्तान सलीमा टेटे साथ ही खिलाड़ियों निकी प्रधान दीपिका सोरेन के साथ पहुंची, ढोल नगाड़ों और फूल मालाओं के साथ इन चैंपियंस का लोगों ने स्वागत किया। हॉकी स्टिक्स लेकर फैंस ने जमकर डांस किया, साथ ही लोक संस्कृति के रंग भी हर ओर बिखरे दिखे। एशियन गेम्स में फाइनल में चीन को हराकर महिला हॉकी टीम ने गोल्ड के लिए 44 साल का इंतजार खत्म किया, लिहाजा इन चैंपियंस का जोरदार स्वागत तो बनता ही है। सोने पे सुहागा ये कि महिला हॉकी टीम ने सिर्फ गोल्ड ही नहीं जीता, 2028 ओलंपिक गेम्स के लिए भी क्वालिफाई कर लिया है। अब इसी सुनहरी कामयाबी को ओलंपिक में भी दोहराने का इरादा है।
1: काफी अच्छा लग रहा है क्योंकि जब क्वालिफाई नहीं होता है तो फिर उस टूर्नामेंट के बाद फिर यही रहता है कि हमें क्वालिफाई करना है। तो अभी एक साइड से हम टेंशन फ्री हो चुके हैं, तो अभी हम ओलंपिक के लिए तैयारी कर सकते, जो टाइम मिला हम उसमें ओलंपिक का तैयारी करेंगे। जैसे आप लोग देख ही रहे, अभी जैसे हम लोग बैक टू बैक वर्ल्ड कप क्वालिफाई खेला, उसके बाद नेशन कप खेले, वर्ल्ड कप खेले और अभी एशियन गेम खेले, और बैक टू बैक हमारी टीम काफी अच्छा इम्प्रूव कर रही है, तो हम कोशिश करेंगे कि ओलंपिक में हम भी पोडियम फिनिश करें।
0: जाहिर है ये स्वागत अभिनंदन का पल इन खिलाड़ियों के लिए ही नहीं, इनके परिवार वालों के लिए भी यादगार लम्हा बनकर आया है।
2: बिल्कुल बड़ी जीत है, 44 साल बाद आई है, जीत के तो बहुत खुशी लग रहा है और अच्छा लग रहा है। इतना लोग स्वागत करने के लिए आए हैं, इतना प्लेयर लोग आए हैं, इतना हॉकी के जितने भी खिलाड़ी और जितने भी क्या बोलेंगे दर्शकगण, सभी को अच्छा लग रहा है देख के। लोग को इतना अच्छा से स्वागत हो रहा है तो बहुत अच्छा लग रहा है।
0: वही बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भी हॉकी खिलाड़ियों का जबरदस्त स्वागत हुआ। फैंस का ये जोश और उत्साह देख कर हॉकी स्टार्स भी काफी खुश नजर आईं।
3: डेफिनेटली बहुत अच्छा फील हो रहा है क्योंकि हमारी बहुत साल की मेहनत है और जाने से पहले हमारा यही टारगेट था कि हमें एलए के लिए क्वालिफाई करना है, तो डेफिनेटली बहुत अच्छा लग रहा है।
0: एशियन गेम्स में बॉक्सिंग में गोल्डन पंच जड़कर लौटे चैंपियंस का भी फैंस ने दिल खोल कर स्वागत किया। गोल्डन गर्ल लवलीना और परवीन का स्वागत करने के लिए यहां बड़ी संख्या में फैंस जुटे। लवलीना बोरगोहिन एशियन गेम्स में अपना मेडल का रंग बदलकर काफी उत्साहित हैं। उन्हें भरोसा है आगे भी उनका शानदार प्रदर्शन जारी रहेगा।
4: हर एथलीट का सपना रहता है कि बड़े कंपटीशन में जाए, वहां गोल्ड मेडल लाए। एशियन गेम्स इतना बड़ा कॉम्पिटिशन है और ऊपर से मेरे लिए बहुत ज्यादा स्पेशल था क्योंकि मेरा बर्थडे था, और इसीलिए भी स्पेशल है कि मेरा सेकंड एशियन गेम्स है और लास्ट टाइम मेरा सिल्वर था, तो मेरा माइंड में पूरा था कि मुझे इस बार कलर चेंज करना था, तो इस वजह से भी बहुत ज्यादा स्पेशल।
0: दिल्ली एयरपोर्ट पर भी स्क्वैश टीम का जोरदार स्वागत हुआ। अनाहत सिंह, तन्वी खन्ना, जोशना चिनप्पा और शमीना रियाज ने कहा कि एशियन गेम्स में मेडल जीतकर वो काफी खुश हैं। इन खिलाड़ियों के चेहरों पर कामयाबी की खुशी साफ नजर आई। वहीं महाराष्ट्र के अमरावती में एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीतने वाले कुमकुम मोहोड़ के घर जबरदस्त जश्न मनाया गया, आतिशबाजी की गई।

0: 17 साल की कुमकुम मोहोड़ ने तीरंदाजी में कामयाबी का इतिहास रचते हुए महिला व्यक्तिगत रिकर्व स्पर्धा में गोल्ड जीता। जाहिर है पूरे परिवार के लिए ये गर्व का पल है और कुमकुम का परिवार इस वक्त खुशियों से सराबोर है।
1: मुझे बहुत खुशी हो रही है कि वो इस मुकाम पर पहुंच गई है एशियन गेम में और अपने लिए 3 मेडल उसने सिक्योर कर लिए।
2: आगे ओलंपिक 2028, बस वही उसका सपना है, वहां तक पहुंचना ही उसको।
0: जापान में धूम मचाकर एशियन गेम्स में देश का मान बढ़ाकर लौट रहे खिलाड़ियों के स्वागत अभिनंदन का दौर अभी लंबा चलेगा। इन खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाकर फैंस भी भारतीय खेलों को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभा रहे हैं, क्योंकि आगे चुनौती बड़ी है। एशियन गेम्स में चमके सितारे अब नई ऊर्जा नई प्रेरणा के साथ ओलंपिक की तैयारियों में भी जुटने वाले हैं। महाराष्ट्र के अमरावती से धनंजय साबले के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: दुनिया में कैप्टन स्मिथ मच्छार के हौसले और जज्बे की तारीफ हो रही है। इस बीच इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कैप्टन स्मिथ मच्छार से बातचीत की, उनका हालचाल जाना और इसराइल के स्वतंत्रता दिवस समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उन्हें विशेष अतिथि के तौर पर इन्वाइट भी किया है।
0: भारत के लाल कैप्टन स्मिथ मच्छार के बेजोड़ हौसले और जज्बे को दुनिया कैसे सलाम कर रही है, ये इससे जुड़ी सबसे ताजा तस्वीर है। इस तस्वीर को केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने सोशल मीडिया पर शेयर किया है। ये तस्वीर बयां कर रही है कि कैसे भारत के कैप्टन स्मिथ मच्छार ने अपनी हिम्मत और जज्बे से इसराइल का दिल जीत लिया। यहाँ बड़े स्क्रीन पर कैप्टन स्मिथ मच्छार की तस्वीर है, देखिए कैसे लोग उनका सम्मान कर रहे हैं, उनके जज्बे को सलाम कर रहे हैं। दरअसल कैप्टन स्मिथ मच्छार ने जिन 174 पैसेंजर्स की जान बचाई उनमें 166 यात्री इसराइल के थे। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो स्मिथ मच्छार ने सिर्फ 174 लोगों की जान ही नहीं बचाई, 9/11 जैसे आतंकी हमले की कोशिश को भी उन्होंने नाकाम किया। इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने स्मिथ से फोन पर बातचीत की, उनका हालचाल जाना और उन्हें भारत, इसराइल और पूरी दुनिया का हीरो बताया। साथ ही बेंजामिन नेतन्याहू ने भारत के इस लाल को इसराइल के स्वतंत्रता दिवस पर विशेष अतिथि के तौर पर भी आमंत्रित किया। नेतन्याहू ने स्मिथ से कहा, कैप्टन मैं आपको और अपने प्यारे दोस्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हमारे अगले स्वतंत्रता दिवस पर एक खास जश्न की मशाल जलाने के लिए आमंत्रित करना चाहता हूं। आप भारत और इसराइल के बहादुर लोगों के सच्चे हीरो हैं और पूरी दुनिया के भी हीरो हैं। मैं आपके जल्द ठीक होने की कामना करता हूं।
4: And again, I want to have Captain Smith and Prime Minister Modi, our great friends. I really would like them to bear a celebratory flame. It's our highest honor that we give in our Independence Day. It's usually reserved for Israeli citizens, but I think here in this case, all the citizens of Israel will embrace you. They do now and they will then too. So we hope to see you very soon in Israel.
0: स्मिथ से बातचीत के दौरान बेंजामिन नेतन्याहू ने उनसे घटना की पूरी जानकारी ली। इस दौरान नेतन्याहू ने स्मिथ मचार के हौसले की भी जमकर तारीफ की।
4: Well, I frankly I'm amazed at your courage, at your coolness of judgment under impossible conditions.
0: इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कैप्टन स्मिथ मचार से कहा, पूरी दुनिया में आपकी तारीफ हो रही है, आप इसराइल के हीरो हैं, आप भारत के हीरो हैं, आप पूरी दुनिया के हीरो हैं। मैं आपको बता सकता हूं कि यहां लोग खुले दिल से आपका स्वागत करेंगे। अपने समझबूझ, अदम्य साहस और जज्बे से 174 लोगों की जान बचाने वाले भारत के इस लाल को आज पूरी दुनिया सलाम कर रही है। भारतीय मूल के पायलट कैप्टन स्मिथ मच्छार ने 30 सितंबर को दुबई से इसराइल जा रही फ्लाइट को अपनी जान जोखिम में डालकर क्रैश होने से बचाया। गंभीर रूप से जख्मी होने के बावजूद कैप्टन स्मिथ मच्छार ने आतंकी कोपायलट को काबू में किया और 174 लोगों की जिंदगी बचाई। कैप्टन मच्छार के इस हौसले की पूरी दुनिया में तारीफ हो रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप तक ने स्मिथ मछार को पूरी दुनिया का हीरो बताया है। आज महज इसराइल ही नहीं भारत समेत पूरी दुनिया में स्मिथ के जल्द ठीक होने की प्रार्थना की जा रही है, और जहां तक विश्व शांति की बात है तो भारत का ये लाल पूरी दुनिया के लिए असल जिंदगी का सुपर हीरो बनकर उभरा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: देश से मॉनसून की वापसी के साथ ही मौसम खुशनुमा हो गया है। पहाड़ों के सुहाने मौसम का आनंद लेने के लिए बड़ी संख्या में सैलानी हिल स्टेशंस का रुख कर रहे हैं। स्थानीय कारोबारी भी सीजन से पहले पर्यटकों के पहुंचने से खुश नजर आ रहे हैं। ये नहीं आपको बता दें, केदारनाथ धाम और गंगोत्री धाम में भी श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। आस्था पथ पर श्रद्धालु कतार में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं।
5: पहाड़ों पर मौसम बदला, धूप निकली और आस्था की बयार बहर निकली। तस्वीरें केदारनाथ धाम की हैं, जहां पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी है। बाबा केदार के दर्शन के लिए भक्तों की लंबी कतार लगी हुई है। श्रद्धालुओं का उत्साह और आस्था बरकरार है। पुलिस और प्रशासन के सहयोग से श्रद्धालुओं को दर्शन का सौभाग्य बारी आने पर मिल रहा है।
6: श्री केदारनाथ धाम में लगातार श्रद्धालुओं का आवागमन हो रहा है। लगभग 3 से 4 दिन का जो वीकेंड है, इसमें काफी संख्या में श्रद्धालु श्री केदारनाथ धाम में पहुंच रहे हैं। और निरंतर, जैसे कि आप सब लोग देख रहे होंगे कि श्रद्धालुओं की जो संख्या है, निरंतर इनमें बढ़ोतरी हो रही है। और विशेष रूप से मंदिर समिति द्वारा स्थानीय तीर्थ पुरोहितों, केदार सभा के साथ आपसी समन्वय के साथ साथ साथ ही पुलिस प्रशासन के द्वारा लगातार श्रद्धालुओं को सुगमता से दर्शन करवाए जा रहे हैं।
5: दूर दूर से श्रद्धालु बाबा केदार के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं, जिसकी वजह से पूरा केदारनाथ धाम भक्तों से भरा हुआ है। जिधर देखो उधर श्रद्धा और भक्ति का अनोखा संगम देखने को मिल रहा है। पिछले दिनों हुई बर्फबारी से केदारनाथ के आसपास के पहाड़ अभी सफेद दिख रहे हैं। उस पर से चटकीली धूप यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता बढ़ा रही है, जिससे श्रद्धालुओं को दो तरह की सौगात महसूस करने का मौका मिल रहा है। गंगोत्री धाम और हर्षिल वैली में भी पर्यटकों और तीर्थयात्रियों की भारी भीड़ उमड़ रही है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु और पर्यटक हर्षिल और गंगोत्री घाट का रुख कर रहे हैं। पर्यटकों की बढ़ती आमद का असर होटल, होमस्टे और रेस्टोरेंट कारोबार पर भी दिखाई दे रहा है। अधिकांश पर्यटकों से भरे हुए हैं। धर्मशाला और आसपास के टूरिस्ट प्लेसेस पर पर्यटकों की भीड़ देखने को मिल रही है, जिससे पर्यटन से जुड़े कारोबार ने रफ्तार पकड़ ली है। विश्व प्रसिद्ध त्रियुंड ट्रैक पर सैलानियों की भीड़ देखी जा रही है। बड़ी संख्या में सैलानी मैक्लोडगंज भी पहुंच रहे हैं और खूबसूरत वादियों का दीदार कर रहे हैं। लंबे वीकेंड का फायदा होटल, होमस्टे, रेस्टोरेंट और पर्यटन से जुड़े कारोबारियों को मिल रहा है। हालांकि अभी सीजन नहीं है, लेकिन उससे पहले ही टूरिस्ट प्लेस गुलजार हो गए हैं।
7: ऑलमोस्ट कोई 50-50% जो बुकिंग है वो पूरे एरिया के अंदर हम उम्मीद करते हैं होगी। वो अगला हफ्ता भी यही सिलसिला चलेगा। जब मैंने पहले बोला कि हम इसी दिवाली सीजन बोलते हैं, तो जब भी हम दशहरा मनाते हैं, दिवाली मनाते हैं, या फिर बंगाल का बहुत बड़ा टूरिस्ट वो दशहरा मनाकर हिमाचल का रुख करता है, दिवाली शायद हम लोगों के साथ ही मनाता है। स्कूल कॉलेजों की स्टडी टूर हम पिछले 1-2 दिन से देख रहे हैं कि काफी तादाद के अंदर धर्मशाला में पहुंच रहे हैं।
5: बारिश और बर्फबारी का दौर खत्म हो चुका है और ठंडी धूप का आगमन हो चुका है, जिसके चलते सैलानी पर्यटन स्थलों की ओर रुख कर रहे हैं। इसलिए ट्रैफिक पुलिस और पुलिस भी व्यवस्था बनाए रखने के लिए सड़क पर मुस्तैद हो गई है। रुद्रप्रयाग से प्रवीण सिंहवाल, उत्तरकाशी से ओमकार बहुगुणा और धर्मशाला से पूजा शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: बात करते हैं फिल्म दृश्यम 3 की। दृश्यम 3 बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड बना रही है। अजय देवगन की फिल्म ने महज 2 दिनों में 100 करोड़ के क्लब में एंट्री कर ली है। पहले दिन की बम्पर कमाई के बाद दूसरे दिन भी फिल्म ने मजबूत पकड़ बनाए रखी। अब नजर जो है रविवार के कलेक्शन पर रहेगी। अगर पहले 2 दिन का ट्रेंड जारी रहा तो फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कमाई के नए रिकॉर्ड बना लेगी।
8: जिस कहानी ने पिछले 11 साल से दर्शकों को अपनी सीट से बांध कर रखा, अब उसका फाइनल चैप्टर भी बॉक्स ऑफिस पर छा गया है। अजय देवगन के दृश्यम 3 ने रिलीज होते ही कमाई के कई रिकॉर्ड्स अपने नाम कर लिए हैं। फिल्म को पहले ही दिन जबरदस्त ओपनिंग मिली। सेक निल्स के मुताबिक दृश्यम 3 ने पहले दिन भारत में 62 करोड़ रुपए का नेट कलेक्शन किया। वही फिल्म की वर्ल्ड वाइड कमाई करीब 95 करोड़ रुपए रही। इस फिल्म में एक ऐसे पिता की कहानी है जो अपने परिवार को बचाने के लिए पुलिस से लेकर बड़े बड़े अफसरों तक को चकमा दे देता है। और अब विजय सलगांवकर की कहानी अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंच गई है, जिसे पहले दिन गांधी जयंती की छुट्टी होने का पूरा फायदा मिला, लेकिन फिल्म की कमाई की असली तस्वीर दूसरे दिन सामने आई। दूसरे दिन भी दृश्यम 3 ने बॉक्स ऑफिस पर अपनी पकड़ बनाए रखी। रात 10:30 बजे तक फिल्म ने करीब 53.50 करोड़ रुपए का नेट कलेक्शन कर लिया था। यानी सिर्फ 2 दिन में भारत में फिल्म की कुल नेट कमाई पहुंच गई 115.50 करोड़ रुपए। वही वर्ल्ड वाइड कमाई का आंकड़ा करीब 177.10 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। यानी फिल्म अब 200 करोड़ के आंकड़े से ज्यादा दूर नहीं है। खास बात यह है कि दृश्यम 3 ने सिर्फ 2 दिनों में ही 100 करोड़ क्लब में एंट्री कर ली है। 2 दिन की कमाई के मामले में फिल्म ने कई बड़ी फिल्मों को पीछे छोड़ दिया है। हिंदी फिल्मों की 2 दिन की कमाई की लिस्ट में धुरंधर द रिवेंज तकरीबन 226 करोड़ रुपए की कमाई के साथ सबसे ऊपर है। इसके बाद 127.20 करोड़ के साथ पुष्पा 2 का नंबर आता है और अब 115.50 करोड़ रुपए के साथ दृश्यम 3 तीसरे नंबर पर पहुंच गई है। इसके बाद शाहरुख खान की जवान है, जिसने 2 दिन में 111.73 करोड़ रुपए कमाए थे। हालांकि अब एक थोड़ी हैरान करने वाली बात रही है, पहले दिन के मुकाबले दूसरे दिन फिल्म की कमाई में कुछ कमी आई, लेकिन इसके बावजूद फिल्म ने मजबूत पकड़ बना रखी है। अब रविवार का दिन बेहद अहम है। अगर डे 3 को भी पर कलेक्शन 50 करोड़ से ज्यादा रहा तो दृश्यम 3 की रफ्तार और तेज हो सकती है और उम्मीद की जा रही है कि विजय सलगांवकर की ये आखिरी कहानी अजय देवगन के करियर की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म बन सकती है। फिलहाल इतना तय है, दृश्यम 3 का तूफान बॉक्स ऑफिस पर थमने का नाम नहीं ले रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट Today.
3: बात करते हैं सलमान खान की लंबे समय से रिलीज की मंजूरी के लिए अटकी फिल्म की। सलमान की वॉर फिल्म मातृभूमि को आखिरकार हरी झंडी मिल चुकी है। अब CBFC की तरफ से मंजूरी मिलने का इंतजार है। उम्मीद की जा रही है कि इसी साल ये फिल्म पर्दे पर दस्तक देगी।
9: जवानों याद रहे, जख्म लगे तो मेडल समझना और मौत दिखे तो सलाम करना और कहना बिरसा मुंडा की, बजरंग बली की, भारत माता की।
8: सुपरस्टार सलमान खान की अपकमिंग फिल्म की शुरुआत और ऐलान बैटल ऑफ कलवान के तौर पर हुई थी, लेकिन कुछ दिक्कतों की वजह से इसी साल की शुरुआत में इसका नाम बदलकर मातृभूमि कर दिया गया। इस फिल्म की कहानी भारत और चीन के बीच 2020 में हुए टकराव पर बेस्ड है। इसलिए रक्षा मंत्रालय को फिल्म में चीन से जुड़े कुछ सीन से आपत्तियां थी, क्योंकि हाल में दोनों देशों के रिश्तों में सुधार देखा जा रहा है। इसी वजह से फिल्म के रिलीज में देरी हो रही थी, लेकिन अब फिल्म को सरकार की तरफ से हरी झंडी मिल चुकी है और फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए पूरी तरह से तैयार है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सूचना और प्रसारण मंत्रालय को मेकर्स ने मातृभूमि का जो नया वर्जन पेश किया है उससे मंत्रालय को कोई आपत्ति नहीं है। इसके चलते इस वॉर ड्रामा फिल्म के लिए NOC दे दी गई है। NOC मिलने के बाद अब ये फिल्म इस साल के आखिरी में सिनेमाघरों में दस्तक दे सकती है। हालांकि इसकी ऑफिशियल डेट अभी तक सामने नहीं आई है। सूत्रों के मुताबिक सलमान खान 13 नवम्बर पर नजर बनाए हुए हैं। उनका ये मानना है कि दिवाली के बाद का समय जब सब फेस्टिव मूड में होंगे तब इस फिल्म को रिलीज करना ठीक होगा। हालांकि सेंसर की प्रक्रिया अभी भी पूरी नहीं हुई है। मेकर्स जल्द ही फिल्म को सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन के पास जमा करेंगे। अगर इस फिल्म को CBFC की तरफ से मंजूरी मिल जाती है और ये प्रोसेस इसी महीने पूरी हो जाती है तो सलमान और उनकी टीम मातृभूमि को इसी साल 13 नवम्बर को बड़े पर्दे पर रिलीज कर सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक आपत्तियों के बाद मातृभूमि को ओरिजिनल वर्जन की तुलना में काफी बदल दिया गया। अब इस फिल्म में भारत और चीन के रिश्तों को सकारात्मक नजरिए से दिखाया जाएगा। अब देखना दिलचस्प होगा कि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कामयाबी की झंडी गाड़ पाएगी। बदलाव के बाद रिलीज होने जा रही मातृभूमि दर्शकों के बीच वही असर छोड़ पाएगी जो मेकर्स ने सोच कर फिल्म बनाई थी। फिल्म में सलमान खान मुख्य भूमिका में नजर आएंगे। उनके अलावा मातृभूमि में चित्रगंधा सिंह, अंकुर भाटिया, अभिलाष चौधरी और जैन शॉ समेत कई कलाकार नजर आने वाले हैं। इस फिल्म का निर्देशन अपूर्व लाखिया ने किया है। मातृभूमि की रिलीज डेट को लेकर कयासों का बाजार गर्म होने लगा है। अलग अलग तरह की संभावना जताई जा रही है। उम्मीद की जा रही है कि 10 दिनों में फिल्म के रिलीज को लेकर स्थिति पूरी तरह से साफ हो जाएगी। रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
10: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें।
11: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
12: और दुर्भाग्य कहता है
13: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
14: अविश्वास में विश्वास बसता है,
15: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
16: गुड न्यूज टुडे।
17: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।

नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्वेता झा। आप देख रहे हैं अपना सबसे पसंदीदा और दमदार शो बंदे में है दम। एक बार फिर मैं हाजिर हूं दमदार शख्सियत का एक बेमिसाल सफरनामा लेकर। इस बार जिस शख्सियत का बेनजीर सफरनामा लेकर हम हाजिर हुए हैं, उसने 34,000 फीट की ऊंचाई पर साहस और पराक्रम का ऐसा अफसाना लिख दिया कि पूरी दुनिया उसके सजदे में आ गई है।

आप समझ ही गए होंगे कि इस बार की दमदार शख्सियत कोई और नहीं बल्कि फ्लाई दुबई के विमान में एक सनकी को पायलट के खौफनाक मंसूबों को नाकाम कर 174 बेगुनाह यात्रियों के प्राणों की रक्षा करने वाले कैप्टन स्मिथ मछार हैं। जी हाँ, हिंदुस्तान का ऐसा सपूत जिसकी वीरता का यशोगान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू समेत दुनिया भर के लोग कर रहे हैं। दरअसल कैप्टन स्मिथ ने अपने साहस, पराक्रम और सूझबूझ से विमान में सवार 174 मासूम लोगों को दर्दनाक मौत से बचा लिया। 34,000 फीट की ऊंचाई पर बुरी तरह जख्मी होने के बाद अगर ये जाबाज सरेंडर कर देता तो विमान का क्रैश होना तय था। वीरता के 120 सेकंड्स की ये दास्तान आपके रोंगटे खड़े कर देगी।

0: साहस, शौर्य और धैर्य की कसौटी है आपात स्थिति। बेहद कठिन और नाजुक वक्त में जो इंसान अपने साहस और सूझबूझ से लोगों को मुसीबत से उबार लेता है, वही रियल हीरो कहलाता है। ऐसा ही एक बिंदास हीरो है हिंदुस्तान का लाल कैप्टन स्मिथ मुच्छार। सामने खड़ी मौत को देखकर भी जिसका साहस और हौसला एक पल के लिए भी पस्त नहीं हुआ। 34,000 फीट की ऊंचाई पर पैदा हुई विकट परिस्थिति में अगर ये हिंदुस्तानी हिम्मत हार जाता तो 27 बच्चों समेत 174 बेगुनाह यात्री अपनी जान से हाथ धो चुके होते। कैप्टन स्मिथ मुच्छार का ये पराक्रम मिड ईयर टेरर कॉन्स्पिरेसी को नाकाम करने वाले हीरोइक हिस्ट्री के बोल्ड चैप्टर के रूप में हमेशा के लिए दर्ज हो चुका है। कैप्टन स्मिथ के साहसिक और ऐतिहासिक पराक्रम से 140 करोड़ हिंदुस्तानियों का सीना गर्व से चौड़ा हो गया है।
1: भारत के कैप्टन स्मिथ ने जिस प्रकार से धैर्य, सूझबूझ और साहस का परिचय करवाया, और जैसे आज इजराइल के प्रधानमंत्री ने कहा कि इस हिंदुस्तानी ने 9/11 होने से बचा लिया, हर देशवासी के लिए स्मिथ का ये पराक्रम हमें गौरव से भर देता है।
0: रोंगटे खड़े कर देने वाला ये वाक्या है 30 सितंबर 2026 का, जब फ्लाइट दुबई की कमर्शियल फ्लाइट FZ1073 ने 174 यात्रियों और 6 क्रू मेंबर्स के साथ स्थानीय समय के मुताबिक सुबह 6:49 पर दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से तेल अवीव के लिए उड़ान भरी थी। कैप्टन स्मिथ इस विमान के पायलट थे और उनके साथ कॉकपिट में को पायलट के तौर पर ओमान का एक शख्स था। कैप्टन स्मिथ इस बात से पूरी तरह अनजान थे कि उनका को पायलट इंतहाई खौफनाक इरादों के साथ कॉकपिट में दाखिल हुआ है। दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से टेक ऑफ के करीब 1 घंटे और 42 मिनट बाद विमान जब 34,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भर रहा था, तभी ओमानी को पायलट ने अपने खतरनाक मंसूबों को अंजाम देने के लिए हिंदुस्तान के दिलेर पायलट स्मिथ पर चाकुओं से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। कैप्टन स्मिथ ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उन्हीं का को पायलट मिड ईयर उन पर इस तरह जानलेवा हमला कर देगा। पल भर में बुरी तरह लहूलुहान हो चुके स्मिथ ने इस विकट स्थिति में भी साहस, सूझबूझ और धैर्य नहीं खोया। वो समझ गए कि उनका को पायलट या तो विमान को क्रैश करना चाहता है या फिर इसे अगवा करना चाहता है। बुरी तरह जख्मी हो चुके कैप्टन स्मिथ के मन में एक बात बिजली की तरह कौंध गई, अगर मैं हिम्मत हार गया तो 174 बेगुनाह यात्रियों की दर्दनाक मौत हो जाएगी। ये विचार आते ही जख्मी स्मिथ एक्शन में आ गए। उन्होंने पहला काम ये किया कि विमान का कंट्रोल अपने पास ही रखा, जबकि ओमानी को पायलट का इरादा कंट्रोल अपने हाथ में लेने का था। दूसरा काम उन्होंने ये किया कि ATC को स्क्वाक कोड 7700 भेज दिया, जो सामान्य आपात स्थिति का संकेत होता है। कुछ मिनट बाद उन्होंने कोड 7500 भेजा, जो विमान हाईजैकिंग का संकेत देता है। तीसरा और सबसे बड़ा काम उन्होंने ये किया कि कॉकपिट का रिलीज सिस्टम दबा दिया, जिससे डोर ओपन हो गया। आपको बता दें कि कॉकपिट का डोर सिस्टम ऐसा होता है कि उसे बाहर से किसी भी सूरत में ओपन नहीं किया जा सकता। जाहिर है कैप्टन स्मिथ अगर डोर ओपन नहीं करते तो विमान के दूसरे क्रू मेंबर्स और यात्रियों को हस्तक्षेप का मौका नहीं मिलता, और ओमानी को पायलट कुछ ही देर में जख्मी स्मिथ की शायद जान भी ले लेता। बहरहाल जैसे ही कॉकपिट का डोर ओपन हुआ, यात्रियों को सारा माजरा समझ में आ गया। विमान में यात्रा कर रहे यानियू हायून नाम के एक इजरायली नागरिक ने अदम्य साहस का परिचय दिखाते हुए ओमानी को पायलट को खींच कर कॉकपिट से बाहर कर दिया, जिसके बाद दूसरे यात्री उस पर टूट पड़े और चंद मिनटों में उसे काबू में कर लिया। सनकी को पायलट को काबू में करने वाले यानियू हायून भी कैप्टन स्मिथ के शौर्य को सलाम कर रहे हैं।
2: Captain Smith, it's a hero. I think she is opened the door because I believe it's be near the door in the side of the cockpit. I think it's opened the door and as and then is crashed. And I want to tell him thank you for that. If not, if we can't go inside the cockpit, where all the passenger, include me, include my family, it's die.
0: काबिले गौर है कि इस विमान में ज्यादातर पैसेंजर्स इजरायली नागरिक थे। जाहिर है कि ओमान के सनकी को पायलट के निशाने पर यही इजरायली नागरिक थे। अगर कैप्टन स्मिथ ने वक्त रहते कॉकपिट का डोर ओपन नहीं किया होता तो विमान में सवार सभी यात्री और क्रू मेंबर्स की दर्दनाक मौत हो जाती। यही वजह है कि इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू साहसिक यात्रियों के साथ कैप्टन स्मिथ के शौर्य, धैर्य और हीरोइक एक्ट की दिल खोल कर सराहना कर रहे हैं।
3: Almost all the passengers on the flight were Israelis. During the flight, as they approached the country, one of the pilots stabbed the other pilot and apparently tried to crash the plane with everyone on board. I spoke with one of the Israeli passengers. He told me that the plane went into a spin and started to dive. He told me that somehow he managed to break into the cockpit with one of the crew members, and together they neutralized the stabbing pilot while he was trying to sabotage the plane's systems. Another flight crew member who was on the plane entered the cockpit and managed to stabilize the aircraft. I salute these heroes who showed resourcefulness and extraordinary courage.
0: इसमें कोई संदेह नहीं कि कॉकपिट के भीतर कैप्टन स्मिथ जब अपने ही सन की को पायलट के खिलाफ वीरता के साथ मुकाबला कर रहे थे, उस दौरान विमान पर सवार 174 यात्रियों का कलेजा मुंह को आ चुका था, क्योंकि उन्हें अपनी मौत बेहद करीब दिख रही थी। दरअसल कैप्टन स्मिथ पर चाकू से ताबड़तोड़ हमले करने के बाद ओमान का बददिमाग को पायलट विमान को क्रैश कराने की कोशिश भी करने लगा था। इस दौरान 34,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा विमान गोता लगाते हुए 2 मिनट के भीतर ही 17,000 फीट नीचे आ चुका था। अगले 1 या 2 मिनट में वो आग के गोले में तब्दील होने ही वाला था कि कैप्टन स्मिथ ने सूझबूझ का परिचय देते हुए रिलीज सिस्टम का बटन प्रेस कर दिया। यही वजह है कि बेंजामिन नेतन्याहू ने कैप्टन स्मिथ को रियल हीरो कहा है। सोशल साइट एक्स पर अपनी पोस्ट में भारतीय कैप्टन की हृदय से तारीफ करते हुए नेतन्याहू ने लिखा है कि असाधारण वीरता प्रदर्शित करने के लिए भारतीय पायलट स्मिथ मुछार को मैं सलाम करता हूं। चाकू से गोदे जाने के बाद गंभीर रूप से जख्मी होने पर भी उन्होंने हार नहीं मानी, सनकी को पायलट का मुकाबला किया और कॉकपिट का डोर ओपन कर दिया। इसकी वजह से विमान में सवार यात्रियों और क्रू मेंबर्स को ओमानी को पायलट को काबू में करने का मौका मिल गया और आसमान में होने वाली एक खौफनाक दुर्घटना टल गई। उन्होंने इजरायली नागरिकों समेत 174 यात्रियों की जान बचा ली। मैं कैप्टन मुछार के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। वो एक सच्चे हीरो हैं। इजरायली प्रधानमंत्री का ये भावुक संदेश इसलिए है क्योंकि विमान में लगभग सभी यात्री इजरायली थे, लेकिन कैप्टन स्मिथ के शौर्य को तो पूरी दुनिया सलाम कर रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी कैप्टन स्मिथ को सच्चा हीरो बता दिया है।
4: Perhaps a terrorist or perhaps a whack job. And he stabbed the pilot. The pilot was in very bad shape. And I guess he still is in very bad shape. But he had the sense to, amazing, to, in a way he was a hero, to open the door. You know, those doors are solid steel. You can't get them open from outside. He was able to fall back and get the door open and scream.
0: साफ है कि कैप्टन स्मिथ रील के नहीं बल्कि रियल के हीरो बनकर पूरी दुनिया में छा गए हैं। वो हीरो हैं सिर्फ इसलिए नहीं कि 34,000 फीट की ऊंचाई पर बहादुरी दिखाकर 174 यात्री और अपने क्रू मेंबर्स की जान बचा ली। वे हीरो हैं इसलिए भी कि पूरी तरह लहूलुहान हो जाने के बाद भी उनके चेहरे पर शिकन की कोई लकीर नहीं दिख रही थी। अलबत्ता बेगुनाह लोगों की जिंदगी बचाने का सुकून जरूर उनके चेहरे पर तैर रहा था। सऊदी अरब के तबूक में सेफ लैंडिंग के बाद विमान के भीतर जब उन्हें फर्स्ट एड दिया जा रहा था तो कैप्टन स्मिथ पूरे आत्मविश्वास के साथ लोगों से बात करते नजर आए। ये बात निर्विवाद सत्य है कि तबाही मचाने वाले हथियार तो बाजार में बिकते हैं, लेकिन युद्ध के समय दुश्मन के सामने सीना तान कर खड़े होने का जो साहस, शौर्य और फौलाद होता है, वो दुनिया के किसी बाजार में नहीं बिकता। फौलादी जिगर तो इंसान अपने साथ लेकर पैदा होता है, और जिसके भीतर फौलादी जिगरा होता है, वही परोपकार के लिए, परमार्थ के लिए अपने प्राणों की आहुति देने से भी पीछे नहीं हटता। ऐसे महानायक के ही सजदे में पूरी दुनिया होती है। इजराइल की मशहूर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर तालिया जोसेफ ने कैप्टन स्मिथ के साहसिक कार्य पर इजराइल की ओर से आभार जताने के लिए जो उद्गार व्यक्त किए हैं, उसने हिंदुस्तानियों के मस्तक को गर्व से और ऊंचा कर दिया है।
5: More than 170 people made it home because of Smith. 170 families that didn't lose their loved ones because he chose to take action and fight. He chose to be a hero. And that's exactly what he is. Smith is right now dealing with the wounds caused by the terrorist and he is in critical condition. So I want to wish him speedy recovery. Refuah shlema. Thank you so much from the people of Israel for your courage and for your sacrifice. We do not take it for granted and we will never forget it.
0: निसंदेह इस घटनाक्रम के बाद हिंदुस्तान की धरती पर जन्मे और पले बढ़े कैप्टन स्मिथ महानायक के तौर पर पूरी दुनिया में सराहे जा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर ओमान का वो को पायलट है जिसके जघन्य कृत की वजह से उसके देश की फचीहत हो रही है, जबकि समूचे हिंदुस्तान को अपने इस महानायक पर गर्व की अनुभूति हो रही है। पूरी दुनिया इस हीरो की स्पीडी रिकवरी के लिए अपनी अपनी आस्था और अकीदे के मुताबिक दुआ कर रही है। उधर 140 करोड़ हिंदुस्तानी अपने महानायक को स्वस्थ और सकुशल देखने के लिए बेकरार हैं।
6: कैप्टन स्मिथ मछार वसुधैव कुटुंबकम के सनातन संस्कार के बीच पले बढ़े हैं। विकट परिस्थिति में अपनी चिंता छोड़कर दूसरों की रक्षा करने की प्रेरणा कैप्टन स्मिथ के संस्कार में है। आपको यह जानकर सुखद आश्चर्य होगा कि स्मिथ बजरंगबली के भक्त हैं। ओमानी मूल के कोपायलट ने एक समय जब उनको बुरी तरह से जख्मी कर दिया था और बहुत ज्यादा खून बह जाने की वजह से वो मूर्छित होने लगे थे, तो उन्होंने हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर दिया। इसलिए नहीं कि उनकी जान संकट में थी, बल्कि इसलिए कि 174 बेगुनाह यात्रियों की जान जाने वाली थी। आसमान में की गई कैप्टन स्मिथ की प्रार्थना शायद स्वीकार हो गई, तभी तो समूचा इजराइल उनके नायकत्व से अभिभूत होकर जय हिंद का नारा बुलंद कर रहा है।

शरीर लहूलुहान हो, गहरे जख्मों का दर्द असह्य हो, मौत मुंह बाए सामने खड़ी हो, उसके बाद भी अगर अनजान लोगों की जिंदगी की हर चंद हिफाजत का जज्बा जा

0: देश के नागरिक अपने ही देश की सरजमी पर जय हिंद का जय घोष कर गर्व की अनुभूति कर रहे हैं। कैप्टन स्मिथ के त्याग और बलिदान से अभिभूत होकर इजरायली नागरिक तेल अवीव की सड़कों पर निकलकर जय हिंद का नारा बुलंद कर रहे हैं।
1: जय हिंद।
2: अम इसराइल खाय।
1: हम आपके आभारी हैं।
2: We are from Israel and with one united voice
1: on behalf of the people of India
2: and the people of Israel,
1: we want to honor and thank Captain Smith
2: for heroically saving the lives of nearly 200 passengers.
0: वसुधैव कुटुंबकम की सनातन प्रेरणा से अनुप्राणित कैप्टन स्मिथ ने बेहद विकट परिस्थिति में ऐसा अद्भुत जज्बा दिखाया कि हिंदुस्तान और इजराइल की सामाजिक, सांस्कृतिक और भौगोलिक भिन्नता भावनात्मक एकता का रूप लेकर समूची वसुधा को सुरभित कर रही है। इजराइल की सड़कों पर जय हिंद का नारा गूंज रहा है तो तेल अवीव से 4,696 किलोमीटर दूर अविनाशी काशी की गंगा आरती देश के इस शूरवीर के नाम समर्पित कर दी गई।
3: कैप्टन स्मिथ ने जिस अदम्य साहस, धैर्य और कृतज्ञ निष्ठा का परिचय दिया है वह पूरे देश के लिए गर्व की बात है। जिस परिस्थिति में कोई भी व्यक्ति घबरा सकता था उस कठिन समय में उन्होंने अपने कर्तव्य को सर्वोपरि रखते हुए सैकड़ों यात्रियों की सुरक्षा के लिए जिस बहादुरी के साथ सामना किया वह वास्तव में प्रेरणादायक है। गंगा सेवा निधि परिवार बाबा विश्वनाथ एवं भगवती माँ गंगा से उनके जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना करती हूँ।
0: भगवान शिव की नगरी काशी में स्मिथ के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना के साथ गंगा आरती की गई तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की पावन जन्मस्थली अयोध्या धाम में कैप्टन स्मिथ के आरोग्य और लंबी उम्र के मनोरथ के साथ साधु संतों ने हनुमान चालीसा का सस्वर पाठ किया।

0: हमारे देश के जानबाज कैप्टन स्मिथ मच्छर जी ने असाधारण व्यक्तित्व और साहस का परिचय देते हुए 174 यात्रियों को सकुशल बचाने का जो है काम किए। इसके लिए मैं इनको जो है स्वास्थ्य की कामना से, यह जल्द स्वस्थ हो इसलिए हनुमान जी महाराज के जो है हनुमान चालीसा और मंत्रों के द्वारा प्रार्थना किया हूँ। हनुमान जी महाराज हमारे ऐसे स्मित मच्छर जी को शक्ति साहस और स्वस्थ करके इनको तत्काल भारत ये आए, यही हम लोगों ने हनुमान जी से प्रार्थना किया हूँ।
1: कैसा अद्भुत संयोग है कि जिस कैप्टन स्मिथ के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना के साथ अयोध्या में हनुमान चालीसा का पाठ किया गया, उस कैप्टन ने इजराइल और जॉर्डन के सीमावर्ती क्षेत्र में 34,000 फीट की ऊंचाई पर 174 नागरिकों की रक्षा की शक्ति पाने के लिए इसी हनुमान चालीसा का पाठ किया था। ये बात खुद स्मिथ ने प्रधानमंत्री मोदी के साथ बातचीत के दौरान बताई। दरअसल ओमान मूल के को पायलट ने कॉकपिट में मौजूद क्रैश एक्स से कैप्टन स्मिथ मच्छार के सिर, सीने और हाथ में गहरे जख्म कर दिए थे। उनके जिस्म के कई हिस्सों से बेतहाशा खून निकल रहा था। एक समय ऐसा भी आया जब स्मिथ को लगा कि वे कभी भी होश में नहीं आने वाली मूर्छा में जाने वाले हैं। मूर्छित होने से पहले जैसे ही उनके मन में ये ख्याल आया कि अगर मैं मूर्छित हुआ तो इस विमान में सवार 174 यात्रियों की मौत निश्चित है, उन्होंने हनुमान चालीसा का पाठ शुरू किया और पूरी शक्ति के साथ उठकर कॉकपिट के रिलीज सिस्टम का बटन प्रेस कर दिया। जब कॉकपिट का डोर ओपन हो गया तो विमान में सवार क्रू मेंबर्स और पैसेंजर्स ने बाकी का मोर्चा संभाल लिया।
2: उस टाइम पे मैं बोला अगर मैं नहीं उठूंगा तो मैं एग्जाम में 17 साल से ज्यादा दौड़ा हूँ, मैं पिछले 11 साल से कैप्टन हूँ और मुझे पता चलता है आंख बंद करके भी।

0: साथ में क्या हो रहा है। जब मैं नीचे गिरा हुआ था तब मुझे एहसास हो रहा था कि एयरक्राफ्ट नीचे जा रहा है, और मुझे बिल्कुल पता था कि ये एक लास्ट पुश अगर स्मिथ कर दे दरवाजा बस वही है। और तभी भी मैं मार खा ही रहा था, बस वो खोल दिया सर, बाकी सब आगे और बाकी सबकी भी उतनी उसमें रोल था। मैं जान के मैं सर को बोला था कि मैं अपनी जान के हिसाब से कर रहा था, बट एट द सेम टाइम मुझे इतना भी पता था कि मैं उन सबको नहीं मत दे सकता।
1: मौत का विकराल रूप सामने खड़ा देखने के बाद भी 174 जिंदगी की चिंता करने वाले कैप्टन स्मिथ का संवेदनात्मक भाव सनातन के कालजयी ग्रंथ मनुस्मृति के 8वें अध्याय के 15वें श्लोक से पुष्ट हो जाता है। मनुस्मृति का यह श्लोक है, धर्म्यो हतोहन्ति धर्मो रक्षति रक्षितः, तस्मात् धर्मो न हन्तव्यो मा नो धर्मो हतो अवधीत। मनुस्मृति के इस श्लोक का अर्थ है, जो धर्म का नाश करता है धर्म उसका नाश कर देता है, और जो धर्म की रक्षा करता है धर्म भी उसकी रक्षा करता है। इसीलिए धर्म का कभी नाश नहीं होना चाहिए, ताकि नाश हुआ धर्म हमारा नाश न कर सके। मनुस्मृति के इसी श्लोक का भाव तब कैप्टन स्मिथ के मन में जागृत हो गया। उन्होंने अत्यंत विकट स्थिति में धर्म की रक्षा की, और अब धर्म उनकी रक्षा कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी स्वयं अपने देश के इस साहसी सपूत की हर जरूरत का ख्याल रख रहे हैं। कैप्टन स्मिथ ने तब ये नहीं सोचा होगा कि 174 जिंदगी बचाने का उनका कर्तव्य समूचे देश की भावना का ज्वार बनकर उमड़ पड़ेगा। इसीलिए पीएम मोदी से बात करते समय वे थोड़े भावुक भी हो गए।
0: बहुत बहुत गर्व होता है, अभी में तो हो रहा है मेरे पे गर्व, अब तक नहीं हो रहा था, अब हो गया सर। सॉरी क्या आपके सामने रो रहा हूँ सर।
2: स्मिथ, अगर मेरे सामने आप भावुक नहीं हो गए तो कहाँ होंगे।
1: गंभीर रूप से जख्मी स्मिथ का इलाज पहले सऊदी अरब के तबूक के एक अस्पताल में चल रहा था, लेकिन और बेहतर ट्रीटमेंट के लिए उन्हें एयरलिफ्ट करके अबू धाबी के सैन्य अस्पताल लाया गया। उनकी हालत में तेजी से सुधार हो रहा है, और डॉक्टरों के मुताबिक वो खतरे से बाहर हैं। जिस शख्स के आरोग्य के लिए हिंदुस्तान के मंदिरों शिवालयों समेत दुनिया भर के इबादत खानों में प्रार्थनाओं का दौर चल रहा हो, उसे पूर्ण स्वस्थ होने से कौन रोक सकता है। इसमें कोई संदेह नहीं कि अपने फिनोमिनल हीरोइक एक्ट से कैप्टन स्मिथ ने हिंदुस्तान का मान पूरी दुनिया में बढ़ाया है।
3: इसी के साथ बंदे मेहदम में आज आपने देश के जाबाज पायलट स्मिथ मछार के हीरोइक एक्ट की दास्तान सुनी। अगले हफ्ते ऐसे ही किसी और बेमिसाल शख्सियत के सफरनामे के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे।

0: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: गुड न्यूज़ टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
2: अमेरिका के न्यू मैक्सिको में विश्व का सबसे बड़ा हॉट एयर बैलून उत्सव अल्बुकर्क इंटरनेशनल बैलून फिएस्टा 2026 धूमधाम से शुरू हो चुका है। इस दौरान आकाश में तैरते सैकड़ों गुब्बारों के इस मनमोहक दृश्य को लाइव दिखाने के लिए दुनिया भर से लाखों लोग न्यू मैक्सिको पहुंच रहे हैं।
3: रंग बिरंगे गुब्बारों से भरा है आसमान। नील गगन पर अलग अलग रंगों और डिजाइनों वाले होटल गुब्बारों की उड़ान का ये नजारा बेहद शानदार है। ये तस्वीरें अमेरिका के न्यू मैक्सिको में चल रहे अल्बुकर्क इंटरनेशनल बलून फेस्टा की है। यहाँ सिर्फ पारंपरिक गुब्बारे ही नहीं बल्कि अलग अलग आकार वाले विशेष बैलून भी आकर्षण का केंद्र बने हैं। इनमें गाय जैसा दिखने वाला और मशहूर स्मोकी बेयर की झलक दिखाने वाले गुब्बारे भी शामिल हैं। न्यू मैक्सिको में गुब्बारों के उत्सव की शुरुआत तड़के खास ड्रोन लाइट शो के साथ हुई। इस शो में हॉट एयर बलून, न्यू मैक्सिको के स्टेट बर्ड ग्रेट रॉडनर, चिली पेपर और मैक्सिकन थीम वाली अनोखी आकृतियां नजर आईं। के बाद शुरू हुई गुब्बारों में हवा भरने की तैयारी। जब एक एक कर विशाल बैलून जमीन पर आकार लेने लगे तो देखते ही देखते पूरा फिएस्टा पार्क रंगों से भर गया। सूरज उगने के साथ ही सुबह करीब 7 बजे शुरू हुए इस महोत्सव का सबसे मनमोहक वह पल था जब सैकड़ों हॉट एयर बैलून एक साथ आसमान की ओर उठने लगे और फिर ऐसा लगा जैसे पूरा आसमान रंग बिरंगे गुब्बारों से ढक गया हो। इस नजारे को देखने के लिए अमेरिका ही नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने से बड़ी संख्या में लोग अल्बुकर्क इंटरनेशनल बैलून फिएस्टा पार्क पहुंचे। इस बैलून महोत्सव की शुरुआत सन 1962 में महज 13 गुब्बारों के साथ हुई थी और अब ये दुनिया के सबसे बड़े बैलूनिंग फेस्टिवल में शुमार हो चुका है। आयोजकों के मुताबिक इस बार 500 से ज्यादा बलून फिएस्टा में हिस्सा ले रहे हैं। इस बार 9 दिनों का ये इंटरनेशनल बलून फिएस्टा 11 अक्टूबर तक जारी रहेगा और बलूनिंग के शौकीनों को एक बार फिर से अनूठी यादें संजोने का मौका देगा। रिपोर्ट गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
0: अविश्वास में विश्वास बसता है
4: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
2: उत्तराखंड के खटीमा में आदि रंगोत्सव फेस्टिवल का शुभारंभ मुख्यमंत्री धामी के साथ केंद्रीय मंत्री ज्वेल ओरम और किरण रिजिजू रहे मौजूद। असम, उड़ीसा, महाराष्ट्र सहित 15 राज्यों के जनजाति समूह के हुनर का प्रदर्शन। ऐसे संत रविदास नगर के नाम से जाना जाएगा उत्तर प्रदेश का भदोही जिला। कारपेट एक्सपो के उद्घाटन पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ऐलान, जल्द ही सरकार की ओर से अधिसूचना होगी जारी। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में कैप्टन स्मिथ मच्छार के लिए पूजा अर्चना, हवन पूजन के साथ भगवान से की जल्द स्वस्थ होने की कामना। जाबाज के लिए देश भर में प्रार्थनाएं। राजधानी दिल्ली में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के तौर पर विकसित होंगे 5 प्रमुख स्टेडियम। प्रदेश के खेल मंत्री आशीष सूद ने किया ऐलान, खिलाड़ियों को मिलेंगी हर तरह की आधुनिक सुविधाएं। जापान के एगानोया में एशियन गेम्स 2026 का भव्य समापन समारोह, 2 गोल्ड और 1 सिल्वर मेडल जीतने वाली शूटर नीरू ढांडा ने थामा तिरंगा, भारतीय खिलाड़ियों ने जीते कुल 85 मेडल।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाती है।

0: दुनिया एक बड़े बदलाव के दौर से गुजर रही है और इसी बदलाव की छाप रक्षा क्षेत्र पर भी नजर आ रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टाइम मशीन की तरह काम करने लगे हैं, यानी जो हथियार की हम कल्पना कर रहे थे वो हथियार या सिस्टम हकीकत की शक्ल अख्तियार कर रहे हैं। रोबो टैंक का ट्रायल चल रहा है, सरहद पर रोबो म्यूल गश्त कर रहे हैं। अनमैन ड्रोन की ताकत तो दुनिया देख ही रही है। अब बारी रोबोट आर्मी की है, यानी यूं कहें कि जंग के मैदान में हथियारों से लैस रोबोट्स युद्ध लड़ते दिखाई दे सकते हैं। यूक्रेन इस वक्त रोबोटिक हथियारों की सबसे बड़ी लेबोरेटरी बन चुका है, जहां तमाम तरह के रोबोट्स या कहें कि युद्ध के मैदान में सीधा रोबोट्स को ही उतारा जा रहा है, वहीं पर परीक्षण हो रहा है और यही अब जंग के मैदान में मोर्चा संभाले हुए हैं। यूक्रेन की रक्षा मंत्री ने सीधे तौर पर यह कहा है कि यूक्रेन का मकसद आने वाले समय में रोबोट्स की एक बड़ी आर्मी तैयार करना है, जो रण क्षेत्र में दुश्मन का मुकाबला कर सके। आज दुनिया के कई देश सेना का रोबोटाइजेशन करने में जुटे हैं, जिसमें यूक्रेन भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। यूक्रेन ने रूस पर हमला और अपने सैनिकों की जान बचाने के लिए रोबोट आर्मी नाम का नया कार्यक्रम शुरू किया है, आर्मी ऑफ रोबोट प्रोजेक्ट।
1: यूक्रेन के पूर्व रक्षा मंत्री के द्वारा शुरू किया गया आर्मी और रोबोट्स एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है, जिसमें कि रोबोट्स का इस्तेमाल सोल्जर्स के बदले में किया जाएगा। अभी शुरुआत में इनका इस्तेमाल कैजुअल्टी इवैक्यूएशन, माइन लगाना, माइन निकालना, मशीन गन लोड करना, आगे सर्विलेंस सिस्टम लगाना, जहाँ जहाँ खतरा हो सकता है वहाँ पर इनका इस्तेमाल करके जो उन सोल्जर्स हैं उनकी कैजुअल्टी को कम किया जा सकता है, खास तौर से ऐसे समय में जबकि यूक्रेन के पास सोल्जर्स की कमी हो रही है। 4.5 साल से ज्यादा समय से लड़ाई चल रही है और इनकी काफी कैजुअल्टीज हो चुकी हैं।
0: यूक्रेन के पूर्व रक्षा मंत्री मिखाइलो फेदोरोव ने 26 सितंबर को आर्मी ऑफ रोबोट प्रोजेक्ट का ऐलान करते हुए कहा, युद्ध के मैदान में ऐसे रोबोट्स तैनात करने की योजना है जो जोखिम भरे काम कर सके। प्रोजेक्ट में इंसानों जैसे दिखने वाले ह्यूमनॉइड रोबोट्स बनाए जाएंगे। ये मशीन गन में गोलियां भरने, बैटरी बदलने और सेंसर लगाने जैसे काम करेंगे। इससे सैनिकों को हथियारों और दूसरे उपकरणों की देखरेख के लिए सीधे मोर्चे पर जाने की जरूरत नहीं होगी। यूक्रेन की आर्मी ऑफ रोबोट प्रोजेक्ट का सबसे महत्वाकांक्षी लक्ष्य ट्रेंच यानी कि खाई और फॉरवर्ड पोस्ट पर सैनिकों की जगह इंसान जैसे दिखने वाले ह्यूमनॉइड रोबोट्स को तैनात करना होगा।
2: युद्ध के समय सेना के लिए रोबोट्स एक तरीके से बिल्कुल वही काम करते हैं जो हमारे सेना के जवान करते हैं, यानी कि ह्यूमनॉइड रोबोट्स हर वो काम कर सकते हैं जो रणक्षेत्र में एक सैनिक करता है। फिर चाहे वो बंकर को तबाह करना हो, दुश्मन की इंफॉर्मेशन लेना हो, किसी घर की छत पर चढ़ना हो, सीढ़ियों पर चढ़ना हो, हर तरह के काम ह्यूमनॉइड रोबोट्स कर रहे हैं और यही एक बड़ी वजह है कि आने वाले समय में ह्यूमनॉइड रोबोट्स की एक बड़ी फौज तैयार की जा रही है जो आपको रणक्षेत्र में देखने को मिलेगी। और सबसे बड़ी और खास बात यह है कि ये बिल्कुल उसी तरीके से काम करते हैं जैसे इन्हें कमांड दी जाती है।
0: ह्यूमनॉइड रोबोट्स इंसानों की तरह बंदूकें पकड़ सकते हैं, ट्रिगर दबा सकते हैं, मिलिट्री टैंकों को ड्राइव कर सकते हैं और टैंकों के अंदर बैठकर उन्हें ऑपरेट भी कर सकते हैं। केमिकल, बायोलॉजिकल या परमाणु हमले वाले इलाकों में जहां इंसानों का जाना तुरंत मौत को दावत देना है, ये रोबोट्स आसानी से काम कर पाएंगे।
1: ह्यूमनॉइड रोबोट्स की एंट्री एक बड़ा गेम चेंजर साबित होगा, क्योंकि जो ह्यूमनॉइड रोबोट्स है ये देखा जाए तो एक इंसान की तरह से इनके पैर, हाथ, सर, आंखें सभी तरह से काम करते हैं। और क्योंकि ज़्यादातर हमारे डिफेंस सिस्टम्स इंसानों की हाइट्स के हिसाब से बने, हमारे लिए काम करने के हिसाब से बने। ऐसे में जब ये सीढ़ी चढ़ना, उतरना, कहीं पे जाना, अंदर घुसना, कमरे के अंदर जाना, वहाँ काम करना, फायरिंग करना, इस तरह के काम करने में सक्षम होते हैं तो काफ़ी मदद मिल जाएगी उस सेना क्यों जिसके पास ये ह्यूमनॉइड रोबोट्स होंगे। ये अभी माइन लगाना, माइन निकालना, कैजुअल्टी इवैक्यूएशन करना, सर्विलेंस सिस्टम लगाना, मशीन गन लोड करना, इस तरह के सपोर्टिंग काम्स करने में सक्षम है जो कि कैजुअल्टीज को बचाएंगे।
0: दावा यह किया जा रहा है कि रूस यूक्रेन जंग में अब रोबोट सैनिक भी मोर्चा संभाल रहे हैं। यूक्रेन ने पहली बार बड़े पैमाने पर सुसाइड जमीनी रोबोट्स का इस्तेमाल कर रूसी सेना पर हमला करने का दावा किया। यूक्रेन की थर्ड आर्मी कॉर्प्स के मुताबिक मई से सितंबर के आखिरी सप्ताह तक चले ऑपरेशन विवाल्डी में रोबोट और ड्रोन का इस्तेमाल किया गया। रोबोट और ड्रोन की मदद से 15,700 से ज्यादा मिशन पूरे किए गए और रूस के 3,000 सैनिकों को मार गिराया गया। वहीं पूर्वी यूक्रेन के डोनेस्क इलाके में 5 गांव और 3 बस्तियों पर दोबारा कंट्रोल हासिल किया। अगर रूस का दावा सही है तो फिर इसका संकेत साफ है कि रूस यूक्रेन युद्ध में अब जमीनी रोबोट युद्ध का हिस्सा बनते जा रहे हैं। थर्ड आर्मी कॉर्प्स के कमांडर जनरल आंद्री वेलेट्सी ने कहा है कि यूक्रेन दुनिया में पहली बार ड्रोन से रोबोट को दुश्मन के इलाके में उतार कर हमला कर रहा है। दुश्मन को आसमान से हमले का खतरा रहता है, जमीन से नहीं। रूसी सैनिक को वहां से हमले का सामना करना पड़ा जहां उन्हें इसकी उम्मीद तक नहीं थी। यूक्रेन ने ऑपरेशन विवाल्डी में पहली बार पहियों वाले अनमैन्ड ग्राउंड व्हीकल यानी जमीनी रोबोट्स को मोर्चे पर उतारा। हाइना के नाम से जाने जाने वाले 4 पहियों वाले यूजीवीज विस्फोटकों से भरे थे। ऑपरेशन विवाल्डी दरअसल यूक्रेन की थर्ड आर्मी कॉर्प्स की तरफ से रशिया के खिलाफ चलाया गया एक ऑपरेशन था जो कि डोनेस्क क्षेत्र में चलाया गया था और इसमें पहली बार हाइना यूजीवी व्हीकल्स का इस्तेमाल किया गया। दरअसल हाइना एक बहुत ही फुर्तीला यूजीवी व्हीकल है और ये 4 व्हीलर ग्राउंड कैमिकेज रोबोट है जिसे यूक्रेन डिफेंस टेक क्लस्टर ब्रेव 1 की यूजीवी लेबोरेटरी की तरफ से विकसित किया गया है। ऑपरेशन विवाल्डी के दौरान यूक्रेनी सेना की थर्ड आर्मी कॉर्प्स ने रूसी ठिकानों को तबाह करने के लिए हाइना यूजीवीज का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया। 16 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम रफ्तार से चलने की ताकत के साथ हाइना यूजीवीज 20 किलोमीटर तक की दूरी तय कर सकता है। आकार में बेहद कॉम्पैक्ट होने के बावजूद ये 20 से 26 किलोग्राम तक का भारी विस्फोटक ले जाने में सक्षम है। ये दुश्मन के इलाके में जाकर घात लगाकर बैठ सकता है और 30 से 60 घंटे तक एक्टिव रहकर सही मौके पर खुद को विस्फोट से उड़ा भी सकता है। हाइना यूजीवीज को बंकर और डगआउट ब्लास्टर के तौर पर जाना जाता है। ये दुश्मन की अग्रिम चौकियों, भारी किलेबंदी वाले बंकरों और अंडरग्राउंड डगआउट में रेंगते हुए चुपके से पहुंच जाते हैं। फिर इसे रिमोट कंट्रोल से ब्लास्ट कर दिया जाता है जिससे दुश्मन को भारी नुकसान पहुंचता है।
1: हाइना यूजीवी यूक्रेन का एक बड़ा ही जबरदस्त डेवलपमेंट है जो कि एक 4 पहियों वाली गाड़ी को ड्रोन के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, दूर से कंट्रोल करते हैं, जो कि दुश्मन के बंकर के पास, उनके मोर्चे के पास जाकर फट जाता है, अटैक करता है और उसको बर्बाद कर देता है। दूसरी बात यह कि इसका इस्तेमाल लॉजिस्टिक के लिए भी हो सकता है, इसमें सामान भी ले जाया जा सकता है। तीसरी बात यह है कि ये तकरीबन 16 किलोमीटर की स्पीड से चल जाता है, साथ साथ में सकरा होने के कारण और पहियों होने के कारण ये क्रॉस कंट्री और पतले रास्तों से, सकरे रास्तों से भी निकलने में सक्षम है। तो ये काफ़ी मदद साबित हो रही है इसमें, क्योंकि आगे बढ़कर दुश्मन के इलाके में बुलेट प्रूफ बॉडी होने के साथ साथ ये उनके मोर्चों के पास जाके उनको भारी संख्या में कैजुअल्टी कर रहा है।
0: हाइना यूजीवीज का ग्राउंड क्लियरेंस और बनावट ऐसी है कि ये थर्मल कैमरे और रडार की नजर में आसानी से नहीं आ पाते। इसका मॉड्यूलर हल डिजाइन इसे उबड़ खाबड़ रास्तों, मलबे और शहरी इलाकों की तंग गलियों में तेजी से मुड़ने और आगे बढ़ने की आजादी देता है। हाइना रोबोट्स को दुश्मन के इलाके में ले जाकर स्टैंड बाय मोड में छोड़ा जा सकता है। जैसे ही दुश्मन सैनिक या फिर व्हीकल इसके करीब आते हैं, दूर बैठा ऑपरेटर इसे तुरंत एक्टिव कर देता है और हमला हो जाता है।
2: जंगल का शिकारी हाइना यानी कि लकड़बग्घा, और इस रोबोट को बिल्कुल उसी के शिकार करने की रणनीति के तहत ही तैयार किया गया है। ठीक जैसे लकड़बग्घा झुंड में हमला करता है, उसी तरीके से हाइना रोबोट्स को पांच पांच की टुकड़ियों में यूक्रेनी सेना को दिया जाता है, और जब ये जंग के मैदान में उतरते हैं, अलग अलग दिशाओं में हमला करते हैं, तो दुश्मन के लिए इनका मुकाबला कर पाना बेहद मुश्किल हो जाता है। ऑपरेशन वेवाल्डी में यूक्रेनी सेना की थर्ड आर्मी कॉर्प्स ने जिस तरह से अनमैन्ड ग्राउंड व्हीकल्स का इस्तेमाल किया है, उसने मॉडर्न वॉरफेयर का पूरा चेहरा बदल दिया है।
1: ऑपरेशन विवाल्डी में ड्रोन के इस्तेमाल का और रोबोट्स के इस्तेमाल का एक बहुत ही अभूतपूर्व एग्जांपल है जिसको कहा जाए, जहां पर कि रोबोट्स को हवा से ड्रॉप करके और जो अनमैन ग्राउंड व्हीकल है हवा से ड्रॉप करके और वो उनको फिर वहाँ पे सेना के आगे जाके वो हमला करने में सक्षम है। यानी कि पहले ये होता था कि सेना आगे जा रही है, पीछे पीछे रोबोट्स और अनमैन ग्राउंड व्हीकल्स आ रहे हैं, लेकिन जहाँ पर सेना के आगे गए हैं वो आगे के ऑब्स्टेकल क्लियर किए, माइन क्लियर किया और जरूरत पड़ने पर आगे जाके उन्होंने सीधे ब्लास्ट हो गए रिमोट कंट्रोल के द्वारा, तो काफ़ी बड़ी संख्या में इनको सफलता मिली है सोवियत रशिया के मोर्चों के खिलाफ।
2: यूक्रेन के ऑपरेशन विवाल्डी में पहली बार हवाई और जमीनी ड्रोन्स को मिलाकर एक मदर चाइल्ड आर्किटेक्चर के तहत काम पर लगाया गया। ऑपरेशन विवाल्डी का सबसे क्रांतिकारी हिस्सा ये था कि यूजीवी को सीधा चल के दुश्मन के इलाके में नहीं जाना था, बल्कि इसे एक बॉम्बर रोबोट की मदद से दुश्मन के इलाके में गिराया गया। वैसे सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि छोटे छोटे बॉम्बर्स की बैटरी खत्म होने से बच गई और इसने सीधे दुश्मन के इलाके में वार किया। रोबोट में लगे कैमरों से आस पास के इलाके पर नजर रखी जाती, इनकी मदद से रूसी सेना के कमांड सेंटर, सैनिकों के ठिकाने, हथियार और सामान रखने की जगहों और नदी पार करने के रास्तों पर हमले किए गए। इस रणनीति का मकसद यूक्रेनी सैनिकों की जान जोखिम में डाले बिना रूसी ठिकानों पर हमला करना था। रूस और यूक्रेन लंबे समय से एक दूसरे के साथ जंग लड़ रहे हैं। हम सभी जानते हैं कि रूस यूक्रेन से ज्यादा ताकतवर है, लेकिन बावजूद इसके यूक्रेन युद्ध के मैदान में डटा हुआ है और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है ड्रोन्स। रूस का मुकाबला करने के लिए यूक्रेन छोटे और सस्ते ड्रोन्स का मुकाबला कर रहा है, उनको मैदान में उतार रहा है। सबसे बड़ी और खास बात यह है कि इन ड्रोन्स की मदद से यूक्रेन अपने सैनिकों की जान भी बचाता है और साथ ही साथ रूस का मुकाबला करने के लिए वो पूरी तरह से तैयार है। बस अब इसी रणनीति के तहत आगे काम किया जा रहा है। यूजीवी का इस्तेमाल गोला बारूद, राशन और पानी पहुँचाने के साथ साथ जोखिम भरे इलाकों से घायल सैनिकों को निकालने के लिए भी था। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक अगस्त 2026 में यूजीवी यानी अनमैन्ड ग्राउंड व्हीकल ने 25,000 से ज्यादा रसद और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए, जिससे साल की शुरुआत से अब तक ऐसे अभियानों की कुल संख्या करीब 1,12,000 हो गई। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए नए आंकड़ों के मुताबिक यूक्रेन के सशस्त्र बलों ने साल 2026 में अनमैन सिस्टम का विस्तार करते हुए 5,90,000 से ज्यादा ड्रोन्स का ऑर्डर दिया। रक्षा और आक्रमण ये दो ऐसे पहलू हैं जिनमें अगर सामंजस्य ना हो तो युद्ध की दिशा और दशा बदल सकती है। यानी सीधे शब्दों में अगर समझाया जाए कि अगर तलवार जरूरी है तो ढाल भी जरूरी है। इसी के साथ साथ भारत अब इसी रणनीति पर आगे काम कर रहा है और उसी के तहत अपनी सेना को तैयार कर रहा है। नए नए उपकरणों को इसी तरीके से बनाया जा रहा है जो कि अटैकिंग भी हो और साथ ही साथ दुश्मन के हमले का मुकाबला भी हम सही और अच्छी तरीके से कर सके।
3: घना जंगल हो या फिर ऊंचे ऊंचे पहाड़, शहर की भीड़ भाड़ हो या फिर सुनसान रेगिस्तान, खतरा किसी भी इलाके में हो, खतरे का स्वरूप चाहे जैसा भी हो, अब भारतीय सेना का बास उन्हें ढूंढकर मौत की नींद सुला देगा। भारतीय सेना के रणबांकुरों को अब दुश्मन के नजदीक जाने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि सेना का नया हथियार बास ड्रोन सेना में शामिल होने के लिए तैयार है।
2: भारतीय सेना का स्वदेशी बाज अटैक ड्रोन अब बड़े पैमाने पर बनने के लिए तैयार है, क्योंकि भारत ने इसकी ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी निजी कंपनियों को दे दी है। और सबसे बड़ी और खास बात यह है कि इसे भारतीय सैनिक विकास चतुर्वेदी ने ही डिजाइन किया है, जो ये बात दिखाता है कि भारत किस तरीके से अपने मेक इन इंडिया लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ रहा है और अपनी तकनीक के हिसाब से ही और अपनी जरूरतों के हिसाब से अपने हथियारों का निर्माण कर रहा है।
3: मौजूदा वक्त आमने सामने की लड़ाई का नहीं है। सैनिक युद्ध के मैदान में सीधे कदम नहीं रख रहे, बल्कि तकनीक के दम पर तैयार होने वाले विध्वंसक हथियारों को युद्ध के मैदान में उतारा जा रहा है, जो ऑटोनॉमस तरीके से काम करते हैं। या यूं कहें कि एक बार अगर टारगेट सेट कर दिया तो बाकी का काम वो हथियार करेगा। ड्रोन भी उसी टारगेट का एक हथियार है, जो दुश्मन के टैंक, बंकर, हथियार डिपो को दूर से ही तबाह कर सकता है। अब आपको स्वदेशी ताकत से लबरेज बाज ड्रोन की एक और खासियत के बारे में विस्तार से बताते हैं। 12 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से उड़ने वाला बाज ड्रोन एक मिनट में करीब 1 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। मैदानी इलाके में बाज ड्रोन 80 किलो तक के हथियार लेकर उड़ने की ताकत रखता है। वहीं हाई ऑल्टीट्यूड वाले इलाकों में ये 45 किलो तक का वजन लेकर उड़ सकता है। बाज ड्रोन अपने साथ कई तरह के हथियार ले जा सकता है, जिसमें रॉकेट लॉन्चर का अटैचमेंट इसे बेहद ताकतवर बनाता है। दावा किया जाता है कि ये दुनिया का पहला ऐसा ड्रोन है जो हवा में रहते हुए लॉन्चर से रॉकेट दाग सकता है, जिसकी मदद से दुश्मन के MMG, LMG बंकर, एमिनेशन डिपो और कमांड कंट्रोल सेंटर को आसानी से तबाह किया जा सकता है। रॉकेट लॉन्चर की साइट के साथ ही कैमरे को अटैच किया गया है। कैमरे की मदद से बाज ड्रोन सटीक हमला करता है और फिर सुरक्षित वापस लौट आता है। इसे मैनुअल और ऑटोनोमस मोड में भी ऑपरेट कर सकते हैं। बाज ड्रोन पायलट मोड में 5 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है, वहीं ऑटोनोमस मोड में 10 किलोमीटर की दूरी तक उड़ान भरने में सक्षम है।
1: भारत जो है बाज बटालियन बना रहा है, आधुनिक ड्रोन्स का इस्तेमाल कर रहा है और काफी हद तक ऑटोनोमी दे रहा है। हालांकि फाइनल कंट्रोल अभी भी भारत ने एथिक्स को सोचते हुए अपने हाथ में रखा, लेकिन जरूरत पड़ने पर ये ड्रोन दिशा बदलने में सक्षम है। जब अगर टारगेट अपनी जगह बदल लेता है तो ये भी प्रोएक्टिव होके अपनी जगह बदल के टारगेट का पीछा करते हैं, उसको बर्बाद करते हैं। साथ साथ में अलग अलग तरह के हथियार ले जाने में सक्षम है और इनको देखते हुए बाज बटालियन भी बनाई जा रही है, ताकि बड़ी संख्या में आज जो ड्रोन से होने वाला खतरा है उसमें आक्रामक तौर पर और डिफेंस के तौर पर हम लोग सक्षम रहें।
3: बाज ड्रोन को काउंटर इमरजेंसी, काउंटर टेररिज्म में सर्विलांस और आतंकियों के हाइड आउट को तबाह करने के लिए तैयार किया गया है। दरअसल जम्मू कश्मीर में आए दिन होने वाले आतंकी हमले और हमलों को अंजाम देकर आतंकी घने जंगल में छिप जाते हैं, जिन्हें ढूंढना आसान नहीं होता। लिहाजा अब आतंक के सपोलों को खत्म करने के लिए बाज आने वाला है। बाज ड्रोन की सबसे खास बात है इसका एयर फ्रेम स्वदेशी कार्बन अरामिड कंपोजिट से बना है, जो क्रैश रेजिस्टेंस है और 7.62 mm की गोली हिट को भी सहन कर सकता है।
1: देखा जाए तो बाज ड्रोन काउंटर टेरर और काउंटर सर्विलियंस के लिए काफ़ी कामयाब हो रहा है, क्योंकि दो तरह से इस्तेमाल हो। जो आधुनिक ड्रोन्स हैं वो काफ़ी पास तक जाकर जो टेरर कैंप है उनकी पूरी खबर हासिल करके पीछे भेजते हैं, जिससे कि ऑपरेशन में हेल्प होती है। दूसरी बात, जो एंटी ड्रोन्स हैं वो बाज हैं जिनके ऊपर कैमरा लगा हुआ है और वो जो टेररिस्ट हैं वो नेचुरली ड्यूअल यूज ड्रोन्स का इस्तेमाल करते हैं। वो ड्रोन को देखते हैं तो बाज उसको पकड़ के डिस्ट्रॉय करके फेंक देता है और टेररिस्ट के जो इरादे हैं उनको नाकाम कर देता है।
3: आज दुनिया के कई मुल्क रोबोटिक वॉरफेयर की रेस में लगे हुए हैं। ऐसे रोबोट बनाने की कोशिश हो रही है जो जंग में गोलियां तक बरसा सके। भारतीय सेना ने निगरानी क्षमता बढ़ाने और युद्ध अभियानों में मदद के लिए एक म्यूल यानी कि मल्टी यूटिलिटी लेग इक्विपमेंट डेवलप किया है, जिसे रोबोटिक डॉग भी कहा जाता है। इस रोबोटिक डॉग को अलग अलग हालात में परखा जा रहा है। रोबोटिक म्यूल को 10 किलोमीटर दूर बैठकर भी ऑपरेट किया जा सकता है। एक घंटे चार्ज करने के बाद ये लगातार 10 घंटे तक काम कर सकता है। इनमें एक रिमोट कंट्रोल यूनिट होती है जिससे इसको मॉनिटर किया जा सकता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसकी डिजाइन है जिसकी मदद से हर बाधा को आसानी से पार कर सकता है। ये रेगिस्तान, ऊबड़ खाबड़ जमीन, ऊंचाई और बर्फीले इलाकों में पूरी तरह से काम करने में सक्षम है। -40 से 55 डिग्री सेल्सियस का तापमान भी इसकी क्षमताओं पर कोई असर नहीं डाल सकता।
1: भारतीय सेना ने 100 रोबोटिक म्यूल खरीदे हैं इमरजेंसी पावर्स के अंदर, जो करीब 300 करोड़ की उनकी है। ये जो रोबोटिक म्यूल्स हैं, ये इंफ्रारेड से लेस हैं, यानी कि किसी ऑब्जेक्ट से अगर हीट निकल रही है तो ये उसे पहचान सकते हैं। ये इलेक्ट्रो ऑप्टिक से भी लेस हैं, यानी कि ये पहचान सकते हैं कि ऑप्टिकल यानी कि फिगर को देख के कि कौन है सामने। चूंकि इनमें ये सेंसर्स लगे हुए हैं, इसलिए उन सेंसर्स को 10 किलोमीटर दूर से भी ऑपरेट किया जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है। हाई एल्टीट्यूड में इस्तेमाल किए जाते हैं ये
3: रोबोटिक डॉग में 360 डिग्री घूमने वाला हाई रेजोल्यूशन कैमरा लगाया गया है, जिसकी मदद से रात के अंधेरे में छिपे हुए दुश्मनों को भी ढूंढ निकालना आसान होगा। खास बात ये भी है कि ये रोबोटिक डॉग्स ऊंचाई वाले इलाकों में 15 किलो वजन के सामान को भी अपने साथ आसानी से ले जा सकते हैं।
1: ये रोबोट हो या आदमी हो, किसी भी चीज को जानने के लिए, पहचानने के लिए हमको या तो उसकी फिगर की आवश्यकता होती है, या उसकी ध्वनि की आवश्यकता होती है, या उसकी बॉडी से निकलने वाली हीट वेव्स की आवश्यकता होती है। बस यही उपकरण है जो इनके अंदर लगाए जाते हैं। इनमें थर्मल कैमराज लगाए जाते हैं जो हीट से पिक्चर ले सकते हैं, इंफ्रारेड कैमराज भी लगाए जाते हैं, सेंसर्स भी लगाए जाते हैं।
3: सरहद की रक्षा करने में जुटे जवानों को किसी तरह के नुकसान से बचाते हुए दुश्मन पर गोलीबारी भी कर सकता है।
2: आपको याद होगा कि साल 2023 में भारतीय सेना ने तकरीबन 100 रोबोट डॉग्स को ऊंचाई वाले इलाकों में तैनात किया था, जहां पर ये अपनी सेवाएं दे रहे हैं और आज हमारी सरहद की रखवाली कर रहे हैं।
3: सेना की योजना इन रोबोट्स को ऐसी मुश्किल जगहों पर तैनात करने की है जहां सेना के जवानों को पहुंचने में काफी दिक्कत आती है। इन रोबोट्स की मॉनिटरिंग सेना के जवान करेंगे। इन रोबो डॉग्स के इस्तेमाल से संवेदनशील सीमाओं की सुरक्षा में लगे सशस्त्र बलों पर दबाव महत्वपूर्ण रूप से कम हो सकता है।
2: रण क्षेत्र में फिलहाल यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से।
5: अमेरिका के न्यू मैक्सिको में विश्व का सबसे बड़ा हॉट एयर बैलून उत्सव अल्बुकर्क इंटरनेशनल बैलून फिएस्टा 2026 धूमधाम से शुरू हो चुका है। इस दौरान आकाश में तैरते सैकड़ों गुब्बारों के इस मनमोहक दृश्य को लाइव दिखाने के लिए दुनिया भर से लाखों लोग न्यू मैक्सिको पहुंच रहे हैं।
6: रंग बिरंगे गुब्बारों से भरा है आसमान, नील गगन पर अलग अलग रंगों और डिजाइनों वाले होटल गुब्बारों की उड़ान का ये नजारा बेहद शानदार है। ये तस्वीरें अमेरिका के न्यू मैक्सिको में चल रहे अल्बुकर्क इंटरनेशनल बलून फेस्टा की है। यहाँ सिर्फ पारंपरिक गुब्बारे नहीं बल्कि अलग अलग आकार वाले विशेष बैलून भी आकर्षण का केंद्र बने हैं। इनमें गाय जैसा दिखने वाला और मशहूर स्मोकी बेयर की झलक दिखाने वाले गुब्बारे भी शामिल हैं। न्यू मैक्सिको में गुब्बारों के उत्सव की शुरुआत तड़के खास ड्रोन लाइट शो के साथ हुई। इस शो में हॉट एयर बलून, न्यू मैक्सिको के स्टेट बर्ड ग्रेट रॉडनर, चिली पेपर और मैक्सिकन थीम वाली अनोखी आकृतियां नजर आईं। इसके बाद शुरू हुई गुब्बारों में हवा भरने की तैयारी। जब एक एक कर विशाल बैलून जमीन पर आकार लेने लगे तो देखते ही देखते पूरा फिएस्टा पार्क रंगों से भर गया। सूरज उगने के साथ ही सुबह करीब 7 बजे शुरू हुए इस महोत्सव का सबसे मनमोहक वह पल था जब सैकड़ों हॉट एयर बैलून एक साथ आसमान की ओर उठने लगे और फिर ऐसा लगा जैसे पूरा आसमान रंग बिरंगे गुब्बारों से ढक गया हो। इस नजारे को देखने के लिए अमेरिका ही नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने से बड़ी संख्या में लोग अल्बुकर्क इंटरनेशनल बैलून फिएस्टा पार्क पहुंचे। इस बैलून महोत्सव की शुरुआत सन 1962 में महज 13 गुब्बारों के साथ हुई थी और अब ये दुनिया के सबसे बड़े बैलूनिंग फेस्टिवल में शुमार हो चुका है। आयोजकों के मुताबिक इस बार 500 से ज्यादा बैलून फिएस्टा में हिस्सा ले रहे हैं। इस बार 9 दिनों का ये इंटरनेशनल बैलून फिएस्टा 11 अक्टूबर तक जारी रहेगा और बैलूनिंग के शौकीनों को एक बार फिर से अनूठी यादें संजोने का मौका देगा। रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से।
5: दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे के 140 साल के होने पर नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे ने महोत्सव का आयोजन किया है जिसका शुभारंभ रेलवे के जीएम ने पूरा किया और पूरे उत्साह और पारंपरिक अंदाज में महोत्सव का शुभारंभ किया गया। इस महोत्सव का उद्देश्य दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे की विरासत, इतिहास और आकर्षण को लोगों तक पहुँचाने के लिए कई पहल की गई हैं। दार्जिलिंग के सुकना स्टेशन पर एक फोटो गैलरी बाकायदा लगाई गई है जिसमें दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे की पुरानी यादें, इतिहास को बाकायदा दर्शाया गया है। साहित्य और स्थानीय प्रतिभाओं का संगम भी इस अनूठे उत्सव में देखने को मिल रहा है। पोएट्स ऑफ कम्युनिटी के सहयोग से आयोजित इस फेस्टिवल में रिदम ऑन व्हील्स, टॉय ट्रेन की सवारी, साहित्यिक कार्यक्रम और विभिन्न स्थानों पर कार्यशालाएं आयोजित की जा रही हैं।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
5: उत्तराखंड के खटीमा में आदि रंगोत्सव फेस्टिवल का शुभारंभ मुख्यमंत्री धामी के साथ केंद्रीय मंत्री ज्वेल ओरम और किरण रिजिजू रहे मौजूद। असम, उड़ीसा, महाराष्ट्र सहित 15 राज्यों के जनजाति समूहों के हुनर का प्रदर्शन। संत रविदास नगर के नाम से जाना जाएगा उत्तर प्रदेश का भदोही जिला। कारपेट एक्सपो के उद्घाटन पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ऐलान, जल्द ही सरकार की ओर से अधिसूचना होगी जारी। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में कैप्टन स्मिथ मच्छार के लिए पूजा अर्चना, हवन पूजन के साथ भगवान से की जल्द स्वस्थ होने की कामना, जाबाज के लिए देश भर में प्रार्थनाएं। राजधानी दिल्ली में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के तौर पर विकसित होंगे 5 प्रमुख स्टेडियम। प्रदेश के खेल मंत्री आशीष सूद ने किया ऐलान, खिलाड़ियों को मिलेंगी हर तरह की आधुनिक सुविधाएं। जापान के एगानोया में एशियन गेम्स 2026 का भव्य समापन समारोह, 2 गोल्ड और 1 सिल्वर मेडल जीतने वाली शूटर नीरू ढांडा ने थामा तिरंगा। भारतीय खिलाड़ियों ने जीते कुल 85 मेडल।

नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्वेता झा। आप देख रहे हैं अपना सबसे पसंदीदा और दमदार शो बंदे में है दम। एक बार फिर मैं हाजिर हूं दमदार शख्सियत का एक बेमिसाल सफरनामा लेकर। इस बार जिस शख्सियत का बेनजीर सफरनामा लेकर हम हाजिर हुए हैं, उसने 34,000 फीट की ऊंचाई पर साहस और पराक्रम का ऐसा अफसाना लिख दिया कि पूरी दुनिया उसके सजदे में आ गई है।

आप समझ ही गए होंगे कि इस बार की दमदार शख्सियत कोई और नहीं बल्कि फ्लाई दुबई के विमान में एक सनकी को पायलट के खौफनाक मंसूबों को नाकाम कर 174 बेगुनाह यात्रियों के प्राणों की रक्षा करने वाले कैप्टन स्मिथ मछार हैं। जी हां, हिंदुस्तान का ऐसा सपूत जिसकी वीरता का यशोगान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू समेत दुनिया भर के लोग कर रहे हैं। दरअसल कैप्टन स्मिथ ने अपने साहस, पराक्रम और सूझबूझ से विमान में सवार 174 मासूम लोगों को दर्दनाक मौत से बचा लिया। 34,000 फीट की ऊंचाई पर बुरी तरह जख्मी होने के बाद अगर ये जाबाज सरेंडर कर देता तो विमान का क्रैश होना तय था। वीरता के 120 सेकंड्स की ये दास्तान आपके रोंगटे खड़े कर देगी।

0: साहस, शौर्य और धैर्य की कसौटी है आपात स्थिति। बेहद कठिन और नाजुक वक्त में जो इंसान अपने साहस और सूझबूझ से लोगों को मुसीबत से उबार लेता है, वही रियल हीरो कहलाता है। ऐसा ही एक बिंदास हीरो है हिंदुस्तान का लाल कैप्टन स्मिथ मुच्छार। सामने खड़ी मौत को देखकर भी जिसका साहस और हौसला एक पल के लिए भी पस्त नहीं हुआ। 34,000 फीट की ऊंचाई पर पैदा हुई विकट परिस्थिति में अगर ये हिंदुस्तानी हिम्मत हार जाता तो 27 बच्चों समेत 174 बेगुनाह यात्री अपनी जान से हाथ धो चुके होते। कैप्टन स्मिथ मुच्छार का ये पराक्रम मिड ईयर टेरर कॉन्स्पिरेसी को नाकाम करने वाली हीरोइक हिस्ट्री के बोल्ड चैप्टर के रूप में हमेशा के लिए दर्ज हो चुका है। कैप्टन स्मिथ के साहसिक और ऐतिहासिक पराक्रम से 140 करोड़ हिंदुस्तानियों का सीना गर्व से चौड़ा हो गया है।
1: भारत के कैप्टन स्मिथ ने जिस प्रकार से धैर्य, सूझबूझ और साहस का परिचय करवाया और जैसे आज इजराइल के प्रधानमंत्री ने कहा कि इस हिंदुस्तानी ने 9/11 होने से बचा लिया, हर देशवासी के लिए स्मिथ का ये पराक्रम हमें गौरव से भर देता है।
0: रोंगटे खड़े कर देने वाला ये वाक्या है 30 सितंबर 2026 का, जब फ्लाइट दुबई की कमर्शियल फ्लाइट FZ1073 ने 174 यात्रियों और 6 क्रू मेंबर्स के साथ स्थानीय समय के मुताबिक सुबह 6:49 पर दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से तेल अवीव के लिए उड़ान भरी थी। कैप्टन स्मिथ इस विमान के पायलट थे और उनके साथ कॉकपिट में को पायलट के तौर पर ओमान का एक शख्स था। कैप्टन स्मिथ इस बात से पूरी तरह अनजान थे कि उनका को पायलट इंतहाई खौफनाक इरादों के साथ कॉकपिट में दाखिल हुआ है। दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से टेक ऑफ के करीब 1 घंटे और 42 मिनट बाद विमान जब 34,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भर रहा था, तभी ओमानी को पायलट ने अपने खतरनाक मंसूबों को अंजाम देने के लिए हिंदुस्तान के दिलेर पायलट स्मिथ पर चाकुओं से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। कैप्टन स्मिथ ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उन्हीं का को पायलट मिड ईयर उन पर इस तरह जानलेवा हमला कर देगा। पल भर में बुरी तरह लहूलुहान हो चुके स्मिथ ने इस विकट स्थिति में भी साहस, सूझबूझ और धैर्य नहीं खोया। वो समझ गए कि उनका को पायलट या तो विमान को क्रैश करना चाहता है या फिर इसे अगवा करना चाहता है। बुरी तरह जख्मी हो चुके कैप्टन स्मिथ के मन में एक बात बिजली की तरह कौंध गई, अगर मैं हिम्मत हार गया तो 174 बेगुनाह यात्रियों की दर्दनाक मौत हो जाएगी। ये विचार आते ही जख्मी स्मिथ एक्शन में आ गए। उन्होंने पहला काम ये किया कि विमान का कंट्रोल अपने पास ही रखा, जबकि ओमानी को पायलट का इरादा कंट्रोल अपने हाथ में लेने का था। दूसरा काम उन्होंने ये किया कि ATC को स्क्वाक कोड 7700 भेज दिया, जो सामान्य आपात स्थिति का संकेत होता है। कुछ मिनट बाद उन्होंने कोड 7500 भेजा, जो विमान हाईजैकिंग का संकेत देता है। तीसरा और सबसे बड़ा काम उन्होंने ये किया कि कॉकपिट का रिलीज सिस्टम दबा दिया, जिससे डोर ओपन हो गया। आपको बता दें कि कॉकपिट का डोर सिस्टम ऐसा होता है कि उसे बाहर से किसी भी सूरत में ओपन नहीं किया जा सकता। जाहिर है कैप्टन स्मिथ अगर डोर ओपन नहीं करते तो विमान के दूसरे क्रू मेंबर्स और यात्रियों को हस्तक्षेप का मौका नहीं मिलता और ओमानी को पायलट कुछ ही देर में जख्मी स्मिथ की शायद जान भी ले लेता। बहरहाल जैसे ही कॉकपिट का डोर ओपन हुआ, यात्रियों को सारा माजरा समझ में आ गया। विमान में यात्रा कर रहे यानियू हायून नाम के एक इजरायली नागरिक ने अदम्य साहस का परिचय दिखाते हुए ओमानी को पायलट को खींच कर कॉकपिट से बाहर कर दिया, जिसके बाद दूसरे यात्री उस पर टूट पड़े और चंद मिनटों में उसे काबू में कर लिया। सनकी को पायलट को काबू में करने वाले यानियू हायून भी कैप्टन स्मिथ के शौर्य को सलाम कर रहे हैं।
2: Captain Smith, it's a hero. I think she is opened the door because I believe it's a bee near the door in the side of the cockpit. I think it's opened the door and then is crushed. I want to tell him thank you for that. If not, if we can't go inside the cockpit, where all the passenger, include me, include my family, it's die.
0: काबिले गौर है कि इस विमान में ज्यादातर पैसेंजर्स इजरायली नागरिक थे। जाहिर है कि ओमान के सनकी को पायलट के निशाने पर यही इजरायली नागरिक थे। अगर कैप्टन स्मिथ ने वक्त रहते कॉकपिट का डोर ओपन नहीं किया होता तो विमान में सवार सभी यात्री और क्रू मेंबर्स की दर्दनाक मौत हो जाती। यही वजह है कि इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू साहसिक यात्रियों के साथ कैप्टन स्मिथ के शौर्य, धैर्य और हीरोइक एक्ट की दिल खोलकर सराहना कर रहे हैं।
3: Almost all the passengers on the flight were Israelis. During the flight, as they approached the country, one of the pilots stabbed the other pilot and apparently tried to crash the plane with everyone on board. I spoke with one of the Israeli passengers. He told me that the plane went into a spin and started to dive. He told me that somehow he managed to break into the cockpit with one of the crew members, and together they neutralized the stabbing pilot while he was trying to sabotage the plane's systems. Another flight crew member who was on the plane entered the cockpit and managed to stabilize the aircraft. I salute these heroes who showed resourcefulness and extraordinary courage.
0: इसमें कोई संदेह नहीं कि कॉकपिट के भीतर कैप्टन स्मिथ जब अपने ही सन की को पायलट के खिलाफ वीरता के साथ मुकाबला कर रहे थे, उस दौरान विमान पर सवार 174 यात्रियों का कलेजा मुंह को आ चुका था, क्योंकि उन्हें अपनी मौत बेहद करीब दिख रही थी। दरअसल कैप्टन स्मिथ पर चाकू से ताबड़तोड़ हमले करने के बाद ओमान का बददिमाग को पायलट विमान को क्रैश कराने की कोशिश भी करने लगा था। इस दौरान 34,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा विमान गोता लगाते हुए 2 मिनट के भीतर ही 17,000 फीट नीचे आ चुका था। अगले 1 या 2 मिनट में वो आग के गोले में तब्दील होने ही वाला था कि कैप्टन स्मिथ ने सूझबूझ का परिचय देते हुए रिलीज सिस्टम का बटन प्रेस कर दिया। यही वजह है कि बेंजामिन नेतन्याहू ने कैप्टन स्मिथ को रियल हीरो कहा है। सोशल साइट एक्स पर अपनी पोस्ट में भारतीय कैप्टन की हृदय से तारीफ करते हुए नेतन्याहू ने लिखा है कि असाधारण वीरता प्रदर्शित करने के लिए भारतीय पायलट स्मिथ मुच्छार को मैं सलाम करता हूँ। चाकू से गोदे जाने के बाद गंभीर रूप से जख्मी होने पर भी उन्होंने हार नहीं मानी, सनकी को पायलट का मुकाबला किया और कॉकपिट का डोर ओपन कर दिया। इसकी वजह से विमान में सवार यात्रियों और क्रू मेंबर्स को ओमानी को पायलट को काबू में करने का मौका मिल गया और आसमान में होने वाली एक खौफनाक दुर्घटना टल गई। उन्होंने इजरायली नागरिकों समेत 174 यात्रियों की जान बचा ली। मैं कैप्टन मुछार के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूँ, वो एक सच्चे हीरो हैं। इजरायली प्रधानमंत्री का ये भावुक संदेश इसलिए है क्योंकि विमान में लगभग सभी यात्री इजरायली थे, लेकिन कैप्टन स्मिथ के शौर्य को तो पूरी दुनिया सलाम कर रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी कैप्टन स्मिथ को सच्चा हीरो बता दिया है।
4: Perhaps a terrorist or perhaps a whack job. And he stabbed the pilot. The pilot was in very bad shape. And I guess he still is in very bad shape. But he had the sense to, amazing, to, in a way he was a hero, to open the door. You know, those doors are solid steel. You can't get them open from outside. He was able to fall back and get the door open and scream.
0: साफ है कि कैप्टन स्मिथ रील के नहीं बल्कि रियल के हीरो बनकर पूरी दुनिया में छा गए हैं। वो हीरो हैं सिर्फ इसलिए नहीं कि 34,000 फीट की ऊंचाई पर बहादुरी दिखाकर 174 यात्री और अपने क्रू मेंबर्स की जान बचा ली। वे हीरो हैं इसलिए भी कि पूरी तरह लहूलुहान हो जाने के बाद भी उनके चेहरे पर शिकन की कोई लकीर नहीं दिख रही थी। अलबत्ता बेगुनाह लोगों की जिंदगी बचाने का सुकून जरूर उनके चेहरे पर तैर रहा था। सऊदी अरब के तबूक में सेफ लैंडिंग के बाद विमान के भीतर जब उन्हें फर्स्ट एड दिया जा रहा था तो कैप्टन स्मिथ पूरे आत्मविश्वास के साथ लोगों से बात करते नजर आए। ये बात निर्विवाद सत्य है कि तबाही मचाने वाले हथियार तो बाजार में बिकते हैं, लेकिन युद्ध के समय दुश्मन के सामने सीना तान कर खड़े होने का जो साहस, शौर्य और फौलाद होता है, वो दुनिया के किसी बाजार में नहीं बिकता। फौलादी जिगर तो इंसान अपने साथ लेकर पैदा होता है, और जिसके भीतर फौलादी जिगरा होता है, वही परोपकार के लिए, परमार्थ के लिए अपने प्राणों की आहुति देने से भी पीछे नहीं हटता। ऐसे महानायक के ही सजदे में पूरी दुनिया होती है। इजराइल की मशहूर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर तालिया जोसेफ ने कैप्टन स्मिथ के साहसिक कार्य पर इजराइल की ओर से आभार जताने के लिए जो उद्गार व्यक्त किए हैं, उसने हिंदुस्तानियों के मस्तक को गर्व से और ऊंचा कर दिया है।
5: More than 170 people made it home because of Smit. 170 families that didn't lose their loved ones because he chose to take action and fight. He chose to be a hero. And that's exactly what he is. Smit is right now dealing with the wounds caused by the terrorist and he is in critical condition. So I want to wish him speedy recovery. Refuah shlema. Thank you so much from the people of Israel for your courage and for your sacrifice. We do not take it for granted and we will never forget it.
0: निसंदेह इस घटनाक्रम के बाद हिंदुस्तान की धरती पर जन्मे और पले बढ़े कैप्टन स्मिथ महानायक के तौर पर पूरी दुनिया में सराहे जा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर ओमान का वो को पायलट है जिसके जघन्य कृत की वजह से उसके देश की फचीहत हो रही है, जबकि समूचे हिंदुस्तान को अपने इस महानायक पर गर्व की अनुभूति हो रही है। पूरी दुनिया इस हीरो की स्पीडी रिकवरी के लिए अपनी अपनी आस्था और अकीदे के मुताबिक दुआ कर रही है। उधर 140 करोड़ हिंदुस्तानी अपने महानायक को स्वस्थ और सकुशल देखने के लिए बेकरार हैं।
6: कैप्टन स्मिथ मछार वसुधैव कुटुंबकम के सनातन संस्कार के बीच पले बढ़े हैं। विकट परिस्थिति में अपनी चिंता छोड़कर दूसरों की रक्षा करने की प्रेरणा कैप्टन स्मिथ के संस्कार में है। आपको यह जानकर सुखद आश्चर्य होगा कि स्मिथ बजरंग बली के भक्त हैं। ओमानी मूल के को पायलट ने एक समय जब उनको बुरी तरह से जख्मी कर दिया था और बहुत ज्यादा खून बह जाने की वजह से वो मूर्छित होने लगे थे, तो उन्होंने हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर दिया। इसलिए नहीं कि उनकी जान संकट में थी, बल्कि इसलिए कि 174 बेगुनाह यात्रियों की जान जाने वाली थी। आसमान में की गई कैप्टन स्मिथ की प्रार्थना शायद स्वीकार हो गई, तभी तो समूचा इजराइल उनके नायकत्व से अभिभूत होकर जय हिंद का नारा बुलंद कर रहा है।

0: शरीर लहूलुहान हो, गहरे जख्मों का दर्द असह्य हो, मौत मुंह बाए सामने खड़ी हो, उसके बाद भी अगर अनजान लोगों की जिंदगी की हर चंद हिफाजत का जज्बा जाग जाए तो इसे क्या कहेंगे। ऐसे ही इंसानों को महामानव कहा जाता है और ऐसे महामानवों के आगे समूची मानवता नतमस्तक हो जाती है। विश्व के इतिहास में ये शायद पहली बार हुआ होगा जब हिंदुस्तान के बाहर किसी अन्य देश के नागरिक अपने ही देश की सरजमी पर जय हिंद का जय घोष कर गर्व की अनुभूति कर रहे हैं। कैप्टन स्मिथ के त्याग और बलिदान से अभिभूत होकर इजरायली नागरिक तेल अवीव की सड़कों पर निकलकर जय हिंद का नारा बुलंद कर रहे हैं।
1: जय हिंद।
2: इसराइल खाए।
1: हम आपके आभारी हैं।
2: We are from Israel and with one united voice
1: on behalf of the people of India
2: and the people of Israel.
1: We want to honor and thank Captain Smith
2: for heroically saving the lives of nearly 200 passengers.
0: वसुधैव कुटुंबकम की सनातन प्रेरणा से अनुप्राणित कैप्टन स्मिथ ने बेहद विकट परिस्थिति में ऐसा

0: किलोमीटर दूर अविनाशी काशी की गंगा आरती देश के इस शूरवीर के नाम समर्पित कर दी गई।
1: ने जिस अदम्य साहस भय और कृतज्ञ निष्ठा का परिचय दिया है वह पूरे देश के लिए गर्व की बात है। जिस परिस्थिति में कोई भी व्यक्ति घबरा सकता था उस कठिन समय में उन्होंने अपने कर्तव्य को सर्वोपरि रखते हुए सैकड़ों यात्रियों की सुरक्षा के लिए जिस बहादुरी के साथ सामना किया वह वास्तव में प्रेरणादायक है। गंगा सेवा निधि परिवार बाबा विश्वनाथ एवं भगवती माँ गंगा से उनके जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना करती हूँ।
0: भगवान शिव की नगरी काशी में स्मित के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना के साथ गंगा आरती की गई तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की पावन जन्मस्थली अयोध्या धाम में कैप्टन स्मित के आरोग्य और लंबी उम्र के मनोरथ के साथ साधु संतों ने हनुमान चालीसा का सस्वर पाठ किया।

0: हमारे देश के जानबाज कैप्टन स्मिथ मच्छर जी ने असाधारण व्यक्तित्व और साहस का परिचय देते हुए 174 यात्रियों को सकुशल बचाने का जो है काम किए। इसके लिए मैं इनको जो है स्वास्थ्य की कामना से, यह जल्द स्वस्थ हो इसलिए हनुमान जी महाराज के जो है हनुमान चालीसा और मंत्रों के द्वारा प्रार्थना किया हूँ। हनुमान जी महाराज हमारे ऐसे स्मित मच्छर जी को शक्ति साहस और स्वस्थ करके इनको तत्काल भारत ये आए, यही हम लोगों ने हनुमान जी से प्रार्थना किया।
1: कैसा अद्भुत संयोग है कि जिस कैप्टन स्मिथ के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना के साथ अयोध्या में हनुमान चालीसा का पाठ किया गया, उस कैप्टन ने इजराइल और जॉर्डन के सीमावर्ती क्षेत्र में 34,000 फीट की ऊंचाई पर 174 नागरिकों की रक्षा की शक्ति पाने के लिए इसी हनुमान चालीसा का पाठ किया था। ये बात खुद स्मिथ ने प्रधानमंत्री मोदी के साथ बातचीत के दौरान बताई।
2: मैं एक सिर्फ पॉजिटिविटी में, मैं जब भी मेरे को डर होता है मुझे एक ही चीज आती है, मैं सिर्फ हनुमान चालीसा बोलता हूँ। उस टाइम पे भी मैं सिर्फ हनुमान चालीसा ही बोल रहा था, अब मुझे पता है कि वो भगवान की मेरे को बचाए।
1: दरअसल ओमान मूल के को पायलट ने कॉकपिट में मौजूद क्रैश एक्स से कैप्टन स्मिथ मच्छार के सिर, सीने और हाथ में गहरे जख्म कर दिए थे। उनके जिस्म के कई हिस्सों से बेतहाशा खून निकल रहा था। एक समय ऐसा भी आया जब स्मिथ को लगा कि वे कभी भी होश में नहीं आने वाली मूर्छा में जाने वाले हैं। मूर्छित होने से पहले जैसे ही उनके मन में ये ख्याल आया कि अगर मैं मूर्छित हुआ तो इस विमान में सवार 174 यात्रियों की मौत निश्चित है, उन्होंने हनुमान चालीसा का पाठ शुरू किया और पूरी शक्ति के साथ उठकर कॉकपिट के रिलीज सिस्टम का बटन प्रेस कर दिया। जब कॉकपिट का डोर ओपन हो गया तो विमान में सवार क्रू मेंबर्स और पैसेंजर्स ने बाकी का मोर्चा संभाल लिया। मौत का विकराल रूप सामने खड़ा देखने के बाद भी 174 जिंदगी की चिंता करने वाले कैप्टन स्मिथ का संवेदनात्मक भाव सनातन के कायलजयी ग्रंथ मनुस्मृति के 8वें अध्याय के 15वें श्लोक से पुष्ट हो जाता है।

0: करता है। मनुस्मृति का ये श्लोक है, धर्म्यो हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षितः, तस्मात् धर्मो न हन्तव्यो मा नो धर्मो हतो अवधीत। मनुस्मृति के इस श्लोक का अर्थ है, जो धर्म का नाश करता है धर्म उसका नाश कर देता है, और जो धर्म की रक्षा करता है धर्म भी उसकी रक्षा करता है। इसीलिए धर्म का कभी नाश नहीं होना चाहिए, ताकि नाश हुआ धर्म हमारा नाश न कर सके। मनुस्मृति के इसी श्लोक का भाव तब कैप्टन स्मिथ के मन में जागृत हो गया। उन्होंने अत्यंत विकट स्थिति में धर्म की रक्षा की, और अब धर्म उनकी रक्षा कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी स्वयं अपने देश के साहसी सपूत की हर जरूरत का ख्याल रख रहे हैं। कैप्टन स्मिथ ने तब ये नहीं सोचा होगा कि 174 जिंदगी बचाने का उनका कर्तव्य समूचे देश की भावना का ज्वार बनकर उमड़ पड़ेगा। इसीलिए पीएम मोदी से बात करते समय वे थोड़े भावुक भी हो गए।
1: स्मिथ, अगर मेरे सामने आप भावुक नहीं होंगे तो कहां होंगे।
0: गंभीर रूप से जख्मी स्मिथ का इलाज पहले सऊदी अरब के तबूक के एक अस्पताल में चल रहा था, लेकिन और बेहतर ट्रीटमेंट के लिए उन्हें एयरलिफ्ट करके अबू धाबी के सैन्य अस्पताल लाया गया। उनकी हालत में तेजी से सुधार हो रहा है, और डॉक्टरों के मुताबिक वो खतरे से बाहर हैं। जिस शख्स के आरोग्य के लिए हिंदुस्तान के मंदिरों शिवालयों समेत दुनिया भर के इबादत खानों में प्रार्थनाओं का दौर चल रहा हो, उसे पूर्ण स्वस्थ होने से कौन रोक सकता है। इसमें कोई संदेह नहीं कि अपने फिनोमिनल हीरोइक एक्ट से कैप्टन स्मिथ ने हिंदुस्तान का मान पूरी दुनिया में बढ़ाया है।
2: इसी के साथ बंदे मेहदम में आज आपने देश के जाबाज पायलट स्मिथ मछार के हीरोइक एक्ट की दास्तान सुनी। अगले हफ्ते ऐसी ही किसी और बेमिसाल शख्सियत के सफरनामे के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे।

0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे,
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
6: अमेरिका के न्यू मैक्सिको में विश्व का सबसे बड़ा हॉट एयर बैलून उत्सव अल्बुकर्क इंटरनेशनल बैलून फिएस्टा 2026 धूमधाम से शुरू हो चुका है। इस दौरान आकाश में तैरते सैकड़ों गुब्बारों के इस मनमोहक दृश्य को लाइव दिखाने के लिए दुनिया भर से लाखों लोग न्यू मैक्सिको पहुंच रहे हैं।
7: रंग बिरंगे गुब्बारों से भरा है आसमान, नील गगन पर अलग अलग रंगों और डिजाइनों वाले होटल गुब्बारों की उड़ान का ये नजारा बेहद शानदार है। ये तस्वीरें अमेरिका के न्यू मैक्सिको में चल रहे अल्बुकर्क इंटरनेशनल बलून फेस्टा की है। यहाँ सिर्फ पारंपरिक गुब्बारे ही नहीं बल्कि अलग अलग आकार वाले विशेष बैलून भी आकर्षण का केंद्र बने हैं। इनमें गाय जैसा दिखने वाला और मशहूर स्मोकी बेयर की झलक दिखाने वाले गुब्बारे भी शामिल हैं। न्यू मैक्सिको में गुब्बारों के उत्सव की शुरुआत तड़के खास ड्रोन लाइट शो के साथ हुई। इस शो में हॉट एयर बलून, न्यू मैक्सिको के स्टेट बर्ड ग्रेट रॉडनर, चिली पेपर और मैक्सिकन थीम वाली अनोखी आकृतियां नजर आईं। इसके बाद शुरू हुई गुब्बारों में हवा भरने की तैयारी। जब एक एक कर विशाल बलून जमीन पर आकार लेने लगे तो देखते ही देखते पूरा फिएस्टा पार्क रंगों से भर गया। सूरज उगने के साथ ही सुबह करीब 7 बजे शुरू हुए इस महोत्सव का सबसे मनमोहक वह पल था जब सैकड़ों हॉट एयर बैलून एक साथ आसमान की ओर उठने लगे, और फिर ऐसा लगा जैसे पूरा आसमान रंग बिरंगे गुब्बारों से ढक गया हो। इस नजारे को देखने के लिए अमेरिका ही नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने से बड़ी संख्या में लोग अल्बुकर्क इंटरनेशनल बैलून फिएस्टा पार्क पहुंचे। इस बैलून महोत्सव की शुरुआत सन 1962 में महज 13 गुब्बारों के साथ हुई थी, और अब ये दुनिया के सबसे बड़े बैलूनिंग फेस्टिवल में शुमार हो चुका है। आयोजकों के मुताबिक इस बार 500 से ज्यादा बैलून फिएस्टा में हिस्सा ले रहे हैं। इस बार 9 दिनों का ये इंटरनेशनल बैलून फिएस्टा 11 अक्टूबर तक जारी रहेगा और बैलूनिंग के शौकीनों को एक बार फिर से अनूठी यादें संजोने का मौका देगा। रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आती है।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे,
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से।
6: उत्तराखंड के खटीमा में आदि रंगोत्सव फेस्टिवल का शुभारंभ मुख्यमंत्री धामी के साथ केंद्रीय मंत्री ज्वेल ओरम और किरण रिजिजू रहे मौजूद। असम, उड़ीसा, महाराष्ट्र सहित 15 राज्यों के जनजाति समूहों के हुनर का प्रदर्शन। इससे संत रविदास नगर के नाम से जाना जाएगा उत्तर प्रदेश का भदोही जिला। कारपेट एक्सपो के उद्घाटन पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ऐलान, जल्द ही सरकार की ओर से अधिसूचना होगी जारी। पश्चिम बंगाल के असनसोल में कैप्टन स्मिथ मच्छार के लिए पूजा अर्चना, हवन पूजन के साथ भगवान से की जल्द स्वस्थ होने की कामना, जाबाज के लिए देश भर में प्रार्थनाएं। राजधानी दिल्ली में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के तौर पर विकसित होंगे 5 प्रमुख स्टेडियम। प्रदेश के खेल मंत्री आशीष सूद ने किया ऐलान, खिलाड़ियों को मिलेंगी हर तरह की आधुनिक सुविधाएं। जापान के हेगानोया में एशियन गेम्स 2026 का भव्य समापन समारोह, 2 गोल्ड और 1 सिल्वर मेडल जीतने वाली शूटर नीरू ढांडा ने थामा तिरंगा, भारतीय खिलाड़ियों ने जीते कुल 85 मेडल।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।

0: दुनिया एक बड़े बदलाव के दौर से गुजर रही है और इसी बदलाव की छाप रक्षा क्षेत्र पर भी नजर आ रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टाइम मशीन की तरह काम करने लगे हैं, यानी जो हथियार की हम कल्पना कर रहे थे वो हथियार या सिस्टम हकीकत की शक्ल अख्तियार कर रहे हैं। रोबो टैंक का ट्रायल चल रहा है, सरहद पर रोबो म्यूल गश्त कर रहे हैं। अनमैन ड्रोन की ताकत तो दुनिया देख ही रही है। अब बारी रोबोट आर्मी की है, यानी यूं कहें कि जंग के मैदान में हथियारों से लैस रोबोट्स युद्ध लड़ते दिखाई दे सकते हैं। यूक्रेन इस वक्त रोबोटिक हथियारों की सबसे बड़ी लेबोरेटरी बन चुका है, जहां तमाम तरह के रोबोट्स या कहें कि युद्ध के मैदान में सीधा रोबोट्स को ही उतारा जा रहा है, वहीं पर परीक्षण हो रहा है और यही अब जंग के मैदान में मोर्चा संभाले हुए हैं। यूक्रेन की रक्षा मंत्री ने सीधे तौर पर यह कहा है कि यूक्रेन का मकसद आने वाले समय में रोबोट्स की एक बड़ी आर्मी तैयार करना है, जो रण क्षेत्र में दुश्मन का मुकाबला कर सके। आज दुनिया के कई देश सेना का रोबोटाइजेशन करने में जुटे हैं, जिसमें यूक्रेन भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। यूक्रेन ने रूस पर हमला और अपने सैनिकों की जान बचाने के लिए रोबोट आर्मी नाम का नया कार्यक्रम शुरू किया है, आर्मी ऑफ रोबोट प्रोजेक्ट।
1: यूक्रेन के पूर्व रक्षा मंत्री के द्वारा शुरू किया गया आर्मी और रोबोट्स एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है, जिसमें कि रोबोट्स का इस्तेमाल सोल्जर्स के बदले में किया जाएगा। अभी शुरुआत में इनका इस्तेमाल कैजुअल्टी इवैक्यूएशन, माइन लगाना, माइन निकालना, मशीन गन लोड करना, आगे सर्विलेंस सिस्टम लगाना, जहाँ जहाँ खतरा हो सकता है वहाँ पर इनका इस्तेमाल करके जो उन सोल्जर्स हैं उनकी कैजुअल्टी को कम किया जा सकता है, ख़ास तौर से ऐसे समय में जबकि यूक्रेन के पास सोल्जर्स की कमी हो रही है। 4.5 साल से ज़्यादा समय से लड़ाई चल रही है और इनकी काफ़ी कैजुअल्टीज हो चुकी हैं।
0: यूक्रेन के पूर्व रक्षा मंत्री मिखाइलो फेदोरोव ने 26 सितंबर को आर्मी ऑफ रोबोट प्रोजेक्ट का ऐलान करते हुए कहा, युद्ध के मैदान में ऐसे रोबोट्स तैनात करने की योजना है जो जोखिम भरे काम कर सके। प्रोजेक्ट में इंसानों जैसे दिखने वाले ह्यूमनॉइड रोबोट्स बनाए जाएंगे। ये मशीन गन में गोलियां भरने, बैटरी बदलने और सेंसर लगाने जैसे काम करेंगे। इससे सैनिकों को हथियारों और दूसरे उपकरणों की देखरेख के लिए सीधे मोर्चे पर जाने की जरूरत नहीं होगी। यूक्रेन की आर्मी ऑफ रोबोट प्रोजेक्ट का सबसे महत्वाकांक्षी लक्ष्य ट्रेंच यानी कि खाई और फॉरवर्ड पोस्ट पर सैनिकों की जगह इंसान जैसे दिखने वाले ह्यूमनॉइड रोबोट्स को तैनात करना होगा।
2: युद्ध के समय सेना के लिए रोबोट्स एक तरीके से बिल्कुल वही काम करते हैं जो हमारे सेना के जवान करते हैं, यानी कि ह्यूमनॉइड रोबोट्स हर वो काम कर सकते हैं जो रणक्षेत्र में एक सैनिक करता है। फिर चाहे वो बंकर को तबाह करना हो, दुश्मन की इन्फॉर्मेशन लेना हो, किसी घर की छत पर चढ़ना हो, सीढ़ियों पर चढ़ना हो, हर तरह के काम ह्यूमनॉइड रोबोट्स कर रहे हैं और यही एक बड़ी वजह है कि आने वाले समय में ह्यूमनॉइड रोबोट्स की एक बड़ी फौज तैयार की जा रही है जो आपको रणक्षेत्र में देखने को मिलेगी। और सबसे बड़ी और खास बात यह है कि ये बिल्कुल उसी तरीके से काम करते हैं जैसे इन्हें कमांड दी जाती है।
0: ह्यूमनॉइड रोबोट्स इंसानों की तरह बंदूकें पकड़ सकते हैं, ट्रिगर दबा सकते हैं, मिलिट्री टैंकों को ड्राइव कर सकते हैं और टैंकों के अंदर बैठकर उन्हें ऑपरेट भी कर सकते हैं। केमिकल, बायोलॉजिकल या परमाणु हमले वाले इलाकों में जहां इंसानों का जाना तुरंत मौत को दावत देना है, ये रोबोट्स आसानी से काम कर पाएंगे।
1: ह्यूमनॉइड रोबोट्स की एंट्री एक बड़ा गेम चेंजर साबित होगा, क्योंकि जो ह्यूमनॉइड रोबोट्स हैं ये देखा जाए तो एक इंसान की तरह से इनके पैर, हाथ, सर, आंखें सभी तरह से काम करते हैं। और क्योंकि ज़्यादातर हमारे डिफेंस सिस्टम्स इंसानों की हाइट के हिसाब से बने, हमारे लिए काम करने के हिसाब से बने। ऐसे में जब ये सीढ़ी चढ़ना, उतरना, कहीं पे जाना, अंदर घुसना, कमरे के अंदर जाना, वहाँ काम करना, फायरिंग करना, इस तरह के काम करने में सक्षम होते हैं तो काफ़ी मदद मिल जाएगी उस सेना क्यों जिसके पास ये ह्यूमनॉइड रोबोट्स होंगे। ये अभी माइन लगाना, माइन निकालना, कैजुअल्टी इवैक्यूएशन करना, सर्विलेंस सिस्टम लगाना, मशीन गन लोड करना, इस तरह के सपोर्टिंग काम्स करने में सक्षम है जो कि कैजुअल्टीज को बचाएंगे।
0: दावा यह किया जा रहा है कि रूस यूक्रेन जंग में अब रोबोट सैनिक भी मोर्चा संभाल रहे हैं। यूक्रेन ने पहली बार बड़े पैमाने पर सुसाइड जमीनी रोबोट्स का इस्तेमाल कर रूसी सेना पर हमला करने का दावा किया। यूक्रेन की थर्ड आर्मी कॉर्प्स के मुताबिक मई से सितंबर के आखिरी सप्ताह तक चले ऑपरेशन विवाल्डी में रोबोट और ड्रोन का इस्तेमाल किया गया। रोबोट और ड्रोन की मदद से 15,700 से ज्यादा मिशन पूरे किए गए और रूस के 3,000 सैनिकों को मार गिराया गया। वहीं पूर्वी यूक्रेन के डोनेस्क इलाके में 5 गांव और 3 बस्तियों पर दोबारा कंट्रोल हासिल किया। अगर रूस का दावा सही है तो फिर इसका संकेत साफ है कि रूस यूक्रेन युद्ध में अब जमीनी रोबोट युद्ध का हिस्सा बनते जा रहे हैं। थर्ड आर्मी कॉर्प्स के कमांडर जनरल आंद्री वेलेट्सी ने कहा है कि यूक्रेन दुनिया में पहली बार ड्रोन से रोबोट को दुश्मन के इलाके में उतार कर हमला कर रहा है। दुश्मन को आसमान से हमले का खतरा रहता है, जमीन से नहीं। रूसी सैनिक को वहां से हमले का सामना करना पड़ा जहां उन्हें इसकी उम्मीद तक नहीं थी। यूक्रेन ने ऑपरेशन विवाल्डी में पहली बार पहियों वाले अनमैन्ड ग्राउंड व्हीकल यानी जमीनी रोबोट्स को मोर्चे पर उतारा। हाइना के नाम से जाने जाने वाले 4 पहियों वाले यूजीवीज विस्फोटकों से भरे थे। ऑपरेशन विवाल्डी दरअसल यूक्रेन की थर्ड आर्मी कॉर्प्स की तरफ से रशिया के खिलाफ चलाया गया एक ऑपरेशन था जो कि डोनेस्क क्षेत्र में चलाया गया था और इसमें पहली बार हाइना यूजीवी व्हीकल्स का इस्तेमाल किया गया। दरअसल हाइना एक बहुत ही फुर्तीला यूजीवी व्हीकल है और ये 4 व्हीलर ग्राउंड कैमिकेज रोबोट है जिसे यूक्रेन डिफेंस टेक क्लस्टर ब्रेव 1 की यूजीवी लेबोरेटरी की तरफ से विकसित किया गया है। ऑपरेशन विवाल्डी के दौरान यूक्रेनी सेना की थर्ड आर्मी कॉर्प्स ने रूसी ठिकानों को तबाह करने के लिए हाइना यूजीवीज का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया। 16 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम रफ्तार से चलने की ताकत के साथ हाइना यूजीवीज 20 किलोमीटर तक की दूरी तय कर सकता है। आकार में बेहद कॉम्पैक्ट होने के बावजूद ये 20 से 26 किलोग्राम तक का भारी विस्फोटक ले जाने में सक्षम है। ये दुश्मन के इलाके में जाकर घात लगाकर बैठ सकता है और 30 से 60 घंटे तक एक्टिव रहकर सही मौके पर खुद को विस्फोट से उड़ा भी सकता है। हाइना यूजीवीज को बंकर और डगआउट ब्लास्टर के तौर पर जाना जाता है। ये दुश्मन की अग्रिम चौकियों, भारी किलेबंदी वाले बंकरों और अंडरग्राउंड डगआउट में रेंगते हुए चुपके से पहुंच जाते हैं। फिर इसे रिमोट कंट्रोल से ब्लास्ट कर दिया जाता है जिससे दुश्मन को भारी नुकसान पहुंचता है।
1: हाइना यूजीवी यूक्रेन का एक बड़ा ही जबरदस्त डेवलपमेंट है जो कि एक 4 पहियों वाली गाड़ी को ड्रोन के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, दूर से कंट्रोल करते हैं, जो कि दुश्मन के बंकर के पास, उनके मोर्चे के पास जाकर फट जाता है, अटैक करता है और उसको बर्बाद कर देता है। दूसरी बात यह कि इसका इस्तेमाल लॉजिस्टिक के लिए भी हो सकता है, इसमें सामान भी ले जाया जा सकता है। तीसरी बात यह है कि ये तकरीबन 16 किलोमीटर की स्पीड से चल जाता है, साथ साथ में सकरा होने के कारण और पहियों होने के कारण ये क्रॉस कंट्री और पतले रास्तों से, सकरे रास्तों से भी निकलने में सक्षम है। तो ये काफ़ी मदद साबित हो रही है इसमें, क्योंकि आगे बढ़कर दुश्मन के इलाके में बुलेट प्रूफ बॉडी होने के साथ साथ ये उनके मोर्चों के पास जाके उनको भारी संख्या में कैजुअल्टी कर रहा है।
0: हाइना यूजीवीज का ग्राउंड क्लियरेंस और बनावट ऐसी है कि ये थर्मल कैमरे और रडार की नजर में आसानी से नहीं आ पाते। इसका मॉड्यूलर हल डिजाइन इसे उबड़ खाबड़ रास्तों, मलबे और शहरी इलाकों की तंग गलियों में तेजी से मुड़ने और आगे बढ़ने की आजादी देता है। हाइना रोबोट्स को दुश्मन के इलाके में ले जाकर स्टैंड बाय मोड में छोड़ा जा सकता है। जैसे ही दुश्मन सैनिक या फिर व्हीकल इसके करीब आते हैं, दूर बैठा ऑपरेटर इसे तुरंत एक्टिव कर देता है और हमला हो जाता है।
2: जंगल का शिकारी हाइना यानी कि लकड़बग्घा, और इस रोबोट को बिल्कुल उसी के शिकार करने की रणनीति के तहत ही तैयार किया गया है। ठीक जैसे लकड़बग्घा झुंड में हमला करता है, उसी तरीके से हाइना रोबोट्स को पांच पांच की टुकड़ियों में यूक्रेनी सेना को दिया जाता है, और जब ये जंग के मैदान में उतरते हैं, अलग अलग दिशाओं में हमला करते हैं, तो दुश्मन के लिए इनका मुकाबला कर पाना बेहद मुश्किल हो जाता है। ऑपरेशन वेवाल्डी में यूक्रेनी सेना की थर्ड आर्मी कॉर्प्स ने जिस तरह से अनमैन्ड ग्राउंड व्हीकल्स का इस्तेमाल किया है, उसने मॉडर्न वॉरफेयर का पूरा चेहरा बदल दिया है।
1: ऑपरेशन विवाल्डी में ड्रोन के इस्तेमाल का और रोबोट्स के इस्तेमाल का एक बहुत ही अभूतपूर्व एग्जांपल है, जिसको कहा जाए, जहां पर कि रोबोट्स को हवा से ड्रॉप करके और जो अनमैन्ड ग्राउंड व्हीकल है, हवा से ड्रॉप करके और वो उनको फिर वहाँ पे सेना के आगे जाके वो हमला करने में सक्षम है। यानी कि पहले ये होता था कि सेना आगे जा रही है, पीछे पीछे रोबोट्स और अनमैन्ड ग्राउंड व्हीकल्स आ रहे हैं, लेकिन जहाँ पर सेना के आगे गए हैं, वो आगे के ऑब्स्टेकल क्लियर किए, माइन क्लियर किया, और जरूरत पड़ने में आगे जाके उन्होंने सीधे ब्लास्ट हो गए रिमोट कंट्रोल के द्वारा, तो काफ़ी बड़ी संख्या में इनको सफलता मिली है सोवियत रशिया के मोर्चों के खिलाफ।
2: यूक्रेन के ऑपरेशन वेवाल्डी में पहली बार हवाई और जमीनी ड्रोन्स को मिलाकर एक मदर चाइल्ड आर्किटेक्चर के तहत काम पर लगाया गया। ऑपरेशन वेवाल्डी का सबसे क्रांतिकारी हिस्सा ये था कि यूजीवी को सीधा चल के दुश्मन के इलाके में नहीं जाना था, बल्कि इसे एक बॉम्बर रोबोट की मदद से दुश्मन के इलाके में गिराया गया। वैसे सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि छोटे छोटे बॉम्बर्स की बैटरी खत्म होने से बच गई और इसने सीधे दुश्मन के इलाके में वार किया। रोबोट में लगे कैमरों से आस पास के इलाके पर नजर रखी जाती, इनकी मदद से रूसी सेना के कमांड सेंटर, सैनिकों के ठिकाने, हथियार और सामान रखने की जगहों और नदी पार करने के रास्तों पर हमले किए गए। इस रणनीति का मकसद यूक्रेनी सैनिकों की जान जोखिम में डाले बिना रूसी ठिकानों पर हमला करना था। रूस और यूक्रेन लंबे समय से एक दूसरे के साथ जंग लड़ रहे हैं। हम सभी जानते हैं कि रूस यूक्रेन से ज्यादा ताकतवर है, लेकिन बावजूद इसके यूक्रेन युद्ध के मैदान में डटा हुआ है, और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है ड्रोन्स। रूस का मुकाबला करने के लिए यूक्रेन छोटे और सस्ते ड्रोन्स का मुकाबला कर रहा है, उनको मैदान में उतार रहा है। सबसे बड़ी और खास बात यह है कि इन ड्रोन्स की मदद से यूक्रेन अपने सैनिकों की जान भी बचाता है, और साथ ही साथ रूस का मुकाबला करने के लिए वो पूरी तरह से तैयार है। बस अब इसी रणनीति के तहत आगे काम किया जा रहा है। यूजीवी का इस्तेमाल गोला बारूद, राशन और पानी पहुँचाने के साथ साथ जोखिम भरे इलाकों से घायल सैनिकों को निकालने के लिए भी था। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक अगस्त 2026 में यूजीवी यानी अनमैन्ड ग्राउंड व्हीकल ने 25,000 से ज्यादा रसद और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए, जिससे साल की शुरुआत से अब तक ऐसे अभियानों की कुल संख्या करीब 1,12,000 हो गई। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए नए आंकड़ों के मुताबिक यूक्रेन के सशस्त्र बलों ने साल 2026 में अनमैन्ड सिस्टम का विस्तार करते हुए 5,90,000 से ज्यादा ड्रोन्स का ऑर्डर दिया। रक्षा और आक्रमण ये दो ऐसे पहलू हैं जिनमें अगर सामंजस्य ना हो तो युद्ध की दिशा और दशा बदल सकती है। यानी सीधे शब्दों में अगर समझाया जाए कि अगर तलवार जरूरी है तो ढाल भी जरूरी है। इसी के साथ साथ भारत अब इसी रणनीति पर आगे काम कर रहा है और उसी के तहत अपनी सेना को तैयार कर रहा है। नए नए उपकरणों को इसी तरीके से बनाया जा रहा है जो कि अटैकिंग भी हो और साथ ही साथ दुश्मन के हमले का मुकाबला भी हम सही और अच्छी तरीके से कर सके।
3: घना जंगल हो या फिर ऊंचे ऊंचे पहाड़, शहर की भीड़ भाड़ हो या फिर सुनसान रेगिस्तान, खतरा किसी भी इलाके में हो, खतरे का स्वरूप चाहे जैसा भी हो, अब भारतीय सेना का बास उन्हें ढूंढकर मौत की नींद सुला देगा। भारतीय सेना के रणबांकुरों को अब दुश्मन के नजदीक जाने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि सेना का नया हथियार बास ड्रोन सेना में शामिल होने के लिए तैयार है।
2: भारतीय सेना का स्वदेशी बाज अटैक ड्रोन अब बड़े पैमाने पर बनने के लिए तैयार है, क्योंकि भारत ने इसकी ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी निजी कंपनियों को दे दी है। और सबसे बड़ी और खास बात यह है कि इसे भारतीय सैनिक विकास चतुर्वेदी ने ही डिजाइन किया है, जो ये बात दिखाता है कि भारत किस तरीके से अपने मेक इन इंडिया लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ रहा है और अपनी तकनीक के हिसाब से ही और अपनी जरूरतों के हिसाब से अपने हथियारों का निर्माण कर रहा है।
3: मौजूदा वक्त आमने सामने की लड़ाई का नहीं है। सैनिक युद्ध के मैदान में सीधे कदम नहीं रख रहे, बल्कि तकनीक के दम पर तैयार होने वाले विध्वंसक हथियारों को युद्ध के मैदान में उतारा जा रहा है, जो ऑटोनॉमस तरीके से काम करते हैं। या यूं कहें कि एक बार अगर टारगेट सेट कर दिया तो बाकी का काम वो हथियार करेगा। ड्रोन भी उसी टारगेट का एक हथियार है, जो दुश्मन के टैंक, बंकर, हथियार डिपो को दूर से ही तबाह कर सकता है। अब आपको स्वदेशी ताकत से लबरेज बाज ड्रोन की एक और खासियत के बारे में विस्तार से बताते हैं। 12 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से उड़ने वाला बाज ड्रोन एक मिनट में करीब 1 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। मैदानी इलाके में बाज ड्रोन 80 किलो तक के हथियार लेकर उड़ने की ताकत रखता है। वहीं हाई ऑल्टीट्यूड वाले इलाकों में ये 45 किलो तक का वजन लेकर उड़ सकता है। बाज ड्रोन अपने साथ कई तरह के हथियार ले जा सकता है, जिसमें रॉकेट लॉन्चर का अटैचमेंट इसे बेहद ताकतवर बनाता है। दावा किया जाता है कि ये दुनिया का पहला ऐसा ड्रोन है जो हवा में रहते हुए लॉन्चर से रॉकेट दाग सकता है, जिसकी मदद से दुश्मन के MMG, LMG बंकर, एमिनेशन डिपो और कमांड कंट्रोल सेंटर को आसानी से तबाह किया जा सकता है। रॉकेट लॉन्चर की साइट के साथ ही कैमरे को अटैच किया गया है। कैमरे की मदद से बाज ड्रोन सटीक हमला करता है और फिर सुरक्षित वापस लौट आता है। इसे मैनुअल और ऑटोनोमस मोड में भी ऑपरेट कर सकते हैं। बाज ड्रोन पायलट मोड में 5 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है, वहीं ऑटोनोमस मोड में 10 किलोमीटर की दूरी तक उड़ान भरने में सक्षम है।
1: भारत जो है बाज बटालियन बना रहा है, आधुनिक ड्रोन्स का इस्तेमाल कर रहा है और काफी हद तक ऑटोनोमी दे रहा है। हालांकि फाइनल कंट्रोल अभी भी भारत ने एथिक्स को सोचते हुए अपने हाथ में रखा, लेकिन जरूरत पड़ने पर ये ड्रोन दिशा बदलने में सक्षम है। जब अगर टारगेट अपनी जगह बदल लेता है तो ये भी प्रोएक्टिव होके अपनी जगह बदल के टारगेट का पीछा करते हैं, उसको बर्बाद करते हैं। साथ साथ में अलग अलग तरह के हथियार ले जाने में सक्षम है और इनको देखते हुए बाज बटालियन भी बनाई जा रही है, ताकि बड़ी संख्या में आज जो ड्रोन से होने वाला खतरा है उसमें आक्रामक तौर पर और डिफेंस के तौर पर हम लोग सक्षम रहें।
3: बाज ड्रोन को काउंटर इमरजेंसी, काउंटर टेररिज्म में सर्विलांस और आतंकियों के हाइडआउट को तबाह करने के लिए तैयार किया गया है। दरअसल जम्मू कश्मीर में आए दिन होने वाले आतंकी हमले और हमलों को अंजाम देकर आतंकी घने जंगल में छिप जाते हैं, जिन्हें ढूंढना आसान नहीं होता। लिहाजा अब आतंक के सपोलों को खत्म करने के लिए बाज आने वाला है। बाज ड्रोन की सबसे खास बात है इसका एयर फ्रेम स्वदेशी कार्बन अरामिड कंपोजिट से बना है, जो क्रैश रेजिस्टेंस है और 7.62 mm की गोली हिट को भी सहन कर सकता है।
1: देखा जाए तो बाज ड्रोन काउंटर टेरर और काउंटर सर्विलियंस के लिए काफ़ी कामयाब हो रहा है, क्योंकि दो तरह से इस्तेमाल हो। जो आधुनिक ड्रोन्स हैं वो काफ़ी पास तक जाकर जो टेरर कैंप है उनकी पूरी खबर हासिल करके पीछे भेजते हैं, जिससे कि ऑपरेशन में हेल्प होती है। दूसरी बात, जो एंटी ड्रोन्स हैं वो बाज हैं जिनके ऊपर कैमरा लगा हुआ है और वो जो टेररिस्ट हैं वो नेचुरली ड्यूअल यूज ड्रोन्स का इस्तेमाल करते हैं। वो ड्रोन को देखते हैं तो बाज उसको पकड़ के डिस्ट्रॉय करके फेंक देता है और टेररिस्ट के जो इरादे हैं उनको नाकाम कर देता है।
3: आज दुनिया के कई मुल्क रोबोटिक वॉरफेयर की रेस में लगे हुए हैं। ऐसे रोबोट बनाने की कोशिश हो रही है जो जंग में गोलियां तक बरसा सके। भारतीय सेना ने निगरानी क्षमता बढ़ाने और युद्ध अभियानों में मदद के लिए एक म्यूल यानी कि मल्टी यूटिलिटी लेग इक्विपमेंट डेवलप किया है, जिसे रोबोटिक डॉग भी कहा जाता है। इस रोबोटिक डॉग को अलग अलग हालात में परखा जा रहा है। रोबोटिक म्यूल को 10 किलोमीटर दूर बैठकर भी ऑपरेट किया जा सकता है। एक घंटे चार्ज करने के बाद ये लगातार 10 घंटे तक काम कर सकता है। इनमें एक रिमोट कंट्रोल यूनिट होती है जिससे इसको मॉनिटर किया जा सकता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसकी डिजाइन है जिसकी मदद से हर बाधा को आसानी से पार कर सकता है। ये रेगिस्तान, ऊबड़ खाबड़ जमीन, ऊंचाई और बर्फीले इलाकों में पूरी तरह से काम करने में सक्षम है। -40 से 55 डिग्री सेल्सियस का तापमान भी इसकी क्षमताओं पर कोई असर नहीं डाल सकता।
4: भारतीय सेना ने 100 रोबोटिक म्यूल खरीदे हैं इमरजेंसी पावर्स के अंदर, जो करीब 300 करोड़ की उनकी है। ये जो रोबोटिक म्यूल्स हैं ये इंफ्रारेड से लेस हैं, यानी कि किसी ऑब्जेक्ट से अगर हीट निकल रही है तो ये उसे पहचान सकते हैं। ये इलेक्ट्रो ऑप्टिक से भी लेस हैं, यानी कि ये पहचान सकते हैं कि ऑप्टिकल यानी कि फिगर को देख के कि कौन है सामने। चूंकि इनमें ये सेंसर्स लगे हुए हैं, इसलिए उन सेंसर्स को 10 किलोमीटर दूर से भी ऑपरेट किया जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है। हाई एल्टीट्यूड में इस्तेमाल किए जाते हैं ये
3: रोबोटिक डॉग। में 360 डिग्री घूमने वाला हाई रेजोल्यूशन कैमरा लगाया गया है जिसकी मदद से रात के अंधेरे में छिपे हुए दुश्मनों को भी ढूंढ निकालना आसान होगा। खास बात ये भी है कि ये रोबोटिक डॉग्स ऊंचाई वाले इलाकों में 15 किलो वजन के सामान को भी अपने साथ आसानी से ले जा सकते हैं।
4: ये रोबोट हो या आदमी हो, किसी भी चीज को जानने के लिए, पहचानने के लिए हमको या तो उसकी फिगर की आवश्यकता होती है, या उसकी ध्वनि की आवश्यकता होती है, या उसकी बॉडी से निकलने वाली हीट वेव्स की आवश्यकता होती है। बस यही उपकरण है जो इनके अंदर लगाए जाते हैं। इनमें थर्मल कैमराज लगाए जाते हैं जो हीट से पिक्चर ले सकते हैं, इंफ्रारेड कैमराज भी लगाए जाते हैं, सेंसर्स भी लगाए जाते हैं।
3: सरहद की रक्षा करने में जुटे जवानों को किसी तरह के नुकसान से बचाते हुए ये दुश्मन पर गोलीबारी भी कर सकता है।
2: आपको याद होगा कि साल 2023 में भारतीय सेना ने तकरीबन 100 रोबोट डॉग्स को ऊंचाई वाले इलाकों में तैनात किया था, जहां पर ये अपनी सेवाएं दे रहे हैं और आज हमारी सरहद की रखवाली कर रहे हैं।
3: सेना की योजना इन रोबोट्स को ऐसी मुश्किल जगहों पर तैनात करने की है जहां सेना के जवानों को पहुंचने में काफी दिक्कत आती है। इन रोबोट्स की मॉनिटरिंग सेना के जवान करेंगे। इन रोबो डॉग्स के इस्तेमाल से संवेदनशील सीमाओं की सुरक्षा में लगे सशस्त्र बलों पर दबाव महत्वपूर्ण रूप से कम हो सकता है।
2: रण क्षेत्र में फिलहाल यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
6: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
7: और दुर्भाग्य कहता है
8: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
9: अविश्वास में विश्वास बसता है,
10: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
11: गुड न्यूज टुडे।
12: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से।
13: अमेरिका के न्यू मैक्सिको में विश्व का सबसे बड़ा हॉट एयर बैलून उत्सव
11: अल्बुकर्क इंटरनेशनल बैलून फिएस्टा 2026 धूमधाम से शुरू हो चुका है। इस दौरान आकाश में तैरते सैकड़ों गुब्बारों के इस मनमोहक दृश्य को लाइव दिखाने के लिए दुनिया भर से लाखों लोग न्यू मैक्सिको पहुंच रहे हैं।
13: रंग बिरंगे गुब्बारों से भरा है आसमान, नील गगन पर अलग अलग रंगों और डिजाइनों वाले होटल गुब्बारों की उड़ान का ये नजारा बेहद शानदार है। ये तस्वीरें अमेरिका के न्यू मैक्सिको में चल रहे अल्बुकर्क इंटरनेशनल बलून फेस्टा की है। यहाँ सिर्फ पारंपरिक गुब्बारे ही नहीं बल्कि अलग अलग आकार वाले विशेष बैलून भी आकर्षण का केंद्र बने हैं। इनमें गाय जैसा दिखने वाला और मशहूर स्मोकी बेयर की झलक दिखाने वाले गुब्बारे भी शामिल हैं। न्यू मैक्सिको में गुब्बारों के उत्सव की शुरुआत तड़के खास ड्रोन लाइट शो के साथ हुई। इस शो में हॉट एयर बलून, न्यू मैक्सिको के स्टेट बर्ड ग्रेट रॉडनर, चिली पेपर और मैक्सिकन थीम वाली अनोखी आकृतियां नजर आईं। इसके बाद शुरू हुई गुब्बारों में हवा भरने की तैयारी। जब एक एक कर विशाल बैलून जमीन पर आकार लेने लगे तो देखते ही देखते पूरा फिएस्टा पार्क रंगों से भर गया। सूरज उगने के साथ ही सुबह करीब 7 बजे शुरू हुए इस महोत्सव का सबसे मनमोहक वह पल था जब सैकड़ों हॉट एयर बैलून एक साथ आसमान की ओर उठने लगे और फिर ऐसा लगा जैसे पूरा आसमान रंग बिरंगे गुब्बारों से ढक गया हो। इस नजारे को देखने के लिए अमेरिका ही नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने से बड़ी संख्या में लोग अल्बुकर्क इंटरनेशनल बैलून फिएस्टा पार्क पहुंचे। इस बैलून महोत्सव की शुरुआत सन 1962 में महज 13 गुब्बारों के साथ हुई थी और अब ये दुनिया के सबसे बड़े बैलूनिंग फेस्टिवल में शुमार हो चुका है। आयोजकों के मुताबिक इस बार 500 से ज्यादा बलून फिएस्टा में हिस्सा ले रहे हैं। इस बार 9 दिनों का ये इंटरनेशनल बैलून फिएस्टा 11 अक्टूबर तक जारी रहेगा और बैलूनिंग के शौकीनों को एक बार फिर से अनूठी यादें संजोने का मौका देगा। रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को। गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से।
11: दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे के 140 साल के होने पर नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे ने महोत्सव का आयोजन किया है जिसका शुभारंभ रेलवे के जीएम ने पूरा किया और पूरे उत्साह और पारंपरिक अंदाज में महोत्सव का शुभारंभ किया गया। इस महोत्सव का उद्देश्य दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे की विरासत, इतिहास और आकर्षण को लोगों तक पहुंचाने के लिए कई पहल की गई हैं। दार्जिलिंग के सुकना स्टेशन पर एक फोटो गैलरी बाकायदा लगाई गई है जिसमें दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे की पुरानी यादें, इतिहास को बाकायदा दर्शाया गया है। साहित्य और स्थानीय प्रतिभाओं का संगम भी इस अनूठे उत्सव में देखने को मिल रहा है। पोएट्स ऑफ कम्युनिटी के सहयोग से आयोजित इस फेस्टिवल में रिदम ऑन व्हील्स, टॉय ट्रेन की सवारी, साहित्यिक कार्यक्रम और विभिन्न स्थानों पर कार्यशालाएं आयोजित की जा रही हैं।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए।
11: उत्तराखंड के खटीमा में आदि रंगोत्सव फेस्टिवल का शुभारंभ मुख्यमंत्री धामी के साथ केंद्रीय मंत्री ज्वेल ओरम और किरण रिजिजू रहे मौजूद। असम, उड़ीसा, महाराष्ट्र सहित 15 राज्यों के जनजाति समूहों के हुनर का प्रदर्शन। ऐसे संत रविदास नगर के नाम से जाना जाएगा उत्तर प्रदेश का भदोही जिला। कारपेट एक्सपो के उद्घाटन पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ऐलान, जल्द ही सरकार की ओर से अधिसूचना होगी जारी। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में कैप्टन स्मिथ मच्छार के लिए पूजा अर्चना, हवन पूजन के साथ भगवान से की जल्द स्वस्थ होने की कामना, जाबाज के लिए देश भर में प्रार्थनाएं। राजधानी दिल्ली में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के तौर पर विकसित होंगे 5 प्रमुख स्टेडियम। प्रदेश के खेल मंत्री आशीष सूद ने किया ऐलान, खिलाड़ियों को मिलेंगी हर तरह की आधुनिक सुविधाएं। जापान के एगानोया में एशियन गेम्स 2026 का भव्य समापन समारोह, 2 गोल्ड और 1 सिल्वर मेडल जीतने वाली शूटर नीरू ढांडा ने थामा तिरंगा। भारतीय खिलाड़ियों ने जीते कुल 85 मेडल।

नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्वेता झा। आप देख रहे हैं अपना सबसे पसंदीदा और दमदार शो बंदे में है दम। एक बार फिर मैं हाजिर हूं दमदार शख्सियत का एक बेमिसाल सफरनामा लेकर। इस बार जिस शख्सियत का बेनजीर सफरनामा लेकर हम हाजिर हुए हैं, उसने 34,000 फीट की ऊंचाई पर साहस और पराक्रम का ऐसा अफसाना लिख दिया कि पूरी दुनिया उसके सजदे में आ गई है।

आप समझ ही गए होंगे कि इस बार की दमदार शख्सियत कोई और नहीं बल्कि फ्लाई दुबई के विमान में एक सनकी को पायलट के खौफनाक मंसूबों को नाकाम कर 174 बेगुनाह यात्रियों के प्राणों की रक्षा करने वाले कैप्टन स्मिथ मछार हैं। जी हां, हिंदुस्तान का ऐसा सपूत जिसकी वीरता का यशोगान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू समेत दुनिया भर के लोग कर रहे हैं। दरअसल कैप्टन स्मिथ ने अपने साहस, पराक्रम और सूझबूझ से विमान में सवार 174 मासूम लोगों को दर्दनाक मौत से बचा लिया। 34,000 फीट की ऊंचाई पर बुरी तरह जख्मी होने के बाद अगर ये जाबाज सरेंडर कर देता तो विमान का क्रैश होना तय था। वीरता के 120 सेकंड्स की ये दास्तान आपके रोंगटे खड़े कर देगी।

0: साहस, शौर्य और धैर्य की कसौटी है आपात स्थिति। बेहद कठिन और नाजुक वक्त में जो इंसान अपने साहस और सूझबूझ से लोगों को मुसीबत से उबार लेता है, वही रियल हीरो कहलाता है। ऐसा ही एक बिंदास हीरो है हिंदुस्तान का लाल कैप्टन स्मित मुच्छार। सामने खड़ी मौत को देखकर भी जिसका साहस और हौसला एक पल के लिए भी पस्त नहीं हुआ। 34,000 फीट की ऊंचाई पर पैदा हुई विकट परिस्थिति में अगर ये हिंदुस्तानी हिम्मत हार जाता तो 27 बच्चों समेत 174 बेगुनाह यात्री अपनी जान से हाथ धो चुके होते। कैप्टन स्मित मुच्छार का ये पराक्रम मिड ईयर टेरर कॉन्स्पिरेसी को नाकाम करने वाली हीरोइक हिस्ट्री के बोल्ड चैप्टर के रूप में हमेशा के लिए दर्ज हो चुका है। कैप्टन स्मित के साहसिक और ऐतिहासिक पराक्रम से 140 करोड़ हिंदुस्तानियों का सीना गर्व से चौड़ा हो गया है।
1: भारत के कैप्टन स्मित ने जिस प्रकार से धैर्य, सूझबूझ और साहस का परिचय करवाया, और जैसे आज इजराइल के प्रधानमंत्री ने कहा कि इस हिंदुस्तानी ने 9/11 होने से बचा लिया, हर देशवासी के लिए स्मित का ये पराक्रम हमें गौरव से भर देता है।
0: रोंगटे खड़े कर देने वाला ये वाक्या है 30 सितंबर 2026 का, जब फ्लाइट दुबई की कमर्शियल फ्लाइट FZ1073 ने 174 यात्रियों और 6 क्रू मेंबर्स के साथ स्थानीय समय के मुताबिक सुबह 6:49 पर दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से तेल अवीव के लिए उड़ान भरी थी। कैप्टन स्मित इस विमान के पायलट थे और उनके साथ कॉकपिट में को पायलट के तौर पर ओमान का एक शख्स था। कैप्टन स्मित इस बात से पूरी तरह अनजान थे कि उनका को पायलट इंतहाई खौफनाक इरादों के साथ कॉकपिट में दाखिल हुआ है। दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से टेक ऑफ के करीब 1:42 बाद विमान जब 34,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भर रहा था, तभी ओमानी को पायलट ने अपने खतरनाक मंसूबों को अंजाम देने के लिए हिंदुस्तान के दिलेर पायलट स्मित पर चाकुओं से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। कैप्टन स्मित ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उन्हीं का को पायलट मिड ईयर उन पर इस तरह जानलेवा हमला कर देगा। पल भर में बुरी तरह लहूलुहान हो चुके स्मित ने इस विकट स्थिति में भी साहस, सूझबूझ और धैर्य नहीं खोया। वो समझ गए कि उनका को पायलट या तो विमान को क्रैश करना चाहता है या फिर इसे अगवा करना चाहता है। बुरी तरह जख्मी हो चुके कैप्टन स्मित के मन में एक बात बिजली की तरह कौंध गई, अगर मैं हिम्मत हार गया तो 174 बेगुनाह यात्रियों की दर्दनाक मौत हो जाएगी। ये विचार आते ही जख्मी स्मित एक्शन में आ गए। उन्होंने पहला काम ये किया कि विमान का कंट्रोल अपने पास ही रखा, जबकि ओमानी को पायलट का इरादा कंट्रोल अपने हाथ में लेने का था। दूसरा काम उन्होंने ये किया कि ATC को स्क्वाक कोड 7700 भेज दिया, जो सामान्य आपात स्थिति का संकेत होता है। कुछ मिनट बाद उन्होंने कोड 7500 भेजा, जो विमान हाईजैकिंग का संकेत देता है। तीसरा और सबसे बड़ा काम उन्होंने ये किया कि कॉकपिट का रिलीज सिस्टम दबा दिया, जिससे डोर ओपन हो गया। आपको बता दें कि कॉकपिट का डोर सिस्टम ऐसा होता है कि उसे बाहर से किसी भी सूरत में ओपन नहीं किया जा सकता। जाहिर है कैप्टन स्मित अगर डोर ओपन नहीं करते तो विमान के दूसरे क्रू मेंबर्स और यात्रियों को हस्तक्षेप का मौका नहीं मिलता, और ओमानी को पायलट कुछ ही देर में जख्मी स्मित की शायद जान भी ले लेता। बहरहाल जैसे ही कॉकपिट का डोर ओपन हुआ, यात्रियों को सारा माजरा समझ में आ गया। विमान में यात्रा कर रहे यानीव हायून नाम के एक इजरायली नागरिक ने अदम्य साहस का परिचय दिखाते हुए ओमानी को पायलट को खींच कर कॉकपिट से बाहर कर दिया, जिसके बाद दूसरे यात्री उस पर टूट पड़े और चंद मिनटों में उसे काबू में कर लिया। सनकी को पायलट को काबू में करने वाले यानीव हायून भी कैप्टन स्मित के शौर्य को सलाम कर रहे हैं।
2: Captain Smith, it's a hero. I think she is opened the door because I believe it's a big near the door, in the side of the cockpit. I think it's opened the door and then is crashed. I want to tell him thank you for that. If not, if we can't go inside the cockpit, where all the passenger, include me, include my family, it's the die.
0: काबिले गौर है कि इस विमान में ज्यादातर पैसेंजर्स इजरायली नागरिक थे। जाहिर है कि ओमान के सनकी को पायलट के निशाने पर यही इजरायली नागरिक थे। अगर कैप्टन स्मिथ ने वक्त रहते कॉकपिट का डोर ओपन नहीं किया होता तो विमान में सवार सभी यात्री और क्रू मेंबर्स की दर्दनाक मौत हो जाती। यही वजह है कि इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू साहसिक यात्रियों के साथ कैप्टन स्मिथ के शौर्य, धैर्य और हीरोइक एक्ट की दिल खोल कर सराहना कर रहे हैं।
3: Almost all the passengers on the flight were Israelis. During the flight, as they approached the country, one of the pilots stabbed the other pilot and apparently tried to crash the plane with everyone on board. I spoke with one of the Israeli passengers. He told me that the plane went into a spin and started to dive. He told me that somehow he managed to break into the cockpit with one of the crew members, and together they neutralized the stabbing pilot while he was trying to sabotage the plane's systems. Another flight crew member who was on the plane entered the cockpit and managed to stabilize the aircraft. I salute these heroes who showed resourcefulness and extraordinary courage.
0: इसमें कोई संदेह नहीं कि कॉकपिट के भीतर कैप्टन स्मिथ जब अपने ही सन की को पायलट के खिलाफ वीरता के साथ मुकाबला कर रहे थे, उस दौरान विमान पर सवार 174 यात्रियों का कलेजा मुंह को आ चुका था, क्योंकि उन्हें अपनी मौत बेहद करीब दिख रही थी। दरअसल कैप्टन स्मिथ पर चाकू से ताबड़तोड़ हमले करने के बाद ओमान का बददिमाग को पायलट विमान को क्रैश कराने की कोशिश भी करने लगा था। इस दौरान 34,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा विमान गोता लगाते हुए 2 मिनट के भीतर ही 17,000 फीट नीचे आ चुका था। अगले 1 या 2 मिनट में वो आग के गोले में तब्दील होने ही वाला था कि कैप्टन स्मिथ ने सूझबूझ का परिचय देते हुए रिलीज सिस्टम का बटन प्रेस कर दिया। यही वजह है कि बेंजामिन नेतन्याहू ने कैप्टन स्मिथ को रियल हीरो कहा है। सोशल साइट एक्स पर अपनी पोस्ट में भारतीय कैप्टन की हृदय से तारीफ करते हुए नेतन्याहू ने लिखा है कि असाधारण वीरता प्रदर्शित करने के लिए भारतीय पायलट स्मिथ मुच्छार को मैं सलाम करता हूं। चाकू से गोदे जाने के बाद गंभीर रूप से जख्मी होने पर भी उन्होंने हार नहीं मानी, सनकी को पायलट का मुकाबला किया और कॉकपिट का डोर ओपन कर दिया। इसकी वजह से विमान में सवार यात्रियों और क्रू मेंबर्स को ओमानी को पायलट को काबू में करने का मौका मिल गया और आसमान में होने वाली एक खौफनाक दुर्घटना टल गई। उन्होंने इजरायली नागरिकों समेत 174 यात्रियों की जान बचा ली। मैं कैप्टन मुछार के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। वो एक सच्चे हीरो हैं। इजरायली प्रधानमंत्री का ये भावुक संदेश इसलिए है क्योंकि विमान में लगभग सभी यात्री इजरायली थे, लेकिन कैप्टन स्मिथ के शौर्य को तो पूरी दुनिया सलाम कर रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी कैप्टन स्मिथ को सच्चा हीरो बता दिया है।
4: Perhaps a terrorist or perhaps a whack job. And he stabbed the pilot. The pilot was in very bad shape. And I guess he still is in very bad shape. But he had the sense to, amazing, to, in a way he was a hero, to open the door. You know, those doors are solid steel. You can't get them open from outside. He was able to fall back and get the door open and scream.
0: साफ है कि कैप्टन स्मिथ रील के नहीं बल्कि रियल के हीरो बनकर पूरी दुनिया में छा गए हैं। वो हीरो हैं सिर्फ इसलिए नहीं कि 34,000 फीट की ऊंचाई पर बहादुरी दिखाकर 174 यात्री और अपने क्रू मेंबर्स की जान बचा ली। वे हीरो हैं इसलिए भी कि पूरी तरह लहूलुहान हो जाने के बाद भी उनके चेहरे पर शिकन की कोई लकीर नहीं दिख रही थी। अलबत्ता बेगुनाह लोगों की जिंदगी बचाने का सुकून जरूर उनके चेहरे पर तैर रहा था। सऊदी अरब के तबूक में सेफ लैंडिंग के बाद विमान के भीतर जब उन्हें फर्स्ट एड दिया जा रहा था तो कैप्टन स्मिथ पूरे आत्मविश्वास के साथ लोगों से बात करते नजर आए। ये बात निर्विवाद सत्य है कि तबाही मचाने वाले हथियार तो बाजार में बिकते हैं, लेकिन युद्ध के समय दुश्मन के सामने सीना तान कर खड़े होने का जो साहस, शौर्य और फौलाद होता है, वो दुनिया के किसी बाजार में नहीं बिकता। फौलादी जिगर तो इंसान अपने साथ लेकर पैदा होता है, और जिसके भीतर फौलादी जिगरा होता है, वही परोपकार के लिए, परमार्थ के लिए अपने प्राणों की आहुति देने से भी पीछे नहीं हटता। ऐसे महानायक के ही सजदे में पूरी दुनिया होती है। इजराइल की मशहूर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर तालिया जोसेफ ने कैप्टन स्मिथ के साहसिक कार्य पर इजराइल की ओर से आभार जताने के लिए जो उद्गार व्यक्त किए हैं, उसने हिंदुस्तानियों के मस्तक को गर्व से और ऊंचा कर दिया है।
5: More than 170 people made it home because of Smith. 170 families that didn't lose their loved ones because he chose to take action and fight. He chose to be a hero. And that's exactly what he is. Smith is right now dealing with the wounds caused by the terrorist and he is in critical condition. So I want to wish him speedy recovery. Refuah shlema. Thank you so much from the people of Israel for your courage and for your sacrifice. We do not take it for granted and we will never forget it.
0: निसंदेह इस घटनाक्रम के बाद हिंदुस्तान की धरती पर जन्मे और पले बढ़े कैप्टन स्मिथ महानायक के तौर पर पूरी दुनिया में सराहे जा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर ओमान का वो को पायलट है जिसके जघन्य कृत की वजह से उसके देश की फचीहत हो रही है, जबकि समूचे हिंदुस्तान को अपने इस महानायक पर गर्व की अनुभूति हो रही है। पूरी दुनिया इस हीरो की स्पीडी रिकवरी के लिए अपनी अपनी आस्था और अकीदे के मुताबिक दुआ कर रही है। उधर 140 करोड़ हिंदुस्तानी अपने महानायक को स्वस्थ और सकुशल देखने के लिए बेकरार हैं।
6: कैप्टन स्मिथ मछार वसुधैव कुटुंबकम के सनातन संस्कार के बीच पले बढ़े हैं। विकट परिस्थिति में अपनी चिंता छोड़कर दूसरों की रक्षा करने की प्रेरणा कैप्टन स्मिथ के संस्कार में है। आपको यह जानकर सुखद आश्चर्य होगा कि स्मिथ बजरंगबली के भक्त हैं। ओमानी मूल के कोपायलट ने एक समय जब उनको बुरी तरह से जख्मी कर दिया था और बहुत ज्यादा खून बह जाने की वजह से वो मूर्छित होने लगे थे, तो उन्होंने हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर दिया। इसलिए नहीं कि उनकी जान संकट में थी, बल्कि इसलिए कि 174 बेगुनाह यात्रियों की जान जाने वाली थी। आसमान में की गई कैप्टन स्मिथ की प्रार्थना शायद स्वीकार हो गई, तभी तो समूचा इजराइल उनके नायकत्व से अभिभूत होकर जय हिंद का नारा बुलंद कर रहा है।

0: शरीर लहूलुहान हो, गहरे जख्मों का दर्द असह्य हो, मौत मुंह बाए सामने खड़ी हो, उसके बाद भी अगर अनजान लोगों की जिंदगी की हर चंद हिफाजत का जज्बा जाग जाए तो इसे क्या कहेंगे। ऐसे ही इंसानों को महामानव कहा जाता है और ऐसे महामानवों के आगे समूची मानवता नतमस्तक हो जाती है। विश्व के इतिहास में ये शायद पहली बार हुआ होगा जब हिंदुस्तान के बाहर किसी अन्य देश के नागरिक अपने ही देश की सरजमी पर जय हिंद का जय घोष कर गर्व की अनुभूति कर रहे हैं। कैप्टन स्मिथ के त्याग और बलिदान से अभिभूत होकर इजरायली नागरिक तेल अवीव की सड़कों पर निकलकर जय हिंद का नारा बुलंद कर रहे हैं।
1: जय हिंद।
2: अमिसाइल खाए।
1: हम आपके आभारी हैं।
2: We are from Israel and with one united voice
1: on behalf of the people of India
2: and the people of Israel,
1: we want to honor and thank Captain Smith
2: for heroically saving the lives of nearly 200 passengers.
0: वसुधैव कुटुम्बकम की सनातन प्रेरणा से अनुप्राणित कैप्टन स्मिथ ने बेहद विकट परिस्थिति में ऐसा अद्भुत जज्बा दिखाया कि हिंदुस्तान और इजराइल की सामाजिक, सांस्कृतिक और भौगोलिक भिन्नता भावनात्मक एकता का रूप लेकर समूची वसुधा को सुरभित कर रही है। इजराइल की सड़कों पर जय हिंद का नारा गूंज रहा है तो तेल अवीव से 4,696 किलोमीटर दूर अविनाशी काशी की गंगा आरती देश के इस शूरवीर के नाम समर्पित कर दी गई।
3: कैप्टन स्मिथ सुभाष ने जिस अदम्य साहस, धैर्य और कृतज्ञ निष्ठा का परिचय दिया है वह पूरे देश के लिए गर्व की बात है। जिस परिस्थिति में कोई भी व्यक्ति घबरा सकता था उस कठिन समय में उन्होंने अपने कर्तव्य को सर्वोपरि रखते हुए सैकड़ों यात्रियों की सुरक्षा के लिए जिस बहादुरी के साथ सामना किया वह वास्तव में प्रेरणादायक है।

0: उनके जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना करती हूँ।
1: भगवान शिव की नगरी काशी में स्मित के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना के साथ गंगा आरती की गई तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की पावन जन्मस्थली अयोध्या धाम में कैप्टन स्मित के आरोग्य और लंबी उम्र के मनोरथ के साथ साधु संतों ने हनुमान चालीसा का सस्वर पाठ किया।

0: हमारे देश के जानबाज कैप्टन स्मिथ मच्छर जी ने असाधारण व्यक्तित्व और साहस का परिचय देते हुए 174 यात्रियों को सकुशल बचाने का जो है काम किए। इसके लिए मैं इनको जो है स्वास्थ्य की कामना से, यह जल्द स्वस्थ हो इसलिए हनुमान जी महाराज के जो है हनुमान चालीसा और मंत्रों के द्वारा प्रार्थना किया हूँ। हनुमान जी महाराज हमारे ऐसे स्मित मच्छर जी को शक्ति साहस और स्वस्थ करके इनको तत्काल भारत ये आए, यही हम लोगों ने हनुमान जी से प्रार्थना किया हूँ।
1: कैसा अद्भुत संयोग है कि जिस कैप्टन स्मिथ के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना के साथ अयोध्या में हनुमान चालीसा का पाठ किया गया, उस कैप्टन ने इजराइल और जॉर्डन के सीमावर्ती क्षेत्र में 34,000 फीट की ऊंचाई पर 174 नागरिकों की रक्षा की शक्ति पाने के लिए इसी हनुमान चालीसा का पाठ किया था। ये बात खुद स्मिथ ने प्रधानमंत्री मोदी के साथ बातचीत के दौरान बताई। दरअसल ओमान मूल के को पायलट ने कॉकपिट में मौजूद क्रैश एक्स से कैप्टन स्मिथ मच्छार के सिर, सीने और हाथ में गहरे जख्म कर दिए थे। उनके जिस्म के कई हिस्सों से बेतहाशा खून निकल रहा था। एक समय ऐसा भी आया जब स्मिथ को लगा कि वे कभी भी होश में नहीं आने वाली मूर्छा में जाने वाले हैं। मूर्छित होने से पहले जैसे ही उनके मन में ये ख्याल आया कि अगर मैं मूर्छित हुआ तो इस विमान में सवार 174 यात्रियों की मौत निश्चित है, उन्होंने हनुमान चालीसा का पाठ शुरू किया और पूरी शक्ति के साथ उठकर कॉकपिट के रिलीज सिस्टम का बटन प्रेस कर दिया। जब कॉकपिट का डोर ओपन हो गया तो विमान में सवार क्रू मेंबर्स और पैसेंजर्स ने बाकी का मोर्चा संभाल लिया। विकराल रूप सामने खड़ा देखने के बाद भी 174 जिंदगी की चिंता करने वाले कैप्टन स्मिथ का संवेदनात्मक भाव सनातन के कालजयी ग्रंथ मनुस्मृति के 8वें अध्याय के 15वें श्लोक से पुष्ट हो जाता है। मनुस्मृति का ये श्लोक है, धर्म्यो हतोहन्ति धर्मो रक्षति रक्षितः, तस्मात् धर्मो न हन्तव्यो मा नो धर्मो हतो अवधीत। मनुस्मृति के इस श्लोक का अर्थ है, जो धर्म का नाश करता है धर्म उसका नाश कर देता है, और जो धर्म की रक्षा करता है धर्म भी उसकी रक्षा करता है। इसीलिए धर्म का कभी नाश नहीं होना चाहिए, ताकि नाश हुआ धर्म हमारा नाश न कर सके। मनुस्मृति के इसी श्लोक का भाव तब कैप्टन स्मिथ के मन में जागृत हो गया। उन्होंने अत्यंत विकट स्थिति में धर्म की रक्षा की और अब धर्म उनकी रक्षा कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी स्वयं अपने देश के साहसी सपूत की हर जरूरत का

0: ख्याल रख रहे हैं। कैप्टन स्मिथ ने तब ये नहीं सोचा होगा कि 174 जिंदगी बचाने का उनका कर्तव्य समूचे देश की भावना का ज्वार बनकर उमड़ पड़ेगा। इसीलिए पीएम मोदी से बात करते समय वे थोड़े भावुक भी हो गए।
1: स्मिथ, अगर मेरे सामने आप भावुक नहीं होंगे तो कहां होंगे।
0: गंभीर रूप से जख्मी स्मिथ का इलाज पहले सऊदी अरब के तबूक के एक अस्पताल में चल रहा था, लेकिन और बेहतर ट्रीटमेंट के लिए उन्हें एयरलिफ्ट करके अबू धाबी के सैन्य अस्पताल लाया गया। उनकी हालत में तेजी से सुधार हो रहा है और डॉक्टरों के मुताबिक वो खतरे से बाहर हैं। जिस शख्स के आरोग्य के लिए हिंदुस्तान के मंदिरों, शिवालयों समेत दुनिया भर के इबादत खानों में प्रार्थनाओं का दौर चल रहा हो, उसे पूर्ण स्वस्थ होने से कौन रोक सकता है। इसमें कोई संदेह नहीं कि अपने फिनोमिनल हीरोइक एक्ट से कैप्टन स्मिथ ने हिंदुस्तान का मान पूरी दुनिया में बढ़ाया है।
2: इसी के साथ बंदे मेहदम में आज आपने देश के जाबाज पायलट स्मिथ मछार के हीरोइक एक्ट की दास्तान सुनी। अगले हफ्ते ऐसे ही किसी और बेमिसाल शख्सियत के सफरनामे के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे।

0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
2: अमेरिका के न्यू मैक्सिको में विश्व का सबसे बड़ा हॉट एयर बैलून उत्सव अल्बुकर्क इंटरनेशनल बैलून फिएस्टा 2026 धूमधाम से शुरू हो चुका है। इस दौरान आकाश में तैरते सैकड़ों गुब्बारों के इस मनमोहक दृश्य को लाइव दिखाने के लिए दुनिया भर से लाखों लोग न्यू मैक्सिको पहुंच रहे हैं।
3: रंग बिरंगे गुब्बारों से भरा है आसमान, नील गगन पर अलग अलग रंगों और डिजाइनों वाले होटल गुब्बारों की उड़ान का ये नजारा बेहद शानदार है। ये तस्वीरें अमेरिका के न्यू मैक्सिको में चल रहे अल्बुकर्क इंटरनेशनल बलून फेस्टा की है। यहाँ सिर्फ पारंपरिक गुब्बारे ही नहीं बल्कि अलग अलग आकार वाले विशेष बैलून भी आकर्षण का केंद्र बने हैं। इनमें गाय जैसा दिखने वाला और मशहूर स्मोकी बेयर की झलक दिखाने वाले गुब्बारे भी शामिल हैं। न्यू मैक्सिको में गुब्बारों के उत्सव की शुरुआत तड़के खास ड्रोन लाइट शो के साथ हुई। इस शो में हॉट एयर बलून, न्यू मैक्सिको के स्टेट बर्ड ग्रेट रॉडनर, चिली पेपर और मैक्सिकन थीम वाली अनोखी आकृतियां नजर आईं। इसके बाद शुरू हुई गुब्बारों में हवा भरने की तैयारी। जब एक एक कर विशाल बैलून जमीन पर आकार लेने लगे तो देखते ही देखते पूरा फिएस्टा पार्क रंगों से भर गया। सूरज उगने के साथ ही सुबह करीब 7 बजे शुरू हुए इस महोत्सव का सबसे मनमोहक वह पल था जब सैकड़ों हॉट एयर बैलून एक साथ आसमान की ओर उठने लगे और फिर ऐसा लगा जैसे पूरा आसमान रंग बिरंगे गुब्बारों से ढक गया हो। इस नजारे को देखने के लिए अमेरिका ही नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने से बड़ी संख्या में लोग अल्बुकर्क इंटरनेशनल बैलून फिएस्टा पार्क पहुंचे। इस बैलून महोत्सव की शुरुआत सन 1962 में महज 13 गुब्बारों के साथ हुई थी और अब ये दुनिया के सबसे बड़े बैलूनिंग फेस्टिवल में शुमार हो चुका है।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आ रही है। गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से।
2: उत्तराखंड के खटीमा में आदि रंगोत्सव फेस्टिवल का शुभारंभ मुख्यमंत्री धामी के साथ केंद्रीय मंत्री ज्वेल ओरम और किरण रिजिजू रहे मौजूद। असम, ओडिशा, महाराष्ट्र सहित 15 राज्यों के जनजाति समूहों के हुनर का प्रदर्शन। इससे संत रविदास नगर के नाम से जाना जाएगा उत्तर प्रदेश का भदोही जिला। कारपेट एक्सपो के उद्घाटन पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ऐलान, जल्द ही सरकार की ओर से अधिसूचना होगी जारी। पश्चिम बंगाल के असनसोल में कैप्टन स्मिथ मच्छार के लिए पूजा अर्चना, हवन पूजन के साथ भगवान से की जल्द स्वस्थ होने की कामना, जाबाज के लिए देश भर में प्रार्थनाएं। राजधानी दिल्ली में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के तौर पर विकसित होंगे 5 प्रमुख स्टेडियम। प्रदेश के खेल मंत्री आशीष सूद ने किया ऐलान, खिलाड़ियों को मिलेंगी हर तरह की आधुनिक सुविधाएं। जापान के हेगानोया में एशियन गेम्स 2026 का भव्य समापन समारोह, 2 गोल्ड और 1 सिल्वर मेडल जीतने वाली शूटर नीरू ढांडा ने थामा तिरंगा। भारतीय खिलाड़ियों ने जीते कुल 85 मेडल।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाती है।

0: दुनिया एक बड़े बदलाव के दौर से गुजर रही है और इसी बदलाव की छाप रक्षा क्षेत्र पर भी नजर आ रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टाइम मशीन की तरह काम करने लगे हैं, यानी जो हथियार की हम कल्पना कर रहे थे वो हथियार या फिर सिस्टम हकीकत की शक्ल अख्तियार कर रहे हैं। रोबो टैंक का ट्रायल चल रहा है, सरहद पर रोबो म्यूल गश्त कर रहे हैं। अनमैन ड्रोन की ताकत तो दुनिया देख ही रही है। अब बारी रोबोट आर्मी की है, यानी यूं कहें कि जंग के मैदान में हथियारों से लैस रोबोट्स युद्ध लड़ते दिखाई दे सकते हैं।
1: यूक्रेन इस वक्त रोबोटिक हथियारों की सबसे बड़ी लेबोरेटरी बन चुका है, जहां तमाम तरह के रोबोट्स या कहें कि युद्ध के मैदान में सीधा रोबोट्स को ही उतारा जा रहा है, वहीं पर परीक्षण हो रहा है और यही अब जंग के मैदान में मोर्चा संभाले हुए हैं। यूक्रेन की रक्षा मंत्री ने सीधे तौर पर यह कहा है कि यूक्रेन का मकसद आने वाले समय में रोबोट्स की एक बड़ी आर्मी तैयार करना है जो रण क्षेत्र में दुश्मन का मुकाबला कर सके।
0: आज दुनिया के कई देश सेना का रोबोटाइजेशन करने में जुटे हैं, जिसमें यूक्रेन भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। यूक्रेन ने रूस पर हमला और अपने सैनिकों की जान बचाने के लिए रोबोट आर्मी नाम का नया कार्यक्रम शुरू किया है, आर्मी ऑफ रोबोट प्रोजेक्ट।
2: यूक्रेन के पूर्व रक्षा मंत्री के द्वारा शुरू किया गया आर्मी और रोबोट्स एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है, जिसमें कि रोबोट्स का इस्तेमाल सोल्जर्स के बदले में किया जाएगा। अभी शुरुआत में इनका इस्तेमाल कैजुअल्टी इवैक्यूएशन, माइन लगाना, माइन निकालना, मशीन गन लोड करना, आगे सर्विलेंस सिस्टम लगाना, जहाँ जहाँ खतरा हो सकता है वहाँ पर इनका इस्तेमाल करके जो उन सोल्जर्स हैं उनकी कैजुअल्टी को कम किया जा सकता है, खास तौर से ऐसे समय में जबकि यूक्रेन के पास सोल्जर्स की कमी हो रही है। 4.5 साल से ज्यादा समय से लड़ाई चल रही है और इनकी काफी कैजुअल्टीज हो चुकी है।
0: यूक्रेन के पूर्व रक्षा मंत्री मिखाइलो फेदोरोव ने 26 सितंबर को आर्मी ऑफ रोबोट प्रोजेक्ट का ऐलान करते हुए कहा, युद्ध के मैदान में ऐसे रोबोट्स तैनात करने की योजना है जो जोखिम भरे काम कर सके। प्रोजेक्ट में इंसानों जैसे दिखने वाले ह्यूमनॉइड रोबोट्स बनाए जाएंगे। ये मशीन गन में गोलियां भरने, बैटरी बदलने और सेंसर लगाने जैसे काम करेंगे। इससे सैनिकों को हथियारों और दूसरे उपकरणों की देखरेख के लिए सीधे मोर्चे पर जाने की जरूरत नहीं होगी। यूक्रेन की आर्मी ऑफ रोबोट प्रोजेक्ट का सबसे महत्वाकांक्षी लक्ष्य ट्रेंच यानी कि खाई और फॉरवर्ड पोस्ट पर सैनिकों की जगह इंसान जैसे दिखने वाले ह्यूमनॉइड रोबोट्स को तैनात करना होगा।
1: युद्ध के समय सेना के लिए रोबोट्स एक तरीके से बिल्कुल वही काम करते हैं जो हमारे सेना के जवान करते हैं, यानी कि ह्यूमनॉइड रोबोट्स हर वो काम कर सकते हैं जो रण क्षेत्र में एक सैनिक करता है। फिर चाहे वो बंकर को तबाह करना हो, दुश्मन की इंफॉर्मेशन लेना हो, किसी घर की छत पर चढ़ना हो, सीढ़ियों पर चढ़ना हो, हर तरह के काम ह्यूमनॉइड रोबोट्स कर रहे हैं और यही एक बड़ी वजह है कि आने वाले समय में ह्यूमनॉइड रोबोट्स की एक बड़ी फौज तैयार की जा रही है जो आपको रण क्षेत्र में देखने को मिलेगी। और सबसे बड़ी और खास बात यह है कि ये बिल्कुल उसी तरीके से काम करते हैं जैसे इन्हें कमांड दी जाती है।
0: ह्यूमनॉइड रोबोट्स इंसानों की तरह बंदूकें पकड़ सकते हैं, ट्रिगर दबा सकते हैं, मिलिट्री टैंकों को ड्राइव कर सकते हैं और टैंकों के अंदर बैठकर उन्हें ऑपरेट भी कर सकते हैं। केमिकल, बायोलॉजिकल या परमाणु हमले वाले इलाकों में जहां इंसानों का जाना तुरंत मौत को दावत देना है, ये रोबोट्स आसानी से काम कर पाएंगे।
2: ह्यूमनॉइड रोबोट्स की एंट्री एक बड़ा गेम चेंजर साबित होगा, क्योंकि जो ह्यूमनॉइड रोबोट्स है ये देखा जाए तो एक इंसान की तरह से इनके पैर, हाथ, सर, आंखें सभी तरह से काम करते हैं। और क्योंकि ज़्यादातर हमारे डिफेंस सिस्टम्स इंसानों की हाइट्स के हिसाब से बने, हमारे लिए काम करने के हिसाब से बने। ऐसे में जब ये सीढ़ी चढ़ना उतरना, कहीं पे जाना, अंदर घुसना, कमरे के अंदर जाना, वहाँ काम करना, फायरिंग करना, इस तरह के काम करने में सक्षम होते हैं तो काफ़ी मदद मिल जाएगी उस सेना क्यों जिसके पास ये ह्यूमनॉइड रोबोट्स होंगे। ये अभी माइन लगाना, माइन निकालना, कैजुअल्टी इवैक्यूएशन करना, सर्विलेंस सिस्टम लगाना, मशीन गन लोड करना, इस तरह के सपोर्टिंग काम्स करने में सक्षम है जो कि कैजुअल्टीज को बचाएंगे।
0: दावा यह किया जा रहा है कि रूस यूक्रेन जंग में अब रोबोट सैनिक भी मोर्चा संभाल रहे हैं। यूक्रेन ने पहली बार बड़े पैमाने पर सुसाइड जमीनी रोबोट्स का इस्तेमाल कर रूसी सेना पर हमला करने का दावा किया। यूक्रेन की थर्ड आर्मी कॉर्प्स के मुताबिक मई से सितंबर के आखिरी सप्ताह तक चले ऑपरेशन विवाल्डी में रोबोट और ड्रोन का इस्तेमाल किया गया। रोबोट और ड्रोन की मदद से 15,700 से ज्यादा मिशन पूरे किए गए और रूस के 3,000 सैनिकों को मार गिराया गया। वहीं पूर्वी यूक्रेन के डोनेस्क इलाके में 5 गांव और 3 बस्तियों पर दोबारा कंट्रोल हासिल किया। अगर रूस का दावा सही है तो फिर इसका संकेत साफ है कि रूस यूक्रेन युद्ध में अब जमीनी रोबोट युद्ध का हिस्सा बनते जा रहे हैं। थर्ड आर्मी कॉर्प्स के कमांडर जनरल आंद्री वेलेट्सी ने कहा है कि यूक्रेन दुनिया में पहली बार ड्रोन से रोबोट को दुश्मन के इलाके में उतार कर हमला कर रहा है। दुश्मन को आसमान से हमले का खतरा रहता है, जमीन से नहीं। रूसी सैनिक को वहां से हमले का सामना करना पड़ा जहां उन्हें इसकी उम्मीद तक नहीं थी। यूक्रेन ने ऑपरेशन विवाल्डी में पहली बार पहियों वाले अनमैन्ड ग्राउंड व्हीकल यानी जमीनी रोबोट्स को मोर्चे पर उतारा। हाइना के नाम से जाने जाने वाले 4 पहियों वाले यूजीवीज विस्फोटकों से भरे थे।
1: ऑपरेशन विवाल्डी दरअसल यूक्रेन की थर्ड आर्मी कॉर्प्स की तरफ से रशिया के खिलाफ चलाया गया एक ऑपरेशन था जो कि डोनेस्क क्षेत्र में चलाया गया था और इसमें पहली बार हाइना यूजीवी व्हीकल्स का इस्तेमाल किया गया। दरअसल हाइना एक बहुत ही फुर्तीला यूजीवी व्हीकल है और ये 4 व्हीलर ग्राउंड कैमिकेज रोबोट है जिसे यूक्रेन डिफेंस टेक क्लस्टर ब्रेव 1 की यूजीवी लेबोरेटरी की तरफ से विकसित किया गया है।
0: ऑपरेशन विवाल्डी के दौरान यूक्रेनी सेना की थर्ड आर्मी कॉर्प्स ने रूसी ठिकानों को तबाह करने के लिए हाइना यूजीवीज का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया। 16 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम रफ्तार से चलने की ताकत के साथ हाइना यूजीवीज 20 किलोमीटर तक की दूरी तय कर सकता है। आकार में बेहद कॉम्पैक्ट होने के बावजूद ये 20 से 26 किलोग्राम तक का भारी विस्फोटक ले जाने में सक्षम है। ये दुश्मन के इलाके में जाकर घात लगाकर बैठ सकता है और 30 से 60 घंटे तक एक्टिव रहकर सही मौके पर खुद को विस्फोट से उड़ा भी सकता है। हाइना यूजीवीज को बंकर और डगआउट ब्लास्टर के तौर पर जाना जाता है। ये दुश्मन की अग्रिम चौकियों, भारी किलेबंदी वाले बंकरों और अंडरग्राउंड डगआउट में रेंगते हुए चुपके से पहुंच जाते हैं। फिर इसे रिमोट कंट्रोल से ब्लास्ट कर दिया जाता है जिससे दुश्मन को भारी नुकसान पहुंचता है।
2: हाइना यूजीवी यूक्रेन का एक बड़ा ही जबरदस्त डेवलपमेंट है जो कि एक 4 पहियों वाली गाड़ी को ड्रोन के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, दूर से कंट्रोल करते हैं, जो कि दुश्मन के बंकर के पास, उनके मोर्चे के पास जाकर फट जाता है, अटैक करता है और उसको बर्बाद कर देता है। दूसरी बात यह कि इसका इस्तेमाल लॉजिस्टिक के लिए भी हो सकता है, इसमें सामान भी ले जाया जा सकता है। तीसरी बात यह है कि ये तकरीबन 16 किलोमीटर की स्पीड से चल जाता है, साथ साथ में सकरा होने के कारण और पहियों होने के कारण ये क्रॉस कंट्री और पतले रास्तों से, सकरे रास्तों से भी निकलने में सक्षम है। तो ये काफ़ी मदद साबित हो रही है इसमें, क्योंकि आगे बढ़कर दुश्मन के इलाके में बुलेट प्रूफ बॉडी होने के साथ साथ ये उनके मोर्चों के पास जाके उनको भारी संख्या में कैजुअल्टी कर रहा है।
0: हाइना यूजीवीज का ग्राउंड क्लियरेंस और बनावट ऐसी है कि ये थर्मल कैमरे और रडार की नजर में आसानी से नहीं आ पाते। इसका मॉड्यूलर हल डिजाइन इसे उबड़ खाबड़ रास्तों, मलबे और शहरी इलाकों की तंग गलियों में तेजी से मुड़ने और आगे बढ़ने की आजादी देता है। हाइना रोबोट्स को दुश्मन के इलाके में ले जाकर स्टैंड बाय मोड में छोड़ा जा सकता है। जैसे ही दुश्मन सैनिक या फिर व्हीकल इसके करीब आते हैं, दूर बैठा ऑपरेटर इसे तुरंत एक्टिव कर देता है और हमला हो जाता है।
1: जंगल का शिकारी हाइना यानी कि लकड़बग्घा, और इस रोबोट को बिल्कुल उसी के शिकार करने की रणनीति के तहत ही तैयार किया गया है। ठीक जैसे लकड़बग्घा झुंड में हमला करता है, उसी तरीके से हाइना रोबोट्स को पांच पांच की टुकड़ियों में यूक्रेनी सेना को दिया जाता है, और जब ये जंग के मैदान में उतरते हैं, अलग अलग दिशाओं में हमला करते हैं, तो दुश्मन के लिए इनका मुकाबला कर पाना बेहद मुश्किल हो जाता है।
0: ऑपरेशन विवाल्डी में यूक्रेनी सेना की थर्ड आर्मी कॉर्प्स ने जिस तरह से अनमैन्ड ग्राउंड व्हीकल्स का इस्तेमाल किया है, उसने मॉडर्न वॉरफेयर का पूरा चेहरा बदल दिया है।
2: ऑपरेशन विवाल्डी में ड्रोन के इस्तेमाल का और रोबोट्स के इस्तेमाल का एक बहुत ही अभूतपूर्व एग्जाम्पल है, जिसको कहा जाए, जहाँ पर कि रोबोट्स को हवा से ड्रॉप करके और जो अनमैन ग्राउंड व्हीकल है, हवा से ड्रॉप करके और वो उनको फिर वहाँ पे सेना के आगे जाके वो हमला करने में सक्षम है। यानी कि पहले ये होता था कि सेना आगे जा रही है, पीछे पीछे रोबोट्स और अनमैन ग्राउंड व्हीकल्स आ रहे हैं, लेकिन जहाँ पर सेना के आगे गए हैं, वो आगे का ऑब्स्टेकल क्लियर किए, माइन क्लियर किया और जरूरत पड़ने में आगे जाके उन्होंने सीधे ब्लास्ट हो गए रिमोट कंट्रोल के द्वारा, तो काफ़ी बड़ी संख्या में इनको सफलता मिली है सोवियत रशिया के मोर्चों के खिलाफ।
0: यूक्रेन के ऑपरेशन विवाल्डी में पहली बार हवाई और जमीनी ड्रोन्स को मिलाकर एक मदर चाइल्ड आर्किटेक्चर के तहत काम पर लगाया गया।
1: ऑपरेशन विवाल्डी का सबसे क्रांतिकारी हिस्सा ये था कि यूजीवी को सीधा चल के दुश्मन के इलाके में नहीं जाना था, बल्कि इसे एक बॉम्बर रोबोट की मदद से दुश्मन के इलाके में गिराया गया। वैसे सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि छोटे छोटे बॉम्बर्स की बैटरी खत्म होने से बच गई और इसने सीधे दुश्मन के इलाके में वार किया।
0: रोबोट में लगे कैमरों से आसपास के इलाके पर नजर रखी जाती, इनकी मदद से रूसी सेना के कमांड सेंटर, सैनिकों के ठिकाने, हथियार और सामान रखने की जगहों और नदी पार करने के रास्तों पर हमले किए गए। इस रणनीति का मकसद यूक्रेनी सैनिकों की जान जोखिम में डाले बिना रूसी ठिकानों पर हमला करना था।
1: रूस और यूक्रेन लंबे समय से एक दूसरे के साथ जंग लड़ रहे हैं। हम सभी जानते हैं कि रूस यूक्रेन से ज्यादा ताकतवर है, लेकिन बावजूद इसके यूक्रेन युद्ध के मैदान में डटा हुआ है और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है ड्रोन्स। रूस का मुकाबला करने के लिए यूक्रेन छोटे और सस्ते ड्रोन्स का मुकाबला कर रहा है, उनको मैदान में उतार रहा है। सबसे बड़ी और खास बात यह है कि इन ड्रोन्स की मदद से यूक्रेन अपने सैनिकों की जान भी बचाता है और साथ ही साथ रूस का मुकाबला करने के लिए वो पूरी तरह से तैयार है। बस अब इसी रणनीति के तहत आगे काम किया जा रहा है।
0: यूजीवी का इस्तेमाल गोला बारूद, राशन और पानी पहुँचाने के साथ साथ जोखिम भरे इलाकों से घायल सैनिकों को निकालने के लिए भी था। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक अगस्त 2026 में यूजीवी यानी अनमैन्ड ग्राउंड व्हीकल ने 25,000 से ज्यादा रसद और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए, जिससे साल की शुरुआत से अब तक ऐसे अभियानों की कुल संख्या करीब 1,12,000 हो गई। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए नए आंकड़ों के मुताबिक यूक्रेन के सशस्त्र बलों ने साल 2026 में अनमैन सिस्टम का विस्तार करते हुए 5,90,000 से ज्यादा ड्रोन्स का ऑर्डर दिया।
1: रक्षा और आक्रमण ये दो ऐसे पहलू हैं जिनमें अगर सामंजस्य ना हो तो युद्ध की दिशा और दशा बदल सकती है। यानी सीधे शब्दों में अगर समझाया जाए कि अगर तलवार जरूरी है तो ढाल भी जरूरी है। इसी के साथ साथ भारत अब इसी रणनीति पर आगे काम कर रहा है और उसी के तहत अपनी सेना को तैयार कर रहा है। नए नए उपकरणों को इसी तरीके से बनाया जा रहा है जो कि अटैकिंग भी हो और साथ ही साथ दुश्मन के हमले का मुकाबला भी हम सही और अच्छी तरीके से कर सकें।
0: घना जंगल हो या फिर ऊंचे ऊंचे पहाड़, शहर की भीड़ भाड़ हो या फिर सुनसान रेगिस्तान, खतरा किसी भी इलाके में हो, खतरे का स्वरूप चाहे जैसा भी हो, अब भारतीय सेना का बास उन्हें ढूंढकर मौत की नींद सुला देगा। भारतीय सेना के रणबांकुरों को अब दुश्मन के नजदीक जाने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि सेना का नया हथियार बास ड्रोन सेना में शामिल होने के लिए तैयार है।
1: भारतीय सेना का स्वदेशी बाज अटैक ड्रोन अब बड़े पैमाने पर बनने के लिए तैयार है, क्योंकि भारत ने इसकी ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी निजी कंपनियों को दे दी है। और सबसे बड़ी और खास बात यह है कि इसे भारतीय सैनिक विकास चतुर्वेदी ने ही डिजाइन किया है, जो ये बात दिखाता है कि भारत किस तरीके से अपने मेक इन इंडिया लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ रहा है और अपनी तकनीक के हिसाब से ही और अपनी जरूरतों के हिसाब से अपने हथियारों का निर्माण कर रहा है।
0: मौजूदा वक्त आमने सामने की लड़ाई का नहीं है। सैनिक युद्ध के मैदान में सीधे कदम नहीं रख रहे, बल्कि तकनीक के दम पर तैयार होने वाले विध्वंसक हथियारों को युद्ध के मैदान में उतारा जा रहा है, जो ऑटोनॉमस तरीके से काम करते हैं। या यूं कहें कि एक बार अगर टारगेट सेट कर दिया तो बाकी का काम वो हथियार करेगा। ड्रोन भी उसी टारगेट का एक हथियार है, जो दुश्मन के टैंक, बंकर, हथियार डिपो को दूर से ही तबाह कर सकता है। अब आपको स्वदेशी ताकत से लबरेज बाज ड्रोन की एक और खासियत के बारे में विस्तार से बताते हैं। 12 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से उड़ने वाला बाज ड्रोन एक मिनट में करीब 1 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। मैदानी इलाके में बाज ड्रोन 80 किलो तक के हथियार लेकर उड़ने की ताकत रखता है। वहीं हाई ऑल्टीट्यूड वाले इलाकों में ये 45 किलो तक का वजन लेकर उड़ सकता है। बाज ड्रोन अपने साथ कई तरह के हथियार ले जा सकता है, जिसमें रॉकेट लॉन्चर का अटैचमेंट इसे बेहद ताकतवर बनाता है। दावा किया जाता है कि ये दुनिया का पहला ऐसा ड्रोन है जो हवा में रहते हुए लॉन्चर से रॉकेट दाग सकता है, जिसकी मदद से दुश्मन के MMG, LMG बंकर, एमिनेशन डिपो और कमांड कंट्रोल सेंटर को आसानी से तबाह किया जा सकता है। रॉकेट लॉन्चर की साइट के साथ ही कैमरे को अटैच किया गया है। कैमरे की मदद से बाज ड्रोन सटीक हमला करता है और फिर सुरक्षित वापस लौट आता है। इसे मैनुअल और ऑटोनोमस मोड में भी ऑपरेट कर सकते हैं। बाज ड्रोन पायलट मोड में 5 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है, वहीं ऑटोनोमस मोड में 10 किलोमीटर की दूरी तक उड़ान भरने में सक्षम है।
2: भारत जो है बाज बटालियन बना रहा है, आधुनिक ड्रोन्स का इस्तेमाल कर रहा है और काफी हद तक ऑटोनोमी दे रहा है। हालांकि फाइनल कंट्रोल अभी भी भारत ने एथिक्स को सोचते हुए अपने हाथ में रखा, लेकिन जरूरत पड़ने पर ये ड्रोन दिशा बदलने में सक्षम है। जब अगर टारगेट अपनी जगह बदल लेता है तो ये भी प्रोएक्टिव होके अपनी जगह बदल के टारगेट का पीछा करते हैं, उसको बर्बाद करते हैं। साथ साथ में अलग अलग तरह के हथियार ले जाने में सक्षम है और इनको देखते हुए बाज बटालियन भी बनाई जा रही है, ताकि बड़ी संख्या में आज जो ड्रोन से होने वाला खतरा है उसमें हम आक्रामक तौर पर और डिफेंस के तौर पर हम लोग सक्षम रहें।
0: बाज ड्रोन को काउंटर इमरजेंसी, काउंटर टेररिज्म में सर्विलांस और आतंकियों के हाइडआउट को तबाह करने के लिए तैयार किया गया है। दरअसल जम्मू कश्मीर में आए दिन होने वाले आतंकी हमले और हमलों को अंजाम देकर आतंकी घने जंगल में छिप जाते हैं, जिन्हें ढूंढना आसान नहीं होता। लिहाजा अब आतंक के सपोलों को खत्म करने के लिए बाज आने वाला है। बाज ड्रोन की सबसे खास बात है इसका एयरफ्रेम स्वदेशी कार्बन अरामिड कंपोजिट से बना है, जो क्रैश रेजिस्टेंस है और 7.62 mm की गोली हिट को भी सहन कर सकता है।
2: देखा जाए तो बाज ड्रोन काउंटर टेरर और काउंटर सर्विलियंस के लिए काफ़ी कामयाब हो रहा है, क्योंकि दो तरह से इस्तेमाल हो। जो आधुनिक ड्रोन्स हैं वो काफ़ी पास तक जाकर जो टेरर कैंप है उनकी पूरी खबर हासिल करके पीछे भेजते हैं, जिससे कि ऑपरेशन में हेल्प होती है। दूसरी बात, जो एंटी ड्रोन्स हैं वो बाज हैं जिनके ऊपर कैमरा लगा हुआ है और वो जो टेररिस्ट हैं वो नेचुरली ड्यूअल यूज ड्रोन्स का इस्तेमाल करते हैं। वो ड्रोन को देखते हैं तो बाज उसको पकड़ के डिस्ट्रॉय करके फेंक देता है और टेररिस्ट के जो इरादे हैं उनको नाकाम कर देता है।
0: आज दुनिया के कई मुल्क रोबोटिक वॉरफेयर की रेस में लगे हुए हैं। ऐसे रोबोट बनाने की कोशिश हो रही है जो जंग में गोलियां तक बरसा सके। भारतीय सेना ने निगरानी क्षमता बढ़ाने और युद्ध अभियानों में मदद के लिए एक म्यूल यानी कि मल्टी यूटिलिटी लेग इक्विपमेंट डेवलप किया है, जिसे रोबोटिक डॉग भी कहा जाता है। इस रोबोटिक डॉग को अलग अलग हालात में परखा जा रहा है। रोबोटिक म्यूल को 10 किलोमीटर दूर बैठकर भी ऑपरेट किया जा सकता है। एक घंटे चार्ज करने के बाद ये लगातार 10 घंटे तक काम कर सकता है। इनमें एक रिमोट कंट्रोल यूनिट होती है जिससे इसको मॉनिटर किया जा सकता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसकी डिजाइन है जिसकी मदद से हर बाधा को आसानी से पार कर सकता है। ये रेगिस्तान, ऊबड़ खाबड़ जमीन, ऊंचाई और बर्फीले इलाकों में पूरी तरह से काम करने में सक्षम है। -40 से 55 डिग्री सेल्सियस का तापमान भी इसकी क्षमताओं पर कोई असर नहीं डाल सकता।
3: भारतीय सेना ने 100 रोबोटिक म्यूल खरीदे हैं इमरजेंसी पावर्स के अंदर, जो करीब 300 करोड़ की उनकी है। ये जो रोबोटिक म्यूल्स हैं ये इंफ्रारेड से लेस हैं, यानी कि किसी ऑब्जेक्ट से अगर हीट निकल रही है तो ये उसे पहचान सकते हैं। ये इलेक्ट्रो ऑप्टिक से भी लेस हैं, यानी कि ये पहचान सकते हैं कि ऑप्टिकल यानी कि फिगर को देख के कि कौन है सामने। चूंकि इनमें ये सेंसर्स लगे हुए हैं इसलिए उन सेंसर्स को 10 किलोमीटर दूर से भी ऑपरेट किया जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है। हाई एल्टीट्यूड में इस्तेमाल किए जाते हैं ये
0: रोबोटिक डॉग में 360 डिग्री घूमने वाला हाई रेजोल्यूशन कैमरा लगाया गया है जिसकी मदद से रात के अंधेरे में छिपे हुए दुश्मनों को भी ढूंढ निकालना आसान होगा। खास बात ये भी है कि ये रोबोटिक डॉग्स ऊंचाई वाले इलाकों में 15 किलो वजन के सामान को भी अपने साथ आसानी से ले जा सकते हैं।
3: ये रोबोट हो या आदमी हो, किसी भी चीज को जानने के लिए, पहचानने के लिए हमको या तो उसकी फिगर की आवश्यकता होती है, या उसकी ध्वनि की आवश्यकता होती है, या उसकी बॉडी से निकलने वाली हीट वेव्स की आवश्यकता होती है। बस यही उपकरण है जो इनके अंदर लगाए जाते हैं। इनमें थर्मल कैमराज लगाए जाते हैं जो हीट से पिक्चर ले सकते हैं, इंफ्रारेड कैमराज भी लगाए जाते हैं, सेंसर्स भी लगाए जाते हैं।
0: सरहद की रक्षा करने में जुटे जवानों को किसी तरह के नुकसान से बचाते हुए ये दुश्मन पर गोलीबारी भी कर सकता है।
1: आपको याद होगा कि साल 2023 में भारतीय सेना ने तकरीबन 100 रोबोट डॉग्स को ऊंचाई वाले इलाकों में तैनात किया था जहां पर ये अपनी सेवाएं दे रहे हैं और आज हमारी सरहद की रखवाली कर रहे हैं।
0: सेना की योजना इन रोबोट्स को ऐसी मुश्किल जगहों पर तैनात करने की है जहां सेना के जवानों को पहुंचने में काफी दिक्कत आती है। इन रोबोट्स की मॉनिटरिंग सेना के जवान करेंगे। इन रोबो डॉग्स के इस्तेमाल से संवेदनशील सीमाओं की सुरक्षा में लगे सशस्त्र बलों पर दबाव महत्वपूर्ण रूप से कम हो सकता है।
1: रण क्षेत्र में फिलहाल यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाती इसके ऊपर।
5: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
8: अविश्वास में विश्वास बसता है,
9: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
10: गुड न्यूज टुडे।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से।
11: अमेरिका के न्यू मैक्सिको में विश्व का सबसे बड़ा हॉट एयर बैलून उत्सव अल्बुकर्क इंटरनेशनल बैलून फिएस्टा 2026 धूमधाम से शुरू हो चुका है। इस दौरान आकाश में तैरते सैकड़ों गुब्बारों के इस मनमोहक दृश्य को लाइव दिखाने के लिए दुनिया भर से लाखों लोग न्यू मैक्सिको पहुंच रहे हैं।
12: रंग बिरंगे गुब्बारों से भरा है आसमान, नील गगन पर
10: अलग अलग रंगों और डिजाइनों वाले हॉट एयर गुब्बारों की उड़ान का ये नजारा बेहद शानदार है। ये तस्वीरें अमेरिका के न्यू मैक्सिको में चल रहे अल्बुकर्क इंटरनेशनल बलून फेस्टा की है। यहाँ सिर्फ पारंपरिक गुब्बारे ही नहीं बल्कि अलग अलग आकार वाले विशेष बैलून भी आकर्षण का केंद्र बने हैं। इनमें गाय जैसा दिखने वाला और मशहूर स्मोकी बेयर की झलक दिखाने वाले गुब्बारे भी शामिल हैं। न्यू मैक्सिको में गुब्बारों के उत्सव की शुरुआत तड़के खास ड्रोन लाइट शो के साथ हुई। इस शो में हॉट एयर बलून न्यू मैक्सिको के स्टेट बर्ड ग्रेट रॉडनर चिली पेपर और मैक्सिकन थीम वाली अनोखी आकृतियां नजर आई। इसके बाद शुरू हुई गुब्बारों में हवा भरने की तैयारी। जब एक एक कर विशाल बैलून जमीन पर आकार लेने लगे तो देखते ही देखते पूरा फिएस्टा पार्क रंगों से भर गया। सूरज उगने के साथ ही सुबह करीब 7 बजे शुरू हुए इस महोत्सव का सबसे मनमोहक वह पल था जब सैकड़ों हॉट एयर बैलून एक साथ आसमान की ओर उठने लगे और फिर ऐसा लगा जैसे पूरा आसमान रंग बिरंगे गुब्बारों से ढक गया हो। इस नजारे को देखने के लिए अमेरिका ही नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने से बड़ी संख्या में लोग अल्बुकर्क के इंटरनेशनल बैलून फिएस्टा पार्क पहुंचे। इस बैलून महोत्सव की शुरुआत सन 1962 में महज 13 गुब्बारों के साथ हुई थी और अब ये दुनिया के सबसे बड़े बैलूनिंग फेस्टिवल में शुमार हो चुका है। आयोजकों के मुताबिक इस बार 500 से ज्यादा बैलून फिएस्टा में हिस्सा ले रहे हैं। इस बार 9 दिनों का ये इंटरनेशनल बैलून फिएस्टा 11 अक्टूबर तक जारी रहेगा और बैलूनिंग के शौकीनों को एक बार फिर से अनूठी यादें संजोने का मौका देगा। रिपोर्ट गुड न्यूज टुडे।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
6: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
11: दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे के 140 साल के होने पर नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे ने महोत्सव का आयोजन किया है जिसका शुभारंभ रेलवे के जीएम ने पूरा किया और पूरे उत्साह और पारंपरिक अंदाज में महोत्सव का शुभारंभ किया गया। इस महोत्सव का उद्देश्य दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे की विरासत, इतिहास और आकर्षण को लोगों तक पहुँचाने के लिए कई पहल की गई हैं। दार्जिलिंग के सुकना स्टेशन पर एक फोटो गैलरी बाकायदा लगाई गई है जिसमें दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे की पुरानी यादें, इतिहास को बाकायदा दर्शाया गया है। साहित्य और स्थानीय प्रतिभाओं का संगम भी इस अनूठे उत्सव में देखने को मिल रहा है। पोएट्स ऑफ कम्युनिटी के सहयोग से आयोजित इस फेस्टिवल में रिदम ऑन व्हील्स, टॉय ट्रेन की सवारी, साहित्यिक कार्यक्रम और विभिन्न स्थानों पर कार्यशालाएं आयोजित की जा रही हैं।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
11: उत्तराखंड के खटीमा में आदि रंगोत्सव फेस्टिवल का शुभारंभ मुख्यमंत्री धामी के साथ केंद्रीय मंत्री ज्वेल ओरम और किरण रिजिजू रहे मौजूद। असम, उड़ीसा, महाराष्ट्र सहित 15 राज्यों के जनजाति समूहों के हुनर का प्रदर्शन। ऐसे संत रविदास नगर के नाम से जाना जाएगा उत्तर प्रदेश का भदोही जिला। कारपेट एक्सपो के उद्घाटन पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ऐलान, जल्द ही सरकार की ओर से अधिसूचना होगी जारी। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में कैप्टन स्मिथ मच्छार के लिए पूजा अर्चना, हवन पूजन के साथ भगवान से की जल्द स्वस्थ होने की कामना, जाबाज के लिए देश भर में प्रार्थनाएं। राजधानी दिल्ली में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के तौर पर विकसित होंगे 5 प्रमुख स्टेडियम। प्रदेश के खेल मंत्री आशीष सूद ने किया ऐलान, खिलाड़ियों को मिलेंगी हर तरह की आधुनिक सुविधाएं। जापान के एगानोया में एशियन गेम्स 2026 का भव्य समापन समारोह, 2 गोल्ड और 1 सिल्वर मेडल जीतने वाली शूटर नीरू ढांडा ने थामा तिरंगा। भारतीय खिलाड़ियों ने जीते कुल 85 मेडल।

नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्वेता झा। आप देख रहे हैं अपना सबसे पसंदीदा और दमदार शो बंदे में है दम। एक बार फिर मैं हाजिर हूं दमदार शख्सियत का एक बेमिसाल सफरनामा लेकर। इस बार जिस शख्सियत का बेनजीर सफरनामा लेकर हम हाजिर हुए हैं, उसने 34,000 फीट की ऊंचाई पर साहस और पराक्रम का ऐसा अफसाना लिख दिया कि पूरी दुनिया उसके सजदे में आ गई है।

आप समझ ही गए होंगे कि इस बार की दमदार शख्सियत कोई और नहीं बल्कि फ्लाई दुबई के विमान में एक सनकी को पायलट के खौफनाक मंसूबों को नाकाम कर 174 बेगुनाह यात्रियों के प्राणों की रक्षा करने वाले कैप्टन स्मिथ मछार हैं। जी हां, हिंदुस्तान का ऐसा सपूत जिसकी वीरता का यशोगान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू समेत दुनिया भर के लोग कर रहे हैं। दरअसल कैप्टन स्मिथ ने अपने साहस, पराक्रम और सूझबूझ से विमान में सवार 174 मासूम लोगों को दर्दनाक मौत से बचा लिया। 34,000 फीट की ऊंचाई पर बुरी तरह जख्मी होने के बाद अगर ये जाबाज सरेंडर कर देता तो विमान का क्रैश होना तय था। वीरता के 120 सेकंड्स की ये दास्तान आपके रोंगटे खड़े कर देगी।

0: साहस, शौर्य और धैर्य की कसौटी है आपात स्थिति। बेहद कठिन और नाजुक वक्त में जो इंसान अपने साहस और सूझबूझ से लोगों को मुसीबत से उबार लेता है, वही रियल हीरो कहलाता है। ऐसा ही एक बिंदास हीरो है हिंदुस्तान का लाल कैप्टन स्मित मुच्छार। सामने खड़ी मौत को देखकर भी जिसका साहस और हौसला एक पल के लिए भी पस्त नहीं हुआ। 34,000 फीट की ऊंचाई पर पैदा हुई विकट परिस्थिति में अगर ये हिंदुस्तानी हिम्मत हार जाता तो 27 बच्चों समेत 174 बेगुनाह यात्री अपनी जान से हाथ धो चुके होते। कैप्टन स्मित मुच्छार का ये पराक्रम मिड एयर टेरर कॉन्स्पिरेसी को नाकाम करने वाली हीरोइक हिस्ट्री के बोल्ड चैप्टर के रूप में हमेशा के लिए दर्ज हो चुका है। कैप्टन स्मित के साहसिक और ऐतिहासिक पराक्रम से 140 करोड़ हिंदुस्तानियों का सीना गर्व से चौड़ा हो गया है।
1: भारत के कैप्टन स्मित ने जिस प्रकार से धैर्य, सूझबूझ और साहस का परिचय करवाया, और जैसे आज इज़राइल के प्रधानमंत्री ने कहा कि इस हिंदुस्तानी ने 9/11 होने से बचा लिया, हर देशवासी के लिए स्मित का ये पराक्रम हमें गौरव से भर देता है।
0: रोंगटे खड़े कर देने वाला ये वाक्या है 30 सितंबर 2026 का, जब फ्लाइट दुबई की कमर्शियल फ्लाइट FZ1073 ने 174 यात्रियों और 6 क्रू मेंबर्स के साथ स्थानीय समय के मुताबिक सुबह 6:49 पर दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से तेल अवीव के लिए उड़ान भरी थी। कैप्टन स्मित इस विमान के पायलट थे और उनके साथ कॉकपिट में को पायलट के तौर पर ओमान का एक शख्स था। कैप्टन स्मित इस बात से पूरी तरह अनजान थे कि उनका को पायलट इंतहाई खौफनाक इरादों के साथ कॉकपिट में दाखिल हुआ है। दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से टेक ऑफ के करीब 1 घंटे और 42 मिनट बाद विमान जब 34,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भर रहा था, तभी ओमानी को पायलट ने अपने खतरनाक मंसूबों को अंजाम देने के लिए हिंदुस्तान के दिलेर पायलट स्मित पर चाकुओं से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। कैप्टन स्मित ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उन्हीं का को पायलट मिड एयर उन पर इस तरह जानलेवा हमला कर देगा। पल भर में बुरी तरह लहूलुहान हो चुके स्मित ने इस विकट स्थिति में भी साहस, सूझबूझ और धैर्य नहीं खोया। वो समझ गए कि उनका को पायलट या तो विमान को क्रैश करना चाहता है या फिर इसे अगवा करना चाहता है। बुरी तरह जख्मी हो चुके कैप्टन स्मित के मन में एक बात बिजली की तरह कौंध गई, अगर मैं हिम्मत हार गया तो 174 बेगुनाह यात्रियों की दर्दनाक मौत हो जाएगी। ये विचार आते ही जख्मी स्मित एक्शन में आ गए। उन्होंने पहला काम ये किया कि विमान का कंट्रोल अपने पास ही रखा, जबकि ओमानी को पायलट का इरादा कंट्रोल अपने हाथ में लेने का था। दूसरा काम उन्होंने ये किया कि ATC को स्क्वाक कोड 7700 भेज दिया, जो सामान्य आपात स्थिति का संकेत होता है। कुछ मिनट बाद उन्होंने कोड 7500 भेजा, जो विमान हाईजैकिंग का संकेत देता है। तीसरा और सबसे बड़ा काम उन्होंने ये किया कि कॉकपिट का रिलीज सिस्टम दबा दिया, जिससे डोर ओपन हो गया। आपको बता दें कि कॉकपिट का डोर सिस्टम ऐसा होता है कि उसे बाहर से किसी भी सूरत में ओपन नहीं किया जा सकता। जाहिर है कैप्टन स्मित अगर डोर ओपन नहीं करते तो विमान के दूसरे क्रू मेंबर्स और यात्रियों को हस्तक्षेप का मौका नहीं मिलता, और ओमानी को पायलट कुछ ही देर में जख्मी स्मित की शायद जान भी ले लेता। बहरहाल जैसे ही कॉकपिट का डोर ओपन हुआ, यात्रियों को सारा माजरा समझ में आ गया। विमान में यात्रा कर रहे यानीव हायून नाम के एक इजरायली नागरिक ने अदम्य साहस का परिचय दिखाते हुए ओमानी को पायलट को खींच कर कॉकपिट से बाहर कर दिया, जिसके बाद दूसरे यात्री उस पर टूट पड़े और चंद मिनटों में उसे काबू में कर लिया। सनकी को पायलट को काबू में करने वाले यानीव हायून भी कैप्टन स्मित के शौर्य को सलाम कर रहे हैं।
2: Captain Smith, it's a hero. I think she is opened the door because I believe it's be near the door in the side of the cockpit. I think it's opened the door and as and then is crushed. And I want to tell him thank you for that. If not, if we can't go inside the cockpit, where all the passenger, include me, include my family, it's the die.
0: काबिले गौर है कि इस विमान में ज्यादातर पैसेंजर्स इजरायली नागरिक थे। जाहिर है कि ओमान के सनकी को पायलट के निशाने पर यही इजरायली नागरिक थे। अगर कैप्टन स्मिथ ने वक्त रहते कॉकपिट का डोर ओपन नहीं किया होता तो विमान में सवार सभी यात्री और क्रू मेंबर्स की दर्दनाक मौत हो जाती। यही वजह है कि इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू साहसिक यात्रियों के साथ कैप्टन स्मिथ के शौर्य, धैर्य और हीरोइक एक्ट की दिल खोलकर सराहना कर रहे हैं।
3: Almost all the passengers on the flight were Israelis. During the flight, as they approached the country, one of the pilots stabbed the other pilot and apparently tried to crash the plane with everyone on board. I spoke with one of the Israeli passengers. He told me that the plane went into a spin and started to dive. He told me that somehow he managed to break into the cockpit with one of the crew members, and together they neutralized the stabbing pilot while he was trying to sabotage the plane's systems. Another flight crew member who was on the plane entered the cockpit and managed to stabilize the aircraft. I salute these heroes who showed resourcefulness and extraordinary courage.
0: इसमें कोई संदेह नहीं कि कॉकपिट के भीतर कैप्टन स्मिथ जब अपने ही सन की को पायलट के खिलाफ वीरता के साथ मुकाबला कर रहे थे, उस दौरान विमान पर सवार 174 यात्रियों का कलेजा मुंह को आ चुका था, क्योंकि उन्हें अपनी मौत बेहद करीब दिख रही थी। दरअसल कैप्टन स्मिथ पर चाकू से ताबड़तोड़ हमले करने के बाद ओमान का बददिमाग को पायलट विमान को क्रैश कराने की कोशिश भी करने लगा था। इस दौरान 34,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा विमान गोता लगाते हुए 2 मिनट के भीतर ही 17,000 फीट नीचे आ चुका था। अगले 1 या 2 मिनट में वो आग के गोले में तब्दील होने ही वाला था कि कैप्टन स्मिथ ने सूझबूझ का परिचय देते हुए रिलीज सिस्टम का बटन प्रेस कर दिया। यही वजह है कि बेंजामिन नेतन्याहू ने कैप्टन स्मिथ को रियल हीरो कहा है। सोशल साइट एक्स पर अपनी पोस्ट में भारतीय कैप्टन की हृदय से तारीफ करते हुए नेतन्याहू ने लिखा है कि असाधारण वीरता प्रदर्शित करने के लिए भारतीय पायलट स्मिथ मुच्छार को मैं सलाम करता हूं। चाकू से गोदे जाने के बाद गंभीर रूप से जख्मी होने पर भी उन्होंने हार नहीं मानी, सनकी को पायलट का मुकाबला किया और कॉकपिट का डोर ओपन कर दिया। इसकी वजह से विमान में सवार यात्रियों और क्रू मेंबर्स को ओमानी को पायलट को काबू में करने का मौका मिल गया और आसमान में होने वाली एक खौफनाक दुर्घटना टल गई। उन्होंने इजरायली नागरिकों समेत 174 यात्रियों की जान बचा ली। मैं कैप्टन मुछार के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। वो एक सच्चे हीरो हैं। इजरायली प्रधानमंत्री का ये भावुक संदेश इसलिए है क्योंकि विमान में लगभग सभी यात्री इजरायली थे, लेकिन कैप्टन स्मिथ के शौर्य को तो पूरी दुनिया सलाम कर रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी कैप्टन स्मिथ को सच्चा हीरो बता दिया है।
4: Perhaps a terrorist or perhaps a whack job. And he stabbed the pilot. The pilot was in very bad shape. And I guess he still is in very bad shape. But he had the sense to, amazing, to, in a way he was a hero, to open the door. You know, those doors are solid steel. You can't get them open from outside. He was able to fall back and get the door open and scream.
0: साफ है कि कैप्टन स्मिथ रील के नहीं बल्कि रियल के हीरो बनकर पूरी दुनिया में छा गए हैं। वो हीरो हैं सिर्फ इसलिए नहीं कि 34,000 फीट की ऊंचाई पर बहादुरी दिखाकर 174 यात्री और अपने क्रू मेंबर्स की जान बचा ली। वे हीरो हैं इसलिए भी कि पूरी तरह लहूलुहान हो जाने के बाद भी उनके चेहरे पर शिकन की कोई लकीर नहीं दिख रही थी। अलबत्ता बेगुनाह लोगों की जिंदगी बचाने का सुकून जरूर उनके चेहरे पर तैर रहा था। सऊदी अरब के तबूक में सेफ लैंडिंग के बाद विमान के भीतर जब उन्हें फर्स्ट एड दिया जा रहा था तो कैप्टन स्मिथ पूरे आत्मविश्वास के साथ लोगों से बात करते नजर आए। ये बात निर्विवाद सत्य है कि तबाही मचाने वाले हथियार तो बाजार में बिकते हैं, लेकिन युद्ध के समय दुश्मन के सामने सीना तान कर खड़े होने का जो साहस, शौर्य और फौलाद होता है, वो दुनिया के किसी बाजार में नहीं बिकता। फौलादी जिगर तो इंसान अपने साथ लेकर पैदा होता है, और जिसके भीतर फौलादी जिगरा होता है, वही परोपकार के लिए, परमार्थ के लिए अपने प्राणों की आहुति देने से भी पीछे नहीं हटता। ऐसे महानायक के ही सजदे में पूरी दुनिया होती है। इजराइल की मशहूर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर तालिया जोसेफ ने कैप्टन स्मिथ के साहसिक कार्य पर इजराइल की ओर से आभार जताने के लिए जो उद्गार व्यक्त किए हैं, उसने हिंदुस्तानियों के मस्तक को गर्व से और ऊंचा कर दिया है।
5: More than 170 people made it home because of Smith. 170 families that didn't lose their loved ones because he chose to take action and fight. He chose to be a hero. And that's exactly what he is. Smith is right now dealing with the wounds caused by the terrorist and he is in critical condition. So I want to wish him speedy recovery. Refuah shlema. Thank you so much from the people of Israel for your courage and for your sacrifice. We do not take it for granted and we will never forget it.
0: निसंदेह इस घटनाक्रम के बाद हिंदुस्तान की धरती पर जन्मे और पले बढ़े कैप्टन स्मिथ महानायक के तौर पर पूरी दुनिया में सराहे जा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर ओमान का वो को पायलट है जिसके जघन्य कृत की वजह से उसके देश की फचीहत हो रही है, जबकि समूचे हिंदुस्तान को अपने इस महानायक पर गर्व की अनुभूति हो रही है। पूरी दुनिया इस हीरो की स्पीडी रिकवरी के लिए अपनी अपनी आस्था और अकीदे के मुताबिक दुआ कर रही है। उधर 140 करोड़ हिंदुस्तानी अपने महानायक को स्वस्थ और सकुशल देखने के लिए बेकरार हैं।
6: कैप्टन स्मिथ मछार वसुधैव कुटुंबकम के सनातन संस्कार के बीच पले बढ़े हैं। विकट परिस्थिति में अपनी चिंता छोड़कर दूसरों की रक्षा करने की प्रेरणा कैप्टन स्मिथ के संस्कार में है। आपको यह जानकर सुखद आश्चर्य होगा कि स्मिथ बजरंगबली के भक्त हैं। ओमानी मूल के को पायलट ने एक समय जब उनको बुरी तरह से जख्मी कर दिया था और बहुत ज्यादा खून बह जाने की वजह से वो मूर्छित होने लगे थे, तो उन्होंने हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर दिया। इसलिए नहीं कि उनकी जान संकट में थी, बल्कि इसलिए कि 174 बेगुनाह यात्रियों की जान जाने वाली थी। आसमान में की गई कैप्टन स्मिथ की प्रार्थना शायद स्वीकार हो गई, तभी तो समूचा इजराइल उनके नायकत्व से अभिभूत होकर जय हिंद का नारा बुलंद कर रहा है।

0: शरीर लहूलुहान हो, गहरे जख्मों का दर्द असह्य हो, मौत मुंह बाए सामने खड़ी हो, उसके बाद भी अगर अनजान लोगों की जिंदगी की हर चंद हिफाजत का जज्बा जाग जाए तो इसे क्या कहेंगे। ऐसे ही इंसानों को महामानव कहा जाता है और ऐसे महामानवों के आगे समूची मानवता नतमस्तक हो जाती है। विश्व के इतिहास में ये शायद पहली बार हुआ होगा जब हिंदुस्तान के बाहर किसी अन्य देश के नागरिक अपने ही देश की सरजमी पर जय हिंद का जय घोष कर गर्व की अनुभूति कर रहे हैं। कैप्टन स्मिथ के त्याग और बलिदान से अभिभूत होकर इजरायली नागरिक तेल अवीव की सड़कों पर निकलकर जय हिंद का नारा बुलंद कर रहे हैं।
1: जय हिंद।
2: इसराइल खाए।
1: हम आपके आभारी हैं।
2: We are from Israel and with one united voice
1: on behalf of the people of India
2: and the people of Israel.
1: We want to honor and thank Captain Smith
2: for heroically saving the lives of nearly 200 passengers.
0: वसुधैव कुटुम्बकम की सनातन प्रेरणा से अनुप्राणित कैप्टन स्मिथ ने बेहद विकट परिस्थिति में ऐसा अद्भुत जज्बा दिखाया कि हिंदुस्तान और इजराइल की सामाजिक, सांस्कृतिक और भौगोलिक भिन्नता भावनात्मक एकता का रूप लेकर समूची वसुधा को सुरभित कर रही है। इजराइल की सड़कों पर जय हिंद का नारा गूंज रहा है तो तेल अवीव से 4,696 किलोमीटर दूर अविनाशी काशी की गंगा आरती देश के इस शूरवीर के नाम समर्पित कर दी गई।
3: कैप्टन स्मिथ मछवार ने जिस अदम्य साहस, भय और कृतज्ञ निष्ठा का परिचय दिया है वह पूरे देश के लिए गर्व की बात है। जिस परिस्थिति में कोई भी व्यक्ति घबरा सकता था उस कठिन समय में उन्होंने अपने कर्तव्य को सर्वोपरि रखते हुए सैकड़ों यात्रियों की सुरक्षा के लिए जिस बहादुरी के साथ सामना किया वह वास्तव में प्रेरणादायक है। गंगा सेवा निधि परिवार, बाबा विश्वनाथ एवं भगवती माँ गंगा से उनके जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना करती है।
0: भगवान शिव की नगरी काशी में स्मिथ के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना के साथ गंगा आरती की गई तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की पावन जन्मस्थली अयोध्या धाम में कैप्टन स्मिथ के आरोग्य और लंबी उम्र के मनोरथ के साथ साधु संतों ने हनुमान चालीसा का सस्वर पाठ किया।

हमारे देश के जानबाज कैप्टन स्मिथ मच्छर जी ने असाधारण व्यक्तित्व और साहस का परिचय देते हुए 174 यात्रियों को सकुशल बचाने का जो है काम किए। इसके लिए मैं इनको जो है स्वास्थ्य की कामना से, यह जल्द स्वस्थ हो इसलिए हनुमान जी महाराज के जो है हनुमान चालीसा और मंत्रों के द्वारा प्रार्थना किया हूँ। हनुमान जी महाराज हमारे ऐसे

0: भारत ये आए, यही हम लोगों ने हनुमान जी से प्रार्थना किया।
1: कैसा अद्भुत संयोग है कि जिस कैप्टन स्मिथ के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना के साथ अयोध्या में हनुमान चालीसा का पाठ किया गया, उस कैप्टन ने इजराइल और जॉर्डन के सीमावर्ती क्षेत्र में 34,000 फीट की ऊंचाई पर 174 नागरिकों की रक्षा की शक्ति पाने के लिए इसी हनुमान चालीसा का पाठ किया था। ये बात खुद स्मिथ ने प्रधानमंत्री मोदी के साथ बातचीत के दौरान बताई। दरअसल ओमान मूल के को पायलट ने कॉकपिट में मौजूद क्रैश एक्स से कैप्टन स्मिथ मच्छार के सिर, सीने और हाथ में गहरे जख्म कर दिए थे। उनके जिस्म के कई हिस्सों से बेतहाशा खून निकल रहा था। एक समय ऐसा भी आया जब स्मिथ को लगा कि वे कभी भी होश में नहीं आने वाली मूर्छा में जाने वाले हैं। मूर्छित होने से पहले जैसे ही उनके मन में ये ख्याल आया कि अगर मैं मूर्छित हुआ तो इस विमान में सवार 174 यात्रियों की मौत निश्चित है, उन्होंने हनुमान चालीसा का पाठ शुरू किया और पूरी शक्ति के साथ उठकर कॉकपिट के रिलीज सिस्टम का बटन प्रेस कर दिया। जब कॉकपिट का डोर ओपन हो गया तो विमान में सवार क्रू मेंबर्स और पैसेंजर्स ने बाकी का मोर्चा संभाल लिया। मौत का विकराल रूप सामने खड़ा देखने के बाद भी 174 जिंदगी की चिंता करने वाले कैप्टन स्मिथ का संवेदनात्मक भाव सनातन के कायलजयी ग्रंथ मनुस्मृति के 8वें अध्याय के 15वें श्लोक से पुष्ट हो जाता है। मनुस्मृति का ये श्लोक है, धर्म्यो हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षितः, तस्मात् धर्मो न हन्तव्यो मा नो धर्मो हतो अवधीत। मनुस्मृति के इस श्लोक का अर्थ है, जो धर्म का नाश करता है धर्म उसका नाश कर देता है, और जो धर्म की रक्षा करता है धर्म भी उसकी रक्षा करता है। इसीलिए धर्म का कभी नाश नहीं होना चाहिए, ताकि नाश हुआ धर्म हमारा नाश न कर सके। मनुस्मृति के इसी श्लोक का भाव तब कैप्टन स्मिथ के मन में जागृत हो गया। उन्होंने अत्यंत विकट स्थिति में धर्म की रक्षा की और अब धर्म उनकी रक्षा कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी स्वयं अपने देश के साहसी सपूत की हर जरूरत का ख्याल रख रहे हैं। कैप्टन स्मिथ ने तब ये नहीं सोचा होगा कि 174 जिंदगी बचाने का उनका कर्तव्य समूचे देश की भावना का ज्वार बनकर उमड़ पड़ेगा। इसीलिए पीएम मोदी से बात करते समय वे थोड़े भावुक भी हो गए।
2: स्मिथ, अगर मेरे सामने आप भावुक नहीं होंगे तो कहां होंगे?
1: गंभीर रूप से जख्मी स्मिथ का इलाज पहले सऊदी अरब के तबूक के एक अस्पताल में चल रहा था, लेकिन और बेहतर ट्रीटमेंट के लिए उन्हें एयरलिफ्ट करके अबू धाबी के सैन्य अस्पताल लाया गया। उनकी हालत में तेजी से सुधार हो रहा है और डॉक्टरों के मुताबिक वो खतरे से बाहर हैं। जिस शख्स के आरोग्य के लिए हिंदुस्तान के मंदिरों, शिवालयों समेत दुनिया भर के इबादत खानों में प्रार्थनाओं का दौर चल

0: रहा हो उसे पूर्ण स्वस्थ होने से कौन रोक सकता है। इसमें कोई संदेह नहीं कि अपने फिनोमिनल हीरोइक एक्ट से कैप्टन स्मिथ ने हिंदुस्तान का मान पूरी दुनिया में बढ़ाया है।
1: इसी के साथ बंदे मेहदम में आज आपने देश के जाबाज पायलट स्मिथ मछार के हीरोइक एक्ट की दास्तान सुनी। अगले हफ्ते ऐसी ही किसी और बेमिसाल शख्सियत के सफरनामे के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे।

मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज़ टुडे में।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: अमेरिका के न्यू मैक्सिको में विश्व का सबसे बड़ा हॉट एयर बैलून उत्सव अल्बुकर्क इंटरनेशनल बैलून फिएस्टा 2026 धूमधाम से शुरू हो चुका है। इस दौरान आकाश में तैरते सैकड़ों गुब्बारों के इस मनमोहक दृश्य को लाइव दिखाने के लिए दुनिया भर से लाखों लोग न्यू मैक्सिको पहुंच रहे हैं।
2: रंग बिरंगे गुब्बारों से भरा है आसमान, नील गगन पर अलग अलग रंगों और डिजाइनों वाले होटल गुब्बारों की उड़ान का ये नजारा बेहद शानदार है। ये तस्वीरें अमेरिका के न्यू मैक्सिको में चल रहे अल्बुकर्क इंटरनेशनल बलून फेस्टा की है। यहाँ सिर्फ पारंपरिक गुब्बारे ही नहीं बल्कि अलग अलग आकार वाले विशेष बैलून भी आकर्षण का केंद्र बने हैं। इनमें गाय जैसा दिखने वाला और मशहूर स्मोकी बेयर की झलक दिखाने वाले गुब्बारे भी शामिल हैं। न्यू मैक्सिको में गुब्बारों के उत्सव की शुरुआत तड़के खास ड्रोन लाइट शो के साथ हुई। इस शो में हॉट एयर बलून, न्यू मैक्सिको के स्टेट बर्ड ग्रेट रॉडनर, चिली पेपर और मैक्सिकन थीम वाली अनोखी आकृतियां नजर आईं। इसके बाद शुरू हुई गुब्बारों में हवा भरने की तैयारी। जब एक एक कर विशाल बैलून जमीन पर आकार लेने लगे तो देखते ही देखते पूरा फिएस्टा पार्क रंगों से भर गया। सूरज उगने के साथ ही सुबह करीब 7 बजे शुरू हुए इस महोत्सव का सबसे मनमोहक वह पल था जब सैकड़ों हॉट एयर बैलून एक साथ आसमान की ओर उठने लगे और फिर ऐसा लगा जैसे पूरा आसमान रंग बिरंगे गुब्बारों से ढक गया हो। इस नजारे को देखने के लिए अमेरिका ही नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने से बड़ी संख्या में लोग अल्बुकर्क इंटरनेशनल बैलून फिएस्टा पार्क पहुंचे। इस बैलून महोत्सव की शुरुआत सन 1962 में महज 13 गुब्बारों के साथ हुई थी और अब ये दुनिया के सबसे बड़े बैलूनिंग फेस्टिवल में शुमार हो चुका है। आयोजकों के मुताबिक इस बार 500 से ज्यादा बैलून फिएस्टा में हिस्सा ले रहे हैं। इस बार 9 दिनों का ये इंटरनेशनल बैलून फिएस्टा 11 अक्टूबर तक जारी रहेगा और बैलूनिंग के शौकीनों को एक बार फिर से अनूठी यादें संजोने का मौका देगा। रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से। गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से।
1: उत्तराखंड के खटीमा में आदि रंगोत्सव फेस्टिवल का शुभारंभ मुख्यमंत्री धामी के साथ केंद्रीय मंत्री ज्वेल ओरम और किरण रिजिजू रहे मौजूद। असम, ओडिशा, महाराष्ट्र सहित 15 राज्यों के जनजाति समूह के हुनर का प्रदर्शन। ऐसे संत रविदास नगर के नाम से जाना जाएगा उत्तर प्रदेश का भदोही जिला। कारपेट एक्सपो के उद्घाटन पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ऐलान, जल्द ही सरकार की ओर से अधिसूचना होगी जारी। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में कैप्टन स्मिथ मच्छार के लिए पूजा अर्चना, हवन पूजन के साथ भगवान से की जल्द स्वस्थ होने की कामना, जाबाज के लिए देश भर में प्रार्थनाएं। राजधानी दिल्ली में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के तौर पर विकसित होंगे 5 प्रमुख स्टेडियम। प्रदेश के खेल मंत्री आशीष सूद ने किया ऐलान, खिलाड़ियों को मिलेंगी हर तरह की आधुनिक सुविधाएं। जापान के एगानोया में एशियन गेम्स 2026 का भव्य समापन समारोह, 2 गोल्ड और 1 सिल्वर मेडल जीतने वाली शूटर नीरू ढांडा ने थामा तिरंगा। भारतीय खिलाड़ियों ने जीते कुल 85 मेडल।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाती है।

0: दुनिया एक बड़े बदलाव के दौर से गुजर रही है और इसी बदलाव की छाप रक्षा क्षेत्र पर भी नजर आ रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टाइम मशीन की तरह काम करने लगे हैं, यानी जो हथियार की हम कल्पना कर रहे थे वो हथियार या फिर सिस्टम हकीकत की शक्ल अख्तियार कर रहे हैं। रोबो टैंक का ट्रायल चल रहा है, सरहद पर रोबो म्यूल गश्त कर रहे हैं। अनमैन्ड ड्रोन की ताकत तो दुनिया देख ही रही है। अब बारी रोबोट आर्मी की है, यानी यूं कहें कि जंग के मैदान में हथियारों से लैस रोबोट्स युद्ध लड़ते दिखाई दे सकते हैं। यूक्रेन इस वक्त रोबोटिक हथियारों की सबसे बड़ी लेबोरेटरी बन चुका है, जहां तमाम तरह के रोबोट्स या कहें कि युद्ध के मैदान में सीधा रोबोट्स को ही उतारा जा रहा है, वहीं पर परीक्षण हो रहा है और यही अब जंग के मैदान में मोर्चा संभाले हुए हैं। यूक्रेन की रक्षा मंत्री ने सीधे तौर पर यह कहा है कि यूक्रेन का मकसद आने वाले समय में रोबोट्स की एक बड़ी आर्मी तैयार करना है जो रण क्षेत्र में दुश्मन का मुकाबला कर सके। आज दुनिया के कई देश सेना का रोबोटाइजेशन करने में जुटे हैं, जिसमें यूक्रेन भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। यूक्रेन ने रूस पर हमला और अपने सैनिकों की जान बचाने के लिए रोबोट आर्मी नाम का नया कार्यक्रम शुरू किया है, आर्मी ऑफ रोबोट प्रोजेक्ट।
1: यूक्रेन के पूर्व रक्षा मंत्री के द्वारा शुरू किया गया आर्मी और रोबोट्स एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है, जिसमें कि रोबोट्स का इस्तेमाल सोल्जर्स के बदले में किया जाएगा। अभी शुरुआत में इनका इस्तेमाल कैजुअल्टी इवैक्यूएशन, माइन लगाना, माइन निकालना, मशीन गन लोड करना, आगे सर्विलेंस सिस्टम लगाना, जहाँ जहाँ खतरा हो सकता है वहाँ पर इनका इस्तेमाल करके जो उन सोल्जर्स हैं उनकी कैजुअल्टी को कम किया जा सकता है, ख़ास तौर से ऐसे समय में जबकि यूक्रेन के पास सोल्जर्स की कमी हो रही है। 4.5 से ज्यादा समय से लड़ाई चल रही है और इनकी काफी कैजुअल्टीज हो चुकी हैं।
0: यूक्रेन के पूर्व रक्षा मंत्री मिखाइलो फेदोरोव ने 26 सितंबर को आर्मी ऑफ रोबोट प्रोजेक्ट का ऐलान करते हुए कहा, युद्ध के मैदान में ऐसे रोबोट्स तैनात करने की योजना है जो जोखिम भरे काम कर सके। प्रोजेक्ट में इंसानों जैसे दिखने वाले ह्यूमनॉइड रोबोट्स बनाए जाएंगे। ये मशीन गन में गोलियां भरने, बैटरी बदलने और सेंसर लगाने जैसे काम करेंगे। इससे सैनिकों को हथियारों और दूसरे उपकरणों की देखरेख के लिए सीधे मोर्चे पर जाने की जरूरत नहीं होगी। यूक्रेन की आर्मी ऑफ रोबोट प्रोजेक्ट का सबसे महत्वाकांक्षी लक्ष्य ट्रेंच यानी कि खाई और फॉरवर्ड पोस्ट पर सैनिकों की जगह इंसान जैसे दिखने वाले ह्यूमनॉइड रोबोट्स को तैनात करना होगा।
2: युद्ध के समय सेना के लिए रोबोट्स एक तरीके से बिल्कुल वही काम करते हैं जो हमारे सेना के जवान करते हैं, यानी कि ह्यूमनॉइड रोबोट्स हर वो काम कर सकते हैं जो रण क्षेत्र में एक सैनिक करता है। फिर चाहे वो बंकर को तबाह करना हो, दुश्मन की इंफॉर्मेशन लेना हो, किसी घर की छत पर चढ़ना हो, सीढ़ियों पर चढ़ना हो, हर तरह के काम ह्यूमनॉइड रोबोट्स कर रहे हैं और यही एक बड़ी वजह है कि आने वाले समय में ह्यूमनॉइड रोबोट्स की एक बड़ी फौज तैयार की जा रही है जो आपको रण क्षेत्र में देखने को मिलेगी। और सबसे बड़ी और खास बात यह है कि ये बिल्कुल उसी तरीके से काम करते हैं जैसे इन्हें कमांड दी जाती है।
0: ह्यूमनॉइड रोबोट्स इंसानों की तरह बंदूकें पकड़ सकते हैं, ट्रिगर दबा सकते हैं, मिलिट्री टैंकों को ड्राइव कर सकते हैं और टैंकों के अंदर बैठकर उन्हें ऑपरेट भी कर सकते हैं। केमिकल, बायोलॉजिकल या परमाणु हमले वाले इलाकों में जहां इंसानों का जाना तुरंत मौत को दावत देना है, ये रोबोट्स आसानी से काम कर पाएंगे।
1: ह्यूमनॉइड रोबोट्स की एंट्री एक बड़ा गेम चेंजर साबित होगा, क्योंकि जो ह्यूमनॉइड रोबोट्स है ये देखा जाए तो एक इंसान की तरह से इनके पैर, हाथ, सर, आंखें सभी तरह से काम करते हैं। और क्योंकि ज़्यादातर हमारे डिफेंस सिस्टम्स इंसानों की हाइट के हिसाब से बने, हमारे लिए काम करने के हिसाब से बने, ऐसे में जब ये सीढ़ी चढ़ना, उतरना, कहीं पे जाना, अंदर घुसना, कमरे के अंदर जाना, वहाँ काम करना, फायरिंग करना, इस तरह के काम करने में सक्षम होते हैं तो काफ़ी मदद मिल जाएगी उस सेना को जिसके पास ये ह्यूमनॉइड रोबोट्स होंगे। यह अभी माइन लगाना, माइन निकालना, कैजुअल्टी इवैक्यूएशन करना, सर्विलेंस सिस्टम लगाना, मशीन गन लोड करना, इस तरह के सपोर्टिंग काम्स करने में सक्षम है जो कि कैजुअल्टीज को बचाएंगे।
0: दावा यह किया जा रहा है कि रूस यूक्रेन जंग में अब रोबोट सैनिक भी मोर्चा संभाल रहे हैं। यूक्रेन ने पहली बार बड़े पैमाने पर सुसाइड जमीनी रोबोट्स का इस्तेमाल कर रूसी सेना पर हमला करने का दावा किया। यूक्रेन की थर्ड आर्मी कॉप्स के मुताबिक मई से सितंबर के आखिरी सप्ताह तक चले ऑपरेशन विवाल्डी में रोबोट और ड्रोन का इस्तेमाल किया गया। रोबोट और ड्रोन की मदद से 15,700 से ज्यादा मिशन पूरे किए गए और रूस के 3,000 सैनिकों को मार गिराया गया। वहीं पूर्वी यूक्रेन के डोनेस्क इलाके में 5 गांव और 3 बस्तियों पर दोबारा कंट्रोल हासिल किया। अगर रूस का दावा सही है तो फिर इसका संकेत साफ है कि रूस यूक्रेन युद्ध में अब जमीनी रोबोट युद्ध का हिस्सा बनते जा रहे हैं। थर्ड आर्मी कॉर्प्स के कमांडर जनरल आंद्री वेलेट्सी ने कहा है कि यूक्रेन दुनिया में पहली बार ड्रोन से रोबोट को दुश्मन के इलाके में उतार कर हमला कर रहा है। दुश्मन को आसमान से हमले का खतरा रहता है, जमीन से नहीं। रूसी सैनिक को वहां से हमले का सामना करना पड़ा जहां उन्हें इसकी उम्मीद तक नहीं थी। यूक्रेन ने ऑपरेशन विवाल्डी में पहली बार पहियों वाले अनमैन्ड ग्राउंड व्हीकल यानी जमीनी रोबोट्स को मोर्चे पर उतारा। हाइना के नाम से जाने जाने वाले 4 पहियों वाले UGVs विस्फोटकों से भरे थे।
2: ऑपरेशन विवाल्डी दरअसल यूक्रेन की थर्ड आर्मी कॉर्प्स की तरफ से रशिया के खिलाफ चलाया गया एक ऑपरेशन था जो कि डोनेस्क क्षेत्र में चलाया गया था और इसमें पहली बार हाइना UGV व्हीकल्स का इस्तेमाल किया गया। दरअसल हाइना एक बहुत ही फुर्तीला UGV व्हीकल है और ये 4 व्हीलर ग्राउंड कैमिकेज रोबोट है जिसे यूक्रेन डिफेंस टेक क्लस्टर ब्रेव 1 की UGV लेबोरेटरी की तरफ से विकसित किया गया है।
0: ऑपरेशन विवाल्डी के दौरान यूक्रेनी सेना की थर्ड आर्मी कॉर्प्स ने रूसी ठिकानों को तबाह करने के लिए हाइना UGVs का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया। 16 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम रफ्तार से चलने की ताकत के साथ हाइना UGVs 20 किलोमीटर तक की दूरी तय कर सकता है। आकार में बेहद कॉम्पैक्ट होने के बावजूद ये 20 से 26 किलोग्राम तक का भारी विस्फोटक ले जाने में सक्षम है। ये दुश्मन के इलाके में जाकर घात लगाकर बैठ सकता है और 30 से 60 घंटे तक एक्टिव रहकर सही मौके पर खुद को विस्फोट से उड़ा भी सकता है। हाइना UGVs को बंकर और डगआउट ब्लास्टर के तौर पर जाना जाता है। ये दुश्मन के अग्रिम चौकियों, भारी किलेबंदी वाले बंकरों और अंडरग्राउंड डगआउट में रेंगते हुए चुपके से पहुंच जाते हैं। फिर इसे रिमोट कंट्रोल से ब्लास्ट कर दिया जाता है जिससे दुश्मन को भारी नुकसान पहुंचता है।
1: हाइना UGV यूक्रेन का एक बड़ा ही जबरदस्त डेवलपमेंट है जो कि एक 4 पहियों वाली गाड़ी को ड्रोन के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, दूर से कंट्रोल करते हैं, जो कि दुश्मन के बंकर के पास, उनके मोर्चे के पास जाकर फट जाता है, अटैक करता है और उसको बर्बाद कर देता है। दूसरी बात यह कि इसका इस्तेमाल लॉजिस्टिक के लिए भी हो सकता है, इसमें सामान भी ले जाया जा सकता है। तीसरी बात यह है कि ये तकरीबन 16 किलोमीटर की स्पीड से चल जाता है, साथ साथ में सकरा होने के कारण और पहियों होने के कारण ये क्रॉस कंट्री और पतले रास्तों से, सकरे रास्तों से भी निकलने में सक्षम है। तो ये काफ़ी मदद साबित हो रही है इसमें, क्योंकि आगे बढ़कर दुश्मन के इलाके में बुलेट प्रूफ बॉडी होने के साथ साथ ये उनके मोर्चे के पास जाके उनको भारी संख्या में कैजुअल्टी कर रहा है।
0: हाइना UGVs का ग्राउंड क्लियरेंस और बनावट ऐसी है कि ये थर्मल कैमरे और रडार की नजर में आसानी से नहीं आ पाते। इसका मॉड्यूलर हल डिजाइन इसे उबड़ खाबड़ रास्तों, मलबे और शहरी इलाकों की तंग गलियों में तेजी से मुड़ने और आगे बढ़ने की आजादी देता है। हाइना रोबोट्स को दुश्मन के इलाके में ले जाकर स्टैंडबाय मोड में छोड़ा जा सकता है। जैसे ही दुश्मन सैनिक या फिर व्हीकल इसके करीब आते हैं, दूर बैठा ऑपरेटर इसे तुरंत एक्टिव कर देता है और हमला हो जाता है।
2: जंगल का शिकारी हाइना यानी कि लकड़बग्घा, और इस रोबोट को बिल्कुल उसी के शिकार करने की रणनीति के तहत ही तैयार किया गया है। ठीक जैसे लकड़बग्घा झुंड में हमला करता है, उसी तरीके से हाइना रोबोट्स को 5-5 की टुकड़ियों में यूक्रेनी सेना को दिया जाता है और जब ये जंग के मैदान में उतरते हैं, अलग अलग दिशाओं में हमला करते हैं, तो दुश्मन के लिए इनका मुकाबला कर पाना बेहद मुश्किल हो जाता है।
0: ऑपरेशन विवाल्डी में यूक्रेनी सेना की थर्ड आर्मी कॉर्प्स ने जिस तरह से अनमैन्ड ग्राउंड व्हीकल्स का इस्तेमाल किया है, उसने मॉडर्न वॉरफेयर का पूरा चेहरा बदल दिया है।
1: ऑपरेशन विवाल्डी में ड्रोन के इस्तेमाल का, रोबोट्स के इस्तेमाल का एक बहुत ही अभूतपूर्व एग्जाम्पल है जिसको कहा जाए, जहां पर कि रोबोट्स को हवा से ड्रॉप करके और जो अनमैन ग्राउंड व्हीकल है हवा से ड्रॉप करके और वो उनको फिर वहाँ पे सेना के आगे जाके वो हमला करने में सक्षम है। यानी कि पहले होता था कि सेना आगे जा रही है, पीछे पीछे रोबोट्स और अनमैन ग्राउंड व्हीकल्स आ रहे हैं, लेकिन जहाँ पर सेना के आगे गए हैं वो आगे का ऑब्स्टेकल क्लियर किए, माइन क्लियर किया और जब पड़ने में आगे जाके उन्होंने सीधे ब्लास्ट हो गए रिमोट कंट्रोल के द्वारा, तो काफ़ी बड़ी संख्या में इनको सफलता मिली है सोवियत रशिया के मोर्चों के खिलाफ।
0: यूक्रेन के ऑपरेशन विवाल्डी में पहली बार हवाई और जमीनी ड्रोन्स को मिलाकर एक मदर चाइल्ड आर्किटेक्चर के तहत काम पर लगाया गया।
2: ऑपरेशन विवाल्डी का सबसे क्रांतिकारी हिस्सा ये था कि यूजीवी को सीधा चल के दुश्मन के इलाके में नहीं जाना था, बल्कि इसे एक बॉम्बर रोबोट की मदद से दुश्मन के इलाके में गिराया गया। वैसे सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि छोटे छोटे बॉम्बर्स की बैटरी खत्म होने से बच गई और इसने सीधे दुश्मन के इलाके में वार किया।
0: रोबोट में लगे कैमरों से आसपास के इलाके पर नजर रखी जाती, इनकी मदद से रूसी सेना के कमांड सेंटर, सैनिकों के ठिकाने, हथियार और सामान रखने की जगहों और नदी पार करने के रास्तों पर हमले किए गए। इस रणनीति का मकसद यूक्रेनी सैनिकों की जान जोखिम में डाले बिना रूसी ठिकानों पर हमला करना था।
2: रूस और यूक्रेन लंबे समय से एक दूसरे के साथ जंग लड़ रहे हैं। हम सभी जानते हैं कि रूस यूक्रेन से ज्यादा ताकतवर है, लेकिन बावजूद इसके यूक्रेन युद्ध के मैदान में डटा हुआ है और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है ड्रोन्स। रूस का मुकाबला करने के लिए यूक्रेन छोटे और सस्ते ड्रोन्स का मुकाबला कर रहा है, उनको मैदान में उतार रहा है। सबसे बड़ी और खास बात यह है कि ड्रोन्स की मदद से यूक्रेन अपने सैनिकों की जान भी बचाता है और साथ ही साथ रूस का मुकाबला करने के लिए वो पूरी तरह से तैयार है। बस अब इसी रणनीति के तहत आगे काम किया जा रहा है।
0: यूजीवी का इस्तेमाल गोला बारूद, राशन और पानी पहुँचाने के साथ साथ जोखिम भरे इलाकों से घायल सैनिकों को निकालने के लिए भी था। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक अगस्त 2026 में यूजीवी यानी अनमैन्ड ग्राउंड व्हीकल ने 25,000 से ज्यादा रसद और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए, जिससे साल की शुरुआत से अब तक ऐसे अभियानों की कुल संख्या करीब 1,12,000 हो गई। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए नए आंकड़ों के मुताबिक यूक्रेन के सशस्त्र बलों ने साल 2026 में अनमैन सिस्टम का विस्तार करते हुए 5,90,000 से ज्यादा ड्रोन्स का ऑर्डर दिया।
2: रक्षा और आक्रमण ये दो ऐसे पहलू हैं जिनमें अगर सामंजस्य ना हो तो युद्ध की दिशा और दशा बदल सकती है। यानी सीधे शब्दों में अगर समझाया जाए कि अगर तलवार जरूरी है तो ढाल भी जरूरी है। इसी के साथ साथ भारत अब इसी रणनीति पर आगे काम कर रहा है और उसी के तहत अपनी सेना को तैयार कर रहा है। नए नए उपकरणों को इसी तरीके से बनाया जा रहा है जो कि अटैकिंग भी हो और साथ ही साथ दुश्मन के हमले का मुकाबला भी हम सही और अच्छी तरीके से कर सकें।
0: घना जंगल हो या फिर ऊंचे ऊंचे पहाड़, शहर की भीड़ भाड़ हो या फिर सुनसान रेगिस्तान, खतरा किसी भी इलाके में हो, खतरे का स्वरूप चाहे जैसा भी हो, अब भारतीय सेना का बास उन्हें ढूंढकर मौत की नींद सुला देगा। भारतीय सेना के रणबांकुरों को अब दुश्मन के नजदीक जाने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि सेना का नया हथियार बास ड्रोन सेना में शामिल होने के लिए तैयार है।
2: भारतीय सेना का स्वदेशी बाज अटैक ड्रोन अब बड़े पैमाने पर बनने के लिए तैयार है, क्योंकि भारत ने इसकी ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी निजी कंपनियों को दे दी है। और सबसे बड़ी और खास बात यह है कि इसे भारतीय सैनिक विकास चतुर्वेदी ने ही डिजाइन किया है, जो ये बात दिखाता है कि भारत किस तरीके से अपने मेक इन इंडिया लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ रहा है और अपनी तकनीक के हिसाब से ही और अपनी जरूरतों के हिसाब से अपने हथियारों का निर्माण कर रहा है।
0: मौजूदा वक्त आमने सामने की लड़ाई का नहीं है। सैनिक युद्ध के मैदान में सीधे कदम नहीं रख रहे, बल्कि तकनीक के दम पर तैयार होने वाले विध्वंसक हथियारों को युद्ध के मैदान में उतारा जा रहा है, जो ऑटोनॉमस तरीके से काम करते हैं। या यूं कहें कि एक बार अगर टारगेट सेट कर दिया तो बाकी का काम वो हथियार करेगा। ड्रोन भी उसी टारगेट का एक हथियार है, जो दुश्मन के टैंक, बंकर, हथियार डिपो को दूर से ही तबाह कर सकता है। अब आपको स्वदेशी ताकत से लबरेज बाज ड्रोन की एक और खासियत के बारे में विस्तार से बताते हैं। 12 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से उड़ने वाला बाज ड्रोन एक मिनट में करीब 1 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। मैदानी इलाके में बाज ड्रोन 80 किलो तक के हथियार लेकर उड़ने की ताकत रखता है। वहीं हाई ऑल्टीट्यूड वाले इलाकों में ये 45 किलो तक का वजन लेकर उड़ सकता है। बाज ड्रोन अपने साथ कई तरह के हथियार ले जा सकता है, जिसमें रॉकेट लॉन्चर का अटैचमेंट इसे बेहद ताकतवर बनाता है। दावा किया जाता है कि ये दुनिया का पहला ऐसा ड्रोन है जो हवा में रहते हुए लॉन्चर से रॉकेट दाग सकता है, जिसकी मदद से दुश्मन के MMG, LMG बंकर, एमिनेशन डिपो और कमांड कंट्रोल सेंटर को आसानी से तबाह किया जा सकता है। रॉकेट लॉन्चर की साइट के साथ ही कैमरे को अटैच किया गया है। कैमरे की मदद से बाज ड्रोन सटीक हमला करता है और फिर सुरक्षित वापस लौट आता है। इसे मैनुअल और ऑटोनॉमस मोड में भी ऑपरेट कर सकते हैं। बाज ड्रोन पायलट मोड में 5 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है, वहीं ऑटोनॉमस मोड में 10 किलोमीटर की दूरी तक उड़ान भरने में सक्षम है।
1: भारत जो है बाज बटालियन बना रहा है, आधुनिक ड्रोन्स का इस्तेमाल कर रहा है और काफी हद तक ऑटोनॉमी दे रहा है। हालांकि फाइनल कंट्रोल अभी भी भारत ने एथिक्स को सोचते हुए अपने हाथ में रखा, लेकिन जरूरत पड़ने पर यह ड्रोन दिशा बदलने में सक्षम है। अगर टारगेट अपनी जगह बदल लेता है तो ये भी प्रोएक्टिव होके अपनी जगह बदल के टारगेट का पीछा करते हैं, उसको बर्बाद करते हैं, साथ साथ में अलग अलग तरह के हथियार ले जाने में सक्षम है। और इनको देखते हुए बाज बटालियन भी बनाई जा रही है, ताकि बड़ी संख्या में आज जो ड्रोन से होने वाला खतरा है उसमें आक्रामक तौर पर और डिफेंस के तौर पर हम लोग सक्षम रहें।
0: बाज ड्रोन को काउंटर इमरजेंसी, काउंटर टेररिज्म में सर्विलांस और आतंकियों के हाइडआउट को तबाह करने के लिए तैयार किया गया है। दरअसल जम्मू कश्मीर में आए दिन होने वाले आतंकी हमले और हमलों को अंजाम देकर आतंकी घने जंगल में छिप जाते हैं, जिन्हें ढूंढना आसान नहीं होता। लिहाजा अब आतंक के सपोलों को खत्म करने के लिए बाज आने वाला है। बाज ड्रोन की सबसे खास बात है इसका एयरफ्रेम स्वदेशी कार्बन अरामिड कंपोजिट से बना है, जो क्रैश रेजिस्टेंस है और 7.62 mm की गोली हिट को भी सहन कर सकता है।
1: देखा जाए तो बाज ड्रोन काउंटर टेरर और काउंटर सर्विलियंस के लिए काफ़ी कामयाब हो रहा है, क्योंकि दो तरह से इस्तेमाल हो। जो आधुनिक ड्रोन्स हैं वो काफ़ी पास तक जाकर जो टेरर कैंप है उनकी पूरी खबर हासिल करके पीछे भेजते हैं, जिससे कि ऑपरेशन में हेल्प होती है। दूसरी बात, जो एंटी ड्रोन्स हैं वो बाज हैं जिनके ऊपर कैमरा लगा हुआ है, और वो जो टेररिस्ट हैं वो नेचुरली ड्यूअल यूज ड्रोन्स का इस्तेमाल करते हैं। वो ड्रोन को देखते हैं तो बाज उसको पकड़ के डिस्ट्रॉय करके फेंक देता है और टेररिस्ट के जो इरादे हैं उनको नाकाम कर देता है।
0: आज दुनिया के कई मुल्क रोबोटिक वॉरफेयर की रेस में लगे हुए हैं। ऐसे रोबोट बनाने की कोशिश हो रही है जो जंग में गोलियां तक बरसा सके। भारतीय सेना ने निगरानी क्षमता बढ़ाने और युद्ध अभियानों में मदद के लिए एक म्यूल यानी कि मल्टी यूटिलिटी लेग इक्विपमेंट डेवलप किया है, जिसे रोबोटिक डॉग भी कहा जाता है। इस रोबोटिक डॉग को अलग अलग हालात में परखा जा रहा है। रोबोटिक म्यूल को 10 किलोमीटर दूर बैठकर भी ऑपरेट किया जा सकता है। एक घंटे चार्ज करने के बाद ये लगातार 10 घंटे तक काम कर सकता है। इनमें एक रिमोट कंट्रोल यूनिट होती है जिससे इसको मॉनिटर किया जा सकता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसकी डिजाइन है जिसकी मदद से हर बाधा को आसानी से पार कर सकता है। ये रेगिस्तान, ऊबड़ खाबड़ जमीन, ऊंचाई और बर्फीले इलाकों में पूरी तरह से काम करने में सक्षम है। -40 से 55 डिग्री सेल्सियस का तापमान भी इसकी क्षमताओं पर कोई असर नहीं डाल सकता।
3: भारतीय सेना ने 100 रोबोटिक म्यूल खरीदे हैं इमरजेंसी पावर्स के अंदर, जो करीब 300 करोड़ की उनकी है। ये जो रोबोटिक म्यूल्स हैं ये इंफ्रारेड से लेस हैं, यानी कि किसी ऑब्जेक्ट से अगर हीट निकल रही है तो ये उसे पहचान सकते हैं। ये इलेक्ट्रो ऑप्टिक से भी लेस हैं, यानी कि ये पहचान सकते हैं कि ऑप्टिकल यानी कि फिगर को देख के कि कौन है सामने। चूंकि इनमें ये सेंसर्स लगे हुए हैं, इसलिए उन सेंसर्स को 10 किलोमीटर दूर से भी ऑपरेट किया जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है। हाई एल्टीट्यूड में इस्तेमाल किए जाते हैं ये
0: रोबोटिक डॉग में 360 डिग्री घूमने वाला हाई रेजोल्यूशन कैमरा लगाया गया है, जिसकी मदद से रात के अंधेरे में छिपे हुए दुश्मनों को भी ढूंढ निकालना आसान होगा। खास बात ये भी है कि ये रोबोटिक डॉग ऊंचाई वाले इलाकों में 15 किलो वजन के सामान को भी अपने साथ आसानी से ले जा सकते हैं।
3: ये रोबोट हो या आदमी हो, किसी भी चीज को जानने के लिए, पहचानने के लिए हमको या तो उसकी फिगर की आवश्यकता होती है, या उसकी ध्वनि की आवश्यकता होती है, या उसकी बॉडी से निकलने वाली हीट वेव्स की आवश्यकता होती है। बस यही उपकरण है जो इनके अंदर लगाए जाते हैं। इनमें थर्मल कैमराज लगाए जाते हैं जो हीट से पिक्चर ले सकते हैं, इंफ्रारेड कैमराज भी लगाए जाते हैं, सेंसर्स भी लगाए जाते हैं।
0: सरहद की रक्षा करने में जुटे जवानों को किसी तरह के नुकसान से बचाते हुए ये दुश्मन पर गोलीबारी भी कर सकता है। आपको याद होगा कि साल 2023 में भारतीय सेना ने तकरीबन 100 रोबोट डॉग्स को ऊंचाई वाले इलाकों में तैनात किया था, जहां पर ये अपनी सेवाएं दे रहे हैं और आज हमारी सरहद की रखवाली कर रहे हैं। सेना की योजना इन रोबोट्स को ऐसी मुश्किल जगहों पर तैनात करने की है जहां सेना के जवानों को पहुंचने में काफी दिक्कत आती है। इन रोबोट्स की मॉनिटरिंग सेना के जवान करेंगे। इन रोबो डॉग्स के इस्तेमाल से संवेदनशील सीमाओं की सुरक्षा में लगे सशस्त्र बलों पर दबाव महत्वपूर्ण रूप से कम हो सकता है। रणक्षेत्र में फिलहाल यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए मोर इसके ऊपर।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
7: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे,
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
9: अमेरिका के न्यू मैक्सिको में विश्व का सबसे बड़ा हॉट एयर बैलून उत्सव अल्बुकर्क इंटरनेशनल बैलून फिएस्टा 2026 धूमधाम से शुरू हो चुका है। इस दौरान आकाश में तैरते सैकड़ों गुब्बारों के इस मनमोहक दृश्य को लाइव दिखाने के लिए दुनिया भर से लाखों लोग न्यू मैक्सिको पहुंच रहे हैं।
10: रंग बिरंगे गुब्बारों से भरा है आसमान, नील गगन पर
8: अलग अलग रंगों और डिजाइनों वाले होटल गुब्बारों की उड़ान का ये नज़ारा बेहद शानदार है। ये तस्वीरें अमेरिका के न्यू मैक्सिको में चल रहे अल्बुकर्क इंटरनेशनल बलून फेस्टा की है। यहाँ सिर्फ पारंपरिक गुब्बारे ही नहीं बल्कि अलग अलग आकार वाले विशेष बैलून भी आकर्षण का केंद्र बने हैं। इनमें गाय जैसा दिखने वाला और मशहूर स्मोकी बेयर की झलक दिखाने वाले गुब्बारे भी शामिल हैं। न्यू मैक्सिको में गुब्बारों के उत्सव की शुरुआत तड़के खास ड्रोन लाइट शो के साथ हुई। इस शो में हॉट एयर बलून, न्यू मैक्सिको के स्टेट बर्ड ग्रेट रॉडनर, चिली पेपर और मैक्सिकन थीम वाली अनोखी आकृतियां नजर आईं। इसके बाद शुरू हुई गुब्बारों में हवा भरने की तैयारी। जब एक एक कर विशाल बैलून जमीन पर आकार लेने लगे तो देखते ही देखते पूरा फिएस्टा पार्क रंगों से भर गया। सूरज उगने के साथ ही सुबह करीब 7 बजे शुरू हुए इस महोत्सव का सबसे मनमोहक वह पल था जब सैकड़ों हॉट एयर बैलून एक साथ आसमान की ओर उठने लगे और फिर ऐसा लगा जैसे पूरा आसमान रंग बिरंगे गुब्बारों से ढक गया हो। इस नज़ारे को देखने के लिए अमेरिका ही नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने से बड़ी संख्या में लोग अल्बुकर्क इंटरनेशनल बैलून फिएस्टा पार्क पहुंचे। इस बैलून महोत्सव की शुरुआत सन 1962 में महज 13 गुब्बारों के साथ हुई थी और अब ये दुनिया के सबसे बड़े बैलूनिंग फेस्टिवल में शुमार हो चुका है। आयोजकों के मुताबिक इस बार 500 से ज्यादा बैलून फिएस्टा में हिस्सा ले रहे हैं। इस बार 9 दिनों का ये इंटरनेशनल बैलून फिएस्टा 11 अक्टूबर तक जारी रहेगा और बैलूनिंग के शौकीनों को एक बार फिर से अनूठी यादें संजोने का मौका देगा। रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को। गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
9: दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे के 140 साल के होने पर नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे ने महोत्सव का आयोजन किया है जिसका शुभारंभ रेलवे के जीएम ने पूरा किया और पूरे उत्साह और पारंपरिक अंदाज में महोत्सव का शुभारंभ किया गया। इस महोत्सव का उद्देश्य दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे की विरासत, इतिहास और आकर्षण को लोगों तक पहुँचाने के लिए कई पहल की गई हैं। दार्जिलिंग के सुकना स्टेशन पर एक फोटो गैलरी बाकायदा लगाई गई है जिसमें दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे की पुरानी यादें, इतिहास को बाकायदा दर्शाया गया है। साहित्य और स्थानीय प्रतिभाओं का संगम भी इस अनूठे उत्सव में देखने को मिल रहा है। पोएट्स ऑफ कम्युनिटी के सहयोग से आयोजित इस फेस्टिवल में रिदम ऑन व्हील्स, टॉय ट्रेन की सवारी, साहित्य कार्यक्रम और विभिन्न स्थानों पर कार्यशालाएं आयोजित की जा रही हैं।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
9: उत्तराखंड के खटीमा में आदि रंगोत्सव फेस्टिवल का शुभारंभ मुख्यमंत्री धामी के साथ केंद्रीय मंत्री ज्वेल ओरम और किरण रिजिजू रहे मौजूद। असम, उड़ीसा, महाराष्ट्र सहित 15 राज्यों के जनजाति समूह के हुनर का प्रदर्शन। ऐसे संत रविदास नगर के नाम से जाना जाएगा उत्तर प्रदेश का भदोही जिला। कारपेट एक्सपो के उद्घाटन पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ऐलान, जल्द ही सरकार की ओर से अधिसूचना होगी जारी। पश्चिम बंगाल के असनसोल में कैप्टन स्मिथ मच्छार के लिए पूजा अर्चना, हवन पूजन के साथ भगवान से की जल्द स्वस्थ होने की कामना, जाबाज के लिए देश भर में प्रार्थनाएं। राजधानी दिल्ली में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के तौर पर विकसित होंगे 5 प्रमुख स्टेडियम। प्रदेश के खेल मंत्री आशीष सूद ने किया ऐलान, खिलाड़ियों को मिलेंगी हर तरह की आधुनिक सुविधाएं। जापान के एगानोया में एशियन गेम्स 2026 का भव्य समापन समारोह, 2 गोल्ड और 1 सिल्वर मेडल जीतने वाली शूटर नीरू ढांडा ने थामा तिरंगा। भारतीय खिलाड़ियों ने जीते कुल 85 मेडल।

नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्वेता झा। आप देख रहे हैं अपना सबसे पसंदीदा और दमदार शो बंदे में है दम। एक बार फिर मैं हाजिर हूं दमदार शख्सियत का एक बेमिसाल सफरनामा लेकर। इस बार जिस शख्सियत का बेनजीर सफरनामा लेकर हम हाजिर हुए हैं, उसने 34,000 फीट की ऊंचाई पर साहस और पराक्रम का ऐसा अफसाना लिख दिया कि पूरी दुनिया उसके सजदे में आ गई है।

आप समझ ही गए होंगे कि इस बार की दमदार शख्सियत कोई और नहीं बल्कि फ्लाई दुबई के विमान में एक सनकी को पायलट के खौफनाक मंसूबों को नाकाम कर 174 बेगुनाह यात्रियों के प्राणों की रक्षा करने वाले कैप्टन स्मिथ मछार हैं। जी हां, हिंदुस्तान का ऐसा सपूत जिसकी वीरता का यशोगान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू समेत दुनिया भर के लोग कर रहे हैं। दरअसल कैप्टन स्मिथ ने अपने साहस, पराक्रम और सूझबूझ से विमान में सवार 174 मासूम लोगों को दर्दनाक मौत से बचा लिया। 34,000 फीट की ऊंचाई पर बुरी तरह जख्मी होने के बाद अगर ये जाबाज सरेंडर कर देता तो विमान का क्रैश होना तय था। वीरता के 120 सेकंड्स की ये दास्तान आपके रोंगटे खड़े कर देगी।

0: साहस, शौर्य और धैर्य की कसौटी है आपात स्थिति। बेहद कठिन और नाजुक वक्त में जो इंसान अपने साहस और सूझबूझ से लोगों को मुसीबत से उबार लेता है, वही रियल हीरो कहलाता है। ऐसा ही एक बिंदास हीरो है हिंदुस्तान का लाल कैप्टन स्मिथ मुच्छार। सामने खड़ी मौत को देखकर भी जिसका साहस और हौसला एक पल के लिए भी पस्त नहीं हुआ। 34,000 फीट की ऊंचाई पर पैदा हुई विकट परिस्थिति में अगर ये हिंदुस्तानी हिम्मत हार जाता तो 27 बच्चों समेत 174 बेगुनाह यात्री अपनी जान से हाथ धो चुके होते। कैप्टन स्मिथ मुच्छार का ये पराक्रम मिड ईयर टेरर कॉन्स्पिरेसी को नाकाम करने वाली हीरोइक हिस्ट्री के बोल्ड चैप्टर के रूप में हमेशा के लिए दर्ज हो चुका है। कैप्टन स्मिथ के साहसिक और ऐतिहासिक पराक्रम से 140 करोड़ हिंदुस्तानियों का सीना गर्व से चौड़ा हो गया है।
1: भारत के कैप्टन स्मिथ ने जिस प्रकार से धैर्य, सूझबूझ और साहस का परिचय करवाया, और जैसे आज इजराइल के प्रधानमंत्री ने कहा कि इस हिंदुस्तानी ने 9/11 होने से बचा लिया, हर देशवासी के लिए स्मिथ का ये पराक्रम हमें गौरव से भर देता है।
0: रोंगटे खड़े कर देने वाला ये वाक्या है 30 सितंबर 2026 का, जब फ्लाई दुबई की कमर्शियल फ्लाइट FZ1073 ने 174 यात्रियों और 6 क्रू मेंबर्स के साथ स्थानीय समय के मुताबिक सुबह 6:49 पर दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से तेल अवीव के लिए उड़ान भरी थी। कैप्टन स्मिथ इस विमान के पायलट थे और उनके साथ कॉकपिट में को पायलट के तौर पर ओमान का एक शख्स था। कैप्टन स्मिथ इस बात से पूरी तरह अनजान थे कि उनका को पायलट इंतहाई खौफनाक इरादों के साथ कॉकपिट में दाखिल हुआ है। दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से टेक ऑफ के करीब 1:42 बाद विमान जब 34,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भर रहा था, तभी ओमानी को पायलट ने अपने खतरनाक मंसूबों को अंजाम देने के लिए हिंदुस्तान के दिलेर पायलट स्मिथ पर चाकुओं से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। कैप्टन स्मिथ ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उन्हीं का को पायलट मिड ईयर उन पर इस तरह जानलेवा हमला कर देगा। पल भर में बुरी तरह लहूलुहान हो चुके स्मिथ ने इस विकट स्थिति में भी साहस, सूझबूझ और धैर्य नहीं खोया। वो समझ गए कि उनका को पायलट या तो विमान को क्रैश करना चाहता है या फिर इसे अगवा करना चाहता है। बुरी तरह जख्मी हो चुके कैप्टन स्मिथ के मन में एक बात बिजली की तरह कौंद गई, अगर मैं हिम्मत हार गया तो 174 बेगुनाह यात्रियों की दर्दनाक मौत हो जाएगी। ये विचार आते ही जख्मी स्मिथ एक्शन में आ गए। उन्होंने पहला काम ये किया कि विमान का कंट्रोल अपने पास ही रखा, जबकि ओमानी को पायलट का इरादा कंट्रोल अपने हाथ में लेने का था। दूसरा काम उन्होंने ये किया कि ATC को स्क्वाक कोड 7700 भेज दिया, जो सामान्य आपात स्थिति का संकेत होता है। कुछ मिनट बाद उन्होंने कोड 7500 भेजा, जो विमान हाईजैकिंग का संकेत देता है। तीसरा और सबसे बड़ा काम उन्होंने ये किया कि कॉकपिट का रिलीज सिस्टम दबा दिया, जिससे डोर ओपन हो गया। आपको बता दें कि कॉकपिट का डोर सिस्टम ऐसा होता है कि उसे बाहर से किसी भी सूरत में ओपन नहीं किया जा सकता। जाहिर है कैप्टन स्मिथ अगर डोर ओपन नहीं करते तो विमान के दूसरे क्रू मेंबर्स और यात्रियों को हस्तक्षेप का मौका नहीं मिलता, और ओमानी को पायलट कुछ ही देर में जख्मी स्मिथ की शायद जान भी ले लेता। बहरहाल जैसे ही कॉकपिट का डोर ओपन हुआ, यात्रियों को सारा माजरा समझ में आ गया। विमान में यात्रा कर रहे यानी हायून नाम के एक इजरायली नागरिक ने अदम्य साहस का परिचय दिखाते हुए ओमानी को पायलट को खींच कर कॉकपिट से बाहर कर दिया, जिसके बाद दूसरे यात्री उस पर टूट पड़े और चंद मिनटों में उसे काबू में कर लिया। सनकी को पायलट को काबू में करने वाले यानी हायून भी कैप्टन स्मिथ के शौर्य को सलाम कर रहे हैं।
2: Captain Smith, it's a hero. I think she is opened the door because I believe it's near the door in the side of the cockpit. I think it's opened the door and then is crushed. I want to tell him thank you for that. If not, if we can't go inside the cockpit, where all the passenger, include me, include my family, it's die.
0: काबिले गौर है कि इस विमान में ज्यादातर पैसेंजर्स इजरायली नागरिक थे। जाहिर है कि ओमान के सनकी को पायलट के निशाने पर यही इजरायली नागरिक थे। अगर कैप्टन स्मिथ ने वक्त रहते कॉकपिट का डोर ओपन नहीं किया होता तो विमान में सवार सभी यात्री और क्रू मेंबर्स की दर्दनाक मौत हो जाती। यही वजह है कि इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू साहसिक यात्रियों के साथ कैप्टन स्मिथ के शौर्य, धैर्य और हीरोइक एक्ट की दिल खोलकर सराहना कर रहे हैं।
3: Almost all the passengers on the flight were Israelis. During the flight, as they approached the country, one of the pilots stabbed the other pilot and apparently tried to crash the plane with everyone on board. I spoke with one of the Israeli passengers. He told me that the plane went into a spin and started to dive. He told me that somehow he managed to break into the cockpit with one of the crew members, and together they neutralized the stabbing pilot while he was trying to sabotage the plane's systems. Another flight crew member who was on the plane entered the cockpit and managed to stabilize the aircraft. I salute these heroes who showed resourcefulness and extraordinary courage.
0: इसमें कोई संदेह नहीं कि कॉकपिट के भीतर कैप्टन स्मिथ जब अपने ही सन की को पायलट के खिलाफ वीरता के साथ मुकाबला कर रहे

0: थे। उस दौरान विमान पर सवार 174 यात्रियों का कलेजा मुंह को अछूले करने के बाद ओमान का बददिमाग को पायलट विमान को क्रैश कराने की कोशिश भी करने लगा था। इस दौरान 34,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा विमान गोता लगाते हुए 2 मिनट के भीतर ही 17,000 फीट नीचे आ चुका था। अगले 1 या 2 मिनट में वो आग के गोले में तब्दील होने ही वाला था कि कैप्टन स्मिथ ने सूझबूझ का परिचय देते हुए रिलीज सिस्टम का बटन प्रेस कर दिया। यही वजह है कि बेंजामिन नेतन्याहू ने कैप्टन स्मिथ को रियल हीरो कहा है। सोशल साइट एक्स पर अपनी पोस्ट में भारतीय कैप्टन की हृदय से तारीफ करते हुए नेतन्याहू ने लिखा है कि असाधारण वीरता प्रदर्शित करने के लिए भारतीय पायलट स्मिथ मुच्छार को मैं सलाम करता हूँ। चाकू से गोदे जाने के बाद गंभीर रूप से जख्मी होने पर भी उन्होंने हार नहीं मानी। सनकी को पायलट का मुकाबला किया और कॉकपिट का डोर ओपन कर दिया। इसकी वजह से विमान में सवार यात्रियों और क्रू मेंबर्स को ओमानी को पायलट को काबू में करने का मौका मिल गया और आसमान में होने वाली एक खौफनाक दुर्घटना टल गई। उन्होंने इजरायली नागरिकों समेत 174 यात्रियों की जान बचा ली। मैं कैप्टन मुच्छार के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूँ। वो एक सच्चे हीरो हैं। इजरायली प्रधानमंत्री का ये भावुक संदेश इसलिए है क्योंकि विमान में लगभग सभी यात्री इजरायली थे, लेकिन कैप्टन स्मिथ के शौर्य को तो पूरी दुनिया सलाम कर रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी कैप्टन स्मिथ को सच्चा हीरो बता दिया है।
1: Perhaps a terrorist or perhaps a whack job. And he stabbed the pilot. The pilot was in very bad shape. And I guess he still is in very bad shape. But he had the sense to, amazing, to, in a way he was a hero, to open the door. You know, those doors are solid steel. You can't get them open from outside. He was able to fall back and get the door open and scream.
0: साफ है कि कैप्टन स्मिथ रील के नहीं बल्कि रियल के हीरो बनकर पूरी दुनिया में छा गए हैं। वो हीरो हैं सिर्फ इसलिए नहीं कि 34,000 फीट की ऊंचाई पर बहादुरी दिखाकर 174 यात्री और अपने क्रू मेंबर्स की जान बचा ली। वे हीरो हैं इसलिए भी कि पूरी तरह लहूलुहान हो जाने के बाद भी उनके चेहरे पर शिकन की कोई लकीर नहीं दिख रही थी। अलबत्ता बेगुनाह लोगों की जिंदगी बचाने का सुकून जरूर उनके चेहरे पर तैर रहा था। सऊदी अरब के तबूक में सेफ लैंडिंग के बाद विमान के भीतर जब उन्हें फर्स्ट एड दिया जा रहा था तो कैप्टन स्मिथ पूरे आत्मविश्वास के साथ लोगों से बात करते नजर आए। ये बात निर्विवाद सत्य है कि तबाही मचाने वाले हथियार तो बाजार में बिकते हैं, लेकिन युद्ध के समय दुश्मन के सामने सीना तान कर खड़े होने का जो साहस, शौर्य और फौलाद होता है वो दुनिया के किसी बाजार में नहीं बिकता। फौलादी जिगर तो इंसान अपने साथ लेकर पैदा होता है और जिसके भीतर फौलादी जिगरा होता है वही परोपकार के लिए, परमार्थ के लिए अपने प्राणों की आहुति देने से भी पीछे नहीं हटता। ऐसे महानायक के ही सजदे में पूरी दुनिया होती है। इजराइल की मशहूर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर तालिया जोसेफ ने कैप्टन स्मिथ के साहसिक कार्य पर इजराइल की ओर से आभार जताने के लिए जो उद्गार व्यक्त किए हैं उसने हिंदुस्तानियों के मस्तक को गर्व से और ऊंचा कर दिया है।
2: More than 170 people made it home because of Smith. 170 families that didn't lose their loved ones because he chose to take action and fight. He chose to be a hero. And that's exactly what he is. Smith is right now dealing with the wounds caused by the terrorist and he is in critical condition. So I want to wish him speedy recovery. Refuah shlema. Thank you so much from the people of Israel for your courage and for your sacrifice. We do not take it for granted and we will never forget it.
0: निसंदेह इस घटनाक्रम के बाद हिंदुस्तान की धरती पर जन्मे और पले बढ़े कैप्टन स्मिथ महानायक के तौर पर पूरी दुनिया में सराहे जा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर ओमान का वो को पायलट है जिसके जघन्य कृत की वजह से उसके देश की फचीहत हो रही है, जबकि समूचे हिंदुस्तान को अपने इस महानायक पर गर्व की अनुभूति हो रही है। पूरी दुनिया इस हीरो की स्पीडी रिकवरी के लिए अपनी अपनी आस्था और अकीदे के मुताबिक दुआ कर रही है। उधर 140 करोड़ हिंदुस्तानी अपने महानायक को स्वस्थ और सकुशल देखने के लिए बेकरार हैं।
3: कैप्टन स्मिथ मुच्छार।

सुदैव कुटुंबकम के सनातन संस्कार के बीच पले बड़े हैं। विकट परिस्थिति में अपनी चिंता छोड़कर दूसरों की रक्षा करने की प्रेरणा कैप्टन स्मिथ के संस्कार में है। आपको ये जानकर सुखद आश्चर्य होगा कि स्मिथ बजरंगबली के भक्त हैं। ओमानी मूल के को पायलट ने एक समय जब उनको बुरी तरह से जख्मी कर दिया था और बहुत ज्यादा खून बह जाने की वजह से वो मूर्छित होने लगे थे, तो उन्होंने हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर दिया। इसलिए नहीं कि उनकी जान संकट में थी, बल्कि इसलिए कि 174 बेगुनाह यात्रियों की जान जाने वाली थी। आसमान में की गई कैप्टन स्मिथ की प्रार्थना शायद स्वीकार हो गई। तभी तो समूचा इजराइल उनके नायकत्व से अभिभूत होकर जय हिंद का नारा बुलंद कर रहा है।

0: शरीर लहूलुहान हो, गहरे जख्मों का दर्द असह्य हो, मौत मुंह बाए सामने खड़ी हो, उसके बाद भी अगर अनजान लोगों की जिंदगी की हर चंद हिफाजत का जज्बा जाग जाए तो इसे क्या कहेंगे। ऐसे ही इंसानों को महामानव कहा जाता है और ऐसे महामानवों के आगे समूची मानवता नतमस्तक हो जाती है। विश्व के इतिहास में ये शायद पहली बार हुआ होगा जब हिंदुस्तान के बाहर किसी अन्य देश के नागरिक अपने ही देश की सरजमी पर जय हिंद का जय घोष कर गर्व की अनुभूति कर रहे हैं। कैप्टन स्मिथ के त्याग और बलिदान से अभिभूत होकर इजरायली नागरिक तेल अवीव की सड़कों पर निकलकर जय हिंद का नारा बुलंद कर रहे हैं।
1: जय हिंद।
2: हम इसराइल खाए।
1: हम आपके आभारी हैं।
2: We are from Israel and with one united voice
1: on behalf of the people of India
2: and the people of Israel.
1: We want to honor and thank Captain Smith
2: for heroically saving the lives of nearly 200 passengers.
0: वसुधैव कुटुम्बकम की सनातन प्रेरणा से अनुप्राणित कैप्टन स्मिथ ने बेहद विकट परिस्थिति में ऐसा अद्भुत जज्बा दिखाया कि हिंदुस्तान और इजराइल की सामाजिक, सांस्कृतिक और भौगोलिक भिन्नता भावनात्मक एकता का रूप लेकर समूची वसुधा को सुरभित कर रही है। इजराइल की सड़कों पर जय हिंद का नारा गूंज रहा है तो तेल अवीव से 4,696 किलोमीटर दूर अविनाशी काशी की गंगा आरती देश के इस शूरवीर के नाम समर्पित कर दी गई।
3: कैप्टन स्मिथ सुधार ने जिस अदम्य साहस, धैर्य और कृतज्ञ निष्ठा का परिचय दिया है वह पूरे देश के लिए गर्व की बात है। जिस परिस्थिति में कोई भी व्यक्ति घबरा सकता था उस कठिन समय में उन्होंने अपने कर्तव्य को सर्वोपरि रखते हुए सैकड़ों यात्रियों की सुरक्षा के लिए जिस बहादुरी के साथ सामना किया वह वास्तव में प्रेरणादायक है। गंगा सेवा नदी परिवार बाबा विश्वनाथ एवं भगवती माँ गंगा से उनके जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना करती है।
0: भगवान शिव की नगरी काशी में स्मिथ के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना के साथ गंगा आरती की गई तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की पावन जन्मस्थली अयोध्या धाम में कैप्टन स्मिथ के आरोग्य और लंबी उम्र के मनोरथ के साथ साधु संतों ने हनुमान चालीसा का सस्वर पाठ किया।

0: हमारे देश के जानबाज कैप्टन स्मिथ मच्छर जी ने असाधारण व्यक्तित्व और साहस का परिचय देते हुए 174 यात्रियों को सकुशल बचाने का जो है काम किए। इसके लिए मैं इनको जो है स्वास्थ्य की कामना से, यह जल्द स्वस्थ हों इसलिए हनुमान जी महाराज के जो है हनुमान चालीसा और मंत्रों के द्वारा प्रार्थना किया हूँ। हनुमान जी महाराज हमारे ऐसे स्मित मच्छर जी को शक्ति साहस और स्वस्थ करके इनको तत्काल भारत ये आए, यही हम लोगों ने हनुमान जी से प्रार्थना किया।
1: कैसा अद्भुत संयोग है कि जिस कैप्टन स्मिथ के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना के साथ अयोध्या में हनुमान चालीसा का पाठ किया गया, उस कैप्टन ने इजराइल और जॉर्डन के सीमावर्ती क्षेत्र में 34,000 फीट की ऊंचाई पर 174 नागरिकों की रक्षा की शक्ति पाने के लिए इसी हनुमान चालीसा का पाठ किया था। ये बात खुद स्मिथ ने प्रधानमंत्री मोदी के साथ बातचीत के दौरान बताई। दरअसल ओमान मूल के को

0: कई हिस्सों से बेतहाशा खून निकल रहा था। एक समय ऐसा भी आया जब स्मित को लगा कि वे कभी भी होश में नहीं आने वाली मूर्छा में जाने वाले हैं। मूर्छित होने से पहले जैसे ही उनके मन में ये ख्याल आया कि अगर मैं मूर्छित हुआ तो इस विमान में सवार 174 यात्रियों की मौत निश्चित है, उन्होंने हनुमान चालीसा का पाठ शुरू किया और पूरी शक्ति के साथ उठकर कॉकपिट के रिलीज सिस्टम का बटन प्रेस कर दिया। जब कॉकपिट का डोर ओपन हो गया तो विमान में सवार क्रू मेंबर्स और पैसेंजर्स ने बाकी का मोर्चा संभाल लिया। मौत का विकराल रूप सामने खड़ा देखने के बाद भी 174 जिंदगी की चिंता करने वाले कैप्टन स्मित का संवेदनात्मक भाव सनातन के कालजयी ग्रंथ मनुस्मृति के 8वें अध्याय के 15वें श्लोक से पुष्ट हो जाता है। मनुस्मृति का ये श्लोक है, धर्म्यो हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षितः, तस्मात् धर्मो न हन्तव्यो मा नो धर्मो हतो अवधीत। मनुस्मृति के इस श्लोक का अर्थ है, जो धर्म का नाश करता है धर्म उसका नाश कर देता है, और जो धर्म की रक्षा करता है धर्म भी उसकी रक्षा करता है। इसीलिए धर्म का कभी नाश नहीं होना चाहिए, ताकि नाश हुआ धर्म हमारा नाश न कर सके। मनुस्मृति के इसी श्लोक का भाव तब कैप्टन स्मित के मन में जागृत हो गया। उन्होंने अत्यंत विकट स्थिति में धर्म की रक्षा की और अब धर्म उनकी रक्षा कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी स्वयं अपने देश के साहसी सपूत की हर जरूरत का ख्याल रख रहे हैं। कैप्टन स्मित ने तब ये नहीं सोचा होगा कि 174 जिंदगी बचाने का उनका कर्तव्य समूचे देश की भावना का ज्वार बनकर उमड़ पड़ेगा। इसीलिए पीएम मोदी से बात करते समय वे थोड़े भावुक भी हो गए।
1: स्मित, अगर मेरे सामने आप भावुक नहीं होंगे तो कहां होंगे?
0: गंभीर रूप से जख्मी स्मित का इलाज पहले सऊदी अरब के तबूक के एक अस्पताल में चल रहा था, लेकिन और बेहतर ट्रीटमेंट के लिए उन्हें एयरलिफ्ट करके अबू धाबी के सैन्य अस्पताल लाया गया। उनकी हालत में तेजी से सुधार हो रहा है और डॉक्टरों के मुताबिक वो खतरे से बाहर हैं। जिस शख्स के आरोग्य के लिए हिंदुस्तान के मंदिरों शिवालयों समेत दुनिया भर के इबादत खानों में प्रार्थनाओं का दौर चल रहा हो, उसे पूर्ण स्वस्थ होने से कौन रोक सकता है? इसमें कोई संदेह नहीं कि अपने फिनोमिनल हीरोइक एक्ट से कैप्टन स्मित ने हिंदुस्तान का मान पूरी दुनिया में बढ़ाया है।
2: इसी के साथ बंदे मेहदम में आज आपने देश के जाबाज पायलट स्मित मछार के हीरोइक एक्ट की दास्तान सुनी। अगले हफ्ते ऐसी ही किसी और बेमिसाल शख्सियत के सफरनामे के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे।

0: टुडे बनाता है।
1: गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
3: अमेरिका के न्यू मैक्सिको में विश्व का सबसे बड़ा हॉट एयर बैलून उत्सव अल्बुकर्क इंटरनेशनल बैलून फिएस्टा 2026 धूमधाम से शुरू हो चुका है। इस दौरान आकाश में तैरते सैकड़ों गुब्बारों के इस मनमोहक दृश्य को लाइव दिखाने के लिए दुनिया भर से लाखों लोग न्यू मैक्सिको पहुंच रहे हैं।
4: रंग बिरंगे गुब्बारों से भरा है आसमान, नील गगन पर अलग अलग रंगों और डिजाइनों वाले होटल गुब्बारों की उड़ान का ये नजारा बेहद शानदार है। ये तस्वीरें अमेरिका के न्यू मैक्सिको में चल रहे अल्बुकर्क इंटरनेशनल बलून फेस्टा की है। यहाँ सिर्फ पारंपरिक गुब्बारे ही नहीं बल्कि अलग अलग आकार वाले विशेष बैलून भी आकर्षण का केंद्र बने हैं। इनमें गाय जैसा दिखने वाला और मशहूर स्मोकी बेयर की झलक दिखाने वाले गुब्बारे भी शामिल हैं। न्यू मैक्सिको में गुब्बारों के उत्सव की शुरुआत तड़के खास ड्रोन लाइट शो के साथ हुई। इस शो में हॉट एयर बलून, न्यू मैक्सिको के स्टेट बर्ड ग्रेट रॉडनर, चिली पेपर और मैक्सिकन थीम वाली अनोखी आकृतियां नजर आईं। इसके बाद शुरू हुई गुब्बारों में हवा भरने की तैयारी। जब एक एक कर विशाल बैलून जमीन पर आकार लेने लगे तो देखते ही देखते पूरा फिएस्टा पार्क रंगों से भर गया। सूरज उगने के साथ ही सुबह करीब 7 बजे शुरू हुए इस महोत्सव का सबसे मनमोहक वह पल था जब सैकड़ों हॉट एयर बैलून एक साथ आसमान की ओर उठने लगे और फिर ऐसा लगा जैसे पूरा आसमान रंग बिरंगे गुब्बारों से ढक गया हो। इस नजारे को देखने के लिए अमेरिका ही नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने से बड़ी संख्या में लोग अल्बुकर्क इंटरनेशनल बैलून फिएस्टा पार्क पहुंचे। इस बैलून महोत्सव की शुरुआत सन 1962 में महज 13 गुब्बारों के साथ हुई थी और अब ये दुनिया के सबसे बड़े बैलूनिंग फेस्टिवल में शुमार हो चुका है। आयोजकों के मुताबिक इस बार 500 से ज्यादा बैलून फिएस्टा में हिस्सा ले रहे हैं। इस बार 9 दिनों का ये इंटरनेशनल बैलून फिएस्टा 11 अक्टूबर तक जारी रहेगा और बैलूनिंग के शौकीनों को एक बार फिर से अनूठी यादें संजोने का मौका देगा। रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए,

0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज।